0: एक लाख सरकारी नियुक्ति पत्र हम देने जा रहे हैं। अनुमान करिए, एक लाख। यूपी के अंदर कभी ये कल्पना होती थी, यहां हम छह महीने के अंदर ही एक लाख नौजवानों के सरकारी नियुक्ति पत्र दे दें, सारी परीक्षाएं पूर्ण हो गई।
1: आपको बता दें कि अगले छह महीने में जिन एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का ऐलान योगी कर रहे हैं, इनमें यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल SC, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट और लोअर PCS जैसी भर्तियां शामिल हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के तहत 32,689 कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा का रिजल्ट 31 जुलाई को जारी हुआ था। इसमें 76,000 उम्मीदवार पास हुए हैं। इसके बाद 17 अगस्त से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अनुसार कांस्टेबल भर्ती का फिजिकल टेस्ट सितंबर में आयोजित किया जाएगा, जबकि यूपी ट्रिपल SC एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप C भर्ती प्रक्रिया भी चल रही है। इसकी आंसर की 11 अगस्त को जारी हुई थी। इसके तहत कुल 2759 पदों पर भर्ती होगी। इसकी लिखित परीक्षा का रिजल्ट जल्द जारी होने की उम्मीद है। और यूपी ट्रिपल SC की लोअर PCS मुख्य परीक्षा 2026 का आयोजन 23 अगस्त को हुआ था। इसकी प्रोविजनल आंसर की अगले ही दिन 24 अगस्त को जारी हो गई, लेकिन रिजल्ट के लिए अक्टूबर नवंबर तक का इंतजार करना पड़ सकता है। यूपी लोअर PCS भर्ती 2026 के तहत कुल 2285 पदों पर भर्ती होगी। CM योगी ने कृषि विभाग के 3446 टेक्निकल असिस्टेंट और 126 मंडी सचिवों की नौकरी के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में ये घोषणा की। इतना ही नहीं, इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को भी निशाने पर लिया
0: और उस समय की सरकारों में बैठे हुए सरकारी तंत्र में भ्रष्ट।
1: CM योगी ने सीधे तौर पर 2017 से पहले नौकरियों को लेकर चाचा भतीजे को टारगेट किया।
0: हमने पहले दिन से तय कर रखा है कि जो 17 के पहले की परिपाटी थी कि नियुक्ति का विज्ञापन निकलता था, चाचा भतीजे की जोड़ी और महाभारत का पूरा खानदान फिर वसूली के लिए प्रदेश भर में निकल पड़ता था, नौजवान भटकता रहता था, परिणाम नहीं आता था और अंततः माननीय न्यायालय को कोर्ट में स्टे लगाना पड़ता था।
1: योगी एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं। एक तरफ तो जेंजी वोट बैंक को साध रहे हैं, दूसरी तरफ चुनावों के मद्देनजर समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं।
2: 2017 में 2026 के बीच में ये एक लाख नौकरियां क्यों नहीं क्रिएट हुई थी? आज जब पूरे देश में युवाओं का, छात्रों का भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक गहरा आक्रोश, असंतोष व्याप्त है सड़कों पर, एक लाख नौकरी का ऐलान कर रहे हो, 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष वाला क्या हुआ मुख्यमंत्री जी? पूरे उत्तर प्रदेश में जो पक्की नौकरियां थी, जो बैकलॉग्स हैं, आज तक नहीं भरे।
3: जब वो नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, बच्चे उनसे पूछ रहे हैं कि नौकरियां कहाँ हैं, तो उन्हें 10 साल पहले का चाचा भतीजा याद आ रहा है, साबू याद आ रहा है, विक्रम बेताल याद आ रहा है। ये विक्रम बेताल, चाचा भतीजा याद करने से क्या नौकरी मिल जाएगी बच्चों को? योगी आदित्यनाथ जी, 69,000 शिक्षक सुप्रीम कोर्ट में आपने लटका रखे, 68,500 आपने कोर्ट में लटका रखे, जिनको आपने नौकरियां दे चुके हैं, पुरानी सरकारें दे चुकी, उनको भी आपने लटका रखा।
4: 7,000 करोड़ हम सरकारी खजाना विज्ञापन देने में खर्च सकते हैं, परंतु जो 13 लाख जो सरकारी पद खाली पड़े हैं, वो हमारे युवा साथियों को नौकरी देने का काम नहीं कर रहे।
5: जेंजी को योगी सरकार एक और बड़ा तोहफा देने जा रही है। 25 लाख टैबलेट मुफ्त बांटने की तैयारी में है। पढ़ाई से रोजगार तक डिजिटल मदद, 2026-27 में योजना के लिए 2300 करोड़ से ज्यादा रुपए के बजट का प्रावधान है। योगी सरकार जेंजी को लुभाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। तो अखिलेश यादव जेंजी और जेन अल्फा के आक्रोश का सवाल उठाकर योगी सरकार को घेर रहे हैं।
1: जब जेन जी अपनी मांगे बनवाने के लिए भर्ती परीक्षाओं में धांधली, पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था, लटकी हुई भर्तियां और रोजगार के खिलाफ आंदोलन करने पर उतारू है और सरकारों से लड़ने भिड़ने के लिए भी तैयार है, उस वक्त योगी जेन जी को समझाने, लुभाने और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सरकार में भर्तियों को लेकर न तो भेदभाव हुआ है और न ही कोई सवाल खड़ा हुआ है।
0: जब हम योग्यतम अभ्यर्थियों का चयन बिना भेदभाव के करते हैं, तो उसका लाभ पूरे प्रदेश को मिलता है, उनकी प्रतिभा और उनकी ऊर्जा का लाभ पूरा प्रदेश लेता हुआ दिखाई देता है। और यही तो पिछले 9-9.5 वर्ष के अंदर डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धियों में से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस दौरान हमारी सरकार ने 9,30,000 से अधिक उत्तर प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाने में सफलता प्राप्त की है और एक भी नियुक्ति पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता।
1: सिर्फ जेन जी ही नहीं, अब जेन अल्फा भी यूपी में स्कूलों की समस्याओं के खिलाफ प्रदर्शन करने लगा है। जब यूपी में जिले जिले जेनरेशन अल्फा यानी स्कूली बच्चे अपनी मांगों और शिकायतों को लेकर सड़क पर उतरने लगे तो प्रदेश में अव्यवस्था और नाकामी के सवाल बड़े होते दिखने लगे। हालांकि सीएम योगी ने जेन अल्फा की समस्याओं का तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए हैं। योगी सरकार ने प्राइमरी से लेकर 8वीं तक के स्कूलों के पुनर्निर्माण और मरम्मत के लिए 604 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया है। बेसिक शिक्षा विभाग ने 302 करोड़ रुपयों की पहली किस्त जारी भी कर दी।
6: और बीजेपी वाले घबराए हुए हैं, जब से बच्चों ने लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाना शुरू किया है बीजेपी के लोग घबरा गए हैं, घबराए हुए हैं। जो सरकार बच्चों से घबरा जाए और 10 साल में उनके पास कुछ काम करने का ना हो, रिकॉर्ड ना हो उनको बताने का, ये सरकार जाने वाली है। एक तो नौजवान दुखी है, किसान दुखी है, कहीं डीएपी खाद मिली हो बता दो आप। और खाद और डीएपी के लिए भी आपको पोर्टल का इस्तेमाल करना पड़ा, थोड़ा मिस हो गया तो गायब होगा, नाम ही गायब हो गया। ये नए जमाने के लोग हैं, बताओ किसान को खाद चाहिए तो खाद नहीं दे पा रहे, और जो बटाई पे ले खेती उन्हें खाद कहाँ से मिल रही है।
1: जिस तरह से जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में नीट पेपर लीक के खिलाफ हुए आंदोलन में समाजवादी पार्टी जेन जी के साथ खड़ी हुई नजर आई और कांग्रेस ने सीजेपी के संसद मार्च के दौरान हुई लाठी चार्ज को मुद्दा बनाकर सरकार को घेरा, तो अब बीजेपी और योगी के लिए जेन जी को साधना एक चैलेंज बन गया है। ऐसे में सीएम योगी जेन जी को सरकारी नौकरियों का तोहफा दिखा रहे हैं। ऐसा क्यों, इसे आप उत्तर प्रदेश में युवा वोटरों के आंकड़ों से समझिए। यूपी में लगभग 13 करोड़ वोटर हैं। अगर इनमें से करीब 2.07 करोड़ यानी 15% जेन जी वोटर हैं, तो उनके वोटिंग के तरीके का असर कई विधानसभा सीटों के नतीजों पर पड़ सकता है। पिछले चुनावों के नतीजों के अंतर के आधार पर किए गए एक आकलन से पता चलता है कि युवा वोटरों का एक मुश्त झुकाव 80 से 120 विधानसभा सीटों के नतीजों को प्रभावित कर सकता है। मतलब 2027 में सत्ता की चाबी युवा वोटरों के हाथ में है। सत्ता के सिंहासन पर लगा बहुमत का ताला युवा वोटरों की चाबी से खुलेगा। ऐसे में शिक्षा और नौकरी के बुनियादी अधिकार की मांगों पर राजनीति में एक हलचल तो नजर आने लगी है। आज तक ब्यूरो।
5: पटना में 15 मांगों के साथ छात्रों का एक गुट मुख्यमंत्री आवास घेरने निकलता है, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग से लेकर वाटर कैनन तक का इस्तेमाल किया था, फोर्स की भी तैनाती की गई, लेकिन छात्र जेपी गोलंबर पर लगी बैरिकेडिंग को तोड़कर डांक बगला पहुंच गए, जहां पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाई।
7: देखिए ये बैरिकेडिंग टूटा, ये बैरिकेडिंग टूटा और देखिए ये छात्र जो है अब पुलिस को जो है लगभग रोनते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए बैरिकेडिंग टूट चुका है।
1: बीपीएससी टीआरई 4 से पीटी मेंस नेगेटिव मार्किंग हटाने और 100% डोमिसाइल की मांग को लेकर पटना के गर्दनीबाग में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया और अपनी मांगों को लेकर पटना में मुख्यमंत्री आवास को घेरने की कोशिश की, लेकिन इन प्रदर्शनकारी छात्रों को रोकने में पुलिस के पसीने छूट गए।
7: कैसे खसीटा जा रहा है इन अभ्यर्थियों को, देखिए इन अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया जा रहा है और जो अभ्यर्थी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं सबको हिरासत में लिया जा रहा है।
1: छात्रों को मुख्यमंत्री आवास पर जाने से रोकने के लिए जेपी गोलंबर पर फोर्स की तैनाती की गई, बंकर की गाड़ी भी बुलाई गई, फिर भी पुलिस छात्रों को डाक बंगला पर पहुंचने से नहीं रोक पाई, जबकि जेपी गोलंबर पर बाकायदा बैरिकेडिंग लगाई गई थी जिसे छात्रों ने जैसे खेल बना दिया।
7: बनी हुई यहाँ देखिए बैरिकेडिंग को खींच के ले जा रहे हैं, ये देखिए अब जो जंतर मंतर का हम लोगों ने देखा था कि बैरिकेडिंग या फिर
8: पटना में भी हम लोगों ने देखा था कि बैरिकेटिंग को देखे किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर ट्राईसाइकिल बना दिया है और इस पर इसको किस तरीके से ये पुलिस की बैरिकेटिंग के साथ इन लोग जो हरकत कर रहे हैं आप ये देखिए।
1: सुबह 11 बजे के आसपास सीएम हाउस का घेराव करने के लिए छात्र गांधी मैदान के गेट नंबर 10 पर जुटने लगे। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए सीआरपीएफ ने भी अपनी

0: बावजूद इसके छात्र लगातार यहां से आगे बढ़ने की कोशिश करते दिखे।
1: 70वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की लगातार मांग हो रही है और प्रशासन और ने भी आज देखिए जगह जगह पर बैरिकेडिंग लगाया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी छात्र इधर उधर से बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश करते हुए जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए किस तरीके से पुलिस, देखिए छात्र यहाँ का भी बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए अब आगे बढ़ रहे हैं।
0: तो बैरिकेडिंग तोड़कर छात्र आगे बढ़े तो डाक बंगला पर उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन छात्र डटे रहे।
1: आंदोलनकारी छात्रों को जो है वो लगातार यहाँ पर तितर बितर करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। हालांकि बहुत सारे जो छात्र हैं जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे उनको यहाँ हिरासत में भी जो है वो लिया जा रहा है। अब वाटर कैनन का पानी समाप्त हुआ, उसके बावजूद भी यहाँ पर छात्र जो है वो हिलने को यहाँ से तैयार नहीं है।
0: छात्र जब इस पर भी नहीं माने तो पुलिस ने छात्रों को तितर बितर करने के लिए बल प्रयोग किया, जिसकी शिकायत छात्र करते सुने गए।
2: हम शांतिपूर्ण तरीके से थे, जब मैं यहाँ पहुँचा तो मैंने कहा कि साहब मैं 9 दिन से भूखा हूँ, ये भारत का संविधान है, मुझे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का आजादी देता है।
0: पटना में छात्रों का ये गुस्सा किसी एक पद की परीक्षा को लेकर नहीं है। छात्र चाहते हैं कि TRE-4 शिक्षक भर्ती परीक्षा एक ही ली जाए, BSSC से संविदा कर्मियों को मिलने वाला वेटेज खत्म हो, BSSC, CGL, BSO और AEDO परीक्षाओं की तारीख जारी की जाए, डोमिसाइल नीति लागू हो, स्थानीय को रोजगार मिले, सरकारी भर्तियों में उम्र की सीमा में छूट दी जाए और दरोगा, सिपाही, BSSC और BPSC समेत सभी भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता हो।
3: हमारी मांग है कि सरकार 15 सूत्री, हमारी मांग है बीपीएससी 17वीं सिविल सेवा परीक्षा, इसमें लगातार धांधली की और व्यापक तौर पर गड़बड़ी की मांग अभ्यर्थी कर रहे हैं। हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है।
0: छात्रों का कहना है कि 13 तारीख से वो धरना दे रहे हैं, फिर भी सरकार ने न तो उन्हें बातचीत के लिए बुलाया और न ही उनकी खोज खबर ली, इसलिए उन्होंने आखिर में मुख्यमंत्री आवास घेरने का फैसला किया, लेकिन यहाँ भी उन्हें रोक दिया गया, जबकि वो सिर्फ मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुँचाना चाहते थे।
4: जब भी हम आंदोलन की घोषणा करते हैं तो या तो इन लोग लेटर निकाल करके या बयान दे करके छात्रों को गुमराह करते हैं। हम मांग कर रहे हैं कि सर CM से मुलाकात करवाई।
0: पटना में छात्रों ने ऐसी ही दलील हर उस अफसर को दी जिसने भी उन्हें आगे बढ़ने से रोका।
5: देखो सर, तुम्हारे परिवार धारा गाड़ी से कोई घोड़ा से कुछ
4: देखिए,
5: मालूम है हम लोग
4: देखिए ना क्या हुआ
5: है।
4: क्या बोले, बार बार पेपर लीक हो रहा है, BPSC में भ्रष्टाचार है।
0: पटना में प्रदर्शन करने वाले ये छात्र BPSC के एग्जाम कंट्रोलर राजेश कुमार सिंह के बयान से भी आहत दिखे, जिन्होंने गर्दनी बाब में छात्रों के प्रदर्शन को लेकर शर्मनाक बात कही थी।
6: सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपको लगता है कि आपके आरोपों में कुछ तथ्य है तो कोर्ट क्यों नहीं चले जाते हैं?
7: एक कहावत सुने होंगे, इसको काट दीजिएगा, हाथी चले बाजार कुत्ता को कह जा, आयोग का ही काम नहीं है।
0: हालांकि सम्राट सरकार ने 4 घंटे के अंदर ही एक्शन लेते हुए राजेश कुमार सिंह को सस्पेंड कर दिया, उन्होंने माफी भी मांग दी।
6: मेरे द्वारा एक लोकोक्ति बताई गई थी जिसको कि सोशल मीडिया पर कुछ तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है अन्य संदर्भ में, मैं कहना चाहता हूं कि मेरा किसी व्यक्ति विशेष या समूह को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, अगर किसी की भावनाएं इससे आहत हुई तो मैं खेद व्यक्त करता हूं।
0: लेकिन पटना में हुए प्रदर्शन में इसे लेकर गुस्सा साफ तौर पर देखने को मिला। छात्र इससे जुड़ा पोस्टर हाथों में लेकर प्रदर्शन करते दिखे, कई छात्र इस बयान के बाद भड़के भी दिखे।
4: हम लोग बिहार SSC के स्टूडेंट है तो बिहार SSC से पिछले 3 साल पहले नोटिफिकेशन जारी की है, अभी तक एग्जाम नहीं ली है, एग्जाम का कोई अता पता भी नहीं है, BSO का भी 1 साल से ज्यादा हो गया, CGL का भी 1 साल से ज्यादा हो गया, बिहार CGL का, ऊपर से संविदा वेटेज लगाई है, किसी प्रकार की कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं, तो बताइए हम लोग क्या गलत डिमांड कर रहे हैं?
8: संविदा वाले को वेटेज मिलने के कारण देखें सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है सर, 196 वाले सिलेक्टेड है और जो 306 लेके आ रहे हैं वो सिलेक्टेड नहीं हो पा रहे हैं सर, ये क्या कहाँ करने आए हैं?
0: बिहार सरकार प्रदर्शन कर रहे छात्रों

0: से उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द तरीके से समाधान करने का भरोसा दे रही है।
1: देखिए, जिन जिन मुद्दों को लेकर के छात्र धरने पर बैठे थे उनके सभी मुद्दे रिजॉल्व कर दिए गए हैं, और ऐसा नहीं है कि छात्र आंदोलन किए इसलिए हुआ। सरकार की नियति ही है कि हम अपने युवाओं के समस्याओं का समय पर निदान करें। जो जो विषय कहीं न कहीं से युवा लेके आए, हम लोगों ने उसका समाधान किया।
0: लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं है, जिनमें से कई ने जंजीर पहनकर प्रदर्शन किया, ये याद दिलाने के लिए कि बिहार के छात्र सरकारी अव्यवस्था के गुलाम हैं। रोहित सिंह, पटना आज तक।
2: साफ पानी और शुद्ध हवा हर भारतीय का अधिकार है, और ये हक उसे संविधान के अनुच्छेद 21 से मिला हुआ है। फिर भी भारत में प्रदूषण न तो चुनावी मुद्दा है और ना ही सरकारों की प्राथमिकता में कहीं नजर आता है। खराब हवा को साइलेंट किलर कहा जाता है, और हर साल एक आरटीआई के मुताबिक 12 लाख के आसपास ये आंकड़ा है। हमारी ये स्टोरी उस जगह की है जहां की आबो हवा को आमतौर पर इतना साफ माना जाता है कि लोगों को लौटने का मन वहां से नहीं करता, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है।
3: कूड़े का ये पहाड़ आज आपको एक शहर, एक राज्य, उसकी आबो हवा, खूबसूरती को लेकर राय बदलने पर मजबूर कर सकता है। गंदगी, बदबू और बीमारी के इस पहाड़ के ऊपर उड़ती ये चील उस शहर में मंडराती है जिसका सच सुनकर आप दंग रह जाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि कूड़े का ये पहाड़ दिल्ली के गाजीपुर या फिर ओखला की लैंडफिल साइट, तो जवाब सरासर गलत है। क्योंकि ये कूड़े का पहाड़ उस जगह का है जिसे लोग धरती का स्वर्ग कहते हैं। दुनिया भर के लोग इस स्वर्ग की खूबसूरती के कायल
4: है, और पूरी दुनिया में जो सबसे खूबसूरत जगह है कश्मीर को कहा जाता है। नो डाउट कि कश्मीर बहुत खूबसूरत है और डल लेक इसकी खूबसूरती को बढ़ाती है,
5: तो आना चाहिए लोगों को।
4: हाँ बिल्कुल, मैं कहूँगा कि कश्मीर में, अगर आपने कश्मीर नहीं देखा तो आपने दुनिया में कुछ नहीं देखा।

0: कश्मीर की खूबसूरती पर बॉलीवुड का ये गाना आपने जरूर सुना हो, जिसे श्रीनगर आने वाला हर सैलानी मन ही मन एक बार तो जरूर गुनगुनाता है, रील बनाकर पोस्ट करता है।
1: यहाँ का जो एनवायरनमेंट है और जो पॉल्यूशन का लेवल है बहुत कम है, सांस लेने में अच्छा लग रहा है, और ये डल लेक का जो नजारा है बहुत खूबसूरत नजारा है।
0: दिल्ली से आए यूसुफ खान ने जिस डल लेक पर खड़े होकर कश्मीर की आबोहवा की शान में जो कुछ कहा, उससे सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर की दूर कश्मीर की जहरीली हकीकत इस कूड़े के पहाड़ के रूप में देश दुनिया को खबरदार करती है, क्योंकि सरकार और अफसर नहीं चाहते कि श्रीनगर की इस हकीकत से दुनिया रूबरू हो पाए।
2: यहाँ पे मीडिया को आने भी देते नहीं है सर, देखिए यहाँ पे भी रोक रहे हैं आपको, ये यहाँ पे डिजास्टर है, छुपा हुआ डिजास्टर, इसको छुपाना चाहते हैं।
0: कूड़े का ये पहाड़ श्रीनगर का सबसे बड़ा लैंडफिल है, जिसका नाम है अचन लैंडफिल। श्रीनगर के उत्तरी इलाके में आंचर झील के पास 123 एकड़ में फैला ये कूड़े का पहाड़ पर्यावरण और स्वास्थ्य के साथ ही कश्मीर के पर्यटन तक के लिए गंभीर संकट बन रहा है।
3: ये पहाड़ है गार्बेज का, ये पहाड़ है वेस्ट का, जो श्रीनगर के हाउस होल्ड से अलग अलग जगहों से आके यहाँ जमा हो रहा है पिछले 30 साल से, और हालात आप देख सकते हैं। इधर आना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसे ही आप इसके पेरिफेरी यानी कि 1-2 किलोमीटर आसपास पहुंचते हैं, तो जो गंदी बदबू है वो आपका वेलकम करती है। और बहुत लोगों की तरफ से, एक्टिविस्ट की तरफ से बात हुई है कि सरकार क्या कर रही है, सरकार क्यों सोई है, क्योंकि एक इकोलॉजिकल डिजास्टर है। श्रीनगर स्लम बन सकता है अगर आप जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी बात सुने, बहुत दूर वक्त नहीं है। और ओवरऑल जो सीवेज ट्रीटमेंट का जो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, सालों साल से एक बहुत अनसाइंटिफिक तरीका है, जहां से सारा वेस्ट, कोई सेग्रीगेशन नहीं है कि कौन सा बायोडिग्रेडेबल है, कौन सा प्लास्टिक अलग है, सबको यहां डंप किया जाता है।
0: सोचिए श्रीनगर के पास 11 लाख मेट्रिक टन कूड़ा जमा है और रोज इसमें इजाफा होता जा रहा है, लेकिन एनजीटी के सामने श्रीनगर नगर निगम इसे साफ करने को लेकर तारीख पर तारीख वाला खेल खेलता है। पहले उसने इस काम को करने के लिए अगले मार्च तक का वक्त मांगा और अब कहता है कि मार्च 2028 तक ये काम हो पाएगा, हालांकि लोगों को उसमें भी शंका है।
2: सरकार बोलती है हमें 370 दे दीजिए, वो दे दीजिए, स्टेटहुड दे दीजिए,
3: जो असली मुद्दे हैं वो
2: असली मुद्दे कोई बात
3: नहीं। कितना बड़ा इकोलॉजिकल डिजास्टर है, क्योंकि कई थकी कश्मीर से
2: क्या करेगा आपको स्टेटहुड। आप यूटी गवर्नमेंट के पास अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उमर अब्दुल्ला साहब खुद इसमें जो है हमारे यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, ही इज अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मिनिस्टर आल्सो, दे आर नॉट टेकिंग एनी स्टेप्स।
4: श्रीनगर में लोग जहरीली हवा में जीने के लिए मजबूर हैं, पहली नजर में इस पर विश्वास होगा ही नहीं आपको, लेकिन इस कूड़े के पहाड़ ने इस शहर की कड़वी हकीकत से सारे देश को खबरदार किया है। सबसे बड़ी बात यह कि इस कूड़े के पहाड़ को साफ करने में सरकारें करोड़ों रुपए बहा चुकी हैं, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। दावा यह कि कूड़े के पहाड़ की वजह से आसपास गंभीर बीमारियां फैल रही हैं, जिससे लोग मारे जा रहे हैं।
0: उमर अब्दुल्ला सरकार ने 2 महीने पहले अचन लैंडफिल के लिए 361 करोड़ रुपए जारी किए, लेकिन श्रीनगर में इस कूड़े के पहाड़ की वजह से नरक जैसी जिंदगी जी रहे लोगों को न तो सरकार से कुछ उम्मीद है, न नगर निगम से।
5: 35 साल हो गया, बहुत दिक्कत है। अभी बोलता है 165 करोड़ डाला, लेकिन कुछ नहीं हुआ उससे। शाम को खिड़की नहीं खोल सकते हम लोग, सिर्फ मक्खी आता है, मच्छर आता है, और एक बदबू आता है। अभी कोदे है ना, उसका पेड़ बहुत बर्बाद हो गया, उसके अंदर से कीड़े निकलता है।
0: कद्दू में
5: उसके अंदर बैंगन है, उसके अंदर से कीड़े निकलते हैं, टमाटर के अंदर से कीड़े निकलते हैं। कुछ फसल नहीं है यहाँ, धान की फसल देखो क्या हो गया, वो जो वहाँ से वो कीचड़ निकलता है, वो सारा धान बचाता है कीचड़।
3: 350 करोड़ अभी सैंक्शन है, कहाँ जाता है पैसा, क्योंकि हमें भी 30 साल हो गए सुनते इसमें इतना पैसा, ये पैसा कहाँ जाता है
5: वो हमको पता नहीं। वो क्या करते हैं इन पैसों को, बोलता है मशीन लाएगा, मशीन कोई नहीं आया।
0: आमतौर पर लैंडफिल शहरों से दूर बनाए जाते हैं, लेकिन अचल लैंडफिल को न सिर्फ श्रीनगर के करीब बनाया गया, बल्कि नियमों को ताक पर रखकर वेटलैंड की जमीन इसके लिए इस्तेमाल की गई। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जैसे बड़े अस्पताल से भी इसकी दूरी महज 3 किलोमीटर है। अगर बात फंडिंग की करें तो वर्ल्ड बैंक से लेकर केंद्र सरकार तक से इसे साफ करने के लिए पैसा आ चुका है, लेकिन फिर भी इसके पास रहने वालों की जिंदगी में कोई सुधार नहीं आया।
3: रिश्ते आते हैं यहाँ, यहाँ कोई आता है खरीदने?
5: हमारी बेटी है, हमने दो तीन बार ट्राई किया, बोलता है यहाँ बदबू है, बदबू की वजह से रिश्ते भी नहीं आते,
3: रिश्ते भी नहीं आते। और आपकी प्रॉपर्टीज कोई खरीदता है, आता है कोई?
5: कोई नहीं, अभी कोई नहीं खरीदता। अभी जिसने खरीदा वो भी बेचना चाहते हैं, उसको भी खरीदा नहीं मिलता है।
6: बहुत प्रॉब्लम है, हम बच्चा बढ़ते है, बेटी बढ़ता है, वो रिश्ता भी नहीं आता है। वहाँ बहुत बदबू से आई है।
3: आपका एरिया बदनाम है पूरा? कोई
6: पूरा बदनाम है, नहीं यहाँ कोई।
3: तो अब ये जो जहर है, इसका पानी, जो ये टॉक्सिक पानी है, जमीन में घुस गया, आपकी फसल वसल होती
6: है? मछली बाहर है ना, वो भी मर गया। बोलता है ये जितने करोड़ आया था, वो क्या करता है इसका? बहुत गंदगी यहाँ है।
7: क्या इसी की वजह से मेरी बेटी भी गुजर गई, उसको हार्ट की इन्फेक्शन हो गया, हार्ट में 2014 में वजह था यही डब्ल्यू।
0: सोचिए, जिस कूड़े के पहाड़ ने लोगों का सांस लेना तक दूभर कर दिया, एनजीटी की तरफ से पेनल्टी से लेकर अफसरों पर कार्रवाई की गई, वो कूड़े का पहाड़ हटा पाने में अब्दुल्ला सरकार और उसके अफसर नाकाम है।
8: हर गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से ट्राई किया है और सक्सेसिव लेवल्स पे कोशिशें हुई है कि वेस्ट के प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया जाए। आपको ये देखना है कि ये दिस इज नॉट अ लोकलाइज्ड इशू, इट्स अ ग्लोबल प्रॉब्लम। सो ग्लोबल प्रॉब्लम को आहिस्ता आहिस्ता सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने अपने अपने तरीके से टैकल करने की कोशिश की है। कभी उसको मीथेन में कन्वर्ट करने की कोशिश की गई, कभी उसको सैनिटरी लैंडफिल बनाने की कोशिश की गई, वगैरह वगैरह। तो आहिस्ता आहिस्ता जो सक्सेसफुल एफर्ट्स हुए हैं, उसी की वजह से आज वी हैव रीच दिस स्टेज जहां पर ये प्रोजेक्ट सब एस्टेब्लिश हुए हैं।
0: जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अक्सर राज्य का दर्जा वापस देने समेत मांगों की लंबी फहरिस्त गिनाते देखे जाते, लेकिन श्रीनगर की जनता उन्हें कूड़े के पहाड़ को हटाने पर ध्यान लगाने की बात कहते हुए खबरदार करती है। मीर फरीद, श्रीनगर आज तक।
4: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

क्या आप त्वचा की समस्या से परेशान हैं? क्या आपको निरंतर त्वचा की दिक्कतें होती रहती हैं? तमाम उपाय के बावजूद समाधान नहीं मिल रहा है? क्या है ज्योतिष में त्वचा की समस्या के कारण और क्या है निवारण? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: राहुल गांधी के मनुस्मृति बयान के जवाब में आज बीजेपी में जारी किया हिजाब वाला वीडियो, नेता प्रतिपक्ष पर साधा निशाना, पाखंड करने का आरोप लगाया। पटना में एसएससी परीक्षा में देरी और शिक्षक भर्ती नियम के खिलाफ प्रदर्शन, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के छात्रों के पुलिस के साथ झड़प में 2 जवान घायल, किसानों ने टाउनशिप का मुद्दा उठाया। योगी सरकार के ताबड़तोड़ फैसले, 25 लाख युवाओं को मुफ्त टैबलेट देने की तैयारी, 3400 युवाओं को दी नियुक्ति पत्र, 60 से ज्यादा उम्र की महिलाओं को मुफ्त बस सेवा। दिल्ली में आज महिलाओं को मिलेगी 2500 रुपए की पहली किश्त, लक्ष्मी योजना के तहत सीएम रेखा गुप्ता के जारी करेंगी राशि, विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने वादा किया था। और भारत चीन सीमा मुद्दे पर एनएसए अजीत डोवाल ने बीजिंग में की बैठक, सीमा पर शांति स्थिरता बनाए रखने पर जोर, 3 निर्धारित मांगों से व्यापार जारी रखने पर भी चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। सुबह के 6 बज चुके हैं, देश और दुनिया की तमाम खबरें लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। अब से कुछ ही महीनों में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा चुनाव होने वाला, विधानसभा चुनाव, और यूपी का विधानसभा चुनाव, उसको आप क्वार्टर सेमीफाइनल जो कहना कह लीजिए, तो 2027 में ये चुनाव होने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ के लिए चुनावी डगर क्या इतनी आसान है? जवाब है शायद नहीं, क्योंकि उनकी राह में फूल हैं तो कांटे भी हैं। 10 साल की सत्ता विरोधी लहर से निपटना है, रोजगार शिक्षा के मुद्दे पर, युवाओं की नाराजगी के मुद्दे पर भी उन्हें समस्या का समाधान खोजना है, वक्त कम बचा है। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ का पूरा फोकस जेनरेशन जी यानी युवा पीढ़ी है। और अब सीएम योगी अगले 6 महीने में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का ऐलान कर रहे हैं। नौकरियों को लेकर समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार पर भी योगी प्रहार कर रहे हैं।
1: सीएम योगी की योजना यूपी में जेन जी को जोड़ना,
2: अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
1: योगी का ऐलान, 6 महीने में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी, जेन जी को रोजगार देगी योगी सरकार, कैबिनेट में 19 प्रस्ताव।
2: नोट करिए, अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख नौजवानों को फिर सरकारी नियुक्ति पत्र अलग अलग स्टेज में हर सप्ताह उपलब्ध करवाने जा रहे हैं।
1: यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव जेन जी वाला गेम प्लान, जेन जी साथ आएगा तो चुनाव जितवाएगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की युवाओं के साथ ये सेल्फी बता रही है कि कैसे वो जेन जी के साथ कनेक्ट होने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। अब लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नियुक्ति वितरण कार्यक्रम में पहुंचते हैं और ऐलान करते हैं कि वो अगले 6 महीने में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे।
2: मैं आज जब यहाँ पे 3400 से अधिक कृषि तकनीकी सहायक और मंडी सचिवों को नियुक्ति पत्र वितरण के इस कार्यक्रम के साथ जोड़ रहा हूं, मैं प्रदेश भर के युवाओं को इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूं कि अगले 6 महीने के अंदर, नोट करिए, अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख नौजवानों को फिर सरकारी नियुक्ति पत्र अलग अलग स्टेज में हर सप्ताह उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। 1 लाख सरकारी नियुक्ति पत्र हम देने जा रहे हैं। अनुमान करिए, 1 लाख यूपी के अंदर कभी ये कल्पना होती थी? यहां हम 6 महीने के अंदर ही 1 लाख नौजवानों को सरकारी नियुक्ति पत्र दे दें, सारी परीक्षाएं पूर्ण हो गई।
1: आपको बता दें कि अगले 6 महीने में जिन 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का ऐलान योगी कर रहे हैं, इनमें यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी SSSC, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट और लोअर PCS जैसी भर्तियां शामिल हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के तहत 32,689 कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा का रिजल्ट 31 जुलाई को जारी हुआ था। इसमें 76,000 उम्मीदवार पास हुए हैं। इसके बाद 17 अगस्त से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अनुसार कांस्टेबल भर्ती का फिजिकल टेस्ट सितंबर में आयोजित किया जाएगा, जबकि यूपी SSSC एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप सी भर्ती प्रक्रिया भी चल रही है। इसकी आंसर की 11 अगस्त को जारी हुई थी। इसके तहत कुल 2759 पदों पर भर्ती होगी। इसकी लिखित परीक्षा का रिजल्ट जल्द जारी होने की उम्मीद है। और यूपी ट्रिपल एससी की लोअर पीसीएस मुख्य परीक्षा 2026 का आयोजन 23 अगस्त को हुआ था। इसकी प्रोविजनल आंसर की अगले ही दिन 24 अगस्त को जारी हो गई, लेकिन रिजल्ट के लिए अक्टूबर नवंबर तक का इंतजार करना पड़ सकता है। यूपी लोअर पीसीएस भर्ती 2026 के तहत कुल 2285 पदों पर भर्ती होगी। सीएम योगी ने कृषि विभाग के 3446 टेक्निकल असिस्टेंट और 126 मंडी सचिवों की नौकरी के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में ये घोषणा की। इतना ही नहीं, इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को भी निशाने पर लिया
2: और उस समय की सरकारों में बैठे हुए सरकारी तंत्र में भ्रष्ट।
1: सीएम योगी ने सीधे तौर पर 2017 से पहले नौकरियों को लेकर चाचा भतीजे को टारगेट किया।
2: हमने पहले दिन से तय कर रखा है कि जो 17 के पहले की परिपाटी थी कि नियुक्ति का विज्ञापन निकलता था, चाचा भतीजे की जोड़ी और महाभारत का पूरा खानदान फिर वसूली के लिए प्रदेश भर में निकल पड़ता था, नौजवान भटकता रहता था, परिणाम नहीं आता था और अंततः माननीय न्यायालय को कोर्ट में स्टे लगाना पड़ता था।
1: योगी एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं। एक तरफ तो जेन जी वोट बैंक को साध रहे हैं, दूसरी तरफ चुनावों के मद्देनजर समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं।
3: 2017 में 2026 के बीच में ये 1,00,000 नौकरियां क्यों नहीं क्रिएट हुई थी? आज जब पूरे देश में युवाओं का, छात्रों का भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक गहरा आक्रोश, असंतोष व्याप्त है सड़कों पर, 1,00,000 नौकरी का ऐलान कर रहे हो, 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष वाला क्या हुआ? मुख्यमंत्री जी, पूरे उत्तर प्रदेश में जो पक्की नौकरियां थी, जो बैकलॉग्स हैं, आज तक नहीं भरे।
4: जब वो नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, बच्चे उनसे पूछ रहे हैं कि नौकरियां कहाँ हैं, तो उन्हें 10 साल पहले का चाचा भतीजा याद आ रहा है, साबू याद आ रहा है, विक्रम बेताल याद आ रहा है। ये विक्रम बेताल, चाचा भतीजा याद करने से क्या नौकरी मिल जाएगी बच्चों को? योगी आदित्यनाथ जी, 69,000 शिक्षक सुप्रीम कोर्ट में आपने लटका रखे, 68,500 आपने कोर्ट में लटका रखे, जिनको आपने नौकरियां दे चुके हैं, पुरानी सरकारें दे चुकी, उनको भी आपने लटका रखा।
5: 4,000 करोड़ हम सरकारी खजाना विज्ञापन देने में खर्च सकते हैं, परंतु जो 13,00,000 जो सरकारी पद खाली पड़े हैं, वो हमारे युवा साथियों को नौकरी देने का काम नहीं कर रहे।
0: जेन जी को योगी सरकार एक और बड़ा तोहफा देने जा रही है। 25,00,000 टैबलेट मुफ्त बांटने की तैयारी है। पढ़ाई से रोजगार तक डिजिटल मदद 2026-27 में योजना के लिए 2300 करोड़ से ज्यादा रुपए के बजट के प्रावधान रखे गए हैं। अब योगी सरकार इस जनरेशन जी को लुभाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। उधर अखिलेश यादव जेन जी और जेन अल्फा के आक्रोश का सवाल उठाकर योगी सरकार को घेर रहे हैं।
1: जब जेन जी अपनी मांगे मनवाने के लिए भर्ती परीक्षाओं में धांधली, पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था, लटकी हुई भर्तियां और रोजगार के खिलाफ आंदोलन करने पर उतारू है और सरकारों से लड़ने भिड़ने के लिए भी तैयार है, उस वक्त योगी जेन जी को समझाने, लुभाने और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सरकार में भर्तियों को लेकर न तो भेदभाव हुआ है और न ही कोई सवाल खड़ा हुआ है।
2: जब हम योग्यतम अभ्यर्थियों का चयन बिना भेदभाव के करते हैं तो उसका लाभ पूरे प्रदेश को मिलता है, उनकी प्रतिभा और उनकी ऊर्जा का लाभ पूरा प्रदेश लेता हुआ दिखाई देता है। और यही तो पिछले 9-9.5 वर्ष के अंदर डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धियों में से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस दौरान हमारी सरकार ने 9,30,000 से अधिक उत्तर प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाने में सफलता प्राप्त की है और एक भी नियुक्ति पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता।
1: सिर्फ जेन जी ही नहीं, अब जेन अल्फा भी यूपी में स्कूलों की समस्याओं के खिलाफ प्रदर्शन करने लगा है। जब यूपी में जिले जिले जनरेशन अल्फा यानी स्कूली बच्चे अपनी मांगों और शिकायतों को लेकर सड़क पर उतरने लगे तो प्रदेश में अव्यवस्था और नाकामी के सवाल बड़े होते दिखने लगे। हालांकि सीएम योगी ने जेन अल्फा की समस्याओं का तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए हैं। योगी सरकार ने प्राइमरी से लेकर आठवीं तक के स्कूलों के पुनर्निर्माण और मरम्मत के लिए 604 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया है। बेसिक शिक्षा विभाग ने 302 करोड़ रुपयों की पहली किस्त जारी भी कर दी।
6: और बीजेपी वाले घबराए हुए हैं, जब से बच्चों ने लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाना शुरू किया है बीजेपी के लोग घबरा गए हैं, घबराए हुए हैं। जो सरकार बच्चों से घबरा जाए और 10 साल में उनके पास कुछ काम करने का ना हो, रिकॉर्ड ना हो उनको बताने का, ये सरकार जाने वाली है। एक तो नौजवान दुखी है, किसान दुखी है, कहीं डीएपी खाद मिली हो बता दो आप। और खाद और डीएपी के लिए भी आपको पोर्टल का इस्तेमाल करना पड़ा, थोड़ा मिस हो गया तो गायब होगा, नाम ही गायब हो गया। ये नए जमाने के लोग हैं, बताओ किसान को खाद चाहिए तो खाद नहीं दे पा रहे, और जो बटाई पे ले खेती उन्हें खाद कहाँ से मिल रही है।
1: जिस तरह से जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में नीट पेपर लीक के खिलाफ हुए आंदोलन में समाजवादी पार्टी जेन जी के साथ खड़ी हुई नजर आई, और कांग्रेस ने सीजेपी के संसद मार्च के दौरान हुई लाठीचार्ज को मुद्दा बनाकर सरकार को घेरा, तो अब बीजेपी और योगी के लिए जेन जी को साधना एक चैलेंज बन गया है। ऐसे में सीएम योगी जेन जी को सरकारी नौकरियों का तोहफा दिखा रहे हैं। ऐसा क्यों, इसे आप उत्तर प्रदेश में युवा वोटरों के आंकड़ों से समझिए। यूपी में लगभग 13 करोड़ वोटर हैं। अगर इनमें से करीब 2.07 करोड़ यानी 15% जेन जी वोटर हैं, तो उनके वोटिंग के तरीके का असर कई विधानसभा सीटों के नतीजों पर पड़ सकता है। पिछले चुनावों के नतीजों के अंतर के आधार पर किए गए एक आकलन से पता चलता है कि युवा वोटरों का एक मुश्त झुकाव 80 से 120 विधानसभा सीटों के नतीजों को प्रभावित कर सकता है। मतलब 2027 में सत्ता की चाबी युवा वोटरों के हाथ में है। सत्ता के सिंहासन पर लगा बहुमत का ताला युवा वोटरों की चाबी से खुलेगा। ऐसे में शिक्षा और नौकरी के बुनियादी अधिकार की मांगों पर राजनीति में एक हलचल तो नजर आने लगी है। आज तक ब्यूरो।
0: अब खबर बिहार से। पटना में 15 मांगों के साथ छात्रों का एक गुट मुख्यमंत्री आवास घेरने निकलता है। रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग से लेकर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, फोर्स की तैनाती की गई, लेकिन छात्र जेपी गोलंबर पर लगी बैरिकेडिंग को तोड़कर डाक बंगला पहुंच गए। पुलिस ने तब वहां उन पर लाठियां बरसाई।
7: ये बैरिकेडिंग टूटा, ये बैरिकेडिंग टूटा, और देखिए ये छात्र जो है अब पुलिस को जो है लगभग रोनते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए बैरिकेडिंग टूट चुका है।
1: बीपीएससी टीआरई 4 से पीटी मेंस नेगेटिव मार्किंग हटाने और 100% डोमिसाइल की मांग को लेकर पटना के गर्दरी बाग में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया और अपनी मांगों को लेकर पटना में मुख्यमंत्री आवास को घेरने की कोशिश की, लेकिन इन प्रदर्शनकारी छात्रों को रोकने में पुलिस के पसीने छूट गए।
7: कैसे खसीटा जा रहा है इन अभ्यर्थियों को, देखिए इन अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया जा रहा है, और जो अभ्यर्थी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं सबको हिरासत में लिया जा रहा है।
1: छात्रों को मुख्यमंत्री आवास पर जाने से रोकने के लिए जेपी गोलंबर पर फोर्स की तैनाती की गई, बंकर की गाड़ी भी बुलाई गई, फिर भी पुलिस छात्रों को डाक बंगला पर पहुंचने से नहीं रोक पाई, जबकि जेपी गोलंबर पर बाकायदा बैरिकेडिंग लगाई गई थी जिसे छात्रों ने जैसे खेल बना दिया।
7: बनी हुई यहाँ देखिए बैरिकेडिंग को खींच के ले जा रहे हैं। ये देखिए अब जो जंतर मंतर का हम लोगों ने देखा था कि बैरिकेडिंग, या फिर पटना में भी हम लोगों ने देखा था कि बैरिकेडिंग को देखिए किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर ट्राईसाइकिल बना दिया है और इस पर जो कि इसको किस तरीके से ये पुलिस की बैरिकेडिंग के साथ इन लोग जो हरकत कर रहे हैं आप ये देखिए।
1: सुबह 11 बजे के आसपास सीएम हाउस का घेराव करने के लिए छात्र गांधी मैदान के गेट नंबर 10 पर जुटने लगे। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए सीआरपीएफ ने भी अपनी तैनाती कर रखी थी। 12:30 के आसपास सीएम हाउस घेरने निकले छात्र डाक बंगला पहुंच गए, जिसके चौराहे पर लोहे की शील्ड लगाकर बैरिकेडिंग की गई थी। बावजूद इसके छात्र लगातार यहां से आगे बढ़ने की कोशिश करते दिखे।
7: 70वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की लगातार मांग हो रही है, और प्रशासन और ने भी आज देखिए जगह जगह पर बैरिकेडिंग लगाया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी छात्र इधर उधर से बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश करते हुए जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए किस तरीके से पुलिस, देखिए छात्र यहाँ का भी बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए अब आगे बढ़ रहे हैं।
1: दो बैरिकेडिंग तोड़कर छात्र आगे बढ़े, तो डाक बंगला पर उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन छात्र डटे रहे।
7: कलंकारी छात्रों को जो है वो लगातार यहाँ पर तितर बितर करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। हालांकि बहुत सारे जो छात्र हैं जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे उनको यहाँ हिरासत में भी जो है वो लिया जा रहा है। अब वाटर कैनन का पानी समाप्त हुआ, उसके बावजूद भी यहाँ पर छात्र जो है वो हिलने को यहाँ से तैयार नहीं है।
1: छात्र जब इस पर भी नहीं माने तो पुलिस ने छात्रों को तितर बितर करने के लिए बल प्रयोग किया, जिसकी शिकायत छात्र करते सुने गए।
8: हम शांतिपूर्ण तरीके से थे, जब मैं यहाँ पहुँचा तो मैंने कहा कि साहब मैं 9 दिन से भूखा हूँ, ये भारत का संविधान है, मुझे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का आजादी देता है।
1: पटना में छात्रों का ये गुस्सा किसी एक पद की परीक्षा को लेकर नहीं है। छात्र चाहते हैं कि TRE-4 शिक्षक भर्ती परीक्षा एक ही ली जाए, BSSC से संविदा कर्मियों को मिलने वाला वेटेज खत्म हो, BSSC, CGL, BSO और AEDO परीक्षाओं की तारीख जारी की जाए, डोमिसाइल नीति लागू हो, स्थानीय को रोजगार मिले, सरकारी भर्तियों में उम्र की सीमा में छूट दी जाए और दरोगा, सिपाही, BSSC और BPSC समेत सभी भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता हो।
9: हमारी मांग है कि सरकार 15 सूत्री हमारी मांग है, BPSC 17वीं सिविल सेवा परीक्षा, इसमें लगातार धांधली की और व्यापक तौर पर गड़बड़ी की मांग अभ्यर्थी कर रहे हैं, हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है।
1: छात्रों का कहना है कि 13 तारीख से वो धरना दे रहे हैं, फिर भी सरकार ने न तो उन्हें बातचीत के लिए बुलाया और न ही उनकी खोज खबर ली, इसलिए उन्होंने आखिर में मुख्यमंत्री आवास घेरने का फैसला किया, लेकिन यहाँ भी उन्हें रोक दिया गया, जबकि वो सिर्फ मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुँचाना चाहते थे।
10: जब भी हम आंदोलन की घोषणा करते हैं तो या तो इन लोग लेटर निकाल करके या बयान दे करके छात्रों को गुमराह करते हैं। हम मांग कर रहे हैं कि सर CM से मुलाकात करवाई।
1: पटना में छात्रों ने ऐसी ही दलील हर उस अफसर को दी जिसने भी उन्हें आगे बढ़ने से रोका।
11: देखो सर, तुम्हारे परिवार धारा गाड़ी से कोई घोड़ा से कुछ
10: देखिए,
11: मालूम है, मालूम है, हम लोग
10: देखिए ना क्या हुआ है,
11: हमने
10: क्या बोला है, बार बार पेपर लीक हो रहा है, BPSC में भ्रष्टाचार है।
1: पटना में प्रदर्शन करने वाले ये छात्र BPSC के एग्जाम कंट्रोलर राजेश कुमार सिंह के बयान से भी आहत दिखे, जिन्होंने गर्दनी बाग में छात्रों के प्रदर्शन को लेकर शर्मनाक बात कही थी।
12: सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपको लगता है कि आपके आरोपों में कुछ तथ्य है तो कोर्ट क्यों नहीं चले जाते हैं? एक कहावत सुने होंगे, इसको काट दीजिएगा, हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार, आयोग का ही काम है।
1: हालांकि सम्राट सरकार ने 4 घंटे के अंदर ही एक्शन लेते हुए राजेश कुमार सिंह को सस्पेंड कर दिया, उन्होंने माफी भी मांग ली।
12: मेरे द्वारा एक लोकोक्ति बताई गई थी जिसको कि सोशल मीडिया पर कुछ तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है अन्य संदर्भ में, मैं कहना चाहता हूं कि मेरा किसी व्यक्ति विशेष या समूह को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, अगर किसी की भावनाएं इससे आहत हुई तो मैं खेल गया।
1: लेकिन पटना में हुए प्रदर्शन में इसे लेकर गुस्सा साफ तौर पर देखने को मिला। छात्र इससे जुड़ा पोस्टर हाथों में लेकर प्रदर्शन करते दिखे, कई छात्र इस बयान के बाद भड़के भी दिखे।
10: हम लोग बिहार SSC के स्टूडेंट हैं, तो बिहार SSC से पिछले 3 साल पहले नोटिफिकेशन जारी की है, अभी तक एग्जाम नहीं ली है, एग्जाम का कोई अता पता भी नहीं है, BSO का भी 1 साल से ज्यादा हो गया, CGL का भी 1 साल से ज्यादा हो गया, बिहार CGL का, ऊपर से संविदा वेटेज लगाई है, किसी प्रकार की कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं, तो बताइए हम लोग क्या गलत डिमांड कर रहे हैं?
13: संविदा वाले को वेटेज मिलने का आंसर देखने सेशन नहीं हो पा रहा है सर, 196 वाले सिलेक्टेड है और जो 306 लेके आ रहे हैं वो सिलेक्टेड नहीं हो पा रहे हैं सर, ये क्या कहाँ करने आए हैं?
1: बिहार सरकार प्रदर्शन कर रहे छात्रों से उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द तरीके से समाधान करने का भरोसा दे रही है।
14: देखिए, जिन जिन मुद्दों को लेकर के छात्र धरने पर बैठे थे उनके सभी मुद्दे रिजॉल्व कर दिए गए हैं, और ऐसा नहीं है कि छात्र आंदोलन किए इसलिए हुआ, सरकार की नियति ही है कि हम अपने युवाओं के समस्याओं का समय पर निदान करें, जो जो विषय कहीं न कहीं से युवा लेके आए हम लोगों ने उसका समाधान किया।
15: लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं है, जिनमें से कई ने जंजीर पहनकर प्रदर्शन किया, ये याद दिलाने के लिए कि बिहार के छात्र सरकारी अव्यवस्था के गुलाम हैं। रोहित सिंह, पटना आज तक।
0: कहते हैं अगर आपने गुनाह किया है तो कानून बख्शता नहीं है, अपने हर गुनाह की सजा यहीं भुगतनी पड़ती है, लेकिन शायद राम रहीम पर ये लागू नहीं होती। तो बात करेंगे राम रहीम की, जो एक बार फिर पैरोल पर बाहर आ चुका है। तो सवाल ये उठ रहा है, हत्या बलात्कार जैसे संगीन मामलों में दोषी राम रहीम पर इतनी मेहरबानी सरकार क्यों करती है, इसे लेकर जमकर सियासत भी हो रही है।

0: लग्जरी गाड़ियों के इस काफिले में बलात्कार जैसे संगीन मामलों का दोषी राम रहीम है, जो एक बार फिर 21 दिन की पेरोल पर बाहर आया है। अपनी करीबी हनीप्रीत के साथ सिरसा पहुंचा, जहां से पेरोल के दौरान आश्रम में रहेगा। राम रहीम पिछले 7 सालों से 17वीं बार जेल से बाहर आया है।
1: ये राजनीतिक पेरोल जड़ी है दिखती जा रही है, जबकि बड़े बड़े चार्जेज है, जून शोषण के चार्जेज है, और एक अध्यात्म के पद के बैठे आदमी के गुरु के उत्ते चार्ज लगना, उन्होंने तो बिल्कुल पेरोल नहीं, क्योंकि लोगों ने उन्होंने बहुत बड़ा विश्वास किया होंगे। मेरे लिहाज में तो इन्हें केसों की भी तो बिल्कुल पेरोल नहीं होनी चाहिए, और मुझे लगता है उच्च न्यायालय में अगे आना चाहिए।
2: कई केस है हीनियस क्राइम, हीनियस क्राइम आप तो ज्यादा जानते हैं, हीनियस क्राइम में उसको सजा हुई है और उसको बार बार पेरोल दी जा रही है। देखिए वो कैसे दी जा रही है, क्यों दी जा रही है, ये एक अलग लंबा विषय है।
0: उधर कांग्रेस राम रहीम के बाहर आने पर बीजेपी पर निशाना साध रही है। बीजेपी महिलाओं के आरक्षण और महिला सशक्तिकरण के नाम पर भले ही दिखावटी आंसू बहाती रहे, ये सब टीवी सीरियलों जैसा सस्ता ड्रामा है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये पार्टी बलात्कारियों का साथ देने वाली और महिलाओं के खिलाफ है। डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह 2017 में अपनी गिरफ्तारी के बाद से अब तक 450 से ज्यादा दिन जेल से बाहर बिता चुका है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटियां सुरक्षित रहें, तो इस देश को बीजेपी से बुक कराएं। 2 साधुओं के साथ दुष्कर्म और हत्या जैसे संगीन मामले में राम रहीम को 20 साल की सजा हुई है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतने संगीन आरोपों के बीच राम रहीम पर इतनी मेहरबानी कैसे, क्योंकि सजायाफ्ता कई कैदियों को रियायत देने की मांग लगातार पंजाब में हो रही है।
3: मैं समझता कि ये दोहरा मापदंड आ, जेड़े बंदियां नू बलात्कार अते होर वड्डे वड्डे क्राइम दे लई जेल होवे और जिदी जदो गिरफ्तारी होई होवे उदो बहुत ज्यादा हू हल्ला होया होवे, कई जाना गईयां, उन्हां नू ते वार वार
0: पेरोल पर बाहर आने के बाद इस बार भी उसके सिरसा आश्रम पहुंचने के दौरान बड़ी संख्या में समर्थकों के जुटने की संभावना है। ऐसे में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। चंडीगढ़ से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो।
4: हमारे आपके घर के आसपास आजकल बहुत सारे ऐसे केस दिख रहे होंगे, लोगों को बुखार है, अलग अलग सिम्टम्स हैं। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों ने टेंशन बढ़ा दी है। दिल्ली में बढ़ते H1N1 के मामलों को लेकर दिल्ली सरकार स्कूलों को लेकर अलर्ट जारी कर रही है। इससे जुड़ी गाइडलाइन भी सरकार की ओर से दे दी गई है। ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरतने की बात कही गई है। ये रिपोर्ट बेहद ध्यान से देखें।
5: राजधानी दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में स्वाइन फ्लू के मामलों में इजाफा हुआ तो सरकार की चिंता भी बढ़ गई। बात अगर राजधानी दिल्ली की करें तो बीते कुछ दिनों में यहां H1N1 इन्फ्लुएंजा के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब तक दिल्ली में H1N1 के 2000 मामले सामने आए हैं और स्थिति चिंताजनक है, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने अहम बैठक भी बुलाई। यूं तो मौसम में बदलाव के साथ बुखार, खांसी, गले में खराश, सिर दर्द और शरीर में दर्द जैसी समस्याएं होना आम है। अक्सर लोग इन लक्षणों को सामान्य वायरल संक्रमण या मौसम का असर मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। हालांकि अगर ये लक्षण लगातार बने रहे, बढ़ने लगे या स्वास्थ्य में सुधार न हो तो सावधानी बरतना जरूरी है।
6: H1N1 जो हम पहले एक पैंडेमिक हो चुका है 2009 में, जिसको हम स्वाइन फ्लू भी कहते हैं, हर साल मानसून के मंथ में बरसात के महीने में उनके केसेस बढ़ते हैं। इस दफा ये बात सही है कि नॉर्मल से जो हम देखते हैं केसेस रिलेटिवली ज्यादा हुए हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है क्योंकि मोस्ट केसेस आर हैविंग माइल्ड फीवर, बॉडी एक्स, सोर थ्रोट, खांसी और कुछ देर तक बुखार रहता है, फिर ठीक हो जाता है। बॉडी एक्स और खांसी कभी कभी कुछ हफ्ते भी रह सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ पेशेंट्स जो हाई रिस्क ग्रुप में हैं, एल्डरली पेशेंट्स हैं, सम ऑफ देम डू गेट एडमिटेड, बट बाय एंड लार्ज ये जो है माइल्ड इलनेस है जो सेल्फ लिमिटिंग है। इसलिए आई थिंक पैनिक इशू नहीं की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वी आर सीइंग मोर केसेज देन वॉट वी यूजली सी ड्यूरिंग द मानसून मंथ्स।
5: कोलकाता और बेंगलुरु जैसे शहरों में भी हाल के दिनों में मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बढ़ते स्वाइन फ्लू मामलों के मद्देनजर दिल्ली और देश में स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक कर चुके हैं। साथ ही कई राज्यों में भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं। आज तक ब्यूरो।
4: एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए आज तक।
7: क्या आप त्वचा की समस्या से परेशान हैं? क्या आपको निरंतर त्वचा की दिक्कतें होती रहती हैं? तमाम उपाय के बावजूद समाधान नहीं मिल रहा है? क्या है ज्योतिष में त्वचा की समस्या के कारण और क्या है निवारण? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: राहुल गांधी के मनुस्मृति पर बयान के जवाब में बीजेपी ने जारी किया हिजाब वाला वीडियो, नेता प्रतिपक्ष पर साधा निशाना, पाखंड करने का आरोप लगाया। पटना में एसएससी परीक्षा में देरी और शिक्षक भर्ती नियम के खिलाफ प्रदर्शन, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के छात्रों के पुलिस से झड़प में 2 जवान घायल। योगी सरकार के ताबड़तोड़ फैसले, 25 लाख युवाओं को मुफ्त टैबलेट देने की तैयारी, 3400 युवाओं को दी नियुक्ति पत्र, 60 से ज्यादा उम्र की महिलाओं को मुफ्त बस सेवा का ऐलान। दिल्ली में आज महिलाओं को मिलेगी 2500 रुपए की पहली किश्त, लक्ष्मी योजना के तहत सीएम रेखा गुप्ता जारी करेंगे राशि, विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वादा। भारत चीन सीमा मुद्दे पर एनएसए अजीत डोभाल ने बीजिंग में की बैठक, सीमा पार शांति स्थिरता बनाए रखने पर जोर, 3 निर्धारित मार्गों से व्यापार जारी रखने पर भी चर्चा। हमारे आपके घर के आसपास आजकल बहुत सारे ऐसे केस दिख रहे होंगे, लोगों को बुखार है, अलग अलग सिम्टम्स हैं। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों ने टेंशन बढ़ा दी है। दिल्ली में बढ़ते H1N1 के मामलों को लेकर दिल्ली सरकार स्कूलों को लेकर अलर्ट जारी कर रही है। इससे जुड़ी गाइडलाइन भी सरकार की ओर से दे दी गई है, ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरतने की बात कही गई है। ये रिपोर्ट बेहद ध्यान से देखें।
1: राजधानी दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में स्वाइन फ्लू के मामलों में इजाफा हुआ तो सरकार की चिंता भी बढ़ गई। बात अगर राजधानी दिल्ली की करें तो बीते कुछ दिनों में यहां H1N1 इन्फ्लुएंजा के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब तक दिल्ली में H1N1 के 2000 मामले सामने आए हैं और स्थिति चिंताजनक है, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने अहम बैठक भी बुलाई। यूं तो मौसम में बदलाव के साथ बुखार, खांसी, गले में खराश, सिर दर्द और शरीर में दर्द जैसी समस्याएं होना आम है। अक्सर लोग इन लक्षणों को सामान्य वायरल संक्रमण या मौसम का असर मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। हालांकि अगर ये लक्षण लगातार बने रहे, बढ़ने लगे या स्वास्थ्य में सुधार न हो तो सावधानी बरतना जरूरी है।
2: H1N1 जो हम पहले एक पैंडेमिक हो चुका है 2009 में, जिसको हम स्वाइन फ्लू भी कहते हैं, हर साल मानसून के मंथ में, बरसात के महीने में उनके केसेस बढ़ते हैं। इस दफा ये बात सही है कि नॉर्मल से जो हम देखते हैं केसेस रिलेटिवली ज्यादा हुए हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है क्योंकि मोस्ट केसेस आर हैविंग माइल्ड फीवर, बॉडी एक्स, सोर थ्रोट, खांसी और कुछ देर तक बुखार रहता है, फिर ठीक हो जाता है। बॉडी एक्स और खांसी कभी कभी कुछ हफ्ते भी रह सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ पेशेंट्स जो हाई रिस्क ग्रुप में हैं, एल्डरली पेशेंट्स हैं, सम ऑफ देम डू गेट एडमिटेड, बट बाय एंड लार्ज ये जो है माइल्ड इलनेस है जो सेल्फ लिमिटिंग है। इसलिए आई थिंक पैनिक इशू नहीं की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वी आर सीइंग मोर केसेज देन वॉट वी यूजली सी ड्यूरिंग द मानसून मंथ्स।
1: कोलकाता और बेंगलुरु जैसे शहरों में भी हाल के दिनों में मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बढ़ते स्वाइन फ्लू मामलों के मद्देनजर दिल्ली और देश में स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक कर चुके हैं। साथ ही कई राज्यों में भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं। आज तक ब्यूरो।
0: कश्मीर हम जाने के सोचते हैं क्यों, वादियों की हवा है, ठंडी हवा है, साफ हवा में सांस लेंगे, लेकिन श्रीनगर के लोगों को शायद यह हवा रास नहीं आ रही, और इसकी वजह है कि श्रीनगर में लोग जहरीली हवा में जीने को मजबूर हैं। पहली नजर में इस पर आपको विश्वास होगा ही नहीं, लेकिन श्रीनगर में एक कूड़े का पहाड़ खड़ा हो गया है जिसने इस शहर की कड़की हकीकत को सारे देश के सामने खबरदार किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कूड़े के पहाड़ को साफ करने में सरकारें करोड़ों रुपए बहा चुके हैं, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। अब दावा है कि इस कूड़े के पहाड़ की वजह से आसपास गंभीर बीमारियां फैल रही हैं जिससे लोग मारे जा रहे हैं।
3: उमर अब्दुल्ला सरकार ने 2 महीने पहले अचल लैंडफिल के लिए 361 करोड़ रुपए जारी किए, लेकिन श्रीनगर में इस कूड़े के पहाड़ की वजह से नरक जैसी जिंदगी जी रहे लोगों को न तो सरकार से कुछ उम्मीद नगर निगम से।
4: 35 साल हो गया, बहुत दिक्कत है। अभी बोलता है 165 करोड़ डाला, लेकिन कुछ नहीं हुआ उससे। शाम को खिड़की नहीं खोल सकते हम लोग, सिर्फ मक्खी आता है, मच्छर आता है और एक बदबू आता है। अभी कोदे है ना, उसका पेड़ बहुत बर्बाद हो गया, उसके अंदर से कीड़े निकलता है।
5: कोदू में
4: उसके अंदर बैंगन है, उसके अंदर से कीड़े निकलते हैं, टमाटर के अंदर से कीड़े निकलते हैं। कुछ फसल नहीं है यहाँ, धान की फसल देखो क्या हो गया। वो जो वहाँ से वो कीचड़ निकलता है वो सारा धान बह जाता है कीचड़।
5: 350 करोड़ अभी सैंक्शन है, कहाँ जाता है पैसा? क्योंकि हमें भी 30 साल हो गए सुनते इसमें इतना पैसा, ये पैसा कहाँ जाता है
4: वो हमको पता नहीं। वो क्या करते हैं इन पैसों को, बोलता है मशीन लाएगा, मशीन कोई नहीं आया।
3: आमतौर पर लैंडफिल शहरों से दूर बनाए जाते हैं, लेकिन अचल लैंडफिल को न सिर्फ श्रीनगर के करीब बनाया गया बल्कि नियमों को ताक पर रखकर वेटलैंड की जमीन इसके लिए इस्तेमाल की गई। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जैसे बड़े अस्पताल से भी इसकी दूरी महज 3 किलोमीटर है। अगर बात फंडिंग की करें तो वर्ल्ड बैंक से लेकर केंद्र सरकार तक से इसे साफ करने के लिए पैसा आ चुका है, लेकिन फिर भी इसके पास रहने वालों की जिंदगी में कोई सुधार नहीं आया।
5: रिश्ते आते हैं यहाँ, यहाँ कोई आता है खरीदने?
4: हमारी बेटी है, हमने 2-3 बार ट्राई किया, बोलता है यहाँ बदबू है, बदबू की वजह से रिश्ते भी नहीं आते।
5: रिश्ते भी नहीं आते। और आपकी प्रॉपर्टीज कोई खरीदता है, आता है कोई?
4: कोई नहीं, अभी कोई नहीं खरीदता। अभी जिसने खरीदा वो भी बेचना चाहते हैं, उसको भी खरीदा नहीं मिलता है।
6: बहुत प्रॉब्लम है, हम बच्चा बढ़ते हैं, बेटी बढ़ता है, वो रिश्ता भी नहीं आता है। बहुत बदबू से आई,
5: आपका एरिया बदनाम है पूरा, कोई
6: पूरा बदनाम यहाँ नहीं यहाँ।
5: तो अब ये जो जहर है इसका पानी, जो ये टॉक्सिक पानी है जमीन में घुस गया, आपकी फसल वसल होगी?
6: मछली बाहर है ना, वो भी मर गया। बोलता है ये जितने करोड़ राय था वो क्या करता है इसका, बहुत गंदगी यहाँ है।
7: क्या इसी की वजह से मेरी बेटी भी गुजर गई, हार्ट की इन्फेक्शन हो गया हार्ट में 2014 में, वजह था यही डब्ल्यू।
3: सोचिए जिस कूड़े के पहाड़ ने लोगों का सांस लेना तक दूभर कर दिया। एनजीटी की तरफ से पेनल्टी से लेकर अफसरों पर कार्रवाई की गई, वो कूड़े का पहाड़ हटा पाने में अब्दुल्ला सरकार और उसके अफसर नाकाम है।
8: हर गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से ट्राई किया है और सक्सेसिव लेवल्स पे कोशिशें हुई है कि वेस्ट के प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया जाए। आपको ये देखना है कि ये दिस इज नॉट अ लोकलाइज्ड इशू, इट्स अ ग्लोबल प्रॉब्लम। सो ग्लोबल प्रॉब्लम को आहिस्ता आहिस्ता सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने अपने अपने तरीके से टैकल करने की कोशिश की है। कभी उसको मीथेन में कन्वर्ट करने की कोशिश की गई, कभी उसको सैनिटरी लैंडफिल बनाने की कोशिश की गई, वगैरह वगैरह। तो आहिस्ता आहिस्ता जो सक्सेसिव एफर्ट्स हुए हैं उसी की वजह से आज हमारे रीच दिस स्टेज जहां पर ये प्रोजेक्ट सब एस्टेब्लिश हुए हैं।
3: जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अक्सर राज्य का दर्जा वापस देने समेत मांगों की लंबी फहरिस्त गिनाते देखे जाते, लेकिन श्रीनगर की जनता उन्हें इस कूड़े के पहाड़ को हटाने पर ध्यान लगाने की बात कहते हुए खबरदार करती है। मीर फरीद, श्रीनगर आज तक।
0: खबर भारत और चीन के बीच बेहतर होते रिश्तों की, क्योंकि एक तरफ बीजिंग में भारत के नेते अजीत डोभाल हैं, दूसरी तरफ मॉस्को में विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं। अजीत डोभाल का यह दौरा भारत में 12 और 13 सितंबर को होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन से पहले हो रहा है। चीन के राष्ट्रपति सिंह अगले महीने दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स समिट में शामिल हो सकते हैं। दूसरी तरफ मॉस्को में एस जयशंकर ने पुतिन से मुलाकात की और पीएम मोदी का संदेश दिया। 31 अगस्त से 1 सितंबर को किर्गिस्तान में बिश्केक के एससीओ समिट भी होने जा रही है, ऐसे में पुतिन भी बिश्केक समिट में पीएम मोदी से मिलने के लिए उत्सुक होंगे।
9: भारत चीन रूस का त्रिकोण, ट्रंप का तोड़, मोदी पुतिन जिनपिंग की केमिस्ट्री, वर्ल्ड ऑर्डर बदलेगी। 7 साल बाद भारत आ सकते हैं जिनपिंग, बीजिंग में डोभाल, एससीओ में मिलेंगे पीएम मोदी और पुतिन, दुनिया में जमेगी धाक। पुतिन से जयशंकर मिले, पुतिन ने की पीएम मोदी की तारीफ। दो बड़े वैश्विक कूटनीतिक सम्मेलन की तारीखें नजदीक आ रही हैं। 13 सितंबर को भारत में ब्रिक्स सम्मेलन होने वाला है, तो 31 अगस्त और 1 सितंबर को किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में एससीओ शिखर सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। ऐसे में भारत वैश्विक कूटनीति में अपना झंडा बुलंद कर रहा है। इस वक्त भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए अजीत डोभाल बीजिंग में मौजूद हैं, तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की राजधानी मॉस्को की यात्रा पर हैं। अजीत डोभाल ने 25वें दौर की स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव वार्ता से ठीक पहले चीन के उपराष्ट्रपति हान चेंग से उच्च स्तरीय मुलाकात की है और चीन ने भारत के साथ रिश्तों के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक नजरिए की बात कही। बीजिंग ने कहा कि दोनों देशों को आपसी रणनीतिक भरोसा बढ़ाना चाहिए, सहयोग की संभावनाओं का इस्तेमाल करना चाहिए और द्विपक्षीय रिश्तों को स्थिर बनाए रखने के लिए मतभेदों को ठीक से संभालना चाहिए। बीजिंग में भारत चीन के बीच प्रतिनिधि स्तर की 25वें दौर की बातचीत के लिए अजीत डोभाल बीजिंग में हैं। भारत ने पहले ही साफ कर दिया है कि सीमा पर शांति और एलईसी पर स्थिरता ही द्विपक्षीय और आर्थिक संबंधों की नींव होगी। ये केवल एक मुलाकात नहीं है, अगले महीने होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले चीन को अपनी शर्तों पर लाने और भारत की सामरिक सीमाओं को अभेद बनाने का एक मास्टर स्ट्रोक है। अजीत डोभाल का ये दौरा भारत में 12 और 13 सितंबर को होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन से पहले हो रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अगले महीने नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स समिट में शामिल हो सकते हैं। ये उनका 7 साल बाद भारत का पहला दौरा होगा। रॉयटर्स के मुताबिक जिनपिंग के साथ करीब 400 अधिकारियों का बड़ा प्रतिनिधि मंडल आ सकता है। जिनपिंग आखिरी बार 2019 में भारत आए थे, तब उनके साथ 200 से कम अधिकारी थे। लेकिन सबसे अहम पहलू ये है कि अजीत डोभाल पाकिस्तान एक्सपर्ट भी हैं और वो चीन के मुकाबले पाकिस्तान की दग दग से ज्यादा वाकिफ हैं। अगर चीन चाहता है कि भारत के साथ सीमा पर शांति रहे तो उसे डोभाल को गंभीरता से लेना होगा। सच्चाई ये है कि गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके से लेकर बलूचिस्तान तक चीन का $62 बिलियन वाला सीपैक यानी चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर जाता है। इस समय पीओके से लेकर बलूचिस्तान तक बगावत की आग में चीन का सीपैक प्रोजेक्ट झुलस रहा है। डोभाल की भूमिका एलएसी से एलओसी के उस पार तक रही है और ये चीन के हित में है कि वो अरुणाचल पर तनाव बढ़ाने के बजाय पाकिस्तान में अपने हितों को सुरक्षित करे। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच लगभग 3488 किलोमीटर की सीमा है जिसे एलएसी कहते हैं। 2020 में गलवान की खूनी झड़प के बाद दोनों पक्षों ने इस पर लगभग शांति को कायम कर रखा है, लेकिन बीते दिनों अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी जिले के सुदूर तकसिंग में चीनी सेना के टेंट लगाए जाने का मामला सामने आया। भारतीय सेना और सरकार ने चीन की किसी घुसपैठ से इनकार किया, लेकिन ये माना कि तनाव है। इससे पहले चीन अरुणाचल प्रदेश के स्थानों के नाम बदलकर उन्हें चीनी नाम देता रहा है। इस बार भारत ने आक्रामक रुख अपनाते हुए 7 अगस्त 2026 को अरुणाचल प्रदेश के 27 भौगोलिक स्थानों के भारतीय नामों के साथ अपडेटेड मैप जारी कर दिया। चीन नाराज हुआ तो भारत ने दो टूक कह दिया, अरुणाचल भारत का अभिन्न अंग है।
10: अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है और यह एक प्रकार से एक स्वयं सिद्ध तथ्य भी है और कोई भी चीज इस निर्विवाद वास्तविकता को बदल नहीं सकता।
9: एक तरफ उम्मीद है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, तो दूसरी तरफ मॉस्को में विदेश मंत्री जयशंकर का दौरा भी बेहद अहम है, क्योंकि 31 अगस्त और 1 सितंबर को किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में एससीओ शिखर सम्मेलन होने जा रहा है जिसमें दुनिया के 3 शक्तिशाली नेता मोदी, पुतिन और जिनपिंग मिलेंगे। जब क्रेमलिन में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की, उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश दिया और इसी मुलाकात में राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि बिश्केक में वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलने को उत्सुक हैं। वहीं जयशंकर ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की अगली मुलाकात नई दिल्ली के ब्रिक्स सम्मेलन में होगी और फिर दोनों देशों के द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में भी दोनों नेता मिलेंगे।
11: Prime Minister Modi looks forward to meeting you at the SCO summit, then welcoming you in India for the BRICS summit, and in due course, as per your mutual convenience, having the annual summit.
9: पिछले साल 31 अगस्त 2025 को तियानजिन में भारत, रूस और चीन के नेताओं की मुलाकात से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% का दंडात्मक टैरिफ लगाया था और इस मुलाकात से वो खासे चिढ़ गए थे और कहा था अमेरिका ने अपनी सख्त नीतियों के कारण भारत और रूस को सबसे गहरे, सबसे अंधेरे चीन के हाथों खो दिया है। साफ है कि उस मुलाकात में अमेरिका का दिल जल गया था, लेकिन भारत रूस की दोस्ती बरसों पुरानी है और इसे प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने अटूट बना दिया है। यही वजह है कि जब जयशंकर राष्ट्रपति पुतिन से मिले तो उन्होंने खुश होते हुए कहा,

0: the Prime Minister, who pays great attention to the development of Russian-Indian relations. In the very beginning of our conversation, I would like to ask you to convey my best regards to Prime Minister Modi. I'm looking forward to meeting him in the near time, as we have already scheduled during the summit of SCO.
1: राष्ट्रपति पुतिन ने यह भी साफ कर दिया कि उन्हें भारत के हितों की चिंता है और इसलिए उसकी ऊर्जा जरूरतों, किसानों के लिए खाद और परमाणु ऊर्जा से जुड़ी जरूरतों को रूस पूरा करने में जुटा है।
0: We are happy to meet you, Your Excellency. I know that you with your Russian colleague, Mr. Mantrov, who is the head of the Russian part of the Russian side of the Intergovernmental Commission. You have already had very productive work. I believe you have discussed the most important issues. There are numerous, and one of them are energy resources, fertilizer shipments, and we are doing everything possible in order to provide fertilizers for Indian farmers and the agricultural sector. We have been increasing the shipment of fertilizers, and we are ready to continue doing this, including all other issues, nuclear energy cooperation in high technology areas, in other directions and other dimensions. They all are on the agenda, and they are progressing quite efficiently. Welcome, Your Excellency.
2: Thank you, Mr. President.
1: SCO, यानी शंघाई सहयोग संगठन में वैसे तो 9 देश हैं: भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ईरान. इनके अलावा पर्यवेक्षक के तौर पर कई और देश भी शामिल हैं. लेकिन सिर्फ 3 देश, यानी भारत, रूस और चीन, इंटरनेशनल मीडिया की टॉप हेडलाइंस बनते हैं. आज तक ब्यूरो.
3: हमारे आपके किचन में सबसे जरूरी क्या होता है? आलू के साथ पहला नाम आता है प्याज का. तो देश के बड़े शहरों में प्याज की कीमत 70 रुपए के पार चली गई है. आशंका यह भी है कि इससे महंगाई भी तो और बढ़ेगी. लेकिन सवाल यह भी है कि सरकार की तरफ से प्याज की महंगाई को रोकने की कोशिशें जो हो रही, क्या वो काफी है? नासिक से सरकार कांदा एक्सप्रेस चला रही है, जिसका नासिक के प्याज किसानों ने विरोध शुरू कर दिया है.
4: भाई प्याज के लिए रोज फोन आ रहा है और मैं कह देता भाई आज भूल गया, कब तक बहाने करूंगा प्याज के लिए. मैं प्याज लेके नहीं जा रहा हूँ, इतनी महंगी प्याज हो गई है, तड़का लगाना भारी पड़ रहा है.
5: सरकार तो बैठी है अच्छे दिन लाने के लिए. क्या अच्छे दिन लाया? गरीबों को वोट लगा दिया, क्या मिलेगा अपने को?
1: चीनी ने चाय की मिठास कम की तो प्याज आम लोगों की आंखों में आंसू ला रहा है. घर में कुछ भी पकना हो, प्याज चाहिए. तड़के से लेकर सलाद तक प्याज बहुत जरूरी है. लेकिन अब 60 से 70 रुपए किलो बिकेगा तो सलाद खाना तो भूल ही जाइए. देश के बड़े बड़े शहरों में प्याज इस वक्त 60 से 70 रुपए किलो बिक रहा है. पिछले एक हफ्ते में ही प्याज के दामों में 20 से 30 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है. होलसेल मार्केट में प्याज के दाम 5,000 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गए हैं, यानी 50 रुपए किलो. और प्याज व्यापारियों की आशंका है कि आने वाले वक्त में प्याज बहुत जल्द 100 रुपए के पार भी जा सकता है. सबसे पहले मुंबई का हाल देखिए, जहां अलग अलग मंडियों में प्याज का भाव अलग अलग चल रहा है. हमारे संवाददाता दीपेश त्रिपाठी ऐसी ही एक होलसेल मंडी में पहुंचे.
6: महाराष्ट्र में प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं, और खास करके ऐसे समय में जब त्योहारों का मौसम है, यानी त्योहारों के समय में लोगों की जेब पर जो बोझ है वो बढ़ने के आसार यहाँ पर नजर आ रहे हैं. हमारे साथ है प्रवीण जी, जो प्याज और आलू के उत्पादक हैं, होलसेल विक्रेता हैं. हम उन्हीं से जानेंगे. सर, कितने दाम बढ़े हैं, कितना असर हुआ है दामों पर, खास करके प्याज के दामों पर?
7: कल के तारीख में 3-4 रुपए के बढ़त हुई है प्याज में,
6: किलो के पीछे.
7: अच्छा. क्योंकि फिर कल छुट्टी है, फिर 2 दिन के बाद फिर छुट्टी है, तो इसके लिए मार्केट में ये टाइट है, भाव टाइट है.
6: पहले कितने दाम थे और अब कितने दाम, और कब से दाम बढ़ना शुरू
7: हुआ? अब लगभग रिटेल अपने होलसेल मार्केट में वासी में 40-44 रुपए के आसपास माल भाव है, और यहाँ होलसेल में 52 रुपए 50 रुपए बिक

0: रहा है और किलकुल मार्केट में 60-70 रुपए जा बेच रहे लोग।
1: पहले कितने दाम थे?
0: पहले दाम थे 40-36, फिर 32। एक ही हफ्ते में सुविधा 10% बढ़ गया है।
1: अच्छा, क्यों बढ़े कुछ?
0: वही एक्सपोर्ट चालू हो गए बोलते हैं, माल में माल कम आ रहा है, तो इसके वजह से रेट बढ़े हैं।
1: और कितना असर पड़ा है ग्राहकी पर, मतलब क्या लोग आ रहे हैं खरीद रहे हैं या पहले से ज्यादा माल जा रहा है कम जा रहा है?
0: माल तो कम जा रहा है क्योंकि सब एक साथ 10-10%, 15-15% बढ़ गया, तो कोई भी किस कोई भी चीज पे, और ये डेली खाने वाला चीज है तो उसमें 15% बढ़ गया तो बहुत सोचते हैं लोग कि भाई इतना, या होटल वाले हो, होटल वाले भी हमसे बहुत कोऑर्डिनेशन करते कि इतना रेट हमको नहीं परवड़ रहा है।
2: इस मंडी से तमाम होलसेलर और होटल रेस्टोरेंट वाले सब्जी लेकर जाते हैं। रोज दसियों किलो प्याज लेकर जाते थे, लेकिन प्याज के बढ़े हुए दामों की वजह से उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। सवाल यह है कि न व्यापारी कमा रहा है, न किसान को कुछ मिल रहा है, तो फिर प्याज के बढ़े हुए दामों से मुनाफे में कौन है?
1: सर क्या कहेंगे, कितना असर पड़ा है?
3: डबल असर पड़ा है। जो हम 25-22 रुपए में प्याज खरीदी करते थे, रोज हमारा छोटा रेस्टोरेंट है, प्याज खरीदी करते थे 20-22 में, आज वो 45-48 रुपए, 52 रुपए प्याज का भाव हो रहा है, और वो हिसाब से हमारा मुनाफा भी घट गया पूरा। दूसरी बात, फार्मर लोग का भी भाव इतना बड़ा नहीं है, ये पैसा कहाँ जाता है? हमें लगता है ये सरकार एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा कर रही है, रोड पे खर्चा, लाडली बहन पे खर्चा कर रही है, हमें लगता है उसमें जा रहा है ये सब पैसा, क्योंकि ना फार्मर का फायदा हो रहा है, जो हम लोग कष्ट करके मेहनत करके व्यापार करते हैं, हमारा मुनाफा बढ़।
4: असर तो कुछ नहीं है, सब सरकार सब अलग अलग पॉलिसी में पैसा डाल रहे हैं, महंगाई गरीब आदमी का तो उसमें जान जा रही है, अभी शक्कर भी इलाज नहीं हो रहा है, सिर्फ बातें करते रहता है, हम ऐसा करेंगे हम वैसा करेंगे, शक्कर भी 80 रुपए हो गया, 60-70-80 रुपए, कैसा सामान्य मान कैसा ये करेंगे?
2: सवाल उन गरीबों का भी है जो इतना नहीं कमा पाते कि 60-70 रुपए किलो का प्याज खरीद पाए। वो सवाल उठा रहे हैं कि क्या सरकार उनके लिए कुछ सोच रही है या नहीं।
5: इधर भाव बढ़ गए तो ये ले गई ना, पकड़ कितना 15,000 पकड़ में पाता है, मैं तो उसमें क्या करेगा हम लोग, वही तो हम सरकार को पूछने वाले अभी है क्या करने का। हम तो शक्कर का भाव बढ़ गया है, बीच में कितना भाव बढ़ गया था, दाल तुर दाल मसूर दाल का कितना भाव बढ़ गया, अभी कल ये सरकार का विकास कर रही है, भाव कभी महंगाई कभी कम नहीं हुई है, और मोदी का अच्छा दिन आया, वो अच्छे ही दिन ऐसा आएंगे लोगों को दिखाने के लिए।
2: सवाल है कि प्याज के दाम अचानक से इतने क्यों बढ़ गए? इसके पीछे ब्लैक मार्केटिंग और स्टॉकिंग तो शामिल है ही, लेकिन इसके लिए बारिश को ज्यादा जिम्मेदार बताया जा रहा है। महाराष्ट्र और अन्य प्याज उत्पादक राज्यों में भारी बारिश से प्याज की फसल को नुकसान हुआ है, जिससे पैदावार कम हुई है। इसके अलावा मंडियों में प्याज की सप्लाई घटी है, जिसके कारण दाम बढ़े हैं। त्योहारी सीजन के नजदीक आते ही बाजारों में प्याज की मांग बढ़ गई है, जिससे दाम बढ़ गए हैं। उधर सरकार ने महंगी होती प्याज को लेकर कमर कस ली है, सप्लाई को तेज करने की कोशिश जारी है। एक दिन पहले से ही कांदा एक्सप्रेस चलाई जा रही है। 24 अगस्त से नासिक से प्याज की ढुलाई और रिलीज शुरू भी हो चुकी है। कांदा एक्सप्रेस से प्याज की सप्लाई के पहले चरण में चेन्नई, मदुरई, दिल्ली, कोच्चि और गुवाहाटी को शामिल किया गया है। कांदा एक्सप्रेस के जरिए 2025-26 में करीब 88,000 मीट्रिक टन प्याज 86 रेलवे रैकों से 16 प्रमुख शहरों तक पहुंचाया जा रहा है। जरूरत के अनुसार आगे भी शहरों को जोड़ा जाता रहेगा। लेकिन अब सरकार की कांदा एक्सप्रेस पर ही विवाद हो गया है। महाराष्ट्र का प्याज उत्पादक संघ आगे आया है और सरकार का विरोध कर रहा है। तर्क यह है कि जब किसानों को अच्छे दाम मिल रहे हैं तो सरकार बीच में क्यों आ रही है, क्योंकि किसानों को पिछले वर्षों में प्याज के बहुत कम दाम मिले।
6: लेकिन सरकार क्या करती है कि अभी बफर स्टॉक जो प्याज है वो प्याज एक्सप्रेस, कांदा एक्सप्रेस के नाम से बड़े बड़े शहरों में देश के प्याज डाल रही है, और वहां ग्राहकों को सस्ते दाम में प्याज देकर 35 रुपए किलो से उनको प्याज बेचना है। किसानों का प्याज जब उनको खरीदना था सरकार को, तो 12 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए उन्होंने पर किलो का उनको भाव दे दिया, और आप खुद 35 रुपए में प्याज बेचने में उनको बेचना है। तो हम किसान और महाराष्ट्र प्याज उत्पादक संगठन मांग करते हैं कि आपको किसानों को अच्छा दाम मिलने में आप बीच में मत आइए। जब दाम हमारे एक एक दो दो साल गिरते हैं तो सरकार गायब हो जाती है, थोड़े दिन के लिए दाम बढ़ती है तो सरकार एक्शन लेती है, उसमें दाम गिराने के लिए काम करती है। तो ये दोहरी नीति है, किसान की नुकसान करने वाली नीति है। इसके इससे सरकार को रुकना चाहिए, क्योंकि हम महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और अन्य राज्यों के किसानों को साथ में लेकर अगर ये सरकार प्याज के दाम गिराने की काम करेगी तो हम सरकार के विरोध में महाराष्ट्र में, दिल्ली में पूरा बड़ा आंदोलन करेंगे।
2: किसानों का तर्क अपनी जगह है, ये बात सही है कि किसानों को प्याज के बहुत कम दाम मिलते हैं, लेकिन इसकी वजह से अगर कोई बिचौलिया प्याज की कालाबाजारी कर रहा है तो उसकी भी पहचान सरकार को ही करनी है। नासिक से परवीन ठाकरे के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।
7: एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
9: क्या आप त्वचा की समस्या से परेशान हैं? क्या आपको निरंतर त्वचा की दिक्कतें होती रहती हैं? तमाम उपाय के बावजूद समाधान नहीं मिल रहा है? क्या है ज्योतिष में त्वचा की समस्या के कारण और क्या है निवारण, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।

राहुल गांधी के मनुस्मृति पर बयान के जवाब में बीजेपी ने जारी किया हिजाब वाला वीडियो, नेता प्रतिपक्ष पर साधा निशाना, पाखंड करने का आरोप लगाया। पटना में एसएससी परीक्षा में देरी और शिक्षक भर्ती नियम के खिलाफ प्रदर्शन, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के छात्रों के पुलिस से झड़प में 2 जवान घायल। योगी सरकार के ताबड़तोड़ फैसले, 25 लाख युवाओं को मुफ्त टैबलेट देने की तैयारी, 3400 युवाओं को दी नियुक्ति पत्र, 60 से ज्यादा उम्र की महिलाओं को मुफ्त बस सेवा का ऐलान। दिल्ली में आज महिलाओं को मिलेगी 2500 रुपए की पहली किश्त, लक्ष्मी योजना के तहत सीएम रेखा गुप्ता जारी करेंगे राशि, विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वादा। भारत चीन सीमा मुद्दे पर एनएसए अजीत डोभाल ने बीजिंग में की बैठक, सीमा पार शांति स्थिरता बनाए रखने पर जोर, 3 निर्धारित मार्गों से व्यापार जारी रखने पर भी चर्चा।

आपका आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। पेट और सर्दी जुकाम की समस्या के बाद जो समस्या सबसे ज्यादा होती है वो है त्वचा की समस्या। आज हम आपको बताएंगे कि ज्योतिष के अनुसार त्वचा की समस्या कब होती है और त्वचा की समस्या को दूर करने के उपाय क्या हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग।

2026 दिन बुधवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, सुबह के 7:59 तक। नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय 12:00 से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज स्किन प्रॉब्लम के लिए, त्वचा की समस्या के लिए बात कर रहे हैं। त्वचा की समस्या के लिए ज्योतिष में कौन से ग्रह इंपॉर्टेंट होते हैं? देखिए, त्वचा का जो मामला आपके शरीर में है, ये पृथ्वी तत्व का मामला है, अर्थियल एलिमेंट का मामला है, और मुख्य रूप से आपकी त्वचा का संबंध बुध नामक ग्रह से होता है। बुध त्वचा को नवीन यानी नया और अच्छा बनाए रखता है। जिन लोगों की त्वचा अच्छी है, उनको ये समझना चाहिए कि उनका बुध अच्छा है। इसके अलावा कुछ मामलों में मंगल और सूर्य भी त्वचा से संबंध रखते हैं। मेष राशि, मिथुन राशि और कन्या राशि त्वचा से जुड़ी हुई राशियां मानी जाती हैं। तो अगर हम ओवरऑल देखें, कुल मिलाकर देखें, तो सूर्य, बुध और मंगल अलग अलग तरीके से आपकी त्वचा को प्रभावित करते हैं और आपकी त्वचा पर असर डालते हैं। त्वचा की समस्याओं पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और सावन के पावन महीने का एक विशेष उपाय बताएंगे सावन सूत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, कोई पुराना काम, कोई पुरानी इच्छा पूरी होगी, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, काफी दौड़ भाग रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। मिथुन राशि, काम की अधिकता रहेगी, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, सतर्क रहें। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके
दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। अब आपको बताते हैं कि बुध आपको त्वचा की कैसी समस्या देता है। बुध अगर त्वचा की समस्या देगा तो क्या होगा? बुध की त्वचा की समस्या अगर होगी तो त्वचा पर झुर्रियां पड़ जाती हैं। कभी कभी त्वचा बड़ी रूखी, बड़ी ड्राई और बड़ी खराब सी हो जाती है। त्वचा पर दाने आ जाते हैं और छोटे छोटे धब्बे भी त्वचा पर आ जाते हैं। आम तौर पर जो बुध त्वचा की समस्या देता है वो उम्र के 8 से 20 वर्ष तक और 60 वर्ष के पश्चात ज्यादा होते हैं। जिनकी त्वचा में झुर्रियां पड़ती हों या जिनकी त्वचा में रूखापन ज्यादा रहता हो, ऐसे लोग ये समझ लें कि उनका बुध त्वचा के मामले में निगेटिव है और इस तरह की समस्या आपको दे रहा है। तो अगर आपने ये समझ लिया कि बुध की वजह से आपको त्वचा की समस्या हो रही है, बुध ऐसी स्थिति में है जो आपको त्वचा की समस्या दे रहा है, तो क्या करेंगे? खान पान का हमेशा ध्यान रखें। बहुत ज्यादा मसालेदार चीजें और बहुत ज्यादा खट्टी चीजें मत खाइए। सप्ताह में एक दिन उपवास रखिए और सप्ताह में एक दिन जलीय आहार, केवल लिक्विड डाइट ग्रहण करें तो बेहतर होगा। सूर्य देव को नियमित रूप से जल अर्पित करिए। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। और बुध अगर त्वचा की समस्या दे रहा है तो सलाह लेकर एक पन्ना या एक माणिक्य अगर आप धारण करें तो आपको विशेष लाभ अवश्य होगा। त्वचा की समस्या पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, करियर में लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। गणेश जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।

विवाद से बचाव करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न ऋतु मिश्रा ने हमें लिखा है, कानपुर से लिखती हैं, अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हैं। बेटे की जन्म की तारीख है 25 मई सन 2000, जन्म का समय शाम के 6:55, जन्म स्थान है कानपुर। ये कह रही हैं कि मेरा बेटा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, क्या मेरे बेटे का सिलेक्शन गवर्नमेंट जॉब में होगा? ऋतु जी, आपके पुत्र की कुंडली के हिसाब से अगर वो प्रशासनिक सेवा की तैयारी करें, UPPCS की या एडमिनिस्ट्रेटिव नौकरी की तैयारी करें तो उसमें इनको सफलता अवश्य मिलेगी। और इनकी सफलता का बड़ा अच्छा समय 2027-28 में दिखाई दे रहा है। एक इनको मूंगा बनवा के पहनाइए, 10-12 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को सवेरे मूंगा बनवा के पहनाइए और इनसे कहिए कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो इनके लिए बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि मंगल किस तरह की त्वचा की समस्या देता है, मंगल स्किन पर कैसा असर डालता है। देखिए, मंगल त्वचा का डायरेक्ट स्वामी नहीं है, लेकिन मंगल भी त्वचा की समस्या देता है और ये बताता है कि आंतरिक गड़बड़ी है, आपके शरीर में कोई इंटरनल प्रॉब्लम है। मंगल का मतलब है कि ये शरीर का केमिकल बैलेंस जब बिगड़ता है तो मंगल त्वचा पे दिक्कत देता है। जैसे आप कहते हैं ना कि गलत दवाई खा ली, रिएक्शन हो गया, शरीर पे दाने आ गए, निशान आ गए, गलत दवाई रिएक्ट कर गई, तो शरीर के केमिकल बैलेंस के बिगड़ने पर मंगल त्वचा की समस्या देता है। और मंगल जब त्वचा की समस्या देता है तो त्वचा में दाग धब्बे पड़ जाते हैं शरीर पर, और शरीर पर निशान पड़ जाते हैं, ऐसा देखा गया है। और कभी कभी किसी दुर्घटना की वजह से आपको कभी चोट लग गई या कोई सर्जरी हुई आपकी, या शरीर पर कोई दुर्घटना का निशान पड़ गया, ऐसा निशान शरीर पर बना रहता है दुर्घटना की वजह से, इस तरह की संभावना जिंदगी में बन जाती है। यानी शरीर में अगर कोई रिएक्शन गड़बड़ हो गया तो मंगल की वजह से त्वचा की समस्या होगी, या अगर आपको चोट चपेट लग गई, कोई दुर्घटना हो गई तो भी शरीर पर निशान बन जाएगा और त्वचा की समस्या हो जाएगी। अगर मंगल की वजह से आपकी त्वचा पर समस्या हो रही है, शरीर में आंतरिक कोई गड़बड़ी है जिस वजह से त्वचा में दिक्कत हो रही है, तो क्या करेंगे? पानी का खूब सेवन करिए, पानी पीजिए, और अगर तांबे के पात्र से पानी पिए तो बहुत अच्छा होगा। उगते हुए सूर्य की रोशनी में रोज सुबह 5 मिनट अपनी पीठ करके बैठिए। तांबे के पात्र से पानी पीने का प्रयास करिए, रात भर तांबे के लोटे में पानी रखिए, सुबह उठकर निहार मुंह
खाली पेट पहले वही पानी पीजिएगा, और अगर मंगल की वजह से त्वचा की समस्या है तो सलाह लेकर एक मूंगा धारण करना अच्छा होगा। और शरीर में मंगल की वजह से जहां त्वचा की समस्या है उस प्रभावित जगह पर अगर आप नारियल का तेल लगाएं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। सूर्य की त्वचा की समस्या पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन ये बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। करियर में समस्या हो सकती है, सतर्कता बनाए रखिएगा। धन के लेन देन में आज सावधान रहें, नुकसान हो सकता है। हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वृश्चिक राशि, मानसिक चिंता आपकी समाप्त होगी, करियर की स्थिति में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन आपके लिए बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, मानसिक चिंता समाप्त होती दिखाई दे रही है, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, साथ ही साथ स्वास्थ्य का आज ध्यान बनाए रखिएगा। अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। तो हमने आपको बताया कि बुध भी त्वचा की समस्या देता है, मंगल भी त्वचा की समस्या देता है, और अब आप ये जानिए कि सूर्य भी त्वचा की समस्या देता है। सूर्य की त्वचा की समस्या कैसी होती है? देखिए, सूर्य की जो किरणें हैं ये आपकी त्वचा में मेलानिन को नियंत्रित करती हैं। आपका कॉम्प्लेक्शन कैसा होगा वो सूर्य के रोशनी पर निर्भर करता है। सूर्य की रोशनी से जो मेलानिन कंट्रोल होता है इससे व्यक्ति के त्वचा के रंग में अंतर आ जाता है। सूर्य की अगर त्वचा की समस्या होगी तो त्वचा आपकी काली होती जाएगी, झुलसी और टूटी टूटी दिखाई देगी। जिनकी कुंडलियों में सूर्य ज्यादा निगेटिव होता है ऐसे लोगों को सनबर्न की प्रॉब्लम होती है। सूर्य की रोशनी स्किन पर पड़ने से उन्हें दिक्कतें आने लगती हैं, और सूर्य बिल्कुल अपने स्वभाव के अनुसार अगर निगेटिव हो तो त्वचा को जलाता है या त्वचा को झुलसा देता है। तो अगर आपकी कुंडली के सूर्य की वजह से
आपको त्वचा की समस्या हो रही है तो किन उपायों को करें, क्या करें? उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाइएगा, बाकी समय नहीं। तेज सूर्य की रोशनी में मत जाइएगा, उगते हुए सूर्य को जब लालिमा लिए रहें तब जल चढ़ाइए। गरिष्ठ भोजन और मांसाहार से परहेज करिएगा। रस वाले जो फल हैं और नींबू पानी, इसका नियमित रूप से प्रयोग करें। और अगर सूर्य की त्वचा की समस्या है तो सलाह लेकर एक मोती या एक ओपल अगर आप धारण करें तो बेहतर होगा। सूर्य की त्वचा की समस्या में

आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन का लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। कुंभ राशि, करियर में समस्या हो सकती है, मन परेशान हो सकता है, रिश्तों का ध्यान बनाए रखें। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। मीन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में कुछ परिवर्तन होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। आपने देखा होगा कि विवाह के बाद जब लड़की की विदाई होती है तो लड़की अपने मायके में चावल का अक्षत, जो दाने टूटे हुए ना हो, अक्षत बिखेर कर या देकर जाती है। ऐसा क्यों? देखिए, जो लड़कियां होती हैं वो मुख्यतः लक्ष्मी स्वरूप होती हैं और जब घर से जाती हैं तो उनके घर से जाने के बाद बहुत सारे लोगों का जीवन खराब हो जाता है, आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है। तो लड़कियां इस भावना से अक्षत देकर जाती हैं कि घर उनके जाने के बाद भी संपन्न रहे, घर में शुभता संपन्नता बनी रहे और घर में किसी तरह की कमी ना हो। तो लड़कियां विदाई के समय अक्षत इसीलिए देकर जाती हैं ताकि उनके जाने के बाद भी घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है आइए जानते हैं। नंबर 1, चोट चपेट से बचाव करें। नंबर 2, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 3, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। नंबर 4, धन लाभ के योग हैं। नंबर 5, करियर की बाधाएं दूर होंगी। नंबर 6, मनोरंजक कार्य में व्यस्त रहेंगे। नंबर 7, करियर में सफलता मिलेगी। नंबर 8, रुके हुए काम पूरे होंगे। और नंबर 9, धन के लेन देन में सावधानी रखें। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का।
तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 7:30 से रात के 9 तक। इस समय में भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करके प्रार्थना करिएगा, आपको नौकरी संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। अगला प्रश्न अनिल जी ने हमें लिखा है और अनिल जी हमें मेल लिखते हैं इंदौर मध्य प्रदेश से। इनकी जन्म की तारीख है 30 मार्च 1980, जन्म का समय सुबह के 11 बजे, जन्म स्थान है इंदौर। अनिल जी कह रहे हैं कि काफी समय से मैं अपना मकान बनवाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अधूरे में ही मेरा मकान रुका हुआ है, पूरा नहीं हो पा रहा है, तो मैं क्या उपाय करूं कि मेरा मकान जल्दी पूरा हो जाए और मैं वहां रह सकूं। अनिल जी, आपकी कुंडली के हिसाब से मंगल की स्थिति अच्छी ना होने की वजह से आपको ये दिक्कत आ रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस साल के अक्टूबर के बाद अगर आप दोबारा से मकान बनवाना शुरू करें तो आपका मकान इस बार बन करके पूरा हो जाएगा। सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें और हर मंगलवार को गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं। अगर ऐसा नियमित रूप से आप साल भर तक करें, आपके प्रॉपर्टी की समस्या दूर हो जाएगी। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो हरा धनिया खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है, हरी सौंफ खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, गणेश जी को दूर्वा अर्पित कर दीजिएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास इलाज या चिकित्सा के लिए जाना है तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो हरा रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज सावधान रहना होगा।

वालों के लिए कार्यों में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय होगा। मेष राशि वालों के लिए रुके हुए सारे काम आपके पूरे होंगे। आज सावधान रहना होगा तुला राशि वालों को। बेवजह का तनाव, बेवजह की चिंताएं आज हो सकती हैं। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज त्रयोदशी तिथि है, बुधवार का दिन है। आज भगवान गणेश की उपासना करने से बाधाएं दूर होंगी। आज थोड़ा समय निकालकर गणपति की पूजा जरूर करिएगा, आपको लाभ होगा। सावन का पावन महीना चल रहा है, तो चलिए बताते हैं सावन में भाग्य को चमकाने के उपाय। सावन सूत्र में अगर वैवाहिक जीवन में आपके समस्या है तो सावन के महीने में शिव जी और माँ पार्वती की एक साथ संयुक्त रूप से पूजा करें तो आपको लाभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

प्रधानमंत्री मोदी ने एक अहम बैठक में 6 अहम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की समीक्षा की। 9 राज्यों से जुड़ी परियोजनाओं की प्रगति और अड़चनों पर भी चर्चा हुई। पीएम मोदी ने देशवासियों को ईद मिलाद उन नबी की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अवसर समाज में एकजुटता और खुशियां बढ़ाने का मौका है। डोभाल वांगी की 25वीं वार्ता में सीमा मुद्दे पर चर्चा। भारत चीन में सीमा विवाद के समाधान और रिलेसी पर शांति बनाए रखने पर जोर दिया। 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन तेज। छात्रों ने TRE-4 से पीटी मेंस हटाने की मांग उठाई। पंजाब के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों ने अपनी मांगों को लेकर के बंद का आह्वान किया। सरकार पर लंबित मांगों के समाधान के लिए दबाव बनाने की भी तैयारी की जा रही है। दिल्ली पहुंच रही 800 मीट्रिक टन प्याज की खेप। कीमतों पर मिलेगी राहत। कांदा एक्सप्रेस को प्याज से दिल्ली लाई जाएगी। पहली खेप चेन्नई मदुरई गुवाहाटी भेजी जाएगी। सरकारी बिक्री के जरिए लोगों को सस्ती प्याज उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही है सरकार। सरकार ने जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर को निजी कंपनियों को लीज पर देने की मंजूरी दी है। फैसले को लेकर अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर निशाना साधा। जीपीएनआईसी लीज विवाद पर अखिलेश ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अब बस सरकार को ठेके पर देना बचा है। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से अंतरिम राहत। पुलिस को पूछताछ या कार्यवाही से 48 घंटे पहले नोटिस देना होगा। कोर्ट के आदेश से बनर्जी को फिलहाल राहत मिली है। बांग्लादेश के रंगपुर में हिंदू परिवार की हत्या से बवाल हुआ। स्कूल शिक्षक गणपति चक्रवर्ती, उनकी पत्नी और 2 बच्चों के शव घर से बरामद हुए। स्थानीय हिंदू समुदाय में आक्रोश बढ़ गया है।

विरोध के बाद मामले की जांच इसे पुलिस से हटाकर डिटेक्टिव ब्रांच को सौंपा गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हत्या में शामिल अन्य आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। गैंगरेप के आरोपों ने मामले को और गंभीर बना दिया। फॉरेंसिक रिपोर्ट में महिलाओं के साथ दुष्कर्म की बात कही गई है, तो वहीं स्थानीय स्तर पर पुलिस तथ्यों पर छिपाने के भी आरोप लग रहे हैं। इस मामले में दो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। जांच का दायरा बढ़ाने की मांग की जा रही। लोगों का दावा है कि हत्याकांड में 2 से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। बांग्लादेशी दूतावासों के बाहर प्रदर्शन की तैयारी हो रही है। हिंदू संगठनों ने परिवार की हत्या के विरोध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाज उठाने का ऐलान किया है। राहुल गांधी पर बीजेपी ने हमला करते हुए कहा कि हिजाब अबाया को लेकर पितृसत्ता के खिलाफ उनके रुख पर सवाल भी उठाया। बीजेपी ने राहुल गांधी से पूछा, महिलाओं के सशक्तिकरण को धर्म के आधार पर अलग अलग मानदंड क्यों हैं? राहुल गांधी के फ्रीडम ऑफ चॉइस वाले रुख पर निशाना भी साधा। चीनी की बढ़ती कीमत पर केंद्र ने लगाम लगाई। जमाखोरी पर कार्रवाई से घटी दर। 10 लाख टन चीनी आयात को मंजूरी। सीएम योगी ने कहा, यूपी में पर्याप्त स्टॉक है। जापान दौरे पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पीएम मोदी के खिलाफ गलतफहमियां फैलाई जाती हैं, लेकिन इस्लामिक देश भी सर्वोच्च सम्मान दे चुके हैं। पाकिस्तान को छोड़ दुनिया लोहा मानती है। यूपी चुनाव में एआईएमआईएम की जीत के लिए ओवैसी ने दुआ मांगी। ओवैसी ने कार्यकर्ताओं से पार्टी के आंदोलन को मजबूत करने की अपील भी की। ओवैसी ने मुस्लिम समुदाय के लिए राजनीतिक नेतृत्व की जरूरत पर जोर दिया। कहा, इससे भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था और संविधान मजबूत होगा। एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा कि 18 करोड़ की आबादी है। संसद में सिर्फ 24 सांसद समुदाय की आवाज उठाने के लिए पर्याप्त राजनीतिक नेतृत्व नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के भी ओवैसी ने सवाल उठाया। कहा, अगर कानून हिंदू पर्सनल लॉ के प्रावधानों पर आधारित है तो उन्हें सम्मान नागरिक संस्था कैसे कहा जा सकता है। न्यूयॉर्क मेयर जोहरान ममदानी ने आरएसएस कार्यक्रम का विरोध करते हुए कहा, मेडिसन स्क्वायर गार्डन में मोहन भागवत के कार्यक्रम पर मैं इस रैली का समर्थन नहीं करता, लेकिन न्यूयॉर्क में अनुमति रद्द करने की परंपरा नहीं। यूपी में 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा का तोहफा दिया। योगी सरकार ने योजना के तहत 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा का लाभ मिलेगा। यूपी कैबिनेट ने युवाओं को डिजिटल सुविधा देने का बड़ा फैसला किया है। सरकार की योजना के तहत 25 लाख टैबलेट मुफ्त बांटे जाएंगे। एमबीबीएस और बीडीएस इंटर्न्स को हर महीने 25,000 रुपए मिलेंगे। यूपी सरकार के फैसले से मेडिकल इंटर्न्स को बड़ी राहत मिली है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार रोजगार देने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। सीएम के मुताबिक यूपी में अब तक 9.5 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी मिल चुकी है। योगी ने कहा कि राज्य के पास करीब 7 महीने का चीनी का भंडार मौजूद है। उन्हें चीनी की उपलब्धता को लेकर किसी तरह से कमी से भी इनकार किया। रक्षाबंधन से पहले लखनऊ में मिलावटखोरों पर बड़ा एक्शन हुआ है। एफएसडीए ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर देर रात ताबड़तोड़ छापेमारी की। संदिग्ध खाद्य पदार्थों से लदी 3 गाड़ियां भी पकड़ी गई। रक्षाबंधन से पहले बरेली में मिलावटखोरों पर शिकंजा कसा गया। 490 किलो मिठाई नष्ट कराई गई। जांच के दौरान खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए। बदायूं में अंबेडकर प्रतिमा को लेकर के बवाल हुआ। पुलिस पर पथराव हुआ। पुलिस और प्रशासन के 8 से 10 लोग घायल हुए। ज्यादा वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। 7 उपद्रवियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। बारवा फॉल को लेकर के संभल में पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। एसपी ने पुलिस फोर्स पीएसी के साथ जुलूस मार्गों पर पैदल मार्च किया। चीनी के बढ़ते दाम पर अमेठी में प्रशासन का बड़ा एक्शन। शासन के निर्देश पर चीनी के बड़े कारोबारियों के गोदामों पर छापेमारी की गई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि 2032 तक भारत में सेमीकंडक्टर की मांग 150 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का भी लक्ष्य है। दिल्ली लक्ष्मी योजना में आज लाभार्थी महिलाओं को स्वीकृति पत्र मिलेंगे। 1 सितंबर से खाते में आएंगे 2,500 रुपये मासिक। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि वादे से नारी सम्मान और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा है। दिल्ली अपने वचन को निभाने की एक नई मिसाल भी लिखेगी। भारतीय नौसेना में शामिल होगा स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल निपुण। 31 अगस्त को मुंबई में कमीशन किया जाएगा। गहरे समंदर में डाइविंग और सबमरीन रेस्क्यू क्षमता को मजबूत किया जाएगा। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने अत्याधुनिक निपुण बनाया है। नौसेना को 30 जुलाई को यह सौंपा गया था। बहुत आधुनिक डाइविंग सिस्टम और अंडरवाटर ऑपरेशंस की सुविधाओं से लैस है। महाराष्ट्र में खुले खाद्य तेल की बिक्री पर रोक नई नहीं है। मिलावट रोकने के लिए 2011 से ही यह प्रावधान लागू किया गया है। एफडीए ने 2025-26 में 1247 नमूनों की जांच की। 77 घटिया और 13 असुरक्षित पाए गए। बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। एमसीए की बीकेसी कैंटीन किचन का एफडीए फिर से निरीक्षण करेगा। पार्शल कंप्लायंस रिपोर्ट पर कोर्ट ने सवाल उठाया। खिलाड़ियों के लिए चाय कॉफी वेंडिंग मशीनों की अंतरिम मंजूरी भी दी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नेवल डिसूजा फुटबॉल ग्राउंड को

सेंटर में बदलने पर रोक लगा दी है। 18 सितंबर तक बीएमसी को आगे की कार्यवाही से रोका। मुंबई फुटबॉल एसोसिएशन ने आपत्ति जताई। बुलढाणा में किसान नेता रविकांत उपकर को पुलिस का नोटिस। 27 अगस्त को मंत्रालय के सामने आंदोलन और मंत्रियों के बगले सरकारी वाहनों को सांकेतिक नीलामी की चेतावनी। राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। स्कूल कैंटीन और गेट से 50 मीटर की दूरी तक चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड पर रोक। छात्रों को पोषण डिजिटल स्क्रीन टाइम पर भी सख्त निर्देश दिए गए। सोनीपत में जिला परिषद की बैठक में गोरिल्ला बनकर पहुंचा जिला पार्षद। अनोखे प्रदर्शन से गरमाया माहौल। जिला पार्षद का कोटा निर्धारित करने की उठाई मांग। अनोखे प्रदर्शन ने सबका ध्यान खींचा। नागौर में खेतों के खसरे से बैंक खातों तक फर्जीवाड़े का जाल। एसडीएम की सील लाइन से बने नकली निवास प्रमाण पत्र, फर्जी बीमा क्लेम, करोड़ों की आशंका, साथ गिरफ्तार। दिल्ली में बढ़ते H1N1 के मामलों के बीच स्कूलों के लिए अलर्ट जारी किया गया। शिक्षा विभाग ने गाइडलाइन जारी की है। मास्क, हाथ धोने, साफ सफाई पर जोर दिया गया है। इसी के साथ खांसी बुखार वाले छात्रों पर निगरानी। बीमार व्यक्ति से दूरी की भी सलाह दी गई है। डीडीए अब गाइडलाइन की मॉनिटरिंग करेगी। प्रार्थना सभा से डिजिटल प्लेटफॉर्म तक चलेगा जागरूकता अभियान। ओणम पर रामराज कॉटन का एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से नाम दर्ज। 3,000 धोतियों से कोच्ची में बनाया 30 फीट व्यास का सबसे बड़ा पुक्कलम। इस परंपरा को आधुनिक अंदाज में पेश करने की पहल की गई है। रामराज कॉटन पुक्कलम को मिला एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का सम्मान। KR नागराजन ने कहा, धोती हमारी संस्कृति का हिस्सा है। मानसून के बीच चारधाम और हेमकुंड साहिब यात्रा को लेकर के श्रद्धालु में जबरदस्त उत्साह दिखाया जा रहा है। दोनों धामों पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड बन रहा है। हेमकुंड साहिब पहुंचने वाले श्रद्धालुओं ने इंतजामों पर खुशी भी जताई है। इस साल 10 अक्टूबर तक हेमकुंड साहिब के कपाट खुले रहेंगे। सावन की फुहारों के बीच अयोध्या के मठ, मंदिरों, फूलों, रंग बिरंगी सजावट से सजे स्वर्ण जड़ित हिंडोलों पर भक्त दर्शन श्रीराम और माता की जानकी के हो रहे हैं। हिमाचल में खौफनाक लैंडस्लाइड का मंजर सामने आया है। चंबा के भरमौर में भरभरा कर पहाड़ गिर गए, बाल बाल लोग बचे। सड़क पर मलबा गिरने से यातायात प्रभावित हुआ। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भूस्खलन से श्रीनगर बारामूला उरी हाईवे बंद, दोनों ओर वाहन फंसे। उड़ीसा के जाजपुर में बाढ़ के पानी में कार बह गई, फायर सर्विस स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया। बिलोर के गुड़ियाथम में किसानों की मांग, मोरथाना बांध से सिंचाई के लिए पानी छोड़ा गया, जिसकी तस्वीरें अब सामने आई है। गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद राजीव चौक सबवे भर चुका था, 12 से 15 फीट तक पानी भरा। 4 साल की बच्ची की डूबने से बाल बाल बच गई, प्रशासन की लापरवाही फिर से सामने आई। दिल्ली में लगातार हो रही बारिश से सफदरजंग अस्पताल में भी पानी भरा, मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वाराणसी से जल भराव पर यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। बारिश के पानी में बैठकर कार्यकर्ताओं ने जल निकासी व्यवस्था पर सवाल उठाए। वाराणसी के BHU अस्पताल परिसर में भारी जल भराव हुआ, मरीजों और तीमारदारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सोनीपत में बारिश में नगर निगम के दावे बह गए, जगह जगह जल भराव से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। जालना में पुल के अभाव में पुलिस वाहन को नाव से नदी पार कराने की मजबूरी, वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जयपुर के SMS अस्पताल में बड़ा हादसा हुआ, ट्रॉमा सेंटर में सीलिंग फैन गिरने से महिला के सिर में काफी चोट लग गई। काकीनाड़ा परिवार आत्महत्या मामले में नया मोड़ आया है, धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने के आरोपों से मामले ने अब नया रुख ले लिया है। कटक में जंगली सुअर के हमले से एक 14 साल का बच्चा बाल बाल बचा। कम्युनिटी नहर के अंदर जंगली सुअर ने बच्चे पर हमला बोल दिया था, जिससे उसकी जान बच गई। गुजरात के शामलाजी में घरेलू विवाद एक हत्या की वजह बन गया, पति ने कथित तौर पर कुल्हाड़ी से हमला कर पत्नी की हत्या कर दी। सिंगरौली में स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़ा सवाल उठा, सफाई मरीजों की इलाज करते करते पकड़ा गया, अस्पताल व्यवस्था पर भी सवाल उठे। वाराणसी में बारिश के बीच करंट लगने से अलग अलग हादसों में पिता पुत्र समेत 3 लोगों की मौत हो गई, अब इलाके में इससे हड़कंप मचा हुआ है। गुरदासपुर में रंगदारी मांगने के एक दिन बाद घर के बाहर गोलियां चली, CCTV फुटेज सामने आया। जालंधर में मिठाई की दुकान में घुसी तेज रफ्तार कार स्कूटी को जोरदार टक्कर मारते हुए सीढ़ियों से टकरा कर रुकी, घटना CCTV में कैद हुई। दिल्ली के ओखला औद्योगिक क्षेत्र इलाके में कपड़े की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, दमकल की गाड़ियों ने मशक्कत करके आग पर काबू पाया। बाराबंकी में लखनऊ से बहराइच जा रही कार में तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मारी, 4 की मौत, 1 घायल। श्रीगंगानगर में इलेक्ट्रिक स्कूटी में जोरदार धमाका हुआ, घर के बाहर खड़ी स्कूटी में आग लगी, 2 बच्चे बाल बाल बचे। सूरत में ट्रक चालक बाइक को दूर तक घसीटता रहा, बाइक सवार ने कूद कर अपनी जान बचाई, बाइक घसीटते हुए वीडियो वायरल हुआ।

0: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
1: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
0: असली शहद, असली स्वाद।

0: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
1: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
0: असली शहद, असली स्वाद।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है।
3: ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
4: ये है एक लेगेसी। मेरी शादी के कंगन सेनको से ही लिए थे,
5: क्योंकि ऐसी बारीक कारीगरी और कहां।
6: इसीलिए सेनको इंडिया का
7: अमंगस्ट मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड एज नॉमिनेटेड बाय द टीआरएफ।
8: अब मैं क्या ही बोलूं?
9: परिवार अटूट भरोसा।
10: बहुत टायर्ड हो गई।
11: No added sugar, preservative के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
12: लायन डेट नट बाइट्स।
13: आगे आगे।
14: अरे उधर उधर।
13: करेक्ट करेक्ट।
15: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
16: Let's go. The new BE6 Sportage.

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਟਾਪ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ
3: ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਕੋ ਲੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇ ਦਾਵੋ ਪਰ ਵਿਪਕਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਕੋ ਕਟਘਰੇ ਮੇ ਖੜਾ ਕਰਨੇ ਕਾ ਕਾਮ ਵਿਪਕਸ਼ ਕੇ ਲਿਏ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਕੇਸ ਸਕੂਲ ਨੇ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿਆ ਇਸੀ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਕੇ ਮਹੀਨੇ ਮੇ ਮੀਡੀਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਕੇਸ ਸਕੂਲ ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਛਪੀ ਥੀ बिना छत के स्कूल में पढ़ते इन बच्चों ने पंजाब सरकार को बगले झांकने को मजबूर कर दिया क्योंकि बिना छत पढ़ने को मजबूर इन बच्चों की व्यवस्था ने पंजाब सरकार की शिक्षा को लेकर दावों पर सवाल या निशान उठाया। इसके बाद पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने इस स्कूल को लेकर आश्वासन दिया लेकिन उनके आश्वासन के बावजूद 6 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है, स्कूल की इमारत अब तक नहीं बनी, स्कूल के बच्चे बाहर बरामदे में पढ़ने के लिए मजबूर है।
4: ये बिल्डिंग वैसे की वैसे पड़ी है, अभी तक यहाँ पर कोई ईंट तक नहीं लगी, इससे आप समझ सकते हैं कि सरकार की कथनी और करनी में कितना फर्क है। जबकि शिक्षा मंत्री ने कहा था कि बहुत जल्दी हम इसको पहले आधार पर लेके इसकी बिल्डिंग को खड़ा करेंगे, लेकिन सरकार की अब आप देख सकते हैं भी कहना क्या था और करना क्या था।
3: तो शिक्षा मंत्री के भरोसा देने के बावजूद बच्चे बदहाली में पढ़ने को लाचार और अब सवाल है कि इस स्कूल की तस्वीर फिर कब बदलेगी। इस पर स्कूल के इंचार्ज ने आज तक को बताया कि फंड आने के बाद ही इमारत का काम शुरू होगा। भारत और पाकिस्तान की सीमा के पास फाजिलका में बस्ती हुजूर सिंह वाले के इस प्राइमरी स्कूल की बदहाली का मुद्दा 6-7 महीने पहले उठा, अब बस फर्क इतना है कि जर्जर इमारत को तोड़ दिया गया है लेकिन

0: तक स्कूल की नई इमारत नहीं बनी, जिस वजह से बच्चे अब भी एक स्कूल और वरांडे में पढ़ने के लिए विवश, जबकि पंजाब के शिक्षा मंत्री ने भरोसा दिया कि बहुत जल्द स्कूल की इमारत बना दी जाएगी। लेकिन अकेले से स्कूल ने शिक्षा को लेकर अपनी पीठ थपथपाने वाली पंजाब सरकार की कथनी और करनी में अंतर दिखा दिया। नौबत यह आ चुकी है कि इस जर्जर स्कूल में पढ़ने से बच्चे कतराने लगे। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह कि जब इस स्कूल के बारे में सरकार के मंत्री को याद दिलाया गया तो उन्होंने इसे विरोधियों की साजिश बताकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना चाहा।
1: जो एक फर्जी वीडियो जो पुरानी थी उसको लेके भारतीय जनता पार्टी कुछ लोगों ने ट्वीट किया था, तो वो तो ऑलरेडी बिल्डिंग बन चुकी है। वो पुरानी फर्जी वीडियो के आधार पे भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार को बदनाम करने का यत्न कर रही है। हमारी तो पंजाब में हमने सबसे ज्यादा पैसा जो है वो एजुकेशन पे, हेल्थ पे खर्च किया है।
0: पहले एक मंत्री ने पंजाब के इस स्कूल की हकीकत से हुई फजीहत के बाद जल्द कायाकल्प का वादा किया, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो इस बारे में पंजाब सरकार के मंत्री से पूछा गया, उन्होंने इसे पुराना वीडियो बताकर कन्नी काट ली। लेकिन सवाल है कि सरकार अपना वादा कब पूरा करेगी, क्योंकि वादा किए 6 से 7 महीने बीत चुके हैं। स्कूल प्रशासन की तरफ से बताया गया कि विभाग को लिखकर पहले ही भेज दिया गया था और फंड मिलते ही इमारत बनाने का काम शुरू होगा। चंडीगढ़ से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: युवाओं को नौकरी, युवाओं का अंदाज। योगी आदित्यनाथ की यह सेल्फी उन युवाओं के साथ है जिनको आज उन्होंने नियुक्ति पत्र सौंपे। जब देश का जेएनजी टॉप ट्रेंडिंग में है, परीक्षाओं और सरकारी भर्तियों में सिस्टम को सुधारने की मांग पर सड़कों पर उतर रहा है, तब योगी आदित्यनाथ की यह सेल्फी सामने आई है। मौका था 3,446 टेक्निकल असिस्टेंट और 126 मंडी सचिवों की नौकरी का नियुक्ति पत्र बांटने का। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ के निशाने पर आई समाजवादी पार्टी। यूपी के युवाओं को लेकर 2017 से पहले के हाल पर योगी का दावा यह था,
1: 17 के पहले की परिपाटी थी कि नियुक्ति का विज्ञापन निकलता था, चाचा भतीजे की जोड़ी और महाभारत का पूरा खानदान फिर वसूली के लिए प्रदेश भर में निकल पड़ता था, नौजवान भटकता रहता था, परिणाम नहीं आता था और अंततः माननीय न्यायालय को कोर्ट में स्टे लगाना पड़ता था।
0: योगी आदित्यनाथ का दावा है कि कर्फ्यू, दंगा, उपद्रव और भ्रष्टाचार यूपी की पहचान बन चुके थे। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता था, लेकिन 9 साल में स्थिति ऐसी बदली है कि यूपी सरकार अगले 6 महीनों में 1,00,000 नौकरियां दे सकेगी।
1: नोट करिए, अगले 6 महीने के अंदर 1,00,000 नौजवानों को फिर सरकारी नियुक्ति पत्र अलग अलग स्टेज में हर सप्ताह उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। 1,00,000 सरकारी नियुक्ति पत्र हम देने जा रहे हैं। अनुमान करिए 1,00,000 यूपी के अंदर कभी ये कल्पना होती थी? यहां हम 6 महीने के अंदर ही 1,00,000 नौजवानों को सरकारी नियुक्ति पत्र दे दिए, सारी परीक्षाएं पूर्ण हो गई।
0: योगी आदित्यनाथ यूपी के युवाओं को बेहतर भविष्य का ये भरोसा ऐसे समय में दे रहे हैं जब पहले दिल्ली, फिर झारखंड और अब बिहार में युवाओं का आक्रोश सामने दिखा है। 2027 के चुनाव के मद्देनजर युवाओं पर अखिलेश यादव और मायावती की भी नजरें हैं। विपक्ष योगी सरकार में युवाओं के भविष्य पर सवाल उठाने में पीछे नहीं।
2: 2017 में 2026 के बीच में ये 1,00,000 नौकरियां क्यों नहीं क्रिएट हुई थी? आज जब पूरे देश में युवाओं का, छात्रों का भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक गहरा आक्रोश, असंतोष व्याप्त है सड़कों पर, 1,00,000 नौकरी का ऐलान कर रहे हो, 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष वाला क्या हुआ मुख्यमंत्री जी? पूरी उत्तर प्रदेश में जो पक्की नौकरियां थी, जो बैकलॉग्स हैं, आज तक नहीं भरे।
3: जब वो नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, बच्चे उनसे पूछ रहे हैं कि नौकरियां कहाँ हैं, तो उन्हें 10 साल पहले का चाचा भतीजा याद आ रहा है, साबू याद आ रहा है, विक्रम बेताल याद आ रहा है। ये विक्रम बेताल, चाचा भतीजा याद करने से क्या नौकरी मिल जाएगी बच्चों को? योगी आदित्यनाथ जी, 69,000 शिक्षक सुप्रीम कोर्ट में आपने लटका रखे, 68,500 आपने कोर्ट में लटका रखे, जिनको आपने नौकरियां दे चुके हैं, पुरानी सरकारें दे चुके, उनको भी आपने लटका रखा है।
0: चुनाव में युवाओं के असर के मद्देनजर राजनीति संजीदा हो चली है। हाल ही में स्कूलों की समस्याओं को लेकर जेएन अल्फा का प्रदर्शन भी यूपी में देखने को मिला था। इसके बाद अब योगी सरकार ने प्राइमरी से लेकर 8वीं तक के स्कूलों के पुनर्निर्माण और मरम्मत के लिए 604 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया है। बेसिक शिक्षा विभाग ने 302 करोड़ रुपयों की पहली किस्त जारी भी कर दी है। साफ है कि शिक्षा और नौकरी के बुनियादी अधिकार की मांगों पर राजनीति में एक हलचल तो नजर आने लगी है। आज तक ब्यूरो

0: राहुल गांधी के मनुस्मृति पर बयान के जवाब में बीजेपी ने जारी किया हिजाब वाला वीडियो। नेता प्रतिपक्ष पर साधा निशाना, पूछा क्या पितृ सत्ता के खिलाफ लड़ाई चुनिंदा धर्म पर आधारित है। पटना में एसएससी परीक्षा में देरी और शिक्षक भर्ती नियम के खिलाफ प्रदर्शन। स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के छात्रों की पुलिस से झड़प में दो जवान घायल। किसानों ने टाउनशिप का मुद्दा उठाया। योगी सरकार के ताबड़तोड़ फैसले, 25 लाख युवाओं को मुफ्त टैबलेट देने की तैयारी। 3400 युवाओं को दी नियुक्ति पत्र। 60 से ज्यादा उम्र की महिलाओं को मुफ्त बस सेवा। दिल्ली में आज महिलाओं को मिलेगी 2500 रुपए की पहली किस्त। लक्ष्मी योजना के तहत सीएम रेखा गुप्ता जारी करेंगी राशि। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने किया था वादा। भारत चीन सीमा मुद्दे पर एनएसए अजीत डोभाल ने बीजिंग में की बैठक। सीमा पर शांति स्थिरता बनाए रखने पर जोर। 3 निर्धारित मार्गों से व्यापार जारी रखने पर चर्चा।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: के साथ पूजा। सुबह के 8 बजे हैं और अब वक्त हो गया है खास बुलेटिन सुपर 8 का। इस बुलेटिन में बात करेंगे सबसे पहले बांग्लादेश की, जहां पर हिंदू परिवार की हत्या के बाद कैसे तारिक रहमान की सरकार गिर गई है। साथ ही आपको ये भी दिखाएंगे कि रक्षाबंधन से पहले दिल्ली की रेखा सरकार बेटियों को क्या कुछ गिफ्ट देने जा रही है। बताएंगे आपको कि यूपी में योगी सरकार ने महिलाओं को क्या गिफ्ट दिया है। और बात होगी यूपी में इंटर्न डॉक्टर्स की भी, क्योंकि उनको एक बड़ी सौगात मिली है। क्या वो बड़ी सौगात है, डिटेल के साथ आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि अखिलेश यादव और योगी सरकार के बीच अब किस बात पर जंग छिड़ चुकी है। साथ ही आपको ये बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति बैठक से क्या बड़े ऐलान किए। और बात होगी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सीडीएस अनिल चौहान ने क्या दावा किया है। आखिर में चीनी की कड़वड़ाहट के बाद कैसे प्याज के दाम लोगों को रुला रहे हैं, ये भी आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश में हिंदू परिवार की हत्या को लेकर तारिक रहमान की सरकार घिर गई है। दरअसल हत्या और बलात्कार के आरोपों को लेकर बांग्लादेश में हिंदू परिवार प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि हत्या में ज्यादा लोग शामिल थे, जिन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हत्या गला घोटकर की गई, लेकिन महिलाओं के साथ बलात्कार के साक्ष्य नहीं। लेकिन लोगों का आरोप जानबूझकर गैंगरेप को छुपाया जा रहा है। पुलिस विरोध के बाद जांच को पुलिस से हटाकर डिटेक्टिव ब्रांच को सौंपा भी गया है। और साथ ही ये जो पूरा घटना हुआ है ये रंगपुर इलाके में है, जहां पर स्कूल शिक्षक गणपति चक्रवर्ती, उनकी पत्नी प्रीति लता, बेटी, बेटे का शव शनिवार को उनके घर से बरामद हुआ था। पुलिस ने मामला दर्ज तो कर लिया है, पुलिस की जांच को लेकर लगातार विरोध वहां शुरू हो गया है। और हमारे सहयोगी आशुतोष जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। आशुतोष, क्या अपडेट है, ये हिंदू परिवार के साथ क्या बर्बरता हुई है?
2: शनिवार को जब रंगपुरी का इलाका है, इन 4 लोगों का शव मिला था, एक ही घर में बरामद हुई, तो सबसे पहले ऐसा लगा कि कोई आम वारदात है और उसके बाद जांच हुई। लेकिन धीरे धीरे इसके बहुत सारे तथ्य सामने आए, क्योंकि जो प्राथमिक रिपोर्ट कहती है कि इनका गला घोट करके हत्या की गई, लेकिन जब इनका शव मॉर्चुरी से निकाला गया तो मॉर्चुरी के कर्मचारी का एक बयान सामने आता है कि शरीर पर जो 2 महिलाएं, उनकी बेटी और उनकी पत्नी, उस पर सीमन का सैंपल भी मिला था। तब जाकर के जब आक्रोश उठा कि एक तो लगातार नई सरकार बनी और 6 महीनों में भी वो हिंदुओं के खिलाफ हिंसा नहीं रुकी जो लगातार शेख हसीना की सरकार के जाने के बाद हो रहा था। एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या हो जाती है, अचानक से घर में बिजली कट हो जाती है और उसके बाद ये पूरी वारदात होती है। और जब मॉर्चुरी जो शवगृह है उसके कर्मचारी का बयान रिकॉर्ड किया जाता है, तब वो कहता है कि सीमन के सैंपल में। इसके बाद हिंदू संगठन सड़कों पर है, आक्रोश में है, और अगर उस आक्रोश में देखिए कितना दम था, उसके बाद सरकार झुकी, रंगपुर पुलिस से मामले को हटा करके उसे डिटेक्टिव ब्रांच को दिया गया। इस मामले में 2 गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन अब स्थानीय लोगों का, हिंदू संगठनों का आरोप यह है कि दरअसल इसमें ज्यादा लोग शामिल थे, ये गैंगरेप की बात है, और पुलिस प्रशासन गैंगरेप की जो बात है उसे छुपाने की कोशिश कर रहा है, और इसी के साथ में जो और लोग इसमें शामिल है उनको भी बचाने की कोशिश हो जा रही है। इतना ही नहीं, ढाका, चिटगांव, रंगपुरी, इन इलाकों के प्रदर्शन के साथ साथ हिंदू संगठनों ने
0: पुलिस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। वहीं दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कई खुलासे किए हैं। दरअसल उन्होंने ऑपरेशन की रणनीति, टारगेट चयन और तीनों सेनाओं के बीच तालमेल की जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि इस बार भारतीय सेना ने लोअर एयर स्पेस का इस्तेमाल कर सरप्राइज और सटीक हमले की रणनीति अपनाई। साथ ही कहा है कि भारत का ड्रोन मिशन टारगेट ना मिलने के कारण किराना हिल्स की पहाड़ियों से टकरा गया था, जिसकी वजह से हिल से धुआं उठा होगा। शायद टारगेट ना मिलने से ड्रोन टकरा गया होगा। अनिल चौहान का यह कहना है, किराना हिल्स को लेकर लगातार जो अटकलें लगाई जा रही थी अब वो क्लियर हो चुकी है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान का यह बयान सामने आया है।
3: At occasions has been asked whether Kirana Hills were hit or not. That's where their nuclear facilities are there. And with Bharatit had rightly clarified that we did not target Kirana Hills. I can maybe give a kind of an explanation. Before those strikes, we had sent in a lot of loiter ammunition at Sargodha. And Kirana Hills is about 10 kilometers north of Sargodha. Once the Pakistanis had picked up the phone and they said they wanted to talk at about 10, the air chief had asked me that whether he should strike Sargodha. I said, go ahead. And then he also, I said, please identify two more targets. So he had, one of the targets he identified was Sukadu. But unfortunately, we gave a yes, but after some time the weather was bad over Sukadu. But they had to change over to Bulhari. Now from Sukadu to Bulhari, which is near Karachi.
0: मंजीत नेगी जुड़ गए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। मंजीत, जो लगातार किराना हिल्स को लेकर अटकलें थी, अब अनिल चौहान का यह बयान सामने आया गया है।
4: बिल्कुल, ये जब ऑपरेशन सिंदूर एक साल पहले जब हुआ था, तब से खासतौर से किराने हिल, जहां पर पाकिस्तान के परमाणु हथियार हैं, उसको लेकर सवाल उठते रहे। हालांकि जनरल चौहान ने जो भारतीय वायुसेना के एयर ऑपरेशन डीजी एयर ऑपरेशन है, उनकी बात को आगे बढ़ाते होगा कि भारतीय सेना का टारगेट किराना हिल नहीं था, लेकिन उसके पास जो स्कार्दू है और सरगोधा है, जहां पर भारतीय वायुसेना ने लॉटरिंग अम्यूनिशन का इस्तेमाल किया, स्मार्ट बॉम्ब के जरिए हमले को अंजाम दिया। उस दौरान जो लॉटरिंग अम्यूनिशन का कुछ हिस्सा है वो, क्योंकि स्कार्दू से और सरगोधा से करीब 10 किलोमीटर के आसपास किराना हिल की पहाड़ियां हैं, जहां पर पाकिस्तान के परमाणु हथियार माने जाते हैं रखे हुए हैं, वहां पर जो धुआं उठने की बात थी वो लॉटरिंग अम्यूनिशन की वजह से थी। हालांकि जनरल चौहान इस बात को सीधे तौर पर कहा कि भारतीय वायुसेना का सीधा टारगेट किराने हिल नहीं था, लेकिन क्योंकि स्कार्दू और सरगोधा को टारगेट किया गया था, खासतौर से सरगोधा को टारगेट किया गया था लॉटरिंग अम्यूनिशन के जरिए, उस दौरान जरूर कुछ जो स्मार्ट बम के हमले थे वो उसके आसपास हुए थे, जिसकी वजह से ये बातें सामने आई है।
0: चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मंजीत तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वहीं रक्षाबंधन से पहले दिल्ली सरकार महिलाओं को एक बड़ा तोहफा देने जा रही है। आज से दिल्ली में लक्ष्मी योजना की शुरुआत होगी। जी हां, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तालकटोरा स्टेडियम में लाभार्थी महिलाओं को सर्टिफिकेट देकर योजना की शुरुआत करेंगी। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की सहायता मिलेगी। हालांकि खाते में राशि 1 सितंबर से आएगी। सरकार के मुताबिक 17 लाख से ज्यादा महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। चलिए, अब बात कर लेते हैं सीएम योगी के बड़े ऐलान की। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 24 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इनमें सबसे चर्चित फैसला 60 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं को राज्य परिवहन निगम की बसों में आजीवन मुफ्त यात्रा की सुविधा देने का रहा। रक्षाबंधन से पहले आए इस फैसले को महिलाओं के लिए बड़ी सौगात माना जा रहा है। योगी कैबिनेट ने इस फैसले को मंजूरी दी है। महिलाओं के लिए एक बड़ी सौगात ये बनकर सामने आया है। ये फैसला रक्षाबंधन से पहले ये फैसला लिया गया है। लोकमाता अहिल्याबाई मातृ शक्ति योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत बसों में आजीवन मुफ्त यात्रा की सुविधा देने की बात कही जा रही है राज्य परिवहन निगम की बसों में, और ये 60 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं को ही इसका फायदा मिलने वाला है। तो कुल 24 प्रस्तावों को योगी कैबिनेट में मंजूरी दी गई है, जिनमें से एक यही है कि 60 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं को राज्य परिवहन निगम की बसों में आजीवन मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। यूपी में मेडिकल इंटर्न्स का वेतन भी बढ़ाया गया है, ये फैसला लिया गया है। एमबीबीएस बीडीएस इंटर्नशिप वेतन दोगुना से ज्यादा हो गया है। तो रक्षाबंधन से पहले कई बड़े फैसले लिए गए हैं। योगी कैबिनेट में मेडिकल इंटर्न्स को हर महीने 25,000 रुपए वेतन देने की बात कही जा रही है। तो इस कैबिनेट की बैठक में वो कौन से प्रस्ताव है जिनको मंजूरी दी गई है, जो एमबीबीएस के इंटर्न्स हैं उनके लिए भी फैसला लिया गया है, महिलाओं के लिए भी फैसला लिया गया है, क्या बड़ी सौगात मिली है समझिए आप, जो 60 साल से ज्यादा की महिलाएं हैं उनको सरकारी बसों में अब मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई है। 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को ये फायदा मिलेगा, तो महिलाओं के लिए एक बड़ी सौगात इस बैठक में हुई। वहीं गंगा एक्सप्रेसवे का हरिद्वार तक विस्तार किया जाएगा। योगी कैबिनेट की बैठक में बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। सुल्तानपुर में लॉजिस्टिक्स क्लस्टर भी बनेगा और साथ ही युवाओं को 25 लाख टैबलेट भी मुफ्त में दिए जाएंगे योगी सरकार द्वारा। तो ये बड़े फैसले कल लिए गए। एमबीबीएस बीडीएस इंटर्नशिप वेतन में भी बढ़ोतरी कर दी गई है उन छात्रों के लिए, और कहा गया है कि 25,000 रुपए तक इंटर्नशिप में जो स्टाइपेंड है वो दिया जाएगा, और साथ ही 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को भी फायदा होगा क्योंकि बस यात्रा अब उनकी फ्री होगी। और वहीं अगली खबर की बात कर लेते हैं। पटना में बीपीएससी TRE4 को लेकर छात्रों का गुस्सा सड़क पर दिखाई दे रहा है। दरअसल अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने सीएम हाउस की ओर कूच किया। कल पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो जमकर वहां पर हंगामा हुआ। वाटर कैनन, लाठीचार्ज तक की नौबत वहां आ गई। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच झड़प में कई लोग घायल भी हुए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, कई छात्रों को हिरासत में भी कर लिया गया। सीएम हाउस का घेराव के लिए छात्र पहुंचे थे। छात्र लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस बीच ये झड़प।
5: बिहार के मुखिया सम्राट चौधरी जी से मिलवाया जाए, इसलिए क्योंकि इन लोग छोटे छोटे पदाधिकारियों से वार्ता करवा देते हैं और बात खत्म हो जाता है। हमको अगर वार्ता करवाया जाए तो बजाबता ऑफिशियल नोटिस जारी किया जाए, तब लोग जो है हम लोग धरना खत्म हो जाएंगे।
6: क्या बोले, बार बार पेपर लीक हो रहा है, बीपीएससी में भ्रष्टाचार है।
7: जब मैं यहाँ पहुँचा तो मैंने कहा कि साहब मैं 9 दिन से भूखा हूँ, ये भारत का संविधान है, मुझे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का आजादी देता है, सबके हाथों में तिरंगा है, काला पट्टी है।
0: तो बिहार में छात्रों के प्रदर्शन पर सियासत भी तेज हो गई है। राज्य के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने राहुल गांधी के साथ साथ तेजस्वी यादव पर छात्रों के मुद्दे पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है।
8: जो जंतर मंतर पर उन लोगों ने युवाओं को गुमराह किया, दिग्भ्रमित करके और एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया, उन्हें लगता है कि देश के युवाओं को हम जब चाहेंगे तब गुमराह कर लेंगे, और इसके कारण वो युवाओं के बीच में जा रहे हैं। छात्रों के लगभग सभी मांगों को हम लोगों ने पूरी की है। जो छात्र कुछ और सरकार को बताना चाहते हैं उसके लिए संवाद के सारे द्वार खुले हुए हैं। छात्र आए, बात करें, अपने समस्या का समाधान करें, सरकार उनकी है। लेकिन तेजस्वी जी अपनी राजनीति को चमकाने के लिए अगर प्रायोजित कार्यक्रम रख रहे हैं तो ये बात बिहार की जनता भी समझती है और छात्र भी समझते हैं, इसीलिए बहुत सारे छात्रों का समर्थन उन्हें नहीं मिला और शायद वो हो सकता है इस आंदोलन से भाग खड़े हों।
0: वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की 53वीं बैठक में 9 राज्यों में चल रहे 6 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की समीक्षा की है। इन परियोजनाओं की कुल लागत 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। बैठक में पीएम मोदी ने परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करने और साथ ही काम में देरी को रोकने और विभिन्न विभागों और एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया है। दरअसल इस बैठक में कृषि क्षेत्र में तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए भी कहा गया। 30,000 करोड़ के 6 प्रोजेक्ट्स की को लेकर समीक्षा बैठक की गई। वहीं रेलवे, सड़क और बिजली से जुड़े प्रोजेक्ट को लेकर इसमें बात की गई है, बड़ा फोकस इस पर रहा। 9 राज्यों में ये प्रोजेक्ट्स फैले ये कहा गया है। वहीं एग्रीस्टैक में AI के उपयोग पर भी इस बैठक में जोर दिया गया है। साथ ही आपको ये बता दें कि प्रोजेक्ट में देरी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सख्ती बरती जाएगी, और इसके साथ ही बढ़ते साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट के मामलों में भी लोगों में व्यापक जागरूकता फैलाने की जरूरत है, इसको लेकर भी चर्चा की गई है। आगे बढ़ते हुए हिजाब पर एक बार फिर से सियासत गर्माती नजर आ रही है। एक ओर हिजाब पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने भी आपत्ति जताई है। ओवैसी ने हाईकोर्ट के आदेश को इस्लाम पर सीधा हमला करार दिया, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने राहुल गांधी का पुराना हिजाब वाला वीडियो जारी करते हुए उन पर महिलाओं की आजादी को लेकर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है।
9: आज इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट आया, हमारी एक बेटी स्कूल में हिजाब पहन रही थी, हिजाब पहन के कोर्ट ने कह दिया कि हिजाब आप नहीं पहन सकते। मैं इस हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ हूं, इससे एग्री नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि साबरीमाला केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट रिजर्व फॉर जजमेंट है। अलाहाबाद हाई कोर्ट के फाजिल जजेस को अपना जजमेंट रोकना चाहिए था। जब सुप्रीम कोर्ट इज सीज्ड ऑफ दैट मैटर, नाउ जजेस ये डिसाइड कर रहे हैं। क्या डिसाइड कर रहे हैं कि एसेंशियल क्या है, व्हाट इज एसेंशियलिटी, व्हाट इज एसेंशियल, और फिर क्या रिलीजियस जो हमारी इबादतें हैं वो भी प्रोटेक्ट करेंगे नहीं करेंगे। और आज का फैसला ये भारत की आईन की दफा 25 और 19 के खिलाफ है। मैं कपड़े पहनता हूं, सिख हमारे बेटियां और हमारे बच्चे पहनते हैं। आप होते कौन है इस्लाम के सेंचुअलिटी को डिसाइड करने वाले?
10: सर, अगर आप सत्ता में आएंगे, अगर आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो आपका क्या नजरिया होगा कि एक औरत अबाया और हिजाब पहनकर फ्री नहीं फील करती है? क्या अबाया और हिजाब उतार
11: देखिए, मेरी व्यू है कि जो महिला पहनना चाहती है वो उसके ऊपर है। अगर वो अबाया पहनना चाहती है, कुछ और पहनना चाहती है, वो उसका बिजनेस है, उसका काम है, उसको अलाउ करना चाहिए। मेरी तो ये राय है।
0: वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस की राजनीति देश को कमजोर करने वाली है।
12: भारत के बाहर जाते हैं तो भारत का अपमान करते हैं। भारत की सेना जब सीमाओं पर दुश्मनों के खिलाफ लड़ती है तो आप भारत की सेना के जवानों से प्रमाण मांगते हैं। आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई में देशद्रोही तत्वों को आप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित करते हैं। अयोध्या में प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर आपकी पार्टी प्रश्न खड़ा करती है और लोकतंत्र के प्रति आपकी निष्ठा क्या है, ये तो इस देश ने 1975 में आपातकाल की काली साया को देखा है।
0: और अब खबर भारत चीन सीमा विवाद से जुड़ी हुई। दरअसल सीमा पर तनाव के बीच कूटनीतिक हलचल तेज है। एनएसए अजय डोभाल और चीनी विदेश मंत्री के बीच सीमा मुद्दे पर एक अहम बातचीत हुई है। अब नजर ब्रिक्स समिट पर है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की संभावित मुलाकात पर सबकी नजर रहेगी।
13: भारत चीन सीमा विवाद के बीच बातचीत का रास्ता। भारत चीन में क्यों बढ़ी कूटनीतिक हलचल? क्या डोभाल वांग वार्ता से सीमा विवाद पर बनेगी बात? क्या मोदी शी जिनपिंग की मुलाकात से रिश्तों में आएगी नई गर्माहट? तस्वीरें चीन के बीजिंग की हैं, जहां भारत के एनएसए अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच करीब 3 साल बाद सीमा विवाद पर शीर्ष स्तर की बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने विशेष प्रतिनिधियों की 25वीं बैठक की सह अध्यक्षता की। वहीं इस अहम बातचीत में एलएसी पर शांति और स्थिरता बनाए रखने पर जोर रहा। सीमा विवाद को लेकर चर्चा हुई, साथ ही सीमा तय करने की प्रक्रिया की दिशा में आगे बढ़ने पर बात हुई। दोनों देशों के बीच रिश्तों को सामान्य बनाने की कोशिशों पर भी मंथन हुआ। बैठक से पहले एनएसए अजीत डोभाल ने चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से भी मुलाकात की। ब्रिक्स समिट से पहले ये बातचीत बेहद अहम मानी जा रही है। 12 और 13 सितंबर को दिल्ली में ब्रिक्स समिट होना है। ऐसे में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत यात्रा की संभावना जताई जा रही है। अगर शी जिनपिंग भारत आते हैं तो पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच मुलाकात पर भी सबकी नजर रहेगी। भारत और चीन के बीच यह डिप्लोमेटिक पुश काफी फायदेमंद माना जा रहा है। अब देखना होगा कि सीमा पर शांति और स्थिरता की यह कोशिश दोनों देशों के रिश्तों को किस दिशा में ले जाती है। आज तक ब्यूरो।
0: तो वहीं दिल्ली एनसीआर में बारिश आफत बनकर बरसी है। कई इलाकों में सड़कें जलमग्न हो गई, अंडरपास तालाब में तब्दील हो गए हैं और जगह जगह पर लंबा लंबा ट्रैफिक जाम देखने को मिला। दिल्ली से गुरुग्राम तक और नोएडा तक लोगों को जलभराव और जाम की दोहरी मार झेलनी पड़ी है।
13: घुटनों तक पानी में डूबी सड़कें, बारिश में डूबी सड़कें, दरिया बना शहर, बारिश का रौद्र रूप, कुदरत का कहर, तस्वीरें दिल्ली एनसीआर की हैं, जहां बीते दो दिनों से बारिश अपना रौद्र रूप दिखा रही है। तस्वीरें दिल्ली के फिरोज शाह रोड की हैं, जहां आफत की बारिश ने सड़क किनारे बने घरों को भी नहीं बख्शा। जलभराव का आलम ऐसा रहा कि बारिश का पानी घरों के अंदर तक पहुंच गया। अब देखिए दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन के हालात। यहां सड़क की जगह पानी ही पानी नजर आया। पूरा इलाका बारिश के पानी से लबालब है। लोग इसी पानी के बीच आने जाने को मजबूर दिखे। ये तस्वीरें दिल्ली के महिपालपुर इलाके की। मानसूनी आफत ने वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दिया। हाईवे पर भीषण ट्रैफिक जाम लग गया। दिल्ली गुरुग्राम रूट पर गाड़ियां घंटों फंसी रहीं। दिल्ली के पॉश इलाके भी बारिश की मार से अछूते नहीं रहे। देखिए सीपी की पार्किंग में किस तरह पानी भर गया। खड़ी गाड़ियां और आने जाने वाले लोग जलभराव से परेशान नजर आए। वहीं यह तस्वीरें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की हैं, जहां घुटनों तक भरे पानी के बीच भी लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए आने जाने को मजबूर नजर आए। इस बीच साइबर सिटी कहे जाने वाले गुरुग्राम में नाले और सड़क में फर्क करना मुश्किल हो गया है। सैलाबी आफत के बीच एक मासूम की बिलखती तस्वीर भी सामने आई। ये स्कूली बच्चे स्कूल से घर लौट रहे थे, लेकिन सड़कों पर इतना पानी भर गया कि स्कूल बस बेबस होकर रास्ते में ही बंद हो गई। बच्चे बस से नीचे उतरे और रोते बिलखते नजर आए। अगली तस्वीर नोएडा की है। सेक्टर 94 में जोरदार बारिश के बाद चारों तरफ बस पानी ही पानी नजर आया। मानसून की मार के साथ साथ दिल्ली एनसीआर के लोग लंबे जाम की दोहरी मार झेलने को मजबूर है। दिल्ली एनसीआर में मानसूनी बारिश ने कई इलाकों को जलाशय में तब्दील कर दिया है। सड़कें डूब गईं, गाड़ियां रेंगने लगी और जलभराव के बीच लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। आज तक ब्यूरो।
0: चलिए इसी के साथ सुपर एट में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो। इन एसोसिएशन विद
14: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: मैं करता हूँ ना,
3: मैं करूँगा।
4: ओए कार्ड्स की दुकान, इतने कार्ड्स कौन रखता है?
2: ये ग्लोबल लग्जरी होटल्स के लिए, ये स्टे स्पा फाइन डाइनिंग के लिए, वर्ल्ड क्लास गोल्फ प्रिविलेजेस के लिए।
4: पंजाब नेशनल बैंक का लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड लो एंड गेट अनलिमिटेड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस, अनलिमिटेड स्टे, डाइनिंग एंड मच मोर।
2: क्रिकेट में आप और बैंकिंग में PNB दोनों ही चैंपियन है।
4: PNB लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड, PNB मेरा अपना बैंक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: What your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
3: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है।
4: ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
5: ये है एक लेगेसी। मेरी शादी के कंगन सेनको से ही लिए थे,
6: क्योंकि ऐसी बारीक कारीगरी और कहां।
7: इसीलिए सेनको इंडिया का अमंगस्ट मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड एज नॉमिनेटेड बाय द TRA।
4: अब मैं क्या ही बोलूं?
8: परिवार अटूट भरोसा।
9: अर्जुन कुछ भी पढ़े मेमोरी में नहीं रहता।
10: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स बादाम पिस्ता काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
11: लायन डेट नट बाइट्स।
12: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
13: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
14: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
15: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
16: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
17: I wake up wearing someone else again.

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: इन एसोसिएशन विद
1: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: राहुल गांधी के मनुस्मृति के बयान के जवाब में बीजेपी ने जारी किया हिजाब वाला वीडियो। नेता प्रतिपक्ष पर साधा निशाना, पूछा क्या पितृसत्ता के खिलाफ लड़ाई चुनिंदा धर्म पर आधारित। योगी सरकार के ताबड़तोड़ फैसले, 25 लाख युवाओं को मुफ्त टैबलेट देने की तैयारी। 3400 युवाओं को दी नियुक्ति पत्र, 60 से ज्यादा उम्र की महिलाओं को मुफ्त बस सेवा। दिल्ली में आज महिलाओं को मिलेगी 2500 रुपए की पहली किस्त, लक्ष्मी योजना के तहत सीएम रेखा गुप्ता जारी करेंगी राशि। भारत चीन सीमा मुद्दे पर एनएसए अजीत डोभाल ने बीजिंग में की बैठक, सीमा पर शांति स्थिरता बनाए रखने पर जोर, 3 निर्धारित मार्गों से व्यापार जारी रखने पर भी चर्चा। इंडिया टुडे राउंड टेबल कर्नाटक कॉन्क्लेव में, दिन भर सजेगा दक्षिण के दिग्गजों का मंच, सीएम डीके शिव कुमार समेत तेजस्वी सूर्या, प्रियांक खड़गे समेत कई नेता रहेंगे मौजूद।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक में 6 अहम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की समीक्षा की, 9 राज्यों से जुड़ी परियोजना की प्रगति और अड़चनों पर चर्चा। पीएम मोदी ने देशवासियों को ईद मिलाद उन नबी की शुभकामनाएं भी दी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अवसर समाज में एकजुटता और खुशियां बढ़ाने का। डोभाल वांग यी की 25वीं वार्ता में सीएम मुद्दे पर चर्चा, साथ ही सीमा मुद्दे पर चर्चा हुई, भाई भारत चीन ने सीमा विवाद के समाधान और एलएसी पर शांति बनाए रखने पर दिया जोर। 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन तेज, छात्रों ने टीआरई 4 से पीटी मेंस हटाने की भी मांग उठाई। पंजाब के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों ने अपनी मांगों को लेकर बंद का आह्वान किया, सरकार पर लंबित मांगों के समाधान के लिए दबाव बनाने की तैयारी। दिल्ली पहुंच रही 800 मीट्रिक टन प्याज की खेप, कीमतों पर मिलेगी राहत, कांद्रा एक्सप्रेस से प्याज दिल्ली लाई जाएगी। पहली खेप चेन्नई, मदुरई और गुवाहाटी भेजी जाएगी, सरकारी बिक्री के जरिए लोगों को सस्ती प्याज उपलब्ध कराने की तैयारी। सरकार ने जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर को निजी कंपनियों को लीज पर देने की मंजूरी दी, फैसले को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार पर साधा निशाना। जेपीएनआईसी लीज विवाद पर अखिलेश का सरकार पर तंज, अखिलेश यादव बोले कि अब बस सरकार को ठेके पर देना बचा। अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से अंतरिम राहत, पुलिस को पूछताछ या कार्रवाई से 48 घंटे पहले नोटिस देना होगा, कोर्ट के आदेश से बनर्जी को फिलहाल राहत मिली। बांग्लादेश के रंगपुर में हिंदू परिवार की हत्या से बवाल, स्कूल शिक्षक गणपति चक्रवर्ती, उनकी पत्नी और 2 बच्चों के शव घर से बरामद हुए, साथ ही हिंदू समुदाय में आक्रोश अब बढ़ गया है। मामले की जांच पर विरोध के बाद इसे पुलिस से हटाकर डिटेक्टिव ब्रांच को सौंप दिया गया है, स्थानीय लोगों का आरोप है कि हत्या में शामिल अन्य आरोपियों को बचाया जा रहा। गैंगरेप के आरोपों ने मामले को और भी गंभीर बनाया, फॉरेंसिक रिपोर्ट में महिलाओं के साथ दुष्कर्म की बात कही गई, वहीं स्थानीय स्तर पर पुलिस पर तथ्यों को छिपाने के आरोप। 2 आरोपी गिरफ्तार, जांच का दायरा बढ़ाने की मांग, लोगों का दावा है कि हत्याकांड में 2 से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। बांग्लादेशी दूतावासों के बाहर प्रदर्शन की तैयारी, हिंदू संगठनों ने परिवार की हत्या के विरोध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाज उठाने का ऐलान किया। राहुल गांधी पर बीजेपी का हमला, हिजाब अबाया को लेकर पितृसत्ता के खिलाफ उनके रुख पर उठाए गए सवाल। बीजेपी ने पूछा महिलाओं के सशक्तिकरण पर धर्म के आधार पर अलग अलग मानदंड क्यों, राहुल गांधी के फ्रीडम ऑफ चॉइस वाले रुख पर साधा निशाना। चीनी की बढ़ती कीमत पर केंद्र ने लगाई लगाम, जमाखोरी पर कार्रवाई से घटी दर। यूपी चुनाव में एआईएमआईएम की जीत के लिए ओवैसी ने मांगी दुआ, असदुद्दीन ओवैसी ने कार्यकर्ताओं से पार्टी के आंदोलन को मजबूत करने की अपील की। ओवैसी ने मुस्लिम समुदाय के लिए राजनीतिक नेतृत्व की जरूरत पर जोर दिया, कहा कि इससे भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था और संविधान मजबूत होगा। एआईएमआईएम प्रमुख बोले 18 करोड़ की आबादी, संसद में सिर्फ 24 सांसद, समुदाय की आवाज उठाने वाला पर्याप्त राजनीतिक नेतृत्व नहीं। यूसीसी को लेकर ओवैसी ने उठाए सवाल, कहा अगर कानून हिंदू पर्सनल लॉ के प्रावधानों पर आधारित है तो उन्हें समान नागरिक संहिता कैसे कहा जा सकता है। न्यूयॉर्क मेयर जोहरान ममदानी ने आरएसएस कार्यक्रम का विरोध किया, मेडिसन स्क्वायर गार्डन में मोहन भागवत के कार्यक्रम पर ममदानी ने कहा कि मैं इस रैली का समर्थन नहीं करता। यूपी में 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा का तोहफा। योजना के तहत 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र की महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा मिलेगी। यूपी कैबिनेट का युवाओं को डिजिटल सुविधा देने का बड़ा फैसला। सरकार की योजना के तहत 25 लाख टैबलेट मुफ्त में बांटे जाएंगे। एमबीबीएस और बीडीएस इंटर्न्स को अब हर महीने 25,000 रुपए मिलेंगे। यूपी सरकार के फैसले से मेडिकल इंटर्न्स को बड़ी राहत। योगी आदित्यनाथ ने कहा सरकार रोजगार देने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। सीएम के मुताबिक यूपी में अब तक 9.5 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी मिली। सीएम योगी ने कहा कि राज्य के पास करीब 7 महीने का चीनी भंडार मौजूद है। उन्होंने चीनी की उपलब्धता को लेकर किसी भी तरह की कमी से इनकार किया। रक्षाबंधन से पहले लखनऊ में मिलावटखोरों पर बड़ा एक्शन। एफएसडीए ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर देर रात ताबड़तोड़ छापेमारी की। संदिग्ध खाद्य पदार्थों से लदी 3 गाड़ियां पकड़ी गई। रक्षाबंधन से पहले बरेली में मिलावटखोरों पर शिकंजा। 490 किलो मिठाई मौके पर नष्ट कराई गई। जांच के दौरान खाद्य पदार्थों के नमूने भी लिए गए। वहीं बदायूं में अंबेडकर प्रतिमा को लेकर बवाल मचा। पुलिस पर पथराव। पुलिस और प्रशासन के 8 लोग घायल हुए। 10 से ज्यादा वाहन क्षतिग्रस्त। बर्फ विवाद को लेकर संभल में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर। एसपी ने पुलिस फोर्स और पीएसी के साथ जुलूस मार्गों पर पैदल मार्च किया। संभल में जामा मस्जिद के आसपास 36 दुकानों और मकानों पर कार्रवाई की तैयारी। प्रशासन ने जारी किया नोटिस। चीनी के बढ़ते दाम पर अमेठी में प्रशासन का बड़ा एक्शन। शासन के निर्देश पर चीनी की बड़े कारोबारियों के गोदामों पर छापेमारी की गई। अयोध्या में चीनी प्याज के बढ़ते हुए दाम से लोगों में नाराजगी। बोले बढ़ती महंगाई ने बिगाड़ा बजट। मुरादाबाद में 9 तेंदुए के रेस्क्यू के बाद भी नहीं थमा आतंक। तीसरी मौत से गांव में दहशत। अब खेत की ओर जाने से भी डर रहे हैं ग्रामीण। पीयूष गोयल बोले 2032 तक भारत में सेमीकंडक्टर की मांग 150 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद। भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का लक्ष्य। दिल्ली लक्ष्मी योजना में आज लाभार्थी महिलाओं को मिलेंगे स्वीकृति पत्र। 1 सितंबर से खाते में आएंगे 2,500 रुपए मासिक। सीएम रेखा गुप्ता बोली वादे से नारी सम्मान और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा। दिल्ली अपने वचन को निभाने की एक नई मिसाल पेश करेगी। भारतीय नौसेना में शामिल होगी स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल निपुण। 31 अगस्त को मुंबई में होगा कमीशन। गहरे समुद्र में डाइविंग और सबमरीन रेस्क्यू क्षमता होगी मजबूत। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया अत्याधुनिक निपुण। नौसेना को 30 जुलाई को सौंपा गया था पोत। आधुनिक डाइविंग सिस्टम और अंडर वाटर ऑपरेशन की सुविधाओं से लैस। महाराष्ट्र में खुले खाद्य तेल की बिक्री पर रोक नहीं मिलावट रोकने के लिए 2011 से लागू प्रावधान। एफडीए ने 2025-26 में 1,247 नमूनों की जांच की। 77 घटिया और 13 असुरक्षित पाए गए। बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। एमसीए की बीकेसी कैंटीन किचन का एफडीए फिर से करेगा निरीक्षण। साथ ही इस रिपोर्ट पर कोर्ट ने सवाल भी उठाए हैं। खिलाड़ियों के लिए चाय कॉफी वेंडिंग मशीनों को अंतरिम मंजूरी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नेविल डिसूजा फुटबॉल ग्राउंड को कन्वेंशन सेंटर में बदलने पर लगाई रोक। 18 सितंबर तक बीएमसी को आगे की कार्रवाई से रोका। मुंबई फुटबॉल एसोसिएशन ने जताई आपत्ति। बुलडाणा में किसान नेता रविकांत उपकर को पुलिस का नोटिस। 27 अगस्त को मंत्रालय के सामने आंदोलन और मंत्रियों के बंगले सरकारी वाहनों की सांकेतिक नीलामी की चेतावनी। राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला स्कूल कैंटीन और गेट से 50 मीटर तक चिप्स कोल्ड ड्रिंक और जंक फूड पर रोक। सोनीपत में जिला परिषद की बैठक में गोरिल्ला बनकर पहुंचा जिला पार्षद। अनोखे प्रदर्शन से गरमाया माहौल। नागौर में खेतों के खसरे से बैंक खातों तक फर्जीवाड़े का जाल। एसडीएम की सील साइन से बने नकली निवास प्रमाण पत्र। फर्जी बीमा क्लेम और करोड़ों की आशंका। साथ की गिरफ्तारी। दिल्ली में बढ़ते H1N1 मामलों के बीच स्कूलों के लिए अलर्ट जारी किया गया। शिक्षा विभाग ने जारी की गाइडलाइन। मास्क, हाथ धोने और साफ सफाई पर जोर। खांसी बुखार वाले छात्रों पर निगरानी और बीमार व्यक्ति से दूरी की सलाह। डीडी करेंगे गाइडलाइन की मॉनिटरिंग। प्रार्थना सभा से डिजिटल प्लेटफॉर्म तक चलेगा जागरूकता अभियान। ओणम पर रामराज कॉन्टन का एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज हुआ। 3,000 धोतियों से कोची में बनाया 30 फीट व्यास का सबसे बड़ा बुक क्लब। परंपरा को आधुनिक अंदाज में पेश करने की पहल। रामराज कॉटन ने मंडुकलम को मिला एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का सम्मान। साथ ही केआर नागराजन ने कहा कि धोती हमारी संस्कृति का हिस्सा। मॉनसून के बीच चारधाम और हेमकुंड साहिब यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। दोनों धाम में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का बना रिकॉर्ड। हेमकुंड साहिब पहुंचने वाले श्रद्धालुओं ने इंतजामों पर जताई खुशी। इस साल 10 अक्टूबर तक हेमकुंड साहिब के कपाट खुले रहेंगे। सावन की फुहारों के बीच अयोध्या के मठ मंदिरों फूल और रंग बिरंगी सजावट से सजे स्वर्ण रजत जड़ित हिंडोलों पर भक्तों को दर्शन दे रहे श्री राम और माता जानकी। हिमाचल में खौफनाक लैंडस्लाइड का मंजर आया सामने। चंबा के भरमौर में भरभरा कर गिरा पहाड़, बाल बाल बचे लोग। सड़क पर मलबा गिरने से यातायात प्रभावित। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भूस्खलन से श्रीनगर बारामूला उरी हाईवे बंद हुआ, दोनों ओर वाहन फंसे। ओडिशा के जाजपुर में बाढ़ के पानी में बही एक कार, फायर सर्विस और स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद किया रेस्क्यू। वेल्लोर के गुड़ियाधम में किसानों की मांग पर मुरधाना बांध से सिंचाई के लिए छोड़ा गया है पानी, तस्वीर आई सामने। गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद राजीव चौक सबवे में भी भरा 12 से 15 फीट पानी। 4 साल के बच्चे के डूबने से बाल बाल बची जान, प्रशासन की लापरवाही फिर से आई सामने। दिल्ली में लगातार हो रही बारिश से सफदरजंग अस्पताल में भरा पानी, मरीजों को हुई भारी परेशानी। वाराणसी में जलभराव पर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, बारिश के पानी में बैठकर कार्यकर्ताओं ने उठाए व्यवस्था पर सवाल। वाराणसी के बीएचयू अस्पताल परिसर में भी भारी जलभराव, मरीजों और लोगों को वहां पर भारी परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। सोनीपत में बारिश में बह गए नगर निगम के दावे, जगह जगह जलभराव से लोगों को हो रही है परेशानी। जालना में पुल के अभाव में पुलिस वाहन को नाव से नदी पार करने की मजबूरी, वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में बड़ा हादसा, ट्रॉमा सेंटर में सीलिंग फैन गिरने की वजह से महिला के सिर में लगी चोट। काकीनाड़ा परिवार आत्महत्या मामले में नया मोड़, धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने के आरोपों से मामले ने नया रुख लिया। कटक में जंगली सुअर के हमले से बचा 14 साल का एक बच्चा, कम्युनिटी नहर के अंदर जंगली सुअर ने बच्चे पर हमला किया, बाल बाल बची जान। गुजरात के श्यामलाजी में घरेलू विवाद बना हत्या की वजह, पति ने कथित तौर पर कुल्हाड़ी से हमला कर पत्नी की हत्या कर दी। सिंगरौली में स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़ा सवाल, सफाई कर्मी मरीजों का इलाज करते पकड़ा गया, अस्पताल व्यवस्था पर उठे सवाल। रुड़की में डबल मर्डर से मचा हड़कंप, दो सगी बहनों की भाई ने गोली मारकर हत्या कर दी। गुरदासपुर में रंगदारी मांगने के एक दिन बाद घर के बाहर चली गोलियां, सीसीटीवी फुटेज आया सामने। जालंधर में मिठाई की दुकान में घुसी तेज रफ्तार कार, स्कूटी को जोरदार टक्कर मारते हुए सीडीओ से टकराकर रुकी, घटना सीसीटीवी में कैद। दिल्ली के ओखला औद्योगिक क्षेत्र इलाके में स्थित कपड़े की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू। बाराबंकी में लखनऊ से बहराइच जा रही कार में तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर, 4 की मौत, 1 घायल। श्रीगंगानगर में इलेक्ट्रिक स्कूटी में जोरदार धमाका हुआ, घर के बाहर खड़ी स्कूटी में लगी आग, 2 बच्चे बाल बाल बचे। सूरत में ट्रक चालक बाइक को दूर तक घसीटता नजर आया, बाइक सवार ने कूदकर बचाई अपनी जान, बाइक घसीटते हुए वीडियो हुआ वायरल। दिल्ली के जसोला नाले में गिरे बच्चे का शव चौथे दिन मिला, शनिवार को नाले में बच्चे के गिरने के बाद से चल रहा था रेस्क्यू ऑपरेशन। डूंगरपुर के स्कूल में भरभराकर गिरा जर्जर कमरे की छत, 120 बच्चों की जिंदगी बाल बाल बची। सिंगरौली में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अस्पताल के सामने आई एक बड़ी लापरवाही, मरीज को इंजेक्शन लगाते हुए स्वीपर का वीडियो वायरल। कोलंबो टेस्ट में श्रीलंका पर फॉलोऑन का खतरा, रसल स्कोर 265 के बदौलत भारत 238 रन से आगे, तो वहीं बारिश के कारण तीसरे दिन भी जल्दी स्टंप्स। भारत की ओर से प्रसिद्ध कृष्णा और मानस सुधार ने 3-3 विकेट लिए, रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज को 1-1 विकेट मिला। ग्रैंड चेस टूर 2026 के फाइनल में पहुंचे भारतीय ग्रैंड मास्टर और प्रज्ञानंदा, दरअसल सेमीफाइनल में जर्मनी के विंसेंट कीमर को 19-9 से उन्होंने हराया। भारत के एन श्रीराम बालाजी और अनिरुद्ध शंकर चंद्रशेखर ने जीता कानकुन कंट्री ओपन का खिताब, फाइनल में मेक्सिको बेलारूस की जोड़ी को हराया। यूएस ओपन में वापसी करेंगे 20 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन रोजर फेडरर, न्यूयॉर्क के आर्थर एश स्टेडियम में खेलेंगे एक एग्जीबिशन मैच।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन को बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 26 अगस्त 2026 दिन बुधवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, सुबह के 7:59 तक। नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र,

योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, कोई पुराना काम, कोई पुरानी इच्छा पूरी होगी, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, काफी दौड़ भाग रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। मिथुन राशि, काम की अधिकता रहेगी, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, सतर्क रहें। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। कर्क राशि, करियर में लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। गणेश जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद।

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।

आज से बचाव करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। तुला राशि, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। करियर में समस्या हो सकती है, सतर्कता बनाए रखिएगा। धन के लेन देन में आज सावधान रहें, नुकसान हो सकता है। हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वृश्चिक राशि, मानसिक चिंता आपकी समाप्त होगी, करियर की स्थिति में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन आपके लिए बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग

बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, मानसिक चिंता समाप्त होती दिखाई दे रही है, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, साथ ही साथ स्वास्थ्य का आज ध्यान बनाए रखिएगा। अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। मकर राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन का लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। कुंभ राशि, करियर में समस्या हो सकती है, मन परेशान हो सकता है, रिश्तों का ध्यान बनाए रखें। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। मीन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में कुछ परिवर्तन होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: प्याज का भाव 60 रुपए प्रति किलो। खुदरा बाजार में प्याज का ऐसा भाव हो गया है जो फिर से महंगाई के आंसू रुला रहा है। देश के कई शहरों में प्याज इसी के आसपास पटक रहा है। सब कुछ अचानक नहीं हुआ, बीते चार दिनों से लगातार भाव बढ़ा है और बढ़कर 40 रुपए से 60 रुपए प्रति किलो हो चुका है। खुदरा बाजार में प्याज का भाव बढ़ने की असल वजह है मंडी से ही कीमत में उछाल। देश के कई हिस्सों में नासिक से प्याज की सप्लाई होती है और आलम यह है कि नासिक की होलसेल मंडी में ही प्याज का भाव 40 रुपए से ज्यादा है। जानकारों की माने तो प्याज की डिमांड अचानक बढ़ी है, 15 दिनों में इसके दाम में 50% से ज्यादा का उछाल आया है।
2: किसान ने जो प्याज उगाया है, जो प्याज की जो अभी लागत मूल्य है वो भी 2500-3000 हो चुका है। स्टोरेज में भंडारण में जब हम प्याज रखते हैं, ये प्याज रखने के बाद उसमें थोड़ी सड़ होती है, उसकी क्वांटिटी वजन भी कम हो जाता है, तो इसके चलते अगर आज हमें 6-7 रुपए जो दाम तब मिले थे, तब जो नुकसान हो चुका है उसकी भरपाई भी हो रही है। हमें दाम ज़्यादा नहीं मिल रहा है। हमारा सबसे ज़्यादा जो प्याज है भारी मात्रा में किसानों का, वो कौड़ियों के दाम में बेचा है हमने पिछले 6-7 महीने में। अगर पूरा देखा जाए तो पिछले 1.5-2 साल में हमें दाम भी नहीं मिले थे। हमने प्याज की खेती बहुत किसानों ने तो बंद कर दी।
1: तमाम मंडियों से प्याज की सप्लाई हो रही है, फिर भी मानसूनी संकट के बीच प्याज के भाव का ब्रेक फेल हो गया है। दिल्ली में सरकारी सफल स्टोर पर प्याज की दर 60 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी है। उधर सरकार ने महंगी होती प्याज को लेकर कमर कस ली है, सप्लाई को तेज करने की कोशिश जारी है। एक दिन पहले से ही कांदा एक्सप्रेस चलाया जा रहा है। 24 अगस्त से नासिक से प्याज की ढुलाई और रिलीज भी शुरू हो चुकी है। कांदा एक्सप्रेस से प्याज की सप्लाई के पहले चरण में चेन्नई, मदुरई, दिल्ली, कोच्चि और गुवाहाटी को शामिल किया गया है। कांदा एक्सप्रेस के जरिए 2025-26 में करीब 88,000 एमटी प्याज 86 रेलवे रैंकों से 16 प्रमुख शहरों तक पहुंचाया जा रहा है। खबरों के मुताबिक जरूरत के अनुसार आगे और शहरों को जोड़ा जाएगा। वैसे अभी तक एक दिन पहले ही सरकार ने प्याज की महंगाई को देखते हुए बयान दिया है कि 2025-26 में प्याज उत्पादन लगभग 307.37 लाख मीट्रिक टन रहने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष के 307.67 लाख मीट्रिक टन के करीब करीब बराबर है। सरकार की माने तो देश में प्याज का पर्याप्त भंडार है और आने वाले महीनों की घरेलू मांग पूरी करने की स्थिति में है। सवाल है कि आखिर प्याज के भाव में इजाफा क्यों हुआ? अगस्त सितंबर में होने वाली मौसमी परेशानियों का हवाला दिया जा रहा है। हर साल मॉनसून के दौरान यही स्थिति बनती है, तो दूसरी वजह प्याज की डिमांड सप्लाई भी बताई जा रही है। मूल्यों पर कंट्रोल के लिए सरकार बफर स्टॉक से नियंत्रित मात्रा में प्याज जारी कर रही है ताकि कीमतों में उतार चढ़ाव को रोका जा सके। नासिक से प्रवीण ठाकरे और लखनऊ से समर श्रीवास्तव के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

चौहान का लो फ्लाइंग सरप्राइज अटैक की रणनीति से दुश्मन को चकाया। सरगोधा स्कार्दू समेत तय किए थे कई टारगेट्स, तालमेल से आए बेहतर नतीजे। बांग्लादेश में हिंदू परिवार की रेप और हत्या पर घिरी तारिक रहमान सरकार, बर्बरता के खिलाफ बड़ा आक्रोश। पूरे देश में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, पोस्टमार्टम के दौरान मिले दरिंदगी के सबूत। स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब को गैर जरूरी बताने के हाईकोर्ट के फैसले पर भड़के ओवैसी, कहा यह इस्लाम पर हमला। बीजेपी ने हिजाब वाले वीडियो से दिया राहुल गांधी को मनुस्मृति का जवाब। यूपी से दिल्ली तक आधी आबादी पर फोकस, महिलाओं को फ्री बस यात्रा की शुरुआत करेंगे सीएम योगी। दिल्ली में आज महिलाओं को मिलेगी 2500 रुपए की पहली किश्त, रेखा गुप्ता पूरा करेंगे चुनावी वादा। इंडिया टुडे राउंड टेबल कर्नाटक कॉन्क्लेव में, दिन भर सजेगा दक्षिण के दिग्गजों का मंच। सीएम डीके शिवकुमार, तेजस्वी सूर्या, प्रियांक खड़गे समेत कई नेता रहेंगे मौजूद।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। सुबह का सबसे पहला संपूर्ण न्यूज बुलेटिन लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं, खबरें रफ्तार से और विस्तार से। लेकिन सबसे पहले खबरों की झलकियों पर एक नजर डाल लेते हैं। पटना की बात करेंगे, जहां पर कल हुए छात्रों के प्रदर्शन और पुलिस के बल प्रयोग को लेकर सियासत तेज है, पूरी जानकारी इस पर देंगे। बात करेंगे बदायूं में हुई हिंसा की, जहां लगातार तनाव बना हुआ है। खबर चीनी और प्याज की महंगाई से जुड़ी हुई भी होगी। इस मामले में कैसे सियासत तेज है और कैसे सरकार एक्शन ले रही है, यह भी इस बुलेटिन में शामिल होगा। ठीक है, आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 सौ शहर 100 खबर बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बांग्लादेश की खबर के साथ, जहां एक हिंदू परिवार की हत्या को लेकर बवाल है। तारिक रहमान सरकार के 6 महीने के कार्यकाल में ये बर्बर हत्या बताई जा रही है, इसे लेकर अब वहां प्रदर्शन हो रहे हैं। बेरहमी से बलात्कार और हत्या मामले में बांग्लादेश में लोगों का गुस्सा फूटा है। सवाल उठने और विरोध तेज होने के बाद बांग्लादेश सरकार ने हिंदू परिवार की हत्या की जांच को अब डिटेक्टिव ब्रांच को सौंप दिया है। पहले इसकी जांच पुलिस कर रही थी। रंगपुर इलाके में स्कूल शिक्षक गणपति चक्रवर्ती, उनकी पत्नी बेटी और बेटे प्रियम का शव शनिवार को उनके घर पर बरामद हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की, लेकिन पुलिस की जांच को लेकर लोगों में नाराजगी है। इस मामले में रंगपुर पुलिस ने मुग्धो दास और सिद्धार्थ दास नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि लोगों का आरोप है कि हत्या में कई लोग शामिल थे जिन्हें बचाने की कोशिश हो रही है। पुलिस की जांच और फोरेंसिक रिपोर्ट में कहा गया कि हत्या गला घोट कर की गई, लेकिन महिलाओं के साथ बलात्कार के साक्ष्य नहीं है। लोगों का आरोप जानबूझकर ये है कि पुलिस गैंगरेप को छुपा रही है। अब हिंदू परिवार की हत्या के मामले को लेकर बांग्लादेश में हिंदू संगठनों का विरोध जारी है। आशुतोष मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशुतोष, शनिवार की ये घटना है, आज बुधवार हो गया है, अब प्रदर्शन हो रहे हैं, क्या पुलिस के एक्शन को लेकर वहां नाराजगी है और जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके हवाले से क्या जानकारी मिल रही है? क्या वाकई इस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है कि इसमें 2 से ज्यादा लोग इन्वॉल्व थे?
1: और अगर ऐसा नहीं होता तो नाराजगी होती क्यों? क्योंकि पोस्टमार्टम जो जहां मॉर्चुरी है, शव गृह है, वहां के कर्मचारी का दरअसल एक स्टिंग वीडियो वायरल हो गया और अब वो उसमें कहता दिखाई दे रहा है कि इसमें सीमन के सैंपल भी दाग मिले थे, लेकिन आप किसी को बताइएगा मत। और जैसे ये खबर सामने आती है तमाम सारे लोग सड़कों पर उतर आते हैं, तो सिर्फ ये एक इलाका नहीं बल्कि पूरे बांग्लादेश में हिंदू संगठन सड़कों पर हैं। कल गुरुवार है और दुनिया भर में जहां पर भी भारत बांग्लादेश के हाई कमिश्नर एम्बेसी है उसका भी घेराव किया जा रहा है। पिछले 6 महीने की सरकार के दौरान ऐसा नहीं हुआ कि हिंदुओं के साथ हो रही जो घटनाएं थी अपराध की, उसमें जरा सी भी कमी आई हो, चाहे वो 2024 को, 2025 और 2026 में ऐसा ही सिलसिला जारी है। आपने सही कहा, शनिवार की घटना है, लेकिन जांच होते होते, मामला दर्ज करते करते और चीजें पता लगती तब तक तो रविवार सोमवार का दिन आ गया और इस तरह से इसको कवर अप करने की कोशिश की गई थी। जब तक सच सामने आया तब तक रंगपुर पुलिस थाने लेवल पर इसे जांच कर रही थी। उन्होंने कहा कि हमने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया, उन्होंने अपना अपराध भी कबूल कर लिया कि वो छत पर गए थे, ड्रग्स पी रहे थे, धक्का मुक्की और मारे गए थे। लेकिन जो बर्बरतापूर्ण वीडियो आया, लोगों की जानकारी आई, घटनाक्रम आए कि जब यह वारदात हुई उसे इसमें बिजली का कनेक्शन काट दिया गया था, अपराधी काफी देर तक घरों में थे और 2 महिलाएं जो थी और जिस तरह उनके शव अलग अलग जगहों पर जिस हाल में पाए गए उसको लेकर के जो स्थानीय हिंदू थे पहले उन्होंने आवाज उठाई, उन्होंने कहा पुलिस हमारी शिकायत पर कार्यवाही नहीं कर रही, उन्होंने मामला से हत्या का दर्ज किया हुआ है, और तब हिंदू संगठनों ने आवाज उठाई। ढाका में प्रदर्शन हुए, चिटगांव, खुलना से लेकर के रंगपुरी, हर जगह विरोध प्रदर्शन हुए और अब इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर तक हुई, इसलिए कि लगातार इन घटनाओं में कभी एक और शिक्षक की मौत हो जाती है, इसके पहले फिर मारपीट की घटनाएं हुई हैं और यहाँ एक पूरा परिवार जो है जिसके साथ इस तरह बर्बरतापूर्ण हत्या हो जाती है और अब जो आरोप लग रहे हैं कि गैंगरेप के मामले को पुलिस दबा रही है, इसको लेकर के हिंदू संगठन एक बार फिर आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। तो अब बांग्लादेश से लेकर के दुनिया भर में इस आवाज को उठाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वही तारिक रहमान जिनके चुनावी वादे में मैनिफेस्टो में एक संकल्प था कि वो किसी भी हाल में हर बांग्लादेशी की हिफाजत करेंगे, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का वादा किया था और यही कहते हुए उन्हें सपोर्ट मांगा था कि हम नया बांग्लादेश बनाएंगे, हर किसी को एक नजरिए से देखेंगे, लेकिन जमीन पर ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए लोगों का गुस्सा फूटा है और अब वहां आवाज उठ रही है।
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। अब बात पटना की करेंगे, जहां पर कल सीएम आवास के घेराव के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया। पुलिस के साथ उनकी भिड़ंत भी हुई, छात्र बैरिकेड तोड़ने में कामयाब रहे, बेकाबू होते हालात को संभालने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन तक का इस्तेमाल किया। अब इस मामले को लेकर सियासी संग्राम तेज है, तेजस्वी ने राज्य सरकार पर हमला बोला है।
2: 25 अगस्त को पटना में जो हुआ ये उसी पुलिस एक्शन की तस्वीरें हैं। सीएम आवास के घेराव की कोशिश कर रहे छात्रों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की। सीएम हाउस का घेराव करने के लिए निकले छात्र अड़े रहे, पुलिस ने बैरिकेड लगाया तो प्रदर्शनकारी छात्रों ने उसे तोड़ दिया। छात्रों ने दो बैरिकेड तोड़े तो प्रशासन ने छात्रों को रोकने के लिए वाटर कैनन चलाया, फिर पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा।
3: हम शांतिपूर्ण तरीके से थे, जब मैं यहाँ पहुँचा तो मैंने कहा कि साहब मैं 9 दिन से भूखा हूँ, ये भारत का संविधान है, मुझे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का आजादी देता है, सबके हाथों में तिरंगा है, काला पट्टी है, मैंने कहा मुझे जाने दीजिए। उन्होंने कहा कि हम नहीं जाने देंगे, हम कहे मेरा अधिकार है, आपको जाने देना होगा, तो वो कहते हम तुम्हारी औकात दिखा देंगे गांधी मैदान सचो ने, उसके बाद मुझे मारा।
2: जब पुलिस ने बल प्रयोग किया तो सियासत तेज हो गई। पुलिस के एक्शन में घायल छात्रों से मिलने तेजस्वी पीएमसीएच पहुंचे, उनसे मुलाकात की। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों पर सरकार की बर्बरता निंदनीय और शर्मनाक है। तेजस्वी ने भी ऐलान किया कि आरजेडी का समर्थन हमेशा छात्रों के साथ रहेगा और अंत में ये लड़ाई जीतेंगे। पुलिस के एक्शन के बाद केंद्रीय मंत्री और एलजेपीआर के नेता चिराग पासवान भी छात्रों से मिलने गर्दनीबाग पहुंचे। वहां छात्र न्याय सत्याग्रह के मंच पर पहुंचकर छात्र नेता दिलीप कुमार से मुलाकात की और छात्रों की प्रमुख मांगों को भी सुना। इस मामले में बढ़ती सियासत के बीच बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी छात्रों से बातचीत की अपील कर रहे हैं, साथ ही वो विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप भी लगा रहे हैं।
4: छात्रों के लगभग सभी मांगों को हम लोगों ने पूरी की है। जो छात्र कुछ और सरकार को बताना चाहते हैं उसके लिए संवाद के सारे द्वार खुले हुए हैं। छात्र आए, बात करें, अपनी समस्या का समाधान करें, सरकार उनकी है। लेकिन तेजस्वी जी अपनी राजनीति को चमकाने के लिए अगर प्रायोजित कार्यक्रम रख रहे हैं तो ये बात बिहार की जनता भी समझती है और छात्र भी समझते हैं, इसीलिए बहुत सारे छात्रों का समर्थन उन्हें नहीं मिला और शायद वो हो सकता है इस आंदोलन से भाग खड़े हों।
2: बीपीएससी TRE-4 की सिंगल परीक्षा करने, नेगेटिव मार्किंग हटाने और 100% डोमिसाइल समेत 15 मांगों को लेकर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन अभी भी जारी है और अभी तक इन मांगों पर गतिरोध भी जारी है। रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक।
0: वहीं पटना में ही बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में छात्रों ने हंगामा किया। पुलिस से झड़प में 2 जवान घायल हुए हैं। आरोप यह है कि पटना पुलिस के सिपाही को मेडिकल के छात्र ने जमकर पीटा। हालात बिगड़े तो पुलिस को भी लाठीचार्ज करना पड़ा। रिजल्ट में गड़बड़ी की आशंका के चलते बड़ी संख्या में छात्र विश्वविद्यालय परिसर के बाहर जुट गए और जमकर हंगामा किया। मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ और इस दौरान आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्रों द्वारा तोड़फोड़ और वहां मौजूद कर्मियों के साथ मारपीट हुई है। फिलहाल विश्वविद्यालय के बाहर पुलिस बल तैनात है, स्थिति पर नजर बनाए हुए है। तनाव को देखते हुए इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। यहां पर चुनावी परीक्षा की तैयारियों के बीच योगी सरकार ने कल कई बड़े फैसले किए हैं। इससे महिलाओं, छात्रों, बुजुर्गों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर करने के लिए 24 फैसले हुए हैं। योगी कैबिनेट ने युवाओं के लिए कई ऐलान किए, जिसमें 25 लाख युवाओं को टैबलेट देने की घोषणा की गई है। आज से लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना का शुभारंभ हो रहा है। सुबह 10 बजे IGP पर आयोजित इस कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की जा सकती हैं। वहीं कल ही सरकार ने ऐलान ये किया था कि इस योजना के तहत 60 साल से ज्यादा की महिलाएं सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। मेडिकल इंटर्न्स के लिए भी बड़ा ऐलान किया गया है, जिसमें MBBS और BDS इंटर्न्स का मासिक स्टाइपेंड बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया। इसके साथ ही गंगा एक्सप्रेसवे को बिजनौर से हरिद्वार तक विस्तार देने की योजना है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगले 6 महीने में 1 लाख युवाओं की नियुक्ति पत्र देने का लक्ष्य तय किया है। कई महत्वपूर्ण ऐलान और योजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेकर आए हैं। आशीष श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशीष, जाहिर तौर पर विपक्ष से चुनावी तैयारी के तौर पर देख रहा होगा किस तरीके से चुनाव से पहले अक्सर इस तरह की योजनाओं को लाया जाता है, लेकिन क्या ये चुनाव तक कार्यान्वित हो पाएंगी या फिर अभी ये महज कागजों पर ही है?
5: नहीं बिल्कुल न्याय, देखिए बड़ी चुनावी कह सकते हैं कि प्रपोजल्स आ गए हैं और पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट होने जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का ये मास्टर स्ट्रोक है अगर हम देखें तो चुनाव से पहले, क्योंकि उन्होंने महिलाओं को, जेंजी को और यहां तक कि उन सभी युवाओं को साधा है इन सभी कैबिनेट बैठक के जरिए। और सबसे बड़ी बात है महिलाओं को 60 वर्ष में जो फ्री दी है आजीवन चलने की सुविधा, वो कहीं ना कहीं एक संकल्प पत्र में था योगी आदित्यनाथ के, वो इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो महिलाओं का एक वोट बैंक जो है वो पूरी तरीके से माना जा रहा है कि जो वो योगी आदित्यनाथ की तरफ शिफ्ट होगा। दूसरा जेंजी के लिए जो इन्होंने टैबलेट की सुविधा दी है, साथ ही साथ महिलाओं के लिए जो स्कूटी की, तो ये एक बड़ी जो योजनाएं है कह सकते हैं कि ये 2027 का मास्टर स्ट्रोक खेला है योगी आदित्यनाथ ने। और उसमें जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, इसके साथ साथ जो युवा हैं, उन सभी को एक साथ साधा है एक लाइन पर। क्योंकि एक बार समाजवादी पार्टी लैपटॉप देती थी तो कहीं ना कहीं अब जो टैबलेट दिए जा रहे हैं वो युवाओं के लिए खास होगा। तो ये योगी आदित्यनाथ अब इसको इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं, अहिल्या बाई होलकर के नाम से शुरुआत भी कर रहे हैं और इसको 6 महीने में 1 लाख नौकरी तक देने की बात कह रहे हैं। तो ये सारे जो
0: कई महत्वपूर्ण योजनाएं जिसका ऐलान कल किया जा चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष उस तमाम जानकारी के लिए आपका। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी आज लक्ष्मी योजना के तहत पहली किश्त जारी करने वाली हैं। इसके तहत 2500 रुपए की किश्त जारी की जाएगी। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में दिल्ली सरकार का ये भव्य कार्यक्रम होगा। 2 घंटे बाद ये कार्यक्रम शुरू होगा और करीब 2500 महिलाओं को किश्त दी जाएगी। लक्ष्मी योजना में लगभग 6 लाख से ज्यादा महिलाएं हैं और अब तक उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। और अब बात चीनी और प्याज के बढ़ते दामों की, क्योंकि दोनों चीजों की कीमतों ने आम आदमी को परेशान किया है। हालात आउट ऑफ कंट्रोल हुए तो सरकार ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया ताकि कीमतों को काबू में किया जा सके।
6: भाई प्याज के लिए रोज फोन आ रहा है और मैं कह देता भाई आज भूल गया, कब तक बहाने करूंगा प्याज के लिए। मैं प्याज लेके नहीं जा रहा हूँ, इतनी महंगी प्याज हो गई है, तड़का लगाना भारी पड़ रहा है।
7: सरकार तो बैठी है अच्छे दिन लाने के लिए, क्या अच्छे दिन लाया? गरीबों को वोट लगा दिया, क्या मिलेगा अपने को?
2: चीनी ने चाय की मिठास कम की तो प्याज आम लोगों की आंखों में आंसू ला रहा है। घर में कुछ भी पकना हो तो प्याज तो चाहिए ही चाहिए, तड़के से लेकर सलाद तक प्याज बहुत जरूरी है। लेकिन अब 60 से 70 रुपए किलो बिकेगा प्याज तो सलाद खाना तो भूल ही जाइए। देश के बड़े बड़े शहरों में प्याज इस वक्त 60 से 70 रुपए किलो बिक रहा है। पिछले एक हफ्ते में ही प्याज के दामों में 20 से 30 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है। होलसेल मार्केट में प्याज के दाम 5000 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गए हैं, यानी 50 रुपए किलो। और प्याज व्यापारियों की आशंका है कि आने वाले वक्त में प्याज बहुत जल्द 100 रुपए के पार भी जा सकता है। अच्छी प्याज की कीमत देश की राजधानी में 60 रुपए प्रति किलो है और दुकानों पर तो आपने देखा कि 65 से 70 रुपए है। ये थोड़ी अच्छी प्याज है, मतलब पैकेजिंग इसकी ठीक की गई है, इसमें चमक भी है, लेकिन जो खुली प्याज है वो 52 रुपए प्रति किलो आ रही है। अच्छा उधर 42 रुपए वाली ये कौन सी प्याज है? 42
8: छोटी प्याज है।
2: अच्छा, वो छोटी है। तो ये इतना महंगा कब से आ रहा है?
8: 4-5 दिन से
2: जी। तो अभी पीछे जो आप माल आ रहे उसमें कुछ रेट कम है या अभी बता रहे हैं कि और अभी बढ़ेगा कम होगा?
8: अभी बढ़ा है रेट
2: 4-5 दिनों
8: जी, 4-5 दिन से बढ़ा है।
2: ऐसा ही हाल चीनी का भी है। चीनी की कीमत भी 70 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी है। ऐसे में महंगाई के इस डबल डोज से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें अलर्ट हैं। एक दिन पहले ही प्याज और चीनी को लेकर रेखा गुप्ता सरकार की बैठक हुई। मुख्यमंत्री ने दोनों आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और कीमतों को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भविष्य में जरूरत पड़ी तो नैफेड से प्याज और चीनी की खरीद की जाएगी और सस्ते दर पर प्याज और चीनी की बिक्री की जाएगी। फैसले के मुताबिक दिल्ली सरकार 35 रुपए किलो की दर पर चीनी बेचेगी, साथ ही प्याज और चीनी की कालाबाजारी करने वालों पर छापेमारी अभियान भी चलाया जाएगा।
9: जो प्याज के रेट हैं उनको ठीक तरह से रखने के लिए भारत सरकार द्वारा भी कुछ कदम उठाए गए हैं। कुछ प्याज जो है वो मूव भी किया जा रहा है, तो हमारा डिपार्टमेंट भी इसके साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ संपर्क में है। हमें जरूरत पड़ेगी तो हम केंद्र सरकार से उसको खरीद कर दिल्ली की मंडियों में भी लेके जाएंगे और जरूरत पड़ेगी तो ऐसे कैंप लगा के भी जगह जगह प्याज को जो सब्सिडाइज रेट्स के ऊपर पहुंच सके ऐसा हम काम करने की प्लानिंग कर रहे हैं और यही चीनी के लिए है।
2: सरकार की माने तो देश में प्याज का पर्याप्त भंडार है और आने वाले महीनों की घरेलू मांग पूरी करने की स्थिति में है, लेकिन प्याज की महंगाई को कम करने के लिए सरकार खुद सस्ता प्याज बेचने जा रही है। यूपी में भी प्याज और चीनी की कालाबाजारी को रोकने के लिए प्रशासन अलर्ट मोड में है। अमेठी और अन्य जगहों पर छापेमारी की जा रही है। चीनी के लगातार बढ़ते दामों को लेकर शासन के निर्देश के बाद अमेठी प्रशासन ने चीनी के बड़े जमाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। कई चीनी व्यापारियों के गोदामों और थोक दुकानों पर छापेमारी की गई। अमेठी से अभिषेक कुमार त्रिपाठी के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: प्याज और चीनी की महंगाई से लोग परेशान हैं, लेकिन बीजेपी सांसद मनोज तिवारी कह रहे हैं कि ये सब अफवाह है। उनके शब्दों में कुछ लोग एथेनॉल में भारत आत्मनिर्भर हो रहा है उसके विरोध में ऐसी बातें कर रहे हैं।
10: चीनी के दाम के बाद प्याज का दाम आसमान छू रहे हैं, क्या कहेंगे सर?
11: ये तो आप सब जो बात कर रहे हैं, ये बिहार सरकार से आप लोग बात करेंगे, कई जगह तो सिर्फ अफवाह है। ये कुछ लोग जो है ना, जो एथेनॉल में जो भारत आत्मनिर्भर हो रहा है डीजल पेट्रोल में, तो उसके विरोध में बहुत लोग बहुत तरह की बातें कर रहे हैं। अगर कोई सीरियस बात कहीं होगी तो निश्चित रूप से उसका समाधान किया।
0: और अब बात उत्तर प्रदेश के बदायूं की करेंगे। यहां पर अंबेडकर प्रतिमा को लेकर बवाल हुआ, वहां मूर्ति तोड़े जाने के आरोप में लोगों का गुस्सा फूटा, पुलिस पर पथराव की घटना हुई है और पुलिस और प्रशासन के 8 लोग जख्मी हो गए हैं। बवाल के दौरान 10 से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई। हिंसा को लेकर पुलिस ने 7 उपद्रवियों को हिरासत में लिया है। ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों पर मूर्ति तोड़ने का आरोप लगाया। कल हुई हिंसा के बाद डीएम एसएसपी समेत प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी। अब मामला शांत है। और अब बात स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों की। दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में स्वाइन फ्लू के मामलों में इजाफा हो रहा है। हालात को देखते हुए सरकार ने सतर्कता बढ़ा दी है। दिल्ली में बढ़ते H1N1 केसेस के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने स्कूलों को लेकर अलर्ट और एडवाइजरी जारी की है।
12: राजधानी दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में स्वाइन फ्लू के मामलों में इजाफा हुआ तो सरकार की चिंता भी बढ़ गई। एहतियाती कदम उठाए जाने लगे, एडवाइजरी जारी की गई, उच्च स्तरीय बैठकों का दौर शुरू हो गया। बात अगर राजधानी दिल्ली की करें तो बीते कुछ दिनों में यहां H1N1 इन्फ्लुएंजा के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब तक दिल्ली में H1N1 के 2000 मामले सामने आए हैं और स्थिति चिंताजनक है। उधर हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अस्पतालों में स्पेशल वार्ड बनाए गए हैं जहां स्वाइन फ्लू वायरस से पीड़ित मरीज का इलाज किया जा सके।
13: हमारे सब LNGP के डॉक्टर हैं। सर, क्या तैयारियां हैं सरकार की, कितने पेशेंट्स जो हैं वो आ रहे हैं फिलहाल LNGP के अंदर अभी?
14: जी, ऑलमोस्ट 0.5-1% के लोग जो है सर्दी खांसी और बुखार के प्रॉब्लम को लेकर आ रहे हैं। हमारे पास, हमने अभी 7 बेड का इमरजेंसी वार्ड यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है जिसमें 2 वेंटिलेटर भी अवेलेबल हैं। अगर कोई पेशेंट आता है जिसकी तबीयत बहुत ही खराब है, जिसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, तो हम उनको यहाँ पर रखकर इलाज कर सकते हैं, फिर उनकी जांच के बाद उचित तौर पर इलाज किया जाएगा। इसके अलावा हमने 7th फ्लोर पे डिजास्टर वार्ड है हमारे पास, वो भी हमने डेडिकेट कर रखा है। उसमें 10 ICU के बेड्स हैं और साथ में 60 HDU हैं जहाँ पे की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अगर संख्या बढ़ी तो हम वहाँ पर भी पेशेंटों को रखेंगे और उनका इलाज करेंगे।
12: दिल्ली सरकार ने सरकारी अस्पतालों को इसी तरह का स्पेशल वार्ड बनाने का निर्देश दिया है ताकि संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़े तो उन्हें फौरन ही सही इलाज मिल सके।
13: इस तरीके से ये वार्ड जो है वो तैयार किया गया, क्योंकि खासकर लोगों को हाई फीवर रहता है और ऐसे में फ्लूड लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है, उसके लिए ORS की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की गई है ताकि लोग जो है वो पेशेंट अगर यहाँ पर आए तो उनको इस तरीके से क्या मेडिकेशन देना है वो सब तैयारी जो है वो की गई है। स्पेशल स्वाइन फ्लू का ये वार्ड जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से तैयार किया गया और हर अस्पताल के अंदर इस तरीके के वार्ड तैयार करने की सरकार की तरफ से हिदायत जो निर्देश है वो दिए गए हैं।
12: यूं तो मौसम में बदलाव के साथ बुखार, खांसी, गले में खराश, सिर दर्द और शरीर में दर्द जैसी समस्याएं होना आम है। अक्सर लोग इन लक्षणों को सामान्य वायरल संक्रमण या मौसम का असर मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। हालांकि अगर ये लक्षण लगातार बने रहे, बढ़ने लगे या स्वास्थ्य में सुधार न हो तो सावधानी बरतना जरूरी है। ऐसे लक्षण स्वाइन फ्लू यानी H1N1 संक्रमण में भी दिखाई दे सकते हैं।
15: H1N1 जो हम पहले एक पैंडेमिक हो चुका है 2009 में, जिसको हम स्वाइन फ्लू भी कहते हैं, हर साल मानसून के मंथ में, बरसात के महीने में उनके केसेस बढ़ते हैं। इस दफा ये बात सही है कि नॉर्मल से जो हम देखते हैं केसेस रिलेटिवली ज़्यादा हुए हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है क्योंकि मोस्ट केसेज हैविंग माइल्ड फीवर, बॉडी एक्स, सोर थ्रोट, खांसी और कुछ देर तक बुखार रहता है, फिर ठीक हो जाता है।
12: कोलकाता और बेंगलुरु जैसे शहरों में भी हाल के दिनों में मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बढ़ते स्वाइन फ्लू मामलों के मद्देनजर दिल्ली और देश में स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक कर चुके हैं। साथ ही कई राज्यों में भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं। आज तक ब्यूरो।
0: और बात आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की, शताब्दी वर्ष के वैश्विक आउटरीच कार्यक्रम के तहत अमेरिका के न्यूयॉर्क वो पहुंचे। वहां 29 अगस्त को उनका मैडिसन स्क्वायर में कार्यक्रम है। न्यूयॉर्क में अपने प्रवास के दौरान वो यूनिवर्सल वननेस कार्यक्रम में भाग लेंगे और शनिवार को मशहूर मैडिसन स्क्वायर गार्डन में लगभग 5,000 लोगों को संबोधित करेंगे। उससे पहले न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान बमदानी ने कहा कि वो मोहन भागवत के इस कार्यक्रम का समर्थन नहीं करते।
16: You know, I also stand here as the first Indian American mayor in our city's history, and my mother's family is all still in India, and the vision of India that I was taught by my family and the one that I grew up being very familiar with was of a pluralistic society, of a secular republic that believed in the belonging of each and every person who was from India. And it has been incredibly troubling to see the rise of a movement that is predicated on an exclusionary vision of any country, frankly. And so it is one that I find myself in deep opposition to, not only as an Indian American, but also as the mayor of a city that believes deeply in the belonging of each and every person, no matter their color, their creed, their religion, their faith, wherever they are from.
17: Should the rally be canceled, though, at MSG this weekend?
16: I don't support the rally, but I don't know if the city has any jurisdiction on canceling a private event.
18: Thank you. We have time for some more.
0: बात वाराणसी की, जहां पर गंगा का बढ़ता जलस्तर अब लोगों के लिए परेशानी बन चुका है। पक्के घाटों को डुबोने के बाद अब बाढ़ का पानी आसपास की गलियों तक पहुंच चुका है। वहीं इसका गंभीर असर बीएचयू में दिख रहा है। गंगा के जलस्तर में लगातार उफान है और इसकी वजह से गंगा के घाट डूब रहे हैं। काशी के महाशमशान मणिकर्णिका घाट के सभी शवदाह पानी में डूब चुके हैं। ऐसे में अब ऊंची छत पर अंतिम संस्कार किया जा रहा है।
19: हमारी मौजूदगी इस वक्त महादेव की नगरी काशी में है, जहां मां गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। पानी का प्रवाह लगातार बढ़ रहा है, चाहे बात गंगा की हो या फिर वरुणा की हो। हम इस वक्त दशाश्वमेध घाट पर हैं और अगर आप मुझे देख लेंगे तो मेरे कमर तक यहां पानी आ पहुंचा है। आपको बता दूं, नीचे मेरे घाट की सीढ़ियां हैं, जहां ये नाव खड़ी है यहां तक नाव नहीं आती है। उस छोर को देखें तो वहां तक भी नाव नहीं आती है, काफी नीचे तक सीढ़ियां हैं। लेकिन सबसे गौर करने वाली बात है वो तस्वीर जो मेरे ठीक पीछे आपको दिखाई पड़ेगी, एक पुलिस चौकी जो जलमग्न हो चुकी है। ये देखें आप, जल पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जो पूरी तरीके से आपको दिखाऊं तो जलमग्न होती गई है। और जैसे जैसे पानी का जलस्तर यहां बढ़ेगा, ये जो रौद्र रूप गंगा का है वो इसको भी अपने में समा लेगा और सड़क तक पानी चला जाएगा। श्रद्धालु कांवड़िए भारी संख्या में महादेव के नाम के भोलेनाथ करते हुए स्नान करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन आप तस्वीरों में देखें तो सामने बना मंदिर भी जो है उसकी चौखट भी आपको इस पानी में डूबी नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर वहां पर नाव इस वक्त खड़ी है जहां तक नाव कभी आती नहीं थी। केवल ये वो समय होता है जब माँ गंगा खुद ऊपर आती जाती हैं और दशाश्वमेध घाट को अपने में समा लेती हैं, तब ये नावें जो हैं वो यहाँ आती हैं। लेकिन आप जो श्रद्धालुओं का जो एक तरीके से आस्था है, जो कांवड़ियों की आस्था है वो देखें तो वो कहीं ना कहीं भोलेनाथ हर हर महादेव हर हर गंगे करते हुए इस बाढ़ में भी कहीं ना कहीं माँ गंगा का आशीर्वाद ले रहे हैं, हर हर गंगे कर रहे हैं। जरूर कुछ लोगों के लिए ये त्रासदी है, लेकिन घाटों पर जब गंगा माँ आती हैं तो कांवड़िए हो और श्रावण का मास हो तो केवल आपको हर हर गंगे हर हर महादेव की जय घोष सुनाई पड़ती है। फिलहाल ये डूबी हुई चौकी ये बताने के लिए काफी है कि इस वक्त हालात बाढ़ वाराणसी में क्या नजर आ रहे हैं।
0: तो आपने घाटों का हाल देख लिया, अब आपको बीएचयू का हाल दिखाते हैं। वहां से पूरी जानकारी दे रहे हैं आज तक संवाददाता समर श्रीवास्तव।
19: हम इस वक्त विश्वविख्यात बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी जो कहीं ना कहीं जहां लोग इतिहास विज्ञान पढ़ने सीखने आते हैं, लेकिन आज ये यूनिवर्सिटी नगर निगम की अव्यवस्था के चलते एक ऐसे भूगोल में फंसी नजर आ रही है जिसमें अगर कुछ दिखाई पड़ रहा है तो जल भराव और ये जूझते हुए कुछ स्टूडेंट्स जो अपनी स्कूटी खींचते हुए यहाँ से पानी लेकर आगे निकल रहे। कितना भरा पानी अंदर?
20: बहुत पानी भरा हुआ है, स्कूटी भी लगता है खराब हो गई है। यही देखिए अच्छा। यूनिवर्सिटी है और हॉस्पिटल का हाल ऐसा है, बेस बहुत प्रगति पे दिख ही रहा है।
19: तो क्या क्लास वगैरह हो पाया आपका?
20: क्लास वगैरह कुछ नहीं हो पाया। मैं गया था यहाँ पे, जाना था मेरे को अपना रिपोर्ट लेने ब्लड का, वो तक नहीं ले पाया हूँ।
19: देखिए ये स्टूडेंट्स और भी दिखा दूंगा आपको, कुछ स्टूडेंट्स और लगातार, देखिए कितना कितना पानी है, घुटने घुटने तक पानी है। कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं। हम भी देखिए ग्राउंड जीरो पर इस वक्त हैं, बीएचयू के उस गेट पर जहां से एंट्री पॉइंट है। आपको अंदर लेकर चले, ये देखिए एक महिला है, जितना मैं डीप जा रहा हूँ मेरे घुटने तक पानी यहाँ पर आता जा रहा है। मैं काफी, ये देखिए कैसे कैसे आप लोग निकल रहे हैं यहाँ पे इतने पानी में।
21: अरे भैया क्या बताएं,
19: देखिए इनकी स्कूटी का जो ऊपरी सतह है देखिए यहाँ तक पानी आ रहा है। ये हाल है, यहाँ पर आते हैं आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ आइए। ये साइकिल निकल रही है यहाँ से, तो कुल मिलाकर ये तस्वीरें हैं। जो स्टूडेंट्स हैं वो भुगत रहे हैं। सामने की तस्वीर दिखाइए, किस तरीके से गाड़ियां जा रही हैं, किस तरीके से गाड़ियां आ रही हैं। एक पूरा गेट यहाँ बना हुआ है, नो पार्किंग लिखा हुआ है। और कैसे देखिए स्कूटी फंसी जा रही है, किस तरीके से स्कूटी इन लोग की फंसी जा रही है। तो इस तरह का माहौल फिलहाल वाराणसी के बीएचयू के एंट्रेंस गेट यानी कि बाहरी जो अंदर का रास्ता है। अब इसमें कैसे क्लास होंगे, कैसे टीचर्स पढ़ाएंगे, कैसे विज्ञान का ज्ञान होगा, कैसे इतिहास की बात होगी, जब यहाँ के नगर निगम की अव्यवस्था का उदाहरण सड़कों पर कॉलेजों के बाहर देखने को मिल रहा है।
0: तो बिना ब्रेक के खबरों का सिलसिला लगातार 9 बजे में जारी रहेगा। वक्त हो गया हेडलाइंस का।
22: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस। इन एसोसिएशन विद
23: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: पूर्व सीडीएस कहा लो फ्लाइंग सरप्राइज अटैक की रणनीति से दुश्मन को चौंकाया। सरगोधा स्कार्दू समेत तय किए थे कई टारगेट, तालमेल से आए बेहतर नतीजे। बांग्लादेश में हिंदू परिवार की रेप और हत्या पर घिरी तारिक रहमान सरकार, बर्बरता के खिलाफ बड़ा आक्रोश। पूरे देश में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, पोस्टमार्टम के दौरान मिले दरिंदगी के सबूत। स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब को गैर जरूरी बताने के हाईकोर्ट के फैसले पर भड़के ओवैसी, कहा यह इस्लाम पर हमला। बीजेपी ने हिजाब वाले वीडियो से दिया राहुल गांधी को मनुस्मृति का जवाब। यूपी से दिल्ली तक आधी आबादी पर फोकस, महिलाओं को फ्री बस यात्रा की शुरुआत करेंगे सीएम योगी। दिल्ली में आज महिलाओं को मिलेगी 2500 रुपए की पहली किश्त, रेखा गुप्ता पूरा करेंगी चुनावी वादा। इंडिया टुडे राउंड टेबल कर्नाटक कॉन्क्लेव में दिन भर सजेगा दक्षिण के दिग्गजों का मंच, सीएम डीके शिव कुमार, तेजस्वी सूर्या, प्रियांक खड़गे समेत कई नेता रहेंगे मौजूद।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माह।
0: हिमाचल में खौफनाक लैंडस्लाइड का मंजर आया सामने, चंबा के भरमौर में भरभरा कर गिरा पहाड़, बाल बाल बचे लोग, सड़क पर मलबा गिरने से यातायात प्रभावित। जम्मू कश्मीर के रजौरी में फ्लैश फ्लड से फसलें, सड़कें और जरूरी ढांचा प्रभावित। वाराणसी में बाढ़ में डूबा मणिकर्णिका घाट, छत पर हो रहे हैं शव के अंतिम संस्कार। वाराणसी में बारिश बनी आफत, करंट और मकान गिरने से 6 की मौत। वाराणसी में जलभराव पर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, बारिश के पानी में बैठकर कार्यकर्ताओं ने उठाए जल निकासी व्यवस्था पर सवाल। बिहार के नवगछिया में गंगा उफान पर, खेत खलियान से लेकर मवेशियों के चारे तक गहराया संकट। सुकमा में बारिश बनी ग्रामीणों की मुसीबत, उफनती नदी ने काटा 600 परिवारों का संपर्क। गोंडा में बारिश से लोग परेशान, मरीज को चारपाई से ले जाते दिखा वीडियो। गुरुग्राम में बारिश का कहर, सड़कों के सैलाब में फंसी स्कूल बसें, 7 से 8 घंटे तक खौफनाक सफर के बाद घर पहुंचे मासूम बच्चे। सोनीपत में बारिश में बह गए नगर निगम के दावे, जगह जगह जलभराव। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज लक्ष्मी योजना के तहत 4000 महिलाओं को 2500 रुपए की पहली किश्त जारी करेंगी। तालकटोरा स्टेडियम में सुबह 11 बजे से होगा भव्य कार्यक्रम। सीएम रेखा गुप्ता वादे से नारी सम्मान और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा, दिल्ली अपने वचन को निभाने की एक नई मिसाल लिखेगी। योजना में 6 लाख से ज्यादा महिलाओं का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। पीयूष गोयल बोले 2032 तक भारत में सेमीकंडक्टर की मांग 150 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद, भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का लक्ष्य। भारतीय नौसेना में शामिल होगा स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल निपुण, 31 अगस्त को मुंबई में होगा कमीशन। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया अत्याधुनिक निपुण, नौसेना को 30 जुलाई को सौंपा गया था पोत। आधुनिक डाइविंग सिस्टम और अंडर वाटर ऑपरेशन की सुविधाओं से है लैस। प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में 6 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की समीक्षा की, 9 राज्यों से जुड़ी परियोजनाओं की प्रगति और अड़चनों पर चर्चा। पीएम मोदी ने देशवासियों की ईद मिलाद उन नबी की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह अवसर समाज में एकजुटता और खुशियां बढ़ाने का है। डोभाल वांगी की 25वीं वार्ता में सीमा मुद्दे पर चर्चा, भारत चीन ने सीमा विवाद के समाधान और एलएसी पर शांति बनाए रखने पर जोर दिया। 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन तेज, छात्रों को TRE4 से पीटी मेन्स हटाने की मांग। पंजाब के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों ने अपनी मांगों को लेकर बंद का आह्वान किया, सरकार पर लंबित मांगों के समाधान के लिए दबाव बनाने की तैयारी। दिल्ली पहुंच रही 800 मेट्रिक टन प्याज की खेप, कीमतों पर मिलेगी राहत, कांदा एक्सप्रेस से प्याज लाया गया है दिल्ली। पहली खेप चेन्नई, मदुरई और गुवाहाटी भेजी जाएगी, सरकारी बिक्री के जरिए लोगों को सस्ता प्याज उपलब्ध करने की तैयारी। सरकार ने जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर को निजी कंपनियों को लीज पर देने की मंजूरी दी, फैसले को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार पर साधा निशाना। JPNIC लीज विवाद पर अखिलेश का सरकार पर तंज, अखिलेश यादव बोले अब बस सरकार को ठेके पर देना बचा है। अभिषेक बैनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से अंतरिम राहत, पुलिस को पूछताछ या कार्रवाई से 48 घंटे पहले नोटिस देना होगा, कोर्ट ने आदेश से बैनर्जी को फिलहाल राहत दी है। बांग्लादेश के रंगपुर में हिंदू परिवार की हत्या से बवाल, स्कूल शिक्षक गणपति चक्रवर्ती, उनकी पत्नी और 2 बच्चों के शव घर से बरामद, स्थानीय हिंदू समुदाय में आक्रोश। मामले की जांच और विरोध के बाद इसे पुलिस से हटाकर डिटेक्टिव ब्रांच को सौंपा गया, स्थानीय लोग आरोप है कि हत्या में शामिल अन्य आरोपियों को बचाया जा रहा है। गैंगरेप के आरोपों ने मामले को और गंभीर बनाया, फोरेंसिक रिपोर्ट महिलाओं के साथ दुष्कर्म की बात कही गई, वहीं स्थानीय स्तर पर पुलिस पर तथ्यों को छुपाने का आरोप। 2 आरोपी गिरफ्तार, जांच का दायरा बढ़ाने की मांग, लोगों का दावा है हत्याकांड में 2 से ज्यादा लोग शामिल थे। बांग्लादेशी दूतावास के बाहर प्रदर्शन की तैयारी, हिंदू संगठनों ने परिवार की हत्या के विरोध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाज उठाने का ऐलान किया है। राहुल गांधी पर बीजेपी का हमला, हिजाब अबाया को लेकर पितृसत्ता के खिलाफ उनके रुख पर उठाए सवाल। बीजेपी ने पूछा महिलाओं के सशक्तिकरण पर धर्म के आधार पर अलग अलग मानदंड क्यों है। महिला प्रतिनिधित्व को लेकर अमित मालवीय का राहुल गांधी पर हमला, बोले कर्नाटक और हिमाचल की कांग्रेस सरकार में कोई महिला मंत्री नहीं है। राहुल गांधी के स्मैश द पेट्रियार्की अभियान पर उठा सवाल। चीनी की बढ़ती कीमतों पर केंद्र लगाया लगाम, जमाखोरी पर कार्रवाई से घटी दर, 10 लाख टन चीनी आयात को मंजूरी। सीएम योगी बोले यूपी में पर्याप्त स्टॉक है। जापान दौरे पर है वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, पीएम मोदी के खिलाफ फैलाई जा रही गलतफहमियां, उन्होंने कहा लेकिन इस्लामिक देश भी दे चुके हैं सर्वोच्च सम्मान। यूपी चुनाव में AIMM की जीत के लिए ओवैसी ने मांगी दुआएं। ओवैसी ने कार्यकर्ताओं से पार्टी के आंदोलन को मजबूत करने की अपील की। ओवैसी ने मुस्लिम समुदाय के राजनीतिक नेतृत्व की जरूरत पर जोर दिया, कहा इससे भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था और संविधान मजबूत होगा। ओवैसी बोले 18 करोड़ की आबादी, संसद में सिर्फ 24 सांसद, समुदाय की आवाज उठाने वाला पर्याप्त राजनीतिक नेतृत्व नहीं है। यूसीसी को लेकर ओवैसी ने उठाया सवाल, कहा अगर कानून हिंदू पर्सनल लॉ के प्रावधानों पर आधारित है तो उन्हें समान नागरिक संहिता कैसे कहा जा सकता है। न्यूयॉर्क मेयर जोहरान ममदानी ने आरएसएस कार्यक्रम का किया विरोध, मैडिसन स्क्वायर गार्डन में मोहन भागवत के कार्यक्रम पर ममदानी ने कहा मैं इस रैली का समर्थन नहीं करता। यूपी में 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा का तोहफा, योजना के तहत 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र की महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा का सौगात। यूपी कैबिनेट का युवाओं को डिजिटल सुविधा देने का बड़ा ऐलान, सरकार की योजना के तहत 25 लाख टैबलेट्स मुफ्त बांटे जाएंगे। MBBS और BDS इंटर्न्स को अब हर महीने 25,000 रुपए स्टाइपेंड मिलेगा, यूपी सरकार के फैसले से मेडिकल इंटर्न्स को राहत। योगी आदित्यनाथ ने कहा सरकार रोजगार देने की दिशा में तेजी से काम कर रही है, सीएम के मुताबिक यूपी में अब तक 9.5 लाख से ज्यादा युवाओं को मिली है नौकरी। योगी ने कहा कि राज्य के पास करीब 7 महीने का चीनी स्टॉक मौजूद है, उन्होंने चीनी की उपलब्धता को लेकर किसी भी तरह की कमी से इनकार किया। यूपी में श्रमिकों के लिए नियुक्ति पत्र जारी, हर साल होगी मुफ्त स्वास्थ्य जांच। रक्षाबंधन से पहले लखनऊ में मिलावट खोरों पर नकेल, FSDA ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर देर रात ताबड़तोड़ छापेमारी की, संदिग्ध खाद्य पदार्थों से लदी 3 गाड़ियां पकड़ी गई। रक्षाबंधन से पहले बरेली में मिलावट खोरों पर शिकंजा, 490 किलो मिठाई मौके पर नष्ट, जांच के दौरान खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए। बदायूं में अंबेडकर प्रतिमा को लेकर बवाल, पुलिस पर पथराव, पुलिस और प्रशासन के 8 लोग घायल, 10 से ज्यादा वाहन क्षतिग्रस्त। 12 वफात को लेकर संभल में पुलिस प्रशासन अलर्ट पर, SP ने पुलिस फोर्स और PAC के साथ जुलूस कर पैदल मार्च निकाला। मायावती का हिजाब विवाद बयान का, धार्मिक रीति रिवाजों और मान्यताओं का सभी को सम्मान करना चाहिए, उन्होंने स्कूलों में हिजाब के मुद्दे पर स्थानीय स्तर पर बातचीत से सुलझाने की अपील की। संभल में जामा मस्जिद के आसपास 36 दुकानों और मकानों पर कार्रवाई तेज, प्रशासन ने जारी किया नोटिस। लखनऊ में प्याज के बढ़ते दामों ने बिगाड़ा घरेलू बजट, लोगों में नाराजगी, उठाए गए सवाल। चीनी के बढ़ते दाम पर अमेठी में प्रशासन का बड़ा एक्शन, शासन निर्देश पर चीनी के बड़े कारोबारियों के गोदाम पर छापेमारी। अयोध्या में चीनी प्याज के बढ़ते दामों से लोगों में नाराजगी, बोले बढ़ती महंगाई ने बिगाड़ा बजट। महाराष्ट्र में खुले खाद्य तेल की बिक्री पर रोक नहीं, मिलावट रोकने के लिए 2011 से लागू है प्रावधान। मुंबई के मशहूर अयूब के खिलाफ FDA की कार्रवाई, गंभीर खाद्य सुरक्षा उल्लंघन और साफ सफाई से जुड़ी कई खामियां पाई गई। बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, MCA की BKC कैंटीन किचन का FDA करेगा निरीक्षण। रिपोर्ट पर कोर्ट ने उठाए सवाल, खिलाड़ियों के लिए चाय कॉफी वेंडिंग मशीनों को अंतरिम मंजूरी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नेविल डिसूजा फुटबॉल ग्राउंड के कन्वेंशन सेंटर बदलने पर लगाई रोक, 18 सितंबर तक DMC को आगे की कार्रवाई से रोका। बुलढाणा में किसान नेता रविकांत तुपकर को पुलिस का नोटिस, 27 अगस्त को मंत्रालय के सामने आंदोलन और मंत्रियों के बंगले, सरकारी वाहनों की सांकेतिक नीलामी की चेतावनी। दिल्ली क्राइम ब्रांच में नकली और डायवर्टेड एंटी कैंसर दवाओं के अंतर्राज्यीय सिंडिकेट का किया भंडाफोड़, 17 गिरफ्तार। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने इंटर स्टेट सेल का किया पर्दाफाश, करीब 9 करोड़ रुपए की दवाएं, 50 लाख रुपए नकदी, बड़ी संख्या में एंटी कैंसर इंजेक्शन पाए गए। दिल्ली क्राइम ब्रांच की जांच में पता चला कि दिल्ली NCR, मुंबई, हैदराबाद, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तक फैला है सप्लाई का नेटवर्क। राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, स्कूल कैंटीनों गेट से 50 मीटर तक चिप्स, कोल्ड ड्रिंक और जंक फूड पर बैन। दिल्ली में बढ़ते H1N1 मामलों में बीच स्कूलों का के लिए अलर्ट, शिक्षा विभाग ने जारी की एडवाइजरी, मास्क, हाथ धोने और साफ सफाई पर जोर। ओणम पर रामराज कॉटन का एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज, 3,000 धोतियों से कोच्चि में बनाया गया 30 फीट व्यास का सबसे बड़ा उपकल्लम। परंपरा को आधुनिक अंदाज में पेश करने की पहल, रामराज कॉटन के मुंडुकलम में मिला एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का सम्मान किया नागराजन ने कहा धोती हमारी संस्कृति का हिस्सा है। मॉनसून के बीच चार धाम और हेमकुंड साहब यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह, हेमकुंड साहब पहुंचने वाले श्रद्धालुओं ने इंतजामों पर जताई खुशी, साल 10 अक्टूबर तक हेमकुंड साहब के कपाट खुले रहेंगे। सावन की फुहारों के बीच अयोध्या के मठ मंदिर फूलों और रंग बिरंगी सजावट से सजे स्वर्ण रजत जड़ित इंडोलों पर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं श्री राम और माता जानकी। जयपुर के SMS अस्पताल में बड़ा हादसा, ट्रॉमा सेंटर में सीलिंग फैन गिरने से महिला के सिर में लगी चोट। काकीनाडा परिवार आत्महत्या मामले में नया मोड़, धन परिवर्तन के दबाव डालने के आरोप से मामले में नया मोड़। कटक में जंगली सुअरों के हमले से 14 साल का बच्चा, कमिटी नहर के अंदर जंगली सुअर ने बच्चे पर हमला किया था, बाल बाल बची जान। गुजरात के शामला जी में घरेलू विवाद बना हत्या की वजह पति ने कथित तौर पर कुल्हाड़ी से हमला कर पत्नी की हत्या की। सिंगरौली में स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़ा सवाल, सफाईकर्मी मरीजों का इलाज करते पकड़ा गया। मुरादाबाद में 9 तेंदुए के रेस्क्यू के बाद नहीं थमा आतंक, तीसरी मौत से गांव में दहशत, अब खेतों की ओर जाने से डर रहे हैं ग्रामीण। रुड़की में डबल मर्डर से मचा सनसनी, दो सगी बहनों की भाई ने गोली मारकर हत्या की। दिल्ली के आंजल इलाके में कूड़ा उठाने वाले ट्रक की डीटीसी बस से टक्कर, हादसे के बाद मची अफरा तफरी। दिल्ली के ओखला औद्योगिक क्षेत्र इलाके में स्थित कपड़े की फैक्ट्री में भीषण आग, दमकल की गाड़ी ने पाया आग पर काबू। बाराबंकी में लखनऊ से बहराई जा रही कार में तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर, चार की मौत एक घायल। श्रीगंगानगर में इलेक्ट्रिक स्कूटी में जोरदार धमाका, घर के बाहर खड़ी स्कूटी में लगी आग, दो बच्चे बाल बाल बचे। सूरत में ट्रक चालक बाइक को दूर तक घसीटता रहा, बाइक सवार ने कूदकर बचाई जान। दिल्ली के जसोला नाले में गिरे बच्चे का शव चौथे दिन मिला, शनिवार को नाले में बच्चे के गिरने के बाद से चल रहा था रेस्क्यू ऑपरेशन। डूंगरपुर के स्कूल में भरभरा कर गिरी जर्जर कमरे की छत, 120 बच्चों की जिंदगी बाल बाल बची। कोलंबो टेस्ट में श्रीलंका पर फॉलो ऑन का खतरा, स्कोर 265 रन पर 8 विकेट, 238 रन से भारत आगे, बारिश के कारण तीसरे दिन जल्द समाप्त हुआ मैच। भारत की ओर से प्रसिद्ध कृष्णा और मानस सुथार ने तीन तीन विकेट लिए, रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज को एक एक विकेट मिला। ग्रैंड चेस टूर 2026 के फाइनल में पहुंचे भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा। भारत के एन श्रीराम बालाजी और अनिरुद्ध चंद्रशेखर ने जीता कैनकन कंट्री ओपन का खिताब, फाइनल के मेक्सिको बेलारूस की जोड़ी को हराया। यूएस ओपन में वापसी करेंगे 20 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन रॉजर फेडरर, न्यूयॉर्क के आर्थर एश स्टेडियम में खेले एक एग्जीबिशन मैच। माइथोलॉजिकल फिल्म महाकाली का धमाकेदार ट्रेलर आउट, शुक्राचार्य के रूप में एक्टर अक्षय खन्ना दिखाई देंगे। एक्टर इमरान हाशमी की गन मास्टर G9 का टीजर जारी, 27 सितंबर को सिनेमाघर में लॉन्च। सिद्धार्थ मल्होत्रा तमन्ना भाटिया की द वन का टीजर आउट, 25 सितंबर को होगी लॉन्च। फर्स्ट लुक पोस्टर के साथ अजय देवगन की दृश्यम 3 का रिलीज डेट से उठा पर्दा, 2 अक्टूबर को होगी लॉन्च। अक्षय कुमार ने लंदन में शुरू की 2026 की चौथी फिल्म सामो की शूटिंग, इंस्टाग्राम पर वीडियो जारी किया। ट्रंप का बड़ा दावा, ईरान में गंभीर मांग में संकट, ईरान की सेना को नहीं मिल रहा है वेतन। कतर ने ईरान को लगाया अमेरिकी प्रतिबंध को बताया एक तरफा, कतर के विदेश मंत्रालय ने कहा इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कतर मध्यस्थता का समर्थन करता है। ट्रंप से बात के बाद ईरान दौरे पर गए पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर, आसिम मुनीर ने ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। रूस यूक्रेन जंग के बीच मॉस्को में उतरा अमेरिकी सेना का विमान, घटना के बाद मचा हड़कंप। जेलेंस्की का बड़ा बयान था, अगले साल गर्मियों में रूस के साथ युद्ध समाप्त होने की उम्मीद है।

0: अभिनेत्री कृति सैनन के एक विज्ञापन ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है। कृति सैनन का विज्ञापन राखी वाली ज्वेलरी को लेकर है, जिस पर कंगना रनौत ने गंभीर सवाल उठाए। कंगना के सवालों पर कृति ने पलटवार किया है। कृति सैनन ने पूछा कि आखिर कब तक महिलाओं के कपड़ों पर सवाल उठाए जाते रहेंगे। राहुल गांधी भी कृति सैनन के सपोर्ट में आए हैं। उन्होंने कहा कि महिलाएं क्या पहने या नहीं पहने ये उनकी पसंद है।
1: एक्ट्रेस कृति सैनन का नया ज्वेलरी राखी का ये एड सुर्खियों में है, लेकिन ये चर्चा विज्ञापन में पहनी गई ज्वेलरी से ज्यादा कृति सैनन के आउटफिट को लेकर हो रही है। रक्षाबंधन के मौके पर ज्वेलरी ब्रांड के लिए बने इस एड में कृति इंडो वेस्टर्न लुक में नजर आ रही है। उन्होंने ब्रालेट स्टाइल ब्लाउज के साथ केप और ड्रिप्ड स्कर्ट पहनी है। इसी लुक पर अब जंग छिड़ गई है। सवाल उठने लगे कि सांस्कृतिक त्योहार रक्षाबंधन से जुड़े विज्ञापन में कृति का ये पहनावा कितना सही है। कृति सैनन पर अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने निशाना साधा। उन्होंने लिखा,
2: आज हमारे पास पहनने के इतने सारे विकल्प हैं, तो आप अपने भाई की कलाई पर राखी बिकनी अंडरगार्मेंट्स पहनकर क्यों बांधेंगी? आपके पास स्टाइलिंग के इतने विकल्प हैं, वो कहां गए? हाँ हाँ, ये विज्ञापन जानबूझकर अजीब और असहज करने वाला लगता है।
1: कंगना रनौत ने एक दिन पहले ही तापसी पन्नू, सोनू सूद और आशुतोष राणा पर भी निशाना साधा था।
3: देखिए, इनफ इज इनफ। मैं देखती हूँ हर एक आए दिन कि इस तरह के लोग, चाहे वो आशुतोष राणा हो जो कहते हैं कि कुत्ते की तरह भौंकते हैं, चाहे सोनू सूद टाइप लोग हैं जो कहते हैं कि मुझे तरीका सीखना चाहिए, राखी सावंत टाइप लोग हैं जो मेरे चरित्र पर जो है हर तरीके की भद्दी टिप्पणी करते हैं, तापसी पन्नू टाइप लोग हैं जो मेरे माता पिता को, मेरी परवरिश को, मेरे बैकग्राउंड को अपमानित करते हैं। ये लोगों के लिए मेरा सिर्फ एक मैसेज है कि अगर आप मेरे समान 1% भी लाइफ में सक्सेस नहीं कमा पाए हो तो मैं आपका कोई भी ज्ञान नहीं सुनूंगी। सब फेल और बिल्कुल अनवांटेड लोग जो है, मुझे जब देखो चार गालियां देते रहते हैं मीडिया में आने के लिए, पहले आप कंगना रनौत बनो तो सही, आप बन के दिखाओ ना। लेकिन आप लोगों की मैं बिल्कुल कोई भी सलाह मशवरा नहीं सुनूंगी। कोई कुत्ता कह रहा है, कोई माता पिता को गाली दे रहा है, कोई कहता है, मैं ये भद्दी टिप्पणियां नहीं सुनूंगी। ये भूखे नंगे लोग मुझ पे लैच ऑन नहीं हो सकते हैं। इनफ इज इनफ। पेरेंट्स को नहीं छोड़ रहे हैं, कोई आशुतोष राणा जैसे कह रहे हैं कि कुत्ते की तरह भौंकती है। आप पहले कंगना रनौत बन के दिखाइए। अगर जो पर्सन मुझसे ज्यादा सक्सेसफुल है, मुझसे ज्यादा माननीय है, उनकी मैं सलाह लूंगी।
1: कंगना के बयान पर कृति सैनन ने पलटवार किया। उन्होंने लिखा,
2: महिला के कपड़ों से उसकी संस्कृति के प्रति सम्मान को नहीं मापा जाना चाहिए। त्योहारों की असली भावना आपके कपड़ों में नहीं बल्कि उन भावनाओं और परंपराओं में होती है जिन्हें आप दिल से मानते हैं। रक्षाबंधन का मतलब केवल कपड़ों से नहीं है बल्कि ये प्यार और सुरक्षा का प्रतीक है।
1: अब राखी से पहले कृति का ये विज्ञापन विवादों में घिर रहा है। आज तक ब्यूरो।
0: रुकेंगे एक्चुअली से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए आज तक।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है।
3: ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
4: ये है एक लेगेसी। मेरी शादी के कंगन सेनको से ही लिए थे,
5: क्योंकि ऐसी बारीक कारीगरी और कहां।
6: इसीलिए सेनको इंडिया का अमंगस्ट मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड एज नॉमिनेटेड बाय द TRA।
7: अब मैं क्या ही बोलूं?
8: परिवार अटूट भरोसा।
9: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
10: Oh no, बहुत बोर लग रहा है।
11: Take a date, not bites.
12: No added sugar, preservative के बिना। Dates, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया। Lion dates, nut bites.
11: Lion date, nut bites.
13: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं।
14: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
15: पापा।
16: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
17: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
16: छक्का?
17: सब कैशलेस हो गया है।
16: हाँ
18: तो भरोसा है।
19: इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
20: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
21: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: हमारी स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स। और अब लाइन लाइना डेट्स, इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
1: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
2: आगे आगे
3: करेक्ट करेक्ट
4: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: इन एसोसिएशन विद विमल बोलो जुबा केसरी, हिंट एक हिंट तो देते
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
3: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
4: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: युवाओं को नौकरी, युवाओं का अंदाज। योगी आदित्यनाथ की यह सेल्फी उन युवाओं के साथ है जिनको आज उन्होंने नियुक्ति पत्र सौंपे। जब देश का जेएनजी टॉप ट्रेंडिंग में है, परीक्षाओं और सरकारी भर्तियों में सिस्टम को सुधारने की मांग पर सड़कों पर उतर रहा है, तब योगी आदित्यनाथ की यह सेल्फी सामने आई है। मौका था 3,446 टेक्निकल असिस्टेंट और 126 मंडी सचिवों की नौकरी का नियुक्ति पत्र बांटने का। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ के निशाने पर आई समाजवादी पार्टी। यूपी के युवाओं को लेकर 2017 से पहले के हाल पर योगी का दावा ये था,
1: 17 के पहले की परिपाटी थी कि नियुक्ति का विज्ञापन निकलता था, चाचा भतीजे की जोड़ी और महाभारत का पूरा खानदान फिर वसूली के लिए प्रदेश भर में निकल पड़ता था, नौजवान भटकता रहता था, परिणाम नहीं आता था और अंततः माननीय न्यायालय को कोर्ट में स्टे लगाना पड़ता था।
0: योगी आदित्यनाथ का दावा है कि कर्फ्यू, दंगा, उपद्रव और भ्रष्टाचार यूपी की पहचान बन चुके थे। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता था, लेकिन 9 साल में स्थिति ऐसी बदली है कि यूपी सरकार अगले 6 महीनों में 1,00,000 नौकरियां दे सकेगी।
1: नोट करिए, अगले 6 महीने के अंदर 1,00,000 नौजवानों को फिर सरकारी नियुक्ति पत्र अलग अलग स्टेज में हर सप्ताह उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। 1,00,000 सरकारी नियुक्ति पत्र हम देने जा रहे हैं। अनुमान करिए, 1,00,000 यूपी के अंदर कभी ये कल्पना होती थी? यहां हम 6 महीने के अंदर ही 1,00,000 नौजवानों को सरकारी नियुक्ति पत्र दे दें, सारी परीक्षाएं पूर्ण हो गई।
0: योगी आदित्यनाथ यूपी के युवाओं को बेहतर भविष्य का ये भरोसा ऐसे समय में दे रहे हैं जब पहले दिल्ली, फिर झारखंड और अब बिहार में युवाओं का आक्रोश सामने दिखा है। 2027 के चुनाव के मद्देनजर युवाओं पर अखिलेश यादव और मायावती की भी नजरें हैं। विपक्ष योगी सरकार में युवाओं के भविष्य पर सवाल उठाने में पीछे नहीं।
2: 2017 में 2026 के बीच में ये 1,00,000 नौकरियां क्यों नहीं क्रिएट हुई थी? आज जब पूरे देश में युवाओं का, छात्रों का भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक गहरा आक्रोश, असंतोष व्याप्त है सड़कों पर, 1,00,000 नौकरी का ऐलान कर रहे हो, 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष वाला क्या हुआ? मुख्यमंत्री जी, पूरी उत्तर प्रदेश में जो पक्की नौकरियां थी, जो बैकलॉग्स हैं, आज तक नहीं भरे।
3: जब वो नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, बच्चे उनसे पूछ रहे हैं कि नौकरियां कहाँ हैं, तो उन्हें 10 साल पहले का चाचा भतीजा याद आ रहा है, साबू याद आ रहा है, विक्रम बेताल याद आ रहा है। ये विक्रम बेताल, चाचा भतीजा याद करने से क्या नौकरी मिल जाएगी बच्चों को? योगी आदित्यनाथ जी, 69,000 शिक्षक सुप्रीम कोर्ट में आपने लटका रखे, 68,500 आपने कोर्ट में लटका रखे, जिनको आपने नौकरियां दे चुके हैं, पुरानी सरकारें दे चुकी हैं, उनको भी आपने लटका रखा है।
0: चुनाव में युवाओं के असर के मद्देनजर राजनीति संजीदा हो चली है। हाल ही में स्कूलों की समस्याओं को लेकर जेएन अल्फा का प्रदर्शन भी यूपी में देखने को मिला था। इसके बाद अब योगी सरकार ने प्राइमरी से लेकर 8वीं तक के स्कूलों के पुनर्निर्माण और मरम्मत के लिए 604 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया है। बेसिक शिक्षा विभाग ने 302 करोड़ रुपयों की पहली किस्त जारी भी कर दी है। साफ है कि शिक्षा और नौकरी के बुनियादी अधिकार की मांगों पर राजनीति में एक हलचल तो नजर आने लगी है। आज तक ब्यूरो

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में सप्लाई होने वाले कैंसर के इंजेक्शन के नकली होने का खुलासा। दिल्ली में पानी मिलाकर 1-1 लाख रुपए में बिक रहा था एक इंजेक्शन, 7 राज्यों तक फैला था जाल। पहली बार ऑपरेशन सिंधु पर खुलकर बोले पूर्व सीडीएस अनिल चौहान, कहा लो फ्लाइंग सरप्राइज अटैक की रणनीति से दुश्मन को चौंकाया। सरगोधा स्कार्दू समेत तय किए गए थे कई टारगेट्स, तालमेल से आए बेहतर नतीजे। स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब को गैर जरूरी बताने के हाईकोर्ट के फैसले पर भड़के ओवैसी, कहा यह इस्लाम पर हमला। हिजाब के समर्थन में आई मायावती, कहा संविधान देता है आजादी। यूपी से दिल्ली तक आधी आबादी पर फोकस, महिलाओं को फ्री बस यात्रा की शुरुआत करेंगे सीएम योगी। दिल्ली में आज महिलाओं को मिलेगी 2500 रुपए की पहली किश्त, रेखा गुप्ता पूरा करेंगी अपना वादा। इंडिया टुडे राउंड टेबल कर्नाटक कॉन्क्लेव में दिन भर सजेगा दक्षिण के दिग्गजों का मंच, सीएमडी के शिव कुमार, तेजस्वी सूर्या, प्रियांक खड़गे समेत कई नेता रहेंगे मौजूद।

0: गुड मॉर्निंग, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। मॉर्निंग प्राइम टाइम आज सुबह के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि इस बुलेटिन में क्या क्या खास रहने वाला है। बताएंगे आपको कि हिजाब पर क्यों बरपा है हंगामा, राहुल गांधी के मन से हाईकोर्ट तक आखिर क्यों है उबाल। हम साथ ही आपको दिखाएंगे कि महिलाओं का दम कितना है। बताएंगे कि कैसे दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक सौगातों की बौछार हो रही है। और ठीक आधे घंटे के बाद आपको दिखाएंगे ग्राउंड रिपोर्ट, पंजाब के स्कूलों का सच। लेकिन हम बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले नकली कैंसर की दवाइयों के सिंडिकेट को लेकर करेंगे। जो बड़े खुलासे हुए वो आपको बताएंगे। कैंसर की दवा के नाम पर बेचे जाने वाला इंजेक्शन दिल्ली पुलिस की जांच में नकली निकला है। राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में सप्लाई की जाने वाली ये कैंसर की दवा के नाम पर दिल्ली में बेचा जा रहा था इंजेक्शन, लेकिन पानी भरकर लाखों रुपयों में कैंसर का ये इंजेक्शन मरीजों को बेचा जा रहा था। ड्रग्स माफिया एक एक लाख में इस इंजेक्शन को बेच रहे थे। क्राइम ब्रांच ने दवा सप्लाई बनाने वाली कंपनी के जरिए जर्मनी के मर्क लैब से जांच करवाई, जिसमें पता चला कि कैंसर से लड़ने वाला मूल इंग्रेडिएंट शून्य था, मतलब था ही नहीं। दिल्ली के ब्लैक मार्केट में कैंसर मरीज इस एवालुमैब इंजेक्शन को एक एक लाख रुपए में खरीद रहे थे। एक एक लाख में यह गिरोह वॉयल चोरी करके उसमें रिफिलिंग करके बेचता था। और इस मामले में 7 राज्यों से अब तक 17 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आरोपियों के कब्जे से और उनके ठिकानों से 588 भरी हुई एंटी कैंसर दवाइयां, उनकी शीशियां बरामद की गई हैं। बरामद दवाइयों और दूसरे सामान की कीमत लगभग 9 करोड़ रुपए बताई गई है। अब यह नेटवर्क दिल्ली NCR, मुंबई, नवी मुंबई, हैदराबाद, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तक फैला हुआ था। हमारे दो संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राजस्थान से जयपुर से शरद हमारे साथ हैं और हिमांशु दिल्ली से समय है। लेकिन शरद, सबसे पहले आपके पास आते हुए बताएं कैसे इसका खुलासा हुआ, कैसे ये सिंडिकेट काम कर रहा था, नकली से उसको असली कैसे बनाया जा रहा था इंजेक्शन को, और कब से बनाया जा रहा था।
1: और देखिए, एक बहुत बड़ा खुलासा है ये, और राष्ट्रीय स्तर पर कैंसर के मरीज देश भर से दिल्ली पहुंचते हैं। ये समाज को भी शर्मसार करने वाला है और ये दिल दहला देने वाली घटना है कि कैंसर के तड़पते मरीजों को पानी भर के लाख रुपए में बेचा जा रहा था। जब ये दिल्ली के क्राइम ब्रांच ने इसको पकड़ा तो अपने आप में ये काफी चौंकाने वाला खुलासा था, क्योंकि 18 कैंसर के वायल लाख रुपए के जो बीकानेर के सरकारी अस्पताल में सप्लाई किए गए थे मरीजों के नाम से, वो उनके पास मिले। उसके बाद जब राजस्थान सरकार ने जांच कमेटी बैठाई और जांच कमेटी में जब पूरे रजिस्टर को चेक किया गया तो वो सारे वॉयल जो हैं वो मरीजों के नाम इशू थे। वहां से जब क्राइम ब्रांच ने इसकी जांच जर्मनी भेजी कंपनी के जरिए मर्क लैब में, तो पता चला कि इसमें तो इंग्रेडिएंट है ही नहीं। और उससे भी बड़ी चौंकाने वाली बात है, आप रिपोर्ट को पढ़िए राजीव, उसमें ई कोलाई जो है वो फंगस है, बैक्टीरिया है, यानी कि जो कैंसर के मरीज बच सकते थे उन्हें भी मारने वाली ये दवा है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कितने बार उसके रबड़ को पंक्चर किया गया है, यानी कि सिरिंज से उसमें खाली या तो वायल है उसमें ये पानी भरा गया है, कोई केमिकल भरा गया है, या कोई ओरिजिनल है उसमें से खींच कर बाहर निकालकर थोड़ा थोड़ा सब में भरा गया है। तो ये केवल जब राजस्थान में मिलने वाले जो वायल में इस तरह से पानी भरकर बेचा गया है, तो देश भर से जो ये कैंसर के वायल चोरी किए गए हैं या फिर खाली वायल निकाल कर लाए गए हैं और पानी भरा गया है, तो ये कितने समय से चल रहा था और कितने मरीजों को मारा गया है, ये अपने आप में दिल दहला देने वाली घटना है कि किस तरह से समाज के तौर पर मरते जा रहे हैं कि पैसे कमाने के लिए कैंसर के मरीज को भी नहीं छोड़ रहे हैं। और इतने बड़े पैमाने पर दिल्ली जैसे भारत की राजधानी में इस तरह के रैकेट चलाया जा रहा है, जहां पर नकली दवा कैंसर के गंभीर मरीजों को यह कहकर बताया जा रहा है कि राजस्थान सरकार के अस्पतालों वाली दवा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये हथियारे, इनको सबको कहा जा सकता है कि ये सब हथियारे थे। लेकिन दिल्ली में हिमांशु ये चल कैसे रहा था, कितने समय से चल रहा था, प्रशासन कैसे पता नहीं था, मतलब राजस्थान जाकर पता चला, तो दिल्ली की सरकार क्या कर रही थी, पुलिस क्या कर रही थी, इंटेलिजेंस क्या कर रही थी।
2: काफी समय से पुलिस इनके पीछे लगी हुई थी राजीव, और देखिए ये पूरा नेटवर्क काम कैसे करता है, ये बेसिक लेवल से शुरू करते, ये इस तरीके से शातिर हैं कि इन्होंने जो हॉस्पिटल में जो वहां का कचरा निकलता है वहां पर ये जो वाइल्स होती हैं, जो शीशियां होती हैं दवाइयों की, उनको किसी तरीके से नष्ट न किया जा सके और वो वाइल वो शीशियां इनको सीधे एकदम सही हालात में मिले, इसलिए ये शीशियों के बदले 2000 से 5000 रुपए खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि उसमें उनको दवाई तो भरना नहीं होता, उसमें वो पानी या कुछ भी वो इस तरीके की चीज भर देते हैं। तो इसलिए इन शीशियों से ये कारोबार नीचे से शुरू होता है और उसके बाद ये लगातार नजर रखते हैं जहां पर कैंसर मरीज आकर के बाहर के रुकते हैं, जहां पे स्टे करते हैं वहां पर ये नजर रखते हैं। और उसके बाद जो अलग अलग स्टेट में, क्योंकि ये जो 17 लोग गिरफ्तार हुए हैं सिर्फ दिल्ली के नहीं है, ये 7 अलग अलग राज्यों से जो गिरफ्तारियां हुई हैं और ये हर जगह से जो रिकवरी हुई है, करीब 9 करोड़ की रिकवरी अब तक हो चुकी है। तो ये जो पूरा नेटवर्क था ये नीचे से लेकर के जो खाली वायल खरीदने से लेकर के उसमें फिलिंग से लेकर के उसके डिस्ट्रीब्यूशन तक था। अब जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें हॉस्पिटल से लेकर के बिचौलिए और जो इस पूरे नेटवर्क के चला रहे थे सबकी गिरफ्तारी हुई है। जी
0: ठीक है हिमांशु और शरद, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हिजाब के, जिसे लेकर सियासी पारा आसमान पर है। बीजेपी ने मनुस्मृति के खिलाफ राहुल के बयान को हिजाब के काउंटर जो है काउंटर किया है। पहले मंच पर हिजाब वाली लड़की का वीडियो जारी किया गया और अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का एक बयान जारी किया गया है। और दूसरी ओर इलाहाबाद हाईकोर्ट के स्कूलों में हिजाब पर रोक वाले फैसले पर सियासी उबाल भी है। असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे इस्लाम पर इसे हमला बता दिया तो मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी धार्मिक आजादी पर दखल बता दिया। तो वहीं बीजेपी ने इस फैसले का स्वागत किया है। राहुल गांधी पुणे के छात्रों के गूंज कार्यक्रम में थे, मनुस्मृति को लेकर उसको लेकर कई बयान दिए, महिला विरोधी बताया तो बीजेपी ने हिजाब से हमला किया। बीजेपी ने अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा वाला एक बयान जारी किया है और उस बयान के जरिए नई धार दी है अपने बयानों को। राहुल गांधी हिजाब को महिलाओं का पहला हक से जोड़ रहे थे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। बीजेपी ने राहुल गांधी पर महिलाओं की आजादी को लेकर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया कि अगर हिंदू है तो वहां पर आप पेट्रिया की और तमाम तरह की बात करते हैं, मनुस्मृति से जोड़ते हैं, लेकिन महिलाएं अगर हिजाब पहनती हैं तो आप उसे हक बताते हैं। तो बीजेपी इस रूप में हमला कर रहे हैं और सिर्फ मनुस्मृति का ही आप उल्लेख करते हैं जब आप छात्रों की गूंज कार्यक्रम करते हैं, जबकि हर धर्म में कुछ ना कुछ है महिलाओं के लिए, आप उनका तो जिक्र ही नहीं करते हैं। तो यह दोहरा रवैया अपनाते हैं राहुल गांधी पर, यह बीजेपी हमलावर है।
3: सर अगर आप सत्ता में आएंगे, अगर आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो आपका क्या नजरिया होगा कि एक औरत अबाया और हिजाब पहनकर फ्री नहीं फील करती है? क्या अबाया और हिजाब उतार
4: देखिए मेरी व्यू है कि जो महिला पहनना चाहती है वो उसके ऊपर है। अगर वो अबाया पहनना चाहती है, कुछ और पहनना चाहती है, वो उसका बिजनेस है, उसका काम है, उसको अलाउ करना चाहिए। मेरी तो ये राय है।
5: कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के खिलाफ बोल रहे हैं, अम्बेडकर साहब से भी बड़े हो गए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पूरे देश की हर विचारधारा का व्यक्ति मौजूद था। जब ये दो स्टैंजास की बात वहां भी रेटिफाई हुई थी, वहां भी उसका अनुमोदन हुआ था वंदे मातरम का, तो ये उन सबसे बड़ा अपने आप को मानने लगे। अपना काम आता नहीं है, ढेले भर का गृहमंत्री बने हैं, पैलेट गन किसने चलाई जवाब नहीं दे पा रहे, या तो इतने नाकारा हैं कि मालूम ही नहीं किसने चलाई।
0: हमारे संवाददाता पीयूष भी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। पीयूष, अब क्या कांग्रेस और राहुल गांधी खासतौर पर फंसते दिख रहे हैं, क्योंकि अब उन पर आरोप लग रहा है कि वो एक ही धर्म को टारगेट करते हैं, मतलब हर धर्म की कुछ ना कुछ कुरीतियों को उनको सामने रखना चाहिए था लेकिन एक ही धर्म की वो बात करते हैं, और अब जो राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा के दौरान का बयान है उसके जरिए और ज्यादा बीजेपी हमलावर है।
6: जी बिल्कुल राजीव, बीजेपी काफी हमलावर है और ये हमला तब शुरू हुआ बीजेपी का जब हिजाब को लेकर फैसला आया कोर्ट का, जिसमें ये साफ कह दिया गया उत्तर प्रदेश में कि हिजाब जो है वो इस्लाम धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। और जिस फैसला आने के बाद बीजेपी ने जरूर राहुल गांधी से सवाल किया है कि क्यों वो मनुस्मृति पर ही हमला कर रहे हैं, क्यों वो हिजाब के मुद्दे पर वो चुप हैं। एक वीडियो भी साझा किया गया है बीजेपी के द्वारा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, जिसमें ये दिख रहा है कि कैसे एक महिला जब हिजाब को लेकर राहुल गांधी से सवाल पूछती है तो राहुल गांधी ये कहते हैं कि जो महिला जिस तरह से जीवन जीना चाहे, जो पहनना चाहे वो उनकी इच्छा, और अगर कोई पहनना चाहता है हिजाब तो वो उनकी इच्छा। उस पर राहुल गांधी ने कोई अपनी खास टिप्पणी नहीं की, लेकिन मनुस्मृति को लेकर जिस तरह से बातें उन्होंने पुणे में कही उसके बाद से लगातार बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर है। और जब से फैसला हाईकोर्ट का आया है उसके बाद से बीजेपी सवाल पूछ रही है कि आप मनुस्मृति पर तो कई सारी बातें करते हैं लेकिन हिजाब को लेकर जो है आप चुप्पी साध लेते हैं। अब देखना ये होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी जिस तरह की बातें बीजेपी के द्वारा कही जा रही है उस पर अपनी बात रखती है या नहीं, क्योंकि ये मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है राजीव। और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह की बात आना जरूर राजनीतिक गतिविधियों को जोड़ देता है।
0: बहुत शुक्रिया पीयूष आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे हिजाब पर मचे सियासत की। हिजाब पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश आया और उसके बाद सियासतुद्दीन ओवैसी उन्होंने आपत्ति इस पर जताई है। असदुद्दीन ओवैसी ने हाईकोर्ट के आदेश को इस्लाम पर सीधा हमला करार दिया है। असदुद्दीन ओवैसी इस पर लगातार हमलावर हैं और वो इसे इस्लाम का भिन्न हिस्सा बता रहे हैं। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कल ही फैसला दिया जिसमें कहा कि ये पहले तो इस्लाम का भिन्न हिस्सा नहीं है, तो ऐसे में जो छात्रा की याचिका थी उसको खारिज कर दिया कि आपको हिजाब पहनना अनिवार्य, मतलब आप इसे इस्लाम का हिस्सा बताते हैं बट ऐसा है नहीं, आपको स्कूल में तो कम से कम ये पहनकर नहीं जाना होगा। अब इस फैसले के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया और उन्होंने कहा कि ये इस्लाम पर ही एक बड़ा हमला है।
7: आज इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया, हमारी एक बेटी स्कूल में हिजाब पहन रही थी, हिजाब पहन के कोर्ट ने कह दिया कि हिजाब आप नहीं पहन सकते। मैं इस हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ हूं, इससे एग्री नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि साबरीमाला केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट रिजर्व फॉर जजमेंट है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फाजिल जजेस को अपना जजमेंट रोकना चाहिए था। जब सुप्रीम कोर्ट इज सीज्ड ऑफ दैट मैटर, नाउ जजेस ये डिसाइड कर रहे हैं। क्या डिसाइड कर रहे हैं कि एसेंशियल क्या है, व्हाट इज एसेंशियलिटी, व्हाट इज एसेंशियल, और फिर क्या रिलीजियस जो हमारी इबादतें हैं वो भी प्रोटेक्ट करेंगे नहीं करेंगे। और आज का फैसला ये भारत की आईन की दफा 25 और 19 के खिलाफ है। मैं कपड़े पहनता हूं, सिख हमारे बेटियां और हमारे बच्चे पहनते हैं। आप होते कौन है इस्लाम के सेंचुअलिटी को डिसाइड करने वाले?
8: मैं समझता हूं कि जो सिख धर्म के बच्चे भी पगड़ी पहनकर आते हैं, उन पर कोई किसी तरह की पाबंदी नहीं है। तो अगर बच्ची स्कार्फ पहन के आ रही है या हिजाब पहन के आ रही है, मैं समझता हूं कि उस पर कोई इस तरह की टिप्पणी नहीं होनी चाहिए थी, कोई फैसला नहीं आना चाहिए था। 2 साल में ऐसा कौन सा नॉर्म्स स्कूल का चेंज हो जाएगा जब 10 साल में।
0: तो अब विरोध के जो स्वर हैं वो सुनाई देने लगे हैं हाईकोर्ट के फैसले के बाद से। खासतौर पर जो मौलाना है, मौलवी हैं या धर्म गुरु हैं, मुस्लिम धर्म गुरु हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, वो सवाल उठा रहे हैं और वो इस फैसले को सही और उचित नहीं बता रहे हैं। वो इस फैसले के खिलाफ अपने आप को बता रहे हैं, खासतौर पर असदुद्दीन ओवैसी। और वो ये भी दलीलें दे रहे हैं कि सिख धर्म के लोग भी अपना धर्म का पालन करते हैं और स्कूल में वैसे ही पगड़ी पहनकर जाते हैं, तो अगर कोई हिजाब पहनकर जाना चाहता है तो उसमें आपत्ति क्या है। अब बात कंगना रनौत की, जिन्होंने एक पोस्ट डाला और राहुल गांधी पर हमला बोला और इसे मनुस्मृति वाले विरोध का जवाब ही माना जा रहा है। इस पोस्ट में कंगना रनौत ने कहा है भारत माता की जय। ये पोस्ट है कंगना रनौत का और इसमें आप तस्वीर देखेंगे तो इसमें फोटो है, इसमें स्मैश द पेट्रियार्की, राहुल गांधी का एक तरीके से इसमें चेहरा है और ये एक संवाद इसमें दिखाई दे रहा है। कंगना रनौत ने अपनी स्टोरी लगाई है तो इसमें भारत माता की जय बोलो राहुल। कंगना रनौत ने यह पोस्ट किया कि भारत माता की जय से शुरू करते हैं ब्रो, मतलब स्टाइल वही है जेंजी वाला। तो ये पोस्ट उन्होंने किया है, कंगना रनौत ने इसे शेयर किया है। अभिनेत्री कृति सेनन के एक विज्ञापन ने सोशल मीडिया पर बवाल मचाया हुआ है। कृति सेनन का एक विज्ञापन जो राखी वाला है जिसमें ज्वेलरी को लेकर है, इस पर कंगना रनौत ने अब गंभीर सवाल उठाए हैं। कंगना रनौत के सवालों पर कृति सेनन ने पलटवार भी किया है। कृति सेनन ने पूछा कि आखिर कब तक महिलाओं के कपड़ों पर सवाल उठाते जाते रहेंगे। राहुल गांधी भी कृति सेनन के समर्थन में आ गए और उन्होंने कहा कि महिलाएं क्या पहने क्या नहीं पहने ये उनकी पसंद होनी चाहिए।
9: एक्ट्रेस कृति सेनन का नया ज्वेलरी राखी का ये एड सुर्खियों में है, लेकिन ये चर्चा विज्ञापन में पहनी गई ज्वेलरी से ज्यादा कृति सेनन के आउटफिट को लेकर हो रही है। रक्षाबंधन के मौके पर ज्वेलरी ब्रांड के लिए बने इस एड में कृति इंडो वेस्टर्न लुक में नजर आ रही है। उन्होंने ब्रालेट स्टाइल ब्लाउज के साथ केप और ड्रिप्ड स्कर्ट पहनी है। इसी लुक पर अब जंग छिड़ गई है। सवाल उठने लगे कि सांस्कृतिक त्योहार रक्षाबंधन से जुड़े विज्ञापन में कृति का ये पहनावा कितना सही है। कृति सेनन पर अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने निशाना साधा। उन्होंने लिखा,
10: आज हमारे पास पहनने के इतने सारे विकल्प हैं, तो आप अपने भाई की कलाई पर राखी, बिकनी, अंडरगार्मेंट्स पहनकर क्यों बांधेंगी? आपके पास स्टाइलिंग के इतने विकल्प हैं, वो कहां गए? हाँ हाँ, ये विज्ञापन जानबूझकर अजीब और असहज करने वाला लगता है।
9: कंगना रनौत ने एक दिन पहले ही तापसी पन्नू, सोनू सूद और आशुतोष राणा पर भी निशाना साधा था।
11: देखिए, इनफ इज इनफ। मैं देखती हूँ हर एक आए दिन कि इस तरह के लोग, चाहे वो आशुतोष राणा हो जो कहते हैं कि कुत्ते की तरह भौंकते हैं, चाहे सोनू सूद टाइप लोग हैं जो कहते हैं कि मुझे तरीका सीखना चाहिए, राखी सावंत टाइप लोग हैं जो मेरे चरित्र पर जो है हर तरीके की भद्दी टिप्पणी करते हैं, तापसी पन्नू टाइप लोग हैं जो मेरे माता पिता को, मेरी परवरिश को, मेरे बैकग्राउंड को अपमानित करते हैं। ये लोगों के लिए मेरा सिर्फ एक मैसेज है कि अगर आप मेरे समान 1% भी लाइफ में सक्सेस नहीं कमा पाए हो, तो मैं आपका कोई भी ज्ञान नहीं सुनूंगी। सब फेल और बिल्कुल अनवांटेड लोग जो है, मुझे जब देखो 4 गालियां देते रहते हैं मीडिया में आने के लिए, पहले आप कंगना रनौत बनो तो सही, आप बन के दिखाओ ना। लेकिन आप लोगों की मैं बिल्कुल कोई भी सलाह मशवरा नहीं सुनूंगी। कोई कुत्ता कह रहा है, कोई माता पिता को गाली दे रहा है, कोई कहता है, मैं ये भद्दी टिप्पणियां नहीं सुनूंगी। ये भूखे नंगे लोग मुझ पे लैच ऑन नहीं हो सकते हैं। इनफ इज इनफ। पेरेंट्स को नहीं छोड़ रहे हैं, कोई आशुतोष राणा जैसे कह रहे हैं कि कुत्ते की तरह भौंकती है। आप पहले कंगना रनौत बन के दिखाइए। अगर जो पर्सन मुझसे ज्यादा सक्सेसफुल है, मुझसे ज्यादा माननीय है, उनकी मैं सलाह लूंगी।
9: कंगना के बयान पर कृति सेनन ने पलटवार किया। उन्होंने लिखा,
10: महिला के कपड़ों से उसकी संस्कृति के प्रति सम्मान को नहीं मापा जाना चाहिए। त्योहारों की असली भावना आपके कपड़ों में नहीं, बल्कि उन भावनाओं और परंपराओं में होती है जिन्हें आप दिल से मानते हैं। रक्षाबंधन का मतलब केवल कपड़ों से नहीं है, बल्कि ये प्यार और सुरक्षा का प्रतीक है।
9: अब राखी से पहले कृति का ये विज्ञापन विवादों में घिर रहा है। आज तक ब्यूरो।
0: रक्षाबंधन से पहले दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है, बड़ा तोहफा उनको देने जा रहे हैं। आज से दिल्ली लक्ष्मी योजना की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तालकटोरा स्टेडियम में लाभार्थी महिलाओं को सर्टिफिकेट देकर इस योजना की शुरुआत करेंगे। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की सहायता मिलेगी। हालांकि खाते में राशि 1 सितंबर को आएगी। सरकार के मुताबिक 17 लाख से ज्यादा महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। मिशन 2027 महिलाओं को योगी की भी सौगात है। उत्तर प्रदेश में भी 2027 की तैयारियों के मद्देनजर महिलाओं के प्रति एक बड़ा दाव खेला गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज महिलाओं को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। महिलाओं के लिए बसों में मुफ्त सफर की योजना लॉन्च की जा रही है। यानी कि चुनावी तैयारियों के बीच योगी सरकार का फोकस महिला वोटर्स पर है। सरकार की इस पहल को महिलाओं को राहत और सुरक्षित आवागमन से जोड़कर देखा जा रहा है। खासकर कामकाजी महिलाओं, छात्राओं और रोजाना बस से सफर करने वाली महिलाओं के लिए यह फैसला अहम माना जा रहा है। यानी एक तरफ मिशन 2027 की सियासी तैयारी, दूसरी तरफ महिलाओं के लिए फ्री बस सफर की बड़ी सौगात। सवाल यह भी है कि क्या योगी सरकार की यह पहल यूपी की महिला वोटर्स के बीच में बड़ा असर पैदा करेगी। आज लॉन्च होने वाली इस योजना पर हमारी भी नजर बनी हुई, क्योंकि यूपी में चुनावी माहौल से पहले योगी सरकार का यह महिला कनेक्ट काफी बड़ा सियासी संदेश दे रहा है। अब बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बड़े ऐलान की। सीएम योगी की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 24 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें सबसे चर्चित फैसला रहा, 60 साल से ज्यादा या उससे ज्यादा की आयु की जो महिलाएं हैं उन्हें राज्य परिवहन निगम की बसों में आजीवन मुफ्त यात्रा की सुविधा देने जा रही है सरकार। रक्षाबंधन से पहले आए इस फैसले को महिलाओं के लिए बड़ी सौगात माना जा रहा है। हमारे संवाददाता आशीष श्रीवास्तव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, 2027 से पहले ये कितना बड़ा स्टेप है और क्या लाभार्थी सिर्फ वही महिलाएं होंगी जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा होगी, बुजुर्ग जो होंगी?
12: बिल्कुल राजीव, देखिए सबसे बड़ी बात है ये मास्टर स्ट्रोक योगी सरकार का कहेंगे, क्योंकि इन महिलाओं को साधने के लिए ये पूरी तरीके से निशुल्क यात्रा शुरू की गई है, जो कि उत्तर प्रदेश में पूरे कहीं भी किसी जिले में जा सकती हैं। साथ ही साथ उन महिलाओं को अपना केवल वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड दिखाना होगा जिससे वो निःशुल्क जाएंगी। इसी को हरी झंडी दिखाने के लिए आज सीएम योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ मौजूद रहेंगे। अगर आप मेरे पीछे देख पाएंगे तो ये सभी वो बसें हैं और महिलाओं को यहाँ पहुंचाया गया है। महिलाएं अभी अपने गंतव्य स्थान पर जाएंगी और ये काफी खुश नजर आ रही है, चूंकि इनका मानना है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि उनको फ्री निःशुल्क यात्रा है। अगर आप कहेंगे तो मैं दो महिलाओं से बात भी कर सकता हूं जो यहां पर मौजूद है। आप बताइए, आप लोगों को योगी जी ने फ्री किया है, ये बसों को कितनी खुशी है इसको लेकर? है कुछ खुशी?
13: देखिए
12: यहाँ पर महिलाएं आखिर गांव की कुछ बोल नहीं पा रही है, चूंकि अभी ये इनके लिए पहली ये बस सेवा है शुरू, इस वजह से यहाँ पर मौजूद स्थिति में आप देखेंगे कि यहाँ पर महिलाएं, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में एक बड़ा वोट बैंक भी है, 2027 का चुनाव है, योगी आदित्यनाथ की सरकार ये जानती है कि कहीं ना कहीं महिलाओं को वोट बैंक के जरिए साधा जा सकता है। यही वजह है कि वो इसको लेकर पूरी खुशी नजर आ रही हैं। और अंदर अगर आप देखेंगे तो अंदर भी कई महिलाएं बैठी हैं जो अपने गंतव्य स्थान पर जाने के लिए यहाँ पर तैयार हैं। और ये सभी चूंकि इस देखा जा रहा था संकल्प पत्र में योगी आदित्यनाथ ने इसको कहा था,
0: बिल्कुल देखना होगा कि कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, तो फिर चुनावों में पता चलेगा। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अब रुकने छोड़े से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
15: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
16: श्राम

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है। ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
6: ये है एक लेगेसी। मेरी शादी के कंगन सेनको से ही लिए थे,
7: क्योंकि ऐसी बारीक कारीगरी और कहां।
5: इसीलिए सेनको इंडिया का
8: अमंगस्ट मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड एज नॉमिनेटेड बाय द TRF।
5: अब मैं क्या ही बोलूं?
9: परिवार अटूट भरोसा।
10: कुछ भी खा नहीं पा रहा हूँ, बहुत अपसेट हूँ।
11: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
12: लायन डेट नट बाइट्स।
13: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
14: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
15: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
16: पापा,
17: सॉरी यार, गलती हो गई है। ये चोट खर्चा वर्चा।
16: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
17: छक्का?
16: सब कैशलेस हो गया
17: है। ओ ला भाई मेरा बैट। वो अभी तो ठीक हुआ तू।
18: बिलोट चार्ज हुआ यार।
17: बैट किसका है?
19: टाटा AIG है तो भरोसा है।

0: The new BE6 Sportec.
1: Presented by पतंजलि गाय का घी लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: इन एसोसिएशन विद
1: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में सप्लाई होने वाले कैंसर के इंजेक्शन के नकली होने का खुलासा। दिल्ली में पाने मिलाकर 1-1 लाख रुपए में बिक रहा था एक इंजेक्शन, 7 राज्यों तक फैला था जाल। पहली बार ऑपरेशन सिंदूर पर खुलकर बोले पूर्व CDS अनिल चौहान का लो फ्लाइंग सरप्राइज अटैक की रणनीति से दुश्मन को चौंकाया। सरगोधा स्कार्दू समेत तय किए गए थे कई टारगेट्स, तालमेल से आए बेहतर नतीजे। हिजाब को इस्लाम का जरूरी हिस्सा न बताने की हाईकोर्ट की टिप्पणी पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, कहा यह इस्लाम पर हमला। हिजाब के समर्थन में आए मायावती, कहा संविधान देता है आजादी। यूपी से दिल्ली तक आधी आबादी पर फोकस, महिलाओं को फ्री बस यात्रा की शुरुआत करेंगे सीएम योगी। दिल्ली में आज महिलाओं को मिलेंगे 2500 रुपए की पहली किश्त, रेखा गुप्ता पूरा करेंगे चुनावी वादा। इंडिया टुडे राउंड टेबल कर्नाटक कॉन्क्लेव में दिन भर सजेगा दक्षिण के दिग्गजों का मंच। CMD के शिव कुमार, तेजस्वी सूर्या, प्रियांक खड़गे समेत कई नेता रहेंगे मौजूद।

0: पंजाब। पंजाब वो राज्य है जिसको लेकर एक तरफ दावा नीति आयोग की रिपोर्ट के आधार पर रहता है कि पंजाब के स्कूलों ने शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक में पहला नंबर हासिल किया है, लेकिन उसी पंजाब में भगवंत मान सरकार के दावों से अलग भी हकीकत है, रियलिटी है, जहां सरकारी स्कूल भगवान भरोसे चल रहे हैं। आज तक के 4 जिलों से ग्राउंड रिपोर्ट आई है ताकि भगवंत मान सरकार को जमीनी सच पता चले, क्योंकि कहीं धर्मशाला में स्कूल चल रहा है, कहीं 80-90 साल पुराने जर्जर बिल्डिंग के कमरों में बच्चों को गोदाम के सामान की तरह ठूस कर पढ़ाया जा रहा है।
1: आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल दावा करते हैं 4.5 साल में उनकी पार्टी की सरकार ने पंजाब में स्कूलों को शानदार बना दिया।
2: मात्र 4.5 साल के अंदर हमने पंजाब के स्कूल इतने शानदार बना दिए हैं।
1: इतना शानदार कि पंजाब के मानसा में, धर्मशाला में, सरकारी स्कूल को बरामदे में एक साथ 4-4 क्लास के बच्चों को बैठाकर चलाना पड़ता है। दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री और केजरीवाल की पार्टी में नंबर 2 मनीष सिसोदिया दावा करते हैं कि उनकी पार्टी के राज वाले पंजाब के सरकारी स्कूल ऐसे हैं कि किसी को विश्वास नहीं होगा।
3: स्कूलों को लेकर बहुत बहस हो रही है आजकल कि कितने खराब सरकारी स्कूल हैं। मैं आज पंजाब में राजपुरा में ऐसे ही घूम रहा था तो नलास गांव के एक स्कूल के सामने से निकला और अचानक हमने सोचा कि देख लें पंजाब सरकार के स्कूल कैसे हैं।
1: पता नहीं क्यों ऐसे ही घूमते घूमते पंजाब सरकार और आम आदमी पार्टी के नेता क्यों नहीं पंजाब के संगरूर में ऐसे स्कूल पहुंच जाते जहां दीवारें बताती हैं कि दावे सरकारी खोखले हैं।
4: आवाज मिक्स होती है, फिर काम भी कराना पड़ता है, पढ़ाई के लिए दिक्कत आती है, बैठने की दिक्कत आती है।
5: आपको?
4: हमको ना स्कूल छोटा होने की दिक्कत आती है और बैठने की दिक्कत आती है, पीने पीने और
5: समझ आता है। एक साथ पढ़ाई जाते हैं सारे क्लासेस, समझ आ जाता है आपको?
4: नहीं आता।
1: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कहते हैं पंजाब में विद्या का सूरज चढ़ेगा।
6: विद्या का सूरज चढ़ूगा, तरक्की का सूरज चढ़ूगा, रोजगार का सूरज चढ़ूगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का सूरज चढ़ूगा, तरक्की का सूरज चढ़ूगा। हर रोज चढ़ रहा है, हर रोज सूरज ऊपर हो रहा है।
1: लेकिन जब एक ही कमरे में 2-2, 3-3 क्लास के बच्चों को बैठाकर पढ़ाने की मजबूरी सरकारी स्कूलों में होगी तो कैसे बच्चों की विद्या का सूरज चढ़ पाएगा?
7: 4th क्लास है सारी, ओ 5th क्लास विच मिक्स कीती हुई, बाहर गर्मी होगी सी तां करके फिर अंदर लेके आंदी सी क्लास, फिर हुन तां करके थोड़ा सिलेबस कंबाइन करके पढ़ाना पैंदा।
1: क्या पंजाब में स्कूलों पर सरकारी दावे हाथी के दांत जैसे, दिखाने को और खाने को और? इसीलिए आज तक संवाददाता कमलजीत संधु और असीम बस्सी पंजाब के 4 जिलों से आज आपको स्कूलों की हालत पर खबरदार करती रिपोर्ट दिखा रहे हैं। सबसे पहले पंजाब के शिक्षा मंत्री के दावे वाला वीडियो देखिए, जो ये दावा करके कहते हैं कि पंजाब में सब कुछ चकाचक है। उदाहरण के लिए मानसा के भैनी भागा में सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में नई सुविधाओं से लैस लाइब्रेरी का वीडियो पंजाब के शिक्षा मंत्री जारी करते हैं। लेकिन सवाल है कि मानसा में जो चमचमाता दावा पंजाब के शिक्षा मंत्री का है, क्या वही चमचमाहट हर स्कूल में है, या फिर 4 जगह की चांदनी और बाकी अंधेरी रात वाली हकीकत है? इसीलिए मानसा के इस दूसरे स्कूल का हाल देखिए, जहां बाहर स्कूल का नाम नहीं बल्कि लिखा है गुरु रविदास भवन, जो असल में श्री गुरु रविदास संस्था की एक धर्मशाला है, और भीतर इसी धर्मशाला में पंजाब का सरकारी स्कूल चलता मिलता है, जहां दीवारों पर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री की तस्वीर वाला पोस्टर चिपकाकर ये मुनादी कराई जा रही है कि चलो बचपन बचाएं 2026। लेकिन किस हाल में बच्चों का बचपन बचा रहे हैं, हकीकत आज पंजाब सरकार देखे और खबरदार हो जाए। आज तक संवाददाता असीम बस्सी पंजाब के मानसा में जिस सरकारी स्कूल तक पहुंचे हैं, वहां गौर से बस देखिए और गिनिए पहली टीचर जो एक क्लास पढ़ा रही हैं। उनसे 2 हाथ की दूरी पर दूसरी क्लास को पढ़ाने वाली टीचर बैठी हैं, बच्चे मौजूद हैं। इनसे दो हाथ से भी कम की दूरी पर हरे रंग के सूट में तीसरी टीचर तीसरी क्लास ले रही हैं। इन तीनों के पीछे पीले रंग के सूट में चौथी टीचर चौथी क्लास लेती हैं। एक ही बरामदे में चार चार क्लास, यहाँ प्री प्राइमरी पहली तीसरी और चौथी क्लास एक जगह पर ऐसे चल रही हैं। चार क्लास के बच्चे, बच्चे जिनमें कुछ कुर्सी पाए, कुछ मानो धर्मशाला के गद्दे पर बैठाकर पढ़ाए जा रहे। वर्ल्ड क्लास के दावे में थर्ड क्लास की हकीकत पंजाब के सरकारी स्कूल में नजर आती है।
8: शिक्षा के क्षेत्र में चाहे सरकार जो है बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन एक तस्वीर जो है वो ये भी है। सरकार कई तस्वीरें पेश करती है, लेकिन एक तस्वीर ये भी है जो कि सरकारी प्राइमरी स्कूल औलख बस्ती मानसा की है। ये प्राइमरी स्कूल है और वरंडा से चल रहा है। ये एक धर्मशाला है, मानसा के अंदर एक धर्मशाला है और धर्मशाला से स्कूल चल रहा है, क्योंकि उनकी अपनी कोई बिल्डिंग जो है वो नहीं है। और यहाँ पर हालात आप देख सकते हैं कि बच्चों के बैठने के लिए ना फर्नीचर है, छोटे बच्चों के पास कुर्सियां हैं, लेकिन जो थर्ड स्टैंडर्ड है, फोर्थ स्टैंडर्ड है, फर्स्ट स्टैंडर्ड है, वो सब जमीन पे बैठे हैं। और ये सभी क्लासेस जो हैं यहीं लगी हैं, सभी टीचर्स यहीं बैठे हैं एक कमरे के अंदर। और किस तरह का कॉन्सेंट्रेशन बनता होगा, किस तरह के हालात जो है वो बनते होंगे, और वही टीचर्स हैं, वहीं पर बच्चे हैं।
1: अब आप इस वीडियो को देखकर बताइए, क्या हम अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में पढ़ने भेज सकते हैं जहां कंसंट्रेशन, फोकस, डीप इन्वॉल्वमेंट यानी एकाग्रता, ध्यान, तल्लीनता टीचर और बच्चों के बीच होनी चाहिए। वहां दो पिलर वाले बरामदे में चार क्लास चलाकर वाहवाही लूटती पंजाब सरकार। बातें भले बदलाव की करे, लेकिन तीन दशक से धर्मशाला में चलते स्कूल को उसकी बिल्डिंग तक नहीं दिला पाई है।
8: यहां पे ओपन वरांडा में बैठती आके वो, तो आपको लगता नहीं कि बिल्डिंग होनी चाहिए, प्रॉपर माहौल होना चाहिए?
9: होनी चाहिए, ये बच्चे बहुत तंग परेशान है।
8: तो बोला आपने सरकार को कभी? बोला
9: बोला सरकार नहीं, सुनाई नहीं करती।
8: नहीं।
10: कितनी देर से कहाँ चल रहा है स्कूल?
9: ये तो बहुत साल से चल रहा है।
8: को जगह नहीं, एक ये बरंडा है, एक ऊपर बरंडा
9: है, ऊपर भी कोई आवाज
8: एक ही है। तो काफी सालों से ये चल रहा है, तो कोई बदलाव नहीं किया?
9: 25-26 साल हो गए।
8: नहीं तो कोई चेंजेस नहीं आए? तो आप खाना बनाते हैं, खाना यहीं बच्चे खाते हैं, मुश्किलें आती हैं?
9: बहुत अच्छा।
11: कारण यह है जी भी इतने गुमी शादी के प्रोग्राम होंगे रहते हैं, बच्चों की पढ़ाई भी खराब होंगी है और साढ़े प्रोग्राम भी डिस्टर्ब।
8: तो ये कितने सालों से यहाँ चल रहा है?
11: ये तकरीबन 92 तो
8: 92 से यहीं चल रहा
11: है। 92
8: पाँचवीं तक? तो देखो बच्चे जमीन पे बैठे हैं, टीचर बीच में ही बैठे हैं, सभी क्लासेज यहीं हैं। तो आपको लगता है इसमें किस तरह की पढ़ाई होती होगी?
11: पढ़ाई तुहाडे सामने सर जी, बड़े बच्चों का ग्रुप बने पे जी, ग्रुप के बच्चे किन्ने पास एल के जी तो लैके फिफ्थ तक यह स्कूल है। फिफ्थ तक यह छे क्लासा ने, छे क्लासा के बच्चों तुम बच्चे देखो भी किमें छे क्लासा किमें करते हैं।
8: एसी वरांडे में बैठे,
11: एसी वरांडे।
0: अब आप सोचिए, ऐसा स्कूल जो किसी ऐसी धर्मशाला में चलता है जहां कभी बारात रुकती होगी, जहां पर कभी कोई दूसरा कार्यक्रम होता होगा, शोर मचता होगा, वहीं पर बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं। और ये हकीकत उस पंजाब की सरकारी व्यवस्था की है जो कहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था सुधारना ही उनका सबसे बड़ा मकसद है, संकल्प है। लेकिन क्या मुंह में सुधार और बगल में छुपी पंजाब की सरकार की नीति है?
1: पंजाब में सरकारी स्कूल धर्मशाला के भरोसे हैं, इसका दूसरा सबूत संगरूर में मिलता है। देखिए पहले प्रदर्शन करते हैं माता पिता को। स्कूली बच्चों की यही माता पिता पहले कई बार प्रदर्शन तक कर चुके हैं, इस उम्मीद में कि पंजाब सरकार में किसी कर्ता धर्ता की शायद आंख इनकी मांग पर खुल जाए। लेकिन क्या हुआ? कुछ इसी तरह से पंजाब के संगरूर में बच्चों को सुरक्षित माहौल में बेहतर तरीके से शिक्षा पाने के सपने और अधिकार को सरकारी सुस्ती ड्रिल करके तोड़ दे रही है। जिस संगरूर से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 2022 से पहले तक दो बार सांसद चुने गए, उन्हीं के पुराने संसदीय क्षेत्र में बेंदड़ा के दलित मोहल्ले के प्राइमरी स्कूल को पिछले साल जर्जर हालत में पाए जाने पर जनता के धरना देने के बाद तब तोड़ दिया गया जब इस इमारत में पढ़ना बच्चों के लिए खतरे से खाली नहीं रह गया था। जनता के धरने के बाद जिस जर्जर स्कूल को तोड़ा गया, उसकी जगह अब तक नया स्कूल बनाकर दिया ही नहीं गया। नतीजे, बच्चे धर्मशाला में भगवान भरोसे पढ़ाई करने के लिए छोड़ दिए गए।
12: हम इस वक्त गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल का जो पुराना ढांचा है वहां पर हैं, क्योंकि वो अब खत्म हो चुका है और बच्चे अब धर्मशाला में पढ़ते हैं। ये देख सकते हैं किस तरह से तहस नहस हो चुका है। बेनड़ा का ये गांव है जो कि संगरूर में पड़ता है, और आपको बता दें कि भगवंत मान 2014 से 2022 तक यहां पे दो बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। लेकिन क्या खस्ता हालत है, क्यों बच्चे स्कूल में ना पढ़ के, और ये बिल्डिंग क्यों डिमोलिश की गई?
13: पिछले टाइम बारिश नहीं पड़ी पिछले साल, ये ओदे कारण होया सब तो ज्यादा जी। ये उदो थोड़ा जा उधरों दब गया स्कूल, उन्होंने त्रेड़ा आ गई, एदा चल रहा मसला अज तो 4 महीने पहला। 4 महीने लगातार असि धरने ते रहे उधरली साइड,
12: 4 महीने
13: हाँ लगातार लगातार धरना दी है जी, भुख हड़ताल ते। असि ने यह इन्हां इहदे मुद्दा चुकिया, ते धर्मशाला च बच्चे पढ़ते ने जेड़े सिर्फ एक पख्या कारण है, मनो पख्या दे सहारे ही बहिंदे ने। ते इह मसला अज तो ऐ मान लो कि पिछले डेढ़ साल तो प्लस ये स्कूल बंद पिया, धर्मशाला जी क्लासा लग रही ने बच्चों दी।
1: स्कूल की नई इमारत है नहीं तो अब धर्मशाला में एक एक कमरे में कई क्लास लगाकर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। और जैसे ही आज तक संवाददाता ने यहाँ कैमरा ऑन करके शूट करना शुरू किया, कमरा बंद करा दिया गया।
12: आज तक को देखते ही स्कूल यानी धर्मशाला के दरवाजे तो बंद हो गए हैं, लेकिन हम बात करेंगे माता पिता से और जानेंगे कि कितने परेशानी में है बच्चे।
14: साडे बच्चे वास्ते स्कूल वधिया बनना चाहिए जी। साडे बच्चे उरे आउंदे ने गर्मी च बैठते ने, एक एक पखा थोड़ा थोड़ा चलता है जी। हाँ ओदे बारे असि ना बहुत ओह कर रहे हैं, साडा बच्चा पैर तो अज्जा भी है ना। असि गरीब हाँ जी, असि तो हुण सरकारी च लाया होया जी, असि प्राइवेट पढ़ा नहीं सकते ना।
1: यही वजह है कि पेरेंट्स संगरूर में कई बार इस तरह के प्रदर्शन करके बच्चों के लिए नए स्कूल की मांग रखते आए हैं। जिस स्कूल के लिए प्रदर्शन हो रहा है उसके बारे में प्रशासन ने यह जानकारी दी है कि 20 लाख रुपए मंजूर हुए हैं, जल्द नया स्कूल बनना शुरू होगा।
15: दम सब स्कूल नए बन चुके हैं, एक दो रहते होंगे, वो भी बन रहे हैं, उनका भी कंस्ट्रक्शन का काम बराबर चल रहा है।
0: एक तरफ पंजाब सरकार दावा करती है कि केवल 500 स्कूल ऐसे बचे हैं जिनमें सुधार होना बाकी है, जबकि दूसरी तरफ आज तक को लगातार ऐसे स्कूल पंजाब में मिलते हैं जहां लंबे वक्त से स्कूल प्रशासन अपनी शिकायतें करता है लेकिन दावा है कि कोई सुनता ही नहीं।
1: पंजाब में सरकारी स्कूल की हालत समझनी है तो तीसरा सबूत भी संगरूर में मिलता है, जहां कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा के इलाके का सरकारी स्कूल देखिए। आज तक संवाददाता कमलजीत संधु जब संगरूर के भगवान वाल्मीकि सरकारी स्कूल पहुंचती हैं, तो पहला ऑप्शन सरकार ने यहां बच्चों के लिए ये रख छोड़ा है कि टिन शेड के नीचे बच्चे गर्मी ठंडी बारिश जो भी हो वहां या तो पढ़ाई करें या फिर एक ही कमरे में कई क्लास के बच्चों में कुछ को बेंच पर तो कुछ को जमीन पर बैठा कर पढ़ाई कराई जाए। यही अगर पंजाब की 4.5 साल में बदली हुई तस्वीर है तो फिर क्या पंजाब सरकार इसी तस्वीर पर गर्व करती है, जहां खेल का मैदान और बच्चों के लिए लाइब्रेरी तो दूर की बात है। हकीकत में 80 साल पुरानी बिल्डिंग में बच्चों को मानो किसी गोदाम के भीतर सामान की तरह ठूस कर

0: और सेकंड क्लास थोड़े थोड़े पोर्शन में हम लेके बैठते हैं, 10-10, 12-12 स्टूडेंट्स हम यहाँ पे, मतलब बहुत भीड़ होती है, हमारी आवाज भी आपस में बहुत मिक्सअप होती है और बच्चों को समझ भी नहीं आती, फिर हम उनको अपने टेबल के पास खड़ा होकर उनको साउंड्स रिकॉग्निशन करवानी होती है, तो उस टाइम करवाते हैं मैम, पास में बुलाना पड़ता है बच्चों को। और ब्लैक बोर्ड वर्क तो मैम पॉसिबल ही नहीं है, बाहर करवाते हैं कई बार, जैसे ब्लैक बोर्ड पे करवाना है कुछ तो बाहर करवाते हैं।
1: एक पुरानी बिल्डिंग और आप देखिए यहीं पे बीच में आपको प्याज नजर आएंगे, मिड डे मील का जो सामान है वो नजर आएगा, और आपको बता दें कि प्रोजेक्टर यहाँ पे जरूर है, लेकिन उस बीच में अगर आपको बताएं यहाँ पे ये कौन कौन सी क्लासेस है मैम, अगर आप बताएंगे कौन कौन सी क्लासेस एक साथ आप पढ़ा रहे हैं यहाँ पर।
2: मैम ये फोर्थ क्लास है सारी, और फिफ्थ क्लास विच मिक्स की हुई, बाहर गर्मी होगी सी तां करके फिर अंदर लेके आंदी सी क्लास, फिर हूं तक करके थोड़ा सिलेबस कंबाइन करके पढ़ाना पैंदा, मतलब गर्मी करके बच्चा नु बाहर भी नहीं बिठाया जाता है।
1: अच्छा, तो एक साथ मगर कैसे आप इसमें डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि सिलेबस तो फिर अलग ही है।
2: नहीं मैम, बेसिकली चीजें करवा देने हैं ना फिर।
1: आप लोगों ने कोई प्रशासन को इसके बारे में बताया है कि क्या आप लोगों को दिक्कत है इसमें?
0: यस मैम, बहुत बार अलर्ट किया है, जैसे अनसेफ भी है रूम, जैसे ज्यादा बारिश होती है तो हमें उस टाइम भी बच्चों का डर लगता है, हमारा तो चलो ऐसे कि कर लेंगे कैसे भी एडजस्ट, पर बच्चे बहुत छोटे हैं, उनको यही मतलब ये भी कहा है कि
1: हमसे कहा कि आप लोग मिलके भी आए हैं।
0: मैम बहुत बार, मैम अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है।
3: तो खेल यही है कि सरकार तो पंजाब में सरकारी स्कूल के क्लासरूम में लगा प्रोजेक्टर दिखाती है, लेकिन प्रोजेक्टर की आड़ में ये सच छिपा लिया जाता है कि आम आदमी का बच्चा आम आदमी पार्टी की सरकार वाले पंजाब के राज में एक एक कमरे में दो दो तीन तीन क्लास एक साथ चलाकर पढ़ाया जा रहा है। आप प्रोजेक्टर पर लहालोट होते रहिए, भले बच्चे के लिए वहाँ पढ़ने का माहौल तक नहीं बन पा रहा हो। पंजाब में सरकारी स्कूल की हालत देखनी है तो चौथा सबूत फाजिल्का में देखिए। इसी साल फरवरी के महीने में मीडिया के सामने फाजिल्का के इस स्कूल की तस्वीर छपी थी। बिना छत के स्कूल में पढ़ते इन बच्चों ने पंजाब सरकार को बगले झांकने को मजबूर कर दिया, क्योंकि बिना छत पढ़ने को मजबूर इन बच्चों की व्यवस्था ने पंजाब सरकार की शिक्षा को लेकर दावों पर सवाल या निशान उठाए। इसके बाद पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने इस स्कूल को लेकर आश्वासन दिया, लेकिन उनके आश्वासन के बावजूद 6 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है, स्कूल की इमारत अब तक नहीं बनी, स्कूल के बच्चे बाहर बरामदे में पढ़ने के लिए मजबूर है।
4: ये बिल्डिंग वैसी की वैसी पड़ी है, अभी तक यहाँ पर कोई ईंट तक नहीं लगी, इससे आप समझ सकते हैं कि सरकार की कथनी और करनी में कितना फर्क है। जबकि शिक्षा मंत्री ने कहा था कि बहुत जल्दी हम इसको पहले आधार पर लेके इसकी बिल्डिंग को खड़ा करेंगे, लेकिन सरकार की अब आप देख सकते हैं भी कहना क्या था और करना क्या था।
3: तो शिक्षा मंत्री के भरोसा देने के बावजूद बच्चे बदहाली में पढ़ने को लाचार, और अब सवाल है कि इस स्कूल की तस्वीर फिर कब बदलेगी।
4: शिक्षा मंत्री ने कहा था हम जल्दी जल्दी बिल्डिंग को बनाएंगे, पर उस बात को भी 6-7 महीने हो गए, अभी तक बिल्डिंग बनने के कारण क्या है
5: सर? ये तो अब मैं भी कुछ नहीं बोलती, प्रोसेस जैसे चलेगा, जो उनकी कार्रवाई होगी वो बोलते हैं टाइम लगता है, हर एक काम में टाइम तो लगता ही है।
3: इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह कि जब इस स्कूल के बारे में सरकार के मंत्री को याद दिलाया गया तो उन्होंने इसे विरोधियों की साजिश बताकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना चाहा।
6: जो एक फर्जी वीडियो जो पुरानी थी उसको लेके भारतीय जनता पार्टी कुछ लोगों ने ट्वीट किया था, तो वो तो ऑलरेडी बिल्डिंग बन चुकी है, वो पुरानी फर्जी वीडियो के आधार पे भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार को बदनाम करने का यत्न कर रही है। हमारी तो पंजाब में हमने सबसे ज्यादा पैसा जो है वो एजुकेशन पे, हेल्थ पे खर्च किया है।
3: फिलहाल इस स्कूल में 4th-5th के बच्चों को दूसरे स्कूल में शिफ्ट करके पढ़ाया जा रहा है, बाकी करीब 110 बच्चों को बरामदे और भीतर के कमरे में बैठाया जाता है। और जब 7 महीने में भी स्कूल बनाने का काम नहीं शुरू होने पर सवाल उठा तो पंजाब के शिक्षा मंत्री की ये पोस्ट देखिए, जिनमें 2 कमरों की तस्वीर जारी करके दावा किया इन्ही दोनों कमरों में प्री प्राइमरी से 3rd क्लास तक के बच्चे पढ़ रहे हैं, और तब सबकी नजर 2 स्पेलिंग पर जाती है, जहाँ वेजिटेबल्स की स्पेलिंग में ई की जगह आई आ जाता है और डियर की स्पेलिंग में DEE की जगह DEAR कर दिया गया है। सवाल बीजेपी ने उठाया, बीजेपी नेता कहने लगे कि जब स्कूल के बोर्ड पर अंग्रेजी की सामान्य स्पेलिंग तक गलत लिखी हो तो शायद आम आदमी पार्टी की सरकार को फोटो ऑप और प्रोपेगेंडा की बजाय पंजाब में शिक्षा की गुणवत्ता पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके बाद पंजाब में सरकारी स्कूल की हालत का 5वां सबूत मोहाली में आज तक को मिलता है। यहाँ 250 की क्षमता वाली 1950 की बनी इमारत में

0: 600 बच्चे पढ़ रहे हैं। हालत ये कि इस स्कूल में 15 कमरों में से 6 को असुरक्षित घोषित करके सील कर दिया गया। एक कमरा स्टोर रूम है। बचे हुए 8 कमरों में 538 बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं।
1: गवर्नमेंट प्राइमरी स्मार्ट स्कूल के हम दूसरे एक हिस्से में आए हैं और आपको दिखा सकते हैं कि यही आपको पूरी जो बिल्डिंग है वो जर्जर है। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे सबको टूट फूट हो चुकी है। यहाँ पे एक क्लासरूम बना जरूर है लेकिन बच्चे कोई पढ़ते नहीं है और इसका कारण ये है कि इसे अनसेफ ही डिक्लेयर कर दिया गया है।
2: वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
6: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
7: सोच बदलो और बैंक भी।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में सप्लाई होने वाले कैंसर के इंजेक्शन के नकली होने का खुलासा। दिल्ली में पानी मिलाकर 1-1 लाख में बिक रहा था एक इंजेक्शन, 7 राज्यों तक फैला था जाल।
1: पहली बार ऑपरेशन सिंदूर पर खुलकर बोले पूर्व सीडीएस अनिल चौहान, कहा लो फ्लाइंग सरप्राइज अटैक की रणनीति से दुश्मन को चौंकाया। सरगोधा स्कार्डू समेत तय किए थे कई टारगेट्स, तालमेल से आए बेहतर नतीजे।
0: हिजाब को इस्लाम का जरूरी हिस्सा न बताने की हाईकोर्ट की टिप्पणी पर भड़के हुए, ऐसी कहा यह इस्लाम पर हमला है। हिजाब के समर्थन में आई मायावती, कहा संविधान देता है आजादी।

0: होगी तो दिल्ली में आज महिलाओं को मिलेंगे 2500 रुपए की पहली किश्त। सीएम रेखा गुप्ता पूरा करेंगी चुनावी वादा।
1: राउंड टेबल का नारा कॉन्क्लेव में दिन भर सजेगा दक्षिण के दिग्गजों का मंच। सीएम डीके शिव कुमार, तेजस्वी सूर्या, प्रियांक खड़गे समेत कई नेता रहेंगे मौजूद।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज, एक और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथ।
0: नमस्कार, आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। शुरुआत करते हैं बुलेटिन के शतक आज तक के समय।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: यूपी में 60 साल से ज्यादा की उम्र की महिलाओं को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा का तोहफा। योजना के तहत 60 साल से या उससे ज्यादा उम्र की महिलाओं को मुफ्त में मिलेगी बस की यात्रा। यूपी कैबिनेट का युवाओं को डिजिटल सुविधा का देने का बड़ा फैसला। सरकार की योजना के तहत 25 लाख टैबलेट मुफ्त बांटे जाएंगे। एमबीबीएस और एमबीडीएस इंटर्न्स को अब हर महीने 25,000 रुपए मिलेंगे। यूपी सरकार के फैसले से मेडिकल इंटर्न्स को बड़ी राहत। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार रोजगार देने की दिशा में तेजी से कर रही है काम। सीएम के मुताबिक यूपी में अब तक 9.5 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरियां मिली हैं। लखनऊ में 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा पर सुरेंद्र राजपूत का हमला। कहा यह कांग्रेस के जमाने से मुफ्त है, बीजेपी ने कोई नया काम नहीं किया। सीएम योगी ने कहा कि राज्य के पास लगभग 7 महीने का चीनी का भंडार मौजूद है। उन्होंने कहा कि चीनी को उपलब्धता को लेकर किसी तरह की कोई भी कमी से इनकार किया। यूपी में श्रमिकों के लिए नियुक्ति पत्र अनिवार्य और हर साल होगी मुफ्त स्वास्थ्य जांच भी। मायावती ने हिजाब विवाद पर कहा कि धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान आवश्यक है। स्कूलों में हिजाब के मुद्दे पर स्थानीय स्तर पर बातचीत से ही मसले सुलझाने होंगे। ओपी राजभर का अखिलेश यादव पर हमला, बोले कि लड़ना है तो मुझसे राजनीतिक लड़ाई लड़िए। राजभर समाज की महिलाओं पर हमला करवाकर कैसे राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे। रक्षाबंधन से पहले लखनऊ में मिलावटखोरों पर एक्शन। एफएसडीए ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर देरा ताबड़तोड़ छापेमारी की। संदिग्ध खाद्य पदार्थों से लदी हुई 3 गाड़ियां पकड़ी।
1: रक्षाबंधन से पहले बरेली में मिलावटखोरों पर शिकंजा। 490 किलो मिठाई मौके पर नष्ट की गई। जांच के दौरान खाद्य पदार्थों के सैंपल्स लिए गए। 12 अफराद को लेकर संभल में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर। एसपी ने पुलिस फोर्स और पीएसी के साथ जुलूस मार्गों पर पैदल मार्च किया। संभल में जामा मस्जिद के आसपास 36 दुकानों और मकानों पर कार्रवाई की तैयारी। प्रशासन ने जारी किए नोटिस। बदायूं में अम्बेडकर प्रतिमा को लेकर बवाल, पुलिस पर पथराव। पुलिस और प्रशासन के 8 लोग घायल, 10 से ज्यादा वाहन क्षतिग्रस्त। 7 उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया। लखनऊ में प्याज के बढ़ते दामों ने बिगाड़ा घरेलू बजट, लोगों ने में नाराजगी उठाए गए सवाल। चीनी के बढ़ते दाम पर अमेठी के प्रशासन का बड़ा एक्शन। शासन निर्देश पर चीनी के बड़े कारोबारियों के गोदामों पर छापेमारी। अयोध्या में चीनी प्याज के बढ़ते दाम से लोगों में नाराजगी, बोले बढ़ती महंगाई ने बिगाड़ा बजट। यूपी की फेमस यूट्यूबर की सड़क हादसे में मौत, मां ने भी तोड़ा दम, ट्रक में घुसी कार।
0: दिल्ली पहुंच रहे 800 मीट्रिक टन प्याज के खेप, कीमतों पर मिलेगी राहत। कांद्रा एक्सप्रेस से प्याज दिल्ली लाई जाएगी। पहली खेप चेन्नई, मदुरा और गुवाहाटी भेजे जाएंगे। सरकार बिक्री के जरिए लोगों को सस्ते प्याज उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही है। सरकार ने जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर का निजी कंपनी को लीज पर देने को मंजूरी दी। फैसले को लेकर अखिलेश यादव सरकार पर हमला बोला। जेपीएनआईसी लीज विवाद पर अखिलेश यादव का सरकार पर तंज। अखिलेश यादव बोले अब बस सरकार को ठेके पर देना बचा। जेपीएनआईसी लीज विवाद पर कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी की पुरानी आदत है सरकार के पैसों से बनी इमारतों को अडानी अंबानी को बेच दो, देश को बेच देंगे। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता आज लक्ष्मी योजना के तहत 4,000 महिलाओं को 2,500 रुपए की पहली किश्त करेंगे जारी। सीएम रेखा गुप्ता बोले कि वादे से नारी सम्मान और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा है। दिल्ली अपने वचन को निभाने की एक और मिसाल लिखेगी। योजना में 6 लाख से ज्यादा महिलाओं का रजिस्ट्रेशन। पीयूष गोयल बोले कि 2032 तक भारत में सेमीकंडक्टर की मांग $150 अरब तक पहुंचने की उम्मीद। भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का लक्ष्य है। भारतीय नौसेना में शामिल होगा स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल निपुण। 31 अगस्त को मुंबई में कमीशन। गहरे समुद्र में डाइविंग और सबमरीन रेस्क्यू क्षमता इसकी मजबूत। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया अत्याधुनिक निपुण। नौसेना को 30 जुलाई को सौंपा गया था और अत्याधुनिक डाइविंग सिस्टम, अंडर वाटर ऑपरेशन की सुविधाओं से लैस है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में 6 अहम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की। 9 राज्यों से जुड़ी परियोजनाओं की प्रगति और अड़चनों पर चर्चा। पीएम मोदी ने देशवासियों को ईद मिलाद उन नबी की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह अवसर समाज में एकजुटता और खुशियां बढ़ाने का है। डोभाल वांगी की 25वीं वार्ता में सीमा मुद्दे पर चर्चा। भारत चीन ने सीमा विवाद के समाधान और एलएसी पर शांति बनाए रखने का पर जोर दिया। 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन तेज। छात्रों ने टीआरई 4 से पीटी मेन्स हटाने की मांग उठाई। पंजाब के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों ने भी मांगों को लेकर बंद का आह्वान किया। सरकार की लंबित मांगों के समाधान के लिए दबाव बनाने की तैयारी। बांग्लादेश के रंगपुर में हिंदू परिवार की हत्या से बवाल। स्कूल शिक्षक गणपति चक्रवर्ती, उनकी पत्नी और 2 बच्चों के शव घर से बरामद। मामले की जांच पर विरोध के बाद इसे पुलिस से हटाकर डिटेक्टिव ब्रांच को सौंपा गया। साइन लोगों का आरोप है कि हत्या में शामिल अन्य आरोपियों को बचाया जा रहा है। गैंगरेप के आरोपों ने मामले को और गंभीर बनाया। फोरेंसिक रिपोर्ट महिलाओं के साथ दुष्कर्म की बात कही गई है। वहीं स्थानीय स्तर पर पुलिस पर तथ्यों को छुपाने का आरोप। 2 आरोपी गिरफ्तार। जांच का दायरा बढ़ाने की मांग। लोगों का दावा है कि हत्याकांड में और भी लोग शामिल थे। बांग्लादेशी दूतावास के बाहर प्रदर्शन की तैयारी। हिंदू संगठनों ने परिवार की हत्या के विरोध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाज उठाने का ऐलान किया है।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में बड़ा संदेश दिया कि अगले 15 से 20 वर्षों में खतरों की पहचान अभी से करके उन्हें बड़ा संकट बनने से पहले रोकना होगा। आतंकवाद, नशे और घुसपैठ के खिलाफ प्री एम्प्टिव रणनीति पर जोर देने उन्होंने बात कही। शाह ने सुरक्षा एजेंसी से बदलती परिस्थितियों के लगातार अध्ययन करने की भी अपील की। राहुल गांधी पर बीजेपी का हमला। हिजाब अयाबा को लेकर पितृसत्ता के खिलाफ उनके रुख पर सवाल। बीजेपी ने पूछा महिलाओं के सशक्तिकरण पर धर्म के आधार पर अलग अलग मापदंड क्यों हैं? राहुल गांधी के फ्रीडम ऑफ चॉइस वाले रुख पर निशाना। महिला प्रतिनिधित्व को लेकर अमित मालवीय बोले कि कर्नाटक और हिमाचल की कांग्रेस सरकारों में कोई भी महिला मंत्री नहीं। राहुल गांधी के स्मैश द पेट्रियार्की अभियान पर सवाल। चुनाव में एआईएमआईएम की जीत के लिए ओवैसी ने मांगी दुआ। असदुद्दीन ओवैसी ने कार्यकर्ताओं से पार्टी के आंदोलन को मजबूत करने की अपील की। ओवैसी ने मुस्लिम समुदाय के लिए राजनीतिक नेतृत्व की जरूरत पर दिया जोर। कहा कि इससे भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था और संविधान मजबूत होगा। ओवैसी बोले 18 करोड़ की आबादी, संसद में सिर्फ 24 सांसद, समुदाय की आवाज उठाने वाला पर्याप्त राजनीतिक नेतृत्व ही नहीं। यूसीसी को लेकर ओवैसी ने उठाए सवाल। कहा कि अगर कानून हिंदू पर्सनल लॉ के प्रावधानों पर आधारित है तो उन्हें समान नागरिक संहिता कैसे दिया जा सकता। न्यूयॉर्क मेयर जॉरन ममदानी ने आरएसएस कार्यक्रम का किया विरोध। मेडिसन स्क्वायर गार्डन में मोहन भागवत के कार्यक्रम पर ममदानी ने कहा कि मैं इस रैली का समर्थन नहीं करता।
1: महाराष्ट्र में खुले खाद तेल की बिक्री पर रोक नहीं है। मिलावट रोकने के लिए 2011 से लागू है प्रावधान। मुंबई के मशहूर आयुब्स के खिलाफ एफडीए की बड़ी कार्रवाई। गंभीर खाद सुरक्षा उल्लंघन और साफ सफाई से जुड़ी कई खामियां पाई गई। बॉम्बे हाईकोर्ट का निर्देश। एमसीए की बीकेसी कैंटीन किचन का एफडीए फिर करेगा निरीक्षण। रिपोर्ट पर कोर्ट ने उठाए सवाल। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नेवल डिसूजा फुटबॉल ग्राउंड को कन्वेंशन सेंटर बदलने पर लगाई रोक। 18 सितंबर तक बीएमसी को आगे की कार्रवाई से रोका। मुंबई फुटबॉल एसोसिएशन ने जताई आपत्ति। बुलढाणा में किसान नेता रविकांत तुपकर को पुलिस का नोटिस। 27 अगस्त को मंत्रालय के सामने आंदोलन और मंत्रियों के बंगले। सरकारी वाहनों की सांकेतिक नीलामी की चेतावनी। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने नकली और डायवर्टेड एंटी कैंसर दवाओं के अंतर्राज्यीय सिंडिकेट का किया भंडाफोड़। 17 गिरफ्तार। दिल्ली क्राइम ब्रांच की इंटरस्टेट सेल ने किया पर्दाफाश। पुलिस ने करीब 9 करोड़ रुपए की दवाएं, 50 लाख रुपए नकदी बरामद की। दिल्ली क्राइम ब्रांच की जांच में पता चला कि दिल्ली एनसीआर, मुंबई, हैदराबाद, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक फैले हैं तार। राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। स्कूल कैंटीन का गेट से 50 मीटर तक चिप्स, कोल्ड ड्रिंक और जंक फूड पर बैन। दिल्ली में बढ़ते H1N1 मामलों के बीच स्कूलों के लिए अलर्ट। शिक्षा विभाग ने जारी की गाइडलाइंस। मास्क, हाथ धोने और साफ सफाई पर जोर।
0: हिमाचल में खौफनाक लैंडस्लाइड का मंजर आया सामने। चंबा के भरमौर में भरभरा कर गिरा पहाड़। बाल बाल बचे लोग सड़क पर मलबा गिरने से यातायात प्रभावित। जम्मू और कश्मीर के राजौरी में फ्लैश फ्लड से फसलें, सड़कें, जरूरी ढांचा प्रभावित। वाराणसी में बाढ़ में डूबा मणिकर्णिका घाट और छत पर हो रहे हैं अंतिम संस्कार, जलते दिखे शव। वाराणसी में बारिश बनी आफत और करंट और मकान गिरने से 6 लोगों की अब तक मौत। वाराणसी में जल भराव पर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। बारिश के पानी में बैठकर कार्यकर्ताओं ने जल निकासी की व्यवस्था पर उठाए सवाल। बिहार के नवगछे में गंगा उफान पर खेत खलिहान से लेकर मवेशियों के चारे तक पर संकट गहरा है। सुकमा में बारिश बनी ग्रामीणों की मुसीबत। उपमध्य नदी में 600 परिवारों का संपर्क काट लिया। गोंडा में बारिश से परेशान है लोग। मरीज को चारपाई पर ले जाते दिखाई दिए लोग, वीडियो वायरल। गुरुग्राम में बारिश का कहर। सड़कों पर सैलाब में फंसी स्कूली बसें। 7 से 8 घंटे के खौफनाक सफर के बाद ये मासूम बच्चे घर पहुंचे। सोनीपत में बारिश में बह गए नगर निगम के तमाम दावे, जगह जगह जलभराव, लोग परेशान।
1: जयपुर के एसएनएस अस्पताल में बड़ा हादसा, ट्रॉमा सेंटर में सीलिंग फैन गिरने से महिला के सिर पर लगी चोट। काकीनाड़ा परिवार आत्महत्या मामले में नया मोड़, धन परिवर्तन के दबाव डालने के आरोपों से मामले में नया रुख। कटक में जंगली सुअर के हमले से 14 साल का बच्चा घायल, कम्युनिटी नहर के अंदर जंगली सुअर ने बच्चे पर हमला किया था, बाल बाल बची जान। गुजरात के शामलाजी में घरेलू विवाद बना हत्या की वजह, पति ने कथित तौर पर कुल्हाड़ी से हमला कर पत्नी की हत्या की। सिंगरौली में स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़ा सवाल, सफाईकर्मी मरीजों का इलाज करते पकड़ा गया, अस्पताल व्यवस्था ठप। मुरादाबाद में 9 तेंदुओं के रेस्क्यू के बाद नहीं थमा आतंक, तीसरी मौत से गांव में दहशत, अब खेतों की ओर जाने से डर रहे हैं ग्रामीण। रुड़की में डबल मर्डर से मचा हड़कंप, दो सगी बहनों की भाई ने गोली मारकर हत्या की। दिल्ली कैंट इलाके में कूड़ा उठाने वाले ट्रक की डीटीसी बस से टक्कर, हादसे के बाद मची अफरा तफरी। दिल्ली के ओखला औद्योगिक क्षेत्र इलाके में स्थित कपड़े की फैक्ट्री में आग, दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। बाराबंकी में लखनऊ से बहराइच जा रही कार में तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर, 4 की मौत, 1 घायल।
0: कोलंबो टेस्ट में श्रीलंका पर फॉलो ऑन का खतरा है, स्कोर 265 पर और भारत 338 रनों पर आ गया। भारत की ओर से प्रसिद्ध कृष्णा और मानव सुथार ने 3-3 विकेट लिए, रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज को भी 1-1 विकेट। ग्रैंड चेस टूर 2026 के फाइनल में पहुंचे भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा, सेमीफाइनल में जर्मनी के विंसेंट कीमर को 19-9 से हरा। भारत के एन श्रीराम बालाजी और अनिरुद्ध चंद्रशेखर ने जीता कानकुन कंट्री ओपन का खिताब। यूएस ओपन में वापसी करेंगे 20 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन रॉजर फेडरर, न्यूयॉर्क के आर्थर एश स्टेडियम में खेला जाएगा एग्जीबिशन मैच। दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई ब्लॉकिंग स्टार यश की फिल्म टॉक्सिक, फिल्म में यश के साथ नयनतारा, कियारा, हुमा कुरैशी और तारा सुतारिया। टॉक्सिक के साथ सिल्वर स्क्रीन पर यश पूरे 4 साल के बाद वापसी कर रहे हैं, इससे पहले 2022 में उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 आई थी। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की अपकमिंग फिल्म दी वन का धमाकेदार टीजर जारी, 19 सितंबर को रिलीज होगी। प्रियदर्शन के निर्देशक में बनी हुई फिल्म हैवान का ट्रेलर हुआ रिलीज, 18 साल के बाद बड़े पर्दे पर दिखाई देंगे अक्षय कुमार और सैफ अली खान। इमरान हाशमी की फिल्म गन मास्टर G9 का टीजर हुआ जारी, इमरान हाशमी के साथ मुख्य भूमिका में जेनेलिया देशमुख, 27 नवंबर को रिलीज होगी।
1: ट्रंप का बड़ा दावा, कहा ईरान में गंभीर मानवीय संकट, ईरान की सेना को नहीं मिल रहा है वेतन। कतर ने ईरान पर लगाया अमेरिकी प्रतिबंध को बताया एक तरफा, कतर के विदेश मंत्रालय ने कहा इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कतर मध्यस्थता का समर्थन करता है। ट्रंप से बात के बाद ईरान दौरे पर गए पाकिस्तान के सेना प्रमुख कासिम मुनीर ने ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों से की मुलाकात। रूस यूक्रेन जंग के बीच मॉस्को में उतरा अमेरिकी विमान, इस घटना के बाद मचा हड़कंप। ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान, कहा अगले साल गर्मियों में रूस के साथ युद्ध समाप्त होने की उम्मीद।

0: इस बीच बड़ी खबर पाकिस्तान से, यहां पर इस्लामाबाद में बड़ा अस्पताल में हादसा हुआ है जहां पर आग लगने से 15 नवजात बच्चों की जान चली गई है। हादसा दरअसल पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अस्पताल में स्त्री रोग वार्ड की नर्सरी में हुआ है। अस्पताल के अधिकारियों के मुताबिक हादसे के वक्त नर्सरी में 16 नवजात बच्चे मौजूद थे, इनमें से सिर्फ एक बच्चे को ही बचाया जा सका। रेस्क्यू अधिकारियों के मुताबिक नर्सरी के अंदर एयर कंडीशनर के कंप्रेसर में विस्फोट हुआ, उसके बाद आग लग गई और तेजी से पूरे वार्ड में फैल गई। आग की जानकारी मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर तो पहुंची और बचाव भी किया, लेकिन वो बच्चों को नहीं बचा पाए। आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया।
1: तो एयर कंडीशनर में धमाका हुआ, धमाके के बाद आग लगी, आग फैलती चली गई और इसके बाद वहां जो बच्चे जिनका उपचार चल रहा था, इलाज चल रहा था, उनको बचाया जो है नहीं जा सका। अब इसमें कई बच्चों की जान चली गई है।
2: बहुत लेट टीम्स पहुंची हैं, कुछ यहाँ पर हमला कोई भी नहीं है, सारे फायर ब्रिगेड बहुत 2 घंटे बाद आए हैं। नर्सरी में बच्चे जल गए हैं, बहुत ज्यादा हमारे बिल्कुल सामने था सारा, हम तो बच्चों को लेके भागे हैं, कुछ तो समझ ही नहीं आ रही थी, आधा सामान हमारे अंदर ही रह गया, बहुत बुरा हाल।
1: और हमारे संवाददाता अशरफ खान इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, क्या कारण रहे एग्जैक्ट और कितने बच्चे, कितनों की जान चले गए है और कितने ऐसे हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं अभी?
3: राजीव, ये पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद का सबसे बड़ा बच्चों का अस्पताल है। इसी कारण जब यहाँ पर ये आग भड़की तो उसी वार्ड में जहाँ पर नवजात बच्चे जो उनको रखा गया था इंक्यूबेटर्स पे, तो उसी बीच जो है एक धमाके की आवाज वहां पर सुनी गई, जो एयर कंडीशनर का कंप्रेसर था उसमें, और उसके बाद पूरी तरह से हर तरफ धुआं और आग के कारण जो है अभी तक जो खबरें मिल रही हैं पाकिस्तान से सूत्रों के अनुसार 15 बच्चों की जान गई है। 7 बजे ये आज सुबह ये घटना घटी है और उसके बाद थोड़ी लापरवाही जो है फायर सर्विस विभाग की तरफ से भी देखी गई। करीब उनको 1.5 घंटे से भी ज्यादा समय अस्पताल तक आग बुझाने के लिए पहुंचने के में लगा और उस भी जो है इतने बच्चों को दुखायत जो खबर आ रही है बच्चों की जान गई है, जो नवजात बच्चे थे। और अभी जो है प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी भी जो है वहां पर धुआं जो है अभी भी अस्पताल के कुछ वार्ड्स में है जिसको निकालने की कोशिश वहां से की जा रही है।
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बात पाकिस्तान के ही परमाणु ठिकाने की, जहां पर किराना हिल्स पर ऑपरेशन सिंदूर पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के किराना हिल्स में धुआं उठने की तस्वीरों ने बड़ा सवाल खड़ा किया था। क्या भारत ने पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने को निशाना बनाया? अब पूर्व सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने इस रास्ते पर्दा उठाया। उन्होंने कहा कि किराना हिल्स भारत का तय टारगेट नहीं था, लेकिन वहां भारतीय लॉयटरिंग म्यूनिशन के गिरने की संभावना।
1: चौहान के मुताबिक भारत ने सरगोधा के आसपास पाकिस्तानी रडार तलाशने के लिए कई लॉयटरिंग म्यूनिशन भेजे थे और ये करीब 2 घंटे तक लक्ष्य की तलाश कर सकते थे और अगर टारगेट नहीं मिलता था तो फिर नीचे आकर गिर जाते थे। किराना हिल्स सरगोधा से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है, ऐसे में संभव है कि इनमें से कोई म्यूनिशन किराना हिल्स पर जाकर गिरा हो।
4: At occasions has been asked whether Kirana Hills were hit or not. That's where their nuclear facilities are there. And with Bharti had rightly clarified that we did not target Kirana Hills. I can maybe give kind of an explanation. Before those strikes, we had sent in a lot of loiter ammunitions at Sargodha. And Kirana Hills is about 10 kilometers north of Sargodha. Once the Pakistanis had picked up the phone and they said they wanted to talk at about 10, the air chief had asked me that whether he should strike Sargodha. I said, go ahead. And then I said, please identify 2 more targets. So one of the targets he identified was Sukadu. But unfortunately, we gave a yes, but after some time the weather was bad over Sukadu. But they had to change over to Bulhari. Now from Sukadu to Bulhari, which is near Karachi.
1: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर में मध्यस्थता के दावों पर पूर्व सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने काफी साफ शब्दों में कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर भारत और पाकिस्तान के 2 DGMO के बीच में सीधे तय हुआ था।
0: अनिल चौहान ने भी कहा कि पाकिस्तान ने करीब सुबह 9:30 बजे फोन किया, लेकिन भारत ने अपनी तरफ से समय तय किया। भारत के DGMO ने कहा कि वो दोपहर 3 बजे उपलब्ध होंगे और फिर बातचीत के बाद शाम 5 बजे सीज फायर तय हुआ। चौहान ने सवाल उठाया कि सीज फायर की जानकारी अमेरिका तक भारत की घोषणा से पहले कैसे पहुंच गई। उनका कहना है कि जानकारी भारत की तरफ से लीक नहीं हुई, बल्कि संभवतः दूसरी तरफ से अमेरिका तक पहुंची।
4: आई कैन ओनली टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर सीज फायर what happened in the military domain. I told you that they picked up the phone at about 9:30, spoke. We chose our own time. The DGMO said he's not available till about 3 o'clock. And then 3 o'clock, he said, and then we decided at 5 o'clock. So the ceasefire is decided between two DGMOs. And that's it. Means I don't see the role of anyone else. How did this particular information get leaked out to the Americans that they tweeted at before we could announce this?
0: बात नेपाल में आई बाढ़ की, यहां से भयानक तस्वीरें आई हैं। तिब्बत से आए अचानक बाढ़ के पानी ने रसुआ में भारी तबाही मचाई है। सैलाब में कई गाड़ियां, 3 पुलिस चौकी तबाह हो गई हैं, कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को नुकसान पहुंचा है। बाढ़ से रसुआ सीमा नाके पर बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। अधिकारियों के मुताबिक टिमुरे सहित आसपास के 2 बाजार बाढ़ से पूरी तरह से तहस नहस हैं। जिला पुलिस कार्यालय रसुआ के अनुसार आज सुबह तकरीबन 9 बजे अचानक आई भीषण बाढ़ से टिमुरे बाजार की बस्ती प्रभावित हुई।
1: जो तस्वीरें आई भी हैं वो डरा देने वाली तस्वीरें हैं। रौद्र रूप तो दिखाई दे रहा है यहाँ पर पानी का, लेकिन साथ साथ में जो कंस्ट्रक्शन वहां पर चल रहा था, जो साइट्स वहां पर थी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की, उन साइट्स को बड़ा नुकसान पहुंचा और उनके इर्द गिर्द जो रिहाइश बनाई गई थी टेम्पररी, वो सब आप देखेंगे तस्वीरों में ध्वस्त होता दिखाई दिया, सब पानी में समाता चला गया। ये डराने वाली तस्वीरें सामने आई। तो नेपाल के रसुवा की तस्वीरें, जहां कई इमारतें कैसे ध्वस्त हो गई, कैसे पानी में समा गई, और ये कुछ बहुत दूर से ली गई तस्वीरें आप देखिए कि ऊंचाई में उठता हुआ जो आपको धुआं से दिखाई दे रहा है, सब पानी के इम्पैक्ट की वजह से हुआ। एकाएक इतना पानी वहां पर आया और इस बाढ़ में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को बहुत नुकसान हुआ है। अब आप इस तस्वीर को देखिए।
0: ये दरअसल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को भी, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को भी नुकसान पहुंचा है अचानक आई बाढ़ से। दरअसल कोई भी वाकिफ नहीं था कि इस तरीके से पानी तबाही मचाएगी। 3 पुलिस चौकियां और गाड़ियां पूरी तरह से बह गई।
1: जैसे उत्तराखंड में तस्वीरें आपने देखी थी, बिल्कुल जैसे चाहे धराली हो या दूसरे हिस्सों में जो अचानक पानी एकाएक नदियों में बढ़ा और उसने सब कुछ नुकसान तबाही मचाते हुए आगे बढ़ा, बिल्कुल वैसा ही ये नेपाल से तस्वीरें आई।
0: रुके यहां छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, टिकते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: पापा
3: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का
4: सब कैशलेस हो गया
3: है। हाँ ला, ला भाई मेरा बैट।
4: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
5: चार्ज हुआ यार।
6: बैट किसका है?
7: टाटा AIG है तो भरोसा है।
8: I wake up wearing someone else again.

0: आगे आगे,
1: अरे उधर
0: उधर किधर,
1: करेक्ट करेक्ट,
2: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: In association with
6: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। Sera Sanitaryware, it's your moment of Sera.

0: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: AU सोच बदलो और बैंक भी।

0: Close, close your eyes.
1: पहाड़ों में बारिश में कमी होने से मैदानी इलाकों में गंगा में आई बाढ़ कुछ कम हो रही है। बारिश में लगातार दूसरे दिन गंगा के जलस्तर में कमी देखने को मिली। केंद्रीय जल आयोग की डेली फ्लड बुलेटिन की रिपोर्ट के मुताबिक गंगा का जलस्तर 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम हो रहा है। मौजूदा समय में गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु से 1.5 मीटर तो खतरे के निशान से 2.5 मीटर नीचे है। लेकिन घटते जलस्तर के बावजूद वाराणसी में लोगों की दुश्वारियां कम नहीं हो रही। अभी भी सभी 86 पक्के घाटों का संपर्क टूटा हुआ है। पक्के घाट जलमग्न हो चुके हैं। घाटों के सभी छोटे बड़े मंदिर भी बाढ़ के पानी में समा चुके हैं। अभी भी पहले जैसे ही हरिश्चंद्र घाट डूब जाने के चलते गलियों में शवदाह हो रहा है, तो मणिकर्णिका घाट भी जलमग्न हो जाने की वजह से छत पर शवदाह हो रहा है। यूपी के कई इलाकों में बाढ़ की वजह से कई नदी नाले उफान पर हैं। ये तस्वीरें ललितपुर की हैं, जहां तेज बारिश की वजह से नालों के कई फीट ऊपर पानी बह रहा है। ये सैर नाला पुल की तस्वीरें हैं, जहां एक लड़का अपनी बाइक के साथ इसे पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तेज बहाव में उसकी बाइक बहने लगी। पहले तो उसने बचाने की कोशिश की, लेकिन बहाव बहुत ज्यादा था। अंततः उसे बाइक छोड़नी पड़ी, जिससे बाइक तो बह गई, लेकिन ये युवक पानी में बहने से बच गया। बिहार में भी बाढ़ से बुरा हाल है। ये मुंगेर की तस्वीरें हैं, जहां पिछले 24 घंटे में गंगा नदी के जलस्तर में 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की गति से वृद्धि दर्ज की गई है। गंगा के बढ़ते जलस्तर के बीच निचले इलाके के गांवों और घरों में पानी घुसना शुरू हो गया है। हवेली खड़गपुर प्रखंड का कृष्णानगर गांव पूरी तरह से बाढ़ के पानी से घिर चुका है। लोग ऊंची जगहों पर शरण लेने के लिए मजबूर हैं। फिलहाल ये लोग छतों पर आशियाना बनाकर रह रहे हैं। यही हाल बेगूसराय का भी है। यहां गंगा का जलस्तर बढ़ने से रिंग बांध करीब 20 मीटर टूटकर तेज बहाव में बह गया, जिसकी वजह से कई गांव के दर्जनों घरों में पानी घुस गया है। सैकड़ों एकड़ फसल डूब गई। छत्तीसगढ़ में भी बस्तर से लेकर बिलासपुर गरियाबंद और रायगढ़ तक तेज बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। कई सड़कों और पुल पुलियों पर पानी भर गया है, जिसकी वजह से आवागमन प्रभावित हुआ है। रीवा के रौली गांव की ये तस्वीरें हैं, जहां एक मृतक के शव को घर तक पहुंचाने के लिए ग्रामीणों को ड्रम का सहारा लेना पड़ा। ग्रामीणों ने ड्रमों को आपस में बांधकर उसके ऊपर शव रखा और बाढ़ के पानी को पार कराते हुए शव को घर तक पहुंचाया। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में सप्लाई होने वाले कैंसर के इंजेक्शन के नकली होने का खुलासा। दिल्ली में पानी मिलाकर 1-1 लाख में बिक रहा था एक इंजेक्शन।
1: रक्षाबंधन के कपड़ों पर उठे विवाद के बाद कंपनी ने हटाया कृति सेनन का विज्ञापन। कहा भारतीय संस्कृति और परंपरा का पूरा सम्मान। कंगना ने उठाए थे पहनावे पर सवाल। बॉलीवुड में मचा था बवाल।
0: हिजाब को इस्लाम का जरूरी हिस्सा न बताने की हाईकोर्ट की टिप्पणी पर भड़के हुए ऐसी कहा, यह इस्लाम पर हमला। हिजाब के समर्थन में आई मायावती, कहा संविधान देता है आजादी।
1: यूपी से दिल्ली तक आधी आबादी पर फोकस। सीएम योगी ने की महिलाओं को फ्री बस यात्रा की शुरुआत। तो दिल्ली में महिलाओं को 2500 रुपए की पहली किश्त। रेखा गुप्ता ने पूरा किया चुनावी वादा।
0: नेपाल में कुदरत का कहर, हाहाकारी सैलाब में समा गई बस्ती, बाजार और पुलिस चौकियां। पावर प्रोजेक्ट के भी नुकसान की खबर। प्रलय की तरह आया बाढ़ का पानी।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माह।
0: प्रभात महिला शक्ति की सौगात की। दिल्ली से लेकर यूपी तक महिला पावर का दम दिख रहा है और दिल्ली सरकार लक्ष्मी योजना की पहली किश्त जारी करने जा रही है। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की मदद दी जाएगी।
1: उधर उत्तर प्रदेश की बात करें तो चुनावी सीजन आते ही योगी सरकार ने नई नई योजनाओं की बौछार शुरू कर दी है। सीएम योगी ने फ्री महिला सफर योजना लॉन्च किया और सीधा आपको उसी कार्यक्रम में लिए चलते हैं।
3: उस दौर की बेटी के सामने सुरक्षा नहीं थी, किस्मत का वो इंतजार करती थी। निराश्रित महिला पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति, हर योजना में कमीशन की काली साया मंडराती थी। मुद्रा योजना का पैसा हो या पुष्टाहार का बजट, ये सब रास्ते से ही गायब हो जाते थे। गरीब की बहु बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस करती थी। बेटी के जन्मदिन पर बधाई नहीं, लोग चिंता होती थी, क्योंकि परिवार को पढ़ाई और शादी दोनों का बोझ दिखता था। और जहां पे बेटी सुरक्षित नहीं, जहां उसका सम्मान नहीं, कहां से स्वावलंबन होता है। परिणाम था, पूरे यूपी के अंदर मात्र 12% बेटियां ऐसी थी जो अपने पैरों पर खड़े होकर के कहीं काम धाम करने के लायक हो पाती थी। नकल एक उद्योग बन चुका था और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मेधावी बेटी मेहनत करती थी, डिग्री पैसे वाला खरीद लेता था। यानी मेहनत बेटी की होती थी लेकिन उसकी डिग्री कोई माफिया खरीद करके उसकी नीलामी कर देता था। नौजवान व्यापारी और कारीगर सब पलायन करने के लिए मजबूर थे। बेटी सिर्फ बस पकड़ने से नहीं, सपना देखने से डरती थी। आप उसे केवल एक भावना के तौर पे न देखें, उसे केवल हम इन्हें माने की एक होती थी, बल्कि वह एक पूरे अर्थशास्त्र के रूप में भी अगर आप उसको देखें, जब आधी आबादी घर पर बैठ जाएगी, उत्तर प्रदेश को बीमारू होना ही था। यही तो होता था यूपी में, यही तो पहचान का संकट था। आधी आबादी को न सुरक्षा थी, न सम्मान था, न स्वावलंबन था, तो हमारी आर्थिक स्थिति बदहाल होनी होनी थी। और इसीलिए तो यूपी उस दौर को जब याद करता है तो रोंगटे खड़े होते हैं। कहीं दंगे, कहीं कर्फ्यू, कहीं असुरक्षा, कहीं उपद्रव, हर योजना में बेमानी और भ्रष्टाचार। लेकिन धर्म चक्र बदलता है। अगर उस समय उपद्रव था तो मोदी जी के नेतृत्व में जब डबल इंजन की सरकार यूपी में आई तो उपद्रव को उत्सव में बदल दिया गया है। कर्फ्यू और दंगा से मुक्त करके यूपी को चंगा बना दिया गया है। अब हर योजना का केंद्र बिंदु बेटी है, आधी आबादी है। हमारा पहला संकल्प था उत्तर प्रदेश की बेटी को भय मुक्त वातावरण देंगे, उसे अपने विश्वास के दम पर खड़ा होने का पूरा अवसर देंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि हमने जो कहा था बेटी को सुरक्षा की गारंटी देंगे, एक केवल एक फिजिकल सिक्योरिटी नहीं थी, ये मेंटल सिक्योरिटी भी थी, हेल्थ सिक्योरिटी भी थी। आज हमारे पास मिशन शक्ति केंद्र है, हर शहर में एआई बेस्ड सेफ सिटी नेटवर्क है और 1090-112 का इंटीग्रेटेड रिस्पांस सिस्टम भी हमारे पास मौजूद है। बेटी की सुरक्षा में घर के अंदर हो या घर के बाहर कहीं किसी ने सेंध लगाई तो मान करके चलो कि सेंध लगाने वाले के लिए जेल या जहन्नुम में से कोई एक जगह तय हो जाएगी। कोई सुरक्षा में सेंध नहीं लगा सकता। और पहली बार उत्तर प्रदेश में क्या देश में महिला बीट पुलिस अधिकारी की तैनाती हुई, ये पहली बार हो पाया है। प्रदेश में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या यानी 17 में कुल 10,000 महिला पुलिस कर्मी थे, अब ये संख्या पहुंच चुकी है इस समय 45,000।
0: तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप, लेकिन उन्होंने अभी तक क्या क्या घोषणाएं की हैं पब्लिक वेलफेयर के लिहाज से सुनिए।
3: रक्षाबंधन के अवसर पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम और सिटी बस सेवा दोनों में हर बेटी हर बहन हर माता को 3 दिन के लिए निःशुल्क बस सेवा प्रारंभ करने के लिए और इस सुविधा के लिए प्रदेश भर की पूरी मातृशक्ति का अभिनंदन करते हुए उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। और 29 के बाद 60 वर्ष की कोई भी महिला जो उत्तर प्रदेश की वासी हो अपना वोटर आईडी कार्ड दिखा करके या आधार कार्ड दिखा करके इस यात्रा का लाभ ले सकती हैं, उनसे कोई भी किराया नहीं लिया जाएगा। ये दो प्रकार की सेवाएं आज एक साथ प्रारंभ हो रही हैं। पहली बार महिलाओं के हित में काम करने वाले हमारे परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी ने कहा कि ये कब घोषणा करें, हमने कहा भी रक्षाबंधन से अच्छा अवसर और क्या हो सकता है, और आज रक्षाबंधन के अवसर पर हम इस यात्रा को प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा क्या हो सकता है इस अवसर पर, हमने कहा भी हर सभी 75 जनपदों में आयोजन करिए, माताएं बहनें आएंगी उनको मिष्ठान दीजिए, रक्षाबंधन की बधाई दीजिए, इस योजना की अभिनंदन भी करिए। और आज इसी कार्यक्रम में हम लोग सभी एकत्र हुए हैं, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण यहां पर उपस्थित हुए हैं।
1: और अब बात योगी के एक बड़े चुनावी दांव की, यूपी में विधानसभा चुनाव होने में अब चंद महीनों का ही समय बचा है और योगी सरकार नई नई योजनाओं की बौछार करने में लगी है। कल कैबिनेट में युवाओं और बुजुर्गों दोनों के लिए कुछ अहम फैसले लिए गए
0: और एक अहम ऐलान महिलाओं के लिए किया गया। यूपी में 60 साल या इससे ज्यादा उम्र की महिलाओं को यूपी रोडवेज की बसों में कोई किराया नहीं लगेगा। योगी सरकार ने आज से इस विशेष योजना की शुरुआत भी कर दी है।

0: 17 अगस्त को नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान होता है। बीजेपी की राष्ट्रीय टीम में पार्टी की मुखर महिला नेता स्मृति ईरानी को यूपी कोटे से जगह मिलती है। यूपी से 8 सदस्य बनाए जाते हैं, 8 में से 3 महिला सदस्य होती हैं। और उसके 7 दिन यानी 1 हफ्ते बाद ही योगी कैबिनेट का महिलाओं को लेकर बड़ा फैसला आता है। योगी सरकार लोक माता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना का ऐलान करती है। यूपी में 60 साल और उससे अधिक उम्र की महिलाओं को आजीवन मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देते हैं। रक्षाबंधन से ठीक पहले योगी सरकार का ये ऐलान सामने आता है। ये योजना सियासी नजरिए से क्यों अहम और असरदार साबित हो सकती है, इसकी वजह भी जान लीजिए। अनुमान है कि इस योजना से रोजाना 88,000 महिलाओं को फायदा मिलेगा। यूपी रोडवेज की बसों में आधार कार्ड या वोटर आईडी दिखाकर इस योजना का लाभ लिया जा सकेगा। इस योजना पर करीब 22.5 करोड़ प्रतिमाह और 270 करोड़ रुपए सालाना खर्च आएगा।
1: आप देखिए, ये सारी जो बसें हैं, इन्हीं बसों से मातृशक्ति योजना के तहत उनको फ्री एक तरीके से अब आजीवन ये सेवा दी जाएगी। और ये मास्टर स्ट्रोक योगी आदित्यनाथ का माना जा रहा है। ये महिलाएं देखिए जो 60 साल से ऊपर की हैं, वो सभी इससे निशुल्क यात्रा कर पाएंगी। पूरे प्रदेश में जहां भी उनको जाना है वो इस बस के जरिए जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कल कैबिनेट में इसको पास करने के बाद आज इसका इनॉग्रेशन है। आप देखिए, कई महिलाएं अपने अपने गंतव्य स्थान पर जाने के लिए तैयार हैं।
0: तो योगी सरकार की ये योजनाएं ऐसे वक्त में आई जब सामने यूपी विधानसभा का चुनाव है। जाहिर है, बीजेपी की कोशिश ज्यादा से ज्यादा महिला वोट हासिल करने की है। और मातृशक्ति विकास योजना के ऐलान के बाद समाजवादी पार्टी में भी खलबली है। खबर है कि समाजवादी पार्टी महिलाओं से जुड़ी किसी बड़ी योजना का ऐलान कर सकते हैं। 12:30 बजे समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव इस योजना का ऐलान कर सकती हैं। यानी महिला वोटरों का समर्थन हासिल करने की दोनों ओर से जीतोड़ प्रयास हो रहे हैं। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
2: हमारे संवाददाता आशीष श्रीवास्तव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, अब चुनाव चूंकि बहुत नजदीक है तो, और एक महिला वोटर्स की बात करें तो वो भी बहुत ज्यादा संख्या में और बहुत निर्णायक भूमिका में है, तो क्या उन्हीं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया?
1: बिल्कुल राजीव, देखिए सबसे बड़ी बात है कि चुनाव के जस्ट पहले अगर आप माने तो सीएम योगी आदित्यनाथ जब महिलाएं हैं, युवा हैं, जेंजी हैं, उन सबके लिए एक साथ एक लाइन परिपाटी पर खड़ा कर दिया है। यानी कि जो विपक्ष लगातार पिछले काफी समय से टारगेट कर रहा था, आज उन्होंने उसका एक जवाब तरीके से दिया है। वो एल्डरली वुमेन यानी जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनको वो काफी खुश नजर आ रही है। युवा जिनको टैबलेट दे रहे हैं वो, साथ ही साथ महिलाएं स्कूटी, साथ ही साथ उन सभी को जो करोड़ों नौकरी देने की बात कही जा रही है। ये तो एक तरीके से मास्टर स्ट्रोक खेला है योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के सामने 2027 से पहले, और कैबिनेट में पास करके दिखा दिया है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार सबके साथ खड़ी है। और इसका फायदा, चूंकि महिला वोटर्स का बहुत बड़ा नंबर है यूपी में, और इसी को कहीं ना कहीं पहले आपने देखा होगा कांग्रेस ने लड़की हूं लड़ सकती हूं लगातार बात करती थी, समाजवादी पार्टी डिंपल यादव को आगे करके महिलाओं की बात करती रही है, और अब ऐसे में बीजेपी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था और योगी आदित्यनाथ की सरकार के सामने, इसीलिए कहीं ना कहीं ये एक मास्टर खेला गया है जिसमें उन महिलाओं को सुविधा दी गई है। फिर चाहे वो किसी भी वर्ग की हो, किसी भी उसकी हो, सभी को ये सुविधा दी जाएगी। तो ऐसे में हर वर्ग का वोट बैंक कहीं ना कहीं,
3: हर वर्ग का वोट बैंक साधने की कोशिश यहां पर योजनाओं का ऐलान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा। वहीं रक्षाबंधन से पहले दिल्ली सरकार भी महिलाओं को बड़ा तोहफा देने जा रही है। आज दिल्ली में लक्ष्मी योजना की शुरुआत है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तालकटोरा स्टेडियम में लाभार्थी महिलाओं को सर्टिफिकेट देकर योजना का शुरुआत करेंगी, और इसके तहत महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की सहायता राशि मिलेगी। हालांकि खाते में राशि 1 सितंबर से ही आएगी। इस योजना के मुताबिक 17 लाख से ज्यादा महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा।
2: तो दिल्ली सरकार पहले सवालों में भी थी, ऑपोजिशन सवाल पूछ रहा था कि आपने तो वादा किया था चुनाव के दौरान कि कब महिलाओं के खाते में पैसा डालेंगे, आपने पहले वादा किया था तो वो पैसा कब जाएगा? तो अब आज से इसका प्रारंभ शुरुआत हो रही है। हालांकि खाते में पैसे 1 तारीख से आएंगे, लेकिन योजना की शुरुआत रक्षाबंधन से पहले हो रही है। इधर विवादों के केंद्र में एक बार फिर से हिजाब आ गया है, और इस बार हिजाब को लेकर दो मोर्चों पर विवाद की जंग होते दिख रहे हैं। एक तो हिजाब को लेकर राहुल गांधी पर हमले चल रहे हैं। आपको याद होगा कि पुणे में कार्यक्रम हुआ था और राहुल गांधी ने महिला आजादी की बात की थी, कहा था कि महिलाओं की पहचान किसी रिश्ते से नहीं है, खुद से होनी चाहिए।
3: अब बीजेपी ने राहुल गांधी के इस पुराने बयान का हवाला देकर राहुल गांधी पर डबल स्टैंडर्ड का आरोप लगाया। तो उधर हिजाब पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ ओवैसी सामने आ गए। उन्होंने कहा कि ये आप जिस तरीके से हाईकोर्ट का फैसला आया, समझ सकते हैं कि महिलाओं पर कैसे प्रतिबंध लगा जाए जा रहे हैं।
4: बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि व्हेनेवर आई स्पीक टू अ मैन, वुमेन आर पुट इन थ्री बॉक्सेस। यू आर आइदर सीन एज अ डॉटर, एज अ वाइफ और एज अ मदर। नाउ देयर इज नथिंग रॉन्ग with being seen as a wife, daughter or mother. But this cannot be your only identity. We have brilliant women who are doing completely fascinating and different things, who are professionals, who are sportswomen, who do multiple different things, and then the only identity that they are given by our men is these three. And notice that every single one of those identities has a relationship with a man. So you are either a mother or a wife or a daughter.
5: पुणे से राहुल गांधी ने महिला आजादी पर नई हुंकार भरी, पितृसत्ता पर सीधे प्रहार किया, मनुस्मृति की नीतियों की आलोचना की। राहुल गांधी ने दो टूक कहा, महिलाएं किसी के अधीन नहीं हो सकती, उनकी पहचान खुद उनसे है।
4: The मनुस्मृति which says clearly, in childhood, a female must be subject to her father. Meaning, the Manusmriti says, in childhood, a female belongs to her father. In youth, she belongs to her husband. When her lord is dead, she belongs to her sons. A woman must never be independent. This is a direct quote from the Manusmriti. And these words are a shame, because these words should never ever have been spoken. The biggest strength of this country is the fact that our women should be independent, should stand for themselves, should believe in themselves. You belong to nobody. You do not belong to anybody except yourself. You have a relationship with your father. You have a relationship with your brother. You have a relationship with your husband. You have a relationship with your son. But you do not belong to them. You belong to yourself.
5: मनुस्मृति पर चोट कर राहुल गांधी ने विवाद का नया पिटारा खोला। उनके बयान के समर्थन में भी और

0: आगे निकल गई हैं, उनको अब आपके सहारे या आपके मनुस्मृति के विरोध में किसी बात की जरूरत नहीं है।
1: मनुस्मृति क्या है ये हमें नहीं पता, शायद राहुल गांधी जी को ही पता होगा बिकॉज उन्होंने भाषण में कहा है। भारत में आप किसी से भी पूछेंगे तो उन्हें मनुस्मृति क्या है वो पता ही नहीं।
2: तो पुणे से छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी ने जो कुछ कहा उसका लब्बो लुआब ये था कि महिला को सिर्फ रिश्ते की खांच में नहीं रखा जा सकता, उसकी पहचान पिता या पति से नहीं खुद से होनी चाहिए। और राहुल गांधी के इसी नजरिए पर अब बीजेपी ने नया सवाल खड़ा किया है। बीजेपी ने हिजाब पर राहुल गांधी के एक पुराने बयान की मिसाल दी है जिसमें वो कह रहे हैं,
3: सर अगर आप सत्ता में आएंगे, अगर आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो आपका क्या नजरिया होगा कि एक औरत अबाया और हिजाब पहनकर फ्री नहीं फील करती है, क्या अबाया और हिजाब उतार
4: के? मेरी व्यू है कि जो महिला पहनना चाहती है वो उसके ऊपर है, अगर वो अबाया पहनना चाहती है कुछ और पहनना चाहती है वो उसका बिजनेस है, उसका काम है, उसको अलाउ करना चाहिए, मेरी तो ये राय है।
2: तो राहुल गांधी के इस बयान की मिसाल देते हुए बीजेपी ने पूछा है, जब बात हिंदू महिलाओं और मनुस्मृति की आती है तो राहुल गांधी पितृसत्ता के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन हिजाब के मामले में वही सिद्धांत व्यक्तिगत पसंद कैसे बन जाता है?
5: इसी के साथ यहां रुकेंगे शो से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
8: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। एयू
9: सोच बदलो और बैंक भी।

0: युवाओं को नौकरी, युवाओं का अंदाज। योगी आदित्यनाथ की यह सेल्फी उन युवाओं के साथ है जिनको आज उन्होंने नियुक्ति पत्र सौंपे। जब देश का जेएनजी टॉप ट्रेंडिंग में है, परीक्षाओं और सरकारी भर्तियों में सिस्टम को सुधारने की मांग पर सड़कों पर उतर रहा है, तब योगी आदित्यनाथ की यह सेल्फी सामने आई है। मौका था 3,446 टेक्निकल असिस्टेंट और 126 मंडी सचिवों की नौकरी का नियुक्ति पत्र बांटने का। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ के निशाने पर आई समाजवादी पार्टी। यूपी के युवाओं को लेकर 2017 से पहले के हाल पर योगी का दावा यह था,
1: 17 के पहले की परिपाटी थी कि नियुक्ति का विज्ञापन निकलता था, चाचा भतीजे की जोड़ी और महाभारत का पूरा खानदान फिर वसूली के लिए प्रदेश भर में निकल पड़ता था, नौजवान भटकता रहता था, परिणाम नहीं आता था और अंततः माननीय न्यायालय को कोर्ट में स्टे लगाना पड़ता था।
0: योगी आदित्यनाथ का दावा है कि कर्फ्यू, दंगा, उपद्रव और भ्रष्टाचार यूपी की पहचान बन चुके थे। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता था, लेकिन 9 साल में स्थिति ऐसी बदली है कि यूपी सरकार अगले 6 महीनों में 1,00,000 नौकरियां दे सकेगी।
1: नोट करिए, अगले 6 महीने के अंदर 1,00,000 नौजवानों को फिर सरकारी नियुक्ति पत्र अलग अलग स्टेज में हर सप्ताह उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। 1,00,000 सरकारी नियुक्ति पत्र हम देने जा रहे हैं। अनुमान करिए, 1,00,000 यूपी के अंदर कभी ये कल्पना होती थी? यहां हम 6 महीने के अंदर ही 1,00,000 नौजवानों को सरकारी नियुक्ति पत्र दे दें, सारी परीक्षाएं पूर्ण हो गई।
0: योगी आदित्यनाथ यूपी के युवाओं को बेहतर भविष्य का ये भरोसा ऐसे समय में दे रहे हैं जब पहले दिल्ली, फिर झारखंड और अब बिहार में युवाओं का आक्रोश सामने दिखा है। 2027 के चुनाव के मद्देनजर युवाओं पर अखिलेश यादव और मायावती की भी नजरें हैं। विपक्ष योगी सरकार में युवाओं के भविष्य पर सवाल उठाने में पीछे नहीं।
2: 2017 में 2026 के बीच में ये 1,00,000 नौकरियां क्यों नहीं क्रिएट हुई थी? आज जब पूरे देश में युवाओं का, छात्रों का भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक गहरा आक्रोश, असंतोष व्याप्त है सड़कों पर, 1,00,000 नौकरी का ऐलान कर रहे हो, 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष वाला क्या हुआ? मुख्यमंत्री जी, पूरी उत्तर प्रदेश में जो पक्की नौकरियां थी, जो बैकलॉग्स हैं, आज तक नहीं भरे।
3: जब वो नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, बच्चे उनसे पूछ रहे हैं कि नौकरियां कहां हैं, तो उन्हें 10 साल पहले का चाचा भतीजा याद आ रहा है, साबू याद आ रहा है,

0: विक्रम बेताल याद आ रहा है। ये विक्रम बेताल चाचा भतीजा याद करने से क्या नौकरी मिल जाएगी बच्चों को? योगी आदित्यनाथ जी 69,000 शिक्षक सुप्रीम कोर्ट में आपने लटका रखे, 68,500 आपने कोर्ट में लटका रखे, जिनको आपने नौकरियां दे चुके हैं, पुरानी सरकारें दी थी, तो उनको भी आपने लटका रखा है।
1: चुनाव में युवाओं के असर के मद्देनजर राजनीति संजीदा हो चली है। हाल ही में स्कूलों की समस्याओं को लेकर जेएन अल्फा का प्रदर्शन भी यूपी में देखने को मिला था। इसके बाद अब योगी सरकार ने प्राइमरी से लेकर 8वीं तक के स्कूलों के पुनर्निर्माण और मरम्मत के लिए 604 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया है। बेसिक शिक्षा विभाग ने 302 करोड़ रुपयों की पहली किस्त जारी भी कर दी है। साफ है कि शिक्षा और नौकरी के बुनियादी अधिकार की मांगों पर राजनीति में एक हलचल तो नजर आने लगी है। आज तक ब्यूरो

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

राजधानी दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में स्वाइन फ्लू के मामलों में इजाफा हुआ तो सरकार की चिंता भी बढ़ गई। एहतियाती कदम उठाए जाने लगे, एडवाइजरी जारी की गई, उच्च स्तरीय बैठकों का दौर शुरू हो गया। बात अगर राजधानी दिल्ली की करें तो बीते कुछ दिनों में यहां H1N1 इन्फ्लुएंजा के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब तक दिल्ली में H1N1 के 2000 मामले सामने आए हैं और स्थिति चिंताजनक है, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने अहम बैठक भी बुलाई। उधर हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अस्पतालों में स्पेशल वार्ड बनाए गए हैं जहां स्वाइन फ्लू वायरस से पीड़ित मरीज का इलाज किया जा सके। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक स्वाइन फ्लू एक वायरल संक्रमण है जो संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने और नजदीकी संपर्क में आने से फैलता है और जल्द ही इसके लक्षण भी नजर आने लगते हैं। यूं तो मौसम में बदलाव के साथ बुखार, खांसी, गले में खराश, सिर दर्द और शरीर में दर्द जैसी समस्याएं होना आम है। अक्सर लोग इन लक्षणों को सामान्य वायरल संक्रमण या मौसम का असर मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। हालांकि अगर ये लक्षण लगातार बने रहे, बढ़ने लगे या स्वास्थ्य में सुधार न हो तो सावधानी बरतना जरूरी है। ऐसे लक्षण स्वाइन फ्लू यानी H1N1 संक्रमण में भी दिखाई दे सकते हैं। कोलकाता और बेंगलुरु जैसे शहरों में भी हाल के दिनों में मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने बढ़ते स्वाइन फ्लू मामलों के मद्देनजर दिल्ली और देश में स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक कर चुके हैं। साथ ही कई राज्यों में भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं। आज तक ब्यूरो।

त्योहारों का मौसम करीब आते ही भारतीय बाजारों में खरीदारी बढ़ने लगती है। घर की सजावट से लेकर ज्वेलरी तक लोग फेस्टिव सीजन की तैयारी शुरू कर देते हैं। इस पूरे माहौल में सोने की चमक सबसे ज्यादा नजर आती है। पिछले कुछ महीनों के उतार चढ़ाव के बाद सोने की कीमतों में फिर से तेजी देखने को मिल रही है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल यानी WGC के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अगस्त के शुरुआती दो हफ्तों में इंटरनेशनल मार्केट में सोना 9% मजबूत होकर $4,391 प्रति औंस पर पहुंच गया है। इस तेजी की वजह डॉलर की कमजोरी, मॉनेटरी पॉलिसी में बदलाव और ETF में बढ़ा निवेश को माना जा रहा है। कीमतों में तेजी के बावजूद गोल्ड मार्केट में निवेश का रुझान बना हुआ है। वहीं फेस्टिव सीजन की तैयारी के लिए ज्वेलर्स और मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से भी स्टॉक बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई है। WGC के डेटा के मुताबिक जुलाई में भारत के गोल्ड ETF में 1560 करोड़ रुपए का नेट इनफ्लो आया। वहीं गोल्ड ETF की कुल होल्डिंग बढ़कर 120 टन से ज्यादा हो गई और अगस्त के पहले दो हफ्तों में भी ETF में करीब 1179 करोड़ रुपए का नया निवेश आया। ETF में निवेश और सोने की बढ़ती कीमतें बताती हैं कि बाजार में गोल्ड को लेकर सेंटिमेंट मजबूत बना हुआ है। सोने में निवेश की तेजी का असर फ्यूचर्स मार्केट यानी वायदा कारोबार में भी दिख रहा है। MCX पर गोल्ड की ट्रेडिंग एक्टिविटी में जुलाई के दौरान अच्छी बढ़ोतरी दर्ज हुई। जुलाई में MCX पर गोल्ड का एवरेज डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़कर 14.9 टन रहा और रोजाना का औसत टर्नओवर 9% बढ़कर 21,400 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। बाजार में सोने की मांग का एक और संकेत इसके आयात से मिल रहा है। फेस्टिव सीजन से पहले ज्वेलर्स और मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से स्टॉक बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई है। जुलाई में भारत का गोल्ड इंपोर्ट वैल्यू के हिसाब से बढ़कर 4.16 अरब डॉलर पर पहुंच गया है, जो जून के मुकाबले दोगुने से ज्यादा है। WGC के अनुमान के मुताबिक जून में करीब 20 टन के मुकाबले जुलाई में 40 से 45 टन सोने का आयात हुआ। इसकी बड़ी वजह फेस्टिव सीजन से पहले मैन्युफैक्चरर्स और रिटेलर्स की तरफ से इन्वेंट्री बढ़ाना रहा। ETF निवेश, ट्रेडिंग और आयात के आंकड़े बताते हैं कि फेस्टिव सीजन से पहले भारतीय गोल्ड मार्केट में मांग फिर से मजबूत होती दिख रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आने वाले दिनों में फेस्टिव और वेडिंग सीजन शुरू होने के साथ सोने की मांग पर बाजार की नजर रहेगी। फिलहाल दिलचस्प बात यह है कि कीमतें ऊंचे स्तर पर होने के बावजूद गोल्ड में निवेश और ज्वेलरी की खरीदारी का रुझान बना हुआ है। आज तक ब्यूरो।

राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में सप्लाई होने वाले कैंसर के इंजेक्शन के नकली होने का खुलासा। दिल्ली में पानी मिलाकर एक एक लाख रुपए में बिक रहा था एक इंजेक्शन, 7 राज्यों तक फैला था जाल। रक्षाबंधन के कपड़ों पर उठे विवाद के बाद कंपनी ने हटाया कृति सेनन का विज्ञापन, कहा भारतीय संस्कृति और परंपरा का पूरा सम्मान। कंगना ने भी उठाए थे इस पहनावे पर सवाल। चुनाव से पहले 60 साल से ऊपर की महिलाओं को फ्री बस यात्रा की शुरुआत कर बोले योगी, 2017 से पहले सपना देखने से डरती थी यूपी की बेटियां, आधी आबादी को न सुरक्षा थी न सम्मान। नेपाल में कुदरत का भयानक कहर, हाहाकारी सैलाब में समा गई बस्ती, बाजार, पुलिस चौकियां, पावर प्रोजेक्ट को भी नुकसान की खबर, प्रलय की तरह बाढ़ का पानी आया। पाकिस्तान के हॉस्पिटल में लगी आग, 15 बच्चों की मौत, महिला वार्ड में लगे एसी के कंप्रेसर में विस्फोट, अस्पताल में मौजूद है 16 नवजात, सिर्फ एक की जान बच पाई।

0: नमस्कार, 12 बजे 12 रिपोर्टर देख रहे हैं आप। मैं हूं राजीव ढौंडियाल। सबसे पहले बुलेटिन में बड़ी खबर आपको नेपाल से देते हैं और साथ ही साथ हैरान कर देने वाली तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, जहां तिब्बत से आए भीषण बाढ़ से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, तबाही मची है। नेपाल के रसुवा इलाके में सैलाब का तांडव दिखा है। तिमुरे बाजार और कसम क्षेत्र में सैकड़ों गाड़ियों के बह जाने की खबर है। ये बताया जा रहा है कि 3 पुलिस चौकियां भी तबाह हो गई है। कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को भी नुकसान की खबर है। आज सुबह लगभग 9 बजे ये घटना हुई है। आप पहाड़ पर कभी गए हो तो आपने दृश्य देखा होगा कि नदियों से जब बादल उठते हैं तो ऐसे दिखते हैं, लेकिन ये बादल नहीं है, ये नदी में ऐसी बाढ़ आई है कि उसके बाद पानी कुछ इस तरह से वहां से उसका जो है वो ऊपर उठता हुआ दिखाई दिया है। अब ये सामान्य बाढ़ बिल्कुल भी नहीं लग रही है। आमतौर पर जब नदियां रौद्र रूप लेती हैं तो जब बाढ़ आती है तो वो अलग तरह की होती है। तो क्या यहाँ कोई अलग तरह की कोई घटना हुई, क्या बादल फटे, फ्लैश फ्लड आया, क्या, इस बारे में तो अभी जानकारी नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी तबाही जरूर हुई है। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, खासतौर पर पावर प्रोजेक्ट्स को तो बहुत नुकसान हुआ है। पावर प्रोजेक्ट्स के इर्द गिर्द जो रिहायश थी, थोड़ी बहुत जो कंस्ट्रक्शन था, जो अस्थायी निर्माण था, वो सब ध्वस्त हो गया है। इस वीडियो में आप चीख पुकार सुनिए, आप इस तस्वीर को देखिए कि एक बहुत बड़ा एक गांव दिखाई दे रहा है और गांव के बिल्कुल बगल में बादल से उठते सब कुछ ढका हुआ दिख रहा। हमारे संवाददाता काठमांडू से पंकज दास इस समय जुड़ गए। पंकज, इस बाढ़ के पीछे की वजह क्या है, सामान्य बाढ़ थी या कोई बादल फटा और कितना नुकसान हुआ है, ये विस्तार से बताएं।
1: आज सुबह 9 बजे जैसे खबर मिली काठमांडू में कि रसुवा जो तिब्बत की तरफ है वहाँ एक ग्लेशियर के टूटने से ये भारी तबाही हुई है। तो जो तिब्बत के पास का नेपाल का जिला है रसुवा, सबसे ज्यादा नुकसान उसको हुआ है और बाढ़ इतनी भयानक है कि वो नीचे तटीय इलाके तक आ गया है, यानी कि चितवन का इलाका जो भारत के जो सीमा है वहाँ से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी है, वहाँ तक इस बाढ़ के पहुँचने का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। भारी तबाही हुए, आसपास की सारी बस्तियां बह गई हैं। यहाँ जो कस्टम ऑफिस था जहाँ सैकड़ों कंटेनर रखे हुए थे, हजारों गाड़ियां, नई गाड़ियां जो चाइना से आती हैं वो रखी हुई थी, वो सब बाढ़ में बह गए हैं। और पुलिस हेडक्वार्टर से बताया गया कि उनके 28 पुलिस वाले जो हैं वो लापता हो गए इस बाढ़ में, जिनकी ड्यूटी वहाँ पे लगी हुई थी। वहाँ रसुवा से चलकर जो सिंधु पाव चौक है उसके आसपास के कई जिलों में इस बाढ़ की तबाही देखने को मिल रही है। लगातार इस बात की खबर आ रही है कि जहाँ जहाँ से ये बाढ़ का पानी गुजर रहा है वहाँ तबाही मचाते हुए ये बाढ़ का पानी आगे बढ़ रहा है।
0: पंकज, जिस समय बताएं क्या बाढ़ का पानी थोड़ा कम हुआ है और कितने लोगों की जान जाने की खबर है?
1: अभी तक इस बात का कोई अनुमान अंदाजा ही नहीं लगा पा रहा कि कितने लोगों की जान गई, कितनी बस्तियां गई, क्योंकि अभी भी लगातार जो ग्लेशियर टूटा है तिब्बत में और उसका जो पानी है वो लगातार अभी आ ही रहा है। वहीं पर सारे जो बिजली के सब स्टेशन जो है वो सारे ध्वस्त हो गए हैं, इस वजह से वहाँ लाइन नहीं है, इंटरनेट का जो आपूर्ति सारा बंद है। किसी तरह से वहाँ से जो जिला प्रशासन उनसे संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है। तो अभी बाढ़ का कहर जारी है, इसलिए किसी भी तरह का जो कितनी मौतें हुई इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं लगाया जा रहा है।
0: पंकज, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के। तो ग्लेशियर टूटने से शुरुआत में कहा जा रहा है कि ये बाढ़ आई है और अभी भी हालात सामान्य नहीं है। अब एक और बड़ी खबर आपको देते हैं, पाकिस्तान से बड़ी खबर, जहां इस्लामाबाद के एक सरकारी हॉस्पिटल में आग लग गई, कम से कम 15 नवजात की मौत की खबर है। जीओटीवी की जानकारी दी है कि अस्पताल में इस्लामाबाद में एयर कंडीशनिंग सिस्टम में खराबी आई और आग लगने तब उसी में आग लगी, तब यह हादसा हुआ। इसमें 15 बच्चों की जान चले गई, 16 नवजात वहां थे जिसमें से सिर्फ एक को बचाया जा सका।
2: पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के एक अस्पताल से दर्दनाक खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एक बच्चों के अस्पताल में आग लगने के कारण 15 नवजात बच्चों की मौत हुई है और अभी भी कई सारे बच्चे और लोग घायल हैं। इस बीच माना जा रहा है कि अस्पताल में एसी की खराबी की वजह से वहां पर जो है ये आग भड़क गई, जिसके कारण इतने छोटे नवजात बच्चों की जान गई है। फिलहाल वहां पर प्रशासन की तरफ से अस्पताल में बाकी मरीजों और लोगों।
0: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सेहत को लेकर उनके बेटों ने शहबाज सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने अपने पिता की सेहत, जेल के हालात और परिवार के नियमित संपर्क न रख पाने को लेकर चिंता जताई। साथ ही चेतावनी दी है कि पाकिस्तान तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। इमरान के बेटे कासिम ने यह कहा है कि अपने सिद्धांतों पर मजबूती से डटे हुए हैं, लेकिन अब उनका शरीर इसकी कीमत चुका रहा है।
3: He survived a brutal assassination attempt and has faced multiple. Now he's endured nearly 3 years in solitary confinement without breaking. But his body's paying the price for what's being done to him. He's 73 years old. He's held in a cell roughly 6 feet by 8 without windows or natural light. He's often held there for more than 23 hours a day. When his vision failed last October, they gave him eye drops for 3 months. By the time he was properly examined in February, he'd lost most of the sight in his right eye. Last week at Pakistan's Supreme Court, the judge said,
4: पाकिस्तान की सियासत में इमरान खान एक ऐसा मोहरा बन चुके हैं जिसका इस्तेमाल पाकिस्तानी फौज अपनी सुविधा से करती है, चाहे इमरान को सत्ता में बिठाना हो या सत्ता से बेदखल करना हो। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद जिस तरह से इमरान खान को जेल में रखने का फैसला किया गया, उसको लेकर दुनिया भर में सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही सवाल उठाए हैं इमरान खान के बेटों की तरफ से भी, जिसके अंदर उनके बेटे कासिम ने कहा है कि पाकिस्तान की सरकार यानी शहबाज शरीफ सरकार एक तानाशाही की तरफ बढ़ती जा रही है, जिसकी कीमत उनके पिता चुका रहे हैं, जिनकी सेहत लगातार गिरती जा रही है।
0: बांग्लादेश में हिंदू परिवार की हत्या को लेकर बवाल जारी है। तारिक रहमान सरकार के 6 महीने के कार्यकाल में यह बर्बर हत्या है। इसे लेकर हिंदू संगठन वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बेरहमी से बलात्कार और हत्या के मामले में बांग्लादेश में लोगों का गुस्सा फूटा है। सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल उठने और विरोध तेज होने के बाद बांग्लादेश सरकार ने हिंदू परिवार की हत्या की जांच को अब डिटेक्टिव ब्रांच को सौंप दी है।
5: बांग्लादेश में चुनाव हुए तो सरकार बदल गई। सरकार बदल गई लेकिन हालात नहीं बदले। जमीन पर चाहे कानून व्यवस्था या हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा, रंगपुरी में एक शिक्षक और उनके परिवार के साथ हुई बर्बरता की हत्या और परिवार की महिलाओं के साथ गैंगरेप के आरोपों के बाद बांग्लादेश में बवाल है। हिंदू संगठन सड़कों पर हैं, इंसाफ जांच की मांग कर रहे हैं। जब हो हल्ला बढ़ा, आवाज उठाई गई, तो दबाव में सरकार ने जांच पुलिस से हटा करके डिटेक्टिव ब्रांच को सौंप दी है। लेकिन अब पूरे बांग्लादेश में हिंदू संगठन विरोध कर रहे हैं कि हिंदुओं की सुरक्षा के उस वायदे का क्या हुआ जो तारिक रहमान ने चुनावों के दौरान किया था। इस बीच तमाम हिंदू संगठन दुनिया भर में जहां भी बांग्लादेश के दूतावास हैं उनका घेराव करने की तैयारी कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं कि हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।
0: अब बात करते हैं यूपी की चुनावी परीक्षा की तैयारियों के बीच, योगी सरकार ने कल बड़े फैसले लिए हैं। आज से लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना का भी शुभारंभ हो गया है और कुछ और बड़े फैसले भी लिए गए। तो 60 साल से ज्यादा की उम्र की महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश के रोडवेज में अब मुफ्त यात्रा वो कर पाएंगे। उसके लिए उन्हें कोई भी पैसा नहीं देना होगा, बस एक आइडेंटिटी कार्ड उनके पास में होना चाहिए और आज इसे हरी झंडी भी दिखा दी गई है और 2027 के चुनाव से पहले इसे बड़ा निर्णय माना जा रहा है।
6: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 2027 चुनाव के पहले मास्टर स्ट्रोक खेला है और इसमें युवाओं, बुजुर्ग महिलाओं, यहां तक छात्रों, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा एक तरीके से कैबिनेट अप्रूवल दिया है। और इसमें है सबसे पहला तो वो महिलाओं के लिए निशुल्क यात्रा आजीवन भर दी जाएगी जो महिलाएं हैं। इसके साथ साथ छात्राओं को या छात्रा हैं जो उनको स्कूटी के साथ साथ टैबलेट दिया जाएगा जिससे कि वो अपनी स्टडी कर सकें और उन सभी नौजवानों को इससे लाभान्वित किया जाएगा। यही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में स्कूलों में डेवलपमेंट और साथ ही साथ इस पूरे युवाओं को लाखों नौकरी देने की कवायद ये योगी आदित्यनाथ ने पूरा मास्टर स्ट्रोक 2027 चुनाव के पहले का खेला है, जिसमें कि सभी को एक ही निशाने पर साधा गया है। फिर चाहे उसमें बुजुर्ग महिलाएं हो, युवा हो, जेन जी हो, जेन अल्फा हो, इसके अलावा महिलाएं हो, सभी को एक साथ एक परिपाटी पर खड़ा कर दिया है। माना जा रहा है कि ये वोट बैंक मजबूत स्थिति में बीजेपी के लिए और योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए कारगर होगा।
0: और अब आपको सुनाते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर क्या कहा।
7: बस सेवा को प्रारंभ करने की बात आई तो हमने कहा भी देखो महिला स्वावलंबन का एक आदर्श उदाहरण बनेगा ही और इसका नाम भी रखिए लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर। तो इस पूरी सुविधा का नाम है लोकमाता अहिल्याबाई निशुल्क बस यात्रा। यानी कल से लेकर यानी 27, 28 और 29 को तो हर बेटी, हर बहन, हर माता अपने एक सहयात्री के साथ उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस में या सिटी बस की सेवा में निःशुल्क यात्रा कर ली गई और इसके बाद 29 के बाद 60 साल से ऊपर की माताओं के लिए बस यात्रा आईडी कार्ड उनका प्राप्त होने पर, वोटर आईडी कार्ड हो या आधार कार्ड हो, उस आधार पर फ्री में वो यात्रा रहेगी। वे कहीं भी उत्तर प्रदेश के अंदर जा सकती हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई किराया उनका नहीं लगेगा। आपका किराया अब हम लोग देंगे, सरकार आपका किराया भरेगी।
0: तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लक्ष्मी योजना के तहत पहले किस्त भी जारी करने वाली, और इसके तहत हर एक लाभार्थी को आज 2,500 रुपए जारी किए जा रहे हैं। और हालांकि पैसा 1 तारीख को उनके खातों में आएगा, लेकिन इस योजना की शुरुआत आज से हो रही है, जो कि दिल्ली के चुनाव में बीजेपी ने वादा किया था। और अब आज से लक्ष्मी योजना की शुरुआत।
8: दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी योजना लक्ष्मी योजना की आज से शुरुआत हो गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री और दिल्ली के उपराज्यपाल ने अप्रूवल लेटर जो है वो दिल्ली की महिलाओं को आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में डिस्ट्रीब्यूट करे, और अब महिलाओं के खाते में 1 सितंबर से 2,500 रुपए की किस्त जो है वो आनी शुरू हो जाएगी। लगभग 4,000 महिलाओं को ये अप्रूवल लेटर जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से दिए गए हैं। 2025 के चुनावों से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली के जरिए ये अनाउंसमेंट किया था कि दिल्ली की महिलाओं को 2,500 रुपए हर महीने खाते में जो है वो दिए जाएंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी, और उसी गारंटी पर आज दिल्ली की सरकार ने, बीजेपी सरकार ने मोहर जो है वो लगाई है। और यही वजह है दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में भव्य कार्यक्रम के जरिए इसकी शुरुआत जो है वो दिल्ली में की गई। दिल्ली की मुख्यमंत्री की तरफ से पहले ऐलान किया गया था कि राखी पर महिलाओं को ये तोहफा जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से दिया जाएगा।
0: पटना के गर्दनी बाग में छात्रों के धरने का आज 9वां दिन है, और एक दिन पहले मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के कार्यक्रम के बाद सभी छात्र धरने पर बैठे हैं। आप छात्र TRE4 में एकल परीक्षा कराने, नेगेटिव मार्किंग को हटवाने की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर सियासत भी तेज है। कल BPSC का प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन TRE4 के अभ्यर्थी अब भी प्रदर्शनरत हैं।
9: पटना के गर्दनी बाग में छात्रों का आंदोलन और धरना आज 9वें दिन भी जारी है। दरअसल बिहार में TRE4 की परीक्षा के अंदर एकल परीक्षा और निगेटिव मार्किंग को लेकर के पेच फंसा हुआ है। छात्र यह मांग कर रहे हैं कि यह पूरी परीक्षा जिसको BPSC 2 चरणों में कराने का ऐलान कर चुकी है, उसको 1 चरण में यानी एकल परीक्षा ली जाए, वहीं परीक्षा के अंदर निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था को भी खत्म किया जाए। कल छात्रों ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया था, लेकिन सरकार इस मामले पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। वही छात्र भी अब आगे की रणनीति बनाने में जुट गए हैं।
0: और इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं, TMC से अलग हुए कुछ सांसदों को लेकर। लोकसभा सचिवालय ने 20 सांसदों को नोटिस थमाया है। ये नोटिस अभिषेक बैनर्जी की उस याचिका पर जारी किया गया है जिसमें उन्होंने पार्टी छोड़ने वाले सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। लोकसभा सचिवालय ने सभी 20 सांसदों से 7 दिन के भीतर इस पर जवाब मांगा है।
10: तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसद जो खुद को अब NCPI के लोकसभा सांसद बुलाते हैं, उनके लिए कानूनी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक बैनर्जी की याचिका पर सुनवाई हुई। नोटिस इशू हुआ लोकसभा सेक्रेटेरिएट के साथ साथ इन बागी सांसदों को, और अब लोकसभा सेक्रेटेरिएट की तरफ से भी एक्शन मोड शुरू हो गया है। लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने असल में नोटिस इशू किया है इन सभी बागी सांसदों को, और जवाब मांगा है अभिषेक बैनर्जी की उस पिटीशन पे जिसमें अभिषेक बैनर्जी ने, जो तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं और पार्लियामेंट में TMC के लीडर हैं, उनकी तरफ से इन बागी सांसदों को डिस्क्वालीफाई करने की अपील की गई है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पास वो पिटीशन अभिषेक बैनर्जी ने दायर की थी। अब इस नोटिस में 7 दिन का समय दिया गया है तमाम बागी सांसदों को कि वो अपना पक्ष रखें और जवाब सबमिट करें लोकसभा सेक्रेटेरिएट के साथ।
0: अब स्वाइन फ्लू के बढ़ते संकट की कई राज्यों में इसका संकट गहराता जा रहा है। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को भी जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा है। उधर दिल्ली में भी स्थिति गंभीर है, लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और बढ़ते मामलों को देखते हुए रेखा गुप्ता सरकार ने अब सतर्कता बढ़ाई है। H1N1 के मामलों के मद्देनजर दिल्ली के स्कूलों को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। अस्पतालों में भी वार्ड और बेड्स की संख्या बढ़ाने के निर्देश हैं।
11: कई राज्यों के अंदर इसका संकट गहराता जा रहा है। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को सवाई मानसिंह अस्पताल के अंदर भर्ती करना पड़ा है। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो 2000 से ज्यादा केसेस इस समय सामने आए हैं। रेखा गुप्ता जो कि मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने हाई अलर्ट इशू किया है। सारे के सारे सरकारी जो अफसर हैं उनको बोला गया है कि आपको पैनी नजर बनानी है, सरकार सतर्क हो चुकी है और स्कूलों के अंदर भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सरकार चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हों, स्वाइन फ्लू यानी कि H1N1 को लेकर सतर्क हो चुकी हैं और देश भर के अंदर इस समय स्वाइन फ्लू के ऊपर पैनी नजर बना के रखी जा रही है। कैमरा पर्सन सचिन के साथ ऐश्वर्या पालीवाल, आज तक।
0: अब एक बड़ी खबर राजस्थान से आपको देते हैं। राज्य सरकार की योजना के तहत उपलब्ध करवाए गए कैंसर की दवाइयों की भी कालाबाजारी की जा रही थी और खुलासा हुआ है कि ड्रग माफिया पानी भरकर लाखों रुपए में कैंसर के मरीजों को यह इंजेक्शन बेच रहे थे पानी वाला। सामने आया कि यह गिरोह वॉयल चोरी करके उसमें रिफिलिंग कर इसे बेचता था।
12: राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में लगाए जाने वाले कैंसर के इंजेक्शन का नकली वर्जन दिल्ली में कैंसर के मरीजों को बेचा जा रहा था। बताया जा रहा था कि सरकारी अस्पताल में सप्लाई होने वाले इस इंजेक्शन को वो ब्लैक में खरीद कर लाए हैं और सस्ता बेच रहे हैं, जबकि वो खाली वॉयल चुरा कर ले जाते थे और उसमें पानी भरकर सस्ते दामों में बेचा करते थे और ऐसे में वो लाखों रुपए कमा रहे थे मगर मरीजों को मार रहे थे।
0: 12:12 रिपोर्टर में आप अगली रिपोर्ट मुंबई से। मुंबई के फोर्ट इलाके में स्थित मशहूर खाने पीने की जगह अयूब्स के खिलाफ FDA की बड़ी कार्रवाई हुई। इस दौरान वहां खाद्य सुरक्षा और साफ सफाई से जुड़ी भी गंभीर खामियां मिली हैं। इसे लेकर महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने उनका फूड लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है, निलंबित कर दिया।
13: फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन की ताबड़तोड़ चल रही कार्रवाई ने एक और बड़े फूड जायंट को अपनी कार्रवाई की जद में लिया है। मुंबई के मशहूर अयूब्स रेस्टोरेंट पर इस बार FDA ने कार्रवाई करते हुए उनका लाइसेंस सस्पेंड किया है। FDA के अधिकारियों ने जब इन्वेस्टिगेशन किया, जब अयूब रेस्टोरेंट पर रेड की, तब उन्होंने पाया कि जो वायलेशंस थे वो काफी ज्यादा थी और साथ ही जो खाने पीने का सामान था वो भी ठीक से नहीं रखा गया था। जो स्टोरेज एरिया था वहां पर भी FDA के अधिकारियों को गंदगी मिली और जो नॉर्म्स या जो नियम FDA के तहत बनाए गए हैं उनका उल्लंघन FDA को बड़े पैमाने पर वहां पर मिला, जिसके बाद FDA के अधिकारियों ने अयूब रेस्टोरेंट का लाइसेंस जो है वो सस्पेंड कर दिया है। और साथ ही क्या ठीक करना है, क्या दुरुस्त होना चाहिए, क्या वायलेशंस थी, इनकी एक कॉपी उनको दी है और कहा है कि आप ये सारी चीजें ठीक करें और दोबारा से FDA में ये सारी चीजें ठीक करने के बाद आप अप्लाई करें। फिलहाल FDA की कार्रवाई पूरे महाराष्ट्र में शुरू है और तुकाराम मुंडे जो है और उनकी टीम जो है लगातार जो बड़े फूड जायंट्स है जो वायलेशन कर रहे हैं, जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई कर रहे हैं।
0: अब खबर गुरुग्राम में मानसूनी आफत के बाद वहां बिगड़े हालात की। इफको चौक पर मंगलवार को अचानक सड़क ही धंस गई। 25 फीट लगभग चौड़ा गड्ढा वहां बन गया। प्रशासन ने तुरंत उसे कवर कर दिया, लेकिन अब सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने इस घटना को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाए। पार्टी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए सरकार पर तंज कसा है।
14: गुरुग्राम में दो दिन की लगातार बारिश के बाद इफको चौक के साथ वाली रोड जो मेन नेशनल हाईवे को कनेक्ट करती है वो पूरी तरह से धस चुकी है। इस वक्त मेरी मौजूदगी इफको चौक के उसी सर्विस रोड पर है जहां पर आप देख सकते हैं कैसे 25 फीट बड़ा यहां पर गड्ढा हो चुका है और अगर गहराई की बात करें तो लगभग 10 से 12 फुट का ये गड्ढा है। और इस गड्ढे के बाद अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। हालांकि NHAI और गुरुग्राम डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारी यहां पहुंच गए हैं और पानी निकाल कर इस पूरे गड्ढे को खाली किया जा रहा है और पानी निकालने के बाद इसको मिट्टी से भरकर इसकी जो है मरम्मत करने की अब पूरी कवायद शुरू हो गई है। क्रेन मंगाए गए हैं, अलग अलग तरह के उपकरण मंगाए गए हैं। ये जयपुर की ओर जाने वाला मेन नेशनल हाईवे है जो इफ्को चौक के ठीक साथ में है और अब अधिकारियों के द्वारा इस पूरे इलाके की मरम्मत शुरू हो गई है। हालांकि इस पूरे मामले में राजनीति शुरू हो गई है, कांग्रेस ने बीजेपी की सरकार पर तंज कसा है और इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस अब भाजपा की सरकार पर हमलावर है। मेरे सहयोगी अजय ठाकुर के साथ मैं पीयूष मिश्रा, गुरुग्राम आज तक।
0: अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी, आप देखते रहिए आज तक।
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
16: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: Niemeyer. Let's go. The new BE6 Sportage.
1: इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
4: In association with
5: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। Sera Sanitaryware, it's your moment of Sera.
6: इनो पीने से आराम मिल गया है या एंटासिड लेने से आपके छाती का दर्द कम हो गया है तो ये मत सोचिए कि हार्ट अटैक नहीं है। देखिए वर्ल्ड ओवर एवरेज एज ऑफ हार्ट अटैक अराउंड 60 इयर्स, बट इंडिया में ये 10 साल कम है, यानी कि 50 इयर्स है। सो बाईपास सर्जरी बेसिकली जब आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस होते हैं, आपको हार्ट अटैक हो चुका है या फिर एंजाइना यानी कि दर्द रहता है, आपकी एक्सरसाइज कैपेसिटी कम है, तब स्टेंट की जगह यू नो वी प्रेफर बाईपास सर्जरी। दूसरे अगर कोई ऊपर से हेल्दी दिख रहा है उसका मतलब ये नहीं कि उसकी मेटाबॉलिक प्रोफाइल भी हेल्दी है।
7: हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट, इसमें डिफरेंस क्या है?
6: कार्डियक अरेस्ट इज फाइनली द कॉज ऑफ डेथ, यहाँ के ऊपर होने वाला कोई भी पेन, कोई भी एबनॉर्मल सेंसेशन हार्ट अटैक हो सकता है।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: Neymar, let's go. The new BE6 Sportage.
1: EMI पर मोबाइल या लैपटॉप खरीदना आजकल आम बात हो गई है, लेकिन कभी कभी EMI डिफॉल्ट करते ही ग्राहकों को फोन लॉक होने या डिवाइस के फीचर बंद होने का डर सताने लगता है। इसी को देखते हुए रिजर्व बैंक ने डिवाइस फाइनेंसिंग से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के तहत लोन पर खरीदे गए मोबाइल और लैपटॉप को तुरंत लॉक नहीं किया जा सकेगा। डिवाइस फाइनेंसिंग से जुड़े नए नियम 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे। इसके बाद लोन पर खरीदे गए मोबाइल या लैपटॉप को तुरंत लॉक नहीं किया जा सकेगा। दरअसल RBI ने डिवाइस डिसेबल करने के लिए चरणबद्ध प्रक्रिया तय की है, जिसमें ग्राहकों की प्राइवेसी और अधिकारों की सुरक्षा पर खास जोर दिया गया है। केंद्रीय बैंक का कहना है कि डिवाइस लॉकिंग का इस्तेमाल रिकवरी के दबाव के तौर पर नहीं किया जा सकता। इसी वजह से बैंक और फाइनेंस कंपनियों के लिए स्पष्ट नियम तय किए गए हैं। डिफॉल्ट के बाद पहले 30 दिन तक डिवाइस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकेगा। 60 दिन के बाद कुछ फीचर्स सीमित किए जा सकते हैं। 90 दिन बाद ही डिवाइस डिसेबल करने की कार्रवाई संभव होगी और इनकमिंग कॉल, SMS और SOS जैसी जरूरी सुविधाएं चालू रखनी होंगी। RBI ने ये भी साफ किया है कि डिवाइस लॉकिंग के लिए मनमाने सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। डिजिटल लेंडिंग के बढ़ते इस्तेमाल के साथ ग्राहकों की प्राइवेसी और डेटा सुरक्षा को लेकर भी नए सुरक्षा उपाय जोड़े गए हैं। डिवाइस लॉकिंग के लिए प्रमाणित OEM या OS आधारित सिस्टम का इस्तेमाल होगा। वहीं थर्ड पार्टी अनाधिकृत सॉफ्टवेयर की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा कर्जदार और गारंटर की सीमित निजी जानकारी ही साझा की जा सकेगी और रिकवरी एजेंट तय समय के भीतर ही संपर्क कर सकेंगे। नए नियमों का मकसद रिकवरी प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी बनाना और ग्राहकों को अनावश्यक दबाव से बचाना है। साफ है कि EMI पर मोबाइल या लैपटॉप खरीदने वाले ग्राहकों को नए नियम से बड़ी राहत मिलने वाली है। डिवाइस लॉकिंग की प्रक्रिया पूरी तरह नियमों के दायरे में होगी और ग्राहकों के जरूरी अधिकार भी सुरक्षित रहेंगे। आज तक ब्यूरो।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
4: एक बड़ी खबर आपको देते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से जुड़ी खबर है, जहां आज तक के संवाददाता ने जब उनसे गुरुग्राम में जल भराव पर सवाल किया तो वो बिना कोई जवाब दिए चले गए। इसके अलावा मुख्यमंत्री के सुरक्षा कर्मियों ने माइक को तो दूर हटा दिया, तभी दोबारा कोशिश की गई, लेकिन CM साहब फिर चुप रहे, फिर आगे बढ़ते रहे, जबकि उनके सुरक्षा कर्मियों ने माइक को दूर कर दिया। पहले आप देखिए। तो ये हाथ दिखा दिया, मैं हूं खामोश, जहां वहां से मुझे समझिए। देखिए, के लंबे चौड़े सुरक्षा कर्मी है मुख्यमंत्री, जिनकी जवाबदेही है। गुरुग्राम में इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, पूरा गुरुग्राम डूब गया, वहां मुख्यमंत्री को तो सामने आकर जवाब देना था। लेकिन असीम बसीर, शायद गलती आपसे ये हो गई कि आपको बस कांग्रेस शासित राज्य के बारे में पूछ देना था, तो शायद मुख्यमंत्री एक कुछ देर नहीं, कुछ मिनट नहीं, शायद 10 मिनट रुक जाते और फिर बात करते, लेकिन सवाल उनकी सरकार से जुड़ा हुआ था, इसीलिए खामोशी बरती और उनके जो बाउंसर्स हैं वो बदसलूकी कर रहे हैं। रिपोर्ट माइक पीछे कर रहे हैं।
5: जी हाँ, जिस तरह मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे, क्योंकि गुरुग्राम एक बड़ा इशू है, जो गुरुग्राम में जिस तरह की फ्लडिंग हुई है, पानी इतना इकट्ठा हुआ, बच्चे वहां फंस गए, लोग वहां फंस गए, तो डेफिनेटली बीइंग हरियाणा चीफ मिनिस्टर उनकी जवाबदेही है, अकाउंटेबिलिटी है। लेकिन जिस तरह वो यहां पर हरियाणा के स्पोर्ट्स को लेकर एक फंक्शन है यहां पर पहुंचे, तो हमने उनको अटेम्प्ट किया, हमने माइक लगाया, सवाल किया, लेकिन सवाल को इवेड किया, उनके जो सिक्योरिटी पर्सनल थे उन्होंने माइक को हटा दिया। दोबारा उसी समय दोबारा कोशिश की, उसी सीक्वेंस में फिर उन्होंने माइक जो है हटा दिया। सो डेफिनेटली ये दर्शाता है कि अभी इस इशू से वो इस पे जवाब नहीं दे रहे हैं, वेट कर रहे हैं। लेकिन ये एक समस्या का हल नहीं है। समस्या का हल ये होना चाहिए कि जो गुरुग्राम में हो रहा है उसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए, और जो वहां फ्लडिंग हो रही है दोबारा ना हो उसके लिए क्या अरेंजमेंट्स है, किस तरह के जो एलेबोरेट अरेंजमेंट्स करेंगे या किस तरह के इंतजाम अगली बार करेंगे इस तरह की सिचुएशन ना हो। क्योंकि डेफिनेटली हरियाणा के जो लोग हैं, स्पेशली गुरुग्राम के लोग हैं, हैवी टैक्स पे करते हैं, और जिस तरह का बेसिक सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा। और उसके ऊपर से बड़ी बात तो यह है कि जब हेड ऑफ द स्टेट को सवाल किया जाता है तो वो उससे जवाब नहीं देना पसंद करते हैं। जी हाँ,
4: यही तो असीम सबसे बड़ी समस्या है कि आपकी जवाबदेही है लेकिन आप उस समय खामोशी अख्तियार कर रहे हैं। लेकिन हमने देखा है असीम, आप इससे पहले भी बहुत सारे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री आते हैं, माइक जहां पर होते हैं वहां पर खुद से आ जाते हैं या मीडिया को एंटरटेन करते हैं, सवालों का जवाब देते हैं। लेकिन चूंकि इस समय विफलता क्लियर दिख रहे हैं और हर तरफ से उन पर सवाल पूछे जा रहे हैं, तो खामोशी तो सवालों को और ज्यादा बढ़ाएगी, कम नहीं करेगी।
5: नहीं, एग्जैक्टली अगर सिचुएशन हल नहीं होगी, प्रॉब्लम जो है वो नहीं उसका सॉल्व किया जाएगा तो ये मुश्किल बढ़ेगी। आज जो गुरुग्राम के एमपी हैं राव इंद्रजीत, वो भी जाकर सुबह से हरियाणा के चीफ मिनिस्टर के घर पे गए, वहां पर मुलाकात की, मीटिंग की। उन्होंने बाहर आके बोला कि मैंने जो गुरुग्राम में फ्लडिंग हुई है उसके बारे में सीएम को अलर्ट किया है, डिटेल किया है, सोल्यूशंस भी डिस्कस हुए हैं किस तरह की होना चाहिए आगे जाके, रोड मैप वो बताया है। लेकिन अकाउंटेबिलिटी बींग चीफ मिनिस्टर जो है वो आपको लेनी पड़ेगी, आपको जवाबदेही भी देनी पड़ेगी। और खास करके स्पेशली चीफ मिनिस्टर नॉर्मल इश्यूज पे बहुत इलेबोरेटिवली बोलते हैं, लेकिन गुरुग्राम जिस तरह हमने विजुअल्स में देखा किस तरह लोगों को प्रॉब्लम आई सिविक इश्यूज को लेकर, तो जब आज सवाल किया गया तो उन्होंने दो बार सवाल जो है वो सुना है लेकिन वेट जो कर गए, आगे चले गए, मूव कर गए। लेकिन हम कोशिश जारी रखेंगे जब वो फंक्शन से बाहर आएंगे एक बार फिर ट्राई करेंगे कि वो इस सवाल का जवाब।
4: मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि वो जवाब जो है बात रखें, उनको बयान देना चाहिए। बहुत शुक्रिया असीम आपका इस तमाम जानकारी के लिए। क्योंकि गुरुग्राम की हालत अच्छी है नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि वहां बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, लेकिन वहां पर काम करने वाला जो एम्प्लॉय है या जो है एम्प्लॉयर है उनको बहुत परेशानियां हो रही हैं। वो लंबे समय तक इसी माहौल में सस्टेन करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। इतने बड़े गड्ढे विकास में हो जाते हैं, कैसे इतना बड़ा गड्ढा हो रहा है? इन अधिकारियों को तो बल्कि इनका तो और ज्यादा स्वागत होना चाहिए, इनके नाम भी सार्वजनिक होने चाहिए कि कौन थे बनाने वाले, कौन से ठेकेदार हैं, इतने बड़े गड्ढे हो रहे हैं। और हाईटेक सिटी का यह हाल है। चले आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं योगी के चुनावी यज्ञ की।

0: उत्तर प्रदेश के चुनावी राजनीति में योगी सरकार ने दो सबसे बड़े वोटर समूह को साधना शुरू कर दिया है। इसमें पहला वर्ग जेन जी यानी कि नौजवान है, जिसके लिए योगी सरकार ने नौकरियों का पिटारा खोल दिया है। हर हफ्ते सरकारी नौकरियां बांटी जा रही हैं। 6 महीने में 1 लाख सरकारी नौकरियों देने का वादा सीएम योगी कर रहे हैं, तो 25 लाख विद्यार्थियों को मुफ्त टैबलेट योजना जो है मंजूर भी हो गई है। हुकूमत की दूसरी नजर आधी आबादी पर भी है और अब यूपी की लगभग 1 करोड़ बुजुर्ग महिलाओं को आजीवन मुफ्त बस यात्रा की सौगात भी मिल गई है।
1: मुझे 2017 के पहले की भी सरकारों के कार्यप्रणाली याद आती है। 2017 के पहले एक दौर था, उस समय ये हर बेटी, हर बहन और हर माता की जवान पर एक नारा गूंजता था कि देख सपाई बिटिया घबराई, यानी जिन गुंडों को देख करके बिटिया घबरा जाती थी, यह नारा उस दौर के उस गवर्नेंस के मॉडल का नाम है जिसमें बेटी की सुरक्षा पे संकट था, जहां पे उनका कोई सम्मान नहीं रह गया था और स्वावलंबन की बात ही कहां, जब सुरक्षा नहीं, सम्मान नहीं तो स्वावलंबन कहां से, न कोई इंटीग्रेटेड हेल्पलाइन थी, न कोई कमांड सेंटर था, न सीसीटीवी का नेटवर्क था, न महिला बीट सिस्टम था, न महिला हेल्प डेस्क।
0: सीएम योगी ने यूपी में लोकमाता अहिल्या बाई मातृशक्ति योजना की शुरुआत भी की है, ये यात्रा योजना लॉन्च कर दी है और इस योजना में 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को यूपी रोडवेज में बसों में आजीवन मुफ्त बस यात्रा का प्रावधान रखा गया है।
1: भारत माता की, बंदे बंदे।

0: 17 अगस्त को नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान होता है। बीजेपी की राष्ट्रीय टीम में पार्टी की मुखर महिला नेता स्मृति ईरानी को यूपी कोटे से जगह मिलती है। यूपी से 8 सदस्य बनाए जाते हैं, 8 में से 3 महिला सदस्य होती हैं। और उसके 7 दिन यानी 1 हफ्ते बाद ही योगी कैबिनेट का महिलाओं को लेकर बड़ा फैसला आता है। योगी सरकार लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना का ऐलान करती है। यूपी में 60 साल और उससे अधिक उम्र की महिलाओं को आजीवन मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देते हैं।
1: जोरदार तालियां हो जाए एक बार।
0: रक्षाबंधन से ठीक पहले योगी सरकार का ये ऐलान सामने आता है। ये योजना सियासी नजरिए से क्यों अहम और असरदार साबित हो सकती है, इसकी वजह भी जान लीजिए। अनुमान है कि इस योजना से रोजाना 88,000 महिलाओं को फायदा मिलेगा। यूपी रोडवेज की बसों में आधार कार्ड या वोटर आईडी दिखाकर इस योजना का लाभ लिया जा सकेगा। इस योजना पर करीब 22.5 करोड़ प्रतिमाह और 270 करोड़ रुपए सालाना खर्च आएगा।
2: और इस पूरी सुविधा का नाम है लोकमाता अहिल्याबाई निशुल्क बस यात्रा। यानी कल से लेकर यानी 27, 28 और 29 को तो हर बेटी, हर बहन, हर माता अपने एक सहयात्री के साथ उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस में या सिटी बस की सेवा में निशुल्क यात्रा कर लेगी। 60 साल से ऊपर की माताओं के लिए बस यात्रा आईडी कार्ड उनका प्राप्त होने पर, वोटर आईडी कार्ड हो या आधार कार्ड हो, उस आधार पर फ्री में वो यात्रा रहेगी।
3: आप देखिए ये सारी जो बसें हैं, इन्हीं बसों से मातृशक्ति योजना के तहत उनको फ्री एक तरीके से अब आजीवन ये सेवा दी जाएगी। और ये मास्टर स्ट्रोक योगी आदित्यनाथ का माना जा रहा है। ये महिलाएं देखिए जो 60 साल से ऊपर की हैं, वो सभी इससे निशुल्क यात्रा कर पाएंगी। पूरे प्रदेश में जहां भी उनको जाना है वो इस बस के जरिए जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कल कैबिनेट में इसको पास करने के बाद आज इसका इनॉग्रेशन है। आप देखिए कई महिलाएं अपने अपने गंतव्य स्थान पर जाने के लिए तैयार हैं।
0: तो योगी सरकार की ये योजनाएं ऐसे वक्त में आई जब सामने यूपी विधानसभा का चुनाव है। जाहिर है बीजेपी की कोशिश ज्यादा से ज्यादा महिला वोट हासिल करने की है। और मातृशक्ति विकास योजना के ऐलान के बाद समाजवादी पार्टी में भी खलबली है। खबर है कि समाजवादी पार्टी महिलाओं से जुड़ी किसी बड़ी योजना का ऐलान कर सकते हैं। 12:30 बजे समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव इस योजना का ऐलान कर सकती है। यानी महिला वोटरों का समर्थन हासिल करने की दोनों ओर से जीतोड़ प्रयास हो रहे हैं। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
4: दरअसल यूपी में महिलाओं के लिए खुल रहे चुनावी पिटारे के पीछे इस आधी आबादी की वोट की ताकत है, क्योंकि यूपी में फिलहाल लगभग 6,70,00,000 से ज्यादा महिला मतदाता हैं। इन महिला मतदाताओं के वोट आशीर्वाद से लखनऊ की सत्ता का पथ प्रशस्त होता है, क्योंकि 2017 में 3,97,00,000 महिलाओं ने वोट डाले थे। इनमें से लगभग 41 से 43% यानी कि 1,65,00,000 से ज्यादा महिलाओं ने बीजेपी को आशीर्वाद दिया और 325 के प्रचंड बहुमत से सरकार बनी। 2022 में भी वोट डालने वाले 4,23,00,000 महिलाओं में से 46 से 48% यानी लगभग 2,00,00,000 से ज्यादा महिलाओं ने योगी राज की वापसी सुनिश्चित की। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट डालने वाली 4,38,00,000 महिलाओं में से 41% यानी 1,80,00,000 महिलाओं ने ही बीजेपी को वोट दिया, यानी कि बीजेपी के महिला वोट में लगभग 5% की गिरावट हो गई। इसी 5% की गिरावट की भरपाई और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को मिली बढ़त को ध्यान में रखते हुए अब योगी सरकार ने महिलाओं के लिए खजाना खोल दिया है। खबर यह है कि चुनाव से पहले यूपी में भी महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए 3 किश्तों में 50,000 रुपए की राशि सीधे खातों में आ सकती है, क्योंकि माना जा रहा है कि 2024 में विपक्ष के खटाखट पैसे आने के चुनावी जुमले का असर ऐसा हुआ था कि बीजेपी को 41% तो सपा गठबंधन को 45% महिलाओं ने वोट डाल दिया था। वैसे पहले से भी यूपी में महिला वोटर्स के लिए योगी सरकार ने कम योजनाएं नहीं चला रखी है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में 27,40,000 बेटियों को जन्म से पढ़ाई तक 6 किश्तों में 25,000 रुपए नकद मिल चुके हैं। प्रदेश की निशुल्क शिक्षा योजना में 1,20,00,000 के आसपास बेटियों को सालाना मुफ्त शिक्षा, पोशाक, किताब, बैग मिल चुके हैं। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना में 50,000 मेधावी कॉलेज छात्राओं को स्कूटी मिल रही है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 5,54,000 कन्याओं को 51,000 की आर्थिक मदद मिल चुकी है। महिला सामर्थ्य योजना में 28,63,000 महिलाओं को मुफ्त स्किल ट्रेनिंग और 15,000 रुपए का फंड मिल चुका है। मुफ्त एलपीजी उज्ज्वला योजना में 1,90,00,000 महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर मिल चुका है। 181 महिला हेल्पलाइन वन स्टॉप सेंटर सखी केंद्र में लगभग 2,50,000 पीड़ित महिलाओं को मुफ्त जो है इलाज से लेकर कानूनी सहायता मिल चुकी है। बीजेपी की तैयारी की मिसाल सामने दिख रही है तो समाजवादी पार्टी की बाकी है। आज ही महिलाओं के लिए समाजवादी पार्टी भी विशेष योजनाओं का ऐलान करने वाली है। थोड़ी देर में समाजवादी पार्टी कार्यालय में अखिलेश यादव डिंपल यादव ये ऐलान कर सकते हैं।
5: कर रहे हैं हमारे साथ समाजवादी पार्टी प्रवक्ता पूजा शुक्ला इस वक्त मौजूद है। पूजा जी, महिलाओं के सम्मान की बात हो रही है, क्या कुछ आज घोषणाएं हो सकती हैं जिसका लोग इंतजार कर रहे हैं?
6: देखिए, समाजवादी पार्टी ने हमेशा महिलाओं को प्रमुखता से अपने मैनिफेस्टो में रखा है और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज का दिन जो है वो वीमेन्स इक्विटी डे है। आज महिलाओं के समानता अधिकार और अवसर को लेकर के एक बड़ी जीत पूरे विश्व में हुई थी महिला आंदोलन की, तो उसको लेकर के आज का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है और आज के दिन में जो भी घोषणाएं होंगी आपको बहुत जल्द सुनने को मिलेंगी क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकाल में काम भी किया है और बहुत सारी योजनाएं हमने दी। जो सबसे पहली योजना जो महिलाओं को पेंशन मिली वो समाजवादी पार्टी की सरकार में शुरू हुई, बाद में भारतीय जनता पार्टी ने उसको जगह जगह कॉपी किया। तो निश्चित तौर पर हमारे पास बहुत ही सारी चीजें हैं महिलाओं को लेकर के और बहुत सारा एक प्लान आउट हुआ है, वो आज आपको ब्रीफिंग।
5: महिलाओं को लेकर अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं योगी सरकार जो है, उन्होंने 60 साल के ऊपर जो महिलाएं उनकी बस यात्रा फ्री कर दी है।
6: नहीं, तो बस यात्रा तो हमेशा फ्री होती रही है, समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब भी फ्री होती थी बस यात्रा, तो कोई नया नहीं करी है।
5: तो आखिरी सवाल है, साइलेंट वोटर कहते हैं महिलाओं को, सपा को क्यों वोट करेगा, क्या लगता है?
6: देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा उनके हक अधिकार और सम्मान की बात करती रही है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनको मौका भी मिलेगा और कहीं ना कहीं मुझे लगता है जिस तरह से महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन दिया, आप देखिए कितने कम उम्र के लोगों को राजनीतिक रूप से भी रिप्रेजेंटेशन दिया, तो महिलाओं के अधिकार की बात भी सामाजिक रूप से हो चाहे राजनीतिक रूप से हो समाजवादी पार्टी कर रही है और हमने पेंशन भी दी, हमने कन्या विद्या धन भी दिया, हमने महिलाओं की शिक्षा पर भी काम किया, तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को देकर के प्रभावित होंगे।
5: आप सुन रहे पूजा शुक्ला को, तमाम जो महिला नेता है उनका आना समाजवादी पार्टी ऑफिस में लगा हुआ है, तो कोशिश समाजवादी पार्टी की है कि महिलाओं को लेकर एक तरीके से कुछ ऐसे मुद्दों पर चर्चा की जा सके जिससे चुनाव में फायदा मिले। तो वहीं बीजेपी है जिन्होंने 60 साल के ऊपर महिलाओं का बस यात्रा फ्री कर दिया है, तो कहीं ना कहीं साइलेंट वोटर को कहीं ना कहीं साधने की कवायद दोनों ही दलों की तरफ से लगातार की जा रही है। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
4: तो बीजेपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर चुके हैं, तो समाजवादी पार्टी ऐलान करने वाली है। सपा कार्यालय में जो तमाम के महिला वर्कर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, वो तो पहुंच रहे हैं, थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शुरू होने वाली है। आपको जो अखिलेश यादव दिखाई दे रहे हैं, बस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होने वाली है, डिंपल भी साथ में है और जितने भी उनके महिला जनप्रतिनिधि हैं चाहे सांसद हैं विधायक, सब आज बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सपा कार्यालय की तस्वीरें देख रहे हैं और कुछ ही सेकेंड्स में, कुछ ही मिनट में आप कह सकते हैं सपा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने वाली है। क्या ऐलान होते हैं, क्या बड़े बातें अखिलेश यादव कहते हैं, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी।
7: बहुत हमारा सलाम नमस्कार, आप सबका अभिनंदन इस डॉक्टर लोहिया सभागार में। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी, हमारी लोकप्रिय सांसद मैनपुरी से डिंपल यादव जी, मुरादाबाद से हमारी इकरा हसन जी, हमारी कराना से इकरा हसन जी, प्रिया सरोज जी, प्रोफेसर जहां जी और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला सभा की सीमा राजभर जी, प्रदेश अध्यक्ष जी हमारी निषाद रुक्मणी निषाद जी और डॉक्टर मधु गुप्ता जी और यहां उपस्थित सभी बहुत ही हमारे अजीज, बहुत ही हमारे प्यारे सभी अतिथिगण और प्रेस के बंधुजन, आप सबका यहां पर स्वागत है। आज का दिन बहुत मुबारक दिन है, न सिर्फ इसलिए कि हम लोग आज स्त्रियों से संबंधित योजना का यहाँ पर हमारे अध्यक्ष जी, हमारी सांसद जी उद्घोषणा करेंगी भावी योजना का, बल्कि आज का दिन बहुत मुबारक इसलिए भी है कि ये समानता का दिन है। जिस दिशा में हम लोग चल रहे हैं पुरुष समानता की दिशा में, उस समानता

0: दिन महिलाओं को वोटर राइट मिला था, मतदान करने का अधिकार मिला था अमेरिका में। तो इस मुबारक दिन पर हम आप सबका अभिनंदन करते हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ पर
1: तो हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत तो हो गई है कुछ देर बाद। अखिलेश यादव, डिम्पल यादव संभवतः बोले, हमारे संवाददाता समर श्रीवास्तव इस समय उसी कार्यक्रम में मौजूद है। समर, क्या एक्सपेक्ट करें, क्या बड़ा ऐलान कर सकते हैं सपा?
2: इसी को मिलाकर एक तरफ जहां योगी सरकार ने आज कई वादे किए और बस को लेकर एक बड़ी घोषणा महिलाओं को मद्देनजर की है, आज अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं महिला सम्मान को लेकर एक कार्यक्रम करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें डिम्पल यादव बैठी हैं। आप अगर तस्वीरों में देखेंगे तो अखिलेश के इर्द गिर्द तमाम महिला सांसद और विधायक नजर आएंगे। एक तरफ उनके टिकरा आसन प्रिया सरोज है जो की समाजवादी पार्टी के सांसद है, तो दूसरी तरफ डिम्पल यादव है और राजगढ़ चेहरा नसीम सोलंकी विधायक है, कानपुर पीछे रागिनी सोनकर विधायक है। तमाम जो सांसद विधायक और प्रवक्ता जो महिलाएं हैं, कुल मिलाकर स्टेज पे आज केवल महिलाओं को जगह दी गई है। कुछ दिन पहले सपा की तरफ से ऐसा ही कार्यक्रम जो है प्रबुद्ध सम्मेलन का किया गया था, आज महिला सम्मेलन का किया गया है। कुल मिलाकर चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी महिलाओं के लिए कुछ बड़े वादे यहाँ कर सकती है, कई योजनाएं जो उनकी सरकार अगर बनती है वो लाएगी उसको लेकर कुछ बड़े वादे जरूर करेंगे, और इसको लेकर कहीं ना कहीं जो साइलेंट वोटर रहा है यूपी चुनाव का महिला वोटर, वो उसको साधने की प्रयास यहाँ कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से भी हो रहा है और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी होता दिख रहा है।
1: बिल्कुल समर्थ, हमने देखा कि बीजेपी ने भी प्रयास किया है, बड़े बड़े ऐलान हुए हैं और वो सरकार में है तो वो इम्प्लीमेंट भी हो रहे हैं, क्रियान्वयन भी हो रहा है। समाजवादी पार्टी इस समय ऑपोजिशन में है तो वो ऐलान ही कर सकते हैं, लेकिन 27 के मद्देनजर बड़े ऐलान होंगे, लेकिन वो इतने बड़े होने चाहिए कि डिफरेंट और अलग लगे जो इस समय बीजेपी ऑलरेडी दे रही है।
2: बिल्कुल, यहाँ पर देखिए कुल मिलाकर वे मैनिफेस्टो तो चुनाव जब नजदीक आएगा तब होगा, लेकिन एक तरीके से मैनिफेस्टो में महिलाओं के लिए क्या होगा उसकी एक झलक आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखने को मिल सकती है। ये फैसला समाजवादी पार्टी की रहेगी, और जितने महिला चेहरे हैं उनको यहाँ लाने का मतलब ये है पार्टी का कि उन्होंने अपने कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी है चुनावों में उनमें महिलाओं को आगे लाया है, हिस्सेदारी
1: बढ़ाई। ठीक है सर, आप नजर बनाए रखें, अपडेट्स के लौटेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो महिला वोटर्स के लिए सरकार के पास फंड है, योजना है, वादे हैं, लेकिन पिछले 10 साल के किए कामकाज के दावे हैं तो विपक्ष के पास मुद्दे हैं। मुद्दा महिला विरोधी अपराधों का, मुद्दा महिला सुरक्षा का, और अब चुनावी बेला में एक नया मुद्दा हिजाब का। यूपी में विपक्षी दलों के लिए हिजाब का मुद्दा बड़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। हिजाब पर हाईकोर्ट के एक फैसले वाले मामले को वैसे ने चुनावी फ्लेवर देने की कोशिश की है, और जेंजी ही नहीं, इस बीच में योगी सरकार ने कुछ बड़े ऐलान भी किए हैं और प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में हो रहे प्रदर्शनों और नाराजगी को देखते हुए कुछ तमाम बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। मतलब तमाम तरह के मुद्दे, तमाम तरह की चीजें हैं, जेंजी भी है, जेन अल्फा, सबकी बात हो रही है। अब जेन अल्फा की जरूरतों के हिसाब से ही टीचर को विशेष ट्रेनिंग का इंतजाम यूपी में किया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि प्रशस्त 2.0 के तहत बच्चों को स्क्रीनिंग से पहले यूपी के सभी शिक्षकों को 10 सेंसिटाइजेशन वीडियोस दिखाए जाएंगे, और इसमें जो है 40 मिनट के इन वीडियोस के जरिए शिक्षकों को जेन अल्फा बच्चों को शैक्षिक जरूरतों, उनकी स्क्रीनिंग और जरूरी सहयोग की प्रक्रिया के हिसाब से तैयार किया जाएगा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने उनके निर्देश पर सभी मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशकों और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किया गया है। संबंधित शिक्षक प्रशस्त ऐप या फिर पोर्टल पर वीडियो देखकर निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऑनबोर्ड भी होंगे। प्रशस्त 2.0 स्क्रीनिंग शुरू करने से पहले सभी शिक्षकों को लगभग 40 मिनट के 10 सेंसिटाइजेशन वीडियोस पूरे करने होंगे। प्रशस्त 2.0 से परिषदीय, प्राइवेट एडेड और प्राइवेट अनएडेड विद्यालयों के सभी शिक्षकों को इसमें जोड़ा जाएगा। ऑनलाइन व्यवस्था के तहत शिक्षक ऐप या फिर पोर्टल के माध्यम से वो वीडियोज देख सकेंगे। दरअसल स्क्रीनिंग को अधिक संवेदनशील और प्रभावी बनाने के लिए शिक्षकों की पहले से तैयारी करवाई जा रही है। प्रदेश भर के शिक्षकों को स्क्रीनिंग से पहले एक जैसी और जरूरी जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। शिक्षकों की तैयारी पूरी होने के बाद बच्चों की स्क्रीनिंग शुरू की जाएगी। और अब रुकना छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: रखेगी सबके लिए, घर में एक रुपया नहीं होगा। पर पता नहीं कहां से मेरी ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैठी हैं, इनके पास पैसा निकल आता है। कहीं बचाया हुआ वो सेविंग किया हुआ पैसा ला करके जिसकी जरूरत है उसके हाथ में दे देती है कि ले तू अपना काम तो कर, मैं तो देख लूंगी। ये सच में लक्ष्मी स्वरूपा मेरी बहनें हैं, इसीलिए इस योजना का नाम लक्ष्मी योजना रखा है कि मेरी लक्ष्मी बहनें जो माँ लक्ष्मी का प्रतीक हैं, इनके लिए भी तो लक्ष्मी जरूरत है। तो आप सबके घर तक लक्ष्मी पहुंचे और माँ लक्ष्मी की कृपा हो, इसलिए योजना का नाम दिल्ली लक्ष्मी योजना रखा है। ये बहनें वो शक्ति हैं जो ना केवल अपने परिवार को शक्ति देती हैं बल्कि पूरे समाज को शक्ति देती है। और नरेंद्र मोदी जी तो यही कहते हैं, भाई देश को आगे बढ़ाना है तो इन बहनों को आगे बढ़ाओ, महिलाओं को आगे बढ़ाओ। जब तक एक परिवार की महिला आगे नहीं बढ़ेगी, जब तक वो तरक्की नहीं करेगी, जब तक उसकी समस्या का समाधान नहीं होगा, देश की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। और इसीलिए
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

ते गुरुग्राम पर आस्था के सवाल पर सीएम नायब सिंह सैनी ने साधी चुप्पी। सवाल सुनते सुरक्षा कर्मियों ने माइक हटाया, बिना कुछ बोले निकल गए। राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में सप्लाई होने वाले कैंसर के इंजेक्शन के नकली होने का खुलासा। दिल्ली में पानी मिलाकर 1,00,000 में बिक रहा था एक इंजेक्शन, 7 राज्यों तक फैला था नेटवर्क। रक्षाबंधन के कपड़ों पर उठे विवाद के बाद कंपनी ने हटाया कृति सैनन का विज्ञापन। कहा भारतीय संस्कृति और परंपरा का पूरा सम्मान। कंगना ने उठाए थे पहनावे पर सवाल, बॉलीवुड में मचा था बवाल। चुनाव से पहले 60 साल के ऊपर की महिलाओं को फ्री बस यात्रा की शुरुआत कर बोले योगी। 2017 से पहले सपना देखने से डरती थी यूपी की बेटियां। आधी आबादी को ना सुरक्षा थी ना सम्मान। नेपाल में कुदरत का भयानक कहर, हाहाकारी सैलाब में समा गई बस्ती, बाजार और पुलिस चौकियां। पावर प्रोजेक्ट के भी नुकसान की खबर, प्रलय की तरह आया बाढ़ का पानी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लंच ब्रेक, आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। शुरुआत कर रहे हैं दो तस्वीरों के साथ जो कि दिल्ली और लखनऊ से आ रही है। दिल्ली में आज लक्ष्मी योजना की शुरुआत सीएम रेखा गुप्ता ने कर दी है। वहीं दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने महिलाओं को सौगात दी है, यानी कि महिलाओं के लिए डबल बंपर बुनांजा। उत्तर प्रदेश और दिल्ली में जहां पर अलग अलग योजनाओं के तहत पार्टी महिलाओं को लुभाने की कोशिश में जुटी है। लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं के खाते में 2,500 रुपए जाएंगे। इसकी पहली किश्त आज सीएम द्वारा जारी कर दी गई है। इसका वादा चुनाव के दौरान किया गया था जिसको अब पूर्ण किया है सीएम रेखा गुप्ता ने। उत्तर प्रदेश में आगामी चुनावों के मद्देनजर समाजवादी पार्टी महिलाओं के लिए खास सौगात लेकर आई है। इसके तहत आज कई स्कीम्स की घोषणा की गई। और वक्त हो गया है नॉनस्टॉप 100 का।

नेपाल में भीषण बाढ़ से जबरदस्त तबाही। नेपाल के रसुआ इलाके में सैलाब का दिखा तांडव। नेपाल में तिब्बत से आए सैलाब से टिमुली बाजार और सैकड़ों गाड़ियों के बह जाने की खबर। 3 पुलिस चौकी भी बह गई। कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को नुकसान। नेपाल में आई तबाही के बाद बघा में प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। बघा में गंडक नदी को लेकर हाई अलर्ट। जम्मू कश्मीर के रजौरी में फ्लैश फ्लड से फंसे सड़कें और जरूरी के सभी ढांचे प्रभावित। वाराणसी में बाढ़ में डूबा मणिकर्णिका घाट, अब छत पर हो रहा अंतिम संस्कार, जलते दिखाई दिए शव। बिहार के नवगछिया में गंगा उफान पर, खेत खलियान से लेकर मवेशियों के चारे तक गहरा संकट। सुकमा में बारिश बनी ग्रामीणों की मुसीबत, उफनती नदी ने काटा 600 परिवारों का संपर्क। गोंडा में बारिश से लोग परेशान, मरीज को चारपाई से जाते दिखा वीडियो वायरल। डूबते गुरुग्राम पर आस्था के सवाल पर सीएम नायर सिंह सैनी ने सारी चुप्पी, सवाल सुनते सुरक्षाकर्मियों ने माइक हटाया, बिना कुछ बोले निकल गए हरियाणा के मुख्यमंत्री। गुरुग्राम में बारिश का कहर, सड़कों पर सैलाब में फंसी स्कूल बसें, 7 से 8 घंटे के खौफनाक सफर के बाद घर पहुंचे मासूम बच्चे। दिल्ली क्राइम ब्रांच में नकली और डाइवर्टेड एंटी कैंसर दवाओं के अंतर्राज्यीय सिंडिकेट का भंडाफोड़, 17 गिरफ्तार। दिल्ली क्राइम ब्रांच की इंटरस्टेट सेल ने किया पर्दाफाश, 9 करोड़ रुपए की दवाएं, 50 लाख रुपए नकदी, बड़ी संख्या में एंटी कैंसर इंजेक्शन बरामद किए गए। दिल्ली क्राइम ब्रांच की जांच में पता चला कि दिल्ली एनसीआर, मुंबई, हैदराबाद, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तक फैला है नेटवर्क। उड़ीसा की नदी में करोड़ों की एक्सपायर दवाएं की गई डंप, मेडिकल कचरे को लेकर उठ रहे सवाल। आरोपी डॉक्टर ने रूस से किया MBBS, मेडिकल परीक्षा में नाकाम होने के बाद नकली कैंसर दवाओं के कारोबार में उतरा आरोपी। सीएम योगी अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना का आज कर चुके हैं शुभारंभ। यूपी में 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को रोडवेज बसों में मुफ्त सफर का तोहफा। सीएम योगी और समाजवादी पार्टी पर हमला, कहा पहले उत्सव पर उपद्रव होता था, कमीशन खोरी होती थी, वो दौर याद करोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सीएम योगी ने कहा पहले बेटियां सपने देखने से डरती थी, आज हर योजना का केंद्र बिंदु बेटी है, आज हमारे पास मिशन शक्ति केंद्र है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं के साथ ली सेल्फी, दिखा खास अंदाज। योगी आदित्यनाथ ने कहा सरकार रोजगार देने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। सीएम के मुताबिक यूपी में अब तक 9.5 लाख से ज्यादा युवाओं को मिली नौकरी। लखनऊ में 7 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा पर सुरेंद्र राजपूत ने कहा ये कांग्रेस के जमाने से मुफ्त है, बीजेपी ने कोई नया काम नहीं किया। सीएम योगी ने कहा कि राज्य के पास करीब 7 महीने का चीनी भंडार मौजूद है, उन्होंने चीनी की उपलब्धता को लेकर किसी भी तरह की कमी से इनकार किया। यूपी में श्रमिकों के लिए नियुक्ति पत्र अनिवार्य, हर साल होगी मुफ्त स्वास्थ्य जांच। मायावती ने हिजाब विवाद पर कहा धार्मिक रीति रिवाजों का सभी को सम्मान करना चाहिए, स्कूलों में हिजाब के मुद्दे पर स्थानीय स्तर पर बातचीत से सुलझाने की अपील। ओपी राजभर का अखिलेश यादव पर हमला, बोले लड़ना है तो मुझे राजनीतिक लड़ाई लड़िए, राजभर समाज की महिलाओं पर हमला करवाकर कैसे लड़ेंगे राजनीतिक लड़ाई। आलोक अवस्थी ने कहा हमारे युवा शान है, युवा और जेन जी बीजेपी की नीतियों को जनता है और बीजेपी योगी आदित्यनाथ से जुड़े हुए। रक्षाबंधन से पहले लखनऊ में मिलावटखोरों पर बड़ा एक्शन, FSDA ताबड़तोड़ छापेमारी कर चुकी है, संदिग्ध खाद्य पदार्थों से लदी 3 गाड़ियां पकड़ी गई। बरेली में मिलावटखोरों पर शिकंजा, 490 किलो मिठाई मौके पर नष्ट की गई, जांच के दौरान खाद्य पदार्थों के सैंपल्स लिए गए। बराफात के को लेकर संभल में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर, SP ने पुलिस फोर्स और PAC के साथ जुलूस मार्ग पर पैदल मार्च किया। संभल में जामा मस्जिद के आसपास 36 दुकानों और मकानों पर कार्रवाई की तैयारी, प्रशासन ने जारी किए नोटिस। दिल्ली पहुंच रही 800 मेट्रिक टन प्याज की खेप, कीमतों में मिलेगी राहत, कांदा एक्सप्रेस से प्याज दिल्ली लाया जाएगा, पहली खेप चेन्नई, मदुरई और गुवाहाटी भेजी जाएगी, सरकारी बिक्री के जरिए लोगों को सस्ता प्याज उपलब्ध कराने की तैयारी। सरकार ने जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर को निजी कंपनियों को लीज पर देने की मंजूरी दी, फैसले को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार पर साधा निशाना। JPNIC लीज विवाद पर अखिलेश का सरकार पर तंज, अखिलेश यादव बोले अब बस सरकार को ठेके पर देना बचा है। JPNIC लीज विवाद पर कांग्रेस ने कहा बीजेपी की पुरानी आदत है, सरकार के पैसों से बनी इमारतों को अदानी अंबानी को बेच दो, ये देश बेच देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में 6 अहम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की।

प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में 6 अहम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की, 9 राज्य स्तरीय परियोजनाओं की प्रगति और अड़चनों पर चर्चा। पीएम मोदी ने देशवासियों की ईद मिलाद और नबी की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह अवसर समाज में एकजुटता और खुशियां बढ़ाने का है। भोपाल वांगी की 25वीं वार्ता में सीमा मुद्दे पर चर्चा। भारत चीन ने सीमा विवाद के समाधान और एलएसी पर शांति बनाए रखने पर जोर दिया। 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन तेज। पंजाब के कर्मचारी और पेंशन भोगियों ने अपनी मांग को लेकर बंद का आह्वान किया। बांग्लादेश के रंगपुर में हिंदू परिवार की हत्या से बवाल। स्कूल शिक्षक गणपति चक्रवर्ती, उनकी पत्नी और 2 बच्चों के शव घर से बरामद हुए। स्थानीय हिंदू समुदाय में आक्रोश। मामले की जांच में विरोध के बाद से पुलिस से हटाकर डिटेक्टिव ब्रांच को सौंप दिया गया है। गैंगरेप के आरोपों ने मामले को और गंभीर बनाया। फोरेंसिक रिपोर्ट महिलाओं के साथ दुष्कर्म की बात कही गई। 2 आरोपी गिरफ्तार। जांच का दायरा बढ़ाने की मांग। लोगों का दावा है कि हत्याकांड में 2 से ज्यादा लोग शामिल थे।

बांग्लादेशी दूतावास के बाहर प्रदर्शन की तैयारी। हिंदू संगठनों ने परिवार की हत्या के विरोध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाज उठाने का ऐलान किया। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में बड़ा संदेश दिया कि अगले 15 से 20 वर्षों में खतरों की पहचान अभी से कर उन्हें बड़ा संकट बनने से पहले रोकना होगा।

0: और बात दिल्ली की, जहां पर आज से लक्ष्मी योजना का शुभारंभ हो चुका है। तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐलान किया कि अब तक इस योजना के लिए 9 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं। आज मुख्यमंत्री ने 2500 महिलाओं को अप्रूवल लेटर दे दिया है। लक्ष्मी योजना का शुभारंभ, जिसकी शुरुआत आज हो चुकी है, 2500 रुपए महिलाओं के खाते में जाएंगे, इसका वादा दिल्ली सरकार द्वारा इलेक्शन में मैनिफेस्टो में किया गया था और अब इस वादे को पूरा कर रही दिल्ली सरकार। कई महिलाएं यहां पर आज इस समारोह में दिखाई दी। अब 2500 रुपए इनके खाते में जाएंगे। कई महिलाओं ने पहले से रजिस्ट्रेशन करा रखा था, उन्हीं महिलाओं के खाते में दरअसल ये पैसे दिए जाएंगे। अप्रूवल पत्र अब सीएम द्वारा दे दिया गया है।
1: इस सभागार में बैठी हुई मेरी सभी बहनें, एक बार मेरे एक सवाल का जवाब दो, खुश हो? आवाज कम आ रही है मुझे, खुश हो? अरे कहां आवाज आ रही है, खुश हो? बस मैं यही चाहती हूं, मेरी सारी बहनें खुश रहनी चाहिए, उनके चेहरे पे ये मुस्कुराहट बनी रहनी चाहिए। सजी सवरी मेरी ये बहन जिंदगी में हमेशा आगे बढ़े, क्योंकि मैं हूं ना। मैं आप सभी को ढेर सारी बधाई देती हूं, आज के इस दिन की शुभकामनाएं देती हूं। ये दिल्ली लक्ष्मी योजना जो आज मेरी दिल्ली की बहनों के लिए आप सभी के द्वार पहुंच पाई है, इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, उस मां को और आप सभी को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए शुभकामनाएं देती हूं आपके आगे आने वाले जीवन के लिए। हमारे सभी कार्यकर्ता साथी, सभी अधिकारीगण इस बधाई के पात्र हैं कि इतने छोटे समय में 9 लाख से ज्यादा, 1 अगस्त को योजना लागू की थी भाई, 1 अगस्त से लेकर के आज तक 9,22,000 बहनों ने इस योजना में अपना नाम रजिस्टर किया और आज इस योजना 2,500 रुपए की, इस दिल्ली लक्ष्मी योजना में पहली 2,500 बहनों को हमने वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, अप्रूवल सर्टिफिकेट सौंपा है, क्योंकि ये पहली 2,500 बहने हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है। तो अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए।
0: मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। सुशांत, कितनी महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा? अभी अप्रूवल पत्र दिया गया है, इसके बाद क्या प्रोसेस रहेगा, कब तक इनके खाते में पैसे आएंगे?
2: नारी शक्ति से ही
3: देखिए, मैं आपको बता दूं नेहा कि आज तमाम जो महिलाएं हैं उन सबको अप्रूवल लेटर जो है वो दिए गए। लगभग 2,500 के आसपास जो महिलाएं हैं उनको ये अप्रूवल लेटर जो है वो सरकार की तरफ से दिए गए हैं। 1 तारीख को, 1 सितंबर से महिलाओं के खाते में पैसा जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। लगभग 9.5 लाख लोगों ने इस पूरे योजना के लिए अभी तक एप्लीकेशन जो है वो फाइल की है। लगभग 6.5 लाख के आसपास रजिस्ट्रेशन जो है वो इस पूरी योजना के तहत महिलाओं का हुआ है, लेकिन आज पहली अप्रूवल लेटर्स जो है वो 2,500 महिलाओं को जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से दिए गए हैं। इसमें मैं बता दूं कि 2025 के चुनावों से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली के जरिए इस योजना के लिए महिलाओं के सामने अपनी बात रखी थी और उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है। उसी गारंटी पर आज दिल्ली सरकार ने कहीं ना कहीं अपनी मोहर जो है वो लगाई और महिलाओं को 2,500 रुपए की अप्रूवल लेटर्स जो है वो बांटे गए हैं और 1 सितंबर से इस योजना के तहत महिलाओं के खाते में पैसा जो है वो ट्रांसफर किया जाएगा।
0: इसके अलावा कई और चीजें हैं जो मैनिफेस्टो में कही गई होंगी महिलाओं से जुड़ी हुई, उस पर भी दिल्ली सरकार काम कर रही है या उस पर कोई अनाउंसमेंट हुआ है आज?
2: भी मदद करेगा, जब एक
3: देखिए यहाँ की ये जो योजना थी वो लगभग पिछले साल जब चुनाव थे उस वक्त ये योजना की बात जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से जो तमाम जो बीजेपी की तरफ से वो की गई थी, लेकिन जब ये पूरी योजना की जब सरकार बनी तो उसके बाद 5100 रुपए के आसपास 51,000 के आसपास जो है वो इसका बजट जो है वो रखा गया था 5100 के आसपास, उसको दिल्ली सरकार का जो बजट है उसमें पास किया गया। उसके बाद जाकर के ये फैसला जो है वो लिया गया सरकार की तरफ से कि किस तरीके से इस योजना को चरणबद्ध तरीके से जो है वो दिल्ली में लागू किया जाएगा, उसके लिए कैबिनेट का अप्रूवल लिया गया। उसके बाद इस पूरे योजना के तहत जो 2500 रुपए की बेनिफिशियरी है उनको कैसे खाते में अकाउंट में पैसा जाएगा एक फिक्स डिपॉजिट के रूप में 3 साल तक के लिए अकाउंट में उनके पैसा जो है वो रहेगा, 1000 रुपए का जो एक उनका एक पूरा कार्ड जो है वो बनेगा जिससे वो शॉपिंग जो है वो कर सकती है। इस पूरी योजना के तहत जो है ये पूरी प्रक्रिया जो है वो रहेगी ताकि महिलाओं को 3 साल बाद जो खाते में पैसा ट्रांसफर किया गया उसका एक मोटी किस्त जो है वो उनके खाते के अंदर जाए। ये योजना सरकार की थी और इसी को लेकर के सरकार की तरफ से तैयारियां जो है वो की गई थी और आज रक्षाबंधन से 2 दिन पहले सरकार ने अप्रूवल लेटर्स जो है वो दिल्ली के लोगों को दिल्ली की महिलाओं को जो है वो दिए हैं।
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। उधर समाजवादी पार्टी ने भी यूपी चुनाव को देखते हुए अहम ऐलान किया। लखनऊ में पार्टी सांसद डिंपल यादव ने ऐलान किया कि यूपी में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो स्त्री सम्मान समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को 40,000 रुपए दिए जाएंगे। उनके मुताबिक साल दर साल इस रकम में इजाफा किया जाएगा। तो हर पार्टी की ओर से चुनावी रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, इससे समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। महिलाओं को लेकर सभी पार्टियां सजग हैं, जानती हैं कि उनका वोट बैंक कितना बड़ा है और ऐसे में समाजवादी पार्टी ने भी अब महिलाओं को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि 40,000 रुपए उनके खाते में डाले जाएंगे और इस रकम में इजाफा भी हो सकता है। पार्टी सांसद डिंपल यादव ने खुद ही ऐलान किया, उन्होंने कहा कि स्त्री सम्मान समृद्धि योजना के तहत ऐसा किया जाएगा, सालाना 40,000 रुपए खाते में डाले जाएंगे।

0: को सामाजिक रूप से मजबूत स्थिति प्रदान करने के लिए स्त्री के सशक्तिकरण हेतु सम्मान समृद्धि से भी पहले आवश्यक है। समृद्धि शब्द को इसीलिए लिया गया है क्योंकि आर्थिक रूप से जब स्त्री बलवती होती है तो घर में वो आर्थिक योगदान भी करती है, इससे समकक्षता भी बढ़ती है। स्त्री का आर्थिक रूप से मजबूत होना ही उसका सबलीकरण होता है। योजना के रूप में इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा, समय समय पर इसके संचालन सफलता का आकलन किया जाएगा और अपेक्षित सुधार भी। मोबाइल लैपटॉप आर्थिक सहायता पाठशाला प्रशिक्षण के माध्यम से सम्मान समृद्धि का वो मार्ग बनाया जाएगा जो धीरे धीरे स्त्री को अपने पैरों पर सम्मान के साथ सिर उठाकर खड़ा होना सिखाएगा। पीडीए के ए में शामिल आधी आबादी के प्रति ये योजना हमारी सकारात्मक सोच का परिणाम है।
1: समर श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। समर्थ, चुनावी रोइवड़ियां बांटने का दौर शुरू हो गया, ऐसे में समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है।
2: बिल्कुल नेहा, आप देख रही हैं इस वक्त जो है डिंपल यादव ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। अखिलेश यादव भी अब अपना कहीं ना कहीं संबोधन करने वाले हैं। कई बड़ी बातें कहीं ना कहीं महिलाओं को लुभाने के लिए की जा रही हैं। सरकार बनने पर ये सारे चीज़ें समाजवादी पार्टी की सरकार करेगी जब बनेगी, ऐसा दावा अखिलेश यादव के द्वारा यहाँ पर किया गया है। बड़ी बात यहाँ पर यह है कि कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये बात कही गई है कि महिलाओं को जो 60+ हैं उनको बसों में फ्री यात्रा कराई जाएगी, यानी कि उनसे कोई टिकट नहीं दिया जाएगा। तो वहीं अब समाजवादी पार्टी बड़ी घोषणाएं कर रही है जिसमें कहीं ना कहीं जो दो अवकाश देने की बात कर रही है।
3: इस मौके पर आप लोग बड़ी संख्या में आए हैं, हालांकि हमारे और पत्रकार साथी भी हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जब महत्वपूर्ण एक योजना के बारे में हम लोग अपनी बात रख रहे हैं, मैं सभी जिन जिन ने अपनी बात रखी है मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। बिना आदि आबादी के हमारी तरक्की अधूरी है। पहले भी समाजवादी सरकार में शिक्षा से लेकर के स्वास्थ्य और सुरक्षा के जो फैसले लिए गए थे, आज भी उत्तर प्रदेश सरकार के लिए और देश के लिए उदाहरण बने हैं। हाल ही में जापान का एक डेलीगेशन जब आया तो उस डेलीगेशन को वही 1090 जो कभी समाजवादी सरकार में शुरू हुआ था उसी को दिखा करके सरकार ये बताना चाहती है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए वो क्या फैसले और क्या काम कर रहे हैं। मैं अपनी बहनों को, अपनी माताओं बहनों को और आदि आबादी को ये भरोसा दिला सकता हूं कि जहां आज स्त्री सम्मान समृद्धि योजना की हम लोग मैनिफेस्टो में लाने का भविष्य में काम करेंगे, वहीं उनकी सुरक्षा को लेकर के कोई भी समझौता समाजवादी सरकार में नहीं होगा। जहां 1090 की शुरुआत की थी वहीं वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डायल 100 को दिया और वही डायल 100 आज सरकार कह रही है कि इंटीग्रेटेड सर्विस के लिए बन गया है।
1: रुकेंगे आज शुरू से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: आगे आगे,
7: अरे उधर
6: उधर किधर,
7: करेक्ट करेक्ट,
8: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चले।
9: पापा,
10: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
11: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा,
10: छक्का
11: सब कैशलेस हो गया
10: है।
11: हाँ
10: ला भाई मेरा बैट,
11: वो अभी तो ठीक हुआ, तू
10: चार्ज हुआ यार।
12: बैट किसका है?
7: टाटा AIG है तो भरोसा है।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
4: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है।
5: ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
6: ये है एक लेगेसी। मेरी शादी के कंगन सेनको से ही लिए थे,
7: क्योंकि ऐसी बारीक कारीगरी और कहां।
8: इसीलिए सेनको इंडिया का अमंगस्ट मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड एज नॉमिनेटेड बाय द TRA।
9: अब मैं क्या ही बोलूं।
10: परिवार, अटूट भरोसा।

0: EU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: in association with Vimal Bolo Zubaan Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: देश की राजधानी दिल्ली में मूसलाधार बारिश हो रही है और थोड़ी सी देर की बारिश में देश की राजधानी का क्या हाल है ये आपको तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है।
3: हालांकि मुख्य सड़क, आप सोचिए नई दिल्ली की ये मुख्य सड़क है, लेकिन जैसे तेज बरसात शुरू हुई है और काफी मूसलाधार बारिश हुई है, दिल्ली के कुछ इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, तो ज्यादातर जो हिस्से हैं वो रेड अलर्ट की चपेट में हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास अमित वधवार के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सुख।
3: शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ।
4: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
1: इन एसोसिएशन विद विमल बोलो जुबा केसरी, हिंट एक हिंट तो देते,
2: पंजाब नेशनल बैंक भरोसे का प्रतीक।
5: पहाड़ों में बारिश में कमी होने से मैदानी इलाकों में गंगा में आई बाढ़ कुछ कम हो रही है। बारिश में लगातार दूसरे दिन गंगा के जलस्तर में कमी देखने को मिली। केंद्रीय जल आयोग की डेली फ्लड बुलेटिन की रिपोर्ट के मुताबिक गंगा का जलस्तर 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम हो रहा है। मौजूदा समय में गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु से 1.5 मीटर तो खतरे के निशान से 2.5 मीटर नीचे है। लेकिन घटते जलस्तर के बावजूद वाराणसी में लोगों की दुश्वारियां कम नहीं हो रही। अभी भी सभी 86 पक्के घाटों का संपर्क टूटा हुआ है। पक्के घाट जलमग्न हो चुके हैं। घाटों के सभी छोटे बड़े मंदिर भी बाढ़ के पानी में समा चुके हैं। अभी भी पहले जैसे ही हरिश्चंद्र घाट डूब जाने के चलते गलियों में शवदाह हो रहा है, तो मणिकर्णिका घाट भी जलमग्न हो जाने की वजह से छत पर शवदाह हो रहा है। यूपी के कई इलाकों में बाढ़ की वजह से कई नदी नाले उफान पर हैं। ये तस्वीरें ललितपुर की हैं, जहां तेज बारिश की वजह से नालों के कई फीट ऊपर पानी बह रहा है। ये सैर नाला पुल की तस्वीरें हैं, जहां एक लड़का अपनी बाइक के साथ इसे पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तेज बहाव में उसकी बाइक बहने लगी। पहले तो उसने बचाने की कोशिश की, लेकिन बहाव बहुत ज्यादा था। अंततः उसे बाइक छोड़नी पड़ी, जिससे बाइक तो बह गई, लेकिन ये युवक पानी में बहने से बच गया। बिहार में भी बाढ़ से बुरा हाल है। ये मुंगेर की तस्वीरें हैं, जहां पिछले 24 घंटे में गंगा नदी के जलस्तर में 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की गति से वृद्धि दर्ज की गई है। गंगा के बढ़ते जलस्तर के बीच निचले इलाके के गांवों और घरों में पानी घुसना शुरू हो गया है। हवेली खड़गपुर प्रखंड का कृष्णानगर गांव पूरी तरह से बाढ़ के पानी से घिर चुका है। लोग ऊंची जगहों पर शरण लेने के लिए मजबूर हैं। फिलहाल ये लोग छतों पर आशियाना बनाकर रह रहे हैं। यही हाल बेगूसराय का भी है। यहाँ गंगा का जलस्तर बढ़ने से रिंग बांध करीब 30 मीटर टूटकर तेज बहाव में बह गया, जिसकी वजह से कई गाँव के दर्जनों घरों में पानी घुस गया है। सैकड़ों एकड़ फसल डूब गई। छत्तीसगढ़ में भी बस्तर से लेकर बिलासपुर गरियाबंद और रायगढ़ तक तेज बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। कई सड़कों और पुल पुलियों पर पानी भर गया है, जिसकी वजह से आवागमन प्रभावित हुआ है। रीवा के रौली गांव की ये तस्वीरें हैं, जहां एक मृतक के शव को घर तक पहुंचाने के लिए ग्रामीणों को ड्रम का सहारा लेना पड़ा। ग्रामीणों ने ड्रमों को आपस में बांधकर उसके ऊपर शव रखा और बाढ़ के पानी को पार कराते हुए शव को घर तक पहुँचाया। आज तक ब्यूरो
6: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

रक्षाबंधन से पहले योगी सरकार का महिलाओं को तोहफा, 60 साल से ऊपर की महिलाओं को फ्री बस यात्रा। समाजवादी पार्टी ने भी लॉन्च की स्त्री सम्मान समृद्धि योजना, 40,000 रूपए देने का वादा। डूबते गुरुग्राम पर आस्था के सवाल पर सीएम नायब सिंह सैनी ने साधी चुप्पी। सवाल सुनते सुरक्षा कर्मियों ने माइक हटाया, बिना कुछ बोले निकल गए हरियाणा के मुख्यमंत्री। राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में सप्लाई होने वाले कैंसर के इंजेक्शन के नकली होने का खुलासा। दिल्ली में पानी मिलाकर 1,00,000 रूपए में बिक रहा था इंजेक्शन। रक्षाबंधन के कपड़ों पर उठे विवाद के बाद कंपनी ने हटाया कृति सैनन का विज्ञापन, कहा भारतीय संस्कृति और परंपरा का पूरा सम्मान। कंगना ने उठाए थे पहनावे पर सवाल, बॉलीवुड में मचा था बवाल। नेपाल में कुदरत का भयानक कहर, हाहाकारी सलाम में समागरी बस्ती, बाजार और पुलिस चौकियां, पावर प्रोजेक्ट के भी नुकसान की खबर।

0: नमस्कार, मैं इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं नेहा बाथम। नेपाल में आई भीषण बाढ़ की तस्वीरों के साथ शुरुआत करेंगे। तिब्बत से आए अचानक बाढ़ के पानी ने रसुआ में भारी तबाही मचाई है। सैलाब में कई गाड़ियां, 3 पुलिस चौकी बह गई हैं। कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को नुकसान पहुंचा है। बाढ़ से रसुआ सीमा नाके पर बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। अधिकारियों के मुताबिक टिमरे सहित आसपास के 2 बाजार बाढ़ से पूरी तरीके से तहस नहस हो गए। जिला पुलिस कार्यालय रसुआ के अनुसार आज सुबह तकरीबन 9 बजे अचानक आई बाढ़ से बस्ती प्रभावित हुई है। अचानक आए इस सैलाब से दरअसल अलर्ट भी ठीक समय पर जारी नहीं हो पाया, जिसकी वजह से काफी ज्यादा क्षति और नुकसान पहुंचा है। बाजार, घर, दफ्तर सब जमींदोज हो गए। जो कुछ भी इस पानी की जद में आया, इतना तेज बहाव था कि सब कुछ तबाह और नष्ट हो गया। तस्वीरें दरअसल हैरान और परेशान करने वाली हैं। इसमें आप बाढ़ का वेग देख सकते हैं, कितनी तेजी से ये पानी आ रहा है कि संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा। इसके आसपास जितने भी इलाके थे इसकी जद में आ गए। कई पावर प्रोजेक्ट्स को भी नुकसान पहुंचा है। पुलिस थाने भी इससे नुकसान के दायरे में। मलबे में ये इलाका तब्दील हो गया है। आप देख रहे हैं दूर तक धूल और का गुबार देखा जा सके, क्योंकि पूरी की पूरी इमारतें जमींदोज हो गई, कई घर टूट गए। जैसे ही पानी तेजी से इनकी तरफ बढ़ा, ये पूरी तरीके से नष्ट हो गए। भीषण लैंडस्लाइड भी कई जगहों पर देखा गया है। दूर से ली गई तस्वीरों में धूल का गुबार देखा जा सकता है। जहां जहां मलबा गिरा वहां से ये धूल उड़ी और नदी का विकराल रूप। चौथी तस्वीर में देखिए कैसे तेज बहाव एक और बढ़ता हुआ, जिसमें रसुआ, टिमरे इलाके पूरी तरीके से इस बाढ़ की चपेट में आ गए। त्रिशूली नदी भी इस बाढ़ की चपेट में है और नुवाकोट भी इससे प्रभावित हुआ है। धादिंग और नुवाकोट के साथ साथ वहां पर जो आसपास के इलाके हैं उनमें भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। पंकज दास मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। पंकज, इस वक्त क्या ताजा हालात हैं और कौन कौन से इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं नेपाल में? पंकज, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करिए अपना कैमरा।
1: सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो रसुआ जिले को हुआ है, क्योंकि ये जो एरिया है वो चीन से लगा हुआ है और जिस ग्लेशियर के टूटने की बात हो रही है वो बिल्कुल पास में है, इसलिए सबसे अधिक प्रभावित जो है वो रसुआ जिला हुआ है। इस जिले का जो कस्टम एरिया है, जो चीन से लगे हुए जो सड़क है, इन सभी के नामों निशान मिट गए। जो वहां से लगातार खबरें आ रही है इस समय, हर जगह से सिर्फ नुकसान और इसकी खबरें ही आ रही है। जान माल के बह जाने की खबर आ रही है, पुलिस के और लोगों के लापता होने की लगातार खबर आ रही है। और कुछ भी यकीन के साथ कितने जान माल का नुकसान हुआ इसका अंदाजा अभी भी नहीं लगाया जा रहा है, क्योंकि लगातार जो है बाढ़ का पानी नीचे की तरफ बढ़ रहा है। जो ऊपर से रसुआ जिले का है वो नीचे सिंधुपाल चौक की तरफ बढ़ रहा है और हर जगह के लोगों को अलर्ट पर रखा गया है। सरकार पूरी मुस्तैदी से यहाँ लगी है, हेलीकॉप्टरों को वहाँ पे मेडिकल टीम के साथ भेजा जा रहा है। काठमांडू में भी सभी सरकारी अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और इमरजेंसी में के जो वार्ड है उन सबको खाली करा दिया गया है, कि जैसे जैसे हेलीकॉप्टर से वहाँ के घायलों को लाया जा रहा है उनके इलाज के लिए कोई दिक्कत नहीं हो। यहाँ पे सरकार, प्रधानमंत्री ने खुद यहाँ विपक्षी दलों से बात की है, उन्होंने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की बैठक भी बुलाई है, जिससे सब कुछ जो रेस्क्यू का काम है वो पूरा किया जा सके। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नुकसान कितना बड़ा हुआ इस बात का अंदाजा नहीं हो रहा है, क्योंकि अलग अलग जगह से अलग अलग खबरें आ रही हैं। कई जो हाइड्रो पावर में काम करने वाले हैं वहाँ पे 200-300 लोग काम करते हैं, उन सभी के लापता होने की खबर है। कई पुलिस चौकियां बह गई हैं, वहाँ जो रह रहे थे पुलिस वाले उनके करीब 2 दर्जन अभी तक पता लगा है कि वो सभी लापता हो गए।
0: बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। वही चीन के तिब्बत की ओर से आई अचानक बाढ़ ने नेपाल के रसुआ जिले में भारी तबाही मचाई है। तस्वीरें आपने देखी, भोटे कोशी नदी का पानी अचानक बढ़ने से टिमुरे और स्याब्रू बेसी इलाके के कई घर, बाजार और दूसरी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है।
2: काली पहाड़ियों के बीच उफनता मलबे का गुबार, अचानक तेज आवाज के साथ पानी का भीषण सैलाब और देखते ही देखते नेपाल में तबाही आ गई। तिब्बत की तरफ से अचानक आए फ्लैश फ्लड ने नेपाल के रसुवा में देखते ही देखते सब कुछ अपनी चपेट में ले लिया। बारिश ने पहाड़ की पकड़ ढीली की, मिट्टी खिसकी, पत्थर टूटे और फिर शुरू हुआ मलबे का वो सैलाब जिसने रास्तों को देखते ही देखते निकल लिया। नेपाल के टिमुरे बाजार को संभलने का मौका नहीं मिला। सारा इलाका भीषण लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड की चपेट में आ गया। नेपाल पुलिस की तरफ से किए गए ट्वीट में इस वीडियो में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की तरह आसमान से सैलाब आता दिखाई दे रहा है और अपने रास्ते में उसे जो मिला उसे बहाता चला गया। अचानक आए सैलाब ने बाजार, सड़कें, पुल, गाड़ियां और बिजली परियोजनाओं को अपनी चपेट में ले लिया। नेपाल में रसुवा की तबाही के बाद अब त्रिशूली नदी के किनारे बसे इलाकों में खतरा और भी बढ़ गया। इस बीच नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और नेपाली कांग्रेस के नेता शेर बहादुर देउवा ने लोगों से तुरंत सतर्क रहने और सुरक्षित जगहों पर रहने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: वहीं बारिश ने देश के कई हिस्सों में जिंदगी की रफ्तार थाम दी है। कहीं गंगा के उफान ने घाटों को डुबो दिया तो कहीं बाढ़ के पानी के बीच गांव का संपर्क कट गया है। वाराणसी में डूबे घाटों से लेकर बिहार में बाढ़ प्रभावित इलाकों तक, रजौरी में फ्लैश फ्लड से लेकर मची तबाही से गुरुग्राम की जलमग्न सड़कों तक तस्वीरें एक ही कहानी कह रही है। पानी का प्रहार लगातार बढ़ रहा है। कई लोग रोजमर्रा की जरूरतों के लिए उफनती नदी पार कर रहे हैं, कई मरीजों को चारपाई पर उठाकर पानी से निकालना पड़ रहा है और कहीं अंतिम संस्कार तक के लिए मुश्किल है। शहर हो या गांव, घाट हो या सड़क, बारिश ने हर जगह इम्तिहान खड़ा कर दिया है। और अब बात गुरुग्राम की चमचमाती सड़कों और हाई राइज इमारतों के बीच बारिश शहर की एक बदसूरत तस्वीर सामने लाई। इफको चौक के पास सड़क धसने से लगभग 25 फीट चौड़ा सिंक होल बन गया। वहीं गुरुग्राम से आई दूसरी तस्वीर जिसमें शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कुछ ही घंटों की बारिश के बाद सड़क स्विमिंग पूल में तब्दील हो गई। सड़क पर भीषण वाटर लॉगिंग के बीच स्कूल की बस कई घंटे तक पानी में यूं ही फंसी रही। ये तस्वीरें शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर सवाल खड़े करती है। एक तरफ बारिश का पानी है, दूसरी तरफ धसी हुई सड़क है और बच्चे बीच में फंसे हुए हैं। तस्वीरें बता रही कि गुरुग्राम जैसे हाई प्रोफाइल कॉर्पोरेट हब में मॉनसून आते ही कुप्रबंधन और खराब प्लानिंग की तस्वीर सामने आ जाती है। गुरुग्राम के इफको चौक पर सड़क धंसने और जलभराव की तस्वीर अब सियासी मुद्दा बन गई है। सड़क के बीचों बीच बने बड़े गड्ढे और पानी में फंसे वाहनों की तस्वीर साझा करते हुए कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर तंज कसा है। कांग्रेस ने लोगों से स्थिति को लेकर सवाल उठाया है और इफको चौक की बदहाल सड़क को सरकार के दावों से जोड़कर निशाना साधा है। यह कांग्रेस का ट्वीट जिसमें लिखा गया है, सड़क के बीच तालाब देख लो फ्रेंड्स, और मोदी जी ने नई टेक्नोलॉजी से सड़क बनवाई है। साल के 6 महीने सड़क और 6 महीने तालाब, मछली पालन करो, डुबकी लगाओ और मजे करो। तो गुरुग्राम में भारी जलभराव के बीच मुख्यमंत्री नारायण सिंह सैनी का एक वीडियो सामने आया जहां आज तक संवाददाता ने जब उनसे सवाल किया गुरुग्राम की स्थिति और जलभराव के बारे में तो वो बिना कोई जवाब दिए निकल गए। इसके अलावा सीएम के सुरक्षा कर्मियों ने माइक को दूर हटा दिया। दोबारा कोशिश की गई लेकिन सीएम फिर भी चुप रहे और आगे बढ़ते गए, जबकि उनके सुरक्षा कर्मियों ने माइक को भी दूर कर दिया। गुरुग्राम में भारी बारिश और जलभराव के बीच सर्विस रोड के अचानक धंसने से सड़क पर सिंक होल बन गया। मौके पर एनएचए आए गुरुग्राम डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारी पहुंचे तो हैं। पानी निकालने के लिए पंप भी लगाए गए और सड़क की मरम्मत का काम भी शुरू कर दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि जिस सड़क पर हर दिन हजारों वाहन चलते हैं वहां बारिश के बाद अचानक जमीन धंसने की नौबत क्यों आ जाती है। हमारे संवाददाता मौके पर मौजूद है, स्थानीय लोगों से बातचीत की। देखिए इफको चौक से ग्राउंड रिपोर्ट।
3: इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली एनसीआर के गुरुग्राम के उस इलाके के पास मौजूद है जो सबसे ज्यादा ट्रैफिक प्रभावित क्षेत्र रहता है, यानी कि इफ्को चौक। और इफ्को चौक के ठीक साथ में जो सर्विस रोड है जो सीधा मेन हाईवे को कनेक्ट करती है, वहां पर आप देख सकते हैं कि दो दिन की बारिश के बाद लगभग 8 से 10 फुट गहरा यहाँ पर गड्ढा हो चुका है। एक बहुत बड़ा सा गड्ढा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ये मेन सर्विस रोड है और आप देखिए कि ये सर्विस रोड से होता हुआ रास्ता हाईवे की तरफ जाता है, जो रास्ता है जयपुर की तरफ बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ दो दिन बारिश हुई और बारिश के बाद बहुत गहरा गड्ढा, बहुत चौड़ा गड्ढा यहाँ पर हो चुका है और इस गड्ढे की वजह से यातायात काफी प्रभावित हो रहा है। ये मेन हाईवे है, मेन आपको जो नेशनल हाईवे का रास्ता है वो नजर आ रहा है जो सुखरैली और जयपुर की तरफ जाता है। और देखिए जब ये रास्ता यहाँ पर बंद हो गया है तो पूरा यातायात पूरी तरह से प्रभावित यहाँ पर नजर आ रहा है। लंबा जाम, किलोमीटर लंबा जाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्योंकि ये गड्ढा यहाँ पर हो गया है। और सिर्फ दो दिन की बारिश में ये गुरुग्राम की स्थिति है। और ये गुरुग्राम वो दिल्ली एनसीआर का इलाका है जहाँ पर 50 करोड़ से 200 करोड़ तक के घर मिलते हैं। लोगों के घरों के आगे काफ़ी ज़्यादा पानी भर जाता है, लेकिन पानी भरने का आलम ये हो गया है कि यहाँ पर इतना बड़ा गड्ढा आपको दिख रहा है। और इस गड्ढे में जो है, अगर मान लीजिए उस वक्त कोई यहाँ पर मौजूद होता तो वो गिरकर किसी की जान भी जा सकती थी।
0: वही वाराणसी में गंगा का रौद्र रूप अब जिंदगी से लेकर अंतिम विदाई तक की तस्वीर बदल चुका है। मणिकर्णिका घाट पूरी तरह डूब गया तो चिंताएं अब सकरी गलियों में भी हो रही हैं। चारों तरफ बाढ़ का पानी है, उसके बीच उठता धुआं है। बेबसी की तस्वीर दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी।
4: कहते हैं काशी में मौत भी मोक्ष बन जाती है, और आप जब मणिकर्णिका घाट आते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ ऐसी तस्वीर आपको यहां से देखने को मिलती है जहां एक के बाद एक शव आपको जलते हुए दिखते हैं। प्रयागराज हो या बनारस हो, इस वक्त बाढ़ का कहर है। ऐसे में ये मेरे पीछे आप चिताएं जलती हुई देख रहे हैं, इनका स्थान अब बदल चुका है। आसान भाषा में कहूं तो मोक्षदायिनी माँ गंगा के इस रौद्र रूप ने महाशमशान की पूरी तस्वीर बदल कर रख दी है। मैं इस वक्त मणिकर्णिका घाट पर जलती हुई चिताओं के ठीक बीच में खड़ा हूँ और मेरे इर्द गिर्द अपनों को अंतिम विदाई देते कुछ बेबस से चेहरे हैं। जो आंख का तेज है वो बहुत अधिक है क्योंकि मेरे ठीक इस तरफ यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, जो धुआं है चिताओं का वो दिख रहा है। जो बाढ़ है वो शमशान, यानी कि जो मणिकर्णिका घाट है, उसको डुबो चुकी है। और अब मजबूरी में इस छतुमा जगह पर ये देख सकते हैं आप, एक और शव यहाँ अभी अभी पहुंचा है, अंतिम विदाई है। जिन गलियों में कभी पैदल चलना मुश्किल होता था, आज वहां नावें जो हैं वो तैर रही हैं। पीछे की तस्वीर भी दिखा दें एक बार, जो जल प्रवाह है बाढ़ में माँ गंगा का, वो आप देखें और खुद समझें कि हालात इस वक्त क्या हुए हैं। एक के बाद एक यहां पर लोग आते जाते हैं, धधकती आंख, चारों तरफ फैला बाढ़ का पानी और उठता धुआं। मणिकर्णिका की तस्वीरें इंसान की बेबसी और प्रकृति के रौद्र रूप की सबसे दर्दनाक गवाही देती हैं।
0: वाराणसी में बाढ़ का कहर धीरे धीरे बढ़ रहा है। दशाश्वमेध घाट पर गंगा का पानी लगातार ऊपर की ओर आ रहा है।
4: अविनाशी, काशी में बाढ़ ने दस्तक दे दी है और लगातार माँ गंगा का जो प्रवाह है और जलस्तर है वो बढ़ता जा रहा है। हम इस वक्त अस्सी घाट पर हैं और क्योंकि ये जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, इस वजह से नाव के संचालन को फिलहाल रोक दिया गया है। अस्सी घाट की तस्वीरों में अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर तमाम नावें खड़ी दिखाई पड़ेंगी। एक से एक नाव यहाँ पर है, खूबसूरत नाव, छोटी नाव, बड़ी नाव, एयर कंडीशन नाव, लेकिन सब की सब ठप पड़ी है। रीजन, ये बढ़ता पानी। अब जलस्तर को आपको मैं दिखाऊं अगर यहाँ से, तो आप देखें कि ये जो एरिया है ये नदी का एरिया नहीं है, इसे काफी नीचे तक सीढ़ियां आती हैं और जलस्तर धीरे धीरे चढ़ता हुआ यहाँ पहुंच चुका है। हालांकि कल के मुकाबले थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन कम ज्यादा लगातार लगा हुआ है।
0: वहीं देश के कई हिस्सों में बाढ़ और बारिश से मुश्किलें बढ़ गई हैं। बिहार के दानापुर मनेर में गंगा के उफान से 11 पंचायतों के निचले इलाके प्रभावित हैं। सुकमा उफनती नदी ने 600 परिवारों का रास्ता रोक दिया है। सिवनी में बच्चे जान जोखिम में डालकर नाला पार करके स्कूल जा रहे हैं। गोंडा में मरीज को चारपाई पर लादकर बाढ़ के पानी से निकालने का वीडियो वायरल है। वहीं राजौरी में फ्लैश फ्लड से सड़कों और फसलों को नुकसान पहुंचा है। देखिए बाढ़ और बारिश के कहर की ये ग्राउंड रिपोर्ट।
5: एक तरफ उफनती गंगा, दूसरी तरफ तेज बहाव वाला नाला और कहीं पहाड़ों से उतरता फ्लैश फ्लड। देश के तीन अलग अलग हिस्सों से आई ये तस्वीरें पानी के उस कहर को दिखा रही हैं, जिसने आम जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया है। पटना के दानापुर में गंगा के बढ़ते जलस्तर ने दियारा के निचले इलाकों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पानी धीरे धीरे गांवों के उन हिस्सों तक पहुंच गया है जहां तक पहुंचना कभी आसान नहीं था। दानापुर की 6 पंचायतें और मनेर की 5 पंचायतें बाढ़ से प्रभावित बताई जा रही हैं। कई जगहों पर मुख्यालय से संपर्क करना भी मुश्किल हो गया है। रोजमर्रा की जरूरतों का सामान लेने के लिए ग्रामीणों को पानी के बीच से होकर शहर की तरफ आना जाना पड़ रहा है। सबसे बड़ी परेशानी पशु पालकों के सामने है। जिस खेत से पशुओं के लिए हरा चारा मिलता था, वही खेत अब पानी में डूब चुके हैं। अब पशु पालक खुद पानी में उतर रहे हैं, चारा काट रहे हैं।
6: बाढ़ के कारण तो यही हो रहा है कि कचनो मरीज रहेगा तो उसको खटिया पर लाद के नाव पर करके ले जाएंगे। आप कैसे ले जाएंगे? रास्ता है ये नहीं तो कैसे ले जाएंगे?
7: बिजली का

0: रास्ता बहुत खराब है, आने जाने में बहुत दिक्कत जाती है हम
1: कौन सा
0: लोगों
1: रास्ता खराब है?
0: को। चार गांव से भी पड़ा ही आने जाने
1: ये
0: का।
1: वाला रास्ता है?
0: हाँ
2: ये वाला भी और अच्छा।
1: फिर क्या हुआ वहां पर, कौन आया था?
0: SDM मैडम आई थी, CO साहब आए थे, CO मैडम आई थी, DO साहब आए थे। एक
1: क्या बोला फिर उन्होंने?
0: महीने के अंदर बन जाएगी सड़क बोलते।
3: लंबे समय से चली आ रही इस परेशानी के बीच अब प्रशासन ने पुल बनाने की पहल का दावा किया है। करीब 75 मीटर लंबे पुल के निर्माण का प्रस्ताव जिला स्तर पर भेजे जाने की बात कही गई है। और अब जम्मू कश्मीर के राजौरी की तस्वीर। खन्ना मंडी में फ्लैश फ्लड ने तेज बहाव के साथ तबाही मचा दी। पानी अपने साथ मिट्टी और मलबा लेकर आया और रास्तों पर तबाही के निशान छोड़ गया। फ्लैश फ्लड का असर खेतों तक पहुंचा, फसलें पानी की चपेट में आईं और जरूरी बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचा। थन्ना मंडी की ये तस्वीरें दिखाती हैं कि पहाड़ी इलाकों में अचानक आया पानी कितनी तेजी से हालात बदल सकता है। और अब छत्तीसगढ़ के सुकमा से आई तस्वीर। यहां नक्सलवाद से मुक्ति के बाद भी ग्रामीण इलाकों की जमीनी चुनौतियां पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। मानसून की बारिश ने अरलमपल्ली गांव के करीब 600 परिवारों के सामने नई मुसीबत खड़ी कर दी है। यहां नदी का पानी बढ़ने के बाद एम्बुलेंस या वाहन गांव तक नहीं पहुंच पा रहे। ऐसे में मरीज को खाट पर लादकर नदी पार करानी पड़ रही है और उसके बाद शुरू होता है अस्पताल तक पहुंचने का लंबा और जोखिम भरा सफर। यूपी के गोंडा से आई इस तस्वीर को भी देखिए। कुछ लोग एक मरीज को कंधों पर उठाए हुए चलते दिखाई देते हैं। मरीज को बारिश से बचाने के लिए उसके ऊपर बरसाती ढकी हुई है। बाढ़ प्रभावित इलाके में पानी जमा होने के कारण लोग मजबूर हैं। कहीं पुल का इंतजार है तो कहीं तबाही के बाद जिंदगी को फिर पटरी पर लाने की चुनौती। लेकिन सवाल ये है, क्या अगली बारिश आने से पहले इन मुश्किल रास्तों और बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए इंतजाम मुकम्मल होंगे? मनेर से मनोज कुमार सिंह, सिवनी से पुनीत कपूर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
4: लंच ब्रेक में मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
7: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
8: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: शादी का किचन महके जहां गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: राजधानी दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में स्वाइन फ्लू के मामलों में इजाफा हुआ तो सरकार की चिंता भी बढ़ गई। एहतियाती कदम उठाए जाने लगे, एडवाइजरी जारी की गई, उच्च स्तरीय बैठकों का दौर शुरू हो गया। बात अगर राजधानी दिल्ली की करें तो बीते कुछ दिनों में

0: यहाँ H1N1 इन्फ्लुएंजा के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब तक दिल्ली में H1N1 के 2000 मामले सामने आए हैं और स्थिति चिंताजनक है, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने अहम बैठक भी बुलाई। उधर हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अस्पतालों में स्पेशल वार्ड बनाए गए हैं, जहां स्वाइन फ्लू वायरस से पीड़ित मरीज का इलाज किया जा सके। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक स्वाइन फ्लू एक वायरल संक्रमण है, जो संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने और नजदीकी संपर्क में आने से फैलता है, और जल्द ही इसके लक्षण भी नजर आने लगते हैं। यूं तो मौसम में बदलाव के साथ बुखार, खांसी, गले में खराश, सिर दर्द और शरीर में दर्द जैसी समस्याएं होना आम है। अक्सर लोग इन लक्षणों को सामान्य वायरल संक्रमण या मौसम का असर मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। हालांकि अगर ये लक्षण लगातार बने रहे, बढ़ने लगे या स्वास्थ्य में सुधार न हो तो सावधानी बरतना जरूरी है। ऐसे लक्षण स्वाइन फ्लू यानी H1N1 संक्रमण में भी दिखाई दे सकते हैं। कोलकाता और बेंगलुरु जैसे शहरों में भी हाल के दिनों में मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने बढ़ते स्वाइन फ्लू मामलों के मद्देनजर दिल्ली और देश में स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक कर चुके हैं। साथ ही कई राज्यों में भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं। आज तक ब्यूरो।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
1: गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

आधी आबादी को योगी सरकार का तोहफा, 60 साल से ऊपर की महिलाओं को फ्री बस यात्रा, 50,000 लड़कियों को देंगे स्कूटी। समाजवादी पार्टी ने भी लॉन्च की स्त्री सम्मान समृद्धि योजना, 40,000 रुपए देने का वादा।

0: महिलाओं को रेखा गुप्ता सरकार की बड़ी सौगात, दिल्ली में लक्ष्मी योजना का हुआ शुभारंभ, हर महीने महिलाओं को मिलेंगे 2500 रुपए। रक्षाबंधन के कपड़ों पर उठे विवाद के बाद कंपनी ने हटाया कृति सेनन का विज्ञापन, का भारतीय संस्कृति और परंपरा का पूरा सम्मान, कंगना ने उठाए थे पहनावे पर सवाल, बॉलीवुड में मचा था बवाल। टूटते गुरुग्राम पर आज तक के सवाल पर सीएम नायब सिंह सैनी ने साधी चुप्पी, सवाल सुनते ही सुरक्षा कर्मियों ने बाइक हटाया, बिना कुछ बोले निकल गए हरियाणा के मुख्यमंत्री। नेपाल में कुदरत का भयानक कहर, हाहाकारी सैलाब में समा गई बस्ती, बाजार और पुलिस चौकियां, पावर प्रोजेक्ट को भी नुकसान की खबर, प्रलय की तरह आया बाढ़ का पानी।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद भारत।
0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। 2 बज गए हैं, न्यूज रूम लाइव में एक बार फिर से हम सभी हाजिर हैं, बात करने उन खबरों की जिनकी आज चर्चा होने वाली है। सबसे पहले आज हम आपको बताएंगे, वो बता देते हैं ना कि किन खबरों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात की जाएगी क्यों उत्तर प्रदेश की सियासी लड़ाई महिला वोट पर आई, मतलब आधी आबादी की जंग इस वक्त कैसी देखी जा रही है और कैसे अपने पाले में लाने के लिए जो राजनीतिक दल है वो जद्दोजहद कर रहे हैं, इस बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। बीजेपी की तरफ से क्या किया गया, समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या किया गया, दिल्ली यूपी में क्या किया गया। दूसरी जो बड़ी खबर है वो भी हम आपको बता देते हैं, जिसके बारे में हम जिक्र करेंगे। हिजाब का सवाल, सियासी उबाल, अजहरुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो गई, हाईकोर्ट से एक फैसला आया और उसके बाद क्या कुछ मचा हुआ है कोहराम, राहुल गांधी से लेकर हर एक पहलू को हम डिटेल में आपको बताएंगे। जो तीसरी बड़ी खबर है वो भी हम आपको बता दें, जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, कृति सेनन का एक ऐड आता है और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हंगामा होता है, बॉलीवुड से लेकर राजनीति से लेकर हर जगह सियासी बवाल, बयानों का दौर शुरू हो जाता है, लेकिन अब वो ऐड वापस हो गया है, विवाद लेकिन जारी है, ऐड हट गया लेकिन विवाद जारी है, तो उस पर भी बात करेंगे। और ठीक आधे घंटे बाद हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैंसर का काला कारोबार कैसे फल फूल रहा था, कैसे लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, ये डिटेल में हम आपको बताएंगे 2:30 बजे। लेकिन उससे पहले ये आपको बता दें कि कैसे आधी आबादी को लेकर तैयारियां चल रही हैं, और सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त की आ रही है कि महिलाओं को अपने पाले में लाने के लिए हर कोई इस वक्त एड़ी चोटी का प्रयास कर रहा है, ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें। और बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से सौगात दी गई, 60 साल से ज्यादा की उम्र की जो महिलाएं हैं वो बसों में फ्री सफर कर सकती हैं, और इसके साथ इतना ही नहीं, जो बच्चियां हैं, जो छात्राएं हैं, उनको फ्री स्कूटी की बात, उनको गिफ्ट दिया जाएगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। और इसके साथ ही अखिलेश यादव की बात कर लेते हैं, तो ठीक एक घंटे बाद आते हैं अखिलेश यादव। देखिए लड़ाई किसकी है, लड़ाई आने वाले साल की है, चुनावों की है, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, तो ऐसे में अखिलेश यादव देर नहीं करते हैं, देखिए डिंपल यादव के साथ में आते हैं और उसके बाद फैसला लेते हैं 40,000 रुपए लड़कियों को। लेकिन उससे पहले हम आपको यह बता देते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से क्या फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने मिशन 2027 को लेकर आधी आबादी पर जो सियासी जंग छिड़ी हुई है उस पर मामला महिला वोट, अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज रक्षाबंधन पर महिलाओं के फ्री सफर योजना के साथ स्कूटी का भी ऐलान कर दिया, स्कूटी का भी ऐलान कर दिया गया, आजीवन मुफ्त सफर की सुविधा मिलेगी उत्तर प्रदेश रोडवेज की बसों में 60 साल और उससे ज्यादा उम्र की महिलाओं को। इसके लिए लोक माता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना शुरू की गई है, यानी बुजुर्ग महिलाओं को बस का टिकट लेने की जरूरत नहीं होगी, बस कार्ड दिखाना होगा, स्पेशल स्मार्ट कार्ड भी इसलिए दिया जाएगा।
2: रक्षाबंधन के अवसर पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम और सिटी बस सेवा दोनों में हर बेटी, हर बहन, हर माता को 3 दिन के लिए निःशुल्क बस सेवा प्रारंभ करने के लिए और इस सुविधा के लिए प्रदेश भर की पूरी मातृशक्ति का अभिनंदन करते हुए उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। और 29 के बाद 60 वर्ष की कोई भी महिला जो जो उत्तर प्रदेश की वासी हो, अपना वोटर आईडी कार्ड दिखा करके या आधार कार्ड दिखा करके इस यात्रा का लाभ ले सकती हैं। उनसे कोई भी किराया नहीं लिया जाएगा। ये दो प्रकार की सेवाएं आज एक साथ प्रारंभ हो रही हैं। पहली बार महिलाओं के हित में काम करने वाले हमारे परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी ने कहा कि ये कब घोषणा करें। हमने कहा भी रक्षाबंधन से अच्छा अवसर और क्या हो सकता है, और आज रक्षाबंधन के अवसर पर हम इस यात्रा को प्रारंभ करने जा रहे हैं।
0: नारी शक्ति की बात यहां की जा रही है, और मिशन कहाँ है, लक्ष्य कहाँ है आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से तो कह दिया गया है कि 60 साल और उससे ऊपर की जो महिलाएं हैं वो अब बस में फ्री सफर करेंगी, और रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए तो फ्री सफर है ही, उनके साथ में एक और जना कर सकता है। बच्चियों के लिए, लाड़ियों के लिए भी पैसे की बात यहां पर की गई है कि उनको दिया जाएगा, जो पढ़ाई कर रही है स्कूटी भी उनको दी जाएगी। तो अखिलेश यादव भी अब यहां पर तैयार दिखाई दे रहे हैं। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं किस तरह की सियासत आने वाले वक्त के लिए चल रही है।
2: भारत माता की, वंदे वंदे।
3: बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी।
4: सत्रह अगस्त को नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान होता है। बीजेपी की राष्ट्रीय टीम में पार्टी की मुखर महिला नेता स्मृति ईरानी को यूपी कोटे से जगह मिलती है। यूपी से 8 सदस्य बनाए जाते हैं, 8 में से 3 महिला सदस्य होती हैं, और उसके 7 दिन यानी एक हफ्ते बाद ही योगी कैबिनेट का महिलाओं को लेकर बड़ा फैसला आता है। योगी सरकार लोक माता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना का ऐलान करती है। यूपी में 60 साल और उससे अधिक उम्र की महिलाओं को आजीवन मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देते हैं। रक्षाबंधन से ठीक पहले योगी सरकार का ये ऐलान सामने आता है। ये योजना सियासी नजरिए से क्यों अहम और असरदार साबित हो सकती है, इसकी वजह भी जान लीजिए। अनुमान है कि इस योजना से रोजाना 88,000 महिलाओं को फायदा मिलेगा। यूपी रोडवेज की बसों में आधार कार्ड या वोटर आईडी दिखाकर इस योजना का लाभ लिया जा सकेगा। इस योजना पर करीब 22.5 करोड़ प्रतिमाह और 270 करोड़ रुपए सालाना खर्च आएगा।
2: इस पूरी सुविधा का नाम है लोकमाता अहिल्याबाई निशुल्क बस यात्रा, यानी कल से लेकर यानी 27, 28 और 29 को तो हर बेटी, हर बहन, हर माता अपने एक सहयात्री के साथ उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस में या सिटी बस की सेवा में निशुल्क यात्रा कर लेगी। 60 साल से ऊपर की माताओं के लिए बस यात्रा, आईडी कार्ड उनका प्राप्त होने पर, वोटर आईडी कार्ड हो या आधार कार्ड हो, उस आधार पर फ्री में वो यात्रा रहेगी।
5: आप देखिए ये सारी जो बसें हैं, इन्हीं बसों से मातृशक्ति योजना के तहत उनको फ्री एक तरीके से अब आजीवन ये सेवा दी जाएगी। और ये मास्टर स्ट्रोक योगी आदित्यनाथ का माना जा रहा है। ये महिलाएं देखिए जो 60 साल से ऊपर की हैं, वो सभी इससे निशुल्क यात्रा कर पाएंगी। पूरे प्रदेश में जहां भी उनको जाना है वो इस बस के जरिए जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कल कैबिनेट में इसको पास करने के बाद आज इसका इनॉग्रेशन है। आप देखिए कई महिलाएं अपने अपने गंतव्य स्थान पर जाने के लिए तैयार हैं।
4: तो योगी सरकार की ये योजनाएं ऐसे वक्त में आई जब सामने यूपी विधानसभा का चुनाव है। जाहिर है बीजेपी की कोशिश ज्यादा से ज्यादा महिला वोट हासिल करने की है, और मातृशक्ति विकास योजना के ऐलान के बाद समाजवादी पार्टी में भी खलबली है। यानी महिला वोटरों का समर्थन हासिल करने की दोनों ओर से जीतोड़ प्रयास हो रहे हैं। समर श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: तो महिला समर्थन की जंग है, ये बात आप समझ चुके होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से स्कूटी भी दी जाएगी छात्राओं को, और 60 साल से उम्र ज्यादा महिलाओं के लिए तो बस सफर फ्री कर दिया है। तो अखिलेश यादव एक घंटे बाद आते हैं, डिंपल यादव साथ में होती है, और क्या कहा जाता है 40,000 रुपए देने का वादा स्त्री सम्मान योजना के तहत अखिलेश यादव कर देते हैं। घोषणाओं की दौड़ में आगे निकलने की कोशिश अखिलेश यादव करते हैं और आते हैं, कहते हैं स्त्री सम्मान समृद्धि योजना के तहत सालाना 40,000 रुपए दिए जाएंगे।
6: स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लागू की जाएगी। ये आधी आबादी की पूरी आजादी का संकल्प है और उन्हें हर साल 40,000 रुपए देकर के उन्हें आगे बढ़ाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। समाजवादी सरकार में समाजवादी पेंशन महिलाओं को शुरू की गई थी, जिसमें 500 रुपए सीधे उनके अकाउंट में भेजा जाता था और भविष्य में यह तय किया था कि इसको लगातार बढ़ाया जाएगा। इसीलिए पिछली बार जब हमारा घोषणा पत्र बना था तो उसमें बढ़ा करके लिखा था और इस बार मैनिफेस्टो में जो जा रहा है वो है 40,000 हर साल और बढ़ेगा भी आने वाले समय में। मैं दूसरी बात जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से जो बात आई कि आजकल सब कुछ स्क्रीन से शुरू होता है, पहले भी समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप बांट के दिखाया था, जो पढ़ने वाले बच्चे थे आगे बढ़ने वाले उनको लैपटॉप दिया था और आज भी उत्तर प्रदेश में जहां पर समाजवादी सरकार में लैपटॉप मिला होगा वो आज भी चल रहा होगा।
0: तो देखिए स्त्री सम्मान नारी शक्ति की बात की जा रही है, तो जब शक्ति की बात की जा रही है तो अखिलेश यादव के ठीक दाईं ओर उनकी शक्ति बैठी हुई थी, यानी डिंपल यादव बैठी हुई थी, तो उन्होंने भी नारियों को लेकर जो समाजवादी पार्टी की तरफ से वादे किए गए उस पर अपनी बात रखी।
7: स्त्री को सामाजिक रूप से मजबूत स्थिति प्रदान करने के लिए स्त्री के सशक्तिकरण हेतु सम्मान समृद्धि से भी पहले आवश्यक है। समृद्धि शब्द को इसीलिए लिया गया है क्योंकि आर्थिक रूप से जब स्त्री बलवती होती है तो घर में वो आर्थिक योगदान भी करती है, इससे समकक्षता भी बढ़ती है। स्त्री का आर्थिक रूप से मजबूत होना ही उसका सबलीकरण होता है। योजना के रूप में इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा, समय समय पर इसके संचालन सफलता का आकलन किया जाएगा और अपेक्षित सुधार भी मोबाइल लैपटॉप आर्थिक सहायता पाठशाला प्रशिक्षण के माध्यम से सम्मान समृद्धि का वो मार्ग बनाया जाएगा जो धीरे धीरे स्त्री को अपने पैरों पर सम्मान के साथ सिर उठाकर खड़ा होना सिखाएगा। पीडीए के ए में शामिल आधी आबादी के प्रति ये योजना हमारी सकारात्मक सोच का परिणाम है।
0: सकारात्मक सोच का परिणाम बताया डिंपल यादव ने। दो सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। आशीष श्रीवास्तव हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हमारे साथ में समर्थ श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं राजधानी लखनऊ से। तो सबसे पहले बीजेपी आई थी, योगी आदित्यनाथ आए थे, तो आशीष ये बताइए कि बीजेपी की तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं 2027 के युद्ध में उतरने से पहले महिला शक्ति को अपने साथ करने की।
8: देखिए हिमांशु, सबसे बड़ी बात है कि योगी आदित्यनाथ का मैं फिर कहूंगा कि ये मास्टर स्ट्रोक है 2027 चुनाव के पहले, क्योंकि उन्होंने एक ही तीर से कई निशाने कर दिए हैं। सबसे पहले उन्होंने महिलाओं को जो 60 साल की है उससे ऊपर की है सीधे तौर पे उनको फ्री निःशुल्क कर दिया है, जो एक बड़ा वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में। और दूसरा अगर हम बात करें तो 50,000 जो स्कूटी देने की बात कही है छात्राओं को, जो इससे पहले प्रियंका गांधी जब आई थी कांग्रेस में उन्होंने भी कहीं ना कहीं तरीके की बातें कही थी, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ में सीधा। उसके बाद अगर हम बात करें तो युवाओं को टैबलेट देने की बात कह दी, तो आखिर अब बचा कौन? और 3 दिन तक तो सभी फ्री है क्योंकि रक्षाबंधन पर 3 दिन तक जो बहनें भी फ्री है वो माताएं भी फ्री, इस तरीके के कहा योगी आदित्यनाथ ने। तो मैसेज साफ है कि किसी भी महिला को जो बीजेपी का एक वोट बैंक भी बड़ा है पूरी तरीके से उसके साथ खड़ी नजर आ रही है, और ऐसे में फिर चाहे वो बुजुर्ग महिला हो, वो पढ़ने वाली छात्रा हो या फिर वो युवा छात्र हो, तब बीजेपी के साथ एक लाइन से सुर मिलाते हुए दिख रहे हैं। तो ये तो जरूर है कि 2027 की पटकथा लिखना योगी आदित्यनाथ ने शुरू कर दिया और उसी के परिपाटी पर दूसरी पार्टियां चलना भी शुरू कर रही हैं। लेकिन ये तो माना जाएगा कि ये मास्टर स्ट्रोक 2027 से पहले अभी दिया गया है और आगे भी कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ इस तरीके के फैसले लेते रहेंगे, ये भी उन्होंने मंशा जताई, चूंकि 1,00,000 नौकरी की बात कर चुके हैं। साथ ही साथ उन्होंने सबसे बड़ी बात जो कही है कि स्कूटी देने की, क्योंकि वो जानते हैं कि एक बड़ा वर्ग जो महिलाओं का है जो पढ़ रही है स्टडी कर रही है उनके लिए क्या है, तो स्कूटी 50,000। तो ये 2027 में महिला वोट बैंक, अभी जेएलजी का चल रहा था तो जेएलजी को साधने के लिए, उधर बुजुर्ग महिलाओं को साधने के लिए, और ऊपर से अब ये जन महिलाओं को, तो एक पूरा जो कह सकते हैं कि बड़ा वोट बैंक है, यूथ पावर का है।
0: मतलब बुजुर्ग महिलाओं के लिए भी हो गया, 50,000 छात्राओं के लिए स्कूटी भी हो गई। लेकिन जैसे हमेशा होता है कि सरकार की तरफ से, योगी आदित्यनाथ की तरफ से कुछ कहा जाता है, अखिलेश यादव तुरंत पलटवार कर देते, देर नहीं करते। तो यहाँ पर भी अखिलेश यादव आए और 1 घंटे बाद उन्होंने भी 40,000 रुपए सालाना देने की बात कही। समर्थ श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समर्थ, अखिलेश यादव भी पूरी तरह से तैयार हैं, अगर सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से कोई योजना निकाली जा रही है तो अखिलेश यादव देर नहीं कर रहे हैं। क्या और कहा गया है अखिलेश यादव की तरफ से?
9: देखिए हिमांशु, बात आसान इसलिए नहीं है क्योंकि यूपी में 45% वोट जो है महिलाओं का है। फिर चाहे बात आप बीजेपी की कर लें या समाजवादी पार्टी की कर लें, दोनों ही इसको साधने में जुट गई हैं। एक तरफ वहां से बड़े बड़े दावे हो रहे हैं और यहां से भी बड़े बड़े दावे हुए हैं। अखिलेश यादव की तरफ से, डिंपल यादव की तरफ से कहा गया कि 40,000 रुपये सालाना महिलाओं को दिया जाएगा अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, और इस जो धनराशि है इसमें वृद्धि भी हर साल के अनुसार की जाएगी। इसके अलावा जो स्कूल्स बंद पड़े हैं उनको दोबारा से खोलने की बात कही गई है। जो महीने में 2 अवकाश बिना कोई सवाल किए महिलाओं को, बच्चियों को, लड़कियों को दिए जाएंगे, फिर चाहे सरकारी स्कूल हो, सरकारी स्कूल हो, या फिर कोई ऑफिस हो या प्राइवेट हो, तो कुल मिलाकर इस तरह की बातें कही गई हैं। देखिए महिला वोटर कुल मिलाकर पिछले के चुनावों में अगर आप देखेंगे तो बीजेपी की तरफ ज्यादा रहा है। विपक्ष की, समाजवादी पार्टी की खासकर यह कोशिश है कि किसी तरीके से जो महिला वोटर है उसमें सेंधमारी की जा सके, और पीडीए के फॉर्मेट में बीजेपी से सवाल करते भी नजर आते हैं कि महिला आरक्षण क्या चुनाव में लागू करेंगे। इस तरह की बातें भी कुल मिलाकर यहां से कही जा रही हैं। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है कि जो वादे किए गए हैं, चाहे वो योगी सरकार की तरफ से किए गए हों या अखिलेश सरकार की तरफ से किए गए हों, महिला वोटर किस ओर जाएगा यह सबसे बड़ी बात है। क्योंकि योगी सरकार की अगर आप बात कर लें तो वादों के इतर वो कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा उनके लिए पैटर्न रहा है,
0: जिसके तहत जो है महिलाओं पर देखी गई है, और हर कोई ये दांव खेलना चाहता है और चाहता है कि महिला वोट बैंक आधी आबादी उनके पाले में जाए तो 27 की राह बहुत आसान हो जाएगी। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। तो देखिए उत्तर प्रदेश में आधी आबादी पर नजर है और अपने पाले में करने के लिए कोशिश की जा रही है, योजनाएं लाई जा रही हैं, सम्मान किया जा रहा है। तो दिल्ली में भी यही हो रहा है। दिल्ली में आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आती हैं और रेखा गुप्ता की तरफ से आज लक्ष्मी योजना का आगाज कर दिया जाता है, और इससे बताया जा रहा है कि करीबन 15 से 17 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा। दिल्ली में लक्ष्मी योजना की शुरुआत हो गई, आगाज हो गया है। आज से पहली किस्त आज जारी कर दी गई है, जो 2500 रुपए दिए जाएंगे महीने के, उसकी अब पहली किस्त यहाँ पर जारी कर दी गई है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनका भी मिशन यहाँ पर जारी है। तो आप समझिए कि अब तैयारियां पुरजोर तरीके से इस वक्त देखी जा रही हैं, दिल्ली में भी, उत्तर प्रदेश में भी, और हर जगह नजर कहाँ है, हर जगह नजर है महिला वोट बैंक पर।
10: इस सभागार में बैठी हुई मेरी सभी बहने, एक बार मेरे एक सवाल का जवाब दो, खुश हो? आवाज कम आ रही है मुझे, खुश हो? अरे कहां आवाज आ रही है, खुश हो? बस मैं यही चाहती हूं, मेरी सारी बहनें खुश रहनी चाहिए, उनके चेहरे पे ये मुस्कुराहट बनी रहनी चाहिए। सजी सवरी मेरी ये बहन जिंदगी में हमेशा आगे बढ़े, क्योंकि मैं हूं ना। मैं आप सभी को ढेर सारी बधाई देती हूं, आज के इस दिन की शुभकामनाएं देती हूं। ये दिल्ली लक्ष्मी योजना जो आज मेरी दिल्ली की बहनों के लिए आप सभी के द्वार पहुंच पाई है, इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, उस मां को और आप सभी को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए शुभकामनाएं देती हूं आपके आगे आने वाले जीवन के लिए।
0: सुशांत मेरा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सुशांत, चुनावी वादा था, अब उसको पूरा किया गया है, और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कह रही है महिलाओं से कि मैं हूं ना, आगे भी देखा जाएगा, सब देखा जाएगा। तो आज आगाज इस योजना का हो गया है, कितनी महिलाओं को लाभ मिलेगा, ये योजना के बारे में जरा बताइए, क्या कहा गया है सरकार की तरफ से?
5: देखिए मांशु, लगभग 2,500 के आसपास जो महिलाएं हैं उनको अप्रूवल लेटर जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से दे दिए गए हैं, यानी 1 सितंबर से उनके खाते में 2,500 रूपए की किस्त जो है वो आनी शुरू हो जाएगी, जिनमें से 1,500 रूपए आरडी के रूप में जमा होंगे जो कि आपको 3 साल बाद एक मुश्त आपके अकाउंट में जो है वो मिल जाएंगे। इसके अलावा 1,000 रूपए का एक पूरी तरीके से अगर कहा जाए आपको कैश बेनिफिट मिलेगा, यानी कि आप 1,000 रूपए की एक कार्ड के जरिए शॉपिंग जो है वो कर सकते हैं। ये सुविधा जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से दी गई है। लगभग 9 लाख से ज्यादा महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है और लगभग 6.5 लाख वेरिफिकेशन जो है वो इस पूरे योजना के तहत दिल्ली के अंदर हो चुके हैं। हालांकि सरकार का मानना है कि लगभग 17 लाख महिलाओं को ये जो योजना है उसका फायदा जो है वो मिलेगा।
11: तो मतलब दिल्ली सरकार भी महिलाओं पर पूरा फोकस कर रही है और जो वादे किए थे उनको पूरा करने की कोशिश की जा रही है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब एक और बड़ी खबर की बात करते हैं, मनुस्मृति और हिजाब को लेकर जो चला आ रहा है। राहुल गांधी का एक बयान आता है, अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बीजेपी की तरफ से काउंटर किया जाता है, बीजेपी की तरफ से पलटवार किया जाता है राहुल गांधी पर, नया हिजाब प्रहार। अब ये क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से राहुल की भारत यात्रा का एक बयान जारी किया गया है, भारत जोड़ो यात्रा का वीडियो उसको जारी करते हुए निशाना साधा गया है। साथ ही मनुस्मृति पर हमले के जवाब में ये हिजाब वाला प्रहार बीजेपी की तरफ से जारी। दूसरी ओर इलाहाबाद हाई कोर्ट के स्कूलों में हिजाब पर रोक वाले फैसले पर सियासी उबाल मचा हुआ है।
12: अगर आप सत्ता में आएंगे, अगर आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो आपका क्या नजरिया होगा कि एक औरत अबाया और हिजाब पहनकर फ्री नहीं फील करती है? क्या अबाया और हिजाब उतार
13: देखिए, मेरा मेरी व्यू है, मेरी व्यू है कि जो महिला पहनना चाहती है वो उसके ऊपर है। अगर वो अबाया पहनना चाहती है, कुछ और पहनना चाहती है, वो उसका बिजनेस है, उसका काम है, उसको अलाउ करना चाहिए। मेरी मेरी तो ये राय है।
14: 22 अगस्त को उन्होंने पुणे के मंच पर ये बयान दिया और 10 दिन पहले खुद राहुल गांधी जी संदीप दीक्षित के साथ एक बहुत ही ओछे मजाक में शिरकत करते हैं एक महिला प्रधानमंत्री के खिलाफ, और वो भी हमारे एक मित्र देश इटली की जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है मेलोनी जी। इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक यू वर ओवर हियरिंग बॉयज टॉकिंग इन अ लॉकर रूम। He was actually resorting to cheap innuendos. He was resorting to sensationalism for nothing but traction on social media. देश के नेता प्रतिपक्ष को ये शोभा नहीं देता। ऐसा लगता है कि अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी केवल और केवल मीम्स और रील वैल्यू के लिए ही बयान देते हैं। I want to call out the hypocrisy of श्री राहुल गांधी एज वेल एज हिज कांग्रेस पार्टी।
11: और यहां पर वो सिलेक्ट बहुत छोटे से ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो। इन एसोसिएशन विद
15: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: शादी का किचन महके जहां गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां
2: गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: The new BE6 Sportage.
1: धनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं?
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद
1: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ।
5: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
6: घुटनों तक पानी में डूबी सड़कें, बारिश में डूबी सड़कें, तरिया बना शहर, बारिश का रौद्र रूप, कुदरत का कहर, तस्वीरें दिल्ली एनसीआर की हैं, जहां बीते दो दिनों से बारिश अपना रौद्र रूप दिखा रही है। तस्वीरें दिल्ली के फिरोज शाह रोड की हैं, जहां आफत की बारिश ने सड़क किनारे बने घरों को भी नहीं बख्शा। जलभराव का आलम ऐसा रहा कि बारिश का पानी घरों के अंदर तक पहुंच गया। अब देखिए दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन के हालात। यहां सड़क की जगह पानी ही पानी नजर आया। पूरा इलाका बारिश के पानी से लबालब है। लोग इसी पानी के बीच आने जाने को मजबूर दिखे। ये तस्वीरें दिल्ली के महिपालपुर इलाके की। मानसूनी आफत ने वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दिया। हाईवे पर भीषण ट्रैफिक जाम लग गया। दिल्ली गुरुग्राम रूट पर गाड़ियां घंटों फंसी रही। दिल्ली के पॉश इलाके भी बारिश की मार से अछूते नहीं रहे। देखिए सीपी की पार्किंग में किस तरह पानी भर गया। खड़ी गाड़ियां और आने जाने वाले लोग जल भराव से परेशान नजर आए। वहीं यह तस्वीरें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की हैं, जहां घुटनों तक भरे पानी के बीच भी लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए आने जाने को मजबूर नजर आए। इस बीच साइबर सिटी कहे जाने वाले गुरुग्राम में नाले और सड़क में फर्क करना मुश्किल हो गया है। सैलाबी आफत के बीच एक मासूम की बिलखती तस्वीर भी सामने आई। ये स्कूली बच्चे स्कूल से घर लौट रहे थे, लेकिन सड़कों पर इतना पानी भर गया कि स्कूल बस बेबस होकर रास्ते में ही बंद हो गई। बच्चे बस से नीचे उतरे और रोते बिलखते नजर आए। अगली तस्वीर नोएडा की है। सेक्टर 94 में जोरदार बारिश के बाद चारों तरफ बस पानी ही पानी नजर आया। मानसून की मार के साथ साथ दिल्ली एनसीआर के लोग लंबे जाम की दोहरी मार झेलने को मजबूर है। दिल्ली एनसीआर में मानसूनी बारिश ने कई इलाकों को जलाशय में तब्दील कर दिया है। सड़कें डूब गईं, गाड़ियां रेंगने लगीं और जलभराव के बीच लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। आज तक ब्यूरो।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसें।

नेपाल में कुदरत का भयानक कहर, हाहाकारी सैलाब में समा गई बस्ती, बाजार और पुलिस चौकियां, पावर प्रोजेक्ट को भी नुकसान की खबर, प्रलय की तरह आया बाढ़ का पानी। डूबते गुरुग्राम पर आज तक के सवाल पर सीएम नायब सिंह सैनी ने साधी चुप्पी, सवाल सुनते ही सुरक्षा कर्मियों ने माइक हटाया, बिना कुछ बोले निकल गए हरियाणा के सीएम। आधी आबादी को योगी सरकार का तोहफा, 60 साल से ऊपर की महिलाओं को फ्री बस यात्रा, 50,000 लड़कियों को देंगे स्कूटी। समाजवादी पार्टी ने भी लॉन्च की स्त्री सम्मान समृद्धि योजना, 40,000 रुपए सालाना देने का वादा। महिलाओं को रेखा गुप्ता सरकार की बड़ी सौगात, दिल्ली में लक्ष्मी योजना का हुआ शुभारंभ, हर महीने महिलाओं को मिलेंगे 2500 रुपए, कहा जो वादा किया वो निभा दिया। और रक्षाबंधन के कपड़ों पर उठे विवाद के बाद कंपनी ने हटाया कृति सैनन का विज्ञापन, का भारतीय संस्कृति और परंपरा का पूरा सम्मान, कंगना ने उठाए थे पहनावे पर सवाल, बॉलीवुड में मचा था बवाल।

0: और देखिए बुलेटिन के सेगमेंट में कई खबरों की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको नेपाल की कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे जहां आप वो तस्वीरें देखकर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसी प्रलय क्या आपने पहले कभी देखी है कि नहीं देखी है। देखिए नेपाल का जिक्र किया जा रहा है तो नेपाल में अलग अलग जगह से कुछ तस्वीरें आई हैं। अब इन तस्वीरों को अगर आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि कैसे हालात यहां पर हुए हैं। एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यहां पर देखिए, कुछ लोग यहां पर आपको भागते हुए दिखाई दे रहे होंगे, यहां पर कुछ गाड़ियां खड़ी और जान बचाने के लिए लोग यहां पर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये पानी का बहाव अगर आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि कैसे रौद्र रूप, इसे ही प्रलय यहां पर कहा जा रहा है। ऊपर से ये पानी आता है और यहां पर जो प्रोजेक्ट एक डैम बनाया गया था वो डैम यहां पर पूरी तरह से बह जाता है, टूट जाता है। एक बार फिर से अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप इस वीडियो को समझिए, ये पानी का बहाव देखिए, इतनी तेजी के साथ ये पानी का बहाव सामने आया। यहां पर देखिए ट्रक यहां जा रहा है और ऐसे ही ना जाने कितने लोगों की जान जाने की खबर सामने आई है। कई लोग लापता हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन जगह जगह चल रहा है, लेकिन पानी का इतना तेज बहाव कि बड़े बड़े पत्थर हो, बड़े बड़े बोल्डर हो, सब अपने साथ में बहा कर ले जा रहा है। ये मलबा भी ऊपर से आ रहा है, सिर्फ पानी नहीं, पानी के साथ में मलबा, बड़े बड़े पत्थर, बोल्डर जिन्हें कहा जा सकता है, वो सब यहां पर आया और उसके बाद सब कुछ अस्त व्यस्त कर गया। लोगों की सालों की मेहनत की कमाई सब बर्बाद हो गई है। बहुत से लोगों ने यहां पर घर बनाए। तब ये देखिए, ये तेज बहाव में एक पुल था, ये पुल यहां पर बह जाता है, इतना तेज बहाव तेजी के साथ बढ़ जाता है और उसके बाद सब कुछ यहां पर बह जाता है। अब इस पुल को ध्यान से देखिएगा, इस पुल को यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, यहां पर पानी का बहाव कितना तेज है और उसके बाद देखते ही देखते इतना तेज बहाव कि ये पुल इस पानी के वेग को नहीं संभाल सका और उसके बाद ये भी यहाँ पर। अब यहाँ पर जितने लोग रह रहे होते हैं उनके बारे में सोचे कि उनकी क्या हालत यहाँ पर होगी। ये देखिए, ये पुल यहाँ पर बह गया, गाड़ी को देखिए, ऐसे ना जाने कितनी तस्वीरें सामने आई हैं। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि नेपाल में जो लोग हैं वो इस वक्त दुआ मांग रहे हैं कि इस प्रलय से उनको बचाया जा सके। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ जो नेपाल की इमरजेंसी सर्विसेज है वो इस वक्त लोगों को बचाने में जुटी हुई हैं। लेकिन अलग अलग तरह से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद डरा देने वाली हैं, वो तस्वीरें डरा देने वाली हैं क्योंकि हालात यहां पर लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और एक के बाद एक कई ऐसी तस्वीरें आई हैं जिन्होंने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर इस प्राकृतिक आपदा के पीछे की वजह क्या है। कुछ लोग यहां पर आप देखेंगे जो जाते हुए नजर आ रहे, लेकिन पानी का भाव इतना तेज अचानक बढ़ जाता है कि उनको बचने के लिए कहीं कोई जगह नहीं मिलती है, उनको कहीं कोई तस्वीर समझ में नहीं आती है। और कुछ इसी तरह के हालात अलग अलग जगह से नेपाल में देखने को मिले हैं। और पंकज दास हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए। पंकज जरा बताइए, नेपाल में काठमांडू में इस वक्त हालात कैसे, क्योंकि तस्वीरें जो है वो बहुत डरा देने वाली है।
1: बिल्कुल, लगातार जो इस तरह की खबरें आ रही है रसुआ से, खासकर जहां का कई बाजार और बस्ती गांव जो है पूरी तरीके से इस बाढ़ में बह गया है। इसके अलावा अन्य जो आसपास के जिले हैं जैसे नुआकोट, संखुआ सभा, वहां से भी इस तरह की खबरें आ रही हैं कि वहां भी कई सारे जो पानी ऊपर से लगातार नीचे की तरफ बह रहा है, तो जहां जहां से जिस रास्ते से वो पानी और वो उसके साथ में मलबा जो जा रहा है, उसके साथ ही पूरी की पूरी बस्ती है, जो सरकारी दफ्तर है, बैंक है, सब के सब तबाह होते जा रहे हैं। सिर्फ बुरी खबर ही हर जगह से आ रही है। सरकार लगातार रेस्क्यू का काम कर रही है। समय काठमांडू एयरपोर्ट से सिर्फ लगातार हेलीकॉप्टर के उड़ने और जो प्रभावित जिले हैं वहाँ से जो भी लोगों को बचाया जा सकता है उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है इस समय, लेकिन काफी मुश्किल हो रही है। जो हेलीकॉप्टर उद्धार में जा रहे हैं उनको लैंडिंग में काफी प्रॉब्लम हो रही है, वहां तक जो प्रभावित क्षेत्र है वहां तक पहुंचने में काफी दिक्कत हो रही है।
0: अच्छा पंकज, ये बताइए कि अभी कितने क्षेत्र तक ये नुकसान पहुंचा हुआ है, क्या जानमाल के नुकसान की भी खबर आई है, कितने लोग लापता बताए जा रहे हैं अभी तक, जो शुरुआती इन्फॉर्मेशन अभी आई है, क्योंकि आकलन करना कर पाना अभी मुश्किल होगा।
1: देखिए, अभी मैं सरकार की तरफ से और मैं सुरक्षा कर्मी जो राहत उद्धार काम में लगे उनके तरफ से किसी भी तरह से ऑफिशियल स्टेटमेंट इस बारे में नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि नुकसान बहुत बड़ा है। कई गांव, कई बस्ती, कई जो जगह इलाके हैं वो पूरी तरीके से बह गए, इसलिए अनुमान लगा पाना भी काफी मुश्किल हो रहा है। पुलिस की तरफ से सुबह में सिर्फ ये बताया गया है कि उनके जो 24 लोग हैं, 28 लोग हैं पुलिस सुरक्षा कर्मी, वो लापता है। इसी बीच खबर मिली है कि जो यहाँ जिसे गोसाई कुंड एक तीर्थ क्षेत्र है और यहाँ से मानसरोवर जाने के लिए जो भारतीय तीर्थयात्री हैं उनमें करीब 250 से अधिक पर्यटक जो है वो लापता बताए गए, संपर्क विहीन बताए जा रहे हैं, वो इसी बाढ़ की चपेट में हैं, उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। भारतीय एम्बेसी जो है काठमांडू में वो नेपाल सरकार से लगातार संपर्क करके इस बात का जानकारी कर रही है और राहत के काम में जुटी है।
0: कितना वक्त अभी पंकज लग सकता है लोगों तक राहत पहुंचाने में, इस रेस्क्यू ऑपरेशन के पूरा होने में, क्योंकि नुकसान तो बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन कितना वक्त बता रही है अभी? रेस्क्यू टीम्स।
1: अभी ये तबाही का जो आलम है, जो जिस तरह से लगातार बढ़ रही है और पानी जिस तरह से नीचे जा रही है, उस तरह से अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है कि शाम होगी या कल सुबह ही लगभग अनुमान लगा जा सकता है। चीन ने ये खबर दी है, संदेश दिया है नेपाल सरकार को कि जो ताल टूटा है वहाँ तिब्बत में, वो उसमें अभी भी पानी जमा हुआ और इस तरह से जो बाढ़ का खतरा है वो अभी भी बरकरार है। नेपाल सरकार की तरफ से इन भोटेकोशी नदी, सुनकोशी नदी, नदी इनके आसपास के रहने वाले सभी को तत्काल जगह छोड़ने के लिए कहा है। जो भी इसके आसपास रहते हैं उनको जगह छोड़ने के लिए कहा है, क्योंकि बाढ़ का खतरा भी बना ही हुआ है।
0: शुक्रिया पंकज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, जब नेपाल में इस तरह की खबरें आती है तो उसके बाद बिहार में अलर्ट जारी कर दिया गया है, तो ये भी आपको एक बड़ी खबर बता दें, क्योंकि बिहार में अलर्ट जारी कर दिया गया। नेपाल में आपने देख लिया, बाढ़ आई, हर जगह बर्बादी की तस्वीरें देखी, सब कुछ बर्बाद होता हुआ दिखाई दिया, रेस्क्यू टीम वहां पर जुटी हुई है, तो बिहार के 6 जिलों के लिए ऐसा सतर्कता बढ़ा दी गई है। फ्लैश फ्लड की स्थिति को देखते हुए सावधानी यहां पर बरती गई है। और ये बताया गया है कि गंडक नदी में अचानक पानी बढ़ने और करीब 3 मीटर तक ऊंची फ्लैश फ्लड के खतरे की आशंका है। अब इसे ही देखते हुए पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में विशेष सावधानी बरती जा रही है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई। किसी भी हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ टीम इस वक्त अलर्ट मोड पर है। केंद्र सरकार ने भी इसे लेकर भारत नेपाल सीमा के पास गंडक नदी के किनारे स्थित बिहार और उत्तर प्रदेश के स्थानीय अधिकारियों को सावधान, सतर्क रहने और हर एक बारीकी पर नजर रखने के लिए सलाह भी दी गई है केंद्र सरकार की तरफ से। सम्राट चौधरी इस पर क्या कह रहे हैं, इस आपदा पर, वो हम आपको सुनाते हैं।
2: एकदम उस पर पूरी तरह हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूँ। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि नगर जाऊंगा।
0: शशि भूषण हमारे सहयोगी जुड़े हुए, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। शशि, नेपाल में हम देख रहे हैं कि प्राकृतिक आपदा की वजह से लोग परेशान है, समझ नहीं आ रहा है कितना नुकसान हुआ है। सावधानी बिहार में भी बरती जा रही है, क्या सावधानियां इस वक्त, सतर्कता बरती जा रही है बिहार में?
3: हिमांशु, देखिए सबको मालूम है कि नेपाल में अगर इस तरह की स्थिति है तो उस स्थिति का सबसे पहला अगर सामना करेगा विषम परिस्थितियों का तो वो बिहार करेगा, और यही वजह है कि बिहार इस वक्त हाई अलर्ट की स्थिति में है। और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जो कहा है, वो क्यों कहा इस, या सरकार क्यों अलर्ट पे है, इसका कारण समझिए। बिहार और जो नेपाल की सीमा है, मतलब भारतीय जो सीमा है ना, उससे केवल 160 किलोमीटर दूर ये जो ग्लोफ की घटना हुई है, मतलब ग्लेशियर का एक झील जो टूटता है और उसके बाद एक फ्लैश फ्लड या बाढ़, जो भी आप कह लीजिए, एक तबाही वो लेकर के आता है। और जो पूरी बनावट और गंडक को, चूंकि हम लोग रिपोर्ट करते रहे हैं, जो गंडक नदी है उसके जरिए जो तबाही बिहार में आती है हर साल नेपाल से, तो उसमें अगर आप देखिएगा तो जो त्रिशूल नदी है वो आगे आकर के नेपाल के अंदर ही देवघाट है, और देवघाट में आकर के वो काली गंडक बन जाती है, और काली गंडक से फिर वो नारायणी नदी में तब्दील होती है, और वही नारायणी नदी जब बिहार में वाल्मीकि नगर बराज से अंदर बिहार के अंदर प्रवेश करती है तो वो गंडक कहलाती है। और गंडक का प्रभाव क्षेत्र इतना बड़ा है बिहार में हिमांशु, कि आप पटना के करीब सोनपुर तक आ जाइए, मुजफ्फरपुर सोनपुर तक आ जाइए, वहां तक गंडक नदी बहती है। तो ऊपर के हिस्से में तो जब तेज पानी का बहाव होता है तो वो तबाही का मंजर हम देख रहे हैं, लेकिन नीचे जब वो पानी आता है ना तो निचले इलाकों में ऊपर से पानी नीचे आ जाता है तबाही मचाते हुए, लेकिन जब निचले इलाकों में आके पानी फैलता है तो वहां बाढ़ की विभीषिका होती है, और यही दंश बिहार झेलता आया है कई सालों से हमने देखा है। और अब जो अलर्ट 160 किलोमीटर दूर घटना हुई है भारत नेपाल सीमा से, उसके बाद जो अलर्ट की स्थिति है, मुख्य सचिव ने रिव्यू मीटिंग करी है, मुख्यमंत्री ने खुद बयान दिया है कि डीजीपी और मुख्यमंत्री को कहा गया है मॉनिटरिंग करने के लिए बजाबता वाल्मीकि नगर बराज, चूंकि जो वाल्मीकि नगर क्षेत्र है वो बेतिया पश्चिम चंपारण के अंदर आता है, उसके बाद बगहा आता है।
0: जरूरी भी है कि इस वक्त सावधानी बरतने के लिए हर एक मोड़ पर अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिहार के बाद बात करते हैं राजस्थान की, और एक ऐसा मामला सामने आया है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, हरियाणा की बात कर लें, राजस्थान की बात करेंगे लेकिन हरियाणा की बात कर लेते हैं, क्योंकि हरियाणा में जब गुरुग्राम के मौजूदा हालात पर मुख्यमंत्री से सवाल पूछा जाता है कि गुरुग्राम क्यों पानी पानी हो जाता है हर बार, तो वो जवाब नहीं देते, बल्कि उनके सिक्योरिटी गार्ड क्या हटा देते हैं कैमरामैन को, रिपोर्टर को। जब रिपोर्टर सवाल पूछता है और ये बोलता है कि आखिर क्यों गुरुग्राम की हर बार यही कहानी होती है कि बारिश और पानी पानी, बस डूबने लगती है, हालात खराब हो जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन सरकार जवाब नहीं दे पाती है। देखिए रिपोर्ट।
4: सीएम साहब, गांव में जो बारिश,
5: सीएम साहब गुरुग्राम में बारिश, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से बस इतना ही पूछा था रिपोर्टर ने कि माइक की तरफ एक हाथ लगता है, कैमरा हिलता है, सीएम साहब अपनी आंख के नीचे किए आगे बढ़ जाते। शायद बहुत जल्दी में थे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। ये आज तक की रिपोर्टर असीम बस्सी, संवाददाता असीम बस्सी को गुरुग्राम पर सीएम का जवाब चाहिए था। वो काफी देर से मुख्यमंत्री के आने का इंतजार करते रहे। मुख्यमंत्री जी आए तो संवाददाता असीम बस्सी अपना पत्रकारिता धर्म निभाते हुए आगे बढ़े। मन में कई सवाल, पूछना था कि गुरुग्राम को चमकाने में अरबों रुपए फूंक दिए गए तो घंटे भर की बारिश में वो डूब क्यों जाता है। पूछना था कि आपके स्मार्ट सिटी में स्कूली बच्चों से भरी बस घंटों तक पानी में क्यों डूबी रहती है। पूछना था कि गुरुग्राम की सड़कें स्विमिंग पूल क्यों बन जाती है। सीएम साहब से पूछना था कि हुजूर, इस चमचमाते शहर की पहचान इफ्को चौक पर इतना बड़ा गड्ढा कैसे हो जाता है। ये भी पूछना था कि गाड़ी कमाई से करोड़ों के फ्लैट खरीद कर गुरुग्राम में रहने वालों को क्या आपकी तरफ से आश्वासन के दो शब्द कहे जाएंगे। कुछ तो कहते हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री, आप घनघोर बारिश करने वाले बादलों की ही निंदा कर देते, या ऐसी सड़कें बनाने वाले ईमानदार अफसरों की पीठ ठोकते, या फिर मुख्यमंत्री चाहते तो विपक्ष या पिछली सरकार को ही कोस देते।
4: सीएम साहब, गांव में जो बारिश,
5: मगर ये क्या, सीएम साहब आए, सवाल सुनते ही उनकी सुरक्षा में लगे गार्ड्स को गुस्सा आ गया। क्या मजाल रिपोर्टर की जो सवाल पूछकर मुख्यमंत्री की शान में गुस्ताखी कर बस फौरन रास्ते से हटने का इशारा दे दिया गया। पंचकुला के जिस कार्यक्रम में जा रहे थे मुख्यमंत्री जी, वहां मेडल जीतने वाले एथलीट्स का सम्मान होना था, इसीलिए मुख्यमंत्री को थोड़ी जल्दी होगी शायद। लेकिन आज तक के रिपोर्टर असीम बस्सी नहीं रुके, नायब सिंह सैनी के लौटने का इंतजार करते रहे, क्योंकि सवाल जरूरी है। डूबते गुरुग्राम पर, सुबह से शाम तक लगते जाम पर, कमर तक पानी में फंसे स्कूली बच्चों की सिसकियों पर, अपने बच्चों को स्कूल भेजकर घबराते माँ बाप के आंसुओं पर, इसीलिए सवाल जरूरी है। जनता के टैक्स से शहर को चमकाने का खोखला दावा करने वाली सत्ता से। असीम बस्सी, पंचकुला आज तक।
0: और आइए बात कर लेते हैं नकली कैंसर दवाओं के उस सिंडिकेट की, जहां पर आप जाते हैं कैंसर की दवा लेने, लेकिन वहां पर आपको मिलता क्या है, जहर मिलता है आपको, बैक्टीरिया वाला, फंगस वाला आपको पानी मिलता है। और करीब 7 जिलों में यह फैला हुआ है। राजस्थान में जब डॉक्टर ही हैवान बन गया, दवा के नाम पर गंदा पानी बेचा जा रहा है, नकली दवा का खुलासा हो रहा है, 17 लोगों की गिरफ्तारी अब तक इस मामले हो पाई है। और दिल्ली, यूपी से राजस्थान तक, 7 राज्यों तक इसका नेटवर्क फैला हुआ है। 1 लाख के इंजेक्शन के नाम पर पानी भरी शीशी बेची जा रही है।

0: जो तस्वीरें आपकी आंखों के सामने हैं, उसमें नकाब के पीछे उन चेहरों की हकीकत है जिनसे आपने कभी लाखों रुपए देकर इंजेक्शन खरीदा होगा। इस उम्मीद में आपका कोई अपना ठीक हो जाएगा, लेकिन ये छोटी छोटी शीशियों में जिंदगी नहीं मौत बेचते थे। कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली नकली दवाओं के सौदागर हैं। कैंसर के इंजेक्शन के नाम पर पानी भरी शीशियां बेचते थे। एक एक लाख रुपए इन इंजेक्शन की कीमत थी, मतलब एक एक लाख रुपए में कैंसर की दवा नहीं बैक्टीरिया और फंगस लगा जहर बेचा जाता था।
1: फंगस है, बैक्टीरिया है, यानी कि जो कैंसर के मरीज बच सकते थे उन्हें भी मारने वाली ये दवा है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कितने बार उसके रबड़ को पंक्चर किया गया है, यानी कि सिरिंज से उसमें खाली या तो वायल है उसमें ये पानी भरा गया है, कोई केमिकल भरा गया है, या कोई ओरिजिनल है उसमें से खींच कर बाहर निकाल कर थोड़ा थोड़ा सब में भरा गया है। तो ये केवल जब राजस्थान में मिलने वाले जो वायल में इस तरह से पानी भर कर बेचा गया है, तो देश भर से जो ये कैंसर के वायल चोरी किए गए हैं या फिर खाली वायल निकाल कर लाए गए हैं और पानी भरा गया है, तो ये कितने समय से चल रहा था और कितने मरीजों को मारा गया है, ये अपने आप में दिल दहला देने वाली घटना है कि किस तरह से समाज के तौर पर मरते जा रहे हैं कि पैसे कमाने के लिए कैंसर के मरीज को भी नहीं छोड़ रहे हैं।
0: आज तक पड़ताल में पता चला है कि कैंसर का इंजेक्शन राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दिया जाता है। उसी शीशी में ये गिरोह जहर की सप्लाई करता था, जिसका नेटवर्क दिल्ली समेत 7 राज्यों तक फैला था। जब दिल्ली क्राइम ब्रांच ने इस गिरोह के 17 लोगों को दबोचा तो पूरा मामला खुल गया।
2: ये इस तरीके से शातिर हैं कि इन्होंने जो हॉस्पिटल में जो वहाँ का कचरा निकलता है वहाँ पर ये जो वाइल्स होती हैं, जो शीशियां होती हैं दवाइयों की, उन

0: 2000 से 5000 रुपए तक खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि उसमें उनको दवाई तो भरना नहीं होता, उसमें वो पानी या कुछ भी वो इस तरीके की चीज भर देते हैं। तो इसलिए इन शीशियों से ये कारोबार नीचे से शुरू होता है और उसके बाद ये लगातार नजर रखते हैं जहां पर कैंसर मरीज आकर के बाहर के रुकते हैं, जहां पे स्टे करते हैं वहां पर ये नजर रखते हैं। और उसके बाद जो अलग अलग स्टेट में, क्योंकि ये जो 17 लोग गिरफ्तार हुए हैं सिर्फ दिल्ली के नहीं है।
1: इसके बाद नकली इंजेक्शन की जांच जर्मन लैब से कराई गई। इसके बाद जो रिपोर्ट सामने आई उसने तो होश फाख्ता कर दिए। पता चला कि इंजेक्शन में तो कैंसर दवा का तत्व शून्य है, ऊपर से जो तरल पदार्थ उस शीशी में है उसमें फंगस और बैक्टीरिया मौजूद है, यानी मौत के मुंह में जाते मरीज के शरीर में दवा जाते ही उसे मार डालेगी। उसके आगे की कहानी और भी चौंकाने वाली है। इस मामले में गिरफ्तार डॉक्टर मनीष शर्मा मध्य प्रदेश के भिंड का रहने वाला है। ग्वालियर में 12वीं तक पढ़ाई की और इसके बाद MBBS करने के लिए रूस चला गया। 2014 में भारत लौटने के बाद उसने मेडिकल प्रैक्टिस के लिए जरूरी परीक्षा पास करने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुआ। इसके बाद उसने कुछ समय फरीदाबाद के पार्क अस्पताल में काम किया और फिर KMC अस्पताल शुरू किया। 2023 में डॉक्टर लड़की से शादी की और गुरुग्राम के पास सोना में KMC अस्पताल की दूसरी ब्रांच भी खोली। अस्पतालों में उसने फ्रीलांस डॉक्टरों को काम पर रखा लेकिन करीब एक साल बाद आर्थिक नुकसान के कारण दोनों अस्पताल बंद कर दिए। इसके बाद आरोपित ने अपनी पत्नी के साथ फरीदाबाद में HK पॉलीक्लिनिक शुरू किया और इसी पते पर HK फार्मास्यूटिकल्स नाम की फर्म भी रजिस्टर की, साथ ही इंडिया मार्ट पर दवाएं बेचनी शुरू की। पुलिस के मुताबिक कैंसर की दवाओं में ज्यादा मुनाफा देकर उसने कथित तौर पर इंडिया मार्ट के जरिए संपर्क करना, लोगों को मिलावटी और नकली कैंसर दवाएं बेचना शुरू किया।
2: क्राइम ब्रांच की इंटरस्टेट सेल को एक इन्फॉर्मेशन मिली कि एक सिंडिकेट है जो काफी बड़े स्केल पर काउंटरफीट और चोरी की हुई कैंसर की दवाइयों को आम पब्लिक तक पहुंचा रहा है, काफी प्रॉफिट मार्जिन में बेचने का काम कर रहा है। इस इन्फॉर्मेशन को डेवलप करते हुए जुलाई के महीने में एक कोऑर्डिनेटेड रेड की गई मल्टीपल लोकेशंस में, दिल्ली और मुंबई में, और कई व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई। आगे जैसे इन्वेस्टिगेशन की प्रोग्रेस हुई अभी तक टोटल 17 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनके पास से करीब 600 कैंसर मेडिसिन की वायल्स रिकवर हुई हैं जिनकी मार्केट वैल्यू तकरीबन 9 करोड़ रुपए है। साथ ही जो इलीगल प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है उसमें भी इनके पास से तकरीबन 50 लाख रुपए कैश बरामद किया जा चुका है। ये जो व्यक्ति हैं इनमें से कुछ ऐसे हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में काम भी करते हैं और वहां से चोरी की हुई दवाइयों को आगे अपने वेल एस्टैब्लिश्ड सप्लाई चेन नेटवर्क के थ्रू आम पब्लिक तक पहुंचाने का काम कर रहे थे।
1: अब पुलिस आरोपित से पूछताछ कर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि नकली दवाओं का नेटवर्क कितना बड़ा था और उसमें और कौन कौन लोग शामिल हैं। जाहिर है जो इंजेक्शन सरकारी अस्पतालों के लिए सप्लाई होता है अगर उसका नकली वर्जन बाजार में बिक रहा था तो कई बड़ी मछलियां भी शिकंजे में आ सकती हैं। जयपुर से शरद कुमार के साथ अरविंद ओझा और हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: यार कहेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: कनेक्टेड डिवाइसेस पर पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से महिलाओं के लिए योजनाओं की शुरुआत की गई है। 60 साल और उससे ऊपर उम्र की महिलाओं के लिए अब उत्तर प्रदेश रोडवेज की बसों में मुफ्त सफर की तैयारियां की जाएंगी। इसके साथ ही रक्षाबंधन को ध्यान में रखते हुए रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश में फ्री बस सेवा लॉन्च की गई है, जिसमें उनके साथ में उनका एक सहयोगी भी सफर कर सकता है। साथ ही छात्राओं को ध्यान में रखते हुए 50,000 छात्रों को स्कूटी वितरित करने की बात भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई है।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: नेपाल में कुदरत का भयानक कहर, ग्लेशियर टूटने से सैलाब में समा गए बाजार, बस्तियां और पुलिस चौकी, अब तक 8 लोगों की मौत की खबर। बिहार में गंडक नदी का बढ़ सकता है जलस्तर, सम्राट सरकार अब अलर्ट पर। डूबते गुरुग्राम पर आज तक के सवाल पर सीएम नायब सिंह सैनी ने साधी चुप्पी, सवाल सुनते ही सुरक्षा कर्मियों ने माइक हटाया, बिना कुछ बोले निकल गए हरियाणा के मुख्यमंत्री। आधी आबादी को योगी सरकार का तोहफा, 60 साल से ऊपर की महिलाओं को फ्री बस यात्रा, 50,000 लड़कियों को देंगे स्कूटी। समाजवादी पार्टी ने भी लॉन्च की स्त्री सम्मान समृद्धि योजना, 40,000 रुपए देने का वादा। महिलाओं को रेखा गुप्ता सरकार की बड़ी सौगात, दिल्ली में लक्ष्मी योजना का शुभारंभ, हर महीने महिलाओं को मिलेंगे 2500 रुपए, कहा जो वादा किया निभाया। रक्षाबंधन के कपड़ों पर उठे विवाद के बाद कंपनी ने हटाया कृति सेनन का विज्ञापन, का भारतीय संस्कृति और परंपरा का पूरा सम्मान, कंगना ने भी उठाए थे पहनावे पर सवाल। नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। दोपहर के 3 बजे हैं और इस वक्त की बड़ी खबर रूस से आपको देते, जहां पर अमूर इलाके में एक गैस केमिकल कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई है, 7 लोगों की मौत की खबर है। मरने वालों में 6 चीनी नागरिक बताए जा रहे हैं। प्लांट मैनेजमेंट की ओर से इस बारे में जानकारी दी गई है, उनके मुताबिक मंगलवार को हादसा हुआ, 152 लोग इसकी चपेट में आए, जिनमें से 36 लोगों को अस्पताल ले जाया गया। वीडियो में अमूर गैस केमिकल कॉम्प्लेक्स के कर्मचारी आग लगने के बाद इमारत से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये तस्वीरें हैं, 7 लोगों की इसमें मौत हो गई है। मरने वालों में 6 चीन के नागरिक बताए जा रहे हैं, और जानकारी मिली है कि उस समय 152 लोग वहां पर थे जो इसकी चपेट में आए, लेकिन फिर वो भागे, उनमें से 26 घायल हुए, उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 7 लोगों की जान चले गई है। और अब आपको दिखाते हैं आपके शहर की खबर सुपरफास्ट अंदाज में, 100 शहर 100 खबर में। नेपाल में भीषण बाढ़ से जबरदस्त तबाही, नेपाल के रसुवा इलाके में सैलाब का तांडव, 8 लोगों की अब तक मौत की खबर। नेपाल में तिब्बत से आए सैलाब से टिमुरे बाजार, सैकड़ों गाड़ियों के बह जाने की खबर है, 3 पुलिस चौकियां भी तबाह, कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को बहुत बड़े नुकसान की खबर है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद से बिहार सरकार अलर्ट पर, बिहार के 6 जिलों में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में अलर्ट बढ़ गया है। नेपाल में आई तबाही के बाद इस बाढ़ के बाद बगहा में प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की, गंडक नदी को लेकर अब हाई अलर्ट है। जम्मू कश्मीर और राजौरी में फ्लैश फ्लड के बाद फसलें, सड़कें, जरूरी ढांचा प्रभावित हुआ है। बिहार के नवगछिया में गंगा उफान पर खेत खलिहान, इसके साथ साथ मवेशियों के चारे तक का संकट गहरा गया है। सुकमा में भारी बारिश ग्रामीणों के लिए मुसीबत बनती, उपवंती नदी में 600 परिवारों का संपर्क। गोंडा में बारिश के बाद लोग परेशान है, मरीज को चारपाई से ले जाते दिखे लोग, वीडियो हुआ वायरल। डूबते गुरुग्राम पर आज तक के सवाल पर सीएम नायब सिंह सैनी ने चुप्पी साधे रखी, सवाल सुनते ही सुरक्षाकर्मियों ने माइक हटा दिया, बिना कुछ बोले निकल गए मुख्यमंत्री। गुरुग्राम में बारिश का कहर, सड़कों पर सैलाब में फंसे स्कूली बसें, 7 से 8 घंटों के खौफनाक सफर के बाद मासूम बच्चे पहुंचे घर। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने नकली और डाइवर्टेड एंटी कैंसर दवाओं के अंतर्राज्यीय एक सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया, 17 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली क्राइम ब्रांच के इंटरस्टेट सेल ने किया पर्दाफाश, पुलिस ने लगभग 9 करोड़ की दवाइयां, 50 लाख रुपए नगद और बड़ी संख्या में एंटी कैंसर इंजेक्शन नकली थे जो बरामद किए। दिल्ली क्राइम ब्रांच की जांच में पता चला है कि दिल्ली एनसीआर, मुंबई, हैदराबाद, लखनऊ, इसके साथ साथ हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक के सप्लाई का नेटवर्क फैला था। ओडिशा में नदी में करोड़ों की एक्सपायर्ड दवाइयों डंप की गई है, मेडिकल कचरे को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आरएलपी डॉक्टर ने रूस से किया है एमबीबीएस, मेडिकल परीक्षा में नाकाम होने के बाद नकली कैंसर की दवाइयों के कारोबार में यह आरोपी उतर गया। सीएम योगी अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना की उन्होंने शुरुआत की, यूपी में 60 साल से ज्यादा की महिलाएं अब रोडवेज बसों में मुफ्त में कर सकती हैं यात्रा। सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर हमला, कहा कि पहले उत्सव पर उपद्रव होता था, कमीशन खोरी होती थी, वो दौर याद करोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सीएम योगी ने कहा कि पहले बेटियां सपने देखने से डरती थी, आज योजना का केंद्र बिंदु बेटी है, आज हमारे पास मिशन शक्ति केंद्र है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं के साथ सेल्फी भी ली और अनोखा खास अंदाज दिखा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार रोजगार देने की दिशा में तेजी से कर रही है काम। सीएम के मुताबिक यूपी में अब तक 9.5 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी मिली। लखनऊ में 60 साल से ज्यादा की उम्र की महिलाएं अब बस में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। इस पर सुरेंद्र राजपूत ने कहा ये कांग्रेस के जमाने से मुफ्त में, बीजेपी ने कोई नया काम तो किया नहीं। सीएम योगी ने कहा कि राज्य के पास लगभग 7 महीनों का चीनी का भंडार मौजूद है। उन्होंने कहा कि चीनी की उपलब्धता को लेकर किसी तरह की कोई कमी है ही नहीं। यूपी में श्रमिकों के लिए नियुक्ति पत्र अनिवार्य है और हर साल होगी मुफ्त स्वास्थ्य जांच भी। मायावती ने हिजाब विवाद पर कहा कि धार्मिक रीति रिवाजों का सभी को सम्मान करना चाहिए। स्कूलों में हिजाब के मुद्दे को स्थानीय स्तर पर बातचीत करके सुलझाने की अपील। ओपी राजभर का अखिलेश पर हमला, बोले कि लड़ना है तो मुझसे राजनीतिक लड़ाई लड़िए। राजभर समाज की महिलाओं पर हमला करवाकर कैसे राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे। सीएम योगी के बाद समाजवादी पार्टी ने भी लॉन्च किया श्री सम्मान समृद्धि योजना, 40,000 रुपए देने का वादा। अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, महिलाओं को सालाना 40,000 रुपए देंगे। बोले कि बीजेपी के लिए नारी सिर्फ नारा। अखिलेश यादव, डिंपल यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि पहले भी समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप दिया था, वो आज भी लैपटॉप चल रहा है। डिंपल यादव ने कहा कि बंद किए गए स्कूल फिर से किए जाएंगे शुरू और न्यूट्रिशन मिशन के चलते आगे भी काम चलता रहेगा। आलोक अवस्थी ने कहा कि हमारी युवा शान है, युवा और जेन जी बीजेपी की नीतियों को जानते हैं और इसीलिए बीजेपी और योगी आदित्यनाथ से जुड़े हुए हैं। रक्षाबंधन से पहले लखनऊ में मिलावटखोरों पर बड़ा एक्शन, एफएसडी ताबड़तोड़ छापेमारी कर रहा है। संदिग्ध खाद्य पदार्थों से लदी 3 गाड़ियां पकड़ी गई। बरेली में मिलावटखोरों पर शिकंजा, 490 किलो मिठाई मौके पर नष्ट कराई गई। जांच के दौरान खाद्य पदार्थों के नमूने भी लिए गए। 12 वफात को लेकर संभल में पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। एसपी ने पुलिस फोर्स और पीएसी के साथ जुलूस मार्गों पर पैदल मार्च किया है। संभल में जामा मस्जिद के आसपास 36 दुकानों और मकानों पर कार्रवाई की तैयारी, प्रशासन ने नोटिस भी किया जा रही। रक्षाबंधन के कपड़ों पर उठे विवाद के बाद से कंपनी ने हटा कृति सरन का विज्ञापन, कहा कि भारतीय संस्कृति परंपरा का पूरा सम्मान। दिल्ली पहुंच रही है 800 मीट्रिक टन प्याज की खेप, कीमतों पर रहेगी राहत। अब कांद्रा एक्सप्रेस से प्याज दिल्ली लाई जाएगी। पहली खेप चेन्नई, मदुरई और गुवाहाटी भेजे जाएंगे। सरकारी बिक्री के जरिए लोगों को सस्ती प्याज उपलब्ध कराने की तैयारी। सरकार ने जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर को निजी कंपनी को लीज पर देने की मंजूरी दी। फैसले को लेकर अखिलेश यादव नाराज और निशाना साधा। जेपीएनआई से लीज विवाद पर अखिलेश यादव का सरकार पर तंज। अखिलेश यादव बोले कि अब बस सरकार को ठेके पर देना बचा है। जेपीएनआई से लीज विवाद पर कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी की पुरानी आदत है, सरकार के पैसों से बनी इमारतों को अडानी अंबानी को बेच दो, ये देश बेच देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में 6 अहम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की समीक्षा की। 9 राज्यों से जुड़ी परियोजनाओं की प्रगति और अड़चनों पर भी चर्चा हुई। पीएम मोदी ने देशवासियों को ईद मिलाद उन नबी की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने कहा कि ये अवसर समाज में एकजुटता और खुशियां बढ़ाने का। डोभाल और वांगी की 25वीं वार्ता में सीमा मुद्दे पर चर्चा हुई। भारत चीन ने सीमा विवाद के समाधान और एलएसी पर शांति बनाए रखने पर जोर दिया। 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन। छात्रों ने TRE4 से पीटी मेंस हटाने की भी मांग की। पंजाब में कर्मचारियों और पेंशन भोगियों ने अपनी मांगों को लेकर बंद का आह्वान किया। सरकार पर लंबित मांगों के समाधान के लिए दबाव बनाने की तैयारी। बांग्लादेश के रंगपुर में हिंदू परिवार की हत्या से बवाल। स्कूल शिक्षक गणपति चक्रवर्ती, उनकी पत्नी और 2 बच्चों के शव घर से बरामद। स्थानीय हिंदू समुदाय में आक्रोश। मामले की जांच पर विरोध के बाद से पुलिस से हटाकर डिटेक्टिव ब्रांच को सौंपा गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हत्या में शामिल अन्य आरोपियों को बचाया जा रहा है। गैंगरेप के आरोपों के मामलों को और गंभीर बनाया और फॉरेंसिक रिपोर्ट में महिलाओं के साथ दुष्कर्म की बात कही गई। स्थानीय स्तर पर पुलिस पर तथ्यों को छिपाने के आरोप। 2 आरोपी गिरफ्तार। जांच का दायरा बढ़ाने की मांग। लोगों का दावा कि हत्याकांड में 2 से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। बांग्लादेशी दूतावास के बाद प्रदर्शन की तैयारी। हिंदू संगठनों ने परिवार की हत्या के विरोध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे उठाने का ऐलान किया। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में बड़ा संदेश दिया। अगले 15 से 20 सालों में खतरों की पहचान करेंगे और उन्हें बड़ा होने से रोकेंगे। आतंकवाद, नशे और घुसपैठ के खिलाफ भी प्री एम्प्टिव रणनीति पर जोर दिया। शाह ने सुरक्षा एजेंसी से बदलती परिस्थितियों का लगातार अध्ययन करने की अपील की। राहुल गांधी पर बीजेपी का हमला, हिजाब अबाया को लेकर पितृसत्ता वाले उनके रुख पर सवाल उठाए। बीजेपी ने पूछा कि महिलाओं के सशक्तिकरण पर धर्म के आधार पर आप अलग अलग मानदंड अपनाते हैं। राहुल गांधी के फ्रीडम ऑफ चॉइस वाले रुख पर निशाना। महिला प्रतिनिधित्व को लेकर अमित मालवीय बोले कि कर्नाटक और हिमाचल की कांग्रेस सरकारों में कोई भी महिला मंत्री नहीं। राहुल गांधी के स्मैश द पेट्रियार्की अभियान पर सवाल उठाए। यूपी चुनाव में एआईएमआईएम की जीत के लिए ओवैसी ने मांगे दुआ। ओवैसी ने कार्यकर्ताओं से पार्टी को मजबूत करने की अपील की। ओवैसी ने मुस्लिम समुदाय के लिए राजनीतिक नेतृत्व की जरूरत पर दिया जोर, कहा कि इससे भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था और संविधान होगा मजबूत। ओवैसी बोले कि 18 करोड़ की आबादी संसद में सिर्फ 24 सांसद समुदाय की आवाज उठाने वाला पर्याप्त राजनीतिक नेतृत्व ही नहीं। यूसीसी को लेकर ओवैसी ने उठाए सवाल, कहा कि अगर कानून हिंदू पर्सनल लॉ के प्रावधानों पर आधारित हैं तो उन्हें समान नागरिक संहिता कैसे कहा जा सकता है। न्यूयॉर्क के मेयर जोरान ममदानी ने आरएसएस के कार्यक्रम का किया विरोध। मेडिसन स्क्वायर गार्डन में मोहन भागवत के कार्यक्रम पर ममदानी ने कहा, मैं इस रैली का समर्थन नहीं करता। दिल्ली में लक्ष्मी योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जारी की 2500 रुपए की पहली किश्त। योजना के तहत लगभग 4000 महिलाओं को दी गई किश्त। 6 लाख से ज्यादा महिलाओं ने अब तक रजिस्ट्रेशन किया। कृषि विश्वविद्यालयों के 36वें वार्षिक सम्मेलन में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, कृषि क्षेत्र में नए शोध को प्रयोगशालाओं से खेतों तक ले जाने पर जोर। एक राष्ट्र एक चुनाव पर कांग्रेस को शिवराज सिंह चौहान का तंज पूछा कि संविधान जो है संविधान का विरोध है या पार्टी को बचाने की कोशिश है। दिल्ली में राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड द्वारा सागर संवाद का आयोजन, केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल शामिल। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग एमपीएससी ने ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती प्रक्रिया रद्द की, दोबारा हो गया परीक्षा। मुंबई के मशहूर अयूब्स के खिलाफ एफडीए की कार्रवाई, गंभीर खाद्य सुरक्षा उल्लंघन और साफ सफाई से जुड़ी बहुत खामियां मिली। बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, एमसीए की बीकेसी कैंटीन किचन का एफडीए फिर से करेगा निरीक्षण और पार्शियल कंप्लायंस रिपोर्ट पर कोर्ट ने सवाल उठाए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नेवल डिसूजा फुटबॉल ग्राउंड को कन्वेंशन सेंटर में बदलने पर रोक लगाई। 18 सितंबर तक बीएमसी को आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी। बुलढाणा में किसान नेता रविकांत टुक्कर को पुलिस ने नोटिस भेजा। 27 अगस्त को मंत्रालय के सामने आंदोलन और मंत्रियों के बंगले सरकारी वाहनों की सांकेतिक नीलामी की चेतावनी। चीनी के बढ़ते दाम पर अमेठी में प्रशासन का एक्शन, शासन के निर्देश पर चीनी के बड़े कारोबारियों और गोदामों पर छापेमारी हुई। लखनऊ में प्याज के बढ़ते दामों ने घरेलू बजट बिगाड़ दिया है, लोगों में नाराजगी है, सवाल भी उठाए। अयोध्या में चीनी प्याज के बढ़ते दामों से लोगों में नाराजगी है, बोले कि बढ़ती महंगाई ने तो उनका बजट बिगाड़ दिया है। उत्तर 24 परगना में 12/7 स्टेट यूनिवर्सिटी में रक्षाबंधन आयोजन को लेकर एबीवीपी और तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद में झड़प, 2 घायल। यूपी की फेमस यूट्यूबर के सड़क हादसे में मौत, मां ने भी तोड़ा दम, ट्रक में घुसी थी कार। जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में बड़ा हादसा, ट्रॉमा सेंटर में सीलिंग फैन गिरने से महिला के सिर में लगी चोट। काकीनाड़ा परिवार आत्महत्या मामले में नया मोड़, धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने के आरोपों से मामले ने नया रुख लिया। कटक में जंगली सुअर के हमले से 14 साल का मासूम बच्चा बच गया। कम्युनिटी नहर में अंदर जंगली सुअर ने बच्चे पर हमला कर दिया था, बाल बाल बच गए थे। गुजरात के शामला जी में घरेलू विवाद बना, हत्या की वजह पति ने कथित तौर पर कुल्हाड़ी से हमला करके पत्नी को मार डाला। सिंगरौली में स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़ा सवाल, सफाईकर्मी मरीजों का इलाज करते पकड़ा गया, अस्पताल व्यवस्था पर सीधा सवाल। वाराणसी में बारिश बनी है आफत, करंट और मकान गिरने से 6 लोगों की मौत। बदायूं में अंबेडकर प्रतिमा को लेकर बवाल, पुलिस पर पथराव, पुलिस और प्रशासन के 8 लोग घायल, 10 से ज्यादा वाहन क्षतिग्रस्त, 7 उपद्रवियों को हिरासत में लिया। मुरादाबाद में 9 तेंदुओं के रेस्क्यू के बाद भी नहीं थमा आतंक, 3री मौत के बाद गांव में दहशत, अब खेतों की ओर जाने से ग्रामीण डर रहे हैं। रोड़की में डबल मर्डर से मचा हड़कंप, 2 सगी बहनों के भाई ने गोली मारकर हत्या कर दी। दिल्ली कैंट इलाके में कूड़ा उठाने वाली ट्रक की डीटीसी बस से टक्कर, हादसे के बाद अफरा तफरी मची। दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई रॉकिंग स्टार यश की फिल्म टॉक्सिक। फिल्म में यश के साथ नयनतारा, कियारा, हुमा कुरैशी और तारा सुतारिया। टॉक्सिक के साथ सिल्वर स्क्रीन पर यश पूरे 4 साल के बाद वापसी कर रहे हैं। इससे पहले 2022 में उनकी KGF चैप्टर 2 आई थी। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की अपकमिंग फिल्म द वन का धमाकेदार टीजर जारी, 25 सितंबर को आएगी फिल्म। प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी फिल्म हैवान का ट्रेलर रिलीज, 18 साल के बाद बड़े पर्दे पर नजर आएंगे अक्षय कुमार और सैफ अली खान। इमरान हाशमी की फिल्म गन मास्टर G9 का टीजर जारी, इमरान हाशमी के साथ मुख्य भूमिका में जेनेलिया देशमुख, 27 नवंबर को रिलीज होगी। यूक्रेन के क्रिविय रिह में शॉपिंग सेंटर में रूसी डबल अटैक और यूएन ने इसकी निंदा की। हाल ही हमलों में कम से कम 47 लोगों की मौत, 329 घायल। अमेरिका पर ईरान ने प्रतिबंध और कड़े किए हैं। प्रतिबंधों से ईरान की मुश्किलें बढ़ी है। बंदर अब्बास के व्यापारियों ने कहा कि आर्थिक मुश्किलों के बावजूद हम झुकेंगे नहीं। ईरान में ओमान और ईरान के विदेश मंत्रियों के बीच में अहम मुलाकात हुई। दोनों ने हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर, जहाजों की आवाजाही को लेकर नया समुद्री रास्ता बनाने पर चर्चा की। चीन और अमेरिका ने बीजिंग में तीसरा ट्रैक 1.5 डायलॉग आयोजित किया। बैठक में दोनों देशों के रिश्ते और मौजूदा हालात पर खुलकर बातचीत। दक्षिणी इसराइल में गजा से उड़ाए जा रहे पतंग और गुब्बारों को लेकर हमास के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने गजा में जा रहे सामान से भरे हुए ट्रकों को रोक दिया। गजा में इसराइली हमलों से एक बार फिर से तनाव उतरे। गजा के जबालिया में हुए हमले में 3 फिलिस्तीनियों की मौत। खान यूनिस के पास 1 की मौत, 4 लोग घायल। करीबियाई देश हैती के एक इलाके में हथियारबंद लोगों ने हमला करके कम से कम 47 लोगों को मार डाला। 50 से ज्यादा लोगों को अब अगवा कर लिया गया। महान कंट्री म्यूजिक स्टार डॉली पार्टन का 80 साल की उम्र में निधन, और नैशविल में उन्होंने अंतिम सांस ली। नाइजीरिया में पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन ईद मिलाद उन नबी धूमधाम के साथ मनाया गया। हजारों की संख्या में मुस्लिमों ने पारंपरिक लिबास पहनकर सड़कों पर जुलूस निकाला। जापान के ओकिनावा और दक्षिणी द्वीपों पर तूफान सौदेल का दिख रहा असर, जिसके चलते भारी बारिश, तेज हवाएं, ऊंची लहरें उठ रही।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस।
0: अब बात हिजाब विवाद के, जिसे लेकर सियासी पारा आसमान चढ़ने लगा है। बीजेपी ने मनुस्मृति के खिलाफ राहुल गांधी के बयान को हिजाब से काउंटर किया है। पहले मंच पर हिजाब वाली लड़की का वीडियो जारी किया गया, और अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक बयान दिया गया था हिजाब को लेकर, जो उनसे सवाल पूछा था उस पर राहुल गांधी का जवाब वायरल किया जा रहा है। दूसरी ओर इलाहाबाद हाईकोर्ट के स्कूलों में हिजाब पर रोक वाले फैसले बाद सियासी उबाल जारी है। असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे इस्लाम पर हमला बता दिया इसे, तो मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी इसे धार्मिक आजादी पर सीधा दखल बताया। बीजेपी ने इस फैसले का स्वागत किया है। तो राहुल गांधी पुणे के छात्रों की गूंज कार्यक्रम में मनुस्मृति के का उल्लेख करते हुए इसे महिला विरोधी बताते हैं। अब बीजेपी ने हिजाब के जरिए हमला बोला। बीजेपी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक बयान, जो राहुल गांधी से सवाल पूछा गया था, वो जो राहुल गांधी ने जवाब दिया वो वायरल हुआ है। इसमें राहुल गांधी हिजाब को महिलाओं को उनके पहनने के हक से जोड़ रहे हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी पर महिलाओं की आजादी को लेकर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया।
2: सर, अगर आप सत्ता में आएंगे, अगर आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो आपका क्या नजरिया होगा कि एक औरत अबाया और हिजाब पहनकर फ्री नहीं फील करती है? क्या अबाया और हिजाब उतार
3: देखिए, मेरा मेरी व्यू है, मेरी व्यू है कि जो महिला पहनना चाहती है वो उसके ऊपर है। अगर वो अबाया पहनना चाहती है, कुछ और पहनना चाहती है, वो उसका बिजनेस है, उसका काम है, उसको अलाउ करना चाहिए। मेरी तो ये राय है।
4: 22 अगस्त को उन्होंने पुणे के मंच पर ये बयान दिया, और 10 दिन पहले खुद राहुल गांधी जी संदीप दीक्षित के साथ एक बहुत ही ओछे मजाक में शिरकत करते हैं एक महिला प्रधानमंत्री के खिलाफ, और वो भी हमारे एक मित्र देश इटली की, जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है मेलोनी जी। इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक यू वर ओवर हियरिंग बॉयज टॉकिंग इन अ लॉकर रूम। ही वॉज एक्चुअली रिजॉर्टिंग टू चीप इनवेंडोस, ही वॉज रिजॉर्टिंग टू सेंसेशनलिज्म फॉर नथिंग बट ट्रैक्शन ऑन सोशल मीडिया। देश के नेता प्रतिपक्ष को यह शोभा नहीं देता। ऐसा लगता है कि अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी केवल और केवल मीम्स और रील वैल्यू के लिए ही बयान देते हैं। आई वॉन्ट टू कॉल आउट द हिपोक्रेसी ऑफ श्री राहुल गांधी एज वेल एज हिज कांग्रेस पार्टी।
5: कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के खिलाफ बोल रहे हैं, अंबेडकर साहब से भी बड़े हो गए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पूरे देश की हर विचारधारा का व्यक्ति मौजूद था। जब ये दो स्टैंजास की बात वहां भी रेटिफाई हुई थी, वहां भी उसका अनुमोदन हुआ था वंदे मातरम का, तो ये उन सबसे बड़ा अपने आप को मानने लगे। अपना काम आता नहीं है, ढेले भर का गृहमंत्री बने हैं, पैलेट गन किसने चलाई जवाब नहीं दे पा रहे, या तो इतने नाकारा हैं कि मालूम ही नहीं किसने चलाई।
6: राहुल गांधी ने जो बयान दिया है, बीजेपी ने उसको लेकर के एक वीडियो जारी किया हिजाब वाला, इस पर आप क्या प्रतिक्रिया?
7: देखिए, मैं देखता हूं कि एक बात समझने की जरूरत है कि कुछ लोगों की एक आदत बन गई है कि मुस्लिम महिलाओं के तालीम और तरक्की पर तालिबानी ताला ठोको, और इस तालिबानी ताला ठोकने की जो इनकी सनक है उसमें जो है वो कभी जो है वो हिजाब का मुद्दा लेकर के आ जाएंगे। अरे भाई, देश हमारा जो है वो एक अपना एक सिस्टम चलता है, जो संस्थाएं हैं उनका अपना ड्रेस कोड होता है, उसका सबको सम्मान करना चाहिए। हमारा देश जो है वो संविधान से चलेगा, न तो शरीयत से चलेगा, न किसी और धार्मिक ग्रंथ से चलेगा, ये सभी लोग जानते हैं। तो लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी की प्रॉब्लम ये नहीं है, कांग्रेस पार्टी जो हिट एंड रन के की हिस्ट्री शीटरों का हिस्टीरिया है, तो कांग्रेस के हिट एंड रन के हिस्ट्री शीटरों का हिस्टीरिया जो है वो समय समय पर इस तरह के काल्पनिक कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश में लगा रहता है और खुद ही जो है वो अपने ही काल्पनिक कन्फ्यूजन के कुंड में कैद हो जाता है।
6: राहुल गांधी ने मनुस्मृति को लेकर के बयान दिया, उसके बाद बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि राहुल गांधी अलग अलग तरीके का, जब हिजाब वाले मुद्दे को लेकर के एक अलग उनका जो रवैया रहता है और मनुस्मृति पर इस तरीके का,
7: इनका डबल स्टैंडर्ड हर चीज में दिखाई पड़ता है। आप देखोगे तो यहाँ पर जंतर मंतर पे तो शोर मचाते दिखाई पड़ेंगे और झारखंड में छू मंतर हो जाएंगे, तो इनका तो ये समय समय पर दिखाई पड़ता रहता है। दूसरी चीज़ ये कि हमारा देश किसी भी धार्मिक ग्रंथ के आधार पे तो चलता नहीं है, हमारा देश जो है वो संविधान से चलता है, संविधान ही हमारे देश के लोकतंत्र का, हमारे देश के जनतंत्र का धर्म ग्रंथ है।
0: हिजाब पर नई सियासत जो है तब भी हुई है क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक आदेश आया, उसको लेकर भी इस पर बवाल है। असदुद्दीन ओवैसी ने उस फैसले पर आपत्ति जताई है। ओवैसी ने हाईकोर्ट के आदेश को इस्लाम पर सीधा हमला बताया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ये तो इस्लाम पर सीधा सीधा हमला है। क्या आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया था जिसमें हाईकोर्ट ने ये कहा था कि हिजाब इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं है। कम से कम जो छात्र जिसने अपील दायर की थी वो ये कोर्ट में प्रूव नहीं कर पाए, इसका कोर्ट ने ये फैसला किया।
8: आज इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट आया, हमारी एक बेटी स्कूल में हिजाब पहन रही थी, हिजाब पहन के कोर्ट ने कह दिया कि हिजाब आप नहीं पहन सकते। मैं इस हाईकोर्ट के जजमेंट के खिलाफ हूं, इससे एग्री नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि साबरीमाला केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट रिजर्व फॉर जजमेंट है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फाजिल जजेस को अपना जजमेंट रोकना चाहिए था।
0: अब रुकना छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सम।
10: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
11: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा,
10: छक्का
11: सब कैशलेस हो गया है।
10: हाँ ओले, ला भाई मेरा बैट,
11: वो अभी तो ठीक हुआ तू,
10: अभी तो चार्ज हुआ यार।
12: बैट किसका है?
13: टाटा AIG है तो भरोसा है।

0: आगे आगे
1: उधर
0: उधर गया।
1: करेक्ट करेक्ट
2: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
4: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
5: सोच बदलो और बैंक भी।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।

0: देश की राजधानी दिल्ली में मूसलाधार बारिश हो रही है और थोड़ी सी देर की बारिश में देश की राजधानी का क्या हाल है ये आपको तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है।
1: हालांकि मुख्य सड़क आप सोचिए नई दिल्ली की ये मुख्य सड़क है, लेकिन जैसे तेज बरसात शुरू हुई है और काफी मूसलाधार बारिश हुई है, दिल्ली के कुछ इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, तो ज्यादातर जो हिस्से हैं वो रेड अलर्ट की चपेट में हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास अमित वधवार के साथ में आशुतोष मिश्रा आज तक।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

को लेकर अलर्ट जारी। डूबते गुरुग्राम पर सीएम सैनी मौन, आज तक के सवाल पर सादी चुप्पी, सुरक्षा कर्मियों ने हटाया माइक, बिना बोले निकले हरियाणा के मुख्यमंत्री।

0: आबादी को लूटने की लुभाने की होड़। योगी सरकार देगी फ्री बस सफर और 50,000 स्कूटी। समाजवादी पार्टी का 40,000 रुपए का दांव। रेखा गुप्ता सरकार की बड़ी सौगात, दिल्ली में लक्ष्मी योजना का शुभारंभ। सीएम बोले जो वादा किया वो निभा दिया, हर महीने मिलेंगे 2500 रुपए। रक्षाबंधन के कपड़ों पर उठे विवाद के बाद कंपनी ने हटाया विज्ञापन का। भारतीय संस्कृति और परंपरा का पूरा सम्मान, कंगना ने उठाए थे कृति सैनन के पहनावे पर सवाल।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरें असरदार, आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। सबसे पहले बात नेपाल की, यहां पर आई भीषण बाढ़ से वहां बड़ी तबाही हुई है। तिब्बत से आई भीषण बाढ़ से वहां हालात काफी ज्यादा बिगड़ गए हैं। नेपाल के रसुआ इलाके में सैलाब का तांडव दिख रहा है,
1: पूरा डैम फूट रहा है।
0: 5 भारतीय टूरिस्ट,
1: पूरा चाइना को डैम,
0: 105 भारतीय टूरिस्ट लापता बताए जा रहे हैं। नेपाल टूरिज्म बोर्ड की तरफ से ये जानकारी मुहैया कराई गई है। कहा जा रहा है 105 भारतीय टूरिस्ट का अता पता नहीं है। टिमरे बाजार और कस्टम क्षेत्र में सैकड़ों गाड़ियों के बह जाने की खबर है और बताया जा रहा है कि 3 पुलिस चौकियां भी तबाह हुई हैं। कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को भी बड़े नुकसान की आशंका है। नेपाल की सेना के सूत्रों के अनुसार बुसी और तुसु इलाके में 25 लोगों का रेस्क्यू हुआ है। फिलहाल राहत और बचाव कार्य में 15 हेलीकॉप्टर लगाए गए।
1: पुरै त्रिशुली लाइफ लाइफ यो चाहिँ है गाइस, यस्तो लाइफ छ। ओहो, पुरा ड्याम फुटेर आयो, पूरा चाइना को डैम फूटे रहा है।
0: पंकज दास मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। पंकज, 105 भारतीय टूरिस्ट भी लापता बताए जा रहे हैं, क्या जानकारी दी है नेपाल सरकार ने इनके बारे में?
2: यहाँ नेपाल पर्यटन बोर्ड की तरफ से जानकारी दी गई है कि कुल 384 जो विदेशी पर्यटक और नेपाल के जो पदयात्री, जो कुछ लोग ट्रेकिंग पे थे, कुछ पेशाई कुंड और कुछ, उनमें से अधिकांश जो है वो मानसरोवर की यात्रा पे जा रहे थे, उन सभी के अभी मिसिंग होने की खबर बताई गई है। जो 384 लोगों में अधिकांश 100 से अधिक भारतीय पर्यटक है जो मानसरोवर की यात्रा करते हैं, उनका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा, क्योंकि नेटवर्क की समस्या है, बात किसी से नहीं हो पा रही है। इनके जो यहाँ ट्रैवल एजेंट हैं, उन्होंने सरकार से ये गुहार की है कि उनके जो भी यात्री उनके तरफ से वहां पर गए हैं, उनका उद्धार किया जाए। हालांकि लगातार जो यहाँ इंडियन एम्बेसी है वो नेपाल सरकार के संपर्क में है और किस तरह से भारतीय तीर्थयात्रियों को जो मानसरोवर की यात्रा पर थे या जो ट्रेकिंग पर थे, उनको किस तरह से बचाया जाए, वहां तक कैसे पहुंचा जाए, इस बात का प्रयास किया जा रहा है।
0: बने रहिए हमारे साथ। इस बीच तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, भयावह तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं कि तबाही कितनी बड़ी और भीषण है। कई घर टूट गए हैं, भीषण लैंडस्लाइड हुई है जिससे कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को भी नुकसान पहुंचा है। पुलिस चौकियां भी इसकी जद में आई है। पूरा का पूरा इलाका इस वक्त मलबे में तब्दील हुआ दिखाई दे रहा है। नदी का ये विकराल रूप दरअसल ग्लेशियर फटने की वजह से हुआ है। तिब्बत में बताया जा रहा है ग्लेशियर फटा है, जिसके बाद बहता हुआ पानी नेपाल में दाखिल हुआ और उसके बाद वहां पर प्रलय और तबाही की तस्वीरें, एरियल तस्वीरों से आपको दिख रहा होगा कि कैसे एक पूरा का पूरा इलाका इस वक्त मलबे की चपेट में है, जिसमें कई रिहायशी इलाके भी शामिल है। पंकज मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। पंकज, कितना नुकसान बताया जा रहा है और कई बार तो मुमकिन ही नहीं हो पाता नुकसान का आकलन कर पाना।
2: बिल्कुल, नेपाल में जो स्थिति है इसमें नुकसान का आकलन कर पाना शायद आज रात तक नामुमकिन है, क्योंकि तबाही का मंजर लगातार जिले दर जिले बढ़ रहे हैं। जो पानी ऊपर रसुआ से शुरू हुआ था तो अभी चितवन तक बताया गया था कि 3.5 बजे तक वो चितवन में जो तुसुली नदी है और वहां तक पहुंचने का अनुमान है। इसलिए सभी सतर्कता अपनाई जा रही है। इसमें नुकसान का अनुमान लगा पाना, रसुआ एक दुर्गम इलाका है जहां अभी कोई भी साधन, सारी सड़कें बंद है, सिर्फ हेलीकॉप्टर से उद्धार का काम किया जा रहा है। इसलिए नुकसान का अनुमान लगा पाना काफी मुश्किल है सरकार के लिए भी और पुलिस प्रशासन के लिए भी।
0: इसके अलावा पंकज, कई पुलिस चौकियों को नुकसान पहुंचा है, कितने ऐसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर इस तबाही का असर है?
2: नेपाल सरकार की तरफ से जो यहाँ बिजली विभाग है उसके तरफ से एक रिपोर्ट इस बारे में जारी किया गया है। करीब जो है 700-750 मेगावाट जो बिजली उत्पादन होते थे और जो निर्माणाधीन थे, दोनों को मिलाकर करीब 750 मेगावाट बिजली प्रभावित हुई है। इतने सारे करीब 17 डैम जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उनको नुकसान पहुंचा है। इनमें से अधिकांश वो है जहां से बिजली उत्पादन हो रही थी और कुछ नए प्रोजेक्ट जो बन रहे थे उन सभी का नामो निशान मिट गया है। यहां पे
0: क्या इस बारे में किसी तरह का कोई अलर्ट जारी किया गया था या फिर अचानक ग्लेशियर के फटने से इतनी भीषण तबाही हुई है?
2: कोई अलर्ट नहीं, कोई सूचना नहीं, मौसम विभाग को कोई जानकारी नहीं, किसी तरह की कोई जानकारी नहीं। आज सुबह 9 बजे अचानक जब रसुआ में ये बाढ़ देखा गया, पानी जो चाइना की तरफ से नेपाल में आया ग्लेशियर फूट के, तो उसके बाद ही सबको मालूम चला यहाँ नेपाल के गृह मंत्री ने उस विजुअल को ट्वीट किया जिसमें दिखाया गया कि किस तरह से जो है वहाँ का जो पानी फूट के जो ग्लेशियर वहां फटा, उसके बाद वो नेपाल में तबाही मचाता हुआ नजर आया। उसके बाद नेपाल पुलिस नेपाल आर्मी की तरफ से ऐसे वीडियो जारी किए गए जिसके बाद लोगों को पता चला।
3: कोई भी लोग किसी तरह का कोई अलर्ट नहीं, किसी तरह की
2: कोई सूचना नहीं थी क्योंकि मौसम से भी अधिक इस समय जो है वो जो ग्लेशियर अचानक फूटा है उसके कारण से ये तबाही हुई है।
0: तो ये तस्वीरें देखिए, ये दरअसल भीषण तबाही की तस्वीरें हैं। इसके बारे में कोई अलर्ट भी जारी नहीं किया था। अचानक ग्लेशियर फटने से ये बताया जा रहा है कि 8 लोगों की जान गई। हालांकि मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि आकलन करना बेहद मुश्किल है कि कितनी जिंदगियां तबाह हुई हैं, नष्ट हुई हैं। दरअसल अभी तो फिलहाल इस बात को समझा जा रहा है कि आखिरकार जहां जहां ये ग्लेशियर फटा है और उसके बाद ये जो पूरा का पूरा मलबा इस नदी के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें कई सारे ऐसे इलाके हैं जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं जहां पर पूरे एक रिहायशी इलाके को इसने अपनी चपेट में लिया है। यही वजह बताया जा रहा है कि कई पुलिस चौकियां इसकी चपेट में आई हैं, कई वाहन बह गए हैं, कितने लोग इसमें बह गए हैं ये भी अभी आकलन कर पाना मुश्किल है। फिलहाल बिहार में भी इसके चलते हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन नेपाल में कहां कहां तबाही हुई है ये हम आपको दिखा रहे हैं। टिमुरे बाजार, रसुबा क्षेत्र, रसुवागढ़ी, ये वो क्षेत्र हैं जिनको इस प्रलय ने अपनी चपेट में लिया है। तो नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद अब बिहार सरकार अलर्ट मोड पर है। गंडक नदी में फ्लैश फ्लड का अलर्ट है। 6 जिलों में बिहार में सतर्कता बढ़ा दी गई है। फ्लैश फ्लड की स्थिति को देखते हुए बिहार में अलर्ट है और गंडक नदी में अचानक पानी बढ़ने और करीब 3 मीटर तक ऊंची फ्लैश फ्लड के खतरे की आशंका जताई गई है। इसे देखते हुए पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सारण और वैशाली में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है। किसी भी हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ टीमें अलर्ट मोड पर हैं। केंद्र सरकार ने इसे लेकर भारत नेपाल सीमा के पास गंडक नदी के किनारे स्थित बिहार और उत्तर प्रदेश के स्थानीय अधिकारियों को सतर्क रहने और स्थिति पर बारीकी से नजर रखने की सलाह दी है। केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने यह अलर्ट जारी किया है। वहीं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि नेपाल संकट को लेकर हालात पर नजर है। बिहार के मुख्य सचिव और डीजीपी इसको रिव्यू कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि जरूरत पड़ेगी तो वो वाल्मीकि नगर जाएंगे। नेपाल में आई आपदा के बाद बिहार सरकार हाई लेवल टीम का गठन कर रही है। इस बात का भी खतरा मंडरा रहा है कि अब बाढ़ का पानी गंडक नदी में आगे की ओर बढ़ेगा और ज्यादा तबाही मचा सकता है।
4: एकदम उस पर पूरी तरह हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूं। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि नगर जाऊंगा।
0: शशि भूषण में सहयोगी जुड़ गए इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। शशि भूषण, सम्राट चौधरी आश्वासन तो दे रहे हैं कि अलर्ट मोड पर है, जरूरी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं, लेकिन जिस तरीके से इस बाढ़ का वेग आगे की ओर बढ़ रहा है, कौन कौन से वो बिहार के इलाके हैं जो उसकी चपेट में आ सकते हैं, क्योंकि यही वो महीना है, यही वो सीजन है जब अधिकांश तौर पर बिहार बाढ़ का सामना करता है और इस बार तो और ज्यादा चैलेंज है क्योंकि ऊपर से ये पानी आ रहा है नेपाल से।
5: बिल्कुल सही कहा आपने नेहा। और देखिए पिछले दफे जितने मतलब हर साल जो आप चर्चा कर रही हैं, दर्शक भी जानते हैं कि बाढ़ बिहार में जो आती है वो नेपाल की नदियों की वजह से आती है, लेकिन ये बाढ़ जो है वो एक फ्लैश फ्लड वाली स्थिति है क्योंकि ग्लोफ की स्थिति वहां बनी, ग्लेशियर टूटा, ग्लेशियर टूटने के बाद बड़ी तादाद में पानी नीचे की तरफ आ रहा है और यही वजह है कि जो त्रिशूल नदी से पानी बिहार में इंटर करेगा, त्रिशूल नदी से होते हुए नारायणी नदी जो नेपाल में नारायणी नदी है वहां पहुंचेगा और वहां से नारायणी नदी।
0: ठीक है, मैं रोकूंगी आपको। नेपाल से ज्वाइंट सेक्रेटरी आनंद काफले जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। इस पर क्या जानकारी देंगे, ये जो फ्लैश फ्लड आया है कौन कौन से इलाके इसकी चपेट में है और मरने वालों का आंकड़ा क्या है और जो 105 भारतीय टूरिस्ट है उनके बारे में क्या जानकारी है?
6: नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ कि जो जब सवेरे में ये घटना हुआ है, इसके बाद नेपाल के रसुवा, नुवाकोट और धादिंग में जो इसके क्षति हो गया है और हमें हमने जो जो क्षेत्र है वो क्षेत्र में एसएमएस माइकिंग और रिंग बैक टोन कॉल बैक टोन और सोशल मीडिया से इंफॉर्मेशन संप्रेषण कर रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर के जो नेतृत्व में बैठक भी बसी थी विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद का बैठक भी हुआ है और कैबिनेट का बैठक भी हुआ है। इसके बाद जो नेपाली सेना है नेपाल प्रहरी है सशस्त्र प्रहरी का जो हेल्थ सहित का जो टीम है वो टीम भी नुआकोट में जो हॉस्पिटल है वो हॉस्पिटल में है और जो प्राइवेट सेक्टर और नेपाली सेना का जो हेलीकॉप्टर है वो हेलीकॉप्टर से सब रेस्क्यू का काम चल रहा है। अभी मैं रेस्क्यू में फोकस्ड हूँ और जो जो जो मिसिंग टूरिस्ट है उसके भी जो इन्फॉर्मेशन पा रहा हूँ उसके इसके बाद जो हेलीकॉप्टर और इन्फॉर्मेशन जो हमारा सीडीओ कार्यालय से आ रहा है उसके थ्रू से रेस्क्यू का काम चल रहा है। अभी मुझे एक्चुअल डाटा अभी मुझे मालूम नहीं है।
0: आनंद जी इसके साथ ही आगे जो जहां पर ये फ्लैश फ्लड बढ़ेगा क्या उन इलाकों के लिए भी अब अलर्ट जारी किया गया है वहां पर कैसे सतर्कता बरती जाएगी क्योंकि ये तो आगे की ओर बढ़ रहा है आगे भारत में उत्तर प्रदेश और बिहार तक पहुंचेगा लेकिन नेपाल के रसवा इलाके की ये घटना है जहां पर इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है लेकिन हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि हो सकता है इंतजाम भी नाकाफी पड़ जाए। ये दरअसल एरियल जो आप तस्वीरें देख रहे हैं इससे भी अंदाजा लगाना संभव है कि किस कदर किस स्पीड से ये फ्लैश फ्लड आगे की ओर बढ़ा और जो तमाम इलाके थे इसकी चपेट में आ गए। शशि भूषण मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ सीधे बिहार पटना से। लेकिन शशि जिस पर आप फोकस रख रहे थे कि इस बार तो ये फ्लैश फ्लड है ग्लेशियर फटा है उसके बाद पानी नीचे की ओर आया है और अब नेपाल के रास्ते बिहार में दाखिल होगा कहां कहां पर इस वक्त पहले से ही एनडीआरएफ की तैनाती और तमाम जो एजेंसियां हैं वो इस वक्त अलर्ट पर है।
5: देखिए नेहा जैसा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खुद भी थोड़ी देर पहले हमसे बातचीत में कहा कि सरकार अलर्ट में है और एक हाई लेवल कमेटी गठित कर दी गई है राज्य के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और बिहार के जो डीजीपी हैं विनय कुमार वो इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसमें जल संसाधन विभाग के अधिकारी हैं जो टॉप अधिकारी हैं वो हैं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी हैं और छह वे जिले जो काफी महत्वपूर्ण हैं उन जिलों के डीएम और उन इलाकों के कमिश्नर एसपी एसएसपी जो भी हैं बड़े अधिकारी प्रशासनिक उनको लगाया गया है। एक बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहूंगा जो नेपाल से आम दिनों में बाढ़ का पानी आता है वो गंडक और कोसी दोनों जगहों पर तबाही मचाता है बिहार में बाढ़ की विभीषिका दिखाता है लेकिन इस बार मामला बिल्कुल अलग है। इस बार त्रिशूली नदी में जो पानी आ रहा है ऊपर ग्लोफ की स्थिति बनने के कारण जो फ्लश फ्लड है उसकी स्थिति की वजह से वो पानी आगे आकर के नेपाल की नारायणी नदी में जुड़ेगा और वही नारायणी नदी जब बिहार में प्रवेश करती है भारतीय सीमा में वाल्मीकि नगर से तो वो नदी गंडक बन जाती है मतलब नारायणी नदी का ही नाम गंडक हो जाता है। तो गंडक के प्रभाव वाले छह जिले जो सीधे सीधे हैं वो जिसमें सबसे पहला इसका अगर कोई सामना करेगा इस पूरी विभीषिका का अगर वैसी स्थिति बनती है तो वो होगा पश्चिम चंपारण जिला जो वाल्मीकि नगर जिसके अंदर आता है बगहा आता है साथ ही साथ जो दूसरे जिले हैं वो हैं उसके बाद वो पूरा स्ट्रेच मुजफ्फरपुर होते हुए वो पूरा स्ट्रेच आ जाता है सारण होते हुए गोपालगंज होते हुए सोनपुर तक मतलब आप देखिए पटना के करीब तक गंडक बहती है तो वो स्थिति है। साथ में दो और जिले भी विशेष सतर्कता में रखे गए हैं सीतामढ़ी और शिवहर को वहां भी कई छोटी नदियों में गंडक का पानी जाता है तो वहां भी अलर्ट रखा गया है। इन आठ जिलों को विशेष सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। बेतिया में जो बेतिया है पश्चिम चंपारण है जहां वाल्मीकि नगर बराज है वहां एनडीआरएफ की टीम को तैनात कर दिया गया है। मुजफ्फरपुर में टीम को तैनात किया गया है दूसरे जगहों पर स्टैंड बाई रखा गया है टीम को और कोशिश सरकार की यही है कि हर स्थिति पर नियंत्रण पाया जाए। हम चाहेंगे अगर हम सुनवा सकें चूंकि अभी बयान आया है बिहार के डिप्टी सीएम और जो जल संसाधन मंत्री भी हैं बिहार के विजय कुमार चौधरी उनका अगर वो बयान हम सुनवा सकें अभी बयान आया है उनका उसमें उन्होंने कहा है कि अगले पांच से छह घंटे या आज ये पूरी रात कहिए, वो बिहार के लिए उन छह जिलों के लिए खास तौर पे बहुत महत्वपूर्ण है जिन जिलों में गंडक का पानी फैलता है या गंडक का पानी आता है। दूसरी बात उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कही है कि अगले दो तीन घंटे में पानी का असर दिखने लगेगा बिहार की सीमा पे, नेपाल की सीमा पे। और सबसे अहम बात उन्होंने जो कही है, अभी जो गंडक बराज में पानी का डिस्चार्ज आकलन होता है वो 80,000 क्यूसेक है, तो अब अभी आंकड़ा बिल्कुल कम है, सबसे मिनिमम लेवल आप मानिए इस मौसम के लिहाज से जो मानसून का मौसम है। जब 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख क्यूसेक पानी जाता है, हमने वहां ग्राउंड रिपोर्ट करी है, तब जाकर के वो पानी गंडक के निचले इलाकों में फैलता है। और सबसे बड़ी विभीषिका क्या होती है नेहा, दर्शकों को समझना चाहिए, पहाड़ पे जब फ्लैश फ्लड आता है या पहाड़ पे जब पानी है तो पानी वहां रुकता नहीं है, पानी वहां से तेजी के साथ नीचे आता है, तबाही के साथ आता है, पेड़ घर जो भी चीजों को तोड़ते हुए नीचे आता है। लेकिन बिहार में पहाड़ नहीं है जहां से इंटर करती है, बिहार में नारायणी नदी गंडक बनती है, उसके बाद समतल इलाका है, तो उस पूरे इलाके में जो रिहायशी इलाके हैं, जो निचले इलाके हैं गंडक के प्रभाव वाले, उसमें आकर के पानी स्थिर हो जाता है, जम जाता है, फैलता है और वहीं पर बाढ़ की विभीषिका नजर आती है और वो पानी जमा रहता है महीनों तक भी कई बार। तो उस स्थिति के लिए बिहार को तैयार करना है और बिहार उसके लिए शायद बिहार सरकार तैयारी भी उस स्तर पे अब लग गई है। पिछले 3-4 घंटों में हमने जो तैयारी देखी है सरकार की उसके स्तर पे हम ये कह सकते हैं। जी
0: इसके अलावा शशि भूषण, बिहार में तो अलर्ट है ही, पिछली बार से ज्यादा इस बार संभावना है कि वहां पर बाढ़ तबाही मचा सकती है इस फ्लैश फ्लड के चलते। खास तौर पर जिस तरीके से सीएम सम्राट चौधरी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो मैं आला लेवल के अधिकारियों को वहां पर भेजूंगा, खुद भी वहां पर पहुंचूंगा। कितने घंटे में ये माना जाए कि इसका असर वहां बिहार में दिखने लगेगा, खास तौर पर जिन इलाकों की आप बात कर रहे थे, गंडक नदी की आप बात कर रहे थे, वहां पर कब तक असर?
5: देखिए, अगर पानी का असर की आप बात कर रही हैं तो जो विजय चौधरी हैं जल संसाधन मंत्री, उनके मुताबिक अगले 2 से 3 घंटों में वो असर दिखने लगेगा। आज की रात उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बताया है बिहार के उन जिलों के लिहाज से जहां गंडक का फैलाव है या गंडक जहां प्रभाव रखती है गंडक नदी, चूंकि इसी में पानी आना है, कोसी में कोई पानी नहीं आया है, ये बात वो स्पष्ट कर चुके हैं। अब रही बात की सरकार ने क्या तैयारी की है, सरकार ने, जल संसाधन विभाग ने अपने सभी अधिकारियों की, सभी इंजीनियर्स की, चाहे वो कनीय अभियंता हो, जूनियर इंजीनियर हो, या फिर अधीक्षण अभियंता हो, या फिर ऊपर के जो चीफ इंजीनियर लेवल के लोग हैं, सबकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। सबको कहा गया है तटबंधों की मॉनिटरिंग करिए, कहीं कोई लीकेज हो तो उसको देखिए, कहीं कोई मरम्मती करने की जरूरत है तो वो सब कुछ हो चुका है तो भी आप बने रहिए। साथ ही साथ डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन विभाग के भी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं इन जिलों में। और इसके अलावा जो एनडीआरएफ है उसको हाई अलर्ट पर रखा गया है। अभी थोड़े ही देर पहले पटना में नित्यानंद राय जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, उन्होंने कहा है कि एनडीआरएफ और बाकी जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो बिहार में इस खतरे को भांपते, और बिहार ही नहीं उत्तर प्रदेश पे भी इसका असर जा सकता है। क्योंकि आप देखिए, आप जब पश्चिम चंपारण की बात करते हैं हम लोग नेहा, तो पश्चिम चंपारण से सटा हुआ जो है ना वो कुशीनगर जिला है बगल में उत्तर प्रदेश का, तो वो बिल्कुल एक ऐसी स्थिति है जहां भारत के सीमा के शुरुआत होते के साथ ही उत्तर प्रदेश भी है और वहीं पर बिहार भी है, तो वहां पर वो पूरा डायमेंशन, और हम लोगों ने देखा है वहां पर

0: होती है, जब बाढ़ आती है तो विभीषिका लेकर के आती है और जाती है तो कटाव का दंश देकर के जाती है। ये भी हम देखते हैं, घटता हुआ पानी कटाव देता है तटबंधों पर, किनारों पर। तो अब सूरत क्या होने वाली है अगले 6 घंटों में, वो जब पानी का फ्लो आएगा तो पता चलेगा। लेकिन हाँ, ये एक ऐसी स्थिति है जिस स्थिति की कल्पना किसी ने नहीं की थी, ना नेपाल सरकार ने, बिहार सरकार भी इसके लिए तैयार नहीं थी। बिहार सरकार, एक जो सामान्य बाढ़ होती है बिहार में हर साल जो आती है नेपाल की नदियों की वजह से, उसकी तैयारी करके चलती है हर साल। यहाँ पर जो तटबंधों की मरम्मति और बाकी काम होते हैं, तो वो तैयारी तो पहले से थी। नया
1: इसके साथ ही शशि भूषण, काफी संख्या में पर्यटक भी पहुंचते हैं बिहार से नेपाल, वहां पर टूरिज्म में बिहार और उत्तर प्रदेश जो सटे हुए इलाके हैं वहां के काफी पर्यटक आते हैं। क्या अभी तक जानकारी मिली है कि बिहार के कितने लोग वहां पर पहुंचे थे, कितने लापता हैं, कोई जानकारी इस तरह की?
0: देखिये, बिहार के स्पेसिफिक तो बता हम नहीं सकते हैं, चूंकि एक थोड़ी सी राहत की खबर ये रही है कि जो पूरा ये पूरी आपदा आई है ना, वो आपदा काठमांडू वाले रास्ते में नहीं आई है। मतलब काठमांडू के रास्ता, बिहार से काठमांडू पहुंचने के कई रास्ते हैं, उस रास्ते में, जिस रास्ते में ये पूरा मतलब पूरी आपदा का प्रभाव है, उस रास्ते से भी लोग जाते हैं। आप देखिए, बिहार के वाल्मीकि नगर से आप जब प्रवेश करेंगे तो त्रिवेणी प्रवेश करेंगे, वहां से चितवन मुंगलिंग होते हुए आप काठमांडू तक जाते हैं, लेकिन दूसरे रास्ते हैं और दूसरे रास्तों से ज्यादा लोग जाते हैं। तो स्पेसिफिक तौर पे नहीं कहा सकता है कि कितने टूरिस्ट प्रभावित हुए हैं, लेकिन हाँ, एक बात है कि 100 से ज्यादा जो टूरिस्ट हैं बिहार के, वो वहां फंसे हुए हैं, ये बात या उनको लेकर के जो आशंका है वो बताई
1: है। थोड़ी देर बाद स्थिति स्पष्ट हो सकती है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। इसी के साथ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
5: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
6: सोच बदलो और बैंक भी।

यहाँ H1N1 इन्फ्लुएंजा के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब तक दिल्ली में H1N1 के 2000 मामले सामने आए हैं और स्थिति चिंताजनक है, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने अहम बैठक भी बुलाई। उधर हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अस्पतालों में स्पेशल वार्ड बनाए गए हैं जहां स्वाइन फ्लू वायरस से पीड़ित मरीज का इलाज किया जा सके। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक स्वाइन फ्लू एक वायरल संक्रमण है जो संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने और नजदीकी संपर्क में आने से फैलता है और जल्द ही इसके लक्षण भी नजर आने लगते हैं। यूं तो मौसम में बदलाव के साथ बुखार, खांसी, गले में खराश, सिर दर्द और शरीर में दर्द जैसी समस्याएं होना आम है। अक्सर लोग इन लक्षणों को सामान्य वायरल संक्रमण या मौसम का असर मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। हालांकि अगर ये लक्षण लगातार बने रहें, बढ़ने लगें या स्वास्थ्य में सुधार न हो तो सावधानी बरतना जरूरी है। ऐसे लक्षण स्वाइन फ्लू यानी H1N1 संक्रमण में भी दिखाई दे सकते हैं। कोलकाता और बेंगलुरु जैसे शहरों में भी हाल के दिनों में मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने बढ़ते स्वाइन फ्लू मामलों के मद्देनजर दिल्ली और देश में स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक कर चुके हैं। साथ ही कई राज्यों में भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं। आज तक ब्यूरो।

राजधानी दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में स्वाइन फ्लू के मामलों में इजाफा हुआ तो सरकार की चिंता भी बढ़ गई। एहतियाती कदम उठाए जाने लगे, एडवाइजरी जारी की गई, उच्च स्तरीय बैठकों का दौर शुरू हो गया। बात अगर राजधानी दिल्ली की करें तो बीते कुछ दिनों

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

बंगाल में ग्लेशियर फटने से भारी तबाही, बस्ती और पुलिस चौकियां बह गई, 8 की मौत, भारत के 105 पर्यटक लापता। डूबते गुरुग्राम पर मुख्यमंत्री सैनी मौन, आज तक के सवाल पर साधी चुप्पी, सुरक्षा कर्मियों ने हटाया माइक, बिना बोले निकले हरियाणा के मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश में आधी आबादी को लुभाने की होड़, योगी सरकार देगी फ्री बस सफर और 50,000 स्कूटी, समाजवादी पार्टी का 40,000 रुपए का दांव। रेखा गुप्ता सरकार की बड़ी सौगात, दिल्ली में लक्ष्मी योजना का शुभारंभ, सीएम बोली जो वादा किया वो निभा दिया, हर महीने मिलेंगे 2500 रुपए।

0: सैनन के पहनावे पर सवाल।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकु।
0: नमस्कार, आप देख रहे हैं रणभूमि, मैं हूं गौरव सावंत। बड़ी खबर इस समय नेपाल से आ रही है, बेहद खौफनाक तस्वीरें। बड़ी खबर, नेपाल में कुदरती आपदा ने न केवल नेपाल में तबाही मचाई है बल्कि भारत में बिहार और उत्तर प्रदेश में खतरे का रेड अलर्ट इस समय बज रहा है। दरअसल नेपाल का जो रसुआ जिला है उसमें नेपाल और तिब्बत की सीमा के पास अचानक एक GLOF यानी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, ये बहुत बड़ी घटना है। GLOF ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की वजह से भोटेकोशी और त्रिशूली नदियां, उनमें जबरदस्त तूफान है। आप इन तस्वीरों को देखिए, ये नदियां जबरदस्त उफान के साथ लगभग बेकाबू इस समय बह रही है। नेपाल की पुलिस ने चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि जो जानकारी वहां तिब्बत की तरफ से आ रही है, चीन की सरकार की तरफ से जो तिब्बत आ रही है, उसके मुताबिक जहां नदी पहले रुकी हुई थी वहां बहुत बड़ी झील बन गई और पूरी तरह से पानी खाली नहीं हुआ, यानी भोटेकोशी और त्रिशूली नदियों के आसपास महा खतरा इस समय मंडरा रहा है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये एक तरह से प्रलय की, प्रलय जिस तरह से उस पूरे क्षेत्र में अब इस उफान की वजह से आया है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस जल प्रलय की चपेट में आकर अभी जो खबर आ रही है, लगभग 384 लोग लापता बताए जा रहे हैं, इसमें 105 भारतीय पर्यटक हैं। नेपाल टूरिज्म बोर्ड ने ये शुरुआती आंकड़े जारी किए हैं। नेपाल टूरिज्म बोर्ड के मुताबिक 291 विदेशी नागरिक इस समय लापता है, 93 नेपाली नागरिक इस समय लापता है। और आप देख सकते हैं कितनी तेज एकाएक पानी आया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये CCTV कैमरे में कैद हुई तस्वीरें, एक तरह से जल प्रलय की तरह बाढ़ सी आ गई और इस समय लगभग 300 लोग लापता बताए जा रहे हैं। जो खबर आ रही है उसके मुताबिक भारतीय पर्यटकों में जो 59 पर्यटक हैं वो सम्राट टूर एंड ट्रेवल्स और 46 लीफ हॉलिडे के जरिए इस समय यात्रा कर रहे थे, ये प्रारंभिक जानकारी आई है। तो जो पानी का महाविकराल रूप है, ये पानी का महाविकराल रूप हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, ये तिब्बत की सीमा में, नेपाल से जब आप तिब्बत की सीमा में प्रवेश करते हैं तो ये वहां की तस्वीर है। और यहां आप देख सकते हैं कि एकाएक कितना ज्यादा पानी आया, ऐसा पानी आया कि कुछ और नजर ही नहीं आ रहा था। वो पूरी की पूरी इमारत, इमारत के आसपास का इलाका, सड़क, बिल्डिंग्स, आप ये देखिए सीसीटीवी कैमरे के सामने केवल पानी। ये देखिए, ये एक और तस्वीर आप देखिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, और ये वो जो वहां लगभग 17 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, वहां पर कहीं पानी को रोका जाता है। लेकिन इस ब्रिज को देखेगा, ये ब्रिज आप देखिए कैसे एकाएक इतना तेज पानी आया कि ना केवल आसपास के घर बल्कि पहले पानी का स्तर नीचे था, एकाएक जो जल प्रलय आई उसमें पानी का स्तर बढ़ने लगा, ब्रिज तक पानी पहुंचा। और अब आप देखिएगा इस तस्वीर में कैसे वो ब्रिज को भी लपेट लेता है। बड़ी खबर, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बात की है। नेपाल से आई तबाही पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेपाल इस समय बिहार के मुख्यमंत्री से बात की है। बिहार के कम से कम 6 से 7 ऐसे जिले हैं जिनको अलर्ट पर रखा गया है। कहा यह जा रहा है बेतिया की बात करें या गंडक बराज की बात करें, इन सभी इलाकों पर पैनी निगाह इस समय रखी जा रही है। और इस समय हितेंद्र पाल सिंह, कमांडेंट NDRF हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आप हमें क्या बता सकते हैं, आपको क्या अलर्ट जारी किया गया है, जमीनी स्थिति इस समय क्या है?
3: नेपाल में जो सिचुएशन है उसके लिए ये जो यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक भी रिव्यू मीटिंग ली थी और जो इसमें हमारे को भी जो दो एक्स्ट्रा टीम्स पहले से हमारी कुछ टीम्स डिप्लॉयड है नॉर्थ बंगाल बिहार में प्री मॉनसून डिप्लॉयमेंट जिसे हम बोलते हैं और उसमें दो एडिशनल टीम्स हमने भेजी है, एक भेजी है वेस्ट चंपारण में और दूसरी भेजी है मुजफ्फरपुर में। और इसके सिवा भी हमें अलर्ट रखने के लिए बोला गया है कि अगर कोई सिचुएशन बनती है तो हम जो हमारे बाकी रिसोर्सेज है उसको भी तैयार रखें।
0: सर आपका असेसमेंट क्या है, जो ओवरऑल इस समय असेसमेंट किया गया है, क्या स्थिति भारत में बिहार में बिगड़ सकती है और अगर बिगड़ सकती है तो क्या आपको एडिशनल टीम्स की रिक्वायरमेंट होगी?
3: अभी तक जो अनुमान है कि जो जो पानी की जो फ्लड की इनंडेशन सिचुएशन जो नेपाल में है वो जब वो पानी भारत में आएगा गंडक बराज के बाद तो यहाँ भी चांसेस है कि इनंडेशन हो सकती है, जिसके लिए कि हमारे को कहा गया है कि जो हमारे जो जो दो टीमें हमने भेजी हैं उसके सिवा भी हम बाकी टीमें तैयार रखने के लिए हमें कहा गया है। तो अभी तक यही सिचुएशन है, बाकी एडिशनल टीम्स की क्या रिक्वायरमेंट होगी वो अभी तो नहीं कहा जा सकता।
0: जी किन किन इलाकों में इस समय बिल्कुल रेड अलर्ट है या वहां के लोगों से क्या कहा जा रहा है, बिहार के किन इलाकों में लोग सतर्क रहे और क्या करें आप आपकी असेसमेंट में?
3: नॉर्थ बिहार में और गंडक बैराज उससे जो उसका डाउन फ्लो है उसमें ज्यादा चांसेस हैं, जो ये नॉर्थ बिहार के इलाके जो वेस्ट चंपारण में उसके बाद जो गंडक नदी का जो फर्दर कोर्स है उसके अलोंग और नॉर्थ बिहार में इन पर्टिकुलर और बाकी जो ये जहां भी ये फर्दर पानी जाएगा उस इलाके में सभी जगह अलर्ट रहने के लिए बोला गया है लोगों को।
0: जी और अलर्ट के मायने आम नागरिकों के लिए क्या वो नदी के पास के इलाके में न रहे, क्या क्या एहतियात लोग बरते और कब तक इस स्थिति के बारे में और क्लैरिटी आ सकती है भारत में, क्योंकि नेपाल की स्थिति तो बहुत डरावनी इस समय लग रही है सर?
3: अलर्ट होने का मतलब यही है कि अपने जितने भी उनके सूचना के जो डिफरेंट माध्यम है उस पर नजर रखें। गवर्नमेंट कई तरह की एडवाइजरी जारी करती है, उसके काफी सारे सोर्सेज हैं, जैसे जो हमारे कॉमन सोर्सेज हैं जो जो नॉर्मल टेलीविजन रेडियो, इसके सिवा व्हाट्सएप पे या बाकी टेलीफोन पे और भी कई एप्लीकेशन हैं जिनमें की अलर्ट जारी किया जाता है। तो नागरिकों को नंबर वन तो ये है कि पानी के नजदीक जहां तक हो सके ना जाएं और जो लोकल प्रशासन के लोग जो अगर उनको किसी इलाके में जो भी निर्देश देते हैं उनका पालन करें और अपने को इस तरह से तैयार रखें कि अगर उनको शिफ्ट कहीं होना पड़े तो उसके लिए भी वो तैयार रहें।
0: जी और जो आपका असेसमेंट है ये कॉन्टैक्ट कब तक, मतलब कब तक वो गंडक बराज में पानी का जलस्तर बढ़ सकता है या डाउनफ्लो बढ़ सकता है, कितना समय इसमें और लग सकता है?
3: इसमें ये आज रात किसी वक्त हो सकता है,
0: आज रात किसी भी वक्त।
3: जी
0: तो मतलब अभी 6 से 8 घंटे हैं लोगों के पास सुरक्षित स्थान पर वो जाएं और खासतौर पर नदी के आसपास का जो इलाका है। आप आज तक पर मेरे साथ जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। कोसी गंडक गंगा से सटे इलाके जो हैं उसमें एक अलर्ट है, गंडक बराज पर निगरानी इस समय रखी जा रही है, लेकिन ये डाउनस्ट्रीम यानी जो नदी का बहाव भारत में आने के बाद जो स्थिति है उसकी तैयारी अभी से की जा रही है। सुजीत झा मेरे सहयोगी पटना से और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सुजीत, केंद्रीय गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री से बात की, जो रिव्यू मीटिंग हुई है उससे सुजीत क्या निकल कर आ रहा है?
4: देखिए अब जिस तरीके का दृश्य आ रहा है, जिस तरह का वीडियो हम लोग देख रहे हैं नेपाल से, मुझे नहीं लगता है कि अभी तक इस तरह का दृश्य कभी किसी ने देखा होगा। करीब 25-30 फुट ऊपर पानी आ रहा है और उतना पानी को एडजस्ट करना, रिव्यू मीटिंग ठीक है लेकिन जिस तरह की प्राकृतिक आपदा है ये, निश्चित तौर पर ये काफी अलार्मिंग है, बहुत ही ज्यादा अलार्मिंग है और इसको इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। तैयारी कितनी कर पाएंगे ये करना मुश्किल है। अगर सारा पानी अगर आ रहा है, त्रिशूली नदी जो कि मुंगलिंग के बाद ऐसा पता चल रहा है कि पानी जो है त्रिशूली नदी में आ चुका है और मुंगलिंग जो है मुंगलिंग से वो भारत की तरफ बढ़ रहा है और ये मुंगलिंग के बाद ये नदी हो जाती है नारायणी जिसका नाम होता है और नारायणी आती है यहाँ पर वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि नगर के बाद ये नदी गंडक नदी के नाम से जानी जाती है, तो उसी में ये पानी सारा आ रहा है। निश्चित तौर पर भारी दबाव तटबंधों पर पड़ेगा, क्योंकि पहले से ही मैं बता दूं आपको कि गंडक में गंडक उफान पर है और कई जगहों पर गोपालगंज हो, मोतिहारी हो, पूर्वी चंपारण हो, पश्चिमी चंपारण हो, कई जगहों पर वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। और ऐसे में अगर इतना पानी आ रहा है तो एडजस्ट कैसे होगा? और एक बात और इसमें कहना बड़ा ये होगा, अगर पानी का डिस्चार्ज जो होता है, जो गंडक नदी का डिस्चार्ज है, वो गंगा नदी में होता है।
0: और ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। सुजीत रहिए मेरे साथ। जितेंद्र बहादुर सिंह इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने बिहार के मुख्यमंत्री से बात की। गृह मंत्री को जो असेसमेंट मिल रहा है, नेपाल से जो जानकारी आ रही है और भारत में जो तैयारियां हैं, गृह मंत्रालय किस तरह एनडीआरएफ की टीम्स को डायरेक्ट कर रहा है इस समय?
5: देखिए गौरव, केंद्रीय अमित शाह ने
0: रहिए मेरे साथ। 16 लोगों की जान जा चुकी है नेपाल की तबाही में, अब तक ये जानकारी सामने आ रही है। 300 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिसमें 105 भारत के पर्यटक हैं। नेपाल में तबाही से 16 लोगों की जान गई, ये जानकारी इस समय आ रही है। ये तस्वीरें बेहद खौफनाक है, बेहद भयावह है। ये तस्वीरें जो आप GLOF ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट और उसके बाद जो ओवरफ्लो हुआ है, जबरदस्त ग्लेशियर से जो लेक जो बन जाती है और एकाएक जब वो अपने तटबंध को तोड़ते हुए बहुत तेजी से पहाड़ों में बहना शुरू करती है, तो जो उसमें वेग होता है, उस वेग से नदी बहती आ रही है और जो उसके मार्ग में आ रहा है उसको बिल्कुल नष्ट करते हुए नदी आगे बढ़ रही है। जितेंद्र, आप हमें बता रहे थे कि गृह मंत्रालय का इस समय क्या असेसमेंट है, उनका क्या आकलन है?
5: देखिए, गृह मंत्री ने बिहार के मुख्यमंत्री से बातचीत किया है और पूरी जानकारी ली है। खासतौर पर कोसी, गंडक और गंगा के किनारे के जो 6 महत्वपूर्ण जिले हैं उनको लेकर के जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री से लिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से वाटर फ्लो वहां से आ रहा है, जानकारी ये मिल रही है कि आज रात तक उसका जो वाटर लेवल है नदियों का, वो काफी ज्यादा हो सकता है। इस वजह से तटवर्ती इलाके जो नदियों के हैं, कोसी, गंगा और इसके साथ साथ गंडक के, वहां पर एनडीआरएफ का डिप्लॉयमेंट कैसे करना है, राज्य सरकार की एसडीआरएफ के साथ मिलकर के केंद्र सरकार की तरफ से एनडीआरएफ को भी मोबिलाइज किया गया है, जो बिहार, पटना और इसके साथ साथ जो दूसरे जिलों में एनडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं उनको मोबिलाइज किया गया है। इसके साथ ही जो मंत्रालय लगातार मॉनिटर कर रहा है कि किस तरीके की सिचुएशन बनती है, क्योंकि वाटर फ्लो जितना ज्यादा है उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि तटवर्ती इलाकों में दिक्कत हो सकती है। इस वजह से तमाम एजेंसियों को अलर्ट मोड में रखा गया और कहा गया है कि 24/7 हर एक जगह पर निगरानी रखी जाए।
0: वैसे तो ये जानकारी विदेश मंत्रालय से संभवतः थोड़ी देर में मिलेगी, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें हैं, नेपाल को भी मदद की आवश्यकता होगी। और क्या भारत की टीमें इस समय स्टैंड बाय पे तैयार की जा रही हैं? पिछली बार जब नेपाल में बहुत जबरदस्त भूकंप आया था और उस समय भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, अन्य सुरक्षा बल, भारत के हेलीकॉप्टर्स और विमान, ये बहुत तेजी से इन्हें उस समय भेजा गया था। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं, आप इन तस्वीरों को देखिए, ये बहुत ही खौफनाक तस्वीर है। जैसे इस तस्वीर को आप देखिए, जब नदी में पानी बहा तो पूरा का पूरा ये ब्रिज बहता हुआ चला गया। और इस तरह की तस्वीरें, आसपास के इलाकों में ये घर अब खाली कराए जा रहे हैं। देखिए इस तस्वीर को एक बार गौर से देखिए, एकाएक जब पानी का बहाव आया तो पहले निचला बहाव था, फिर एकाएक जल स्तर बढ़ता गया और जिस वेग के साथ पानी आ रहा है, जिस गति के साथ पानी आ रहा था, लोहे का इतना शक्तिशाली ब्रिज, वो पूरा का पूरा ब्रिज तिनके की तरह बह गया। और तस्वीरें और भयावह है, खासतौर पर सीमावर्ती इलाकों में। ये तस्वीरें आप देखिए। एक और बड़ी खबर नेपाल से इसी वक्त आ रही है। लगभग 400 विदेशी पर्यटक इस समय लापता है। 105 की जानकारी उस समय भारतीयों की थी। 400 विदेशी पर्यटक, जिसमें 105 भारतीय पर्यटक हैं, वो लापता बताए जा रहे हैं। और ये एक ऐसा समय है जब बड़ी संख्या में पर्यटक भी इस क्षेत्र में जाते हैं, श्रद्धालु भी इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में होते हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, क्या ये बड़ा आंकड़ा भी इस समय हम लोग के पास है, जो पर्यटक जो श्रद्धालु इस समय नेपाल में है उनकी स्थिति के बारे में भारत सरकार को कोई जानकारी मिल पाई है नेपाल से?
5: देखिए, भारत सरकार लगातार जो है वो नेपाल सरकार से संपर्क में है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके का फ्लैश फ्लड आया है, जो तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं, उसमें ये पता चल रहा है कि जो वाटर फ्लो है वो बहुत तेजी से नदियों के रास्ते होते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है, जिसमें कई ऐसे इलाके हैं जहां पर विदेशी पर्यटक गए हुए थे, उनके बारे में जानकारी मिल रही है कि वो उसमें लापता हैं, और इसका आंकड़ा काफी ज्यादा हो सकता है। इस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं। भारत सरकार लगातार संपर्क में है। जहां तक बात करें केंद्रीय गृह मंत्रालय की, एनडीआरएफ को पूरी तरीके से मोबिलाइज किया है कि जो बिहार में या फिर अन्य जिलों में एनडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं, उनको तटवर्ती इलाकों में, भारत में जो 6 जिले हैं जहां पर अलर्ट मोड में रखा गया है, कोसी गंडक और गंगा का पानी जिन इलाकों में आता है, वहां पर पूरी तरीके से मोबिलाइज किया गया। और सबसे ज्यादा जो स्थिति दिखाई पड़ रही है नेपाल के अंदर, वो सबसे खतरनाक स्थिति हो सकती है। हमने एनडीआरएफ के अधिकारियों से जो बातचीत किया है, उनको भी अलर्ट मोड में रखा गया, क्योंकि भारत हमेशा से जो पड़ोसी देश है उनकी सहायता करने के लिए तत्पर रहता, और ऐसी स्थिति में भारत की जो एनडीआरएफ की टीमें, इसके साथ साथ आर्मी और जो दूसरी टीमें हैं, उनको भी अलर्ट मोड पर रखा गया है, और हो सकता है कि जल्द से जल्द उनको वहां पर रवाना किया जाए। स्थिति काफी गंभीर है, इस वजह से तमाम एजेंसियां भारत की जो है वो कोऑर्डिनेटेड अप्रोच से काम कर रहे हैं।
0: बिल्कुल, क्योंकि भारत के पास इसका अनुभव भी है, और नेपाल की मदद भारत पहले भी कर चुका है जब एक जबरदस्त भूकंप आया था नेपाल में। लेकिन ये जो प्राकृतिक आपदा है, ये बेहद बेहद खौफनाक तस्वीरें जो तिब्बत और नेपाल की सीमा से आ रहे हैं, वहां पर GLOF एक ग्लेशियर लेक का ओवरफ्लो, जो आउटबर्स्ट था, यानी अपने बैंक को तोड़ती हुई जो नदी निकली, जो पानी निकला इतने वेग के साथ कि अपने आगोश में जो जो आया उसको लीलता हुआ ये पानी आगे बढ़ता जा रहा है इस समय भी। दरअसल नेपाल की भोटे कोशी नदी में बाढ़ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एक बैठक कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सीमावर्ती इलाका है, ये उत्तर प्रदेश में कुशीनगर में गंडक नारायणी नदी में जो उफान है उसकी आशंका, और महाराजगंज कुशीनगर यहां पर भी अलर्ट पर है प्रशासन। बिहार में मुख्यमंत्री एक अलग मीटिंग कर रहे हैं। आशीष श्रीवास्तव मेरे सहयोगी ताजा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीमावर्ती इलाका जो है नेपाल और बिहार का, और नेपाल और उत्तर प्रदेश का, बेहद चिंताजनक स्थिति वहां बनी हुई है।
6: बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है, चूंकि ये उत्तर प्रदेश की बात है और उत्तर प्रदेश का जो सीमावर्ती इलाका है नेपाल से, चूंकि सतह होने के बाद अगर मैं आपको बताऊं तो महाराजगंज कुशीनगर में गंडक नारायण नदी के जलस्तर का प्रबल संभावना है कि वहां पर बढ़ेगा, और इसी वजह से कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी एक बैठक करके पूरी तरीके से नेपाल में जिस तरीके से ये सीमावर्ती इलाकों में कहीं ना कहीं जलस्तर बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, उसको लेकर भी ये मंथन चल रहा है, और इसमें कहा गया है कि किसी भी तरीके से बचाव किया जाए, किसी भी तरीके से जलस्तर को बढ़ने पर पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था को देखा जाए, क्योंकि गंडक नारायण नदी का जलस्तर जब बड़ा है तो उससे जो असर पड़ेगा वो भी कहीं ना कहीं जो दारसगर वाली बेल्ट है पूरी, वहां पर इसका फर्क पड़ेगा। और इसी को लेकर जो उस इलाके के डीएम और एसपी है, साथ ही साथ वहां पर राहत बचाव के लेकर भी अलर्ट कर दिया गया है, जिससे कि ये माना जा रहा है कि कहीं ना अगर अचानक से भी जरूरत पड़ती है तो वहां पर इसकी व्यवस्था पूरी तरीके से बनी रहे। और इसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ, चूंकि बड़ी संजीदा तरीके से इन्होंने जब इस पूरे मामले पर नजर रखी हुई है, अलर्ट मोड पर कर दिया गया है, और बाढ़ की स्थिति पर लगातार वो निगरानी रख के अधिकारियों से भी बात की है उन्होंने, और लगातार उनको इंस्ट्रक्शन भी दिए जा रहे हैं कि अगर जैसे भी लगातार जब बाढ़ का स्तर बढ़ता है तो ये जो इलाके हैं पूर्ववर्ती वो काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं। और इस बार का जिस तरीके से गंडक नदी का और महाराजगंज कुशीनगर में इससे प्रभाव ज्यादा पड़ सकता है, इसी को लेकर उस एरिया को पूरी तरीके से वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं, फिर चाहे राहत बचाव की हो या इसके अलावा डीएम के द्वारा जो वहां पर स्टीमर्स है या इसके अलावा अन्य जो व्यवस्थाएं हैं उनको भी अलर्ट कर दिया गया है, जिससे कि किसी प्रकार का मौके पर जैसे ही स्थिति बनती है उसको संभाला जा सके। तो कहीं ना कहीं अलर्ट पे रखा गया। और बाकी साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने चिंता भी जताई है जिस तरीके से ये पूरा नेपाल में
0: क्या उत्तर प्रदेश को भी एनडीआरएफ की टीमों की आवश्यकता होगी या एसडीआरएफ की टीमें उनसे इस समय की जो परिस्थिति है उससे हो जाएगी स्थिति पर काबू पाने में मदद मिलेगी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये और ताजा तस्वीरें इस समय हमारे पास आ रही है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं और बड़े स्क्रीन पर भी देखिए, ये जो आसपास और इसी का डर था कि नदी के पास जो घर है, जो इमारतें हैं, जैसे ही पानी तेज आता है तो तट का इलाका भी बहने लगता है और जो घर तट के बिल्कुल पास होते हैं वो भी बहने लगते हैं। और अब नेपाल की सीमा से ये इलाके आ रहे हैं और ये वो बॉर्डर बेल्ट है। जो तमाम बसें आप देख रहे हैं ये पर्यटकों की बसें होती हैं, यहाँ कस्टम्स चेक के लिए, ये तिब्बत और नेपाल की सीमा के पास का वो इलाका है। पर्यटक बड़ी संख्या में, श्रद्धालु बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों में आकर रुकते भी हैं और यहाँ एकाएक बहुत तेज पानी आया। और आप इन तस्वीरों में देख भी सकते हैं कि लोग भागने का प्रयास कर रहे थे लेकिन इतना तेज पानी आया कि वो भागे तो भागे कहां। ये कंटेनर ट्रक्स जो है सामान सीमा के एक पार से दूसरे पार नेपाल से तिब्बत में ले जाने के लिए तैयार रहते हैं। और ये देखिए, ये सबसे खौफनाक तस्वीरों में से एक है। यहां एकाएक बॉर्डर के उस क्रॉसिंग के पास से जब तेज पानी आया तो नदी अपना मार्ग छोड़कर सड़क पर बॉर्डर क्रॉसिंग के पास से आई और इस पूरे क्षेत्र में लोगों को और इमारतों को, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाती हुई आगे बढ़ी है। जो आकलन है पूरी तरह से अभी सामने आ भी नहीं पाया है। इस जीएलओएफ की वजह से जो ग्लेशियर एकाएक आगे बढ़ा तोड़ते हुए, उसकी वजह से कितना नुकसान हुआ है खबर इस समय। बड़ी तस्वीरें हम आपको, जो सबसे ताजा चार बड़ी तस्वीरें आ रही हैं, ये तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जो त्रिशूली नदी में जो बाढ़ आई, अभी तक तिब्बत और नेपाल से जो खबर आ रही है 16 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, 36 लोग इस समय घायल बताए जा रहे हैं। तिब्बत की ओर से जो रसुआ का क्षेत्र है, रसुआ का जिला है, उसमें त्रिशूली नदी में सबसे पहले बेहद भीषण आग आई, बाढ़ आई और इस बाढ़ की वजह से 16 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। हमको यह खबर मिल रही है जो बागमती प्रदेश पुलिस कार्यालय है, लगभग 4 बजे ये जानकारी सामने आई है। प्रदेश पुलिस के अनुसार बाढ़ में रसुआ में एक, नुवाकोट में 9, धारण में और एक अन्य क्षेत्र में 6 और लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इसमें 7 महिलाएं हैं, 8 पुरुष हैं। एक मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पा रही है। पुलिस के मुताबिक प्रभावित क्षेत्रों से घायलों को अभी निकालने का प्रयास चल रहा है। जहां जहां सड़कें हैं वहां पर तो प्रयास किया जा रहा है लेकिन कई इलाकों में खबर इस तरह की आ रही है कि सड़कें तक बह गई हैं। खबर यह भी आ रही है कि रसुआ से 13, नुवाकोट से 19 और दाहिड़ से 3 घायलों को बचाने का प्रयास चल रहा है। राहत और बचाव अभियान इस समय जारी है। ये तस्वीरें बेहद भयावह हैं, बेहद खौफनाक है ये तस्वीरें और ये स्थिति जो है ये बद से बदतर हो सकती है अगले कुछ घंटों में। इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस।
8: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है।
3: ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
4: ये है एक लेगेसी। मेरी शादी के कंगन सेनको से ही लिए थे,
5: क्योंकि ऐसी बारीक कारीगरी और कहां।
6: इसीलिए सेनको इंडिया का अमंगस्ट मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड एज नॉमिनेटेड बाय द TRA।
3: अब मैं क्या ही बोलूं?
7: परिवार अटूट भरोसा

0: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। एयू
1: सोच बदलो और बैंक भी।
2: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील टीएमटी से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील टीएमटी बाय एकदम सॉलिड।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: AU! सोच बदलो और बैंक भी।

0: Sounds casual.
1: In association with
2: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा. Sera Sanitary Wear, it's your moment of Sera.
3: काली पहाड़ियों के बीच उफनता मलबे का गुबार, अचानक तेज आवाज के साथ पानी का भीषण सैलाब और देखते ही देखते नेपाल में तबाही आ गई. तिब्बत की तरफ से अचानक आए फ्लैश फ्लड ने नेपाल के रसुवा में देखते ही देखते सब कुछ अपनी चपेट में ले लिया. बारिश ने पहाड़ की पकड़ ढीली की, मिट्टी खिसकी, पत्थर टूटे और फिर शुरू हुआ मलबे का वो सैलाब जिसने रास्तों को देखते ही देखते निकल लिया. नेपाल के टिमुरे बाजार को संभलने का मौका नहीं मिला. सारा इलाका भीषण लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड की चपेट में आ गया. नेपाल पुलिस की तरफ से किए गए ट्वीट में इस वीडियो में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की तरह आसमान से सैलाब आता दिखाई दे रहा है और अपने रास्ते में उसे जो मिला उसे बहाता चला गया. अचानक आए सैलाब ने बाजार, सड़कें, पुल, गाड़ियां और बिजली परियोजनाओं को अपनी चपेट में ले लिया. नेपाल में रसुवा की तबाही के बाद अब त्रिशूली नदी के किनारे बसे इलाकों में खतरा और भी बढ़ गया. इस बीच नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और नेपाली कांग्रेस के नेता शेर बहादुर देउवा ने लोगों से तुरंत सतर्क रहने और सुरक्षित जगहों पर रहने की अपील की है. ब्यूरो रिपोर्ट आज तक.
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर. पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक. एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com.
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा.
1: इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो.

0: नेपाल में ग्लेशियर फटने से भारी तबाही, बस्ती और पुलिस चौकियां बही, 16 लोगों की मौत, 36 घायल, 400 से ज्यादा लापता। नेपाल में भीषण बाढ़ की वजह से भारत के 105 पर्यटक लापता, बिहार पर मंडराया खतरा, गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से की बात। डूबते गुरुग्राम पर मुख्यमंत्री सैनी मौन, आज तक के सवाल पर सादी चुप्पी, सुरक्षा कर्मियों ने हटाया माइक, बिना बोले निकले हरियाणा के मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश में आधी आबादी को लुभाने की होड़, योगी सरकार देगी फ्री बस सफर और 50,000 स्कूटी, समाजवादी पार्टी का 40,000 रुपए का दाव। दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार की बड़ी सौगात, दिल्ली में लक्ष्मी योजना का शुभारंभ, सीएम बोली जो वादा किया वो निभा दिया, हर महीने मिलेंगे 2500 रुपए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस।
0: नेपाल में आपदा पर हमारी ये विशेष बुलेटिन इस समय जारी है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने फ्लैश फ्लड को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। शिशिर खनाल ने कहा है कि पहले भूकंप आया और उस भूकंप की वजह से एक फ्लैश फ्लड ट्रिगर हो गया, जिसके बाद इतनी भयंकर तबाही मची है। स्थानीय मीडिया के अनुसार नेपाल सरकार ने शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर यह बयान दिया है। जो प्रारंभिक जानकारी आई है उसके मुताबिक ये GLOF यानी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, जिसकी आप तस्वीरें भी अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बेहद बड़ा, बहुत बड़ी एक आपदा एकाएक आई और अब गंडक बैराज पर भारत में निगरानी रखी जा रही है, बेतिया में एनडीआरएफ अलर्ट पर है, भारत के 105 पर्यटक इस समय लापता बताए जा रहे हैं, 300 विदेशी पर्यटक लापता है। और इस समय बेहद खौफनाक तस्वीरें, और मैं दोनों तस्वीरें आपको यहां पर आज तक पर दिखाना चाहता हूं, किस तरह से इतनी तेज पानी आया। पहली तस्वीर तो ये जो तिब्बत और नेपाल की सीमा का सीमावर्ती इलाका है, वहां पर आप देखिए बॉर्डर के पास एक पोस्ट के पास ये सारी बसें खड़ी थी, ये ट्रक खड़े थे, यहां से वो बॉर्डर रोड का वो एरिया आता है जिसको वो लोग क्रॉस करके जाते हैं, सीमा पार करते हैं, लेकिन एकाएक जो पानी आया वो हर तरफ से आता चला गया और जो लोग भागने की भी कोशिश कर रहे थे, भागते तो कहां भागते इतनी तेज, कोई इलाका बचा ही नहीं था, बसें, ट्रक, गाड़ियां, इमारतें सभी इस तेज फ्लैश फ्लड में बहते चले गए। और ये तो केवल वो बॉर्डर का इलाका है, और उसके बाद पहाड़ों में बेहद सकरा रास्ता है जहां पर पानी का वेग लगातार बढ़ता जाता है, बर्फ, पानी, पत्थर और बड़े पत्थर सब एक साथ आते जाते हैं। हम आपको ये रेस्क्यू ऑपरेशंस की भी तस्वीर दिखा रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन इस समय उस इलाके में चलाया जा रहा है, लोगों को विंचअप किया जा रहा है, विंचअप यानी हेलीकॉप्टर से एक बास्केट को नीचे उतारा जाता है, उसमें लोगों को बिठाया जाता है क्योंकि कई लोग घायल होते हैं, और फिर हेलीकॉप्टर उसे एक तार के जरिए उसे खींच लेता है। एक और बड़ी खबर इस समय आ रही है, नेपाल में फ्लैश फ्लड से मची तबाही के बाद भारत ने मदद का हाथ एक बार फिर बढ़ाया है। नेपाल की ओर से, भारत की ओर से नेपाल के लिए राहत सामग्री भेजी जाएगी। भारत की तरफ से भेजी जा रही राहत सामग्री, इसकी प्रारंभिक जानकारी हमें मिल पा रही है। भारत रसद सामग्री जो लोग इस समय फंसे हुए हैं उनकी मदद के लिए भेजेगा, इसका एनडीआरएफ की टीमें भी स्टैंड बाय पर हैं, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना उनकी टीमें भी इस समय स्टैंड बाय पर हैं, क्योंकि भारत के पास जो हेलीकॉप्टर्स हैं Mi-17 1V हेलीकॉप्टर्स, ये मीडियम लिफ्ट ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स हैं, हमारे जो चिनूक हेलीकॉप्टर हैं भारतीय वायुसेना के, ये बड़ी संख्या में लोगों को भी बचा सकते हैं। और उसके अलावा रसद सामग्री पहुंचाने में, दुर्गम इलाकों तक पहुंचने में, ऊंचे इलाकों में पहुंचने के लिए मी 17 और चिनूक दोनों बेहद उत्तम हेलीकॉप्टर्स हैं जो भारतीय वायुसेना के पास है। भारतीय वायुसेना की टीमें इस समय सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ, इनको स्टैंड बाय पर किया गया है, इस तरह की खबरें फिलहाल आ रही हैं। लेकिन ये चार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि एकाएक जीएलओएफ यानी जो ग्लेशियर लेक थी, जब वो एकाएक उसका ओवरफ्लो हुआ यानी अपने बांध को तोड़ती हुई, अपने तट को तोड़ती हुई पहाड़ों में जब ये पानी आया तो पहाड़ों में इसका वेग और बढ़ जाता है, और उस वेग के बढ़ने से आसपास के इलाकों में कितना नुकसान पहुंचा है ये उसकी तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं। सिद्धार्थ हमारे साथ, पंकज दास मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं काठमांडू से। पंकज, इस समय क्या स्थिति है, क्या आप उस इलाके में पहुंच पा रहे हैं जहां आप हैं, वहां से कितनी दूर है ये इलाका जहां ये त्रासदी हुई है?
2: जी, ये इलाका बिल्कुल चाइना का जो केरुंग बॉर्डर है उससे सटा हुआ रसवा इलाका है, काफी दूर है काठमांडू से, और वहां जाने वाली सारी सड़कों को बंद कर दिया गया है फिलहाल, क्योंकि 40 किलोमीटर सड़क जो है पूरी तरीके से जो इस बाढ़ में बह गया है, और उस रास्ते में पड़ने वाले 19 पुल वो भी बह गया है, इसलिए रास्ते तो सभी बंद कर दिए गए हैं फिलहाल। जहां तक जाने का प्रयास मैं कर रहा हूं कि जितनी पास तक हो सके वहां तक मैं पहुंच सकूं, लेकिन पूरे रास्ते में जो है पुलिस वाले लगातार मना कर रहे हैं इस बारे में कि उस एरिया में अभी किसी को भी जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है।
0: जी अच्छा, ये जो तिब्बत और नेपाल की इसका सीमावर्ती इलाका है, आप बता रहे हैं कि वहां पर 40 किलोमीटर रोड बह गई है, 19 पुल बह गए हैं, खबर ये भी आ रही है वहां बड़ी संख्या में पर्यटक भी होते हैं और वो श्रद्धालु भी होते हैं जो तिब्बत जाना चाहते हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए, उनके बारे में कोई जानकारी, वो सुरक्षित है?
2: बिल्कुल, नेपाल पर्यटन बोर्ड के तरफ से ऑफिशियली ये जानकारी दी गई है कि कम से कम 384 लोग इस समय जो है वो मिसिंग है, जिनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए थे या जो ट्रेकिंग पर गए थे, इनमें से 384 लोग, और उनमें से 100 से अधिक भारतीय लोग हैं। सबसे अधिक भारतीय जो है वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर वो जाते हैं, चूंकि इस समय कैलाश मानसरोवर का सीजन है और नेपाल से सबसे आसान होता है कैलाश मानसरोवर तक जाना, तो इसलिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पे जाने वाले जो भी तीर्थ यात्री थे उनमें से नेपाल पर्यटन बोर्ड की तरफ से यह बताया गया है कि करीब 100 से अधिक भारतीय पर्यटक और कुल 384 लोग, यह ऑफिशियल डाटा है कि 384 लोग अभी संपर्क विहीन है।
0: ये बेहद कठिन इलाका भी है, दुर्गम इलाका है, लेकिन बहुत खूबसूरत है जिससे कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाती है। हालांकि कैलाश मानसरोवर के लिए कई यात्रा के रूट हैं, लेकिन नेपाल का रास्ता सुगम इसलिए भी बताया जाता है क्योंकि सड़कें भी हैं, ब्रिजेस भी हैं, लैंड रूट भी है, और हेलीकॉप्टर के जरिए भी पर्यटक वहां से जा सकते हैं, कम समय भी इसके लिए लगता है। लेकिन अभी जो जानकारी है, जो 105 भारतीय लापता बताए जा रहे हैं, ये ज्यादातर इनमें पर्यटक हैं, श्रद्धालु हैं, क्या किसी कैंप्स में ये लोग रह रहे थे, उनके बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं पंकज?
2: ये जो चाइना का केरुंग बॉर्डर है जिसके विजुअल्स भी कुछ आ रहे हैं सामने, जो चाइनीज एम्बेसी यहाँ पे है उन्होंने अपने बॉर्डर के जो वीडियो है उसी रास्ते से जो है तीर्थयात्री जा रहे थे, और ऐसा बताया गया है हमें कि वहीं पे रुके हुए थे जो अधिकांश जो यात्री जाने वाले थे या वहां से आने वाले थे उनमें वहीं पे रुके हुए थे, कुछ उनका वीजा का प्रोसेस, इमिग्रेशन का प्रोसेस चल रहा था, ऐसे टाइम में अचानक से जो ये सैलाब है वो आया और वहां बिल्कुल वो लोग अभी इस समय मिसिंग बताए जा रहे हैं।
0: ये तस्वीरें बेहद भयावह हैं। नेपाल की सरकार क्या क्या कदम उठा रही है और क्या ये जानकारी है कि और किस चीज की आवश्यकता है?
2: नेपाल सरकार लगातार, जैसे ही ये सुबह 9 बजे करीब में आया तो 10 बजे से ही नेपाल सरकार पूरी तरीके से एक्टिव है, सारे प्राइवेट कंपनियों के जो नेपाल आर्मी के हेलीकॉप्टर हैं उनको लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया है, और काठमांडू के आसमानों में हम देख सकते हैं कि लगातार हेलीकॉप्टर का जो आवागमन है वो जारी है, जितने लोगों को बचाया जा सके। सरकार का जो है सबसे पहला फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी है जो जितने अधिक लोगों को हम बचा सके, क्योंकि कई सारे इलाके जो है पूरी तरीके से तबाह हो गए, वहां से जीवित लोगों को बचाना सरकार की पहली प्राथमिकता है। सरकार ने काठमांडू के सारे हॉस्पिटल जो हैं उनको इमरजेंसी पे रखा, अलर्ट पे रखा हुआ है, ताकि जो भी वहां से लोग रेस्क्यू करके यहाँ लाए जा रहे हैं उनको लगातार यहाँ पे सारे हॉस्पिटलों में उनका इलाज किया जा रहा है। ऐसे ही जो आसपास के हॉस्पिटल्स है वहाँ के भी, वहां भी सरकार लगातार कोऑर्डिनेट करके सब अपनी पूरी ताकत सरकार ने झोंक दी है, जितना हो सके लोगों
0: जी
2: को बचाया जा सके और वहां तक राहत का चीजें सामग्री जो है वो भेजी जा सके। लेकिन भौगोलिक कठिनाई की वजह से आप जानते हैं बहुत ही दुर्गम क्षेत्र है रसुवा जो है, सड़कें नहीं है, सिर्फ वहां तक पहुंचने का एकमात्र साधन जो है वो हेलीकॉप्टर ही है। तो अभी लोगों को बचाया जा रहा है, साथ में जितने हो सकता है वहां पे जो ट्रेन त्रिपाल जो लोग बच गए हैं क्योंकि उनके पास घर नहीं है,
0: जी
2: खाने को नहीं
0: रहिए
2: है,
0: मेरे
2: तो
0: साथ
2: लगातार
0: शांति महार, जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस टीम की प्रवक्ता है नेपाल से, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। शांति जी, आप हमें क्या बता सकती हैं इस समय की स्थिति के बारे में? शांति जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? नेपाल के नेशनल डिजास्टर रिस्पांस टीम की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं। हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि नेपाल सरकार क्या-क्या कदम उठा रही है और क्या कदम उठाने की आवश्यकता है और क्या किस-किस तरह की मदद की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल तिब्बत और नेपाल की सीमावर्ती इलाका है। यही बॉर्डर क्रॉसिंग है जहां एकाएक पानी बहुत तेज आया। नेपाल सरकार की तरफ से पंकज, क्या क्या कदम इस समय उठाए जा रहे हैं? एक आपने हेलीकॉप्टर्स के बारे में बताया, अस्पतालों में क्या और किसी चीज की आवश्यकता है? बड़ी तस्वीर के बारे में उनका क्या आकलन है प्रशासन का?
2: जितने भी यहाँ सरकार की जो पूरी मशीनरी है इस समय, जो लोग वहां से जीवित बचाकर लाए जा रहे हैं या जो घायल है उनको लाया जा रहा है, उनको हॉस्पिटल में उनका ठीक से इलाज हो सके, सरकार इस पर ध्यान दे रही है। और सबसे बड़ी चुनौती जो लोग वहां बच गए हैं लेकिन जिनके पास अब रहने को घर नहीं है, खाने को कुछ भी नहीं है, उनकी आज रात कैसे कटेगी, कैसे उनको सुरक्षित वहां आसपास के इलाकों में पहुंचाया जाए, सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस समय यही है। और लगातार सरकार ने आह्वान भी किया है और सरकार के आह्वान के बाद जो यहाँ पे जो सामाजिक संस्थाएं है, खासकर जो एचएसएस जो आरएसएस की यहाँ पे है, वो लोग उनकी टीम पूरी लगी हुई है यहाँ पे जो है राहत सामग्री कैसे वहां भेजा जाए, वहां के स्थानीय लोगों से मिलकर ये लोग इस काम में, रेस्क्यू के काम में लगे हुए हैं।
0: और क्या स्थिति बद से बदतर हो सकती है, इस बात की भी आशंका है? क्योंकि जो तिब्बत की तरफ से जानकारी आई है या चीन की तरफ से जानकारी आई है, उसके मुताबिक पूरा पानी अभी निकला नहीं है, अभी भी पानी का जमावड़ा, वो जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड है उस इलाके में, ग्लेशियर की जो लेक है उसमें अभी भी बहुत पानी जमा है। पंकज,
2: चीन चीन के तरफ से ऑफिशियली ये नेपाल गवर्नमेंट को बता दिया गया है कि खतरा अभी टला नहीं है, पानी वहां पे अभी भी है, काफी पानी है और लगातार ये जो अवरोध है जैसे ही हटेगा वैसे और ज्यादा पानी आने की संभावना, इसे तबाही का जो मंजर है वो और भी भयावह हो सकता है। चीन ने आधिकारिक तौर पे करीब 2 बजे के आसपास नेपाल सरकार को जानकारी दे दी थी और तत्काल नेपाल सरकार ने अपनी तरफ से उन इलाकों में रहने वाले सारे जो भी तट इलाकों में लोग रह रहे हैं उनसे अपील की है कि खतरा अभी और टला नहीं है, खतरा और बढ़ सकता है और भयावह हो सकता है, इसलिए सुरक्षित होकर वो अपने जो तटीय इलाके है उसको छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले जाए। जो नीचे तक का मैदानी इलाका है जो भारतीय सीमा तक लगते हैं वहां तक के लोगों से अपील की गई है कि वहां पुलिस प्रशासन भी इसमें लगा हुआ, जो तटीय
0: ठीक
2: इलाकों में
0: पंकज, रहिए
2: लोग
0: मेरे
2: रहते
0: साथ।
2: हैं।
0: ये पहली तस्वीरें इस समय आ रही हैं जो ड्रोन कैमरा से ली गई हैं। ड्रोन से जो तस्वीरें ली गई हैं वो आपको कितनी विशाल है इसकी तबाही की तस्वीर वो आप इसमें देख सकते हैं कि जो पानी आया और जिस वेग से पानी आया, तो आसपास जो था वो, जो बॉर्डर क्रॉसिंग की आप बात करते हैं, पूरी की पूरी बॉर्डर क्रॉसिंग उसमें बह गई। बसें, ट्रक, बड़े बड़े कंटेनर, छोटी गाड़ियां, सब लोग जो वहां थे वो बह गए। और जो जिस वेग से पानी पहाड़ों से नीचे आया, उससे आसपास के इलाके यानी तटीय क्षेत्रों में जो नदी के आसपास के लोग थे, उनके घर, बड़े बड़े ब्रिज, पुल सब बहते चले गए। और चीन ने जो जानकारी नेपाल को दी है उसके मुताबिक खतरा अभी टला नहीं है, खतरा अभी और बड़ा है। ड्रोन से आप, ड्रोन कैमरे की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि न केवल पानी उस इलाके में घुसाया है, घरों में घुसाया है, बल्कि नदी का जो कटान है उसके अलावा उसके इतर भी गांवों में शहरों में पानी बहुत ज्यादा घुसाया है। क्या स्थिति बद से बदतर अगले कुछ घंटों में होगी? नेपाल में भी तनावपूर्ण स्थिति है, चिंताजनक स्थिति है, और भारतीय सीमा की अगर बात करें, सीमा के इस पार बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों जगह अलर्ट घोषित कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री से भी बात की और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक इमरजेंसी समीक्षा बैठक की है कि जब वो पानी भारत की सीमा में प्रवेश करेगा तो बिहार में क्या क्या कदम उठाने की आवश्यकता है। बिहार के मुख्यमंत्री के मुताबिक वहां पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ दोनों की कई टीमों को तैनात किया गया है, गंडक नदी और गंडक बैराज पे लगातार नजर रखी जा रही है, और जो डाउनस्ट्रीम है यानी उसके बाद का इलाका, ये केवल किसी एक क्षेत्र में नहीं, छह जिलों में इस समय रेड अलर्ट, उत्तर बिहार के और गंडक के डाउनस्ट्रीम इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, और गंडक के अलावा कोसी, गंडक, गंगा तीनों नदियों के आसपास खासा तनावपूर्ण या चिंताजनक स्थिति अगले 6 से 8 घंटों में हो सकती है। कहा यह जा रहा है कि शाम या रात तक ये पानी भारत की सीमा में प्रवेश करेगा और उसके बाद अगर खतरा चीन के मुताबिक पूरा पानी उस ग्लेशियर के में से जो झील बन गई थी, जब वहीं से पूरा पानी नहीं निकला है, तो लगातार ये स्थिति बद से बदतर हो सकती है। खबर यह है नेपाल में जो कुदरती आपदा आई है, न केवल नेपाल में तबाही मचाई है बल्कि भारत के बिहार और उत्तर प्रदेश में भी रेड अलर्ट है, अलार्म खतरे का बज गया है। नेपाल के रसुआ जिले में तिब्बत सीमा के पास हुआ ये जो संभावित, प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक ये GLOF है, यानी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। एक और बड़ी खबर आ रही है नेपाल में, जो भारत का दूतावास है उसने एक इमरजेंसी नंबर जारी किया है, किसी को कोई जानकारी लेनी हो अपने परिजनों के बारे में, स्थिति के बारे में, भारतीय नागरिकों की मदद के लिए और जानकारी के लिए, भारतीय नागरिकों की मदद के लिए एक नंबर जारी किया गया है, +9779851316807। ये पहला नंबर है जो जारी किया गया है। दो नंबर भारतीय दूतावास ने जारी किए हैं जिसको हम लगातार आपको दिखाते भी रहेंगे, +977 नेपाल का कोड, 9709107500। ये दोनों नंबर भारत में जो भारतीय दूतावास है नेपाल में उसके नंबर जारी किए गए हैं भारतीय नागरिकों की मदद के लिए, जानकारी देने के लिए। पंकज मेरे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं और बेहद भयानक तस्वीरें आप इस समय देख भी रहे हैं, जिस तरह से तबाही उस समय मची और खासतौर पर तिब्बत और नेपाल का जो सीमावर्ती इलाका है वहां पर, ये बॉर्डर क्रॉसिंग है तिब्बत का की, ये बॉर्डर क्रॉसिंग है, और एकाएक जो पानी आया बॉर्डर क्रॉसिंग पे, जो ट्रक्स, जो बसेस पर्यटकों को लेकर, श्रद्धालुओं को लेकर जाने वाली जो बसेस थी और जो गाड़ियां वहां मौजूद थी, जो लोग वहां मौजूद थे, वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। 105 भारतीय पर्यटक इस समय लापता बताए जा रहे हैं, कुल मिला के ये आंकड़ा लगभग 400 के पास है जो विदेशी पर्यटक इस समय लापता बताए जा रहे हैं। ये भोटीकोशी और त्रिशूली नदियां इस समय पूरी तरह से बेकाबू बताई जा रही है। पंकज दास मेरे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, नेपाल की सरकार, आप बता रहे थे, कई हेलीकॉप्टर्स उन्होंने इस क्षेत्र में उड़ाने शुरू किए हैं बचाव और राहत के लिए, क्या प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स, सरकारी हेलीकॉप्टर्स, सेना के हेलीकॉप्टर्स के साथ साथ भी यहां मौजूद हैं, और किस मदद की आवश्यकता है नेपाल के प्रशासन को इस समय इस राहत बचाव कार्य को आगे बढ़ाने के लिए?
3: सबसे पहले शुरू में ही प्रधानमंत्री ने विशेष अपने ही पहल पर, उन्होंने सारे जो निजी हेलीकॉप्टर कंपनियां हैं उनसे बात की थी और उनके साथ कोऑर्डिनेट करके सभी जो यहाँ प्राइवेट और सरकारी जो भी है, सरकारी सेना का हेलीकॉप्टर है, उन सभी को जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाए गए, और इस समय चारों तरफ से हेलीकॉप्टर की आवाजें सुन सकते हैं काठमांडू के आसमान में, जो रसुआ से और आसपास के जिलों से जिन लोगों को रेस्क्यू करके लाया जा रहा है उनको देखा। इस समय नेपाल सरकार को सबसे अधिक जो है रेस्क्यू के साथ साथ जो वहाँ पे जिस तरह का केरल है उसमें किस तरह से बचाव कार्य और तेजी से किया जा सके, क्योंकि अंधेरा होने
0: पर। पंकज आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए, ये महाविनाश की तस्वीरें हैं और रेड अलर्ट इस समय उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमावर्ती इलाकों पर भी है, इस खबर पर रहेगी नजर। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: EU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
6: EU सोच बदलो और बैंक भी।

0: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: एयू
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sa.
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

नेपाल में ग्लेशियर फटने से जगह जगह भारी तबाही, सैलाब में समा गई कई बस्तियां, करीब 400 लोग लापता, अब तक 16 की मौत। पीएम मोदी ने नेपाली पीएम बालन शाह से की बात। नेपाल में भीषण बाढ़ की वजह से भारत के 105 टूरिस्ट लापता, जिनमें 37 प्रवासी भारतीय शामिल। बिहार और पूर्वी यूपी में अलर्ट, गृहमंत्री अमित शाह ने सीएम सम्राट चौधरी से की बात। डूबते गुरुग्राम पर सीएम सैनी मौन, आज तक के सवाल पर साधी चुप्पी, सुरक्षा कर्मियों ने हटाया माइक, बिना बोले निकले हरियाणा के गृह मुख्यमंत्री। यूपी में आधी आबादी को लुभाने की होड़, योगी सरकार देगी फ्री बस सफर और 50,000 स्कूटी, समाजवादी पार्टी का 40,000 रुपए का दांव। रेखा गुप्ता सरकार की बड़ी सौगात, दिल्ली में लक्ष्मी योजना का शुभारंभ, सीएम बोली जो वादा किया वो निभा दिया, हर महीने मिलेंगे 2,500 रुपए।

0: नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज के दंगल की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ में। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के पीएम बालेन्द्र शाह से आपदा को लेकर बात की है। पीएम मोदी ने नेपाल में आई त्रासदी के लिए संवेदना जाहिर करते हुए तरह तरह की मानवीय मदद का आश्वासन भी दिया है। इससे पहले नेपाल में आई तबाही के बाद नेपाल ने भारत से मदद मांगी है। बाढ़ प्रभावित इलाके में पानी का बेहद तेज बहाव के कारण नेपाली सेना हेलीकॉप्टर की लैंडिंग ही वहां पर नहीं हो पा रही है और भारत ने फर्स्ट रिस्पोंडेंट के तौर पर मदद करना शुरू कर दिया है। राहत सामग्री रवाना की जा रही है। बह चुके पुल पुलिये रूट बहाली के लिए प्री फैब्रिकेटेड स्टील ब्रिज भेजने की तैयारी भी वहां पर हो रही है। प्राथमिकता लापता लोगों के खोजबीन की है। मंजीत नेगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मंजीत, बहुत ही मुश्किल तरीके का ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन हो सकता है और इसीलिए फर्स्ट रिस्पोंडर के तौर पर मदद शुरू कर दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी की भी बातचीत हो चुकी है, किस तरीके से यह मदद की जाएगी और जो पुल पुलिये बह गए हैं वहां पर उन्हें किस तरीके से दोबारा तैयार किया जाएगा ताकि लोगों को बचाया जा सके।
1: भले ही थोड़ी देर से नेपाल की तरफ से आधिकारिक तौर से मदद मांगी गई, लेकिन भारत ने तैयारी पहले से कर रखी थी। और इससे पहले आपको याद है कि नेपाल में भूकंप के दौरान भी सबसे बड़ा सहयोगी होने के नाते भारत ने ही सबसे ज्यादा नेपाल की मदद की थी। और इस वक्त भी आप अगर देखें तो भारतीय वायुसेना के मोर्चे पर, सेना के मोर्चे पर जो बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं वो तैयार किए जा रहे हैं, चाहे हिंडन हो, चाहे दिल्ली में पालम हो, वहां से बड़ी संख्या में, खासतौर से पहली जो प्राथमिकता है वो मेडिकल की है, जो बड़ी संख्या में लोग बाढ़ के मलबे में दबे हुए हैं। 100 से ज्यादा भारतीयों की मिसिंग होने की खबर है। तो ऐसे में अब मुझे लगता है कि थोड़ी देर के बाद अंधेरा होने से पहले या कल सुबह पहली सूरज की रोशनी के साथ भारत की तरफ से जो राहत और बचाव की सामग्री है वो नेपाल तक पहुंच जाएगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद नेपाल के प्रधानमंत्री से बात करके नेपाल का सबसे बड़ा सहयोगी होने के नाते, पड़ोसी होने के नाते इस बड़ी आपदा में नेपाल को मदद की पेशकश की है।
0: मंजीत, एक और चीज जानना जरूरी है क्योंकि जो प्री फैब्रिकेटेड स्टील ब्रिज भेजने की जो तैयारी वहां पर हो रही है, क्योंकि बहुत तेज बहाव यहां पर हम देख सकते हैं, तस्वीरें यहां पर देख सकते हैं, जिसके वजह से पुल पुलिया टूट गए वहां पर और इसीलिए ये बहाव के कारण नेपाल के जो हेलीकॉप्टर हैं सेना के वो भी वहां पर लैंड नहीं हो पा रहे, तो ये कैसे किया जाएगा, किस तरीके से ये मदद पहुंचाई जाएगी?
1: शायद भारतीय सेनाओं के पास इस तरह की आपदा से निपटने के लिए काफी अनुभव है और ऐसी इस तरह की तकनीक है, चाहे इंजीनियर्स की बात करें हाल में, चाहे वह अरुणाचल और सिक्किम जैसे इलाकों में इस तरह की बड़ी बाढ़ से निपटने की भारतीय सेनाओं की तैयारी रही है। और उसको लेकर चाहे अगर हम देख
0: मंजीत नेगी से हमारा संपर्क शायद टूट गया है, लेकिन नेपाल में अब तक कुल 384 लोग लापता है और इसमें 291 विदेशी पर्यटक है, 93 नेपाली लोग भी इसमें शामिल है। लापता लोगों में कम से कम 105 भारतीय नागरिक वहां पर बताए जा रहे हैं और इसके अलावा 37 प्रवासी भारतीय भी जिनकी खोजबीन जारी है। काठमांडू से में जो भारतीय दूतावास है वहां पर वो लगातार नेपाल के गृह मंत्रालय, स्थानीय प्रशासन और टूर एजेंसियों के संपर्क में भी है और लापता भारतीयों को सटीक लोकेशन पता कराने और उनके रेस्क्यू के लिए एक विशेष कोऑर्डिनेशन सेल भी बनाया गया है। पंकज दास इस वक्त हमारे साथ नेपाल से जुड़ रहे हैं। पंकज, क्या अपडेट आपके पास है इस पूरे मामले को लेकर, क्या अपडेट है और जो कोऑर्डिनेशन सेल बनाया गया उसके बारे में भी जरा जानकारी दीजिएगा।
2: जैसे ही ये खबर आई थी इस बाढ़ में जो है कई भारतीय भी लापता, खासकर वो जो लोग कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए थे या जा रहे थे रास्ते में थे, तो इसी समय से लगातार जो है इंडियन एम्बेसी काठमांडू में वो एक्टिव हो गई थी। वो लगातार जो है यहाँ के गृह मंत्रालय के जो एनडीआरएफ की टीम है नेपाल की उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रही थी, साथ ही जो रसुआ का जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पे भी वो लोग लगातार संपर्क में हैं कि अगर कहीं से किसी तरह की कोई खबर आती है उनको कैसे बचाया जाए, किस तरह से उनका रेस्क्यू किया जाए, उनको सुरक्षित वापस काठमांडू लाया जाए, इस बात को लेकर दूतावास सुबह से ही लगा हुआ है। अभी उन्होंने इमरजेंसी नंबर भी जारी कर दी है, यदि किसी को इस बारे में पता करना है तो दूतावास ने उसके लिए इमरजेंसी नंबर, और उन्होंने अपनी तरफ से मदद की पेशकश भी की है कि किसी तरह के रेस्क्यू में सहयोग की जरूरत हो या जो राहत सामग्री है इसकी जरूरत है, भारत इसके लिए हमेशा से तैयार है। लगातार दूतावास की तरफ से जानकारी नेपाल सरकार को दी जा रही है।
0: 384 लोग लापता है, ये खबर इस वक्त बताई जा रही है। क्या आधिकारिक आंकड़ा नेपाल सरकार के तरफ से दिया गया है? और ग्लेशियर फटने के बाद जो जानकारी देनी थी चीन के तरफ से, वो नेपाल सरकार को कब दी गई थी और उसके बाद किस तरीके से वहां पर व्यवस्था की गई थी कि कम से कम नुकसान वहां पर हो? और कितने लोग लापता है उसका कोई आधिकारिक आंकड़ा सरकार के तरफ से दिया गया है? पंकज,
2: ये जो 384 लोगों का आंकड़ा है ये सरकार की तरफ से दिया गया, जो विभिन्न टूर एजेंसी है उनके सहयोग से ये जो आंकड़ा जुटाया गया। हो सकता है कि ये आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है, लेकिन अभी तक नेपाल टूरिस्ट बोर्ड है उसके तरफ से यही बताया गया कि 384 लोग, जिसमें 105 भारतीय नागरिक है, बाकी और देशों के नागरिक है, कुछ नेपाल के भी नागरिक है जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर या ट्रेकिंग पर गए थे, उनके लापता होने की खबर है। तो चीन की तरफ से जो है नेपाल को करीब 2 बजे के आसपास, ये सुबह 9 बजे बाढ़ आए नेपाली समय के हिसाब से, लेकिन चीन की तरफ से प्रशासन की तरफ से 2 बजे जानकारी नेपाल को दी गई।
0: ये तबाही की तस्वीरें हम यहाँ पर चला रहे हैं और बहुत ही तेज बहाव में वहां पर नदियां बह रही है, ये भी यहां पर साफ हम देख सकते हैं इन तस्वीरों में। और सबसे बड़ी सीमा बिहार राज्य की, भारत की सीमा जो नेपाल से जुड़ी हुई है, करीब करीब 729 किलोमीटर इतनी लंबी सीमा नेपाल से जुड़ी हुई है। और जो वहां के सीमावर्ती इलाके हैं, जो जिले हैं, वहां पर भारत सरकार के तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। हमारे साथ शशि भूषण भी बिहार से जुड़ रहे हैं, पटना से जुड़ रहे हैं। चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, इन सभी इलाकों में अलर्ट कहा जा रहा है कि घोषित कर दिया गया। और उसके साथ साथ गृह मंत्री की भी बातचीत हुई है बिहार के मुख्यमंत्री से। शशि भूषण, जानकारी दीजिए किस तरीके का ये अलर्ट होगा और प्रशासन के तरफ से क्या तैयारियां की जा रही है।
3: देखिए सर, सबसे बड़ी परेशानी बिहार सरकार की है वो गंडक के इलाके को लेकर के है। हालांकि अलर्ट तो जो कोसी के क्षेत्र हैं उनको भी कर दिया गया है, मतलब कोसी से सटने वाले जो जिले हैं उन तमाम जिलों को भी अलर्ट पर रखा गया है। लेकिन जो 6 जिले हैं बिहार के जो सबसे अधिक गंडक का प्रभाव जिन जिलों पर होता है, उन जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो त्रिशूली नदी जहां पर ग्लोफ आया नेपाल के अंदर, और जो त्रिशूली नदी में पानी आया, वही त्रिशूली नदी आगे आकर के जो काली गंडक है नेपाल के अंदर, काली गंडक नदी है, उसमें जाकर के वो जुड़ती है और उसके बाद वो नारायणी नदी में तब्दील हो जाती है। और वही नारायणी नदी जब बिहार में, मतलब भारतीय सीमा में प्रवेश करती है बिहार के वाल्मीकि नगर बराज में, तो वो गंडक हो जाती है। और गंडक का प्रभाव क्षेत्र कितना बड़ा है इसको हम बता रहे हैं लगातार। पश्चिम चंपारण से इसकी शुरुआत होती है, जो बिहार का सबसे सीमावर्ती जिला है नेपाल से सटा हुआ, वहां से लेकर के गोपालगंज, सारण और फिर आ जाइए आप मुजफ्फरपुर और जो सोनपुर का इलाका है वहां तक गंडक बहती है। तो आप समझिए ऊपर से पानी तेजी से आ रहा है, लेकिन वो पानी कहीं रुकेगा अगर आकर के तो वो बिहार में रुकेगा, और इसीलिए बिहार इस हाई अलर्ट की स्थिति में है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अभी एक रिव्यू मीटिंग की है बजाप्ता डीजीपी, मुख्य सचिव, तमाम अधिकारियों की मौजूदगी में, जिसमें स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि सारे प्रभावित और हाई अलर्ट वाले जिलों के प्रशासनिक छुट्टियों को रद्द कर दिया जाए और वहां पर मेडिकल टीम से लेकर डिजास्टर मैनेजमेंट टीम, और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आपको दिए देता हूं, वाल्मीकि नगर बराज पर जो टेक्निकल टीम जो बार बार विजिट करती है रीचेक करने के लिए कि बराज की क्या स्थिति है, वाल्मीकि नगर बराज पर टेक्निकल टीम को डिप्लॉय कर दिया गया है और उसके सभी फाटक खोल दिए गए हैं। बहुत महत्वपूर्ण है कि वाल्मीकि नगर बराज से जब पानी आएगा तो उसका फ्लो क्या होता है, क्या बराज उस स्थिति में है कि उतना बड़ा अगर फ्लो जो हमने देखा है ऊपर, हालांकि वो फ्लो यहाँ कंटिन्यू नहीं करेगा, ये भी स्थिति है, क्योंकि जब ऊंचाई से कोई धारा गिरती है या इस तरह का फ्लैश फ्लड आता है तो वो स्थिति दूसरी होती है,
0: उसका जोर कम हो जाता है, धीरे धीरे उसका जोर कम होता जाता है। लेकिन जो जानकारी आप दे रहे हैं उसके मुताबिक गंडक बैराज के करीब 36 गेट है वो खोल दिए गए हैं और 86,000 क्यूसेक्स पानी वहां पर छोड़ दिया गया है उन गेट्स के जरिए, ताकि इसका जो इम्पैक्ट है वो कम से कम हो, नदी का जो पात्र है उसमें ज्यादा से ज्यादा पानी समाये जा सके, इसीलिए पहले ही वहां पर पानी छोड़ा जा रहा है। शशि भूषण, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि और जानकारी आपसे लेनी है। लेकिन इस बीच दर्शकों को हम बता दें कि आज नेपाल के रसुआ से बेहद डरावनी तस्वीरें आई है और तिब्बत की ओर से भयानक जय प्रलय वाली प्रचंड धारा आई है। इसमें नेपाल और चीन को जोड़ने वाला जो मितेरी पुल है वो बह गया है। चीन के साथ लगती हुई 42 किलोमीटर सड़क बह गई है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, सरकारी दफ्तर, बस्तियां वहां से बह गई है। और बाढ़ से रसुआ सीमा नाके पर बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। यह तस्वीरें हम आपको वहां पर दिखा रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार टिबुरे सहित आसपास के दो बाजार बाढ़ से पूरी तरीके से तहस नहस हो गए हैं। इतना जबरदस्त बहाव इस ग्लेशियर का और इस नदी का था कि जिसके वजह से पूरा बाजार ही वहां पर तहस नहस हो गया है। जिला पुलिस कार्यालय रसुआ के अनुसार आज सुबह करीब 9 बजे के करीब अचानक आई भीषण बाढ़ से टिमुरे बाजार की बस्ती प्रभावित वहां पर हुई है और बताया जा रहा है कि तिब्बत के इलाके में ग्लेशियर झील फटने की वजह से वहां पर आशंका है कि दरअसल वो ग्लेशियर झील फट गई है क्योंकि पिछले 24 घंटे में सिर्फ 7 मिलीमीटर बारिश वहां पर दर्ज हुई है। लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि नदी में पानी का बहाव कितना जबरदस्त है, तो ग्लेशियर फटने की आशंका है। चीनी मीडिया में खबर है कि तिब्बत में पहाड़ों पर भूस्खलन भी हुआ था और उससे नदी का बहाव रुका था और वहीं टूट गया और तबाही वहां पर आ गई है। तो ये जरा आपको रूट मैप भी हम दिखा देते हैं क्योंकि नेपाल की ये जो भोटे कोशी नदी है आगे चलकर त्रिशूली नदी में मिलती है जो बिहार में गंडक बनकर आती है, जो थोड़ी देर पहले शशिभूषण हमें बता रहे थे, और गंडक नदी में ये पूरा बहाव आता है। केंद्रीय जल आयोग सतर्क है और उसने बिहार के गोपालगंज, पश्चिम चंपारण यानी मोतिहारी, पूर्वी चंपारण यानी बेतिया और बगहा, सारण यानी छपरा, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, वैशाली को, सुपौल, बेगूसराय को अलर्ट कर दिया गया है। बिहार के सीएम ने आपात बैठक भी वहां पर बुला ली है जिसकी जानकारी थोड़ी देर पहले शशिभूषण दे रहे थे कि सभी की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई है और सभी को अलर्ट पर आज की स्थिति में वहां पर लगा रखा गया है। तो आगे बढ़ते हैं और आज की सियासी चर्चा की बात करते हैं। शशिभूषण का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें क्योंकि अब बिहार के सीमावर्ती इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि बहाव कम होगा इसकी उम्मीद भी है, लेकिन अब आगे बढ़ेंगे सियासी चर्चा के और, क्योंकि सियासी चर्चा यूपी से आ रही है। वहां बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ने ही आधी आबादी यानी महिलाओं के लिए चुनावी सौगातों की बौछार कर दी है। बीजेपी ने 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं के उनके आजीवन मुफ्त बस यात्रा की योजना बना दी है और उसकी शुरुआत कर दी है। तो समाजवादी पार्टी ने 40,000 रुपए सालाना नकद की योजना का वादा किया है, यानी महीने में 3,000 रुपए से भी ज्यादा महिलाओं को दिए जाएंगे। यूपी के कुल इलेक्टोरेट में 45-46% हिस्सेदारी महिला वोटर्स की है और चुनाव के दौरान पुरुषों से बढ़ चढ़ कर आगे बढ़कर उनका वोटिंग होता है, यानी करीब 62-64% वोटिंग महिलाओं की तरफ से होता है। तो पिछले दो चुनाव में इसका सीधा फायदा बीजेपी को रहा है, 45% महिला का वोट बीजेपी को मिलता रहा है और वो सत्ता में बनी रही है। लेकिन 2024 में बीजेपी को जो महिला वोट मिलता था वो 5% खिसका, जिसका नुकसान बीजेपी को हुआ वो हम सभी ने देखा, जिसका फायदा समाजवादी पार्टी के गठबंधन को मिला। तो इसी 5% का फर्क जो है उसको मिटाने के लिए अब जद्दोजहद हो रही है और इसीलिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी में होड़ लगी हुई है। दोनों ओर से महिलाओं के लिए मुफ्त योजनाओं के दावे किए जा रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं और योजनाएं तैयार भी की जा रही है। तो इसी मुद्दे पर हम दंगल में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखते हैं।
4: बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी।
5: हर बहन हर माता को फ्री में बस सेवा की सुविधा प्राप्त होगी एक सहयात्री के साथ।
6: आधी आबादी को पूरा हक देने के दावे के साथ चुनावी होड़ ऐसी मची कि एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में लोक माता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना का शुभारंभ करते हैं, दूसरी तरफ अखिलेश यादव स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लॉन्च करने के वादे। रक्षाबंधन से ठीक पहले प्रदेश की बुजुर्ग महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा के लिए योगी सरकार ने खजाना खोला है। अब यूपी में 60 साल और उससे अधिक उम्र की महिलाएं सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा कर पाएंगी, जिसमें रोडवेज की बसों में आधार या वोटर आईडी दिखाकर मुफ्त यात्रा की जा सकती है। इस योजना से प्रदेश की करीब 1 करोड़ बुजुर्ग महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। इस योजना में रोजाना दावा है कि औसतन 88,000 महिलाएं फायदा पाएंगी, जिसमें हर महीने करीब 22 करोड़ 50 लाख रुपए और सालाना 270 करोड़ रुपए का खर्च आने की उम्मीद है।
7: भारतीय जनता पार्टी क्यों देरी कर रही है, उसको अगले चुनाव में लागू किया जाए। जब रक्षाबंधन के त्योहार पे आप बस चला रहे हो और भी योजनाएं लागू करने का बहाना कर रहे हो, तो ये भी सच बोल करके महिला आरक्षण लागू करने का भी काम किया जाए।
8: मुझे 2017 के पहले की भी सरकारों के कार्यप्रणाली याद आती है। 2017 के पहले एक दौर था, उस समय ये हर बेटी, हर बहन और हर माता की जवान पर एक नारा गूंजता था कि देख सपाई बिटिया घबराई।
7: वृद्ध महिला के साथ अगर कोई जा रहा है तो अगर बच्चा है तो फ्री होना चाहिए, और परिवार का कोई वृद्ध है और जो उसके सहायता और सहयोग के साथ जा रहा है, सहयोग के लिए जा रहा है, आधी टिकट लगनी चाहिए।
6: योगी सरकार महिलाओं के लिए 7-8 योजनाओं से महिला सुरक्षा और कल्याण के दावे करती है, तो अखिलेश यादव ने ताबड़तोड़ 16 योजनाओं के वादों की झड़ी लगा दी।
9: स्त्री सम्मान समृद्धि योजना, हम 40,000 से करेंगे शुरुआत, जिसमें बढ़ोतरी होगी हर साल।
10: हर गांव में आंगनबाड़ी बंद हो रहे केंद्र फिर खुलेंगे, गर्म पोषाहार, साफ पानी और स्वच्छ शौचालय के साथ।
11: हर जिले मुख्यालय पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलेंगे हम।
12: 2400 घंटे महिलाओं और बच्चियों के लिए एक अलग एम्बुलेंस सेवा, उसकी समय सीमा तय रहेगी और प्रशिक्षित महिला स्टाफ के साथ गर्भवती माताओं को प्राथमिकता मिलेगी।
13: वन इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने वाली हर छात्रा को लैपटॉप,
14: हर तहसील में पीजी कॉलेज, हर जिले में विश्वविद्यालय,
15: प्रति माह 2 दिन आकस्मिक अवकाश बिना किसी सवाल के।
6: अखिलेश यादव आरोप लगाते हैं कि महिलाओं के लिए घोषणाओं का प्लान समाजवादी पार्टी ने पहले बनाया, लेकिन बीजेपी ने आइडिया चुरा कर पहले मुफ्त बस यात्रा चालू करा दी। अखिलेश के वादों की झड़ी अभी खत्म नहीं हुई थी।
16: पुलिस बल में 33 महिला आरक्षण तत्काल प्रभाव से हर शहर में पृथक, SP महिला अपराधों को सुनवाई, 10-90 वेमेन पावर लाइन को फिर से मजबूत करना,
17: हर तहसील में सुव्यवस्थित वृद्धाश्रम व जेरियाट्रिक केयर बनेगा, और साथ ही साथ महिलाओं की पूरे प्रदेश में निशुल्क बस यात्रा होगी,
18: हर विधवा व बेसहारा महिला को लोहिया आवास आवंटित किया जाएगा,
19: प्रदेश की हर निराश्रित महिला के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी सरकार की होगी,
20: सरकारी स्कूल में फीस पूरी माफ और प्राइवेट स्कूल में आधी,
21: हर प्रतिभावान छात्रा को लैपटॉप देकर उनको नई शिक्षा और सीख के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा,
22: PDA पाठशाला के माध्यम से स्त्री के हुनर को विकसित करके रोजगार से जोड़ा जाएगा,
23: हर गांव में विद्यालय कक्षा 8 तक बंद किए गए 26,000 स्कूल फिर खुलेंगे।
6: चुनाव से पहले बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच महिला कल्याण और सुरक्षा के लिए एक से बढ़कर एक मुफ्त वाले वादे दावे किए जा रहे थे, तो चुनावी सियासत के बीच कुछ असली सवाल भी थे।
24: चर्चा का विषय बना कि ममता की मूरत है मैम, और CM फेस को लेकर चर्चाएं होने लगी डिंपल मैम के बारे में, तो क्या कहेंगे?
7: बहुत अच्छी बात पूछी है, हम तो इसी में उलझे हुए हैं, एक अंग्रेजी अखबार में, और बहुत, हालांकि ये प्रतिष्ठित अखबार है, लेकिन आज के जमाने में जो चीजें होती है उसके तहत हमें पढ़ने को मिला। योगी जी इज ए मिरर इमेज ऑफ मोदी। अरे भाई इधर मत देखो यार, उधर जाओ डबल इंजन की तरफ।
6: क्योंकि इसके पीछे सादी आबादी की वोट की ताकत है, और वो ताकत कुछ ऐसी है कि यूपी में फिलहाल करीब 6,70,00,000 से ज्यादा महिला मतदाता है। इन महिला वोटर के वोट के आशीर्वाद से लखनऊ की सत्ता का पथ प्रशस्त होता है। मसलन 2017 में 3,97,00,000 महिलाओं ने वोट डाले, उसमें करीब 41-43% यानी करीब 1,65,00,000 से अधिक महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया, और 325 सीट के प्रचंड बहुमत से सरकार बनी। 2022 में भी वोट डालने वाली 4,23,00,000 महिलाओं में से 46-48% यानी 2,00,00,000 से ऊपर महिलाओं ने योगी राज की वापसी सुनिश्चित की, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट डालने वाली 4,38,00,000 महिलाओं में से 41% यानी 1,80,00,000 महिलाओं ने ही बीजेपी को वोट दिया। बीजेपी के महिला वोट में 2024 में करीब 5% की गिरावट आई। इसी 5% की गिरावट की भरपाई और समाजवादी गठबंधन को मिली बढ़त को ध्यान में रखते हुए अब योगी सरकार ने महिलाओं के लिए खजाना खोल दिया। ये और बात है कि अब भी अखिलेश बीजेपी से ज्यादा महिलाओं को टिकट देने के दावे कर रहे हैं।
7: समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा लड़ाएं, और हम भारतीय जनता पार्टी से अपील करेंगे कि नारी को नारा न बनाएं।
6: खबर है कि चुनाव से पहले यूपी में भी महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए 3 किस्तों में 50,000 रुपए की राशि सीधे खाते में आ सकती है, क्योंकि माना जा रहा है कि 2024 में विपक्ष के खटाखट पैसे आने के चुनावी जुमले का असर हुआ और बीजेपी को 41% तो समाजवादी पार्टी गठबंधन को 45% महिलाओं ने वोट डाल दिए थे। वैसे पहले से भी यूपी में महिला वोटर्स के लिए योगी सरकार ने कम मुफ्त योजनाएं नहीं चला रखी हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में 27,40,000 बेटियों को जन्म से पढ़ाई तक 6 किस्तों में 25,000 रुपए नगद मिल चुका है। प्रदेश की निःशुल्क शिक्षा योजना में 1,20,00,000 बेटियों को सालाना मुफ्त शिक्षा, ड्रेस, किताब, बैग मिलते हैं। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना में 50,000 मेधावी कॉलेज छात्राओं को स्कूटी मिल रही है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 5.54 लाख लड़कियों को 51,000 की आर्थिक मदद मिल चुकी है। महिला सामर्थ्य योजना में 28,63,000 महिलाओं को मुफ्त स्किल ट्रेनिंग और 15,000 रुपए का फंड मिल चुका है। मुफ्त एलपीजी उज्ज्वला योजना में 1,90,00,000 महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर मिल चुका है। 181 महिला हेल्पलाइन वन स्टॉप सेंटर सखी केंद्र में 2,50,000 पीड़ित महिलाओं को मुफ्त इलाज से लेकर कानूनी सहायता तक मिल चुकी है। लेकिन समाजवादी पार्टी इन कामयाबियों को खारिज करती है, समाजवादी सरकार की योजनाएं गिनाती है और बीजेपी पर उन्हीं योजनाओं की आधी अधूरी नकल के आरोप भी लगाती है। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: तो अब तक अचानक बात हो रही थी कि जेंजी की, सभी राजनीतिक पार्टियां पीछे पड़ी थी कि जेंजी को कैसे लुभाया जाए, लेकिन जेंजी की वोट प्रतिशत किसी भी राज्य में 20-25% के ऊपर नहीं है और इसीलिए चुनाव जब नजदीक आ रहे हैं तब अचानक जो ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला आधी आबादी का चर्चा में एक बार फिर शुरू हो चुका है और वही बात उत्तर प्रदेश में भी दिखाई दे रही है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े और आज पूरा हमारा पैनल महिलाओं का है। चारू प्रज्ञा भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता चर्चा में शामिल हो रही है। पूजा त्रिपाठी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, पिछली बार लड़की हूं लड़ सकती हूं ज्यादा टिकट कांग्रेस पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश के चुनाव में दिए गए थे। नाहिद लारी खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल हो रही है। निशा चौधरी राष्ट्रीय लोकदल के तरफ से अपनी भूमिका इस पे रखेंगी। तो एनडीए के दो महिला स्पोक्स पर्सन हमारे साथ में और अगर कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठबंधन होता है तो इंडिया अलायंस की तरफ से भी दो महिला स्पोक्स पर्सन इस चर्चा में शामिल हो रही है। 3 सवाल मैं आपके सामने रखूंगा। पहला सवाल, क्या मुफ्त की चुनावी घोषणाओं से यूपी में महिलाओं के वोट मिल पाएंगे, क्योंकि अब दोनों ही दलों की नजर इन्हीं वोटों पर आती नजर आ रही है क्योंकि आधी आबादी आखिरकार इनकी है। दूसरा सवाल, क्या बिहार में चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में नगद जैसी योजना यूपी में भी आएगी, क्योंकि 40,000 की घोषणा समाजवादी पार्टी की है, अभी भी 6 महीने बाकी है, क्या बीजेपी सरकार इस पे 50,000 की नई स्कीम लेकर आएगी। और तीसरा सवाल, क्या 2024 चुनाव में बीजेपी को घंटे जो 5% महिला वोट घटे हैं उसकी वापसी हो पाएगी, क्योंकि 2024 के चुनाव में सबसे बड़ा झटका इन महिला वोटों का बीजेपी को पड़ा था। शुरुआत चारू प्रज्ञा आपसे करेंगे। मैं दरअसल कार्यक्रम की शुरुआत के पहले में योजनाएं गिन रहा था। 13 योजनाएं फिलहाल योगी सरकार की कार्यरत है उत्तर प्रदेश के भीतर और आज एक नई योजना की घोषणा की गई है, जो फ्री बस राइड, करीब करीब हर राज्य में चुनाव से पहले फ्री बस राइड की घोषणा की जाती है। लेकिन अब समाजवादी पार्टी ने एक नया दाव खेला है, 40,000 रुपए सालाना मिलेंगे, यानी हर महीने करीब करीब 3,000 और किसी भी राज्य के मुकाबले सबसे ज्यादा पैसे देने का वादा समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया है। तो अब वो समाजवादी पार्टी चारू प्रज्ञा जी आपको कह रही है कि नारी का नारा मत लगाइएगा, तो क्या चुनाव के पहले अचानक महिलाओं के खाते में 20,000-30,000 आके गिरेंगे आधी आबादी के खाते में, इस तरह की कोई योजना?
1: साहिल जी नमस्ते। देखिए, महिलाओं को नारा बनाना या महिलाओं के नाम पर सिर्फ वोट मांगना दूसरी पार्टियों ने किया होगा। मैं आपको बहुत गर्व के साथ एक बात कहना चाहती हूं, जब से प्रधानमंत्री बने हैं 2014 से भाजपा की हर एक फ्लैगशिप स्कीम महिलाओं के लिए ही करी जाती है। आप पहले दिन से लेकर आज तक कोई भी स्कीम उठाकर देख लीजिए, इस गवर्नमेंट की हर एक स्कीम महिलाओं को सेंटर में रख के, बीच में रखकर ही प्लान करी जाती है और फिर उसको एग्जीक्यूट करा जाता है। देखिए, बहुत आसान है बड़ी बड़ी पार्टियों को डायलॉग मारना और ये कह देना स्मैश द पेट्रिया की, लेकिन स्मैश द पेट्रिया की डायलॉग से नहीं होगी ना। अगर आपको सच में महिलाओं को सशक्त करना है, वो प्रैक्टिकल तरीके से होगा। आप उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दीजिए, पहले आप उनके जनधन के अकाउंट खुलवाइए, उसके बाद आपको मुद्रा लोन से उनको लोन दीजिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप रूप से उनको उनके पैरों पे खड़ा करिए। आज देश में करीब 3.5 करोड़ लखपति दीदियां हैं, इसको कहते हैं सशक्त करना। आप उनको मोबिलिटी का फ्रीडम दीजिए। जिस योजना की आप अभी बात कर रहे हैं, इस योजना को हमने अपनी घोषणा पत्र में अनाउंस किया था, हम इसको पूरा कर रहे हैं। तो ये तो बहुत गर्व की बात है हमारी पार्टी के लिए कि योगी जी ने अपने घोषणा पत्र में जो योजना अनाउंस करी थी, आज हम उसको पूरा करने जा रहे हैं। महिला को सशक्त करने का मतलब ये होता है कि आप उनको एक सेफ, एक स्ट्रांग एनवायरमेंट ऐसा दे जहां बच्ची भी स्कूल जा सकती है, वो बड़ी होकर जो चाहे वो नौकरी कर सकती है, चाहे वो स्टेम की फील्ड की पढ़ाई करना चाहे, चाहे वो फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंसेस में सर्व करना चाहे। अब पता है क्या है, ये जो डायलॉग और जुमले ऑपोजिशन को अब तक अच्छे लगा करते थे ना, अब जनता को ये समझ नहीं आते और पसंद नहीं आते, क्योंकि उन्होंने ये देखा है कि एक डिलीवरी करने वाली सरकार और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने वाली सरकार में क्या फर्क है। अखिलेश जी से मैं पूछना चाहती हूँ, आपकी तो सत्ता थी ना भाई साहब, 2012 से लेकर 17 तक आप ही की सरकार थी, तब आपने कौन सी योजनाएं लागू कर दी? तब आपने तो कुछ भी नहीं कहा, आपने एक भी योजना इस तरीके की लागू नहीं की।
0: यही सवाल मैं आपके तरफ डाइवर्ट कर सकता हूँ।
1: वादे करना आपके लिए इसलिए आसान है।
0: यही सवाल मैं आपके तरफ डाइवर्ट कर सकता हूँ। पिछले दस साल से वहां पर योगी आदित्यनाथ सरकार में है। 10 साल के बाद 6 महीने पहले आप अचानक महिलाओं को फ्री बस राइड देने की कोशिश कर रहे हैं। 1 करोड़ महिलाओं को इसका फायदा होगा। 10 साल क्यों रुक रहे थे? इससे पहले क्यों महिलाओं को जरूरत नहीं थी क्या फ्री राइड की? देखिए, सारा चुनाव का मामला होता है और इसीलिए मेरे ओरिजिनल सवाल का जवाब आपने अभी तक नहीं दिया। 50,000 दिमाग में है क्योंकि 40,000 की घोषणा हो चुकी है। 50,000 दिमाग में है कि नहीं है? 40,000 की घोषणा हुई है, प्रैक्टिकल उतर आई है अभी। 40,000 की घोषणा हुई है, 50,000 देंगे कि नहीं देंगे?
1: जी, मैं घोषणा पर ही आपको मैं घोषणा का ही जवाब दे रही हूँ। देखिए, जब आपके पास कुछ हारने को नहीं होता तो आप सिर्फ ये बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देते हैं। कांग्रेस ने भी तो करी थी ना, एक चुनाव में कांग्रेस ने भी वो हाथ दिखा के कहा था अब होगा न्याय। कितना? 70,000 पर मंथ की घोषणा करी थी देश में हर युवा को पैसे देने की। लेकिन उसके बाद भी युवा कांग्रेस के साथ नहीं आए, क्योंकि हमारे देश की जनता, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, उनको ये समझ में आता है कि किस सरकार को हमारी चिंता है और कौन सी सरकार सत्ता में रहकर और चली भी गई है और आज हमारे लिए सिर्फ नारे लेकर आई है या बड़ी बड़ी बातें लेकर आई है। क्योंकि जब वो कर सकते थे, उनके हाथ में हर ताकत थी, तब उत्तर प्रदेश का उन्होंने ये हाल कर रखा था कि बीमारू राज्यों का राजा बन चुका था उत्तर प्रदेश। और वहां पर एक सबसे बड़ा प्लैंक भाजपा के जीतने का तो महिलाओं के लिए सुरक्षा ही था। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में महिलाओं को ट्रीट करा जाता था, जो महिला सुरक्षा का मुद्दा था, मैं नहीं मानती कि किसी और प्रदेश में इतनी ज्यादा हाहाकार मची हुई थी जैसी उत्तर प्रदेश में मची हुई थी सपा सरकार के।
0: आज अखिलेश यादव कह रहे थे कि आपका उनका प्लान चुरा लिया भारतीय जनता पार्टी ने, तो आपका पेपर तो लीक हो गया। अभी आपने 40,000 की घोषणा कर दी, उनके पास 6 महीने का समय है। देखिए, कोई भी स्मार्ट राज्य सरकार क्या करेगी? 40,000 का प्लान आपने घोषणा कर दिया है, उससे पहले वो कहीं डिलीवरी ना कर दे उस बात की। और चुनाव के पहले महिलाओं के खाते में पैसे जैसे ही आते हैं खटाखट वोट डल जाते हैं, आपको पता है, पहले भी हो चुका है
2: ये। साहिल जी, ये बात आपने चोरी वाली बात बिल्कुल सही कही। अरे अभी तो जग जाहिर हो गया, पूरा विश्व जान गया है कि भाजपा गैंग जो है, ये पार्टी तो है नहीं, गैंग है। और ये गैंग जो है महाचोरों महाडकैतों का गैंग है। अब तो ये पूरा विश्व जान गया महाभ्रष्टाचारियों का गैंग है। अब आप ही देखिए, अब इस चला चली की बेला में 10 साल तक एकदम खामोश रहे। महिलाओं के ऊपर, लड़कियों के ऊपर, बच्चियों के ऊपर अत्याचार चरम पर, हाहाकार मचा, पूरब से लेकर पश्चिम तक हाहाकार मचा रहा। इज्जत आबरू लूटी जा रही थी महिलाओं का, तब इनको महिलाओं की याद नहीं आई। अब जब देख रहे हैं कि अब बुरी तरह हार होने वाली है, तब चला चली की बेला में महिलाओं की याद आ रही है, वो भी मंचों से खड़े होकर गप्पा, लंबी लंबी गप्पा छोड़ जा रही। अरे, जनमानस के बीच जाने की हिम्मत नहीं बीजेपी की, महिलाओं के बीच जाने की हिम्मत नहीं बीजेपी की। आप ये समझिए, वो पार्टी है जो एसी रूम में बैठी रहती है। मैं बताऊं आपको, मैं जनमानस के बीच में रहती हूँ, मेरे जैसे सभी समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता जनमानस और महिलाओं के बीच में रहते हैं। मैं आपको राजधानी लखनऊ का बता दूं, ये बस सेवा बता रहे। अरे आप ये समझिए, राजधानी लखनऊ की स्थिति इतनी भयावह है कि लड़कियां कैब और ऑटो में बैठने से डरती हैं, क्योंकि आए दिन उनके साथ छेड़छाड़ होती है। आप इससे अंदाजा लगाएं कि पूरे सूबे की क्या स्थिति होगी। और तो और, छेड़छाड़ की, रेप की, जो अत्याचार हो रहा महिलाओं की, लड़कियों की, कोई थानों में नहीं सुनवाई है, कोई सुनवाई नहीं। तभी तो देखिए, अभी हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि थाने व्यवसाय अड्डे बन गए, यानी वहां पे दुकानदारी चल रही है, ये दुकानदारों की सरकार है ना, इसलिए थानों को भी दुकानदार बना दिया। ये माननीय सुप्रीम हाई कोर्ट ने कहा, मैंने नहीं कहा।
0: लेकिन नाई जी,
2: हाई कोर्ट, एक मिनट रुके आप,
0: मेरा सवाल आपसे ये था,
2: एक सेकंड रुके, एक सेकंड, इंपॉर्टेंट बात है। माननीय हाई कोर्ट ने कहा कि पुलिस जो है अपने आकाओं को खुश करने के लिए नहीं है, पुलिस का काम है कानून व्यवस्था संभालना। स्पष्ट है कि माननीय हाई कोर्ट भी कह रही है कि कानून व्यवस्था पूर्णतः ठप है उत्तर प्रदेश में, और ये अपनी पीठ थपथपा रहे, ये अपनी झूठी पीठ थपथपा रहे। अरे आप देखिएगा, महिलाओं ने मान लिया है।
0: आपके आपका आपका जो पीडीए का डेफिनेशन है ना, फुल फॉर्म जो है ना पीडीए का, वो भी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है बदलता जा रहा है। पहले आपने पी का जो फुल फॉर्म था वो बदलते रहे आप, अभी आप ए का फुल फॉर्म भी बदल रहे हैं। पहले आपका ए मतलब अल्पसंख्यक था, अभी आप अचानक कह रहे हैं कि ए मतलब आधी आबादी। ये भी आप में भी तो फर्क आ रहा है ना बार बार। एक बार पीडीए का फाइनल फुल फॉर्म बता दीजिएगा ताकि हम उसी को लेकर चलेंगे।
2: साहिल जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। देखिए माननीय अखिलेश यादव जी जो पीडीए समाज के महान योद्धा, जब उन्होंने पीडीए का आह्वान जिस दिन पहले दिन किया था 2024 के चुनाव के पहले, जब पीडीए के बारे में बताया तभी उन्होंने स्पष्ट कर दिया था, आप सारे उनके पीसीस देख लीजिए, तब से स्पष्ट है कि पी का मतलब पिछड़ा, डी का मतलब दलित, ए का मतलब आदिवासी अल्पसंख्यक, और ए फॉर आदि आबादी भी स्पष्ट रूप से, तभी से हम लोग आदि आबादी बोल दिया। नहीं नहीं, मैं तो आपको चैलेंज कर रही हूँ ना, आप जब से माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए का आह्वान किया, मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ, आप देखे जाकर सारे उनके पीसीज, ये मैं कोई अलग से बात नहीं कर रही हूँ। और आप ये देखिए महिलाओं के बारे
0: वैसे,
2: में आप
0: वैसे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी है नाहिद जी, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी है, उसमें पीडीए का मतलब पेट पे दर्द भी अखिलेश यादव बता रहे थे।
2: नहीं
0: तो अभी जो है वो आपके पास फुल फॉर्म।
2: अब साहिल जी, आपने मुझे बुलाया, मौका तो दिया, हर थोड़ी थोड़ी देर में टोकेंगे तो उचित नहीं ना। पेट में दर्द तो बीजेपी के हो रहा है ना, इसलिए पेट में दर्द बीजेपी के हो रहा है।
0: अच्छा।
2: क्योंकि बीजेपी जान रही है कि उसकी सत्ता खिसक रही है, और अभी तो 2024 में महिलाओं ने बीजेपी को उत्तर प्रदेश से हाफ किया था, अब 2027 के चुनाव में बीजेपी को पुरता साफ कर देगी। मैं महिलाओं के बीच जाती हूँ, जनमानस के बीच जाती हूँ, आपको मालूम है क्या नारा देती है महिलाएं? महिलाएं कहती हैं, जिस गाड़ी में लगा हो भाजपा का झंडा, समझ लो उसके अंदर बैठा है भाजपा का बड़ा रेपिस्ट और गुंडा। जिसके गले में हो भाजपा का पट्टा, समझ लो वही खींचे का लड़कियों का बच्चियों का दुपट्टा। ये इनकी स्थिति हो गई है, क्योंकि ये वो पार्टी है महाभ्रष्टाचारी।
0: चारु प्रज्ञा जवाब दीजिए, चारु प्रज्ञा जवाब दीजिएगा।
1: मुझे
0: लेकिन देखिए आंकड़ों पर अगर बात करें,
1: नाई जी
0: प्लीज, मेरे देखिए ऐसा, आपने दो घोषणाएं दी है, आपने दो घोषणाएं आपने दी है।
2: अरे आप मुझे टोकते रहे,
0: दो घोषणाएं आपने
2: दी जी को, दो बात मुझे बताने दीजिए, इंपॉर्टेंट बात।
0: मैं सिर्फ उनका जवाब चाहता हूं, लेकिन उससे पहले कुछ आंकड़े दिखा देना कि आखिरकार बीजेपी और समाजवादी पार्टी महिला वोटों पर क्यों इतना हावी होने की कोशिश कर रही है। क्योंकि जो नंबर्स हैं, जरा एक मिनट मैं आपको पहले नंबर्स दिखा दूं। देखिए, पहले 2017 में जब पहली बार आपकी सत्ता आई थी, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे, तब 3.97 करोड़ कुल वोट महिलाओं के डले थे, ठीक है। उसमें से 6.70 करोड़ वोट थे, उसमें से करीब 41-43% वोट यानी 1.65 करोड़ वोट ये भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चले गए थे। 2022 में 4.23 करोड़ महिलाओं के वोट पड़े थे, और उस वक्त 46-48% वोट बीजेपी के खेमे में गए थे। लेकिन 2024 में यह आंकड़ा 5% से घट गया, यानी केवल 41% वोट बीजेपी के खेमे में गए। तो यह वेकअप कॉल था 2024 का पीडीए में से। जो ताई जी कह रही है चारु प्रज्ञा, वो सही कह रही है एक तरीके से, यह वेकअप कॉल आपके लिए था, और इसीलिए अभी ये योजनाएं आ रही है जो इनका आरोप यहां पर लगाया जा रहा है।
2: एक सेकंड मुझे दे दे साहिल जी, केवल एक सेकंड लूंगी, ज्यादा टाइम नहीं।
0: चलिए एक सेकंड, चारू जी एक मिनट उनको खत्म करने दीजिए, उनको नाराज नहीं करेंगे हम। चलिए एक सेकंड, नाई जी आप आखिरी बात अपनी खत्म करिए। चलिए
2: आप मेरी बात सारी सुन ले, उसका जवाब इनसे ले लें। अभी आप देखिए, ये वो पार्टी है जो नकल करती है समाजवादी पार्टी की, लेकिन नकल के लिए भी तो अकल चाहिए। आप समझिए कि समाजवादी पार्टी पहली बार इस तरह से कोई योजना नहीं लाई। जब हम सरकार में थे तब भी समाजवादी पेंशन योजना लेकर आए थे जिससे 50 लाख महिलाओं को लाभान्वित करने का काम किया था, 50 लाख से ज्यादा महिलाओं को। यहां तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये सबसे सुंदर योजना है, यहां तक लैपटॉप वितरण करके छात्राओं को उनको सशक्त करने का काम किया था। आज वो छात्राएं बड़े बड़े बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रही है, बड़े बड़े काम कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, हर फील्ड में अच्छा अच्छा अपना योगदान दे रही है। 1090 जैसी पावर लाइन शुरू की थी जिसको ठप करने का काम किया, इनकी इनकी ये उपलब्धि है कि हमारी सरकार में काम शुरू हुआ 1090 का, वो भी ये जापानी आए तो वो काम दिखा रहे थे। अरे जब आप काम दिखा रहे तो बताए होते कि अरे रे हम तो
0: जवाब देते,
2: ये भी सपा सरकार का काम है। आप देखिए उसकी भी 1090 की तारीफ
1: हो गया भाई, आपका मोनोलॉग साहिल जी ने बहुत लंबा चलने दिया। अब हम प्रैक्टिकल बात करते हैं, ठीक है ना। अब नाहिद जी के मुंह से इस तरीके की खुद बनाए हुए जो ये शायरी सी स्लोगन से सुना रहे हैं ये अच्छे नहीं लगते, क्योंकि ये उस पार्टी से आती है जिनके मुखिया वो है नहीं अब इस दुनिया में, जो कहा करते थे भाई लड़कों से गलती हो जाती है। नाहिद जी ऐसी गंभीर बातों पर ना इस प्रकार से हंसना राक्षसी लगता है, ठीक है ना। साहिल मैं बीच में बोली नहीं, तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू स्टेप इन प्लीज।
0: नाहिद जी प्लीज बीच में मत बोलिए, आपको पूरा मौका दिया गया था। अब मुद्दे पर आएंगे, अब मुद्दे पर आएंगे।
1: ओह माय गॉड, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? कहां से कहां पहुंच गए आप?
0: क्या आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आपको बोलने का भी मौका दिया है, क्यों आप ऐसा कर रही हैं?
1: या क्योंकि क्योंकि मेरी बात इस
0: आपकी बात रखिए, चारू जी आपकी बात रखिए।
2: अरे 5% पीडीए समाज बर्दाश्त नहीं करेगा माननीय नेता जी का।
0: देखिए ऐसा है, मैं किसी महिला प्रवक्ता को ये नहीं कह सकता कि चुप रहिए। नहीं देखिए, मैं किसी महिला प्रवक्ता को ये नहीं कह सकता कि चुप रहिए।
1: नहीं मैं कह सकती हूँ,
0: मैं नहीं तो मुझ पर आरोप हो जाएगा कि मैं महिला प्रवक्ता का आवाज दबाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चारू प्रज्ञा जी आप जवाब दीजिए, नाहिद जी आप सुन लीजिएगा प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे।
1: थैंक यू। देखिए ना, मैंने केवल नेताजी का नाम लिया, वो पिछड़े पिछड़े करने लग गई, ये इनकी साइकोलॉजी दिखाई दे रही है। नहीं चुप कराइए प्लीज साहिल जी। देखिए मैं काम की बात बोल रही हूँ, जब मैं महिला सुरक्षा की बात करती हूँ, जब मैं सपा सरकार के गुंडाराज की बात करती हूँ, ये बहुत ही ज्यादा गंभीर विषय है जी। आपकी साइकोलॉजी दिखाई दे रही है, आपकी पार्टी की सोच दिखाई दे रही है आपके इस चीखम चिल्ली में। आप रुक जाइए, अपने समय में शांति से बोलिएगा। मैं चिल्लाना नहीं चाहती, क्योंकि जैसा मैंने कहा मेरे लिए महिला सुरक्षा बहुत गंभीर मुद्दा है। अब नाहिद जी मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने दर्शकों से होकर बात करना चाहती हूँ। और मैं आप अरे भाई मेरे बीच में आप बोल रही हैं, सम्मान तो आपको
0: सीखिए। आपकी बात सुनी जा रही है, आपकी बात रखिए जल्दी, चलिए चारू जी बात करिए।
1: ठीक है, थैंक यू वेरी मच। देखिए ये दो दो नारे बनाकर जो सुना रही हैं, ये उस पार्टी की प्रवक्ता हैं जिस पार्टी के पूरे कार्यकाल को गुंडा राज कहा जाता था साहिल जी। और उत्तर प्रदेश में रहने वाला एक भी नागरिक इस बात को भूला नहीं है। उत्तर प्रदेश का नाम जब बाकी के देश में लिया जाता था ना, आपको पता है कैसे विषयों में आया जाता था? भाई सड़क पे जाएंगे तो अपहरण हो जाएगा, मर्डर हो जाएगा, आपका कोई आपने सोने की चेन पहनी है वो छीन के कोई ले जाएगा, बैग में पैसे हैं वो छीन के कोई ले जाएगा। ये उत्तर प्रदेश के बारे में पूरे देश में बातें और चर्चा होती थी, और ये इनका गुंडा राज था जिसने ये स्थिति उत्तर प्रदेश ला दी थी। आज ये उस पार्टी के लिए ये सारी बातें बोल रही हैं जिनके नेता ने बड़े गर्व के साथ कहा था लड़के हैं गलती हो जाती है। अरे आप साइकोलॉजी थोड़ी भूल सकते हैं, यही मैं बोल रही हूँ। मैंने नेताजी का नाम लिया, ये सीधा जाति पर कूद गई। मैंने तो जाति का नाम ही नहीं लिया। पीडीए की डेफिनेशन बदलने वाले आप लोग, जाति पर सेंसर लगाने वाले आप लोग, सेलेक्टिवली पॉलिटिकल एक्टिविज्म करने वाले आप लोग। लेकिन मैं एक
0: पद्म विभूषण दिया है मुलायम सिंह यादव को।
1: मेरी पूरी और बात खत्म होने दीजिए। अगर मोदी जी का आप उनके पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए, लेकिन ये जो महिलाओं की स्थिति उत्तर प्रदेश में थी, मैं उसके आपको कुछ डेटा देना चाहती हूँ। इनको आप प्लीज चिल्लाने से बंद करवाइए, क्योंकि मैं डेटा देकर बात कर रही हूँ, ठीक है। उत्तर प्रदेश हमारे देश का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड स्टेट है, सबसे ज्यादा अगर कहीं पर पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश में है। तो जब आप क्राइम का डेटा सिर्फ डेटा देते हैं ना, तो लोगों को आप भ्रमित करते हैं। आप पर मिलियन डेटा क्यों नहीं देते? आप परसेंटेज कोट क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर आप पर मिलियन डेटा देंगे ना, तो 2016 में अगर रेप का रेट 4.6 पर लाख था उत्तर प्रदेश में, आज 24 में वो 2.8 हो चुका है, 2.8 हो चुका है पर लाख पीपल। तो आप उस हिसाब से देखा जाए तो जनसंख्या बढ़ रही है, हो सकता है कि क्राइम आपको संख्या में ये लगता हो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है।
0: महिला सुरक्षा के मुद्दे पर 2017 और 2022 दो बार योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के खेमे में सबसे ज्यादा महिला वोट गए थे, ये तो कई सर्वे यहां पर बताते हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अगर हम देखें पूजा जी, तो पिछली बार कांग्रेस पार्टी की घोषणा थी कि लड़कियों लड़ सकती हैं, और उसके बाद महिला वोटर पर सबसे ज्यादा फोकस पॉलिटिकली भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया था, लेकिन जो योजनाएं फिलहाल उत्तर प्रदेश के भीतर चल रही है, 6 करोड़ लाभार्थी है महिलाएं, अब ऐसी सूरत में अपोजिशन कैसे फाइट करेगा महिला वोटर्स के लिए?
3: देखिए, आज महिलाएं देख रही हैं, अभी बहुत फैक्ट्स की बात हो रही थी, चारू जी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी की बात कर रही थी, मोबिलिटी की बात कर रही थी, तो उत्तर प्रदेश के आंकड़े हैं ये, कांग्रेस और सपा के आंकड़े नहीं है, ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं कि उत्तर प्रदेश में 67,398 क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन हुए। उत्तर प्रदेश पिछले 4 सालों से सिरमौर कर रहा है महिलाओं के अगेंस्ट अपराधों में। तो जहां सेफ्टी की बात करते हैं, मुझे याद है अमित शाह जी ने कहा था कि रात में भी 12 बजे ज्वेलरी पहन के महिलाएं रह कर सकती हैं। अब हम मोबिलिटी और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है महिलाओं का वो 40% है, और महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों की साक्षरता दर से
0: जो बड़ा है,
3: हाँ कम है आज भी, और आज महिलाओं में इंटरनेट की यूसेज
0: पहले के मुकाबले बड़ा है, नेशनल एवरेज से कम है लेकिन पहले के मुकाबले बड़ा है।
3: हाँ, तो मैं नेशनल एवरेज से तो कम है ना, और आज जब 29,000 से 27,000 स्कूल बंद होते हैं तो इसपे सबसे बड़ी मार किस पे पड़ती है, बच्चियों पर पड़ती है, और यही बात हम कह रहे हैं कि आप चुनावों के सामने चुनावों के पास आके आप एक कैश स्कीम बोल रहे थे, ये इनका प्रॉब्लम बन गया है, हर जगह का स्कूल बन गया स्टेट का, पर वही चुनाव खत्म होते ही महाराष्ट्र में 92 लाख, एमपी में करीब 20 लाख लोगों के नाम काट दिए जाते हैं। तो महिलाएं आज ये कैश बेनिफिट, कैश का ये जो पूरा जो खेल चल रहा है उससे
0: दिल्ली में शुरू कर दिया जाता है, एक साल के बाद दिल्ली में शुरू कर दिया जाता है, देखिए यूपी से कनेक्टेड है
3: दिल्ली को, मैं भी आज लक्ष्मी योजना इतने तबके जीते हुए आज इन्होंने अनाउंस की है, पर दिल्ली को भी आज रेप कैपिटल की उपाधि मिली हुई है, दिल्ली में भी यही मांगा जा रहा है। दिल्ली के आंकड़े बताती हूँ साहिल जी, आज महिलाओं की उच्च शिक्षा के मामले में हर 100 पुरुषों के बदौलत महिलाएं 139 है लड़कियां, लेकिन वही जब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रहता है तो हर 100 पुरुषों की बदौलत महिलाएं सिर्फ 13 महिलाएं काम कर रही है। क्यों? क्योंकि सुरक्षित नहीं है। आपने अभी देखा छात्रों की गुंज में एक लड़की आके कह रही है भरी बस रहती तो टच होने से डर लगता है, खाली बस होती है तो छेड़खानी से डर लगता है। महिलाएं आज सुरक्षा मांग रही है, महिलाएं आज स्वतंत्रता मांग रही है, और महिलाएं
0: तो आपको लगता है कि यह नकदी वाली योजनाओं से कोई फायदा नहीं होगा, सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा होगा, यही आपका कहना है पूजा जी?
3: सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा होना भी
0: आपका यही कहना है,
3: क्योंकि हम जब इस देश में आ रहे हैं।
0: निशा जी, क्या यह बात सही है कि योजनाओं के लाभार्थियों से ज्यादा सुरक्षा के मुद्दे पर महिलाएं वोट करेगी उत्तर प्रदेश के भीतर?
4: साहिल जी, महिलाओं के मुद्दों की अगर हम बात करें तो महिला से संबंधित सभी मुद्दे, चाहे वो उनकी शिक्षा है, चाहे वो उनकी सुरक्षा है, चाहे वो उनका करियर है, और चाहे उनके स्टार्टअप्स हैं, और सबसे बड़ी बात नेतृत्व में, मुझे लगता है एनडीए सरकार जितना हौसला किसी ने नहीं दिखाया। पहली बात तो बिल आया और बिल पास हो गया, लेकिन उसको लागू करने के लिए आज एनडीए सरकार ही है जो ये चाह रही है कि महिलाओं का जो आरक्षण का बिल है वो लागू हो, लेकिन वंदन अधिनियम बिल को लटका दिया गया, क्योंकि पता है नेतृत्व तो अगर महिलाओं के हाथों में आएगा तो वहां पर न्याय होगा, लेकिन विपक्ष ये चाहता ही नहीं कि
0: अपोजिशन तो कह रहा है कि आपके वजह से अटका हुआ है, जो बिल पारित हो चुका है 2023 में उस जनगणना के आधार पर लागू कर दीजिएगा, उन सीटों पर लागू हो जाएगा, लेकिन आप नई जनगणना के बाद उसको लागू करना चाहती है।
4: साहिल जी, मैं बता रही हूँ उसका कारण है, अगर आपकी नियत वाक्य में लागू करने की, आपको पता है कि ये चीज कहीं ना कहीं कोर्ट में चली जाएगी और ये मामला और लंबा लटक जाएगा। आप मुझे बताइए, आज अगर महिलाओं की वो सीट बढ़ रही है तो तकलीफ क्या है उसमें, अगर वो बढ़ जाती है 50% का वादा भी कर दिया गृहमंत्री जी ने संसद में खड़े होकर के उसको बढ़ने में,
0: दूसरी होनी भी चाहिए।
4: आपने अभी कहा, आप साहिल जी अभी कहा कि विपक्ष ने, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश, ये बात बताना शायद भूल गए, एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश महिलाओं के खिलाफ जो भी अपराध है उसकी कन्विक्शन में नंबर 1 है, यानी कि अपराधियों को सजा दिलाने में सबसे बड़ी बात ये, इसलिए मैं एक महिला होने के नाते जान सकती हूँ कि अगर हम योगी सरकार से पहले उत्तर प्रदेश में जाते थे, क्योंकि देहरादून मेरा बहुत ज्यादा आना जाना होता था दिल्ली से, तो मैं तो ये साक्षी हूँ इस बात,
0: लेकिन उसके साथ साथ महिलाओं की भागीदारी को लेकर भी जरा सवाल उठना जरूरी है ना। आप सभी महिलाएं, सभी प्रवक्ताएं इस बात को लेकर रख रही है। देखिए, मेरा समय थोड़ा कम है क्योंकि आज नेपाल की बाढ़ की वजह से हमें वो भी खबर दिखानी पड़ी थी। एक जल्दी से मुझे आप सभी से जल्दी से एक एक लाइन में प्रतिक्रिया चाहिए। निशा जी जल्दी से आप
5: जल्दी एक जवाब देना चाहती हूँ।
4: सिर्फ हमारा
0: नहीं, मुझे एक जल्दी से आप सभी से प्रतिक्रिया चाहिए। आज की स्थिति में 403 में केवल 52 महिला विधायक उत्तर प्रदेश के भीतर है। क्या आप सभी, क्योंकि महिला बिल तो अभी तक लागू नहीं हुआ है, क्या आप सभी प्रवक्ताएं अपनी अपनी पार्टी से मांग करेंगे कि 33% टिकट्स बांटे जाए महिलाओं के लिए? चारू जी
4: बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, और हम तो यही तो बात कह रहे हैं।
1: एब्सोल्युटली, और ऐसा ही होना चाहिए। जी
2: साहिल जी,
1: साहिल जी
0: चलिए ठीक है, मेरे पास समय कम है, लेकिन जो नेपाल में बाढ़ आई है उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल हम लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद भी कवरेज जारी रहेगी, आप देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आगे आगे
3: उधर
2: उधर गया।
3: करेक्ट करेक्ट
4: मिल गया।
5: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
6: पापा
7: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
6: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
7: छक्का?
6: सब कैशलेस हो गया है।
7: हाँ
8: टाटा
9: AIG है तो भरोसा है।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: इतिहास, धर्म और संस्कृति की त्रिवेणी पर सजेगी यूपी के विकास की महफिल। कुंभ नगरी प्रयागराज में होगी बड़े मुद्दों पर बात। विकसित यूपी बैठक प्रयागराज जल्द आ रहा है सिर्फ यूपी तक पर।
3: देश की राजधानी दिल्ली में मूसलाधार बारिश हो रही है और थोड़ी सी देर की बारिश में देश की राजधानी का क्या हाल है, ये आपको तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है।
4: हालांकि मुख्य सड़क, आप सोचिए नई दिल्ली की ये मुख्य सड़क है, लेकिन जैसे तेज बरसात शुरू हुई है और काफी मूसलाधार बारिश हुई है, दिल्ली के कुछ इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, तो ज्यादातर जो हिस्से हैं वो रेड अलर्ट की चपेट में हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास अमित वधवार के साथ मैं आशुतोष मिश्रा आज तक।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

17 अगस्त को नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान होता है। बीजेपी की राष्ट्रीय टीम में पार्टी की मुखर महिला नेता स्मृति ईरानी को यूपी कोटे से जगह मिलती है। यूपी से 8 सदस्य बनाए जाते हैं, 8 में से 3 महिला सदस्य होती हैं। और उसके 7 दिन यानी एक हफ्ते बाद ही योगी कैबिनेट का महिलाओं को लेकर बड़ा फैसला आता है। योगी सरकार लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना का ऐलान करती है।

0: 17 अगस्त को नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान होता है। बीजेपी की राष्ट्रीय टीम में पार्टी की मुखर महिला नेता स्मृति ईरानी को यूपी कोटे से जगह मिलती है। यूपी से 8 सदस्य बनाए जाते हैं, 8 में से 3 महिला सदस्य होती हैं। और उसके 7 दिन यानी 1 हफ्ते बाद ही योगी कैबिनेट का महिलाओं को लेकर बड़ा फैसला आता है। योगी सरकार लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना का ऐलान करती है। यूपी में 60 साल और उससे अधिक उम्र की महिलाओं को आजीवन मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देते हैं। रक्षाबंधन से ठीक पहले योगी सरकार का ये ऐलान सामने आता है। ये योजना सियासी नजरिए से क्यों अहम और असरदार साबित हो सकती है, इसकी वजह भी जान लीजिए। अनुमान है कि इस योजना से रोजाना 88,000 महिलाओं को फायदा मिलेगा। यूपी रोडवेज की बसों में आधार कार्ड या वोटर आईडी दिखाकर इस योजना का लाभ लिया जा सकेगा। इस योजना पर करीब 22.5 करोड़ प्रतिमाह और 270 करोड़ रुपए सालाना खर्च आएगा।
1: अब देखिए, ये सारी जो बसें हैं, इन्हीं बसों से मातृशक्ति योजना के तहत उनको फ्री एक तरीके से अब आजीवन ये सेवा दी जाएगी। और ये मास्टर स्ट्रोक योगी आदित्यनाथ का माना जा रहा है। ये महिलाएं देखिए जो 60 साल से ऊपर की हैं, वो सभी इससे निशुल्क यात्रा कर पाएंगी। पूरे प्रदेश में जहां भी उनको जाना है वो इस बस के जरिए जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कल कैबिनेट में इसको पास करने के बाद आज इसका इनॉग्रेशन है। आप देखिए, कई महिलाएं अपने अपने गंतव्य स्थान पर जाने के लिए तैयार हैं।
0: तो योगी सरकार की ये योजनाएं ऐसे वक्त में आई जब सामने यूपी विधानसभा का चुनाव है। जाहिर है, बीजेपी की कोशिश ज्यादा से ज्यादा महिला वोट हासिल करने की है। और मातृशक्ति विकास योजना के ऐलान के बाद समाजवादी पार्टी में भी खलबली है। खबर है कि समाजवादी पार्टी महिलाओं से जुड़ी किसी बड़ी योजना का ऐलान कर सकते हैं। 12:30 बजे समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव इस योजना का ऐलान कर सकती हैं। यानी महिला वोटरों का समर्थन हासिल करने की दोनों ओर से जीतोड़ प्रयास हो रहे हैं। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।

राजधानी दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में स्वाइन फ्लू के मामलों में इजाफा हुआ तो सरकार की चिंता भी बढ़ गई। एहतियाती कदम उठाए जाने लगे, एडवाइजरी जारी की गई, उच्च स्तरीय बैठकों का दौर शुरू हो गया। बात अगर राजधानी दिल्ली की करें तो बीते कुछ दिनों में यहाँ H1N1 इन्फ्लुएंजा के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब तक दिल्ली में H1N1 के 2000 मामले सामने आए हैं और स्थिति चिंताजनक है, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने अहम बैठक भी बुलाई। उधर हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अस्पतालों में स्पेशल वार्ड बनाए गए हैं जहां स्वाइन फ्लू वायरस से पीड़ित मरीज का इलाज किया जा सके। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक स्वाइन फ्लू एक वायरल संक्रमण है जो संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने और नजदीकी संपर्क में आने से फैलता है और जल्द ही इसके लक्षण भी नजर आने लगते हैं। यूं तो मौसम में बदलाव के साथ बुखार, खांसी, गले में खराश, सिर दर्द और शरीर में दर्द जैसी समस्याएं होना आम है। अक्सर लोग इन लक्षणों को सामान्य वायरल संक्रमण या मौसम का असर मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। हालांकि अगर ये लक्षण लगातार बने रहे, बढ़ने लगे या स्वास्थ्य में सुधार न हो तो सावधानी बरतना जरूरी है। ऐसे लक्षण स्वाइन फ्लू यानी H1N1 संक्रमण में भी दिखाई दे सकते हैं। कोलकाता और बेंगलुरु जैसे शहरों में भी हाल के दिनों में मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने बढ़ते स्वाइन फ्लू मामलों के मद्देनजर दिल्ली और देश में स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक कर चुके हैं। साथ ही कई राज्यों में भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं। आज तक ब्यूरो।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: तो दंगल में मेरे साथ बस इतना ही, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे हल्ला बोल के साथ, देखते रहिए आज तक।
3: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय वेक्टर्स, भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले वाटर टैंक्स, टंकी मतलब वेक्टर्स।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: से हाहाकार, सैलाब में समाई दर्जनों इमारतें और गाड़ियां, करीब 400 लोग लापता, 22 की मौत, त्रिशूली और भोटिकोशी नदियों ने मचाई तबाही। नेपाल में लापता होने वालों में 133 भारतीय भी शामिल, प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाली प्रधानमंत्री बालन शाह से की बात, अलर्ट पर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश, भारतीय एयरफोर्स और एनडीआरएफ भी तैयार। उत्तर प्रदेश में आधी आबादी को लुभाने की होड़, योगी सरकार देगी फ्री बस सेवा और 50,000 स्कूटी, समाजवादी पार्टी का 40,000 रुपए का दाव। बीजेपी के हमलों के बाद अब मुस्लिम महिलाओं ने राहुल गांधी को घेरा, हिजाब को लेकर दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन, हिजाब पर चुप्पी का विरोध। दिल्ली में 24 घंटे में स्वाइन फ्लू के 134 नए मामलों से हड़कंप, सभी अस्पतालों में 24 घंटे इमरजेंसी में डॉक्टर की तैनाती के निर्देश, अब तक 2,442 केस।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

Beleza.

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। नेपाल में असामान्य स्थिति पैदा हो गई है और इसीलिए आज हल्ला बोल में कोई बहस नहीं, लेकिन सीधी कवरेज नेपाल से हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि जो परिस्थिति बनी है, देखते ही देखते लोगों को आप दौड़ते भागते हुए जल सैलाब से किसी तरह जिंदगी बचाने के लिए भागते हुए देखेंगे, और जैसे पानी पीछे पीछे सैलाब बनकर आ रहा है, लोगों को लील रहा है। अलग अलग जगहों की नेपाल की तस्वीरें आई हैं। नेपाल में आज अचानक आई बाढ़ ने कहर मचा दिया है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा यह है कि ये बाढ़ अब आने वाले वक्त में यूपी बिहार के लिए एक बड़ा चैलेंज बन जाएगा, और हाई अलर्ट पर कई जिलों को कर दिया गया है। सबसे पहले आपको बताते हैं हुआ क्या। तिब्बत की ओर से आ रही भोटकोशी नदी, जिसमें अचानक से जलस्तर बेकाबू हो गया, बहुत ज्यादा उफान हुआ, और इसके बाद आगे बढ़ता हुआ पानी अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को मानो बहाता चलाता गया। क्योंकि अगर आप देखिएगा तो कहीं पर पुल बहते हुए जा रहे हैं, कहीं पर बराज बहते हुए जा रहे हैं, कहीं पर घर, पहाड़, सब कुछ। और अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक सबसे दुखद बात यही है कि बाढ़ में नेपाल के 11 हाइड्रो पावर प्लांट्स बह गए हैं। इससे 431 मेगावाट के बिजली उत्पादन संयंत्र ठप हो गए हैं। तो इस वक्त वहां पर हाहाकार की ही स्थिति समझिए। बाढ़ में 19 पुल बह गए हैं, 40 किलोमीटर की सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है, 25 से ज्यादा टेलीकम्युनिकेशन साइट्स प्रभावित हो गए हैं, कई बैंक, कई जो इस तरह के वित्तीय संस्थान हैं, उनकी इमारतें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। देखिए, ये पुल तो एकदम जैसे लाइव दिखा, पहले पानी लगा कि उसके नीचे से पार हो जाएगा, लेकिन उसके बाद से अचानक सब कुछ लीलता और सब कुछ लेकर अपने साथ ये बह जाता है। और ऐसे अनेकों वीडियो हैं। अब दुख यही है कि इसका फॉलोआउट क्या होगा, क्योंकि यूपी और बिहार इस पूरे इलाके में माना जा रहा है कि आने वाले दिन चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। ये देखिए, एक पूरी इमारत पीछे से जैसे जल सैलाब आ रहा है, लोग भागते बच पाते इससे पहले, सब कुछ तबाह। ये रसुवा नेपाल का वीडियो है। तो नेपाल में आई इस तबाही के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां के प्रधानमंत्री बालन शाह से फोन पर बात भी की है, हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया है। बालन शाह से प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत हुई है। राहत में भारत कोऑर्डिनेशन में जुट गया है। इस बीच नेपाल की इस बाढ़ का असर यूपी और बिहार पर पड़ने की आशंका है। यूपी के 2, बिहार के 6 सीमावर्ती जिलों में अलर्ट है। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से बात की है। नेपाल की बाढ़ बहुत बड़ी तबाही लेकर आया है, जानमाल के बड़े नुकसान की आशंका है। इसी पर आज का हल्ला बोल हम करेंगे, चर्चा करेंगे, हमारे साथ रिपोर्टर्स जुड़ेंगे, हम हर पल की जानकारी आपको देंगे। आने वाले वक्त में ये उत्तर प्रदेश, बिहार, कौन कौन से जिले प्रभावित हो सकते हैं, कौन कौन सी नदियों में बहुत असर पड़ सकता है, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखा। ये तस्वीरें नेपाल पर अचानक आए जल प्रलय की है। फ्लैश फ्लड नेपाल की मानव बस्तियों को तिनके की तरह बहा ले जाती दिख रही है। बाढ़ का ये हमला नेपाल तिब्बत बॉर्डर से शुरू हुआ। नेपाल के स्थानीय समय से सुबह तकरीबन 9 बजे तिब्बत से आ रही भोटे कोशी नदी में जलस्तर अचानक बढ़ा। इससे तिब्बत से सटा नेपाल का रसुवा और धादिंग जिला प्रभावित हुआ। बाढ़ का कहर नेपाल के गोरखा और चितवन तक पहुंच गया है। नेपाल की तबाही के बाद भारत के सीमावर्ती जिलों में अलर्ट है। बिहार में गंडक नदी में जलस्तर बढ़ने की आशंका पर राज्य के 6 जिलों पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में सतर्कता बढ़ा दी गई है। नेपाल में बाढ़ के प्रभाव से यूपी के महाराजगंज और कुशीनगर में भी गंडक नारायणी नदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका है। नेपाल में आई बाढ़ से भारत में खतरे के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से फोन पर बात की है।
1: एकदम उस पर पूरी तरह हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूँ, जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि नगर जाऊँगा।
0: इस बीच नेपाल टूरिज्म बोर्ड के मुताबिक बाढ़ के बाद तकरीबन 400 लोग लापता हैं, जिनमें 105 से अधिक भारतीय हैं। मृतकों का शुरुआती अनुमान 16 है, लेकिन जिस तरह की तबाही है, यह आपदा बहुत बड़ी है और अभी पूरी तरह जानमाल के नुकसान का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। आज तक ब्यूरो। तो बड़ी खबर यही है कि इस वक्त नेपाल से जल प्रलय की खबर आ रही है। वाकई इन तस्वीरों को देखकर ऐसा ही लगता है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय पर्यटकों का लापता होना सबसे बड़ी परेशानी की सबब है, क्योंकि नेपाल फ्लैश फ्लड में अब तक 22 लोगों के मारे जाने की, 400 लोगों के लापता होने की खबर है, लेकिन 133 भारतीय भी शामिल है। 133 पर्यटकों का लापता होना अभी तक बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिली है, लेकिन इतना जरूर पता चला है कि 133 के आसपास भारतीय, आप समझ रहे हैं, कल्पना कीजिए अलग अलग जगहों पर लोग गए हुए थे और ऐसे 133 भारतीय पर्यटकों के लापता होने की खबर है। हर तरफ से सिर्फ जल प्रलय और तबाही बर्बादी की तस्वीरें। सुनिए इस वीडियो में क्या कहा जा रहा है। हमारे तमाम सहयोगी जुड़ रहे हैं अलग अलग कैमरा एंगल से। जितना भी वीडियो हमारे पास आया है, हम एक एक करके आपको दिखाएंगे। बहुत भयावह स्थिति दिखाई दे रही है, लेकिन हमारे साथ इस वक्त हमारे रिपोर्टर पंकज दास जुड़ रहे हैं नेपाल से, काठमांडू से। सबसे पहले आप बताइए कि क्या स्थिति इस वक्त दिखाई दे रही है पंकज?
2: ये जो आज सुबह जो आपदा आया है, उससे लगातार जो बुरी खबर लगातार काठमांडू आ रही है। कई सारे इलाके जो इन नदियों के तटों पर बसे थे, कई मोहल्ले, कई गांव, कई बस्तियां बिल्कुल जिनका नामो निशान मिट गया है। इस तरह की भयंकर खबरें जो है लगातार काठमांडू में आ रही है। सरकार लगातार बचाव की कोशिश में लगे है। अब तक करीब 90 लोगों को वहां से रेस्क्यू करके काठमांडू और आसपास के जिले में अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। और चूंकि अब अंधेरा होने जा रहा है, रात को जो है हेलीकॉप्टर का वहां पे जाना, रेस्क्यू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अब जो भी होगा वो कल सुबह ही होगा। इस समय पहले तक जो हेलीकॉप्टर का मूवमेंट दिख रहा था यहाँ काठमांडू के आसमानों में, वो अब बंद हो गया है, क्योंकि अंधेरा में जो है वो यहाँ का हेलीकॉप्टर।
0: पंकज मुझे ये बताइए, जो आधिकारिक जानकारी दी जा रही है, 22 लोगों के मारे जाने की खबर है, 200 लोगों के लापता होने की खबर है, मुझे ये बताइए कि, माफ कीजिएगा, 400 लोग लापता बताए जा रहे हैं और 22 लोगों की मौत की खबर है, 133 भारतीय भी लापता बताए जा रहे हैं, क्या जानकारी है हमारे पास? कौन कौन से इलाके में ये सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है? और आप बता रहे हैं कि कैसे गांव के गांव ऐसा लगता है कि जैसे खत्म हो गए हैं।
2: आधिकारिक रूप से जो 22 शव मिले हैं, जो राहत उधार काम में स्थानीय लोग लगे हुए, जो वहां के जो सुरक्षा कर्मी वो लगे हैं, उनको अभी तक 22 शव मिले हैं। इसलिए ये जो आंकड़ा है लगातार बढ़ता ही जाएगा, कल तक क्योंकि जब पूरी तरीके से ये बाढ़ का सिलसिला कम होगा उसके बाद ये मालूम करेगा, या जिला प्रशासन इस बात का आंकड़ा जुटाने में लगा है कि कहाँ कितने लोग हताहत हुए, कहाँ कितने मरे, कितने लापता हुए। ये जो 400 लोग लापता होने की खबर है, ये सिर्फ पर्यटकों पर है। जो विदेशी पर्यटक और नेपाली पर्यटक जो विभिन्न एजेंसियों के मार्फत से यहाँ कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर गए थे या जो ट्रेकिंग पर गए थे, ये उनके लापता होने की खबर है। सैकड़ों लोग अभी और भी लापता है, जो गांव में जहाँ जहाँ बाढ़ में प्रलय मचा है, वहाँ के लोगों की अवस्था अभी कुछ भी जानकारी नहीं मिल पाई है।
0: बिल्कुल, उम्मीद रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। बहुत मुश्किल स्थिति है नेपाल में और इस वक्त भारत के सभी लोगों की प्रार्थनाएं उनके साथ है और उम्मीद यही है कि यूपी बिहार में कम से कम जो आने वाले दिन है चैलेंज वाले होंगे और उसकी तैयारी पूरी रहे। धैर्यकांत दत्ता वरिष्ठ पत्रकार नेपाल से जुड़ रहे हैं, ईश्वर चंद्र झा वरिष्ठ पत्रकार नेपाल से जुड़ रहे हैं, अरुण ग्यावली राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ रहे हैं, नवीन भटनागर पूर्व डीजी एनडीआरएफ के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं नेपाल ही चलना चाहूंगी क्योंकि गृहमंत्री अमित शाह ने भी सम्राट चौधरी से बात की है, बिहार के मुख्यमंत्री से। जब हम ये तस्वीरें देख रहे हैं धैर्यकांत दत्ता जी, तो आप क्या बताने की स्थिति में इस वक्त है? आप क्या, आपको लगता है क्या ऐसी परिस्थिति बनी जिसकी वजह से, क्योंकि तिब्बत की तरफ से नदी में इतना पानी आना और उसके बाद से फिर ऐसा, मतलब एकदम जैसे अचानक सब कुछ हुआ है, या पहले से आशंका थी मिस्टर दत्ता?
3: जी बिल्कुल अंजना जी, जो ये कल अचानक केरुंग काउंटी, तिब्बत का जो केरुंग काउंटी है, वहां से ये आपदा शुरू हुई है। केरुंग काउंटी में जो अचानक जो बाढ़ आई, उस बाढ़ से पूरा नेपाल का जो ये 500 जगह बहुत बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया है। खास करके रसुआ जिला बोला जाता है, रसुआ का टीम, उसके बाद रसुआगढ़ी जो बिल्कुल तिब्बत से सटा हुआ जिला है ये, उसके बाद आपका सैफी जोशी हो गया, उसके बाद धादिंग का गलसी हो गया, मलिकू हो गया, नुवाकोट का त्रिशूली बाजार हो गया, उसके बाद बेतराबती बाजार हो गया, बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। खास करके जो ये त्रिशूली बाजार और बेतराबती बाजार है, बाजार अब नहीं रह गया है, नामो निशान करीब करीब नामो निशान मिट चुका है वहां का। तो इसी से अंदाजा लगा जा सकता है कि कितना बड़ा तूफानी भारी बाढ़ आया हुआ है, ये अचानक आया हुआ बाढ़ है। और बताया जा रहा है अब अभी तक 500 से ज्यादा लापता है, 500 अभी तक कोई संपर्क में नहीं है, 500 से ज्यादा लोग लापता है, और 22 का तो डेट कंफर्म हो चुका है, अभी एक घंटा पहले का रिपोर्ट है।
0: 133 इंडियंस बताए जा रहे हैं भारतीय, क्या कोई जानकारी आपके पास में स्पेसिफिक है उनके बारे में कि वो कहां पर होंगे, कहां पर ये घटना उनके लिए, कहां से लापता हुए हैं?
3: अभी तक जो बताया गया उसमें से कुल 384 पर्यटक लापता बताया जा रहे हैं, उसमें से 291 विदेशी और 93 नेपाली है। और खास करके जो उसी एरिया में गोसाई कुंड करके जगह है, जो धार्मिक पर्यटन स्थल है, वहां पे ज्यादा लोग जाते हैं धर्म, खास कर रक्षाबंधन के समय में बहुत लोग जाते हैं वहां पे, गोसाई कुंड करके जगह है वहां पे जाते हैं, वहां सबसे ज्यादा प्रभावित पर्यटक वहीं पे बताया जा रहा है।
0: लौट रहे हैं आपके पास अरुण ग्यावली जी, आपके पास क्या जानकारी है, जो लोग इस वक्त भी लापता बताए जा रहे हैं, और नेपाल में क्या स्थिति है इस वक्त?
4: सबसे पहली बात, ये फ्लॉट कैसे आया इसको पहले आप देखिए। ऐसी फ्लॉट 2025 में एक साल पहले भी आई थी, पर वो टेलर था, अब उसी जगह आई थी, उसी रसुआ कस्टम को डैमेज किया हुआ था, वही से करीब 400 गाड़ी बह गए थे, वो भी बहुत सारे लोग मरे हुए थे, पर वो छोटे स्केल में था। तो ऐसा होता है कि भारत और चाइना के बीच में ये आपका फ्लॉड मैनेजमेंट के संबंध में, नेपाल और इंडिया में आपका फ्लॉड मैनेजमेंट के संबंध में जानकारी की सूचना दी जाती है। यदि ये सूचना अगर इस टाइम में, जैसे केरुंग बॉर्डर जो है, केरुंग बॉर्डर से ऊपर से 50 किलोमीटर ऊपर से आती है नदी, केरुंग बॉर्डर से ऊपर छोटा केरुंग के ऊपर बड़ा केरुंग है, बड़ा केरुंग के बाद में आपका ये जो हिंदू कुश पर्वत क्रॉस कर होता है, तो वहां से हिंदू कुश पर्वत से नदी का पानी आता है। ये बाय द वे किसी आपके लैंडस्लाइड के कारण से पानी रुका हुआ था, और जब पानी वहां से लैंडस्लाइड फूट के पानी जब बढ़ा तो उसका इंफॉर्मेशन अगर इमीडिएट चाइना के तरफ से नेपाल में आता तो बहुत सारे लोग बचते।
0: ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं अरुण जी, कि अगर पहले से जानकारी दी गई होती तो शायद बच पाते, लेकिन जो इसका मैग्नीट्यूड है, जो वीडियो में दिख रहा है, एक बार मैप दिखा दीजिए पहले, जो आप बता रहे थे नदी का वो बता देते हैं, कैसे तिब्बत से ये नदी आ रही है, फुल स्क्रीन दिखा दीजिए, तिब्बत से ये नदी आ रही है और वहां से ये आप देख रहे हैं तमाम जो पूरे, लेकिन अब डर यही है कि अब यहां से नेपाल से होते यूपी बिहार में इसके लिए अलर्ट घोषित किया गया है तिब्बत की तरफ से। ये फ्लैश फ्लड आया है, रसुवा, नुवाकोट, ये तमाम जगह है जो आप देख रहे हैं उससे प्रभावित हो रहे हैं। अब वीडियोस दिखाइए, एक एक करके वीडियो फुल फ्रेम मुझे ये बताइए अरुण जी, कि मतलब इसके लिए मतलब काफी दिनों से लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ता, क्योंकि जो मैग्नीट्यूड है इसका, जिस तरह से मतलब जल आ रहा है, इतना बहुत भयावह है, मतलब इतना आसान नहीं है, जब बड़े बड़े पुल बिल्डिंग सबको वो भस्म कर चुका है, तोड़ चुका है। लील चुका है।
4: ऐसा है कि 50 किलोमीटर ऊपर से आया हुआ पानी है, मैं उस रास्ते में बहुत अच्छी तरह से घूमा हूँ।
0: हाँ।
4: तो 50 किलोमीटर नदी का बहाव आने में जो समय लगता है, यदि आधे घंटे आधे आगे अगर यदि मालूम होता
0: हाँ।
4: तो बहुत सारे लोग बचते। सुबह हमें एक फोन आया हमारे एक क्या अभी का क्या 400 से ऊपर आदमी मानसरोवर के लिए जा रहे थे, वहाँ पे टिमुरी के पास आपके पास इमिग्रेशन है, नेपाली इमिग्रेशन, जो बिल्डिंग आप दिखा रही है वो चाइनीज इमिग्रेशन है, इमिग्रेशन एंड कस्टम। वहाँ पे
0: जो व्हाइट वाली बिल्डिंग है, कंफर्म कीजिएगा एक बार, दिखा दीजिए एक बार फिर से, जो व्हाइट बिल्डिंग है
4: चाइनीज इमिग्रेशन, वो चाइनीज इमिग्रेशन है, नेपाल का नहीं है, दैट इज चाइनीज इमिग्रेशन,
0: ये वाला।
4: हाँ चाइनीज इमिग्रेशन है, कस्टम भी वही है, इमिग्रेशन भी वही है। तो वहाँ पे 400 लोग हमें सुबह फोन आया, मतलब एक घटना के बाद मलेशिया से हिंदू पिलग्रिम जो मानसरोवर के लिए जा रहे थे, मोर देन 400 पीपल हिंदू जो वहाँ पे इमिग्रेशन के पास गए, सब बह गए। आस्ते आस्ते आएगा, जब नंबर 1336 सरकार दिखा रहा है ना, आस्ते आस्ते ये नंबर आपका 1000 से ऊपर जाएगा, आप निश्चिंत होइए। और भगवान का कृपा है कि ये फ्लॉड आपका दिन में आया, यदि फ्लॉड रात में आता तो न जाने क्या महाभारत होती, आप कल्पना नहीं कर सकते। अब आप दूसरी है कि फ्लॉड अचानक आया तो कितने स्पीड में आया आपका, आधे घंटे आगे भी कहते तो जो आदमी से आप लोग
0: खबर आ रही है, भारतीय वायुसेना के C-17 और C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट नेपाल में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए हिंडन और पालम एयरबेस पर तैयार हो गए हैं। तो एक बार फिर से आपदा की स्थिति में अपने पड़ोसी देश की मदद के लिए भारतीय वायुसेना आगे बढ़ने को तैयार है और भारतीय वायुसेना के C-17 C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट नेपाल में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए हिंडन और पालम एयरबेस पर तैयार है। एक बार जल्दी से शशि के पास चलते हैं क्योंकि शशि उसके बाद हम सीधा चलेंगे कि आखिर ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। नवीन भटनागर जी पूर्व डीजी NDRF के हमारे साथ है, लेकिन शशि वहां पर मतलब कई जिलों में अब तो बहुत ही हाई अलर्ट घोषित किया गया है क्योंकि बहुत स्थिति भयावह है और फॉलआउट हो सकता है।
5: देखिए अलर्ट तो है और इससे इंकार नहीं किया जा सकता है, हाई अलर्ट है हम ये कह सकते हैं। और 6 जिले जो सीधे सीधे प्रभावित होंगे उन जिलों में सभी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, सबसे बड़ा असर ये है। और पश्चिम चंपारण जिला पहला वो जिला होगा भारत के अंदर जो बिहार का जिला, जहां वो इस विभीषिका को फेस करेगा अगर वो पानी उसी फ्लो में यहां पहुंचता है तो। एक राहत की बात यह रही है कि जो मानसून का मौसम है उस मौसम में भी 80,000 के आसपास क्यूसेक डिस्चार्ज रहा था जो गंडक बराज है उससे, लेकिन अब उसमें इजाफा हो रहा है, थोड़ी देर में आंकड़े आने शुरू हो जाएंगे कि पानी का डिस्चार्ज कितना बढ़ा है और वो अपडेट हम लगातार देते रहेंगे। जी
0: बिल्कुल, धन्यवाद शशि भूषण इस तमाम जानकारी के लिए। हमारी भी नजर रहेगी क्या होता है आगे, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ ही देर में ईश्वर चंद्र झा अगर जुड़ गए तो मुझे बता दीजिएगा, अभी कुछ ही देर में वो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। लेकिन NDRF की तरफ से अगर आप इन वीडियोस को देख रहे हैं भटनागर जी, तो आप क्या बताएंगे भारत में यूपी बिहार ऐसे इलाकों को कैसे सतर्क होना चाहिए? ये वीडियो देखिए, ये रसुवा नेपाल का है, मतलब घर गाड़ी सब कुछ तिनके की तरह बहता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। बताइए नवीन जी, अनम्यूट कीजिए सर, शायद आपने म्यूट किया हुआ है।

0: तो ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त नेपाल की दिखा रहे हैं, रसुवा नेपाल। ये वाला वीडियो आप देखिए किस तरह का ये सैलाब है, मतलब गाड़ियां, घर, सब कुछ न सिर्फ डूब रहे हैं बल्कि बहते हुए दिखाई दे रहे हैं पानी में इधर से उधर। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ये जो जल सैलाब आया है वो किस तरह से नेपाल में इस वक्त, बता भी तो लोग ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका जाहिर कर रहे हैं। आपने सुना ही, हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं वो कह रहे हैं गांव के गांव ऐसा लग रहा है जैसे साफ हो गए हैं, लेकिन अभी तक 22 लोगों के मारे जाने की पुष्टि है। और ये वाली बिल्डिंग जो हम दिखा रहे हैं इसी के बारे में आप बता रहे थे, जल्दी से एक बार आप ही के पास वापस लौटते हैं अरुण जी। आप बता रहे थे कि कैसे ये मतलब कैलाश मानसरोवर पर जाने के लिए शायद श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए थे और वहां पर ये हुआ है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका है इसमें।
1: हेलो,
0: हाँ बताइए, बिल्कुल आ रही है आवाज, बताइए बताइए अरुण जी।
1: आप वो बिल्डिंग के आप देखिए लाल अक्षर में चाइनीज में लिखा हुआ है, वो चाइना इमिग्रेशन है आपका, और इधर से नेपाली लोग जाते हैं। नेपाल में क्या है कि मानसरोवर जाने के लिए सबसे आसान रास्ता अभी वही है।
0: हाँ।
1: तो भारतीय तीर्थयात्री या हिंदू जो विदेशी है वो भी इसी रास्ते से जाते हैं।
0: हाँ, नेपाल के लोग भी जाते होंगे।
1: नेपाल के लोग भी जाते हैं शायद। हाँ। इस बार मैं नहीं गया, शायद मैं भी इसी में पड़ जाने वाला था।
0: अच्छा,
1: तो ऐसा क्या है कि वो रास्ते हमने पूरे वो ज्योग्राफी को बहुत बार गए हैं, हम देखे हैं। इसमें अगर तिब्बत के साथ अगर कोऑपरेट करता तो 50 मिनट आधा घंटा आगे हम लोग को इन्फॉर्मेशन आ सकता था, उससे बहुत सारे लोग बचते हैं। जिस तरह अभी नेपाल में बाढ़ आया हुआ है, उत्तर प्रदेश में तो बाढ़ पहुंचा नहीं है ना, बाढ़ तो नेपाली में ही अभी घूम रहा है, परंतु उधर तो आप लोग तैयार, उधर उत्तर प्रदेश में बिहार में लोग तैयार होकर बैठे हुए हैं। और दूसरी बात क्या है कि वहाँ पे पानी का फैलावट की जगह नहीं है, दो तरफ पहाड़ियां हैं और नदी है। नदी का भी हाइट आपने देख लिया, पुल उड़ा हुआ है, कहीं 50 से लेकर 70 मीटर ऊंचाई तक सुनामी की तरह बाढ़ आए हुए हैं।
0: ये वाला जो है ये इमिग्रेशन ऑफिस एकदम बॉर्डर पे है क्या, चाइना नेपाल?
1: हाँ, बॉर्डर पे है, बॉर्डर पे होते हैं, एक पुल पार करने के बाद में वो बिल्डिंग में जाएंगे।
0: ये जो गाड़ियों के साथ पूरा गिर रहा है ये पुल ही ढहता हुआ दिख रहा है ना?
1: हाँ जी, हाँ जी, वो पुल है नेपाल चाइना के बीच में, और इधर जो गाड़ियां है इधर आ गया, आपका नेपाल का पार्ट हो गया, वहाँ पे वो जो कस्टम कराने के लिए चाइनीज ईवी गाड़ी सारे आए हुए हैं, वहाँ पे बैठा हुआ था कस्टम।
0: हालांकि ये लग रहा है कि ये जैसे कुछ पार्किंग लॉट है वहाँ पर, उस पर गाड़ियां पार्क है। हाँ, शुरू से बैठे देखा, ये पार्किंग लॉट है, ये पुल नहीं लग रहा।
1: वो आपका 400,
0: ये देखिए ये जो है ना, ये अगर स्टिल कर सकते हैं थोड़ा सा स्टिल कर दीजिए, ये पार्किंग लॉट पे सारी गाड़ियां पार्क है, ऊपर में बिल्डिंग है और उसके बाद एक एक करके। हाँ,
1: ये चाइना का साइड का फोटो है,
0: ये चाइना के साइड का है,
1: ये चाइना का साइड जो गाड़ी है ना जो तीर्थयात्री को लेकर जाने वाला है, वहाँ से उस गाड़ी में बैठकर तीर्थयात्री आपको पहली रात जाके आपका केरुंग बैठेंगे, दूसरी रात सांगा बैठेंगे, उसके बाद में
0: जाते हैं।
1: जाते तो हमें जो आंकड़ा मिला हुआ 400 से अधिक तीर्थयात्री बह गए हैं, उनकी अता पता नहीं है। हमें मलेशिया से फोन आया था कि हमारे आदमी संपर्क में नहीं है, एक और आदमी भी किया था, तो अब अगर बुद्धिमान आदमी हो तो कितना भागेगा, पहाड़ भी चढ़ेगा तो आपने बता दिया जिस मैग्नीट्यूड से पानी आया हुआ है उससे आपसे कोई बचा नहीं, सारे लोग बह गए। और आपके जो गाड़ियां बही है 400 गाड़ी बहे हुए है चाइना से इमिग्रेशन करके, चाइना से कस्टम क्लियर करके नेपाल कस्टम यार्ड में बैठा हुआ था। वो सारे गाड़ियां आपके पब्लिक का नहीं है, वो कस्टम क्लियरेंस के लिए आया हुआ था, वो बहे हुए
0: हैं। नवीन भटनागर जी, मैं लौट रही हूँ अरुण जी आपके पास एक बार। नवीन भटनागर जी जुड़ गए पूर्व डीजी एनडीआरएफ के। नवीन जी, अरुण जी बता रहे हैं कि शायद अगर थोड़ा पहले बताया गया होता तो कम से कम इस तरह से जो इमिग्रेशन ऑफिस है चाइना नेपाल बॉर्डर पर, वहां पर जो लोग बह गए 500 लोग, तो वो कह रहे हैं कि वहीं पर मौजूद थे। आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं एनडीआरएफ की नजर से, किस तरह की तैयारी चाहिए होती है और क्या दिख रहा है आपको?
2: एक्चुअली क्या है, एनडीआरएफ तो अपनी तरफ से तैयार है और टाइम टू टाइम हम लोग एजुकेट भी करते हैं नेपाल के जो फोर्सेस हैं और आर्मी है, उनको बताते भी है। लेकिन अब ये जो प्राकृतिक आपदा हुई है, सडनली जो आपका ग्लेशियर क्रैक किया है उसने, फिर ये डैम का जो स्टैक्ड वाटर है इसके डिस्टर्ब किया, और ये सारा मिला के इकट्ठा होके जो नीचे फ्लो आया है इसका, उसके साथ डेबरीज और जो चीजें आई हैं उनके साथ उस फ्लो में जो भी चीज सामने आई है, चाहे मकान हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे कुछ भी हो, सब उन्होंने सारा वॉश आउट होता हुआ नीचे चला गया, जिसके चक्कर में लोग समझ नहीं पाए और काफी डेथ बढ़ गई, डेथ रेट बढ़
0: लेकिन
2: गया।
0: मैं आपको एक सेकंड टोक रही हूं, आजकल तो इतनी एडवांस्ड तरीके से ट्रैक किया जाता है, क्या ऐसा जल इस तरह के वॉल्यूम में इस तरह के स्पीड रफ्तार के साथ आ रहा हो, उसको ट्रैक करना इतना बड़ा चैलेंज होता है?
2: देखिए, इसके लिए ऑलरेडी हमारे बड़े बड़े सेंसर्स लगे हुए हैं और जो बराबर डैम्स के ऊपर और इधर चारों तरफ जो है निगाह रखते हैं, लेकिन फिर भी जो है ये फेल हो गया, क्योंकि 4.4 मैग्नीट्यूड का बहुत भारी जो है क्रैक होता है, और वो भी आपका जो हुआ है पहाड़ में, तो उसने जो है किसी को संभलने का मौका नहीं दिया, ऑफकोर्स वार्निंग का भी मौका नहीं दिया, क्योंकि ऐसे कंडीशन के अंदर जो है मेन पर्पज ये होता है लोगों की जान बचाना और उनको वहां से निकालना, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से जो है आईएमडी की तरफ से बराबर वार्निंग्स इशू की गई हैं, लेकिन वो थोड़ा लेट हो गए। इन द मीन टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरी सपोर्ट भेजी है
0: ये, लेकिन मेडिकल, और जो इसका मैग्नीट्यूड है वो दिख रहा है, क्योंकि आप देखिए ना, एक पुल जो है वो बीचों बीच बिल्कुल टूट जाता है, बिल्कुल बीचों बीच टूट कर बह रहा है। आप थोड़ा लोगों की आवाज सुना दीजिए, सबसे बड़ी बात यही होती है ना कि ऐसे में नवीन जी जो मलबा पानी के साथ आता है वो सबसे ज्यादा ज्यादा विनाशकारी होता है, क्योंकि उस मतलब जो जहां पर है वहीं पर दब जाता है फिर
2: बिल्कुल
0: बहुत, और वो सॉलिडिफाई भी कर जाता है कई जगहों पर, वो सबसे बड़ा चैलेंज है, वो उस बारे में बताएं कि ये
2: उसके लिए जो
0: रेस्क्यू ऑपरेशंस के इस वक्त शाम के 6:30 बजे अब क्या मायने हैं?
2: नहीं, हमारे पास लाइटिंग होती है, इमरजेंसी लाइट्स होती हैं, इसके अलावा हमारे पास स्नीफर डॉग्स होते हैं, इसके अलावा जो हमारे पास लाइफ लोकेटर्स होते हैं, लाइफ लोकेटर जो है मड में भी आदमी दबा हुआ है और जिंदा है तो हमें पक्का पता लग जाता है कि भाई इधर है, वहां हमारे रेस्क्यूअर जाके और उसको निकाल के ले आते हैं। इसके अलावा अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और बहुत डेवलप हो गई है, हम लोग रेस्क्यू के अंदर एक्सपर्ट्स हैं, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है, बाकी हमारे जो बंदे हैं जो रेस्क्यूअर्स हैं वो बराबर अपना काम डे एंड नाइट करेंगे और जितना जल्दी बचा सकते हैं लोगों को बचाएंगे।
0: और यूपी बिहार में किस तरह से तैयारी होनी चाहिए पहले से?
2: तैयारी तो ऑलरेडी वहाँ हमें पहले ही वार्निंग पता लग गई थी कि नेपाल हर साल आता ही है, नेपाल से पानी हर साल जो है बाढ़ आती है, तो वो लोग जो है हम पहले से ही तैयार रहते हैं।
0: ठीक है, आपकी आवाज बीच में थोड़ा कट रही है, अरुण गवली जी मैं आपके पास आऊंगी। इस बीच हमारी कोशिश है कि जिन जगहों पर ऐसे हालात बने हैं वहां से ईश्वर चंद्र झा कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन ये वो इमिग्रेशन ऑफिस आप देख रहे हैं, चाइनीज इमिग्रेशन ऑफिस, जहां पर जो कि बॉर्डर पर है नेपाल चाइना के, जहां पर बताया जा रहा है पर्यटकों होंगे और वहां पर सब कुछ आप देख रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे जल सैलाब और उसके साथ जो पूरा मलबा आता है वो पूरी बिल्डिंग को निगल जाता है। पंकज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पंकज क्या स्थिति है, कुछ अपडेट आया, कोई नई जानकारी आई?
3: बिल्कुल, अभी अभी सरकार की तरफ से बताया गया है कि 55 लोगों के शव जो है वो बरामद हो चुके हैं।
0: 55 लोगों के शव, तो 55 लोगों की आधिकारिक रूप से मौत की पुष्टि हो रही है?
3: जी बिल्कुल, सरकार की तरफ से अभी यही सूची जारी की गई है कि 55 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं और करीब 150 लोगों को जो है वहां से जीवित उद्धार करके अलग अलग अस्पतालों में उनको सबको दाखिल किया जाए ताकि उनका उपचार किया जा सके। और इसी बीच एक और खबर है, नेपाली सेना ने भी कहा है कि उनके करीब 22 सैनिक जो है वो लापता है, और सुबह जैसे नेपाल पुलिस और आर्मी पुलिस की तरफ से बताया गया था कि जो 35 नेपाल पुलिस के जवान और 9 आर्मी पुलिस के जवान ये लोग लापता हो गए थे, और अभी अभी नेपाली सेना की तरफ से ये बयान
0: पंकज
3: उनके भी 22 सैनिक
0: पंकज, सबसे बड़ी आशंका तो यही है ना, डर यही है कि ये मरने वालों का आंकड़ा बहुत बढ़ सकता है, क्योंकि जो भयावह स्थिति दिख रही है वो वाकई बहुत डरावनी स्थिति है। मुझे ये बताइए जल्दी से कि 300 से ज्यादा यात्रियों के जो कि कैलाश मानसरोवर के लिए जा रहे थे, ऐसे लोग लापता बताए जा रहे हैं, सही है ये जानकारी?
3: जी बिल्कुल, जो सरकार की तरफ से आधिकारिक जानकारी दी गई, जो नेपाल सरकार का पर्यटन बोर्ड है उसने बकायदा एक प्रेस रिलीज निकाल के ये बताया कि 384 पर्यटक जो है वो लापता है, इस समय उनका कोई पता नहीं चलता है। उनमें से अधिकांश जो लोग हैं वो मानसरोवर की यात्रा में जाने वाले थे या जा रहे थे या कुछ वापस आ रहे थे। वो जो चाइनीज इमिग्रेशन बिल्डिंग है सबसे अधिक वहीं पर लोग रुके हुए थे, जो मानसरोवर की यात्रा थे उनमें सबसे ज्यादा भारतीय पर्यटक थे, श्रद्धालु थे जो मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले थे यहाँ से।
0: और ये जो बिल्डिंग है उसमें अब जानकारी को लेकर क्या है, जैसे हमारे साथ अरुण गवली जी हैं वो बार बार बता रहे हैं कि इस तरह के इस मैग्नीट्यूड के इस बड़े तादाद पे इस तरह का फ्लैश फ्लड और उसका जो आफ्टर इफेक्ट है, जिस तरह से ये पानी कई गांवों से होता हुआ बिल्डिंग्स को गिराता हुआ सब कुछ ध्वस्त करता हुआ जा रहा है, ऐसी जानकारी चाइना की तरफ से नहीं दी गई थी, आधे घंटे पहले दी जा सकती थी, क्या इस बारे में कुछ कहा जा रहा है वहां पर?
3: चाइना की तरफ से नेपाल को आधिकारिक रूप से 2 बजे जो नेपाली समय है 2 बजे बताया गया कि खतरा अभी टला नहीं है, खतरा अभी और हो सकता है क्योंकि पानी वहां पर जमा हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है। जो चाइनीज मीडिया जो वहां की रिपोर्ट कर रहे हैं उसके मुताबिक लैंडस्लाइड जो हुआ है
4: तो जैसे ये
3: पानी और ज्यादा बढ़ेगा इसमें और ज्यादा
4: अनुमान लगाया
3: जा सकता है। पानी ऑफिशियल की तरफ से नेपाल के आधिकारिक रूप से ये जानकारी दी गई है कि होते कोसी और कुछ ये जो नदियां जो है उनमें और अधिक बाढ़ आने की संभावना है आने वाले समय में।
0: अरुण गवली जी जल्दी से एक बार फिर से आपके पास आते हैं क्योंकि हमें इंतजार है, अभी भी झाजी हमारे साथ वहां से जुड़ने वाले हैं, लेकिन 380 के आसपास लोग बताया जा रहा है कि वहां पर पर्यटक थे, वही खबर जो आप भी बता रहे हैं और ये सबसे दुखद खबर वहां से आ रही है।
1: हाँ 380 नहीं उससे ऊपर है, मोर देन 400 है।
0: ठीक है, आधिकारिक ऑफिशियली जो बताया जा रहा है वो हम नंबर्स बता रहे हैं क्योंकि ऐसे वक्त पर सतर्कता पर इतनी जरूरी होती है। जी बताएं।
1: दूसरी बात क्या है, आप दूसरी बात हम बता देते हैं आपको।
0: जी
1: दूसरा बात क्या है कि चाइना से जहाँ से डैम फूटा वहां पे अभी जमा हुआ और 7 मीटर का फ्लॉड रेंज जो पानी ब्लॉक हुआ है जिस जगह से जो है ना लैंडस्लाइड होके फूटा था वहां पे, फिर इसके बाद भी फिर दूसरा फ्लॉड आने की नोटिस चाइना की तरफ से आई हुई है। अभी जिस तरह आई है कि जहाँ पे फूटा हुआ है वो आधा फूटा हुआ है।
0: अच्छा।
1: अभी आधा फूटना बाकी है, इससे ज्यादा मैग्नीट्यूड का फ्लॉड आएगा। और दूसरा बात यह है कि आपका दूर से है ना, आपका क्या है ना कि ग्लेशियर का है, आप ये पहले मालूम कीजिए, ग्लेशियर आती है हिंदू कुश पर्वत से, वो वहां से 50 किलोमीटर दूरी में है। तो वो टाइम में आदमी अगर सतर्कता अभी जिस तरह अभी बोला है कि भैया फिर आएगी वो फूटना बाकी है कहकर आएगी, तो अभी लोग सतर्क हैं। और यहाँ पे जो जिस जगह में केरुंग टिमुरे कहते हैं, नेपाल का बॉर्डर को टिमुरे कहते हैं, वहां पे आपका करीब करीब 40 मीटर जो नदी का जो जल स्तर है वहां से 40 मीटर हाइट तक पानी का जल स्तर बढ़ा हुआ, वहां पे सटे हुए एक आपका हाइड्रो पावर है।
0: वही देखिए आप जैसे बात करें ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का ही पूरा है, वहाँ का एक वीडियो आया है, देखिए वहाँ पे लोग काम करते हुए दिख रहे हैं और देखते देखते लोग चिल्ला रहे हैं क्योंकि शायद ऊपर से पानी आता हुआ वो देख रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं लेकिन ये लोग भी समझ नहीं पाए। और फिर उसके बाद से देखिए देखते ही देखते क्या हाल होता है। जल प्रलय जिसको कहा जाता है, जिसकी पहले बात होती थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब जल प्रलय अलग अलग जगहों पर होगा, और वही ऐसा लगता है जैसे इंसान भाग रहा है और ये पानी उसका पीछा करते हुए, क्योंकि ये देखिए वहां से चिल्ला रहे हैं लोग, जो वीडियो बना रहे हैं वो चिल्ला रहे हैं और वो जो काम करने वाले लोग हैं उनसे कह रहे हैं कि हटो, लेकिन वो भागते दौड़ते समझते पानी पीछे पीछे आकर उनको पूरा इलाका नील जाता है, निकल जाता है। देखिए
5: यार।
0: और काठमांडू पोस्ट की ही खबर है जो बताई जा रही है अरुण जी कि वहां नेपाल की मीडिया के मुताबिक जो लांगटांग खोला हाइड्रो पार्क प्रोजेक्ट है,
1: है ना,
0: वहां 60 लोग लापता है, इनमें 25 इंजीनियर्स, ड्राइवर, किचन स्टाफ सब लोग हैं। इनके अलावा 35 वर्कर्स थे जो टनल के अंदर काम कर रहे थे फ्लैश फ्लड के बाद, उनका अभी तक कुछ पता नहीं चला है। इसके अलावा जो तिमोर जो ये बॉर्डर है वहां में रसुआ कस्टम ऑफिस में काम करने वाले 15 कर्मचारी भी अभी तक लापता मिसिंग बताए जा रहे हैं।
1: ये तो हुआ उस पॉइंट का हुआ मैडम, वहां से पानी जब नीचे आया त्रिशूली बाजार, देखते देखते एक मिनट भी नहीं हुआ पूरा बाजार निकल गया। नेत्रावती बाजार है, पूरा बाजार निकल गया, वहाँ पे स्कूल पूरा खत्म हो गया, आपका एक फिशरी फार्मिंग था वो खत्म हो गया, हाइड्रो पावर आपका देवी घाट हाइड्रो पावर चला गया, त्रिशूली हाइड्रो पावर चला गया, आपका देखते देखते 5-10 मिनट में सारी कहानी खत्म हो गई। आप अंदाजा नहीं लगा सकते, आदमी 100 गिन नहीं पाएंगे जितना आदमी का ध्यान हुआ है इसमें। चलते चलते हमने आपने देखा 3 गाड़ियां जा रही थी, एक 2 गाड़ी आगे चला गया, एक गाड़ी थोड़ा रुक गया, वो जल प्रवाह में 2 गाड़ी बह गया। आज गोरखा जाने वाला वहां अभी हमने अभी खबर देखा था। तो आपका उस समय
0: जा रहा ऐसे 11 हम लोगों को जो जानकारी है 11 ऐसे हाइड्रो पार्क प्रोजेक्ट जो है 12 में नुकसान हुआ है।
1: 12 में नुकसान हुआ है और 3 तो आपका जय सीताराम हो गया, उसका कोई माए बाप ही नहीं है, खत्म। 3 हाइड्रो पावर ऐसे डैमेज हुआ है,
0: 3 हाइड्रो पार्क प्रोजेक्ट आप कह रहे हैं, प्लांट्स जो है वो पूरी तरह से खत्म हो गए,
1: खत्म हो गए,
0: नेस्तनाबूद मतलब जिसको कहते हैं मिट गए हैं,
1: मिट गए, उसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा उसको। ये स्थिति है, त्रासदी है, इसमें ईश्वर का लीला है, आप क्या कह सकते, कोई बचा नहीं सकता। पर यदि थोड़ा सा आगे खबर होता तो हमको उसी से यात्री का पीड़ा है जो पुण्य कमाने जा रहे थे बेचारे बह गए।
0: क्या कहा जाए, ऐसे वक्त पर कुछ बोलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है जब आप इंसानी जिंदगियों को इस तरह से देख रहे हैं। कोई वीडियो भी बना रहा है, सतर्क करने की भी कोशिश कर रहा है, लेकिन जब हालत ऐसी हो तो बहुत मुश्किल है कुछ भी बता पाना। बाढ़ आ रही है, भागो भागो चिल्ला रहे हैं लोग। अधिकारी, अनेकों इंजीनियर्स जो हाइड्रो पार्क प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे थे, अनेकों काम करने वाले लोग सब जल सैलाब में बह गए हैं। बड़ी दुखद घटना जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं इस वक्त। 384 यात्री जो, और ये तो तीर्थयात्रियों की बात ऑफिशियली बताई जा रही है कि 384 के करीब तीर्थयात्री मौजूद थे उस इमिग्रेशन ऑफिस के बाहर, चाइना और नेपाल के बॉर्डर पर जो है चाइनीज इमिग्रेशन ऑफिस, जहां से वो कैलाश मानसरोवर के लिए जाते हैं। और वहां भी पूरा का पूरा जो बिल्डिंग है, ये तो है ही, एक बार फिर से वो दिखा दीजिए, आपको बाहर में बहुत सारे अनेकों लोग दिखेंगे, लेकिन फिर पीछे से जो सैलाब आता है बिल्कुल सब कुछ जमीन में मिला देता है। ये देखिए, ये पूरा एक पार्किंग लॉट है जिसमें गाड़ियां सब तहस तहस उड़ जाती है, पीछे से आती है गाड़ी, लोग अनेकों वहां पर मौजूद थे और ये पूरी बिल्डिंग पानी और मलबे के जल सैलाब में ऐसे समा जाता है कि इंसानी चीखे जैसे इस वक्त भी हिला दे अंतरात्मा को, क्योंकि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये जल प्रलय की ही तस्वीरें कहलाएंगी। ये नेपाल में जल प्रलय की तस्वीर है और ये चाइनीज साइड है उस एम्बेसी का जहां पर कैलाश मानसरोवर जाने के लिए तीर्थयात्री पहुंचते हैं। 384 के करीब तीर्थयात्री बताया जा रहा है, जो हेल्पलाइन नंबर्स बताई जा रही है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, भारतीय भी बताए जा रहे हैं। 133 के आसपास भारतीय पर्यटक भी अभी तक लापता बताए जा रहे हैं। तो ये वो नंबर्स, एक बार नंबर फिर से चला दीजिए ताकि अगर आपको कोई जानकारी लेनी हो तो इन नंबर्स पर फोन करके आप ले सकते हैं, क्योंकि 133 से ज्यादा जो भारतीय हैं उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, वो फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। और MEA ने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, भारत की तरफ से ये नंबर्स जारी किए हैं जिसमें आपको हेल्पलाइन नंबर पर जानकारी दी जाएगी। हमारी सारी प्रार्थनाएं उन परिवारों के साथ है जिनके अपने अभी तक लापता हैं, जिनको कोई जानकारी नहीं मिल रही है। 55 लोगों के शव अभी तक बरामद किए गए हैं, ऑफिशियल पुष्टि ये की गई है। धैर्यकांत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धैर्यकांत जी, आप किस तरह की जानकारी देंगे घटना के बारे में?
5: इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्टर हैं नाम साल जी, वो बोल रहे थे उनके अनुसार अभी तक का जो अनुमान है उसे 2 खर का क्षति हो गया, नुकसान हो चुका है
0: उनके अनुसार। देखिए ना, ये जो वीडियो है त्रिशूली बाजार का, ये इसी बाजार के बारे में आप बता रहे थे अरुण जी। धैर्यकांता जी आप भी बताइएगा, मतलब ये जो वेव्स है पानी का, जो पूरा ये बहाव है मलबे के साथ, बिल्डिंग से ऊपर है, सब कुछ खत्म हो चुका है जैसे अंदर।
1: आपको बोले ना 37 मीटर है ना, 39 मीटर हाइट का था जो जमीन पानी का नेचुरल बहाव से 39 मीटर हाइट का बहाव पानी का आया, प्लॉट 39 मीटर।
0: बताइए धैर्यकांत जी,
1: वही आप देख रही हैं 39 मीटर का वेव आप देख रही हैं, वही बहाव है। और सारे नदी बाजार आपका खा गए, वहाँ पे पट्टार बाजार है, त्रिशूली बाजार है, बेतरावती है ना, ये तीनों नदी के किनारे जितने आपके रिजॉर्ट थे, आपके वहां से लेके नीचे जाते हैं आपका रिवर साइड स्प्रिंग रिजॉर्ट वगैरह बहुत सारे है, सारे तबाह हो गए। अब न जाने कितने लोग बचे, कितने दबे, अब तो वो लाश भी मिलना मुश्किल है आपको। एक रीत होती है, एक रीत होती है आपको बताते हैं, वो जो नदी आपका केरुंग खोला आता है उधर से, छोटे कोशी को केरुंग खोला कहते हैं, उधर से नेपाल आने के बाद में इसका नाम त्रिशूली हो जाता है। त्रिशूली इसलिए हो जाता है कि शंकर भगवान का त्रिशूल ऊपर 4,500 मीटर ऊपर गड़ी हुई है, वहां से 3 धाराएं आती है, उस पानी में मिलने से इसको त्रिशूली कहते हैं। और इस पूर्णिमा में, परसों पूर्णिमा है, पूर्णिमा में वहां पे नहाने के लिए लोग हजारों की संख्या में गए हुए जा रहे थे, उससे जाने वाले बहुत सारे आपके तीर्थ यात्री बह गए इसमें, जिसके आंकड़ा अभी दिखाई नहीं दे रहा उनकी आंकड़ा, वो नेपाली टूरिस्ट है, उनका आंकड़ा अब उनके गांव-गांव से आएगा, वो कल से आना शुरू होगा कि हमारे गांव से इतने आदमी गए थे और इतने आदमी लापता हो गए। हमने बोला ना ये टोटल नंबर आपका 1000 से प्लस जाएगा मैडम, हम बोल रहे हैं आपका दावा लेकर कहते हैं टोटल
0: आपका फॉरेनर। अरुण जी जो आप कह रहे हैं वो मन में डर जरूर होता है, लेकिन मतलब सिर्फ एक पत्रकार के रूप में नहीं, मतलब इंसान के रूप में भी थोड़ा सा भी बचकर चलना चाहिए, क्योंकि सोचिए ना जिनके परिवार के लोग वहां पर फंसे हुए हैं वो और भी डर रहे होंगे ये तस्वीरें और ये जानकारियां सुन के, तो थोड़ा सा इंतजार करते हैं। जो आपकी आशंका है, जो आपका डर है, उस डर को भी हम समझ रहे हैं, और माना जा रहा है कि जिस तरह की तबाही है, सिर्फ 55 लोग नहीं, हो सकता है मरने वालों का आंकड़ा इससे ज्यादा हो, लेकिन थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। धैर्यकांत जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। धैर्यकांत जी ये वाला मतलब
5: जी
0: क्या बोला जाए, तो मतलब पूरा का पूरा जैसे बिल्डिंग समा गया है। धैर्यकांत
5: जी, यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्टर है सुनील लम्साल जी, उनके अनुसार 2 खर्ब से ज्यादा अभी तक का अनुमान किया गया है, 2 खर्ब से ज्यादा क्षति हो चुका है। अभी तक जो जानकारी आई हुई है उसके हिसाब से 1900 पुल तो पूर्ण रूप से डैमेज हो चुका है, 1900 पुल 19 पुल ब्रिजेज खत्म है, नहीं है, 40 किलोमीटर सड़क भी खत्म हो चुका है, 40 किलोमीटर सड़क नहीं है, 12 हाइड्रो पावर खत्म हो चुका है, जो इस तरह क्षति है बहुत ज्यादा क्षति है। और अभी कुछ देर पहले हाउस में भी, यहाँ के पार्लियामेंट में भी एक बात उठी थी कि प्री इन्फॉर्मेशन के बाद तो चाइना, नेपाल और भारत तीनों एक रिवर सिस्टम से जुड़ा हुआ है, जो कोई आपदा आता है तो प्री इंफॉर्मेशन करने की बात जो है वो होना चाहिए। आज जो पार्लियामेंट की बैठक थी उसमें भी कुछ नेताओं ने सांसद
0: एक सेकंड आपको टोक रहे, नया वीडियो अभी आया है, ये वाला वीडियो देखिए, इसमें तमाम घर वगैरह मतलब सैलाब का जो जल सैलाब जो आ रहा है इतना फोर्सफुल है, इतने हाइट से आ रहा है, कह रहे थे अरुण जी की लगभग 39-40 मीटर वो जो जल का स्तर है, सामान्य स्तर है, उससे ऊपर होके बह रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं, इमारतें, घर, सब कुछ ताश के पत्तों की तरह ढहती हुई नजर आ रही हैं। आज प्रार्थनाएं उन तमाम परिवारों के साथ जो इन घरों में मौजूद थे, जो अलग अलग जगहों पर मौजूद थे, जो कहीं कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए गए थे, या किसी पहाड़ी पर वो किसी पूजा में शामिल होने जा रहे थे, या त्रिशूली बाजार में थे, या हाइड्रोपार्क प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे थे। जो वहां पर काम करने वाले मजदूर थे, जो इंजीनियर्स थे, जो स्टाफ था, उन सब के साथ आज प्रार्थनाएं हैं, क्योंकि परिवार वालों के लिए कितनी बड़ी मुश्किल इस वक्त बीत रही होगी, जो ये कल्पना भी नहीं कर पा रहे होंगे, समझ भी नहीं पा रहे होंगे कि उनके साथ ये अचानक क्या हो गया। विपदा आई तो ऐसे जैसे सब कुछ निकल गई। बड़ी दुख भरी खबर ये नेपाल से आ रही है। इस बीच आपको बता दें, यूपी बिहार में भी अलर्ट है और हमारी नजर इस बड़ी खबर पर बनी रहेगी। अभी तक बताया जा रहा है 383 तो सिर्फ तीर्थयात्री थे जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जा रहे थे, वो सब लापता बताए जा रहे हैं। लगभग 133 भारतीय पर्यटक लापता बताए जा रहे हैं। हमारी नजर बनी हुई है। आज रात 9 बजे जरूर रहिएगा हमारे साथ। ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाएंगे कैसे नेपाल में अचानक से जल प्रलय आ गई, जिससे यूपी और बिहार तक बड़ा खतरा बना हुआ है। साथ ही आपको बताएंगे कि ये पानी 400 लोगों को बहा ले गया है। आखिर में आपको बताएंगे कि अब कैसे भारत के मिसाइल महाशक्ति बनने का रास्ता साफ हो गया है। देखते रहिए आज तक।

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
2: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद। लायन कश्मीर हनी,
1: असली शहद, असली स्वाद।
3: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
4: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
5: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
4: छक्का?
5: सब कैशलेस हो गया है।
4: हाँ ओले, ला भाई मेरा बैट।
6: वो अभी तो ठीक हुआ तू?
7: अभी तो चार्ज हुआ यार।
8: ओले बैट किसका है?
9: टाटा AIG है तो भरोसा है।
10: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
11: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
12: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बाय एकदम सॉलिड।

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: Hey Maya, let's go.
4: The new BE6 Sportec.
5: बहुत टाइड हो गई।
6: Take it, take it, date not bites.
7: No added sugar, preservative के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
6: Take it, lion date not bites.
8: In association with
9: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।
10: तक डिजिटल फर्स्ट चैनल्स, 11 बिलियन व्यूज, 85 मिलियन यूनिक व्यूअर्स, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर ब्रांड, रीजनल और हाइपर लोकल रीच। हर शहर, हर कस्बे तक एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल करें

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
2: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
3: सोच बदलो और बैंक भी।

0: 17 अगस्त को नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान होता है। बीजेपी की राष्ट्रीय टीम में पार्टी की मुखर महिला नेता स्मृति ईरानी को यूपी कोटे से जगह मिलती है। यूपी से 8 सदस्य बनाए जाते हैं, 8 में से 3 महिला सदस्य होती हैं। और उसके 7 दिन यानी 1 हफ्ते बाद ही योगी कैबिनेट का महिलाओं को लेकर बड़ा फैसला आता है। योगी सरकार लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना का ऐलान करती है। यूपी में 60 साल और उससे अधिक उम्र की महिलाओं को आजीवन मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देते हैं। रक्षाबंधन से ठीक पहले योगी सरकार का ये ऐलान सामने आता है। ये योजना सियासी नजरिए से क्यों अहम और असरदार साबित हो सकती है, इसकी वजह भी जान लीजिए। अनुमान है कि इस योजना से रोजाना 88,000 महिलाओं को फायदा मिलेगा। यूपी रोडवेज की बसों में आधार कार्ड या वोटर आईडी दिखाकर इस योजना का लाभ लिया जा सकेगा। इस योजना पर करीब 22.5 करोड़ प्रतिमाह और 270 करोड़ रुपए सालाना खर्च आएगा।
1: आप देखिए, ये सारी जो बसें हैं, इन्हीं बसों से मातृशक्ति योजना के तहत उनको फ्री एक तरीके से अब आजीवन ये सेवा दी जाएगी। और ये मास्टर स्ट्रोक योगी आदित्यनाथ का माना जा रहा है। ये महिलाएं देखिए जो 60 साल से ऊपर की हैं, वो सभी इससे निशुल्क यात्रा कर पाएंगी। पूरे प्रदेश में जहां भी उनको जाना है वो इस बस के जरिए जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कल कैबिनेट में इसको पास करने के बाद आज इसका इनॉग्रेशन है। आप देखिए, कई महिलाएं अपने अपने गंतव्य स्थान पर जाने के लिए तैयार हैं।
0: तो योगी सरकार की ये योजनाएं ऐसे वक्त में आई जब सामने यूपी विधानसभा का चुनाव है। जाहिर है, बीजेपी की कोशिश ज्यादा से ज्यादा महिला वोट हासिल करने की है। और मातृशक्ति विकास योजना के ऐलान के बाद समाजवादी पार्टी में भी खलबली है। खबर है कि समाजवादी पार्टी महिलाओं से जुड़ी किसी बड़ी योजना का ऐलान कर सकते हैं। 12:30 बजे समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव इस योजना का ऐलान कर सकती हैं। यानी महिला वोटरों का समर्थन हासिल करने की दोनों ओर से जीतोड़ प्रयास हो रहे हैं। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।

बालेश्वरी और भोटे कोशी नदियों ने मचाई तबाही। लापता होने वाले 133 भारतीय भी शामिल। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाली पीएम बालेन शाह से की बात। अलर्ट पर बिहार और पूर्वी यूपी। भारतीय एयरफोर्स और एनडीआरएफ तैनात। यूपी में आधी आबादी को लुभाने की होड़। योगी सरकार देगी फ्री बस सेवा और 50,000 स्कूटी। समाजवादी पार्टी का 40,000 रुपए का दाम। बीजेपी के हमले के बाद अब मुस्लिम महिलाओं ने राहुल गांधी को घेरा। हिजाब को लेकर दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन। हिजाब पर चुप्पी का विरोध। दिल्ली में 24 घंटे के अंदर स्वाइन फ्लू के 134 नए मामलों से हर कम। सभी अस्पताल में 24 घंटे इमरजेंसी में डॉक्टर की तैनाती के निर्देश। अब तक 2,442 केस। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें 7 तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। शुरुआत कर रहे हैं नेपाल से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर फ्लैश फ्लड ने हाहाकार मचा दिया। तक 55 लोग के शव बरामद हो चुके हैं, जबकि करीब 400 लोग लापता बताए जा रहे हैं। नेपाल में भयानक तबाही है। तिब्बत से आई अचानक बाढ़ ने नेपाल के रसुआ जिले में भारी तबाही मचाई है। भोटे कोशी और तिजली नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से टिमुरे और स्याब्रुबेसी इलाके में कई घरों को नुकसान पहुंचा है।

0: ये तस्वीरें भयानक हैं, तबाही की तस्वीरें हैं ये। ऐसी जलधारा जो अपने साथ सब कुछ बहाए लिए जा रही है, सारे बांध तोड़कर पानी बह रहा है, पानी के आवेग के आगे कोई ठहर नहीं पा रहा है। पेड़ पहाड़, स्कूल, होटल्स, दुकान, मकान, जानवर, इंसान सब जलधारा में बहे जा रहे हैं। तबाही की तस्वीरें नेपाल के रसुआ की हैं और दहशत से भर देने वाली ये तस्वीरें त्रिशूली नदी की हैं। इसकी चपेट में कहीं पुल बह गया, कहीं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बह गया, रसुआ के पास का तो गांव बह गया। त्रिशूली नदी की चपेट में तिमुरे और सियाब्रू बेसी इलाके में घरों को नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि तिब्बत में बड़ा भूस्खलन हुआ था, भूस्खलन के बाद वहां पानी इकट्ठा हो रहा था और फिर अचानक वो फटा और नेपाल में तबाही मचा दी। नेपाल की त्रिशूली नदी बर्बादी बनकर बहने लगी। इस आफत की बाढ़ के बाद बड़ी संख्या में लोग लापता हैं। तिमुरे बॉर्डर पोस्ट पर तैनात कई पुलिसकर्मी भी लापता बताए जा रहे हैं। तिमुरे चीन नेपाल सीमा के पास का महत्वपूर्ण बाजार और कस्टम क्षेत्र है। यहाँ दुकानें, गाड़ियाँ, सामान और सीमा संबंधी सुविधाएं थी। बाढ़ का पानी पूरे बाजार को बहा ले गया। हालात इतने बिगड़े हुए हैं कि रसुआ के तिमुरे में फंसे लोगों को निकालने के लिए भेजा गया हेलीकॉप्टर बिना उतरे काठमांडू लौट आया। बाढ़ के पानी में स्थानीय हेलीपैड बह गया था, इसलिए पायलट को उतरने के लिए सुरक्षित जगह नहीं मिली। पायलट की माने तो ऊपर से देखने पर तिमुरे गांव का बड़ा हिस्सा नजर ही नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा कि त्रिशूली नदी का पानी अचानक बहुत तेजी से बढ़ा, जैसे अचानक किसी बंद नदी का पानी बाहर निकल आया हो। नेपाल की सेना राहत बचाव में लगी हुई है। नेपाल आर्मी हेडक्वार्टर ने कहा है कि बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए हवाई मार्ग से बचाव कार्य जारी है, साथ ही पूरी सावधानी बरतने और सुरक्षित स्थानों पर रहने का आग्रह किया गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने रसुआ के बाढ़ प्रभावित इलाकों में बचाव और राहत के लिए नेपाली सेना, सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल पुलिस को तैनात करने के निर्देश दिए हैं। प्रभावित इलाकों में दूसरे जिलों से भी अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी भेजे गए हैं। प्रभावित इलाकों में अतिरिक्त एम्बुलेंस और मेडिकल स्टाफ भी भेजा जा रहा है। बालेन ने नदी किनारे के निचले इलाके में रहने वाले लोगों को तुरंत सुरक्षित जगह पहुंचाने के निर्देश भी दिए हैं। नेपाल भयानक संकट में है और यहाँ तबाही का मंजर है। आज तक ब्यूरो।
1: नेपाल के संकट पर और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी पंकज दास इस वक्त जुड़ गए सीधे काठमांडू से। पंकज, रेस्क्यू ऑपरेशन में इस वक्त सबसे बड़ी चुनौतियां क्या क्या पेश आ रही हैं, क्योंकि कई जगह ऐसी हमने रिपोर्ट में भी देखा जहां पर हेलीकॉप्टर लैंड भी नहीं हो सकते, वहां पर अगर आपको जिंदा व्यक्ति दिखाई भी दे रहा है मदद की आस में तो आप उसको नहीं बचा पा रहे।
2: देखिए, इस समय रेस्क्यू में सबसे बड़ा जो संकट आ रहा है उसको कहीं जमीन नहीं जहां पर हेलीकॉप्टर लैंड कर सके। दुर्गम इलाका है, बहुत पहाड़ी इलाका है, वहां पे लैंड करना बहुत ही मुश्किल है। चाहकर भी कई जगह से रेस्क्यू नहीं किया जा रहा। दूसरी बात है कि अभी अब अंधेरा हो गया है, अंधेरे में जो है यहाँ का हेलीकॉप्टर यहाँ पे रेस्क्यू के लिए नहीं जा सकता, इसलिए आज के लिए शायद मुझे लगता है कि रेस्क्यू का काम रोक दिया गया, क्योंकि पिछले जब से अंधेरा हुआ तब से हमने हेलीकॉप्टर का कोई भी मूवमेंट नहीं देखा। जिस तरह से आज दिन भर सुबह 10-11 बजे के बाद से लेकर लगातार शाम तक है जो है काठमांडू के आसमान में सिर्फ हेलीकॉप्टर ही दिखाई दे रहे थे और लगातार रेस्क्यू का काम किया जा रहा था, लेकिन इस समय रात होने की वजह से भी ये हो पा रहा है। तीसरी बात, मौसम विज्ञान विभाग ने अभी चेतावनी जारी की है कि उन चार इलाकों में जो रसुआ, नुआकोट, संख्या सभा और उसके आसपास के एरिया, वहां पे भारी बारिश की चेतावनी दी गई है और लोगों से सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। तो इस तरह से ये कई सारे जो है संकट जो है रेस्क्यू के सामने करने वालों के सामने आ रहा है।
1: ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। बीच अब दर्शकों को मैप और तस्वीरों के जरिए पूरा रूट समझाने की कोशिश करते हैं। तिब्बत के दुबाइन हिमाल ग्लेशियर को गंडक, जो कि नेपाल में भोटे कोशी के नाम से जानी जाती है, का उद्गम माना जाता है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि भोटे कोशी बेसिन में ग्लेशियर झील फटने से तबाही मची है। करीब 122 झील होने की बात कही जाती है। तबाही की पहली तस्वीर नेपाल चीन बॉर्डर के ग्यूरोंग पोर्ट से आई है, जहां भूस्खलन हुआ, जिसके बाद नेपाल के रसुआ से तबाही की तस्वीर आई। फिर भोटे कोशी आगे जाकर नुवाकोट में तबाही मचाती है, जिसके बाद भारत में आने वाले वाल्मीकि नगर गंडक डैम के सारे 69 दरवाजे खोल दिए गए। वहीं गंडक के रूट में आने वाले बिहार के जिलों में अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें पश्चिमी पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, वैशाली, ये तमाम जिले आते हैं। यहां से आगे गंडक नदी गंगा नदी में मिल जाती है। शशि भूषण मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शशि भूषण, जाहिर तौर पर जिस तरह की तबाही की तस्वीरें नेपाल से आ रही हैं, उसने बिहार प्रशासन की नींद उड़ा दी होगी अब तक।
3: The Nepal Army is working constantly on ground, carrying out rescue operations, evacuating people trapped by the rising water.
1: Shashi, आपको मेरी आवाज मिल रही
4: है?
1: ठीक है, पंकज के पास लौटेंगे। पंकज दास मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं काठमांडू से। पंकज, किस तरीके से हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं और वो जो लिस्ट हमने देखी थी जिसमें 133 भारतीय थे, ज्यादातर क्या ये वो भारतीय हैं जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए वहां पहुंचे थे?
2: जी बिल्कुल, इस समय जो कैलाश मानसरोवर यात्रा का सीजन है और ये अब अपने अंतिम चरण में, इसलिए अधिकांश जो भारतीय वो नेपाल के रास्ते ही वो जाते हैं। और जिस जगह तबाही आई है, जो दृश्य हम टेलीविजन स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, और वहीं से इमिग्रेशन और वो कस्टम का ऑफिस है जहाँ से जो है नेपाली श्रद्धालु चाइना में इंटर करते हैं और यहाँ से वो मानसरोवर की यात्रा में जाते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि करीब 400 जो है तीर्थालु वहाँ पे मौजूद थे जब सुबह ये हादसा हुआ। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी जो जिन 400 पर्यटकों की बात की गई, उनमें से 133 भारतीय के लापता होने की बात है। धीरे धीरे और भी जो आंकड़े हैं वो सामने आएंगे, जिस तरह से जैसे जैसे सरकार इसको पुष्टि करती जाएगी, हम अपने दर्शकों को बताते जाएंगे सरकारी आंकड़ा जो है वो इस समय जो है।
1: ठीक है, मैं लौट गया आपके पास। बीच पाल में आई बाढ़ के बाद बिहार में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है, इसको लेकर बिहार प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री सह जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोग घबराएं नहीं, अगले 5 से 6 घंटे यानी पूरी रात अलर्ट रहने की जरूरत है। समस्या पहले से बड़ी है लेकिन फिलहाल नियंत्रण में है।

0: नेपाल की इन खौफनाक तस्वीरों ने बिहार के जिलों में दहशत भर दी है, क्योंकि नेपाल से आने वाला पन बिहार के कई जिलों की जिंदगानी को खतरे में डाल सकता है। इसलिए बिहार में कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है।
1: नदी के किनारे तथा बाढ़ प्रभावित होने वाले क्षेत्रों के निवासी आवश्यक सावधानी बरतें और अपने परिवार, बच्चों, बुजुर्गों एवं पशुओं को सुरक्षित स्थान पर रखने की तैयारी रखें।
0: नेपाल में फ्लैश फ्लड के खतरे को देखते हुए कोसी और गंडक नदी बेसिन से जुड़े जिलों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण और वैशाली में अलर्ट है। सुपौल, सहरसा, मधेपुरा और अररिया जिले में भी अलर्ट है। सरकार कह रही है कि खतरा तो है, मगर सरकार ने सतर्कता के पूरे इंतजाम कर लिए हैं।
2: ये जो पानी आ रहा है, इसमें हम लोगों का आकलन है कि लगभग 1.5 लाख क्यूसेक तक अतिरिक्त पानी आ सकता है, तो फिर 2.5-3 लाख से अधिक पानी नहीं जाएगा। तो या जितना 2.5-3 लाख आने की संभावना है, उस हिसाब से सतर्कता के सभी काम हम लोगों ने कर लिए हैं।
1: अभी सूचना प्राप्त हो रही है कि नेपाल में नदी में भूस्खलन आ जाने के कारण गंडक नदी का बहाव अगले आधे घंटे में काफी तेज होने की संभावना है।
0: बगहा में लोगों को अलर्ट किया जा रहा है, अनाउंस किया जा रहा है कि लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं, तैयारियां तेज हैं। एसएसबी ने भारत नेपाल सीमा पर तैनात अपनी यूनिट्स को अलर्ट जारी किया है। राहत बचाव के लिए 11 टीमों को अलर्ट किया गया है। 7 अतिरिक्त टीमें स्टैंड बाय पर रखी गई हैं। भारत नेपाल सीमा पर तैनात बटालियन को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। सरकार कह रही है कि स्थिति को नियंत्रण से बाहर नहीं जाने देंगे।
2: स्थिति तो थोड़ी कठिन है, लेकिन अभी का जो अनुमान है पानी आने का, वो हम लोगों के हिसाब से स्थिति को हम लोग नियंत्रण से बाहर नहीं जाने देंगे।
0: बिहार की सरकार कह रही है कि घबराने की जरूरत नहीं है, बस सतर्क रहने की आवश्यकता है।
2: लोगों से हम लोगों ने सरकार की तरफ से अपील की है कि अभी घबराने की जरूरत नहीं है, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सतर्क रहना है।
0: बिहार के अलावा यूपी के महाराजगंज, कुशीनगर में भी अलर्ट जारी किया गया है। सतर्कता पूरी है, उम्मीद कीजिए कि नेपाल से आई तबाही भारत में कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। आज तक ब्यूरो।
3: शशि भूषण मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शशि भूषण, जो नेपाल में तबाही आई है, उसका इम्पैक्ट कब तक बिहार में देखा जा सकता है? हालांकि सब तरीके से प्रशासन अलर्ट पर है, तमाम तैयारियां की गई हैं, लेकिन आज की रात कितनी भारी है?
4: देखिए, आज की रात तो भारी है नेहा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, और सबकी नजरें टिकी हुई है, सरकार की भी नजर टिकी है, और खासतौर पर जो 6 जिले बिहार के गंडक के सीधे प्रभाव में आते हैं, उन जिलों के प्रशासन और वहाँ के जो लोग हैं ना, उनकी नज़रें भी हैं। हालांकि नज़र तो पूरे बिहार, पूरे देश की है कि क्या वहाँ पर हालात आज होते हैं, लेकिन जब हम 3-4 बजे के आसपास बात कर रहे थे बिहार के डिप्टी सीएम और जो लंबे अरसे से जल संसाधन विभाग को देखते रहे हैं विजय कुमार चौधरी से, तो उन्होंने यही कहा कि अगले 5-6 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है बिहार के लिहाज से, और आज की रात बेहद महत्वपूर्ण है। प्रशासन को एक समय मिला है, चूंकि जो कुछ घंटे का ही समय मिल पाया, उन घंटों में निचले स्तर से जो लोग गंडक के किनारे रहते हैं, गंडक के बेसिन में, उनको ऊपरी जगह पर लाने के लिए एक बाजाबता माइकिंग की जा रही है तमाम जिलों में, और पहला जो फोकस है वो पश्चिम चंपारण जिले के ऊपर है, क्योंकि सबको मालूम है कि वाल्मीकि नगर बराज से यही नारायणी नदी प्रवेश करेगी और गंडक बनेगी जब, तो गंडक में ही ये पानी आना है, ये भी तय है, तो इसी लिहाज से यहाँ तैयारी है नेहा जी।
3: मैं लौटूंगी आपके पास, बीच तस्वीरें एक बार आपको दिखा देते हैं। तबाही इतनी ज्यादा भीषण है कि अभी इसका पूर्णतः आकलन कर पाना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन जो नेपाल सरकार है उसने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए हैं और एक ऐसी लिस्ट जारी की है जिसमें 133 भारतीयों के लापता होने की भी खबर है। पंकज दास मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। पंकज, जाहिर तौर पर पल पल कीमती है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो मलबे के नीचे दबे हों, जिनमें अभी सांस बाकी हो, उनके लिए प्रशासन कितना मुस्तैद दिखाई दे रहा है, क्योंकि कई तरह की मुश्किलें हैं वहां पर। हेलीकॉप्टर लैंड नहीं हो सकता, वहां पर सड़कें बची नहीं है, गाड़ियां पहुंच नहीं सकती, ऐसे में क्या करेगी वहां की सरकार?
5: बिल्कुल, एकमात्र रेस्क्यू का जो उपाय है वो हेलीकॉप्टर, और हेलीकॉप्टर के द्वारा नेपाल आर्मी और जो नेपाल पुलिस एटीएफ की टीम है वो लगातार रेस्क्यू के काम में लगी हुई है। जहां भी से भी उनको ये खबर आ रही थी यहाँ पे कोई लोग जिंदा बचे हुए हैं या उनकी सांस चल रही है, वो किसी न किसी तरह से उनको वहां से रेस्क्यू करने का काम किया जा रहा है। ऐसे कई सारे जो विजुअल्स हैं नेपाल आर्मी ने अपने फेसबुक पेज, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी डाले हैं कि किस तरह से मलबों से लोगों को, जिंदा लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है।
3: ठीक है पंकज, मैं लौटूंगी आपके पास। शशि भूषण भी हमारे साथ जुड़े हैं तमाम जानकारी के साथ। शशि भूषण, जाहिर तौर पर बिहार के लिए इस वक्त अलर्ट मोड है, और ऐसे में नेपाल की तबाही को लेकर तमाम जानकारियां जुटाई जा रही हैं। सदगुरु का एक पोस्ट आया है इस तबाही पर, इस समय कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर सदगुरु हैं, जाहिर तौर पर उन्हें पोस्ट करके वहां के हालात के बारे में जानकारी दी है। ये पोस्ट दरअसल ये है कि उन्होंने कहा है कि हमारा एक ग्रुप तबाही की चपेट में आ गया है। हमारे ग्रुप के लोग इमिग्रेशन ऑफिस में थे, यही इमिग्रेशन ऑफिस है जो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई थी। हमारे ग्रुप के 495 लोग पहले ही सुरक्षित लौट चुके थे। वो जानकारी दे रहे हैं संख्या के बारे में, नंबर्स के बारे में, जो सकुशल है और जिनके लापता होने की भी खबर है। ये सदगुरु का पोस्ट बेहद अहम, क्योंकि तबाही को लेकर कुछ हद तक तस्वीर साफ करता है। ये वो तस्वीर है हम आपको दिखा रहे हैं इमिग्रेशन ऑफिस की, जहां पर कुछ लोग मौजूद थे जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते हैं, और यहीं पर कई सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की जाती हैं। ऐसे में सदगुरु ने बताया कि हमारे ग्रुप के लोग इमिग्रेशन ऑफिस में थे। शिवानी मेरी सहयोगी जुड़ गई है तमाम जानकारी के साथ। शिवानी, सदगुरु का ये पोस्ट काफी हद तक तस्वीर साफ करता है कि किस तरीके से ज्यादातर जो भारतीय थे जो इस वक्त लापता हैं, वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर थे।
6: लेकिन यहाँ आपको बता दूं कि जो तस्वीरें हैं वो बेहद भयावह हैं, और अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस कदर वहां पर तबाही हुई है। भारत के जो पर्यटक हैं, जो हमें भारत के पर्यटकों के बारे में जानकारी मिली थी, वो 105 की संख्या थी, जिनसे कि इस वक्त कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। बट अब ये समझ में आ रहा है नेहा कि क्योंकि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए यहाँ पर बहुत सारे भारतीय थे जो जत्थे वहां पर पहुंचे हुए थे, इस रास्ते से कैलाश मानसरोवर यात्रा तक पहुंचना था। उन
3: ठीक है लॉरी में आपके पास बीच पूरा का पूरा डैम देखिए इस तबाही की चपेट में आ चुका है, और पीछे से कई आवाजें भी आ रही हैं जो लोगों को डरा रही हैं, और ये बता रही कि कैसे इससे पहले कि लोग सतर्क हो पाते, बच पाते, इस तबाही ने उनको अपनी चपेट में ले लिया। पूरा का पूरा त्रिशूली बाजार देखिए, बाजार में किस तरीके से फ्लैश फ्लड आया, मलबे की चपेट में पूरा बाजार आ गया। कई जो दुकानें थी, मकान थे, वो इस फ्लैश फ्लड से पूरी तरीके से नष्ट हो गए। 133 भारतीय लापता बताए जा रहे हैं, 463 लोग कुल लापता हैं, जिसमें नेपाल के ही 49 लोग हैं, अमेरिका के 47 लोग हैं। लापता लोगों की लिस्ट जारी की गई है नेपाल सरकार द्वारा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के भी 34 नागरिक हैं, वही यूके के 33 नागरिक लापता बताए जा रहे हैं। इसके अलावा कई अन्य नेशनलिटीज हैं जिसमें कनाडा शामिल है। यहां से आए लोगों की संख्या 24 है जो इस वक्त लापता हैं, और मलेशिया के लापता नागरिक लगभग 19 बताए। बिहार का नक्शा हम आपको दिखा रहे हैं कैसे वहां पर किन किन इलाकों में, जहां पर गंडक नदी गुजरती है, दरअसल वहां पर भारी तबाही की आशंका। इसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। एक स्पेशल बैठक भी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा बुलाई गई थी, और वहां की समीक्षा लगातार की जा रही है। अगले चंद घंटे काफी भारी हो सकते हैं। गंडक नदी के आसपास 6 ऐसे इलाके हैं, 6 ऐसे जिले हैं जो बाढ़ से प्रभावित हो सकते हैं। अमूमन इस दौरान बिहार में बाढ़ आती जरूर है, लेकिन इस बार तबाही ज्यादा हो सकती है इस भूस्खलन और ग्लेशियर की तबाही जो नेपाल में आई है उसकी वजह से ये तबाही और ज्यादा हो सकती है, इसकी आशंका है। पंकज दास मेरे सहयोगी जुड़े हैं तमाम जानकारी के साथ। पंकज, जाहिर तौर पर इस वक्त एक बेहद बड़ी क्राइसिस सिचुएशन है नेपाल सरकार के लिए, भारत की सरकार ने भी मदद का हाथ बढ़ाया है, अब तक किस तरह की मदद भारत सरकार की ओर से वहां तक पहुंची है, ग्राउंड जीरो की हकीकत क्या है?
5: अभी शाम को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री से बातचीत की। जो यहाँ का इंडियन एम्बेसी है वो लगातार यहाँ के प्रशासन के संपर्क में है और हर तरह से मदद के लिए उन्होंने अपना जो ऑफर दिया है वह है। नेपाल सरकार ने भी इसे स्वीकार करते हुए कहा है कि जो भी हमें जरूरत पड़ेगी राहत और उद्धार के लिए वो हम आपको सूची दे रहे हैं। जैसे ही नेपाल सरकार की तरफ से आज सूची सौंप दी जाएगी, वैसे ही जो है दिल्ली से एक भारतीय वायुसेना का विमान जो है काठमांडू आ जाएगा। तो प्रतीक्षा इस बात की है कि नेपाल सरकार कब ये अपनी सूची जो है वो भारत सरकार को सौंपती है।
3: और इसके अलावा हम ये समझें कि वहां पर आज की रात काफी ज्यादा विकट रहने वाली है, क्योंकि कल सुबह तक दरअसल मौत का आंकड़ा भी बढ़ सकता है, ये भी मालूम ठीक से चल सकता है कितने लोग लापता हुए हैं भीषण तबाही में। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अब तक 72 शव बरामद हो चुके हैं, जिसकी बात जिसका जिक्र हम कर चुके हैं कि लगातार मरने वालों का आंकड़ा बढ़ेगा, क्योंकि अभी तक ये आकलन कर पाना ही मुश्किल हो रहा है कि कितने लोग दरअसल मारे गए हैं, कितने लोग लापता हैं, कितने लोग मलबे के नीचे दबे हैं। इस भीषण तबाही के बाद मरने वालों का आंकड़ा अब 72 तक पहुंच गया है, जो आने वाले वक्त में और ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं कि तबाही कितनी ज्यादा भीषण और भयावह है। मरने वालों का आंकड़ा अब 72 तक पहुंच चुका है। पंकज मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। पंकज, मरने वालों का आंकड़ा तो बढ़ता जाएगा क्योंकि धीरे धीरे ये स्थिति स्पष्ट होगी, और इसी पर हम जिक्र कर भी रहे थे।
5: जिस तरह के दृश्य हम देख रहे हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आंकड़ा और कितना अधिक बढ़ने वाला है। हालांकि जैसे जैसे सरकारी ये आंकड़ा आ रहा है वैसे ही हम दिखा रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार के पास भी जो है जो उन इलाकों के जो गांव डूब गए, जो शहर जो बस्तियां जो क्षेत्र है पहाड़ों पर बसी हुई है, अभी तक ये भी पता नहीं कि कहाँ कितने लोग रहते थे। तो जैसे जैसे सरकार जो है वहाँ का स्थानीय प्रशासन ये आंकड़ा जुटा पाएगा और कितने लोग इसमें हताहत हुए, इसके बाद ही अभी 2-4 दिन का समय लग सकता है पूरी तरीके से सही आंकड़ा आने में।
3: इसके अलावा पंकज, भारतीय वायुसेना तो मदद पहुंचाएगी, राहत सामग्री भी हो सकता है आने वाले वक्त में उसकी जरूरत पड़े, मेडिकल सर्विसेज, मेडिकल एम्बुलेंसेज, हॉस्पिटल्स, बेड्स, इस तरह की सेवा भी क्या भारत से नेपाल तक पहुंच सकती है, और किस तरीके से मेडिकल सेवाएं पड़ोसी राज्यों द्वारा भी ऑफर की जा सकती है, क्योंकि नेपाल इस वक्त एक बड़े संकट से जूझ रहा है। जाहिर तौर पर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी बड़ी तबाही को संभालने में वाकई नाकाफी भी साबित हो सकता है।
5: जी बिल्कुल, अभी नेपाल ने अपनी तरफ से जैसे सबसे पहला हेलीकॉप्टर जो आर्मी का यहाँ से गया, उसपे मेडिकल टीम थी, उसपे कुछ मेडिकल सामान जो सामग्री थी उनको भेजा गया वहाँ पे, जो पास के इलाके सुरक्षित इलाके वहाँ पे एक मेडिकल कैंप भी लगाया गया है, और कुछ जो है सीधे प्रधानमंत्री के यहाँ रेख देख में ये सब काम हो रहा है। पड़ोसी देशों ने भी जैसे भारत ने, चीन ने, वर्ल्ड बैंक ने, सबने ऑफर दिया है नेपाल को कि हम सहयोग करना चाहते हैं। लेकिन सबसे मुश्किल बात यह है कि जिन इलाकों में ये आपदा आई है वहाँ पे मेट्रो एयरपोर्ट है पास में, वहाँ के रास्ते सारे बंद हो चुके हैं, रास्ते को बंद कर दिया गया एहतियात के तौर पर, 40 किलोमीटर की सड़क जो है रशिया तक पहुँचने वाली वो बह गई है, 22 पुल बह गए हैं, तो काफी मुश्किल है। हेलीकॉप्टर से ही वहां तक पहुंचा जा सकता है, चाहे मेडिकल सामग्री हो या कोई भी राहत का सामान हो, ये हेलीकॉप्टर के द्वारा ही वहां पहुंचाया जा सकता है।
3: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। इसी के साथ यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे इस बड़ी खबर पर, लगातार अपडेट जारी रहेगी, देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसें, इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
3: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
4: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
5: सोच बदलो और बैंक भी।

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: अर्जुन कुछ भी पढ़े मेमोरी में नहीं रहता।
2: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स बादाम पिस्ता काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
3: लायन डेट नट बाइट्स।
4: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
5: पापा
6: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
5: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
6: छक्का?
5: सब कैशलेस हो गया है।
6: हाँ ओले ला भाई मेरा बैट।
5: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
7: अभी तो चार्ज हुआ यार।
8: बैट किसका है?
9: टाटा AIG है तो भरोसा है।

0: आगे आगे उधर उधर
1: करेक्ट करेक्ट मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स। और अब लाइन लाइना डेट्स, इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
3: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स,

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: क्लिनिक पे दैट इज द मोस्ट कॉमन यू नो सिम्टम डॉक्टर बहुत ज्यादा बाल गिर रहे हैं इस मौसम में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है द स्किन गेट्स ग्रीजी बिकॉज ऑफ विच एक्निफॉर्म इरप्शंस स्टार्ट बार बार फेस वॉश नहीं करना है दैट विल वॉश अवे ऑल द नेचुरल मॉइस्चर अदरवाइज
3: कौन से स्किन को किस टाइप के प्रोडक्ट्स किस तरीके से चूज करना चाहिए
2: विटामिन सी फॉर एन एक्नी प्रोन स्किन is not a good idea.
3: Hair treatments भी लोग बहुत करवाते हैं जिसकी वजह से hair बहुत ज्यादा खराब हो जाता है आपके हिसाब से इन treatments का क्या असर होता है बालों में
2: We cannot be so strict. हम नहीं बोल सकते कि आप ये मत करना ये तो obviously, but then you'll have to take care.
3: How to choose the serum according to your skin type.
4: देश की राजधानी दिल्ली में मूसलाधार बारिश हो रही है और थोड़ी सी देर की बारिश में देश की राजधानी का क्या हाल है ये आपको तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है
5: हालांकि मुख्य सड़क आप सोचिए नई दिल्ली की ये मुख्य सड़क है लेकिन जैसे तेज बरसात शुरू हुई है और काफी मूसलाधार बारिश हुई है दिल्ली के कुछ इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है तो ज्यादातर जो हिस्से हैं वो रेड अलर्ट की चपेट में हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास अमित वधवार के साथ में आशुतोष मिश्रा आज तक
6: फ्रांस में टॉर्नेडो ने मचाई तबाही चीन में भारी बारिश की मार जल भराव लगातार मेक्सिको में आफती बरसात सड़कों पर सैलाब ये तस्वीरें फ्रांस के पोमास की हैं, जहां टॉर्नेडो ने भारी तबाही मचा रखी है सैलाबी आफत में कई घर तबाह हुए जबकि 39 लोग घायल बताए जा रहे हैं तूफान के बाद गांव में हर तरफ बर्बादी का मंजर छाया हुआ है जहां नजर जा रही है वहीं तबाही का भयानक मंजर नजर आ रहा है अब ले चलते हैं आपको चीन के चोंगवो में यहां बारिश ने तबाही मचाई है तस्वीरों में देखिए पूरे इलाके में भारी जलभराव है दूर दूर तक जहां नजर जा रही है वहां बस पानी ही पानी नजर आ रहा है कई इलाकों में लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया वहीं भारी बारिश का दौर अभी भी जारी है चीन के दूसरी ओर गुआंगशी में टाइफून नर्रा ने हालात बिगाड़ दिए हैं भारी बारिश के बाद कई गांवों में बाढ़ का पानी भर गया सड़कें डूबी तो लोगों को निकालने के लिए फ्लोटिंग ब्रिज का सहारा लिया गया आगे बात करते हैं मेक्सिको की ये तस्वीरें मेक्सिको के अकालपुल्को की हैं जहां भारी बारिश के बाद सड़कें सैलाबी आफत में तब्दील हो गईं इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है लोग घुटनों तक भरे पानी के बीच आने जाने को मजबूर दिखे कई वाहन भी बाढ़ के पानी में फंसे नजर आए फ्रांस से लेकर चीन और मेक्सिको तक कहीं टॉर्नेडो तो कहीं बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं मौसम के इस कहर ने कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है आज तक ब्यूरो
7: सरकारी नौकरी पाने के लिए फर्जी डिग्री का इस्तेमाल क्या सॉल्वर ने परीक्षा देकर दिलाई नौकरी क्या फर्जी डिग्री के खेल में कुलपति भी शामिल मध्य प्रदेश की एक यूनिवर्सिटी से बीपीएड डिग्री लेने वाले 66 अभ्यर्थियों की डिग्रियां सवालों के घेरे में है मामला 25 दिसंबर 2022 को हुई शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़ा है एसओजी के मुताबिक अभ्यर्थी ने मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी की बीपीएड डिग्री लगाई थी आरोप है कि उसकी जगह डमी कैंडिडेट ने परीक्षा दी और बाद में उसने उसी डिग्री के दम पर सरकारी नौकरी हासिल कर ली एसओजी ने यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड और कंप्यूटर डेटा की बारीकी से जांच की फॉरेंसिक पड़ताल में अभ्यर्थी के नाम से दो अलग अलग फीस लेजर अकाउंट मिले यह गड़बड़ी बस एक अभ्यर्थी में नहीं थी ऐसी ही कई और एंट्रियों में भी गड़बड़ी सामने आई जांच आगे बढ़ी तो यूनिवर्सिटी से बीपीएड की डिग्री लेने वाले 66 अभ्यर्थी जांच के दायरे में आ गए मामले में कुलपति मुकेश तिवाड़ी परीक्षा नियंत्रक संजय राठौड़ और कंप्यूटर ऑपरेटर आनंद शर्मा को गिरफ्तार किया गया है तीनों को कोर्ट में पेश किया गया जहां से पुलिस अभिरक्षा मिली मूल अभ्यर्थी भारमल राम पहले ही गिरफ्तार हो चुका है अब 66 डिग्रियों की जांच से फर्जीवाड़े का दायरा बढ़ने की आशंका है आज तक ब्यूरो

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

400 लोग लापता, त्रिशूली और बोटे कोशी नदियों ने बचाई तबाही। लापता होने वालों में 133 भारतीय शामिल। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाली पीएम बालिन शाह से की बात। अलर्ट पर बिहार और पूर्वी यूपी, भारतीय एयरफोर्स और एनडीआरएफ भी तैयार। यूपी में आधी आबादी को लुभाने की होड़। योगी सरकार देगी फ्री बस सेवा और 50,000 स्कूटी। समाजवादी पार्टी का 40,000 रुपए का दाम। बीजेपी के हमले के बाद अब मुस्लिम महिलाओं ने राहुल गांधी को घेरा। हिजाब को लेकर दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन। हिजाब पर चुप्पी का विरोध। दिल्ली में 24 घंटे में स्वाइन फ्लू के 134 नए मामलों से हड़कंप। सभी अस्पताल में 24 घंटे इमरजेंसी में डॉक्टर की तैनाती के निर्देश। अब तक 2,442 केस दर्ज।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विशेष, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। आज बात नेपाल में फ्लैश फ्लड की करेंगे। इस बीच बड़ी खबर आपको ये बता दें कि मरने वालों का आंकड़ा अब 72 से बढ़कर 95 हो गया है। 95 शव अब तक बरामद कर लिए गए हैं। इस भीषण तबाही ने 95 लोगों की जान ले ली है और मरने वालों का आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि काफी लोग अभी तक मलबे के अंदर दबे हो सकते हैं। कई लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिसमें 133 भारतीय शामिल हैं। एक सामान्य सी नदी में भीषण बाढ़ कि जैसे प्रलय आ गई हो। छोटी छोटी घाटियों में पानी की ऐसी ऊंची ऊंची लहरें उठी जैसे समंदर हो। इतना पानी की बस्तियां बर्बाद हो गई। होटल हो, घर हो, स्कूल, सरकारी दफ्तर, सब कुछ तबाह करता हुआ पानी अपने साथ ले गया। हमारी पहली रिपोर्ट में इस प्रलयकारी बाढ़ की पूरी वीडियो रिपोर्ट देखिए।
1: बहुत

0: ये सबसे खतरनाक तस्वीरें हैं नेपाल के त्रिशूली बाजार की। ऊपर से पानी आ रहा और नीचे तबाही मची।
1: ओहो, पूरा डैम फूट रहा है यार, पूरा चाइना को डैम फूट रहा है।
0: अचानक से पानी की रफ्तार तेज होती है और पुल के ऊपर से पानी बहने लगता है। पूरा का पूरा पुल ही टूट कर बह गए। साफ तबाही दिख रही है, सब कुछ बर्बाद करता हुआ ये फ्लैश फ्लड आगे बढ़ता जाता है। और ये उसके बाद का वीडियो है, देखिए पहले ये त्रिशूली बाजार कैसे दिखता था और अब क्या हाल हो गया है। सब कुछ बर्बाद, यहाँ घर थे, होटल थे, स्कूल थे, सब कुछ खत्म हो गए, सिर्फ और सिर्फ बर्बादी के निशान दिख रहे हैं। अब जरा इन दो तस्वीरों को देखिए और समझिए कि कैसे ये त्रिशूली बाजार बर्बाद हो गया। जब ये बाढ़ आई तो उसकी भयावहता तो दिख ही रही है, लेकिन ये भी समझ में आ रहा है कि ये एक भरा पूरा बाजार था जहाँ सब कुछ था, होटल, स्कूल, रिहायशी इलाके। और दूसरी तस्वीर में आपको तबाही दिख रही है, सब कुछ खत्म हो गया। नदी के किनारे रहने वाले लोगों के घर तो पूरी तरह से तबाह हो गए। अभी तो ये भी नहीं पता कि यहाँ कितने लोग बहे होंगे। ये फ्लैश फ्लड कितनी तबाही लेकर आया ये इन तस्वीरों से समझिए। पानी की लहरें बड़ी बड़ी इमारतों से भी बहुत ऊंची उठ रही हैं। ये नेपाल का रसुआ इलाका है, देखिए पानी की कितनी ऊंची लहरें हैं। ये इस तबाही का एक और खतरनाक वीडियो है, ये धाड़िंग का बताया जा रहा है, जहां ये पुल ऐसे बह गया जैसे कि कागज का रहा हो। इतने फोर्स से पानी आया कि पूरा का पूरा पुल ही बह गया। पानी के साथ बहुत सा कचरा भी दिख रहा है। देखिए कैसे अचानक से ये फ्लैश फ्लड अपना रास्ता बदल कर आया। ये तस्वीरें नेपाल के रसवागढ़ी में चीन के केरूंग बॉर्डर की है, जहां पर कस्टम ऑफिस भी है। यहां से नेपाल में सामान आता है, कंटेनर आते हैं, और इसी रास्ते से मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले यात्री भी जाते हैं। सीसीटीवी की तस्वीरों में तारीख आज की है, यानी 26 अगस्त। लोगों के बीच अफरा तफरी मची हुई है और पीछे से फ्लैश फ्लड आ रहा है। यहाँ पर पूरा कस्टम ऑफिस है, अचानक से पूरा फ्लैश फ्लड आता है और सब कुछ खत्म करते हुए आगे बढ़ जाता है। ये लोग जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे वो नहीं बच पाए। बाद में पूरी की पूरी बर्बादी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। पीछे से भारी मात्रा में पानी और मलबा दिख रहा है और आता ही जा रहा है। ये इसी कस्टम पॉइंट का एक और सीसीटीवी वीडियो है। पहले तो सब कुछ सामान्य लग रहा है, बगल में एक छोटी सी नदी बह रही है, 10-12 बसें भी दिख रही हैं, एक दफ्तर दिख रहा है। अचानक से ऊपर से कुछ हलचल होती है या शोर होता है, लोग दौड़ने लगते हैं। देख सकते हैं कि कैसे लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। और फिर दिखता है फ्लैश फ्लड, पूरा पानी और मलबा आता है और सब कुछ तबाह करके चला जाता है। सारी बसें ऐसे बहती हैं जैसे कोई फिल्मी सीन। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने खोज और बचाव कार्य के निर्देश दिए हैं। तिब्बत के केरूंग पोर्ट पर बुधवार की सुबह ये फ्लैश फ्लड आया था। ये फ्लैश फ्लड कोई सामान्य नहीं था, ये नेपाल चीन बॉर्डर से करीब 190 किलोमीटर दूर चितवन की तस्वीरें हैं। और इन तस्वीरों में पानी का फोर्स और उसकी तबाही साफ दिख रही है। सामने बहुत बड़ी भगवान बुद्ध की मूर्ति है और पानी बिल्कुल मूर्ति के आधे आ गया है। ये समझा जा सकता है कि इसकी रफ्तार कितनी तेज है। अब जरा आसमान से देखिए कि कैसे तबाही मची हुई है। ये तस्वीरें नेपाली सेना ने जारी की हैं, हेलीकॉप्टर से ली हुई हैं। सब कुछ तबाह दिख रहा है। इस तबाही का एक और वीडियो रसवा में त्रिशूली नदी के पास का है। जब ये बाढ़ आई तब का वीडियो है। आगे एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट दिख रहा है और नीचे कुछ मजदूर काम कर रहे हैं। तभी अचानक से ऊपर से पानी आ गया, मजदूर भागने लगे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इतना फोर्स से पानी आया कि ये पूरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट टूट गया और ये मजदूर बह गए।
2: नेपाल चीन बॉर्डर के ग्यूरोंग पोर्ट से आई है, जहां भूस्खलन के बाद सैलाब की रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें आप यहां पर देख सकते हैं, जिसके बाद नेपाल के रसुवा से तबाही की तस्वीरें आई, फिर भोटे कोशी आगे जाकर नुवाकोट में तबाही मचाती है, जिसने भारत में आने वाले वाल्मीकि नगर गंडक डैम के सारे 29 दरवाजे इसकी वजह से खोल दिए गए हैं। वहीं गंडक के रूट में आने वाले बिहार के जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया, जिसमें पश्चिमी पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, वैशाली जिले आते हैं और यहां से आगे गंडक नदी गंगा नदी में मिल जाती है। अभी तक कोई अनुमान नहीं लग पा रहा है कि इस प्रलय से कितना नुकसान हुआ है। 133 भारतीय लापता हैं और यह भी कहा जा रहा है कि मानसरोवर यात्री ये हो सकते हैं, क्योंकि नेपाल से मानसरोवर यात्रा के रूट में ही ये फ्लैश फ्लड आया है, जिसकी शुरुआत नेपाल चीन बॉर्डर से हुई। बताया जा रहा है कि वहां कोई ग्लेशियर फटा, जिसके बाद ये बाढ़ आई, और यह भी कहा जा रहा है कि लैंडस्लाइड की वजह से नदी का रास्ता रुक गया, जिसकी वजह से पानी जमा होता गया।
0: ये नेपाल के नुवाकोट की ड्रोन तस्वीरें, तबाही के निशान साफ साफ दिख रहे हैं। नदी किनारे पूरी बस्ती थी, अब कुछ एक घर ही बचे हैं। ऐसा लगता है कि नदी अपने साथ सब कुछ बहाती हुई ले गई, पूरा सपाट कर दी। और ये नेपाल के रसवा की एरियल तस्वीरें, पूरी की पूरी घाटी में नदी से हुई बर्बादी साफ दिख रही है। नेपाल की सेना कैसे बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर रही है, ये इन तस्वीरों से समझिए। यहां एक लड़का छत पर था, वो निकल नहीं पाया और यहीं फंस गया। यहां हेलीकॉप्टर उतारने की जगह नहीं थी, तो छत के ऊपर हेलीकॉप्टर कुछ देर के लिए स्थिर रहा और वहीं पर उसका रेस्क्यू किया गया। अंदर से नेपाली सेना के जवान ने हाथ बढ़ाया, इस युवक ने थामा और इस तरह से उसे बचाया। ये तबाही का एक और वीडियो है। पूरी घाटी है, सामने से नदी बह रही है, जिसकी रफ्तार बहुत कम है और पानी भी कम है, लेकिन तभी अचानक से ऊपर से पानी का गुबार आता दिख रहा है। साफ दिख रहा है कि पानी सब कुछ बर्बाद करता हुआ आगे बढ़ रहा है। एक ट्रक वाला भी सड़क पर है, जो पानी की रफ्तार देखते हुए और तेजी से भागने लगा। लेकिन पानी की रफ्तार से जीत नहीं पाई। पानी की ऊंची ऊंची लहरें बहुत तेजी से बढ़ रही थी। पीछे से और तेज गति से पानी आ रहा था और इसी में कुछ और लोग फंसे हुए दिखाई दिए, जो पैदल चल रहे थे। वो भी पूरी रफ्तार से भागने और बचने की कोशिश कर रहे थे। दूर से बनाए गए इस वीडियो में पानी बहुत नजदीक दिख रहा है, लेकिन असल में यह बहुत दूर था। पीछे से पूरा मलबा आ रहा था। पानी का फोर्स इतना तेज था कि ऐसा लग रहा था जैसे यह बहुत नजदीक हो। ऐसे ही पूरी की पूरी घाटी इस फ्लैश फ्लड से बर्बाद हुई। यह इस तबाही का एक और वीडियो है, यह भी बहुत दूर से बनाया गया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बम विस्फोट हुआ, जिसके बाद धुएं का गुबार उठा हो, लेकिन असल में ये पानी का बहाव था, जो इतना तेज था कि आसपास सब कुछ बर्बाद करता हुआ आगे बढ़ रहा था। देखिए कैसे बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई। नेपाल में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि जहां ये बाढ़ आई है, इस त्रिशूली नदी पर बहुत से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स चल रहे थे जो पूरी तरह से तबाह हो गए। नेपाली मीडिया के मुताबिक लांगटांग खोला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में काम करने वाले 60 लोग लापता हैं। इनमें 25 इंजीनियर, ड्राइवर और किचन स्टाफ है। इसके अलावा 35 वर्कर हैं जो टनल के अंदर काम कर रहे थे। फ्लैश फ्लड के बाद उनका भी कुछ पता नहीं चल रहा। इसके अलावा तिमूर में रसवा कस्टम ऑफिस में काम करने वाले 15 कर्मचारी भी मिसिंग हैं। बाढ़ की तबाही इतनी भीषण है कि बड़े बड़े पुल टूट गए। ये चितवन में त्रिशूली नदी पर बना पुल है, देखिए क्या हाल हो गया। आज तक
2: पंकज दास मेरे सहयोगी जुड़ गए इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। तो पंकज, मरने वालों का आंकड़ा 92 तक पहुंच गया है, लेकिन मिसिंग लोगों की संख्या का आकलन कर पाना एक बड़ी मुश्किल का सबब है। कब तक एग्जैक्ट फिगर्स मिसिंग और डेड की हम पा पाएंगे?
3: देखिए, एग्जैक्ट फिगर पाने के लिए अभी कम से कम 2-3 दिनों का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह के इलाके है वहाँ पहुँच पाना ऐसी एक बड़ी चुनौती है, और इन जगहों से आंकड़े इकट्ठे कर पाना, क्योंकि कई सारे गांव, कई सारे बस्ती, कई सारे मोहल्ले जो है वो पूरी तरह तरीके से जो पानी में बह गए हैं, वहाँ कितने लोग रहते थे और उनका आंकड़ा क्या था, जिस पर स्थानीय प्रशासन जैसे जैसे धीरे धीरे स्थिति थोड़ा नॉर्मल होती जाएगी तब ये आंकड़ा आना शुरू होगा। उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर ये एक्चुअल में इसका कितना नंबर।
2: इसके साथ ही पंकज, हमने अब तबाही की तस्वीरें तो देख ली हैं, क्या इसका रेकरेंस भी हो सकता है? क्योंकि कई बार फ्लैश फ्लड आता है, उसके बाद रेकरिंग फ्लैश फ्लड्स भी आते हैं, क्योंकि जिस तरह की टोपोग्राफी हमने दिखाई है, जलाशयों का वहां पर एक जगह समन्वय है, ऐसे में क्या इसकी रेकरेंस हो सकती है?
3: और चीन ने दोपहर को ही नेपाल को ये बता दिया था कि अभी तबाही थमी नहीं है, बाढ़ का खतरा बरकरार है। उन्होंने आधिकारिक रूप से नेपाल सरकार को जानकारी दी थी कि जिस ग्लेशियर से ये फाल्ट टूटे, जो पानी का सैलाब आया है वहाँ पे अभी भी जमा हुआ, क्योंकि लैंडस्लाइड गया था, उस लैंडस्लाइड के कारण से जो है वहाँ रुका हुआ पानी, जैसे ही वो पानी का दबाव बढ़ेगा और पानी फिर से नीचे आएगा तो एक बार तबाही का नजारा हम फिर से हमें देखने को मिल सकता है। इसलिए दोबारा खतरे की घंटी अभी भी बज रही है, खतरे की आशंका बनी हुई है, और अभी भी जो है वहाँ से पानी का सैलाब जो यदि टूटेगा तो फिर से इन इलाकों में तबाही मचाएगा।
2: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, टिकते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

राजधानी दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में स्वाइन फ्लू के मामलों में इजाफा हुआ तो सरकार की चिंता भी बढ़ गई। एहतियाती कदम उठाए जाने लगे।

एडवाइजरी जारी की गई, उच्च स्तरीय बैठकों का दौर शुरू हो गया। बात अगर राजधानी दिल्ली की करें तो बीते कुछ दिनों में यहां H1N1 इन्फ्लुएंजा के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब तक दिल्ली में H1N1 के 2000 मामले सामने आए हैं और स्थिति चिंताजनक है, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने अहम बैठक भी बुलाई। उधर हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अस्पतालों में स्पेशल वार्ड बनाए गए हैं,

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

राजधानी दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में स्वाइन फ्लू के मामलों में इजाफा हुआ तो सरकार की चिंता भी बढ़ गई। एहतियाती कदम उठाए जाने लगे, एडवाइजरी जारी की गई, उच्च स्तरीय बैठकों का द्वार शुरू हो गया। बात अगर राजधानी दिल्ली की करें तो बीते कुछ दिनों में यहां H1N1 इन्फ्लुएंजा के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब तक दिल्ली में H1N1 के 2000 मामले सामने आए हैं और स्थिति चिंताजनक है, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने अहम बैठक भी बुलाई। उधर हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अस्पतालों में स्पेशल वार्ड बनाए गए हैं जहां स्वाइन फ्लू वायरस से पीड़ित मरीज का इलाज किया जा सके। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक स्वाइन फ्लू एक वायरल संक्रमण है जो संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने और नजदीकी संपर्क में आने से फैलता है और जल्द ही इसके लक्षण भी नजर आने लगते हैं। यूं तो मौसम में बदलाव के साथ बुखार, खांसी, गले में खराश, सिर दर्द और शरीर में दर्द जैसी समस्याएं होना आम है। अक्सर लोग इन लक्षणों को सामान्य वायरल संक्रमण या मौसम का असर मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। हालांकि अगर ये लक्षण लगातार बने रहें, बढ़ने लगें या स्वास्थ्य में सुधार न हो तो सावधानी बरतना जरूरी है। ऐसे लक्षण स्वाइन फ्लू यानी H1N1 संक्रमण में भी दिखाई दे सकते हैं। कोलकाता और बेंगलुरु जैसे शहरों में भी हाल के दिनों में मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने बढ़ते स्वाइन फ्लू मामलों के मद्देनजर दिल्ली और देश में स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक कर चुके हैं। साथ ही कई राज्यों में भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: वक्त एक ब्रेक का हो चला है, विशेष में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए खबरदार मेरे सहयोगी सईद अंसारी के साथ।
0: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय वेक्टर्स, भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले वाटर टैंक्स, टंकी मतलब वेक्टर्स। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: नेपाल में फ्लैश फ्लड से हाहाकार, अब तक 95 लोगों के शव बरामद, करीब 400 लापता। त्रिशूली भोटेकोशी नदियों ने मचाई है तबाही। लापता में 133 भारतीय भी, पीएम मोदी ने नेपाली पीएम से की बात, अलर्ट पर बिहार और पूर्वी यूपी, भारतीय एयरफोर्स और एनडीआरएफ भी तैयार। यूपी में आधी आबादी को लुभाने की होड़, योगी सरकार देगी फ्री बस सेवा और 50,000 स्कूटी, समाजवादी पार्टी का 40,000 रुपए का दाम। बीजेपी के हमले के बाद अब मुस्लिम महिलाओं ने राहुल को घेरा, हिजाब को लेकर दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन, हिजाब पर चुप्पी का विरोध। दिल्ली में 24 घंटों में स्वाइन फ्लू के 134 नए मामलों से हड़कंप, सभी अस्पतालों में 24 घंटे इमरजेंसी में डॉक्टर्स की तैनाती के निर्देश, अब तक 2,442 केस दर्ज।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका और ये वक्त है हर खबर से आपको खबरदार करने का। आज की सबसे बड़ी खबर, चीन से आई बाढ़ के कारण से नेपाल में मची तबाही और भारत तक उसके असर को लेकर जारी अलर्ट है। इस समय इसी खबर से पहले आपको हम खबरदार करते हुए इसका अपडेट दे दें। अपडेट ये है कि इस समय सबसे बड़ी खबर है कि 400 से अधिक लोग बाढ़ वाली तबाही के कारण लापता हैं, जिसमें दर्दनाक खबर यह है कि 95 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 72 लोगों के शव मिल चुके हैं। दूसरा बड़ा अपडेट यह है कि अब तक जो 403 लोग लापता हैं उनमें से 133 लोग भारतीय हैं। और तीसरी खबर यह है कि नेपाल और तिब्बत के बीच रसुआगढ़ी बॉर्डर से 20 किलोमीटर दूर हिमस्खलन से बाढ़ आने का दावा हुआ है। चौथा अपडेट ये आया, इस समय अब भारत चौकन्ना हो चुका है, आशंका है कि गंडक नदी में बाढ़ आ सकती है। इसके बाद उत्तर प्रदेश और बिहार में अलर्ट कर दिया गया, लोगों को सावधान रहने को कह दिया गया है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि हम हर संभव मदद नेपाल को देंगे जहां तबाही आई है। नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर आज सुबह अचानक आई बाढ़ ने नेपाल के रसुआ जिले में भारी तबाही मचा दी। तिब्बत से भोटेकोशी नदी में अचानक बाढ़ का तेज बहाव आया जिसमें कई इलाके बह गए। नेपाल में तबाही की जो तस्वीरें सामने आई उसे देखकर ऐसा लगा कि मानो ये प्रलय आ गई।
1: प्रलय का नाम सबने सुना है, लेकिन क्या जब वो आएगी तो ऐसी ही होगी? तिब्बत से अचानक नेपाल में आए जल प्रलय का ये सीसीटीवी वीडियो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। पहली बार तो ये किसी फिल्म का सीन लगता है, लेकिन अफसोस ये हकीकत है। ये चीन के कब्जे वाले तिब्बत और नेपाल का रसुआगढ़ी बॉर्डर क्रॉसिंग, जहां चीनी हिस्से में बने इमिग्रेशन ऑफिस को अचानक बाढ़ की लहर चारों तरफ से घेर लेती है। जान खतरे में देखकर लोग इस सीसीटीवी वीडियो में भागते दिखते हैं, लेकिन मौत का पंजा उन्हें दबोच लेता है। बाढ़ की लहर की चपेट में 5-6 मंजिला ऊंची इमारत आ जाती और कोई कुछ नहीं कर पाता। बताया जा रहा है कि यहीं से बाढ़ नेपाल में दाखिल। मौत के सैलाब का दूसरा वीडियो देख जो पहले जितना ही डरावना है। चीनी इमिग्रेशन ऑफिस के बताए जा रहे इस सीसीटीवी वीडियो में आप दर्जन भर के करीब बस खड़ी हुई देख सकते हैं। उसके पीछे नदी है जिसका पानी शांत है, लेकिन इस सीसीटीवी वीडियो में फिर भी कुछ लोग भागते हुए देखते हैं। लोगों की संख्या कुछ ही सेकंड में बहुत ज्यादा हो जाती है। मन में सवाल उठता है कि लोगों की भीड़ क्यों भाग रही है। कुछ लोग गाड़ी से भी भागते दिखाई देते, आखिर लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब अगले ही पल मिल जाता है जब बाढ़ का पानी इस पूरी इमारत को अपने चारों तरफ चपेट में ले लेता है। अब सवाल यह कि नेपाल में इस जल प्रलय की वजह क्या है? नेपाल में अचानक बाढ़ क्यों आई? तिब्बत में ऐसा क्या हुआ कि नेपाल में 400 लोग लापता हो गए जिसमें 100 से ज्यादा भारतीय हैं? नेपाल के रसुआगढ़ी से सटा चीन के केरुंग बॉर्डर पर जिस कस्टम ऑफिस में तबाही की तस्वीर आपने देखी, इसी रास्ते से मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले यात्री आगे बढ़ते हैं। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीर सुबह 11 बजे की। सवाल है कि क्या बाढ़ के वक्त वहां पर भारतीय मौजूद थे? नेपाल के रसुआ में पिछले 24 घंटे में 7 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश नहीं हुई, इसलिए बाढ़ की वजह स्थानीय लोग बारिश नहीं मानते। अधिकारियों को आशंका है कि तिब्बत में ग्लेशियर झील फटने से अचानक पानी भोटेकोशी नदी में आया और जल प्रलय ने तबाही मचा दी। लेकिन नेपाल के विदेश मंत्री ने स्थानीय मीडिया से कहा है कि शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार इस तबाही की वजह भूकंप के बाद हिमस्खलन जिससे बाढ़ आ गई। भोटेकोशी बेसिन में 122 ग्लेशियर झीलें हैं। कौन सी झील फटी इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई। सैटेलाइट तस्वीरों और तकनीकी जांच से स्रोत का पता लगाया जा रहा है, लेकिन वजह चाहे जो भी हो, तबाही से भारत को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है क्योंकि नेपाल के रसुआ जिले में भोटेकोशी नदी में आई बाढ़ के बाद जो 291 विदेशी पर्यटक लापता हुए, इनमें 105 भारतीय। जिन पर्यटकों से संपर्क नहीं हो पा रहा उनमें से सबसे ज्यादा भारतीयों की ही संख्या है।
0: नेपाल में अचानक आई बाढ़ ने बुनियादी ढांचों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। इस बाढ़ से 11 हाइड्रो पावर प्लांट्स पूरी तरह से तबाह हो गए। 11 हाइड्रो पावर प्लांट्स को नुकसान से 431 मेगावाट बिजली उत्पादन पूरी तरह से बंद हो गया। इसके अलावा बाढ़ से 19 पुल और 40 किलोमीटर सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई। बैंक्स, फाइनेंशियल संस्थानों के आधे दर्जन से अधिक ऑफिस बाढ़ की चपेट में आ गए। 25 से अधिक टेलीकम्युनिकेशन साइट्स प्रभावित हुई। तिमरे, सियाफुरब्रेसी, नुवाकोट इलाकों में मोबाइल टावर और साइट्स क्षतिग्रस्त हो गए। ये बेहद बड़ा नुकसान है।
1: नेपाल का त्रिशूली बाजार, समय सुबह के 9 बजे। तभी नेपाल के लोग जल प्रलय के इस भयानक रूप को देखकर कांप जाते हैं। अचानक नदी में बाढ़ आती है और चारों तरफ तबाही मच जाती। ये देखिए कैसे नदी में अचानक बाढ़ का पानी दौड़ता हुआ आता है और नदी के आसपास बने घरों में घुस जाता है। वीडियो बना रहे लोग ये कहते हुए सुने गए कि चीन में बांध टूटने से ये हादसा हुआ।
2: पूरा डैम फूट रहा है यार, पूरा चाइना को डैम फूट रहा है।
1: वीडियो के शुरुआती 20 सेकंड तक नदी का जल स्तर बढ़ चुका था, लेकिन अगले ही कुछ पलों में ये पुल बहने वाला है इसका अंदाजा किसी को नहीं था। वक्त के गुजरने के साथ नदी में पानी बढ़ता ही गया और वीडियो के 29वें सेकंड में बाढ़ का पानी पुल के ऊपर चढ़ता हुआ देखता है और अगले 5 सेकंड के अंदर ये धराशायी हो गया। इतना बड़ा पुल बाढ़ का मुकाबला नहीं कर पाया। नेपाल के नुवाकोट जिले में आने वाले त्रिशूली बाजार में अक्सर भीड़ रहती है। वो तो अच्छा है कि ये तबाही सुबह हो, वरना और भी ज्यादा नुकसान हो। नेपाल में कितनी बड़ी प्राकृतिक आपदा आई है इसका अंदाजा आपको इस ड्रोन तस्वीर को देखकर लगेगा। रसुआ और नुवाकोट से होकर बहने वाली भोटे कोसी और त्रिशूली नदी में आई बाढ़ के कारण नुवाकोट का ऐतिहासिक त्रिशूली बाजार करीब करीब डूब गया है। बाजार का आधे से ज्यादा हिस्सा पूरी तरह तबाह हो गया है। तस्वीर में बड़े पैमाने पर तबाही दिखाई दे रही है। बाढ़ का पानी अपने साथ मलबा और क्षतिग्रस्त इमारतें छोड़ गया। इस तबाही में पुल बह गया। त्रिशूली जल विद्युत संयंत्र से लेकर बाजार में बने नए और पुराने दोनों कंक्रीट के पुल, त्रिशूली स्कूल, मंदिर और घर सब कुछ बह गए हैं। नेपाल के रसुआ जिले में अचानक आई बाढ़ के रास्ते में जो कुछ आया वो उसे तिनके की तरह बहता नजर आया। इसका उदाहरण रसुआ का ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो भोटे कोसी नदी पर बना है। जैसे ही इससे बाढ़ का पानी टकराता है ये देखिए किस तरह बह जाता है। वीडियो में बाढ़ का पानी इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से टकराया। इसके बाद वीडियो बनाने वाले जैसे ही कैमरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तरफ लौटाते हैं तो इतना बड़ा और शक्तिशाली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट गायब हो जाता है, मानो यहाँ कुछ था ही नहीं। तबाही के इस वीडियो को बना रहे लोग इसका यकीन ही नहीं कर पाते। नेपाल की रसुआ में बाढ़ का पानी सब कुछ बहा ले गया, लेकिन जब ये हुआ तो वो कितना भयानक रहा होगा अंदाजा आप बाढ़ की लहरों की ऊंचाई को देखकर समझिए। जिनके आगे भोटे कोशी नदी के पास बनी इमारतें छोटी छोटी नजर आने लगी। अब इस वीडियो को आज आप देखिएगा जिसमें मौत सामने देख लोग चिल्लाते हैं। पानी किसी बम और मिसाइल की तरह रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ता है। लोग हैरान होकर ये सब देखने को मजबूर है। तभी वो देखते हैं कि बाढ़ उनका आशियाना बहा ले जाती है। कई ऊंचे और बड़े घर भी बाढ़ की चपेट में आकर तबाह हो जाते हैं। नेपाल में तिब्बत से आई इस तबाही से बचने का लोगों को वक्त ही नहीं मिला। पानी हवा की रफ्तार से रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ता है। जो लोग ऊंचे इलाके में थे वो नदी के पास रहने वाले दूसरे लोगों को चिल्लाकर खबरदार करते सुने गए, लेकिन जल प्रलय से बचने के लिए ये सब कुछ नाकाफी था। हालांकि कुछ खुशकिस्मत भी रहे, जैसे ये शख्स जो समय रहते तबाही के रास्ते से बच निकला, लेकिन कुछ ही देर में ये पूरा इलाका पानी में डूब गया। नदी के किनारे बने घर पानी में डूबे देखने लगे। इस तबाही के बाद नेपाल की सेना बचाव के काम में जुटी है, जिसने हेलीकॉप्टर से इस जल प्रलय की तस्वीरें कैमरे में कैद की। इस तस्वीर में रसुआ के बाढ़ प्रभावित इलाके को देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि इस तबाही का नदी के पास निचले बाजार में रहने वाले लोगों को पता चल गया, इसीलिए वो वहाँ से निकल गए, लेकिन ऊपरी बाजार के लोग बाढ़ के आने तक वहाँ से निकल नहीं पाए। इसकी वजह अफवाहों को बताया गया, जो पहले भी फैलती रही, लेकिन बाजार को बहा ले जाने वाली बाढ़ कभी नहीं आई। लेकिन तिब्बत से आई इस तबाही ने इस बार इस खतरे को सच साबित कर दिया और भयानक बाढ़ में सैकड़ों लोग लापता हो गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे पहले साल 1985 में रसुआ के धुंचे इलाके में भूस्खलन हुआ था, जिससे त्रिशूली नदी का रास्ता रुक गया। उस समय बाजार के बह जाने के डर से पूरे बाजार को खाली करा लिया गया था। हालांकि बाढ़ बाजार तक तब नहीं पहुंची थी, लेकिन इस बार बाढ़ नुआकोट के ऐतिहासिक त्रिशूली बाजार, जिसे संगु बाजार के नाम से भी जाना जाता है, उसकी चपेट में सैकड़ों लोग आ गए। बताया जाता है कि यहाँ करीब 500 घर हैं और 2000 से ज्यादा लोग रहते हैं, इसलिए लापता लोगों के बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।
3: आपके लैंडस्लाइड के कारण से पानी रुका हुआ था, और जब पानी वहां से लैंडस्लाइड फुट के पानी जब बढ़ा तो उसका इंफॉर्मेशन अगर इमीडिएट चाइना के तरफ से नेपाल में आता तो बहुत सारे लोग बचते। और भगवान का कृपा है कि ये फ्लड आपका दिन में आया, यदि फ्लड रात में आता तो न जाने क्या महाभारत होती, आप कल्पना नहीं कर सकते।
0: नेपाल में इस खतरनाक तबाही को देखकर हमारे देश भारत के सैकड़ों परिवार इस समय बहुत चिंता में हैं, और इसका कारण यह है कि जो भारतीय लापता हैं वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए थे। नेपाल में देश भर से हजारों पर्यटक और श्रद्धालु इस यात्रा के लिए आते हैं। ताजा खबर यह है कि तमिलनाडु के भी पर्यटक नेपाल में इस समय फंसे हुए हैं। तमिलनाडु के कुंभकोणम के श्रद्धालु नेपाल में फंसे हैं, उनकी ये तस्वीर हमें मिली है। ये सभी लोग नेपाल घूमने गए थे। तमिलनाडु के करीब 50 लोग इस समय नेपाल में फंसे हुए हैं, जिनकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। ये 50 लोगों में से कुछ लोग हैं उस ग्रुप के जो सभी एक साथ घूमने गए थे और इस समय ये नेपाल में फंसे हुए हैं।
1: नेपाल में अचानक आई बाढ़ की चपेट में आए कैलाश मानसरोवर जाने वाले श्रद्धालु। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर निकले 384 श्रद्धालुओं से संपर्क नहीं हो पाया। तिब्बत और नेपाल के रसुआगढ़ी बॉर्डर क्रॉसिंग की इस तस्वीर को जब भारत में लोगों ने देखा तो उन्हें भी जरा भी अंदाजा नहीं था ये वही जगह है जहां से कैलाश मानसरोवर जाने वाले भारतीय श्रद्धालु तिब्बत में एंट्री लेते हैं। बुधवार को ही कैलाश मानसरोवर जाने वाले श्रद्धालुओं को तिब्बत की तरफ जाना था, लेकिन उससे पहले ही जल प्रलय से तबाही मच जाती है। इस सच के सामने आने के बाद चीनी हिस्से में बने इमिग्रेशन ऑफिस में मची तबाही ने कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए श्रद्धालुओं को चिंता से भर दिया।
3: 400 लोग हमें सुबह फोन आया, मतलब एक घटना के बाद मलेशिया से हिंदू पिलग्रिम जो मानसरोवर के लिए जा रहे थे, मोर देन 400 पीपल हिंदू जो वहाँ पे इमिग्रेशन के पास गए सब बह गए। आस्ते आस्ते आएगा, जब नंबर 1336 सरकार दिखा रहा है ना, आस्ते आस्ते ये नंबर आपका 1000 से ऊपर जाएगा।
1: नेपाल में आई इस तबाही के बाद भोटेकोशी नदी में आई भयानक बाढ़ का सीधा असर कैलाश मानसरोवर यात्रा पर पड़ा। अभी भले ही इस यात्रा को रद्द नहीं किया गया, लेकिन काठमांडू में टूर ऑपरेटर्स ने पुष्टि की कि सुरक्षा कारणों से अगले 48 से 72 घंटों के लिए सभी रवानगी रोक दी गई। नेपाल से कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए काठमांडू से तिमुरे होते हुए रसुआ जाना होता है। रसुआ चीन के बॉर्डर पर है, इसके बाद तिब्बत होते हुए कैलाश मानसरोवर श्रद्धालु पहुंचते हैं। 5 साल के बाद नेपाल की तरफ से कैलाश मानसरोवर के लिए यात्रा शुरू की गई, जिसमें कम से कम 25,000 भारतीय तीर्थयात्रियों के आने की उम्मीद थी। नेपाल में चीन की तरफ से आई बाढ़ ने किस तरह लोगों को बचने का मौका नहीं दिया, उसका अंदाजा आपको इस वीडियो से लगेगा, जिसमें नेपाल के रसुआ के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में जब तबाही मची तब कुछ लोग नदी के किनारे पर काम कर रहे थे। उन्हें समय रहते लोगों ने खबरदार किया। जैसे ही हाइड्रो प्रोजेक्ट को तबाह करते हुए पानी आगे आया, सब कुछ बहा ले गया, जेसीबी मशीन भी बह गई। अगर समय रहते इन मजदूरों को लोग सावधान नहीं करते तो ये लोग ना बचते।
3: आप देखते देखते 5-10 मिनट में सारी कहानी खत्म हो गई। आप अंदाजा नहीं लगा सकते, आदमी 100 गिन नहीं पाएंगे जितना आदमी का ध्यान डूबा है इसमें। चलते चलते अमरी आपने देखा 3 गाड़ियां जा रही थी, 1-2 गाड़ी आगे चला गया, 1 गाड़ी थोड़ा रुक गया, वो जल प्रवाह में 2 गाड़ी बह गया। आज गोरखा जाने वाला वहां अभी हमने
1: नेपाल में ये तबाही बुधवार सुबह सुबह हुई, जिसमें नेपाल चीन मित्री पुल बह गया और मुख्य तीर्थ यात्रा मार्ग पर सड़कें और संचार व्यवस्था ठप्प पड़ गई। अब नेपाल के थाडिंग का ये वीडियो देखिए, जिसमें बाढ़ में एक पुल बह जाता है, पानी के बहाव की चोट से पुल 2 हिस्सों में टूट जाता है और देखते ही देखते पानी में बहने लगा। इस तस्वीर में एक और पुल का हिस्सा भी बहते हुए देखा जा सकता है। रसुआ में भोटेकोशी नदी में तबाही का एक और वीडियो देखिए, जिसमें पानी के बहाव में घर और गाड़ी बहते दिखे। नेपाल के प्रधानमंत्री बालिन शाह ने रसुआ के बाढ़ प्रभावित इलाकों में बचाव और राहत के लिए नेपाली सेना, सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल पुलिस को तैनात करने के निर्देश दिए हैं। प्रभावित इलाकों में दूसरे जिलों से भी अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी भेजे गए हैं। भोटेकोशी नदी तिब्बत से निकलकर नेपाल में आती है और आगे जाकर सुनकोशी नदी में मिल जाती है। यही सुनकोशी नदी आगे चलकर कोसी नदी बनती है, जो भारत के बिहार में प्रवेश करती है। पिछले साल भी भोटेकोशीमाई बाढ़ से नेपाल को बड़ा नुकसान हुआ था, इसीलिए भारत भी इस तबाही के बाद खबरदार हो गया है।
0: नेपाल में आई बाढ़ का कारण क्या है, इसे लेकर सैटेलाइट तस्वीरों का सहारा लिया जा रहा है। जहां पर यह हादसा हुआ उसकी ताजा सैटेलाइट तस्वीर आपके सामने है, जिसमें तबाही से पहले और तबाही के बाद की तस्वीर है। नेपाल में आई बाढ़ की कितनी भयानक थी, ये सैटेलाइट तस्वीरें हमें खबरदार करती हैं, पहले की और उसके बाद की। इस समय बड़ी खबर नेपाल के चेतन पार्क में हुगली से गए 65 लोगों को लेकर आ रही है। लोग फंस गए हैं। नेपाल का चेतन पार्क तबाही की जगह से 120 किलोमीटर दूर है और ये सभी लोग बस के द्वारा नेपाल निकल गए थे। ये सभी के सभी पश्चिम बंगाल के 65 यात्री हैं जो फंसे हुए हैं चेतन पार्क में। पश्चिम बंगाल हुगली के 65 लोग जो जा रहे थे वो फंस गए हैं। ये सब नेपाल घूमने गए थे। बहुत सारे भारतीय हैं जो नेपाल घूमने गए थे, उनकी लगातार खबरें आ रही हैं। 133 भारतीय फिलहाल लापता हैं। तमिलनाडु के लोगों की बात हमने बताई, वो फंसे हुए हैं और ये 65 पश्चिम बंगाल के पर्यटक हैं, टूरिस्ट हैं जो अब फंस गए हैं। नेपाल में बाढ़ का मतलब उत्तर प्रदेश और बिहार में तबाही से लगाया जाता है। अब इतनी बड़ी बाढ़ के बाद उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया। गंडक नदी के आसपास के जिलों में प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने को कह दिया है।
1: नेपाल में भारी बारिश और भूस्खलन के बाद संभावित बाढ़ को देखते हुए बिहार के गोपालगंज में हाई अलर्ट जारी किया गया। जिला प्रशासन ने तटबंधों की 24 घंटे निगरानी करने के निर्देश दिए।
4: सबको बताना है कि आज से कल तक में कोई भी बांध के उस तरफ निचले तरफ नाव अथवा अपने गाय भैंस को लेकर के उधर नहीं जाएंगे, क्योंकि तेजी से पानी आने के कारण उनके जानमाल को खतरा हो सकता है और वो सभी लोग ऊंचे स्थल पे बांध के इसी पार रहेंगे। कोई भी किसान अथवा व्यक्ति खेती करने हेतु भी 2 दिन अभी आज और कल उस तरफ बांध के उस तरफ निचले तरफ नहीं जाएगा।
1: नेपाल में अचानक आई बाढ़ का पानी गंडक नदी के जरिए भारत में आने की आशंका है। भारत में पानी वाल्मीकि नगर बैराज से दाखिल होगा। गंडक नदी इसके आगे पश्चिमी चंपारण, सारण, गोपालगंज, वैशाली से होकर गुजरकर आगे जाकर गंगा में मिलती है, इसीलिए उत्तर प्रदेश से बिहार तक अलर्ट जारी कर दिया गया। पश्चिमी चंपारण वाल्मीकि नगर गंडक नदी में पानी बढ़ने की उम्मीद, बाढ़ आने की आशंका को लेकर प्रशासन की तरफ से बाढ़ प्रभावित इलाकों से ऊंची जगह जाने की अपील लोगों से की जा रही है।
5: जिस तरह स्थिति भयावह हुई है उसको लेकर पश्चिम चंपारण में जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया है और गंडक नदी में उच्च स्तरीय उल्लेखनीय बढ़ोतरी को पानी को देखते हुए जिला प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। इस वक्त हमारी मौजूदगी पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर गंडक बैराज पर है और यह गंडक बैराज का नज़ारा है। जिस तरह से जो नेपाल के त्रिवेणी क्षेत्र से आ रही नदियों का जलस्तर है वो किस तरह से उनमें फ्लो है।
1: वाल्मीकि नगर गंडक बैराज से एहतियातन 86,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया है। गंडक बैराज के सभी 36 गेट खोल दिए गए। तकनीकी टीम ने गंडक बैराज में मोर्चा संभाल लिया है। नेपाल में तिब्बत सीमा से सटे इलाकों में आई भीषण बाढ़ के बाद मुजफ्फरपुर में फ्लैश फ्लड की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया। गंडक नदी के किनारे बसे साहिबगंज, सरैया और पारू प्रखंड के संभावित प्रभावित इलाकों में विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए। बिहार की तरह उत्तर प्रदेश में भी प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि नेपाल में तबाही मचाकर पानी यूपी की तरफ बढ़ रहा है। महाराजगंज और कुशीनगर में गंडक नदी से तबाही की आशंका है, डर बना हुआ है। इसको देखते हुए सिंचाई विभाग ने बचाव के काम को तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को महाराजगंज और कुशीनगर में गंडक नारायणी नदियों में बाढ़ की आशंका को देखते हुए सतर्कता बरतने और जरूरी तैयारियां करने के आदेश दिए। गंडक नदी में आने वाले इस पानी से उत्तर प्रदेश के तकरीबन 40 किलोमीटर के हिस्से में तबाही की चुनौती को देखते हुए सिंचाई विभाग ने बचाव की तैयारी तेज कर दी है।
6: ये भट्टी कोशी त्रिशूली नदी तंत्र है, जो कि नारायणी नदी हमारी जो गंडक है उसकी एक सहायक नदी है। तो ऐसे में नारायणी और कोसी नदी में भारी पानी आने की संभावना है। तो ऐसे में हमारा देवघाट जो डाउनस्ट्रीम पे और जो हमारा वाल्मीकि बैराज है उसके नदी के जल स्तर को हम लगातार देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। अभी वर्तमान में खतरे के निशान से नीचे चल रहा है, परंतु किसी भी अप्रिय स्थिति या फिर अगर जल स्तर बढ़ता है तो ऐसे में राहत के सभी कार्य द्रुत गति से हो सके तो इसके लिए पूरी प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। SDRF और PAC की टीम भी वहां पे भेज दी गई है और डुग्गी मुनादी करा के सभी ग्रामीणों को बता दिया गया है।
1: नेपाल की भोटेकोशी नदी चीन से नेपाल में बहती है, जो अक्सर गहरी घाटियों से होकर गुजरती है, जो भारत में गंडक बनकर आगे गंगा में मिल जाती है। इस तरह नेपाल में आई तबाही ने भारत को खबरदार किया है।
0: अगले 24 घंटों में भारतीय सेना और वायुसेना नेपाल में पूरी शक्ति के साथ राहत और बचाव अभियान चला देंगी। शुरुआत में हिंडन एयरबेस पर 2 विमान तैयार कर दिए गए हैं। वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर और C-130-130 जे सुपर हर्क्यूलस विमान तैयार हैं। ये दोनों शक्तिशाली विमान नेपाल में राहत और बचाव का काम चलाएंगे और उत्तर प्रदेश के हिंडन एयरबेस से उड़ान भरेंगे। ये दोनों विमान तैयार हैं। अगले 24 घंटों में भारत की तरफ से नेपाल में यह अभियान चलाया जाएगा। मंजीत नेगी हमारी संवाददाता जुड़ चुके हैं। मंजीत, किस तरह से भारत सरकार नेपाल में राहत और बचाव के लिए अब तैयार है और ये हमारा अभियान कब से कैसे शुरू होगा?
7: सही, भारत ने अपनी तैयारी पूरी रखी हुई है और किसी वक्त नेपाल सरकार के साथ सहमति होते ही भारत के जो 2 बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, भारतीय वायुसेना के C-130J सुपर हरक्लिस और C-17 ग्लो मास्टर, जो बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, उससे पहले भी इस तरह के जो प्राकृतिक आपदा के दौरान राहत और बचाव के काम हैं उसके लिए बहुत मुफीद बड़े ट्रांसपोर्ट हैं। और उसके साथ ही अगर तैयारी की बात करें, NDRF की टीम के अलावा मेडिकल, बड़े इक्विपमेंट, और क्योंकि एक बड़ी त्रासदी है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री से बात की है, तो जैसे ही नेपाल के साथ सरकार के साथ बातचीत को लेकर सहमति होगी और दोनों ही बड़े विमान, और उसके अलावा न सिर्फ भारतीय वायुसेना के विमान बल्कि भारतीय वायुसेना की जो खासतौर से इस तरह राहत और बचाव के काम में जो टुकड़ियां हैं वो भी नेपाल के इस राहत और बचाव के काम में आगे बढ़ेंगी। खासतौर से जो हेलीकॉप्टर है भारतीय वायुसेना के उनके भी मदद ली जाएगी। जी,
0: बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मंजीत। मंजीत नेगी हमारे संवाददाता। नेपाल में बाढ़ कैसे आई इसकी जो अभी तक जानकारी मिल रही है उसके अनुसार ये माना जा रहा है कि तिब्बत की लहंदे नदी में बर्फ और पत्थरों का बड़ा सा हिस्सा गिरा, जिससे नदी का रास्ता रुक गया और पानी जमा होने लगा। नदी का रास्ता रुकने से एक बड़ी सी झील बन गई और इस कृत्रिम झील में पानी बढ़ने से ग्लेशियर का जमा हुआ मलबा हट गया और अंत में झील टूटी और झील टूटने से नेपाल में अचानक से भयानक ये बाढ़ आ गई। ये देखिए सैटेलाइट तस्वीर से आप समझने का प्रयास कीजिए कि जो बात हम आपको बता रहे हैं वो किस तरह से हुआ। ये इस तरह से यहां पर पानी जमा हुआ और कृत्रिम झील बनी, पानी बढ़ा, ग्लेशियर का मलबा यहां पर हटा और उसके बाद इतना वेग, इतनी तेजी के साथ ये बाढ़ आई कि नेपाल में इसने तबाही मचा दी है और ये किसी जल प्रलय से कम नहीं है। भयंकर तबाही मची है नेपाल में। नेपाल में तबाही के बीच जब हमारे देश भारत में बिहार और उत्तर प्रदेश तक अलर्ट हैं, तो बिहार से आज एक बड़ा हादसा होते होते बचा है। नवगछिया के राघोपुर में टूटे हुए तटबंध पर चल रहे फ्लड फाइटिंग के काम के दौरान बुधवार को बड़ा हादसा हो गया। गंगा की तेज धारा में मजदूरों से भरी नाव अचानक से पलट गई। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। नाव पर मजदूरों और मांझियों समेत करीब 20 लोग सवार थे। हादसे के बाद 18 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ये जो लोग तैरते हुए अपनी जान बचाते हुए नजर आ रहे हैं, 2 लोग लापता हैं। गंगा की तेज धारा में नाव अचानक अनियंत्रित हो गई, पलट गई। नाव में सवार मजदूरों ने पानी में छलांग लगा दी, अपनी जान बचाने की कोशिश की। कुछ मजदूर खुद तैरकर बाहर निकले, जबकि मौके पर पहुंची SDRF की टीम ने तेज बहाव के बीच रेस्क्यू कर 18 मजदूरों को सुरक्षित बचा लिया, लेकिन 2 मजदूर अभी भी लापता है। हम बात कर रहे थे नेपाल की। नेपाल में तो तबाही के पीछे भूकंप से लेकर हिमस्खलन तक की बात हो रही है, लेकिन अब आगे बढ़ें और हमारे देश की बात करें तो हरियाणा के गुरुग्राम में जो हर वर्ष बर्बादी आप और हम, हमारे देश की जनता देखती है, आज वो खबरदार करके आपसे पूछती है कि आखिर इसका अपराधी कौन है। जहां 12 वर्षों से बीजेपी की सरकार हरियाणा में है, जनता लगातार 3 बार बीजेपी को सत्ता सौंप चुकी है, जहां 9 वर्ष में 503 करोड़ रुपए ड्रेनेज पर खर्च हो चुके हैं, लेकिन सैकड़ों करोड़ रुपए लगाने के बाद भी हरियाणा के गुरुग्राम की सड़कें चंद घंटों की बारिश में सरेंडर कर देती हैं। सारी सड़कें तुरंत तालाब में बदल जाती हैं, धंसने लगती हैं और सोमवार को तो बच्चे बारिश के पानी के में फंस गए। स्कूल बस कई घंटों तक फंसी रही और बारिश के पानी ने इन बच्चों को बंधक बना लिया। बच्चे रोते रहे, बिलखते रहे, परिवार चिंतित रहे, माता पिता की जान अटकी रही। जहां करोड़ों रुपए का फ्लैट मिलता है जहां गुरुग्राम में, वहां हर बारिश में जनता सरकार से ये पूछती है कि हमें डूबना क्यों पड़ता है। सवाल आज तक ने आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से पूछा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चुप्पी साध ली। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री के सुरक्षा कर्मियों ने आज तक के माइक को हटा दिया।
8: मैं तो राजनीतिक व्यक्ति हूँ, मेरे पास तो रात को 2 बजे भी कोई आ जा तो 2 बजे भी उठकर बनने खड़ा होना पड़ेगा, उनकी बात सुननी पड़ेगी। मेरे पास तो कोई आ जाएगा तो मैं सुनूंगा उसकी बात।
9: रील कटवानी हो तो डायलॉग ठीक मारते हैं मुख्यमंत्री, लेकिन रियल में रियलिटी के सवाल क्या मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सुनते नहीं? सवाल पूरा भी नहीं हो पाया, मुख्यमंत्री ने मुस्कुराते हुए हाथ खड़े कर दिए। सुरक्षा कर्मी ने आज तक के माइक को हटा दिया। 2-2 सुरक्षा कर्मी आज तक संवाददाता असीम बस्सी को घूरने लगे। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री के पास जवाब नहीं है कि आखिर क्यों मिलेनियम सिटी गुरुग्राम 9 घंटे के भीतर 75 मिलीमीटर बारिश के आगे सोमवार को सरेंडर कर गई। 24 अगस्त गुरुग्राम का सुभाष चौक इलाका, गिनिए पानी में कितनी स्कूल बस फंसी। 1-2 ये तीसरी, ये चौथी, पांचवी, छठी। दावा है दर्जन भर से ज्यादा यहाँ पानी में सोमवार को फंस जाती। कैमरा वापस पहली बस की तरफ आता है, बस के भीतर एक बच्चा बैठा दिखता है। 24 अगस्त का ये वीडियो गुरुग्राम के बच्चे और हर माता पिता के जहन से मिटने वाला नहीं। उन्हें ये याद रहेगा कि देश की राजधानी से सटा मिलेनियम सिटी कहे जाने वाले शहर को गांव देहात से भी बदतर बारिश के मौसम में बना रखने का जिम्मा सरकार ने हरियाणा की ले रखा है, जहां विकास डूब जाता है, विश्वास फंस जाता है और सबके साथ केवल एक चीज बचती है, अमीरों की बस्ती का हाल बरसाती नाले से बदतर करके रखा है। लेकिन क्यों? इसी क्यों का जवाब तो आज तक मुख्यमंत्री से पूछना चाहता है, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं जवाब नहीं देते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ये चुप्पी इस बच्चे के आंसुओं का मजाक उड़ाती है। 24 अगस्त का वीडियो गुरुग्राम में बारिश के बाद जब स्कूली बसें और स्कूली वैन कुनीतियों के पानी में फंसकर डूबी दिखी तो इस बच्चे का एक एक आंसू चुभता सवाल बन जाता। 4 घंटे तक यही बच्चा रोता। वजह, जिस वैन से घर लौट रहे थे वो पानी में फंसकर खराब हुई। इलाके में पानी भरा था, परिजनों को आने में 3 से 4 घंटे लगे, बच्चे रोते रहे। बच्चों के ऐसे ही आंसुओं को लेकर रितेश जैसे पेरेंट्स जो गुरुग्राम में रहकर टैक्स ईमानदारी से भरते हैं और सोचते हैं कि सरकार इन्हें सुरक्षित विकास देगी, उन्हें झटका लगा।
10: अमूमन आधे घंटे में पहुंच जाती है ये स्कूल, यहाँ से 2-3 किलोमीटर ही दूर है, पर वो पहुँचने में टाइम लगता है, तो अराउंड 1:30 बजे तक घर पहुँचती है। पर कल का जो समय था वो घर पहुँची अराउंड 8 बजे रात को पहुँची है, तो जो कि अराउंड मैं बोल सकता हूँ 7 घंटे तक मेरी बच्ची बस में फंसी रही। एज अ पेरेंट्स मेरे लिए बहुत बड़ा ट्रामेटाइजिंग टाइम था, जहाँ पे मैं ऑफिस में, मेरी वाइफ घर पे, हमारे पास कोई ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं था। आप भी सोचो कि एक बस के अंदर एक बच्चा 7 साल का जो 7 घंटे तक अटका रहे, उसके लिए उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। तो ये एक बड़ा ही दयनीय स्थिति मैं बोल सकता हूँ कि 1 घंटे की बारिश हुई और पूरा का पूरा जो आपका जो सिटी है वो डूब गया।
9: ये उस हरियाणा का हाल है जहाँ लगातार 3 बार से बीजेपी की सरकार पहली बार बनवाकर जनता ने जिम्मा सौंपा, लेकिन उसके बदले 12 साल बाद भी हरियाणा का सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर गुरुग्राम हर साल बारिश में डूब जाता है। देश में टैक्स भरने वाले शहरों में टॉप 10 में शामिल गुरुग्राम सिवाय वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह देने के और कुछ भी नहीं कर पाता है। भले गुरुग्राम में देश का सबसे महंगा 271 करोड़ का पेंट हाउस बिकता हो, लेकिन बुनियादी सुविधाओं के नाम पर यहाँ पर जनता को नील बटे सन्नाटा मिलता है।
0: यह हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को 7 घंटे बस में पानी के बीच फंसे बच्चे के आंसू और उसके माता पिता का दर्द दिखाई नहीं देता। असीम बस्सी के सवाल को उन्होंने अनसुना किया, माइक हटा दिया गया। आप गूगल कीजिए, पूछिए गूगल से कि हमारे देश में सबसे धनी शहर कौन से हैं। दूसरे नंबर पर गुरुग्राम का नाम आपको मिल जाएगा, लेकिन गुरुग्राम शहर बारिश में सुरक्षित सड़क नहीं दे पाता, बच्चे समय से स्कूल से घर लौटकर नहीं आ पाते, लोगों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह सरकार दे देती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी निवेश सम्मेलन में जाते हैं, लेकिन उसके बदले कंपनियों को, आम लोगों को क्या मिलता है? क्या इसके बारे में सोचा जा रहा है? हमने गुरुग्राम में कई जवाबदेह लोगों तक, नेताओं तक, मुख्यमंत्री तक, मंत्रियों तक इस सवाल को पहुंचाया है, उनसे पूछा है, सब चुप है।
8: मेरे पास कोई लिफ्ट नहीं थी कि मैं नीचे से बैठा और ऊपर चला गया, मेरे पास सीढ़ी थी, मैं उस सीढ़ी से चढ़ा हूँ, उस सीढ़ी से मैं धीरे धीरे करके आगे बढ़ा हूँ। कंप्यूटर उस टाइम आया था, मुझे बराबर ध्यान में है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे संगठन मंत्री थे हरियाणा, वो देखते थे, सबसे पहले वो कंप्यूटर लेकर के हमारा ऑफिस में पंचकुला भेजा था उन्हें। पहली बार मैंने उसको ऑपरेट किया। एक समय ऐसा आ गया था कि मैं स्क्रीन के ऊपर भी नहीं देखता था, दिमाग के अंदर अगर कोई विषय आ रहा है तो उंगली उसको ऑपरेट कर रही है, स्क्रीन पे देखने की जरूरत नहीं थी। नई चीज को हमने अडॉप्ट करना चाहिए, उसको सीखना चाहिए, उससे दूर नहीं जाना चाहिए। आज आप देख भी रहे हैं कि AI का जमाना है और एडवांस हो गया, कहां कंप्यूटर था, कंप्यूटर के बाद आज AI आ गया। और
9: जमाना तो सच में मुख्यमंत्री जी AI का आ गया, लेकिन हाय रे गुरुग्राम, AI के जमाने में भी न जाने पाताल लोक के दर्शन कराने में जनता को फंसा हुआ। सोमवार को गुरुग्राम डूबा, मंगलवार को गुरुग्राम को गड्ढा दर्शन मिला, जब इसको चौक के पास सड़क ही धस गई, जिसे दिन भर हरे रंग की शीट से ढका जाता रहा, गड्ढा भी कहता रहा, हम पे ये किसने हरा रंग डाला।
11: इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली NCR के गुरुग्राम के उस इलाके के पास मौजूद है जो सबसे ज्यादा ट्रैफिक प्रभावित क्षेत्र रहता है, यानी कि इफको चौक। और इफ्को चौक के ठीक साथ में जो सर्विस रोड है जो सीधा मेन हाईवे को कनेक्ट करती है, वहां पर आप देख सकते हैं कि दो दिन की बारिश के बाद लगभग 8 से 10 फुट गहरा यहाँ पर गड्ढा हो चुका है। एक बहुत बड़ा सा गड्ढा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ये मेन सर्विस रोड है और आप देखिए कि ये सर्विस रोड से होता हुआ रास्ता हाईवे की तरफ जाता है, जो रास्ता है जयपुर की तरफ बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ दो दिन बारिश हुई और बारिश के बाद बहुत गहरा गड्ढा, बहुत चौड़ा गड्ढा यहाँ पर हो चुका है और इस गड्ढे की वजह से यातायात काफी प्रभावित हो रहा है।
9: गुरुग्राम में करोड़ों के फ्लैट और शॉप्स लेकर रहने और कमाने खाने वाले लोग खबरदार करके पूछते हैं सरकार से, क्या इसीलिए इतना टैक्स भरते हैं जहां बारिश में फंसना भी पड़े और गड्ढे के आगे जूझना भी पड़े।
12: हम लोग रोड टैक्स भरते हैं, व्हीकल जब गाड़ी खरीदते हैं उसका टैक्स भरते हैं, टोल टैक्स पे करते हैं, हर तरह के हर दूसरे तीसरे टैक्स भरते हैं, पर उस टैक्सेस के अगेंस्ट गवर्नमेंट ने हमारे लिए क्या फैसिलिटी करी है? आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ने हमसे हमारे लिए ये फैसिलिटी करी है कि अगर एक दिन कंटिन्यू बारिश आ जाए तो आप ये इस तरह के गड्ढे आपको गुड़गांव में मिलेंगे। अंडरपास आप क्रॉस नहीं कर सकते, आप गोल्फ क्रॉस रोड पर जाइए, वहाँ आप देख लीजिए, आप पीछे सेक्टर 29 में जाइए, कहीं पर भी कोई सीवरेज सिस्टम नहीं है। अगर पानी इकट्ठा हो गया, 2 घंटे बारिश हो गई, तो आपके लिए बहुत मुश्किल है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना।
9: जनता गुरुग्राम की परेशान और जिम्मेदारों की जरा चार तस्वीर देखिए। मुख्यमंत्री आज तक के सवाल पर चुप्पी साधते, सुरक्षा कर्मी माइक हटाते, गुरुग्राम के 17 साल से सांसद राव इंद्रजीत सिंह कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ देते हैं। गुरुग्राम के निगम आयुक्त प्रदीप दाहिया IIT गांधीनगर की टीम से अगले साल कैसे बारिश में गुरुग्राम की जनता को बचाना है इसकी बैठक वाली फोटोबाजी करते। हरियाणा की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी कहती हैं, अभी तो टाइम लगेगा, ये हाल तब है जब हरियाणा में BJP की सरकार 2014 से लगातार है।
13: आज के दिन
9: सबसे पहले आप गुरुग्राम से BJP के अभी मौजूदा सांसद राव इंद्रजीत सिंह को सुनिए, जो 2009 में यहां पर कांग्रेस से सांसद बने, 2014 से 3 बार BJP के सांसद बनते आ रहे हैं।
13: गुड़गांव की ये पेरिनियल समस्या बन गई है, साल दर साल वहाँ पे पानी भरता है। आज उसी विषय के अंदर मैं मुख्यमंत्री जी से मिलने आया था, जो वहाँ पे अधिकारी हैं उनकी जवाब तलबी करी जाएगी और कंक्रीट फैसले जब तक निर्णय जब तक इस तरह के ना लिए जाएं, पीस मील फैसले ना किए जाएं, कंक्रीट फैसले जब तक ना किए जाएं, जब तक गुड़गांव की ये समस्या हल नहीं हो पाएगी। हमारे गुड़गांव के अंदर पिछले 20 साल से पानी की ये समस्या बढ़ती आई है। क्यों बढ़ती आई है कि जो नाले नदिये पहाड़ से आकर के और ड्रेन नंबर 8 के अंदर पानी को ले जाया करते थे, उनके ऊपर कॉलोनीज काट दी गई, उनके ऊपर सड़क बन गई है, बिल्डर्स ने इलीगल तौर के ऊपर कई जगहों पर कब्जे कर लिए हैं। इन चीजों को आज के दिन प्रजातंत्र में हम उनको हटा नहीं सकते, तो मैंने ये सुझाव दिया है आज मुख्यमंत्री जी का कि इतना तो पैसा आप तजवीज कर दो कि एक जगह जहां पर रोक हो रही है पेरिनियल नालों की, उसके नीचे से जैसे कि हम मेट्रो ले जाते हैं, इस तरह से वहां पर नाला बना करके और पुराने रास्तों को दोबारा से चालू कर दिया जाए। यही एक तरीका है जिससे हमारे को गुड़गांव के अंदर पानी से निजात मिलेगी।
9: ऐसे तो सांसद है जो खुद कांग्रेस से सांसद रहे, अपना तो पार्टी बदल ली, लेकिन जनता की किस्मत गुरुग्राम में बदली नहीं, उसे जाम भी मिलता है, डूब कर भी जाना है। और अब मुख्यमंत्री से मीटिंग खेलकर सांसद कहते हैं नीचे से टनल बनाकर IIT से बात करके सारा पानी निकलवा देंगे, समाधान निकल जाएगा।
13: पानी तो ऐसा है ना, एक जगह से आप रोकेंगे तो दूसरी साइड से निकल जाएगा। ये समस्या पीसमील करने की है, जहां पर हमने एक जगह प्लास्टर लगा दिया दूसरी जगह से पानी निकल जाता है, तो ये आगे नहीं हो पाएगा। हमारे को तो एक कंक्रीट टेक्निकल तौर के ऊपर IIT के लोगों से पूछताछ करके एक बनाना पड़ेगा रोड मैप।
9: ये रोड मैप ही बनाते रहेंगे, यहाँ गुरुग्राम के राजीव चौक के सबवे में हर बार पानी भर जाता है।
14: मैं इस वक्त गुरुग्राम के राजीव चौक इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ के सबवे में 10 से 12 फीट 15 फीट तक पानी जमा है। पहले आप तस्वीरें देखिए, ये जो तस्वीरें हैं ये काफी हैरान और परेशान कर देने वाली हैं। ये वही सबवे है जहां पे 4 साल पहले एक ऑटो ड्राइवर की डूबने से मौत हुई थी, लेकिन इसके बाद भी जिला प्रशासन ने उस हादसे से कोई सबक नहीं लिया। अगर आप इस सब्वे का इस्तेमाल करते हैं, यानी सुरक्षित तरीके से इस पार से उस पार नेशनल हाईवे को क्रॉस करके उस पार जाना चाहते हैं, तो इसका निर्माण किया गया था सब्वे का 2016 के बाद। अनाज मंडी जाना है आपको तो इस सब्वे का इस्तेमाल कीजिए, नाहरपुर रूपा की तरफ जाना है तो इस सब्वे का इस्तेमाल कीजिए, बीएसएल कॉम्प्लेक्स में जाना है तो इस सब्वे का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन जनाब इस्तेमाल कैसे करें जब इस सब्वे में 12 से 15 फीट तक पानी जमा है।
9: जो गुरुग्राम धनी होने के पैमाने पर देश में दूसरे नंबर पर है, वहाँ के म्यूनिसिपल कमिश्नर 24 अगस्त को बारिश में भीगते हुए वीडियो बनवाते दिखते हैं, दिखाते हैं कि उन्हें कितनी चिंता जनता की। लेकिन इस चिंता का जनता क्या करेगी जबकि गुरुग्राम इस बारिश में भी डूबा रहा। ऐसे ही अफसरों की वजह से जनता परेशान है और कांग्रेस बीजेपी पर सवाल उठाती है।
15: इन्होंने गुड़गांव का नाम गुरुग्राम बदला, नया कुछ बदलेगा? और बदला, केवल नाम ही नहीं बदला, बहुत कुछ बदला। गुरुग्राम गुड़गांव से गुरुग्राम बन गया, गुरुग्राम से गुरुजाम बन गया, गुरुग्राम से जलग्राम बन गया, गुरुग्राम से गड्ढा ग्राम बन गया। जो यूपीए के समय, हमारी सरकार के समय मिलेनियम सिटी के रूप में जिसकी पहचान थी, आज वो मिलेनियम पिटी बन गया, मिलेनियम पिटी। और सिटी रहा तो सिंक सिटी बन गया।
0: गुरुग्राम का ड्रेनेज सिस्टम जिस पर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च हो जाता है, उसका हाल भी हमारे आज तक के संवाददाता पीयूष मिश्रा ने आज खंगाला। आप भी देखिए, आप समझ जाएंगे कि गुरुग्राम शहर डूब क्यों जाता है।
11: हर बार जब बारिश होती है तो गुरुग्राम से एक ही तस्वीर सामने आती है, और वो तस्वीर होती है गुरुग्राम के हर इलाके में पानी भरे होने की। लेकिन ये पानी क्यों भरता है, क्यों अथॉरिटीज अपना काम नहीं करती, उसका सच दिखाने के लिए आज तक आज आ पहुंचा है उस बादशाहपुर के नाले के पास, जो एक तरफ तो आपको चलता हुआ नजर आएगा लेकिन इसका जो पीछे का इलाका है वो पूरी तरह से जाम है। जिस वक्त मेरी मौजूदगी है, ये वो जगह है जहां पर नाला फंक्शनिंग है, यानी कि उसमें पानी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उसी नाले के चारों तरफ आप पीछे पानी भी देख सकते हैं, ये वही बारिश का पानी है। जब बारिश हो जाती है तो इस तरह का पानी इसके चारों तरफ भर जाता है, लेकिन इस पानी का बादशाहपुर नाले तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं होने की वजह से ये पानी सड़कों तक पहुंच जाता है और हर जगह आपको सड़कों पर पानी नजर आता है। इस वक्त जहां मेरी मौजूदगी है, ये वो जगह है जहां पर बादशाहपुर नाले का पानी आकर पूरी तरह से थम जाता है, यानी कि 18 किलोमीटर लंबा बादशाहपुर का नाला यहीं आकर रुक जाता है, और इसी 18 किलोमीटर के कई इलाकों में ये नाला पूरी तरह से जाम भी आपको नजर आएगा और पानी आगे नहीं बढ़ता, जिस वजह से जब भी बारिश होती है तो गुरुग्राम के हर इलाके में पानी भर जाता है। मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये बादशाहपुर नाले का वो हिस्सा है जो पूरी तरह से जाम है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मिट्टी है, गंदगी है। ये बादशाहपुर नाले का वो स्पॉट है जहां पर पानी आकर पूरी तरह से थम जाता है। ये वो जगह है जहां पर अधिकारी शायद आज तक कभी नहीं आए, और पता होने के बावजूद यहां पर कोई नहीं पहुंचा। जब आज तक यहां तक पहुंच गया है तो अधिकारी क्यों नहीं आए, ये जरूर बहुत बड़ा सवाल है। मैं आपको तस्वीरें इसलिए दिखा रहा हूं यहां की, क्योंकि ये वो जगह है जहां पर आकर नाले का पानी पूरी तरह से रुक जाता है। देखिए, चारों तरफ गंदगी ही गंदगी, ये पूरी तरह से एक ओपन ड्रेन है, चारों तरफ पेड़ पौधे, गंदगी से ये पूरा इलाका भर चुका है, पूरा जाम ये नाला है। ये 28 किलोमीटर बादशाहपुर नाले का सबसे बड़े इलाके का, सबसे बड़े नाले का सबसे महत्वपूर्ण स्पॉट है जहां पर पानी आकर रुक।
0: हमारे देश के संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू से इंडिया टुडे ने विशेष बातचीत की है, जहां केंद्रीय मंत्री ने बताया कि अब भी महिला आरक्षण के लिए सत्र बुलाया जा सकता है। ये पूरा इंटरव्यू आप इंडिया टुडे न्यूज चैनल पर कल सुबह 9 बजे देख सकते हैं।
16: Whenever parliament is to be called, it is the government which decides and requests the Rashtrapati to call the session. And when the house is not prorogued, then the session can be called.
17: Can there be another session?
16: It is nothing new which we are doing.
17: Can there be a special session?
16: No, that I will not answer. But what I am answering you is...
17: You won't answer that.
16: No, what I am answering you is, since 1952, after this interview, I will give you the list.
17: Right.
16: After 1952, there were numerous occasions where parliament session was adjourned sine die, but not prorogued. And the session was summoned again.
17: Is delimitation still on agenda?
16: Already, Prime Minister has made a very clear-cut commitment to the women of this nation that women reservation and the commitment given by the parliament to the women of this country will be fulfilled. That is a commitment given by the Prime Minister. Mahilaon ko apna adhikar hum deke chhodenge. Ye Pradhan Mantri ka vaada hai. So based on that, we are working.
0: और अब आइए हम आपको तिरुपति में एक गैस गोदाम की चार मंजिला इमारत ढहने का वीडियो दिखाते हैं। शुरुआती जानकारी के अनुसार पास में एक नई इमारत बनाने के लिए खुदाई का काम चल रहा था, तभी यह इमारत ढह गई। इमारत ढहने के बाद बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचा, तलाशी अभियान शुरू हुआ क्योंकि आशंका थी कि मलबे के नीचे लोग दबे हो सकते हैं। बचावकर्मी अभी मलबा हटा रहे हैं, जीवित बचे लोगों की तलाश की जा रही है और ये काफ़ी भयानक हादसा है। देखिए दूर आपको वहाँ एक बिल्डिंग नज़र आ रही है और वो बिल्डिंग गिर रही है। अगर आप ध्यान से देखें पीछे, क्योंकि ये सीसीटीवी फुटेज लिया गया है, एक व्यक्ति, ये पूरी की पूरी लाल कलर की बिल्डिंग धड़ाम हो जाती है सामने, ये इमारत ढह जाती है। इमारत बनाने के लिए खुदाई का काम पास में चल रहा था, जानकारी यही मिली है, और ये पूरी की पूरी इमारत ढह गई है। न सिर्फ ये इमारत बल्कि वहाँ काम कर रहे मजदूर भी मलबे में दबे हैं, राहत और बचाव का काम चल रहा है। खबरदार में आज के लिए बस इतना है, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज का।
18: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
19: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
20: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: हीरे के लिए मुझे भरोसा है सिर्फ सेनको गोल्डन डायमंड्स पर, क्योंकि सिर्फ सेनको देता है सर्टिफाइड डायमंड्स, बायबैक फैसिलिटी और 100% एक्सचेंज वैल्यू, साथ में लाइफटाइम मेंटेनेंस, फ्री इंश्योरेंस। तो आप डायमंड्स खरीदने से पहले सेनको में जरूर आना।
2: ओह नो, बहुत बोर लग रहा है।
3: Take a date, not bites.
4: No added sugar, preservative के बिना। Dates, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया। Lion dates, not bites.
3: Lion date, not bites.
5: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
6: पापा।
7: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
6: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
7: छक्का?
6: सब कैशलेस हो गया है।
7: हाँ, ओले ला भाई मेरा बैट।
6: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
8: बिल्कुल चार्ज हुआ यार।
9: बैट किसका है?
10: टाटा AIG है तो भरोसा है।
11: यानी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
12: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
13: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
14: Hee hee hee.

आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: 17 अगस्त को नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान होता है। बीजेपी की राष्ट्रीय टीम में पार्टी की मुखर महिला नेता स्मृति ईरानी को यूपी कोटे से जगह मिलती है। यूपी से 8 सदस्य बनाए जाते हैं, 8 में से 3 महिला सदस्य होती हैं। और उसके 7 दिन यानी एक हफ्ते बाद ही योगी कैबिनेट का महिलाओं को लेकर बड़ा फैसला आता है। योगी सरकार लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना का ऐलान करती है। यूपी में 60 साल और उससे अधिक उम्र की महिलाओं को आजीवन मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देते हैं। रक्षाबंधन से ठीक पहले योगी सरकार का ये ऐलान सामने आता है। ये योजना सियासी नजरिए से क्यों अहम और असरदार साबित हो सकती है, इसकी वजह भी जान लीजिए। अनुमान है कि इस योजना से रोजाना 88,000 महिलाओं को फायदा मिलेगा। यूपी रोडवेज की बसों में आधार कार्ड या वोटर आईडी दिखाकर इस योजना का लाभ लिया जा सकेगा। इस योजना पर करीब 22.5 करोड़ प्रतिमाह और 270 करोड़ रुपए सालाना खर्च आएगा।
1: आप देखिए, ये सारी जो बसें हैं, इन्हीं बसों से मातृशक्ति योजना के तहत उनको फ्री एक तरीके से अब आजीवन ये सेवा दी जाएगी। और ये मास्टर स्ट्रोक योगी आदित्यनाथ का माना जा रहा है। ये महिलाएं देखिए जो 60 साल से ऊपर की हैं, वो सभी इससे निशुल्क यात्रा कर पाएंगी। पूरे प्रदेश में जहां भी उनको जाना है वो इस बस के जरिए जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कल कैबिनेट में इसको पास करने के बाद आज इसका इनॉग्रेशन है। आप देखिए, कई महिलाएं अपने अपने गंतव्य स्थान पर जाने के लिए तैयार हैं।
0: तो योगी सरकार की ये योजनाएं ऐसे वक्त में आई जब सामने यूपी विधानसभा का चुनाव है। जाहिर है, बीजेपी की कोशिश ज्यादा से ज्यादा महिला वोट हासिल करने की है। और मातृशक्ति विकास योजना के ऐलान के बाद समाजवादी पार्टी में भी खलबली है। खबर है कि समाजवादी पार्टी महिलाओं से जुड़ी किसी बड़ी योजना का ऐलान कर सकते हैं। 12:30 बजे समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव इस योजना का ऐलान कर सकती है, यानी महिला वोटरों का समर्थन हासिल करने की दोनों ओर से जीतोड़ प्रयास हो रहे हैं। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब से कुछ ही क्षणों में ब्लैक एंड व्हाइट लेकर हमारी साथी अंजना होंगी आपके साथ। आप देखते रहिए आज तक।
0: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय वेक्टर्स भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले वाटर टैंक्स प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन आज की खबरों की शुरुआत एक ऐसी खबर से जिससे पूरा विश्व हिला हुआ है। जल प्रलय की ये तस्वीरें, प्रलयंकारी तस्वीरें, क्योंकि आज सबसे पहले हम आपको नेपाल में प्रलयंकारी रूप दिखाएंगे पानी के इस भयानक प्रवाह से जो तबाही हुई है। और जिस तरह से घर हो, इमारतें हो, पुल हो, सड़कें हो, गांव के गांव सैलाब में बह गए, सब कुछ जैसे निगल गया है ये जल सैलाब। बहुत डराने वाली तस्वीरें आ रही है। अचानक आया पानी करीब 500 लोगों को बहा ले गया है। इसमें 100 से ज्यादा भारत के लोग हैं। इस भयानक मंजर को देखने के बाद यकीन करना मुश्किल है कि नेपाल में मॉनसून काफी कमजोर रहा है। नेपाल सरकार खुद कह रही है कि जिस जिले में ये प्रलय है वहां मूसलाधार बारिश हो ही नहीं रही थी। देखिए, अब सवाल यह है कि आखिर नेपाल में हुई इस तबाही का तिब्बत और चाइना से क्या कनेक्शन है। नेपाल के फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन का अनुमान है कि तिब्बत के इलाकों में भारी बारिश या लैंडस्लाइड हुआ होगा और इसका मलबा नेपाल में तबाही बनकर टूट पड़ा। यह भी दावा किया जा रहा है कि नेपाल की यह त्रासदी सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा की कहानी नहीं है, बल्कि इसके पीछे तिब्बत में चाइना द्वारा बनाए जा रहे बांध और दूसरे ढांचे भी एक बड़ा कारण हो सकते हैं। इस बाढ़ का खतरा अब सीमित नहीं है। नेपाल के नुवाकोट, धादिंग, गोरखा, चितवन जैसे जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी काठमांडू को भी हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। इसी तरह का अलर्ट भारत के भी कई राज्यों में, खासतौर पर बिहार, उत्तर प्रदेश में कई जिलों में किया गया है। भारत के बिहार राज्य को भी लेकर जारी कर दिया गया है अलर्ट, क्योंकि नेपाल की नदियां आगे चलकर भारत में ही प्रवेश करती हैं। भोटे कोशी का पानी त्रिशूली के जरिए भारत की गंडक नदी में मिलता है और गंडक नदी बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली तमाम जिलों से गुजरती है। नेपाल के बाद आपको गुरुग्राम की वो तस्वीरें दिखाएंगे जिसे अब गड्ढा ग्राम कहना ज्यादा ठीक लगने लगा है। ऐसा गड्ढा ग्राम जिससे मुख्यमंत्री भी मुंह फेर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से जब गुरुग्राम में जलभराव की गंभीर स्थिति पर सवाल पूछा गया तो सवालों से बचते निकल गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के हिजाब पर आए फैसले पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तीखा एतराज जताया है। ओवैसी ने सवाल उठाया कि ये तय करने वाले आप कौन होते हैं कि क्या पहना जाए और क्या नहीं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि देश के मुसलमानों को अपनी खुद की लीडरशिप तैयार करनी होगी, तभी उनके अधिकारों की सही रक्षा हो सकेगी। इसके बाद आपको अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के चीफ जॉन रैटक्लिफ की अचानक हुई और अघोषित रशिया यात्रा के बारे में बताएंगे कि CIA चीफ रशिया क्यों पहुंच गए। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा और अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक CIA चीफ के इस सीक्रेट दौरे ने दुनिया में कूटनीतिक हलचल बढ़ा दी है। रशिया और अमेरिका के बीच गहरे तनाव और यूक्रेन संघर्ष के बीच इस हाई प्रोफाइल यात्रा को बहुत संवेदनशील माना जा रहा है। जॉन रैटक्लिफ का विमान मॉस्को में करीब 8.5 घंटे तक रुका रहा। इस दौरान अमेरिका ने यूक्रेन को सूचना दे दी थी ताकि वो किसी तरह के हमले ना करे। देश के रक्षा मंत्रालय ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, वो हम आपको बताएंगे। वो ऐतिहासिक फैसला लेते हुए अब DRDO की मिसाइल निर्माण तकनीक को भारतीय प्राइवेट कंपनीज के साथ साझा करने की अनुमति दे दी है। इस बड़े कदम का मकसद भविष्य की किसी भी लंबी जंग के दौरान सेना को हथियारों की कमी से बचाना और देश को रक्षा क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाना है। अब चुनिंदा निजी कंपनीज भारत में ही प्रलय, आकाश NG और अस्त्र जैसी घातक पारंपरिक मिसाइलों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करेंगे। और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र की खबर बताएंगे, जहां पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने गांजा तस्करी के एक बहुत शातिर तरीके का पर्दाफाश किया है। अपराधियों ने कानून की आंखों में धूल झोंकने के लिए एम्बुलेंस को ही नशे की तस्करी का जरिया बना लिया था। एम्बुलेंस ऑपरेशन शुद्धि के तहत
जब पुलिस ने एक संदिग्ध एम्बुलेंस की तलाशी ली तो उसके फर्श के नीचे बने गुप्त तहखाने से 81 किलो अवैध गांजा बरामद हुआ है। देखिए

लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर जिसके साथ हम शुरुआत कर रहे हैं वो नेपाल से है। नेपाल में कुदरत का जो क्रोध दिखा है इस भयानक प्रलय से, जो तबाही हुई है, जिस तरह घर, इमारतें, पुल, सड़कें, गांव के गांव सैलाब हो गए, सचमुच डराने वाली तस्वीरें आ रही हैं। एक मिनट को कई बार लगता है कि क्या हम लोग इतने अभ्यस्त हो गए हैं इस तरह की तबाही की तस्वीरें देखते हुए, त्रासदी की तस्वीरें देखते हुए, कि हमको असर नहीं होता। लेकिन जब आप उन चीखों को सुनेंगे, जब आप देखेंगे कैसे लोग खड़े हुए थे, भागने की कोशिश कर रहे थे, वो आगे आगे भाग रहे हैं, पीछे पीछे पानी उनका पीछा कर रहा है, जैसे जल प्रलय आज सब कुछ निगलने को बेताब हो, तो इंसान कांप उठता है कि आज हमने प्रकृति को कहाँ पहुंचा दिया है, प्रकृति के साथ ये हाल किया है कि अब ये त्रासदी खुद हमारे साथ हो रही है। हम आपको बताना चाहते हैं कि नेपाल की ये त्रासदी सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा की कहानी नहीं है, बल्कि इसके पीछे तिब्बत में चाइना द्वारा बनाए जा रहे बांध और दूसरे ढांचे भी एक बड़ा कारण हो सकते हैं। और आज हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं कि आखिर चाइना ऐसा क्या कर रहा है जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि ऐसी नौबत पैदा हुई। लेकिन उससे पहले आप नेपाल से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां शायद पिछले एक दशक की यह सबसे बड़ी आपदा आई है। जो लोग दूर से वीडियो बना रहे थे वो जोर जोर से चीख चीख कर कह रहे थे लोगों को कि भाई देखो ऊपर से पानी का सैलाब आ रहा है, लेकिन लोग भागते इससे पहले ये सब कुछ उन्हें निकल गया। अब इन भयंकर जो भयानक मंजर है उसको देखने के बाद क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि इस बार नेपाल में मानसून बहुत कमजोर रहा है। नेपाल में पिछले 60 दिनों में सामान्य से 10% कम बारिश हुई है। यही नहीं, नेपाल के जिस रासुवा जिले में तबाही हुई वहां भी सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। नेपाल की सरकार खुद कह रही है कि जिस जिले में ये प्रलय आई वहां मूसलाधार बारिश हो ही नहीं रही थी, और यही बात अभी कई लोगों को हैरान कर रही है। वो ये जानना चाहते हैं कि जब इतनी ज्यादा बारिश नहीं हो रही थी तो नेपाल की नदियों में इतना भयानक सैलाब कैसे आया। देखिए,

0: अब ये सब कैसे हुआ है आइए वो समझिए। इसकी शुरुआत आज सुबह 9 बजे हुई, नेपाल की भोटे कोशी नदी से हुई और ये वही नदी है जो चाइना के और तिब्बत से नेपाल में बहती है। जब इस नदी में पानी का स्तर अप्रत्याशित रूप से बढ़ा और जल प्रलय जैसी स्थिति बनी तो इसमें सब कुछ तबाह हो गया। अब लोगों का कहना है कि जब पानी और उसके साथ पहाड़ों का मलबा इतनी ऊंचाई से नीचे की तरफ आ रहा था तब एक बहुत बड़े धमाके जैसी आवाज सुनाई दी। ऐसा धमाका जो अक्सर ज्वालामुखी के फटने पर होता है, कल्पना कीजिए पानी का ऐसा बहाव जो कि हिंदुकुश की पहाड़ियों से नीचे आ रहा है और साथ में मलबा इतना तेज था कि इसमें हजारों घर, इस बहाव में हजारों इमारतें, गाड़ियां, पुल, सड़कें, बाजार, पुलिस चौकियां, इमिग्रेशन ऑफिस की बिल्डिंग, बिजली बनाने वाले 20 से ज्यादा हाइड्रो पावर प्लांट्स पूरी तरह नष्ट हो गए। शुरुआत में इस सैलाब की सबसे बड़ी मार रासुवा जिले के 2 इलाकों पर पड़ी। इनमें एक इलाके का नाम है टिमुरे, यानी या तिमुरे भी कहते हैं वहां पर, और दूसरे इलाके का नाम है स्याफ्रू बेसी। तो ये दो, तिमुरे और स्याफ्रू बेसी, याद रखिए। इनमें भी जो तिमुरे इलाका है वो बॉर्डर है, नेपाल तिब्बत की सीमा पर मौजूद है और यहां आज सुबह एक बहुत बड़ा बाजार लगाया गया था जहां एक बार में 500 लोग मौजूद रहते थे। लेकिन नेपाल सरकार का कहना है कि इस घटना में इस पूरे इलाके का नामो निशान मिट गया है। इस पूरे बाजार का, बाजार की दुकानें, बाजार के मौजूद लोग, नामो निशान मिट गया है। जो लोग सुबह दुकानें खोल चुके थे या बाजार में मौजूद थे या जो इमिग्रेशन ऑफिस आए थे वो इन विनाशकारी प्रलय में गायब हो गए। अब अगर आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो इसी इलाके में नेपाल और चाइना को जोड़ने वाला मैत्री पुल पूरी तरह पानी में बह गया। हालात ये बन गए कि नेपाल ने जो बॉर्डर चेक पोस्ट तिब्बत के पास लगाई थी या जो पुलिस चौकियां इसके पास पास थी उन्हें पलक झपकते ही सैलाब ने पूरी तरह से निगल लिया। देखिए
1: ये ताऊ

नेपाल सरकार के मुताबिक इस त्रासदी में अब तक 95 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 500 से ज्यादा लोग लापता है, जिनमें 484 पर्यटक हैं। इनमें 133 भारतीय हैं, 93 नेपाली हैं, 258 पर्यटक दूसरे देशों के हैं। और देखिए, एक बार ये पानी का सैलाब वहां से हटता है तो सिर्फ मलबा जम जाता है और पूरी तरह से गांव के गांव नीचे दब जाते हैं, दबकर सब कुछ जमीन हो जाता है। गुंजाइश ही नहीं बचती कि इसके नीचे से किसी चीज को निकाला जा सके। जहां जहां जिस जिस रास्ते में गया है, बर्बादी करते गया है। इसके अलावा 60 लोग ऐसे हैं जो नेपाल के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और प्लांट्स में काम करते थे, लेकिन ये लोग भी लापता हैं। बताया जा रहा है इनमें कई इंजीनियर्स भी वहां पर काम कर रहे थे, कई लोग टनल में काम कर रहे थे, कई लोग ऑन साइट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे थे, कई लोग वीडियो बनाते हुए चिल्लाते हैं कि ऊपर से पानी आ रहा है, बाढ़ आ रही है, भागो भागो। लेकिन इससे पहले भी कि वो कुछ समझ पाते, सब कुछ बर्बाद हो गया। नेपाल के जिस रासुवा जिले में ये प्रलय आई, वहां करीब 46,000 लोगों की आबादी रहती है, जो नेपाल की कुल आबादी का 0.15% है। बड़ी बात यह है कि सैलाब में बहे इन लोगों की 12 घंटे बाद भी कोई खबर नहीं है और नेपाल के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। नेपाल के मुताबिक जिन इलाकों में भोटे कोशी नदी बहती है, उन सभी इलाकों में पानी इतना ज्यादा है कि कोई भी हेलीकॉप्टर वहां उतर ही नहीं पा रहा। लापता हुए लोगों की कोई सूचना नहीं मिल पा रही। देखिए,

इस बाढ़ का खतरा अब सिर्फ नेपाल के रासुवा जिले तक सीमित नहीं रहा है। जिस भोटे कोशी नदी में यह बाढ़ आई वो नेपाल की त्रिशूली नदी में जाकर मिलती है, और यही कारण है कि अब त्रिशूली नदी का जल स्तर बढ़ने से बाकी के जो जिले हैं उनमें कई रिहायशी इलाकों को खाली कराया जा रहा है। इनमें भी नेपाल के नुवाकोट, धादिंग, गोरखा, चितवन जैसे जिलों के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया गया है, और कई एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि इससे भी ज्यादा प्रबल एक और फ्लड, जो फ्लैश फ्लड है, उसके आने की आशंका अभी भी बनी हुई है। जब आप ये खबर देख रहे हैं, रेड अलर्ट का मतलब यह होता है कि इन जिलों में नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ने से बाढ़ आ सकती है, हजारों लोग प्रभावित हो सकते हैं, यही रेड अलर्ट घोषित किया गया है। इसके अलावा नेपाल के रासुवा जिले से राजधानी काठमांडू की दूरी ज्यादा नहीं है, दोनों के बीच सिर्फ 120 किलोमीटर का सड़क मार्ग है, और यही वजह है कि काठमांडू को भी अब रेड अलर्ट पर रखा गया है। और काठमांडू से रासुवा हो, नुवाकोट, चितवन, धादिंग जिलों की तरफ जाने वाली जितनी सड़कें हैं, दूसरे रास्ते, उस सभी बंद कर दिए गए हैं। इस तरह का अलर्ट भारत के बिहार राज्य को लेकर भी जारी किया गया है, क्योंकि नेपाल की जो नदियां हैं, आप हर साल देश सुनते होंगे कोशी में बाढ़ आया, ये बताया जाता है कि नेपाल की नदियों से बढ़ते हुए आगे कैसे गंडक नदी तक पानी आता है। नेपाल की जो नदियां हैं वो आगे चलकर भारत में ही प्रवेश करती हैं। उदाहरण के लिए आज नेपाल की जिस भोटे कोशी नदी में प्रलय आई वो नेपाल से होकर त्रिशूली नदी में मिलती है, और आगे इसका पानी भारत की गंडक नदी में मिलता है, और गंडक नदी बिहार के 7 जिलों में बहती है। इनमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली जिला सभी शामिल हैं। अब बिहार सरकार ने गंडक और कोसी नदी से जुड़े जिलों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी स्थिति की निगरानी के लिए उच्च स्तरीय टीम बनाई है। आज गृहमंत्री अमित शाह ने भी सम्राट चौधरी से बातचीत की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालिन शाह से बात की। देखिए, अभी खतरा सिर्फ नेपाल तिब्बत सीमा तक सीमित नहीं माना जा रहा है, बल्कि नीचे की तरफ बहने वाले पानी पर भारत और खासकर बिहार भी नजर रखे हुए है। और ये क्यों जरूरी है, उसके लिए आप एक बार फिर से नेपाल में हुई इस तबाही की इन तस्वीरों को देखिए।

और ये जो आवाजें आप सुन रहे थे, दरअसल स्कूल बस थी, बच्चे उसमें मौजूद थे और वहां से ये बच्चे वीडियो बना रहे थे। मतलब कल्पना कीजिए कि इन बच्चों के लिए क्या दहशत, क्या खौफ उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। अब आपको ये बताते हैं कि जिन भारतीयों से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है, जो भारतीय लापता बताए जा रहे हैं, उनमें ज्यादातर जानते हैं कैलाश मानसरोवर जी की यात्रा पर थे। भारत का विदेश मंत्रालय कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए दो रूट को अपनी मंजूरी देता है। इनमें पहला रूट उत्तराखंड और लिपुलेख पास से होते हुए कैलाश मानसरोवर तक जाता है, जिसमें 22 दिन लगते हैं और इस रूट से यात्रा करने पर लगभग 2,00,000 रुपए से ज्यादा का खर्च आता है। एक दूसरा रूट है सिक्किम और नाथुला से होते हुए कैलाश मानसरोवर तक जाता है, जिसमें कुल 21 दिन लगते हैं और इस रूट से यात्रा करने का खर्च औसतन 3,31,000 रुपए आता है। अब सरकार के बनाए इन दोनों रूट्स को लेकर तीन समस्याएं आती हैं। पहला, सरकार इन दोनों रूट से अधिकतम 1,000 लोगों को ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर लेकर जाती है। दूसरा, इन रूट से कैलाश मानसरोवर की यात्रा को पूरा करने में वक्त भी ज्यादा लगता है। और तीसरा, सरकार के बनाए इन रूट से कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने में पैदल भी ज्यादा चलना पड़ता है, जिसके कारण बहुत सारे लोग एक प्राइवेट रूट को अपनाते हैं, वही रूट जिस पर आज ये प्रलय आई है। इस प्राइवेट रूट के पहले दिन भारत से लोग नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंचते हैं। एक दिन काठमांडू का स्टे होता है, दूसरे दिन वो काठमांडू में साइट सीइंग करते हैं, काठमांडू के आसपास घूमते हैं, उस दौरान परमिट लेते हैं, उनको पूरी यात्रा के बारे में बताया जाता है, उनकी मेडिकल जांच की जाती है। तीसरे दिन वो गाड़ी से नेपाल के रासुवा जिले में पहुंचते हैं, जहां आज ये प्रलय आई है। चौथे दिन वो इसी जिले के रसुवा गढ़ी इलाके में आते हैं और वहां से नेपाल तिब्बत का बॉर्डर है। बॉर्डर पार करने के बाद वो तिब्बत की जो जिरोंग पोस्ट है उस पर आते हैं और यहां एक दिन आराम करने के बाद छठे दिन वो जोंगबा पहुंचते हैं। अब जोंगबा वो जगह है जहां से अगला पड़ाव मानसरोवर झील का आता है और इस यात्रा के नौवे दिन कैलाश परिक्रमा का पहला मौका आता है। और बड़ी बात यह है कि इस रूट से सिर्फ 14 दिन में यह यात्रा काठमांडू आकर खत्म हो जाती है और इस पर 2-3 लाख रुपए खर्च होते हैं। बड़ी बात यह है कि सरकार के बनाए रूट से अधिकतम 1,000 लोग ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जा सकते हैं, लेकिन इस रूट से लगभग 20,000 से ज्यादा भारतीय हर साल इस यात्रा को पूरा करते हैं। उदाहरण के लिए इस साल मई महीने से अब तक 24,000 लोगों ने इसी प्राइवेट रूट से कैलाश मानसरोवर की यात्रा की और आज भी कई लोग इस यात्रा के लिए रसुवा गढ़ी से तिब्बत में प्रवेश करने वाले थे, लेकिन इसी के बाद उनसे संपर्क टूट गया और अब ये सभी भारतीय लापता बताए जा रहे हैं। जग्गी वासुदेव, जिन्हें सदगुरु भी कहा जाता है, उनका कहना है कि उनके 77 लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए इमिग्रेशन सेंटर में मौजूद थे, लेकिन अब इन लोगों की कोई खबर ही नहीं है और इनसे संपर्क टूट चुका है। एक बार आइए आपको वो इमिग्रेशन सेंटर पूरा दिखाते हैं, सफेद रंग की बड़ी बिल्डिंग जिसके बाहर बताया जा रहा है ये सभी लोग मौजूद थे। और आप देखिए कैसे पीछे से सैलाब आता है, लोग भागने की पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। मतलब पक्षी से लेकर हर कोई इंसान, सारी आवाजें इतनी जोर आ रही थी कि सब भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर पीछे से आता है ये सैलाब, क्या इमारत क्या इंसान, सब कुछ निगल जाता है।

0: अब इस सवाल पर आते हैं कि नेपाल में हुई इस तबाही का तिब्बत और चाइना से आखिर क्या कनेक्शन है। नेपाल के फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन ने कहा है कि रासुवा में हुई सामान्य बारिश को इस बाढ़ का कारण मानना मुश्किल है। यानी नेपाल ये कह रहा है कि उसके इलाके में उतनी बारिश हुई ही नहीं कि भोटेकोशी नदी में इतना बड़ा सैलाब आ जाए। ये तभी मुमकिन है जब नेपाल के इसी जिले से लगे तिब्बत के इलाकों में भारी बारिश हुई हो। और अभी इंडिया टुडे के लिए रिपोर्ट लिखने वाले पंकज दास और शशि भूषण बताते हैं कि सैटेलाइट तस्वीरों में इसके संकेत भी मिल रहे हैं। यानी सैटेलाइट तस्वीरें बता रही हैं कि तिब्बत के इलाकों में भारी बारिश और लैंडस्लाइड हुआ, और इसके बाद जब इसका मलबा नेपाल में आया तो इसने एक बहुत बड़ी तबाही का रूप ले लिया। कैसे वो भी आप समझिए। आइए आपको ये नक्शा दिखाते हैं, क्योंकि अगर आप इस नक्शे को देखेंगे तो ये सैलाब नेपाल के रासुवा जिले में आया है। रासुवा जिले की सीमा चाइना के तिब्बत से लगती है। यहां आपको यह बात भी बताना जरूरी है कि चाइना इस क्षेत्र को तिब्बत नहीं कहता, वो इसे शिजांग कहता है। इसी शिजांग में शिगात्से नाम का एक जिला या शहर है, जहां चाइना की सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक एक दिन पहले भारी लैंडस्लाइड हुआ, मूसलाधार बारिश हुई। इस इलाके को जिरोंग काउंटी कहा जाता है। ये देखिए आपको मैप पर एक एक करके सब आता चला जाएगा जिससे आप समझेंगे। और ये जो जिरोंग काउंटी है जो नेपाल के इसी रसुवा जिले की सीमा से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां लैंडस्लाइड आया तो सब कुछ आया। और जब तिब्बत के इस इलाके में भारी लैंडस्लाइड हुआ तो इससे लगा नेपाल का रसुवा जिला इसकी चपेट में आ गया और वहां से पूरी तबाही हो गई है। यानी दावा है कि इस तबाही के पीछे चाइना का तिब्बत बड़ा कारण हो सकता है, और ये बात हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी जिन्हुआ ने आज दो रिपोर्ट्स प्रकाशित की हैं जो मैं अपने साथ लेकर आई। आप हैरान रह जाएंगे। पहली रिपोर्ट में यह बताया गया है कि तिब्बत के जिरोंग पोर्ट के पास अचानक भूस्खलन यानी मडस्लाइड हुआ है। ये देखिए, ये पहली रिपोर्ट है जिसमें वो ये दावा करते हैं कि जिरोंग के पास अचानक बहुत बड़ा ये लैंडस्लाइड हुआ है और उसी की वजह से। ये देखिए, ये दूसरी रिपोर्ट में आपको बाद में दिखाऊंगी। ये जो रिपोर्ट है उसमें यह दावा किया गया है, इसकी हेडलाइन दिखा दीजिए, ह्यूज मडस्लाइड की वो बात कर रहे हैं। तो देखिए, उनका कहना है कि मडस्लाइड हिट्स नियर बॉर्डर पोर्ट इन जिजांग, पीपल फियर्ड मिसिंग। ये हो गया, ये वही इलाका है जहां से चाइना और नेपाल के बीच जमीन के रास्ते व्यापार और आवाजाही होती है। अब चाइना की सरकारी न्यूज एजेंसी पहले ये कह रही थी कि तिब्बत के इस इलाके में भूस्खलन होने से भारी तबाही हुई, कई लोग लापता है। इसमें यह भी लिखा गया है कि भूस्खलन के कारण चाइना की तरफ जिरोंग पोर्ट तक पहुंचने वाली सड़कें कट गई हैं, फोन्स हो दूसरे जो कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैं वो सब सेवाएं ठप पड़ गई हैं, बिजली आपूर्ति बंद है, कुछ लोग मलबे में फंसे हैं या लापता हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि नेपाल के जिस इलाके में प्रलय आई वहां से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर तिब्बत के इलाके में हालात पहले ही बिगड़ चुके थे। लेकिन आज सुबह जब नेपाल की भोटेकोशी नदी में जलजला आया तो चाइना की इसी सरकारी न्यूज एजेंसी ने एक दूसरी खबर लिख डाली। अपडेट, जी अर्जेस ऑल आउट रेस्क्यू रिलीफ एफर्ट्स आफ्टर मडस्लाइड हिट्स बॉर्डर पोर्ट इन जिजांग। इस बार इस खबर में यह लिखा गया कि नेपाल में भूस्खलन होने से तिब्बत के इलाके प्रभावित हुए। इसमें पूरी खबर को उन्होंने पलट दिया और यह कहा कि नेपाल में जो स्थिति हुई है, नेपाल में जो ये फ्लड है उसकी वजह से ये प्रभावित हुआ है। खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि किस तरह की बारिश हो रही है। हालांकि जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो इसमें साफ नजर आ रहा है कि तिब्बत के जिरोंग पोस्ट का जो इमिग्रेशन ऑफिस है वहीं ये सैलाब आता हुआ दिखा था, और इसी के बाद हो सकता है कि नेपाल और आसपास के तमाम इलाकों में पहुंचा, बड़ी तबाही मची। देखिए,
1: देखी पृथ्वी राजमा में जोड़ने पुल पर बगे।

इसके अलावा जितना पानी और पहाड़ों का मलबा नेपाल की इस भोटेकोशी नदी में आया वो ये बताता है कि इसके पीछे ग्लोफ भी GLOF भी एक बड़ा कारण हो सकता है। इसका मतलब होता है ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, यानी जब पहाड़ों पर ग्लेशियर्स के पास बर्फ और पानी की झीलें बन जाती हैं और किसी भूस्खलन या भारी बारिश के कारण उस झील की जो प्राकृतिक दीवारें हैं जो उसको रोक कर रखती हैं पानी को, वो अगर टूट जाती हैं तब उसका लाखों करोड़ों लीटर पानी एक साथ नीचे की तरफ चला जाता है और हो सकता है कि इस मामले में भी ऐसा हुआ हो। यह इसलिए संभव है क्योंकि रसुवा में नेपाल और तिब्बत की पहाड़ियां समुद्र तट से अधिकतम 7,227 मीटर की ऊंचाई पर है। यानी आप ये मान के चलिए कि जिस ऊंचाई पर केदारनाथ जी हैं उससे दोगुनी ऊंचाई पर नेपाल तिब्बत का ये सीमावर्ती इलाका है, या आप ये भी कह सकते हैं कि ये इलाका माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से थोड़ा ही कम है। अब माउंट एवरेस्ट समुद्र तट से 8,849 मीटर की ऊंचाई पर है, जबकि नेपाल का माफ कीजिएगा तल से जो समुद्र तट तल है उससे 8,849 मीटर की ऊंचाई पर है, जबकि नेपाल का जो रसुवा जिला है वो समुद्र तल से अधिकतम 7,227 मीटर की ऊंचाई पर है। अब इतने ऊंचे पहाड़ी इलाके और उनमें ग्लेशियर्स के पास बर्फ और पानी की झीलें बनना सामान्य होता है क्योंकि इतनी ऊंचाई पर बर्फ ज्यादा होती है और जब गर्मी बढ़ने से ग्लेशियर तेजी से पिघलता है तो वो इस तरह की एक झील का आकार ले लेता है। संभव है यहां वो हुआ। देखिए

आइए मैं आपको स्क्रीन पर दिखाती हूँ कि क्यों आज इस पानी और जल प्रलय से नेपाल में जो हो रहा है, भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। खासतौर पर बिहार यूपी में आखिर इसको लेकर अलर्ट क्यों जारी किया गया है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं ये जो शिगास्ते प्रांत है तिब्बत का, यहीं पर ग्यारोंग पोर्ट और ये 30 किलोमीटर की दूरी इसकी है इस बॉर्डर से, जिस तिमरे रसुवा जिला की हम बात लगातार कर रहे हैं। अब यहां पर जो ये भोटे कोशी नदी है वो आप देख रहे हैं, उसका उसकी जो धारा है वो कैसे बहती है, त्रिशूली नदी है, नारायणी नदी है, ये धीरे धीरे नेपाल से होते हुए पहुंचते हैं गंडक नदी में। और यही गंडक नदी जो बिहार में बाढ़ की स्थिति पैदा करती है, कितने जिलों को प्रभावित कर सकती है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये देखिए, चाहे पश्चिमी चंपारण हो, पूर्वी चंपारण हो, क्योंकि इसी ये मैंने रेड कर दिया आपके लिए, यही जो गंडक नदी है उसमें ये भोटे कोशी नदी का पानी आता है और यहां से जिस तरह का जल भराव इस वक्त जल बहाव हो रहा है वो आगे बढ़ेगा। तो ये सारे जिले जो है बिहार के, जो दोनों तरफ है इसी गंडक नदी के, चाहे सिवान हो, सारण हो, गोपालगंज हो, इधर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, ये सभी, ये सारा बिहार का जो इलाका है वो प्रभावित होगा, क्योंकि ये जो नदी का पानी है गोटे कोशी नदी का वो सीधे सीधे पहुंच रहा है गंडक नदी में, और गंडक नदी से हमेशा बिहार में बाढ़ आने की आशंका रहती है। और ऐसे में जब ये उसी गंडक नदी से बहेगा तो ये सभी जो 6 जिले हैं उन पर असर हो सकता है। देखिए, अब हम ये तो नहीं बता सकते कि ये प्रलय तिब्बत में भूस्खलन के कारण आई या नेपाल के कारण आई, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जिस इलाके में ये सैलाब आया वहां हिमालय की पहाड़ियों में चाइना लगातार सड़कें बना रहा है, पुल बना रहा है, बांध बना रहा है, तमाम परियोजनाएं खड़ी कर रहा है, जबकि विशेषज्ञ इतनी ऊंचाई पर कंक्रीट के ढांचों को ग्लेशियर के लिए सही नहीं मानते हैं। तिब्बत के परिवहन विभाग के मुताबिक साल 2021-25 के दौरान तिब्बत में आने जाने वाले प्रमुख राष्ट्रीय मार्गों के 3,432 किलोमीटर हिस्से को अपग्रेड किया गया और 2025 के अंत तक तिब्बत का कुल रोड नेटवर्क 1,25,000 किलोमीटर तक पहुंच गया। यानी तिब्बत के जिन पहाड़ी इलाकों में आम सड़कें बनाना भी मुश्किल था कि भाई लोगों के लिए गाड़ियां जाने के लिए वहां पर सड़कें बनाई जाए, वहां चाइना ने बड़े बड़े हाईवेज बना दिए हैं, बड़ी बड़ी सुरंगें बना दी हैं। जिस शिगास्ते में नेपाल के पास भूस्खलन होने का दावा है, वहीं कई बड़े एक्सप्रेसवे बनाए गए हैं, जिनमें लासा को शिगास्ते से जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे 167 किलोमीटर लंबा है, समुद्र तल से अधिकतम 4,000 मीटर की ऊंचाई पर है। यही नहीं, चाइना का जो वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट है उसमें तिब्बत को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। यानी जिस तिब्बत को हम आमतौर पर बर्फीले, सुनसान, दुर्गम पहाड़ों के रूप में देखते हैं, वहां चाइना सड़कों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार कर रहा है और प्रकृति से ये खिलवाड़ आज त्रासदी बनकर टूटा है। इनमें भी जो दुर्गम इलाके और गांव है उनमें 97% गांवों में सड़कों का ये नेटवर्क पहुंच चुका है। और चाइना ने यह भी ऐलान किया है कि अब वो तिब्बत के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में भी रेल लाइन का विस्तार करेगा। और यह बात सिर्फ सड़क और रेल लाइन की नहीं है, तिब्बत वॉच की एक रिपोर्ट है जो ये कहती है कि हिमालय क्षेत्र में तिब्बत को रश एशिया की नदियों का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। जिस ब्रह्मपुत्र नदी पर चाइना बांध बनाने की बात कह रहा है, वो ब्रह्मपुत्र नदी भी तिब्बत से ही निकलती है। अब चाइना इसी चीज को देखते हुए तिब्बत के जो हाइड्रो पार निर्माण है उनका बड़ा केंद्र बनाना चाहता है। यानी चाइना की कोशिश यह है कि वो तिब्बत को बिजली के लिए दुनिया का सबसे बड़ा पावर सेंटर बना दे। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती, चाइना तिब्बत के इन्हीं इलाकों में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी में इस्तेमाल होने वाले लिथियम बैटरीज, तांबा, सोना, चांदी जैसे खनिजों को निकालने के लिए बड़ी योजना पर काम कर रहा है। कितने सारे हाइड्रो पार्क प्रोजेक्ट्स हैं जो तबाह हो गए हैं। कुछ देर पहले तक मिली जानकारी के मुताबिक 3 हाइड्रो पार्क प्रोजेक्ट्स जो वहां चल रहे थे वो तो पूरी तरह से समतल हो गए हैं। जब इतने ऊंचे पहाड़ी इलाकों में ऐसा किया जाता है तो वहां की प्राकृतिक संरचनाएं प्रभावित होती हैं, और इसके कारण जब भूस्खलन और पहाड़ों के बार बार खिसकने की घटनाएं बढ़ती हैं तो ग्लेशियर्स की झीलें टूटने लगती हैं और ऐसी आपदाओं का जन्म होता है। उदाहरण के लिए साल 2018 में तिब्बत के खामेरिया में द्रिचु नदी पर चाइना एक बांध बना रहा था जिसका नाम था लावा बटांग डैम। उस वक्त इस संवेदनशील इलाके में इस निर्माण से एक विशाल भूस्खलन हुआ
और पहाड़ का एक पूरा हिस्सा द्रिचू नदी में समा गया। ये 2018 की तस्वीर है। ये घटना इतनी भयावह थी कि उस वक्त हजारों घर ढह गए, कई सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ नष्ट हो गया। ये घटना बताती है कि तिब्बत के इलाकों में पहाड़ पानी भूस्खलन का कॉम्बिनेशन कितना खतरनाक हो सकता है। और अभी जब चाइना इस इलाके में लगातार सड़कें, पुल, बांध, हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ तैयार कर रहा है, तब भी सवाल फिर से खड़ा हुआ है कि क्या चाइना के कारण आसपास के देशों पर इसका खतरा बढ़ सकता है। जैसे इस मामले में भी चाइना ने नेपाल की सीमा पर जोरोंग पोर्ट ऐसी जगह पर बनाया जो बहुत संवेदनशील थी। हमने मैप पर भी आपको दिखाया था, ये जो पोर्ट है बहुत करीब है नेपाल बॉर्डर से। यहां दो बड़ी नदियों का संगम था। चाइना को ये बात पता रही होगी कि अगर वो इस जगह सड़कें, इमिग्रेशन ऑफिस, एक पोर्ट बनाएगा तो इससे नदियों के पानी का बहाव बढ़ जाएगा और तेजी से नेपाल की तरफ जाएगा। लेकिन इन खतरों के बावजूद नेपाल ने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया। और मकसद जानते हैं क्या है? इसका मकसद था नेपाल के साथ चाइना के व्यापार को बढ़ाना। आज चाइना और नेपाल के बीच होने वाले कुल व्यापार का करीब 30% हिस्सा अकेले इसी रास्ते से गुजरता है। चाइना ने साल 2014 में इस जगह पर कई निर्माण कार्य शुरू किए। 2017 में इसे अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट का दर्जा दिया गया। 2016 में इतने संवेदनशील पहाड़ी इलाके में लॉजिस्टिक्स पार्क, मॉल, यार्ड, पार्किंग और दूसरी सुविधाएं विकसित की और यहां 15 लॉजिस्टिक्स और 40 से ज्यादा तो ट्रेडिंग कंपनियों को काम करने का लाइसेंस दे दिया। कोविड के बाद साल 2022 में यही रूट इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चाइना से नेपाल भेजने के लिए इस्तेमाल होने लगा। फिर साल 2022 में यही यहां से चीन का पहला बॉर्डर इकोनॉमिक कोऑपरेशन जोन स्थापित करने को मंजूरी मिली। यानी चाइना ने नेपाल के साथ व्यापार के लिए इस इलाके का मूल स्वरूप ही बदल दिया। और जब इसके कारण इस इलाके की प्राकृतिक संरचना बिगड़ी तो आज चाइना कह रहा है कि नेपाल में भूस्खलन के कारण यह नुकसान हुआ है। आइए आपको एक बार वो वीडियो फिर से दिखाते हैं जिसमें एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर ही काम कर रहे कुछ मजदूर, ये तो आप देख रहे हैं वहां पर जो इमिग्रेशन पोस्ट है, एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में कुछ लोग काम कर रहे हैं। जोर जोर से चीख कर कुछ लोग बताते हैं, सामने से उनको बाढ़ आती हुई दिख रही है कि भागो भागो। लेकिन इससे पहले कि वहां पर काम कर रहे मजदूर, इंजीनियर्स कुछ समझ पाते, पानी सब कुछ निगलता हुआ दिखाई देता है। और यह एक हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट है जिसका वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि 3 से ज्यादा हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स तो पूरी तरह से समतल हो गए। सुनिए, देखिए। जब चाइना तिब्बत के मुश्किल पहाड़ों में कोई बड़ी परियोजना शुरू करता है या टनल बनाता है तो पूरी दुनिया उसे एक अजूबे की तरह देखती है। और चाइना अपनी फ्लेक्सिंग भी करता है, मसल फ्लेक्सिंग की, देखो हम क्या कुछ नहीं बना सकते। उदाहरण के लिए जब चाइना के शिनजियांग में त्यानशान पर्वत श्रृंखला के आर पार एक 22 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई गई तो इसकी पूरी दुनिया में चर्चा हुई कि चाइना तो कुछ भी बना लेता है। लेकिन बाद में कई रिपोर्ट्स आई जिनमें यह कहा गया कि इस टनल के लिए जिन पहाड़ों का सीना खोदा गया वो पहाड़ संवेदनशील हो गए। और अभी तिब्बत में चाइना की लगातार बढ़ती गतिविधियों पर सवाल उठने लगे हैं और नेपाल में आई प्रलय को भी उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। देखिए,

ये कितनी अजीब बात है कि टिबेट के कारण जिस नेपाल में ये प्रलय आई उस नेपाल की तस्वीरें तो पूरी दुनिया ने देख ली, लेकिन टिबेट से अब भी ये तस्वीरें बाहर नहीं आई हैं और चाइना की कहानी बस यही है, वहां से ऐसी घटनाओं की रिपोर्टिंग या तस्वीरें लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती। इधर नेपाल में जो कुछ हुआ है उसकी तस्वीरें तो आप लगातार देख ही रहे हैं, बहुत सारे वीडियोस भी देख रहे हैं, लेकिन वहां पर नहीं है। पांच बड़े अपडेट आपको बताते हैं। पहला बड़ा अपडेट यह है कि इस घटना में नेपाल पुलिस और नेपाल सशस्त्र पुलिस बल के कई सुरक्षाकर्मी भी लापता हो गए हैं। दूसरा बड़ी बात यह है कि जो सामने आ रही है कि इसी इलाके में पिछले साल भी तबाही हुई थी और तब भी रसुवागढ़ी का मैत्री पुल ढह गया था, लेकिन फिर से वही कहानी। तीसरा, अब इस पूरे मामले में यह दावा भी किया जा रहा है कि तिब्बत क्षेत्र में आए एक भूकंप के कारण भारी हिमस्खलन हुआ जिसने भोटे कोशी नदी का रास्ता रोक दिया और बाद में बांध टूटने से अचानक ये सैलाब नीचे की ओर नेपाल की तरफ आ गया। चौथा, नेपाल में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए 30 से ज्यादा सैन्य और निजी हेलीकॉप्टर्स तैनात किए गए हैं, हालांकि तिमुरे का जो हेलीपैड है वो हेलीपैड ही बह गया है। अब हेलीपैड बह जाने और खराब मौसम जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर्स को लैंडिंग करने में भारी मुश्किलों का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। और पांचवा बड़ा अपडेट नेपाल की सरकार को लेकर है, जहां प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने स्थिति का जायजा लेने के लिए एक आपातकालीन कैबिनेट बैठक बुलाई है। इसके अलावा नेपाल के कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए इस प्रलय और बाढ़ में घायल हुए सभी नागरिकों के मुफ्त इलाज की घोषणा की है और घायलों को एयरलिफ्ट कर काठमांडू के बीर अस्पताल, टीचिंग हॉस्पिटल और नेशनल ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराने का ऐलान किया है। इसी बीच आपको बताते हैं, नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कहा है कि शुरुआती जांच में यह आपदा तिब्बत में भूकंप के कारण आए भीषण हिमस्खलन की वजह से हुई है। नेपाल की संसद में विपक्षी दलों ने इस बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने और प्रभावित इलाकों को संकटग्रस्त क्षेत्र मानकर विशेष बजट जारी करने की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से फोन पर बात की है और इस दुखद घड़ी में भारत की ओर से हर संभव सामग्री पहुंचाने का आश्वासन भी दिया है। और आज हमारी सारी प्रार्थनाएं इन तमाम लोगों के साथ हैं, इनके परिवारों के साथ हैं, जिनके अपने आज भी लापता हैं या जिनके अपनों की मौत हुई है। ऑल प्रेयर्स फॉर नेपाल, हमारी नजर इस खबर पर रहेगी। लेकिन नेपाल के बाद आपको गुरुग्राम की वो तस्वीरें दिखाएंगे जिसे गड्ढा ग्राम कहना ज्यादा ठीक लगने लगा है। ऐसा गड्ढा ग्राम जिससे सीएम भी मुंह फेर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी से जब गुरुग्राम में जल भराव की गंभीर स्थिति पर सवाल पूछा गया तो सवालों से बचते हुए निकल गए। सवाल यह है कि आखिर गुरुग्राम की स्थिति का जिम्मेदार कौन? हरियाणा में पिछले 12 साल से बीजेपी की सरकार है। राव इंद्रजीत सिंह इस इलाके से करीब 2 दशक से सांसद हैं। 2014 से वो बीजेपी के साथ हैं, पहले कांग्रेस के सांसद अब बीजेपी के सांसद। पिछले 1 दशक में गुरुग्राम के ड्रेनेज पर 500 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, 500 करोड़। लेकिन सैकड़ों करोड़ रुपए लगने के बाद भी गुरुग्राम की सड़कें चंद घंटे की बारिश में सरेंडर कर देती हैं और लगता है कि ये गड्ढा ग्राम है। सोमवार को तो बच्चे बारिश के पानी में स्कूल बसों के फंसे होने से कई घंटे तक बंधक बनकर रह गए। इसके बाद आज तक ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से सवाल पूछा, उन्होंने चुप्पी साध ली, सुरक्षा कर्मियों ने माइक हटा दिया। हमारे रिपोर्टर का सवाल पूरा भी नहीं हुआ लेकिन मुख्यमंत्री ने मुस्कुराते हुए हाथ खड़े कर दिए। आज सवाल यह है कि गड्ढा ग्राम बन चुके गुरुग्राम में चुप्पी साधने से कैसे काम चलेगा। और अब हम बात करेंगे देश में चीनी और प्याज की बढ़ती कीमतों से मचे हंगामे की। करीब 1 महीने के अंदर ही चीनी के दाम 15 से 20 रुपए तक बढ़ गए हैं, प्याज की कीमतें करीब 10 रुपए तक बढ़ चुकी हैं, सरसों का तेल 5 से 10 रुपए तक बढ़ गया है और ये बढ़ती हुई कीमतें लोगों को भड़का रही हैं, सरकार को मुसीबत में डाल रही हैं। 26 जुलाई से 26 अगस्त चीनी की कीमत 48 रुपए से 65 रुपए हो गई,
प्याज की कीमतें 34 रुपए से 47 रुपए तक पहुंच गई और सरसों का तेल 195 रुपए से 200 रुपए लीटर तक आ गया है। सबसे ज्यादा हंगामा चीनी की कीमतों को लेकर है। अब तो विपक्षी नेता सड़क पर चीनी का लंगर लगाकर अपने विरोध प्रदर्शन करके सरकार को घेर रहे हैं। चीनी की कीमतों ने त्योहार के सीजन में मिठाइयां महंगी कर दी हैं, जिससे लोग और भड़के हैं। लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि सरकार एथेनॉल के चक्कर में गन्ने के रस से चीनी नहीं बनने दे रही है। हमारे देश में सालाना 4500 लाख टन गन्ने का उत्पादन होता है, जिसे करीब 360 लाख टन चीनी बनाई जाती है। चीनी उत्पादन में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, लेकिन चीनी की खपत के मामले में अब नंबर वन हो गया है। चीनी की हमारी घरेलू खपत जानते हैं कितनी है? 290 लाख टन। देखा जाए तो हम अभी भी घरेलू खपत के हिसाब से उत्पादन सरप्लस में है, लेकिन इसके बावजूद व्यापारियों का दावा है कि आने वाले समय में चीनी की कीमतें 80 रुपए तक पहुंच सकती हैं। चीनी की बढ़ती कीमतों से राहत देने के लिए सरकार ने बिना आयात शुल्क के 10 लाख टन चीनी के आयात को मंजूरी दी है। अभी तक चीनी का आयात ना के बराबर होता था, क्योंकि भारत में चीनी के आयात पर 100% की कस्टम ड्यूटी लगती थी। दरअसल हमारी खुद का उत्पादन अच्छा था, इसलिए सरकार नहीं चाहती थी कि चीनी हम इंपोर्ट करें, आयात करें, लेकिन अब हालात बदल गए। अब अगली खबर आपको अंजना 2.0 बताएंगी। ये खबर फ्रांस में पहले पारंपरिक हिंदू मंदिर से जुड़ी है, जो बनकर तैयार हो चुका है। इसमें 6 सितंबर को प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। बताइए अंजना 2.0। बिल्कुल अंजना, पेरिस के पास बुसी सेंट जॉर्ज नाम की जगह पर यह खूबसूरत मंदिर बना है। सबसे खास बात यह है कि इस जगह पर दुनिया के बाकी धर्मों के प्रार्थना स्थल भी हैं, जो आपसी भाईचारे की एक बहुत प्यारी तस्वीर पेश करते हैं। साल 1970 में एक संत पेरिस गए थे, तभी उन्होंने ये सपना देखा था कि फ्रांस में भी एक दिन भव्य हिंदू मंदिर बनेगा। आज उनका वही 56 साल पुराना सपना सच हो गया है। बीएपीएस संस्था द्वारा बनाए गए इस मंदिर को देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। इसको बनाने में भारत के पत्थरों के साथ साथ उन फ्रांसीसी कारीगरों ने भी मदद की है, जिन्होंने पेरिस के मशहूर नोट्रे डैम कैथेड्रल को फिर से संवारा था। मंदिर के उद्घाटन के मौके पर फ्रांस में 2 से 14 सितंबर तक शानदार संस्कृति महोत्सव मनाया जा रहा है। मंदिर निर्माण के बाद से ही यहां भारी संख्या में भक्त उमड़े हुए हैं। ये मंदिर सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं है, बल्कि ये यूरोप में भारतीय संस्कृति, शांति और प्यार का एक नया पता बन गया है। फ्रांस में रह रहे भारतीयों के लिए ये किसी बड़े त्योहार से कम नहीं है। बहुत धन्यवाद आपका अंजना 2.0 इस दिलचस्प खबर के लिए। इसी के साथ हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार अंजना की विचारधारा। देखते रहिए आज तक।

0: सावधान करने की भाषा अलग अलग है पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट
1: तो देते।
2: मैं करता हूँ ना,
3: मैं करूँगा।
4: ओए कार्ड्स की दुकान, इतने कार्ड्स कौन रखता है?
2: ये ग्लोबल लग्जरी होटल्स के लिए, ये स्टे स्पा फाइन डाइनिंग के लिए, वर्ल्ड क्लास गोल्फ प्रिविलेजेस के लिए।
4: पंजाब नेशनल बैंक का लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड लो एंड गेट अनलिमिटेड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस, अनलिमिटेड स्टे, डाइनिंग एंड मच मोर।
2: क्रिकेट में आप और बैंकिंग में PNB दोनों ही चैंपियन है।
4: PNB लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड, PNB मेरा अपना बैंक।

0: विश्राम।
1: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
2: एक हिंट तो देते।
3: जिंदगी में हम सबका एक सपना होता है, सपना अपनी दुनिया बसाने का, अपना एक घर बनाने का। और जब इस सफर में कोई अपना साथ दे तो सपने साकार हो ही जाते हैं।
4: भरोसे से ही बनता है आपके अपने सपनों का आशियाना। ऐसा ही आपका अपना साथी पंजाब नेशनल बैंक, जो बरसों से जीत रहा है देश का भरोसा। पीएनबी, मेरा अपना बैंक।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: पंजाब में सरकारी स्कूल धर्मशाला के भरोसे हैं, इसका दूसरा सबूत संगरूर में मिलता है।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: पंजाब में सरकारी स्कूल धर्मशाला के भरोसे हैं, इसका दूसरा सबूत संगरूर में मिलता है। देखिए पहले प्रदर्शन करते हैं माता पिता को। स्कूली बच्चों की यही माता पिता पहले कई बार प्रदर्शन तक कर चुके हैं, इस उम्मीद में कि पंजाब सरकार में किसी कर्ता धर्ता की शायद आँख इनकी मांग पर खुल जाए। लेकिन क्या हुआ, कुछ इसी तरह से पंजाब की संगरूर में बच्चों को सुरक्षित माहौल में बेहतर तरीके से शिक्षा पाने के सपने और अधिकार को सरकारी सुस्ती ड्रिल करके तोड़ दे रही है। जिस संगरूर से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 2022 से पहले तक दो बार सांसद चुने गए, उन्हीं के पुराने संसदीय क्षेत्र में बेनड़ा के दलित मोहल्ले के प्राइमरी स्कूल को पिछले साल जर्जर हालत में पाए जाने पर जनता के धरना देने के बाद तब तोड़ दिया गया जब इस इमारत में पढ़ना बच्चों के लिए खतरे से खाली नहीं रह गया था। जनता के धरने के बाद जिस जर्जर स्कूल को तोड़ा गया उसकी जगह अब तक नया स्कूल बनाकर दिया ही नहीं गया। नतीजे, बच्चे धर्मशाला में भगवान भरोसे पढ़ाई करने के लिए छोड़ दिए गए।
3: हम इस वक्त गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल का जो पुराना ढांचा है वहां पर हैं, क्योंकि वो अब खत्म हो चुका है और बच्चे अब धर्मशाला में पढ़ते हैं। ये देख सकते हैं किस तरह से तहस नहस हो चुका है। बेनड़ा का ये गांव है जो कि संगरूर में पड़ता है, और आपको बता दें कि भगवंत मान 2014 से 2022 तक यहां पे दो बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। लेकिन क्या खस्ता हालत है, क्यों बच्चे स्कूल में ना पढ़ के और ये बिल्डिंग क्यों डिमोलिश की गई?
4: पिछले टाइम बारिश नहीं पड़ी, पिछले साल ए ओदे कारण होया सब तो ज्यादा जी। ए ओदो थोड़ा जा उधरों दब गया स्कूल, उन्होंने त्रेड़ा आ गई। एदा चल रहा मसला अज तो 4 महीने पहला, 4 महीने लगातार असि धरने ते रहे हां उधरली साइड।
3: 4 महीने
4: हां लगातार धरना दी है जी, भुख हड़ताल ते। असी ने यह इन्हां इहदे मुद्दा चुकिया ते धर्मशाला च बच्चे पढ़दे ने जेडे सिर्फ एक पख्या कारण मनु पख्या सहारे ही बहते ने। यह मसला अज तो मान लो कि पिछले डेढ़ साल तो प्लस ये स्कूल बंद पिया, धर्मशाला जी क्लासा लग रही ने बच्चे दी।
2: स्कूल की नई इमारत है नहीं तो अब धर्मशाला में एक एक कमरे में कई क्लास लगाकर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। और जैसे ही आज तक संवाददाता ने यहाँ कैमरा ऑन करके शूट करना शुरू किया, कमरा बंद करा दिया गया।
3: आज तक को देखते ही स्कूल यानी धर्मशाला के दरवाजे तो बंद हो गए हैं, लेकिन हम बात करेंगे माता पिता से और जानेंगे कि कितने परेशानी में है बच्चे।
5: साडे बच्चा वास्ते स्कूल वधिया बनना चाहिंदा जी। साडे बच्चे उरे आउंदे ने, गर्मी च बैठते ने, एक एक पखा थोड़ा थोड़ा चलता है जी। हाँ, उहदे बारे असीं ना बहुत उह कर रहे हैं। साडा बच्चा पैर तो अज्जा भी है ना, असीं गरीब हाँ जी, असीं तां हुण सरकारी च लाया होया जी, असीं प्राइवेट पढ़ा नहीं सकते ना।
2: यही वजह है कि पेरेंट्स संगरूर में कई बार इस तरह के प्रदर्शन करके बच्चों के लिए नए स्कूल की मांग रखते आए हैं। जिस स्कूल के लिए प्रदर्शन हो रहा है उसके बारे में प्रशासन ने ये जानकारी दी है कि 20 लाख रुपए मंजूर हुए हैं, जल्द नया स्कूल बनना शुरू होगा।
6: दम सब स्कूल नए बन चुके हैं, एक दो रहते होंगे, वो भी बन रहे हैं, उनका भी कंस्ट्रक्शन का काम बराबर चल रहा है।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
9: तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही, अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी।

0: कल रात 9 बजे. तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए. और वक्त अच्छा हो तो दुनिया को पता चलता है कि हम कैसे हैं, वक्त बुरा हो तो हमको पता चलता है कि दुनिया कैसी है. नमस्कार.
1: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय विक्टर्स, भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले वाटर टैंक्स, टंकी मतलब विक्टर्स. प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच. इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो.

0: नेपाल में फ्लैश फ्लड से हाहाकार, अब तक 95 लोगों के शव बरामद, 400 लापता, 133 भारतीय भी। चीन में भी बाढ़ में बहे 265 लोग। पीएम मोदी ने नेपाली पीएम से बात की, अलर्ट पर बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राहत सामग्री के साथ रवाना भारतीय एयरफोर्स के विमान। संसद का विशेष सत्र बुलाने का संसदीय कार्य मंत्री ने किया इशारा, इंडिया टुडे से बातचीत में बोले, संसद में महिला आरक्षण को लेकर पीएम मोदी गंभीर, इस दिशा में काम जारी। बीजेपी के हमले के बाद मुस्लिम महिलाओं ने राहुल को घेरा, हिजाब को लेकर दिल्ली में कांग्रेस ऑफिस पर प्रदर्शन, हिजाब पर चुप्पी का किया विरोध। यूपी के शामली में यूट्यूबर और हरियाणवी गायक अंकित बालियान की गोली मारकर हत्या, जिम से बाहर निकलते ही ताबड़तोड़ फायरिंग।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं आज तक पर, आप देख रहे हैं दस्तक। और आज दस्तक आधी आबादी की शक्ति पर, कैसे राजनीतिक दल महिला वोटर्स को साधने के लिए नई नई योजनाएं लॉन्च कर रहे हैं। 2027 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है, ऐसे में यूपी में बीजेपी हैट्रिक लगाने के लिए जांचे परखे फॉर्मूले की तरफ बढ़ रही है। जेंजी के साथ साथ महिला वोटर्स को लुभाने के लिए भी योजनाओं का ऐलान किया जा रहा है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन से ठीक पहले लोकमाता माँ अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना शुरू की। उत्तर प्रदेश में अब 60 वर्ष और उससे ऊपर की महिलाओं को रोडवेज की बसों में मुफ्त यानी कि फ्री यात्रा की सुविधा मिलेगी। तो ग्रेजुएशन की 50,000 छात्राओं को मुफ्त स्कूटी दी जाएगी। योगी आदित्यनाथ और उनके सरकार के जवाब में अखिलेश यादव ने भी स्त्री सम्मान योजना का ऐलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी की सरकार अगर उत्तर प्रदेश में बनती है तो अखिलेश यादव ने महिलाओं को 40,000 रुपए देने का वादा किया है। तो आइए हम आपको दिखाएं स्त्री 27।
1: धन्यवाद।
2: यूपी की चुनावी लड़ाई आधी आबादी पर गरमाई। जेंजी के बाद अब महिलाओं के लिए योजनाओं का ऐलान।
3: तो बेटी के जन्म से लेकर पढ़ाई तक और आगे भी सरकार हमेशा उसके साथ खड़ी है।
2: योगी कराएंगे मुफ्त में सफर, अखिलेश का 40,000 वाला वादा। महिला वोटरों का गणित, यूपी में शुरू हुई सियासी भिड़न।
3: हर माता को फ्री में बस सेवा की सुविधा प्राप्त होगी एक सहयात्री के साथ।
2: 2027 यूपी विधानसभा चुनाव की जंग स्त्री 27। यूपी में आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए स्त्री 27 की ये पिक्चर सियासत में किसके लिए सुपरहिट साबित होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये दो तस्वीरें बता रही हैं कैसे यूपी में महिला वोटरों का गणित बड़ी सियासी भिड़ंत बन गया है। जब सीएम योगी महिलाओं के लिए अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना लॉन्च करते हैं तो यूपी रोडवेज बस के अंदर मुफ्त सफर के लिए बैठी महिलाओं के साथ सेल्फी लेते हैं। उधर जब अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिम्पल यादव महिलाओं के लिए स्त्री सम्मान समृद्धि योजना का ऐलान करते हैं तो उनके साथ पार्टी की महिला सांसद, महिला नेता और महिला कार्यकर्ता मौजूद रहती हैं।
4: गांव से शहर तक, मायके से बेटी के घर तक,
2: स्त्री 27 साफ है। यूपी चुनाव की लड़ाई अब आधी आबादी पर गरमाई है। आधी आबादी को पूरा हक देने के दावे के साथ चुनावी होड़ ऐसी मची है कि सीएम योगी महिलाओं के लिए योजनाएं लॉन्च कर रहे हैं तो अखिलेश यादव भी स्त्री शक्ति के साथ चुनावी रण में उतरे हैं। योगी सरकार ने रक्षाबंधन से ठीक पहले यूपी में महिलाओं के लिए नए तोहफे की सौगात दी है और इसको नाम दिया गया है लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना। अब यूपी में 60 साल और उससे अधिक उम्र की महिलाएं सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी जिसमें रोडवेज की बसों में आधार या वोटर आईडी दिखाकर मुफ्त यात्रा की जा सकेगी। इस योजना से उत्तर प्रदेश की करीब 1 करोड़ बुजुर्ग महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। इस योजना में रोजाना औसतन 88,000 महिलाएं लाभान्वित होंगी जिसमें हर महीने करीब 22.5 करोड़ और सालाना करीब 270 करोड़ रुपए का खर्च आने की उम्मीद है। इसके अलावा रक्षाबंधन के मौके पर सभी उम्र की महिलाओं के लिए भी मुफ्त बस यात्रा की सुविधा रहेगी। 27 अगस्त की रात से 28 अगस्त की रात तक महिलाएं रोडवेज बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगी और उनके साथ एक सहयोगी को भी मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी।
3: रक्षाबंधन के अवसर पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम और सिटी बस सेवा दोनों में हर बेटी, हर बहन, हर माता को 3 दिन के लिए निःशुल्क बस सेवा प्रारंभ करने के लिए और इस सुविधा के लिए प्रदेश भर की पूरी मातृशक्ति का अभिनंदन करते हुए उन्हें हृदय से बधाई देता हूं और 29 के बाद 60 वर्ष की कोई भी महिला जो उत्तर प्रदेश की वासी हो अपना वोटर आईडी कार्ड दिखा करके या आधार कार्ड दिखा करके इस यात्रा का लाभ ले सकती हैं। उनसे कोई भी किराया नहीं लिया जाएगा। ये दो प्रकार की सेवाएं आज एक साथ प्रारंभ हो रही हैं।
2: इसके अलावा सीएम योगी ने ग्रेजुएशन की छात्राओं के लिए स्कूटी योजना का भी ऐलान किया है। जी हां, 50,000 बेटियों को अक्टूबर नवंबर में स्कूटी दी जाएंगी।
3: यानी अभी तो बेटी के जन्म से लेकर पढ़ाई तक और आगे भी सरकार हमें साथ उसके साथ खड़ी है। हमने एक और व्यवस्था की है, हमारे लिए बड़ा था पहले ये काम कि रक्षाबंधन पे इस कार्यक्रम को करेंगे। अभी हम अक्टूबर या नवंबर में प्रदेश की 50,000 बेटियों को जो स्नातक में पढ़ाई कर रही हैं, ऐसी 50,000 बेटियों को एक स्कूटी उपलब्ध करवाने जा रहे हैं।
2: योगी सरकार ने महिलाओं के लिए योजनाओं का ऐलान किया तो जवाब में अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव ने ताबड़तोड़ 16 योजनाओं के वादों की झड़ी लगा दी।
1: स्त्री सम्मान समृद्धि योजना, हम 40,000 से करेंगे शुरुआत, जिसमें बढ़ोतरी होगी हर साल।
5: आंगनबाड़ी बंद हो रहे केंद्र फिर खुलेंगे, घर में पोषाहार, साफ पानी और स्वच्छ शौचालय के साथ
6: पूरा ढांचा। हर जिले मुख्यालय पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलेंगे हम।
7: 24 घंटे महिलाओं और बच्चियों के लिए एक अलग एम्बुलेंस सेवा, उसकी समय सीमा तय रहेगी और प्रशिक्षित महिला स्टाफ के साथ गर्भवती माताओं को प्राथमिकता मिलेगी। 102 और 108 एम्बुलेंस समाजवादी पार्टी की तरफ से शुरू किया गया था और उसे वापस से लेकर के आएंगे, ये दृढ़ संकल्प है हमारा।
8: इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने वाली हर छात्रा को लैपटॉप,
9: लिए हर तहसील में पीजी कॉलेज, हर जिले में विश्वविद्यालय और सुरक्षित छात्रावास की सुविधा भी दी जाएगी।
10: कार्यस्थल पर महिलाओं का सम्मान, प्रति माह 2 दिन आकस्मिक अवकाश बिना किसी सवाल की।
2: अब एक तरफ तो अखिलेश यादव योगी सरकार की महिलाओं की योजना के जवाब में स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लागू करते हैं, दूसरी तरफ योगी सरकार की योजनाओं में खोट भी निकालते हैं, साथ ही महिला आरक्षण को लेकर प्रहार भी करते हैं।
11: भारतीय जनता पार्टी के लिए तो नारी केवल नारा बन करके रह गई है। आज के दिन हम कहना चाहते हैं, यहाँ जितनी भी हमारी महिलाएं बहने बैठी हैं, वो जानती हैं कि महिला आरक्षण पास हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी क्यों देरी कर रही है, उसको अगले चुनाव में लागू किया जाए। जब रक्षाबंधन के त्योहार पे आप बस चला रहे हो और भी योजनाएं लागू करने का बहाना कर रहे हो, तो ये भी सच बोल करके महिला आरक्षण लागू करने का भी काम किया जाए।
3: मुझे 2017 के पहले की भी सरकारों के कार्यप्रणाली याद आती है। 2017 के पहले एक दौर था, उस समय ये हर बेटी, हर बहन और हर माता की जवान पर एक नारा गूंजता था कि देख सपाई बिटिया घबराई,
11: कि पूरी तैयारी के साथ कोई योजना नहीं चलाई जा रही है। कम से कम उस महिला के साथ या वृद्ध महिला के साथ अगर कोई जा रहा है तो अगर बच्चा है तो फ्री होना चाहिए, और परिवार का कोई वृद्ध है और जो उसके सहायता और सहयोग के साथ जा रहा है, सहयोग के लिए जा रहा है, उसकी आधी होनी चाहिए, आधी टिकट लगनी चाहिए।
12: दिल्ली के जंतर मंतर के आंदोलन के बाद एक बार फिर से बीजेपी जेनजी पर डैमेज कंट्रोल में जुटी है, तो दूसरी तरफ महिला वोटर्स को साधने के लिए नई नई योजनाएं बीजेपी ला रही है, क्योंकि 2027 विधानसभा का चुनाव बेहद नजदीक। ऐसे में जेनजी के मुद्दे पर माइलेज लेने वाले अखिलेश यादव अब महिला वोटर्स के लिए भी समाजवादी पार्टी की मार्केटिंग कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या अखिलेश यादव बीजेपी की तुलना में महिला वोटर्स की बढ़त हासिल कर पाएंगे? देखिए,
2: बीजेपी यूपी में भी हैट्रिक लगाने के लिए फिर से महिला वोटरों को फिक्स करने वाला प्लान तैयार कर रही है, और इसके तहत सिर्फ महिलाओं को फ्री में बस यात्रा ही नहीं, बल्कि यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए 50,000 तक की आर्थिक सहायता वाली नई योजना की तैयारी भी चल रही है। ऐसे में अखिलेश यादव कहते हैं कि महिलाओं की तरक्की के लिए फैसले तो समाजवादी सरकार में लिए गए थे और उसके उदाहरण आज भी दिए जा रहे हैं।
11: बिना आदि आबादी के हमारी तरक्की अधूरी है। पहले भी समाजवादी सरकार में शिक्षा से लेकर के स्वास्थ्य और सुरक्षा के जो फैसले लिए गए थे, आज भी उत्तर प्रदेश सरकार के लिए और देश के लिए उदाहरण बने हैं। हाल ही में जापान का एक डेलीगेशन जब आया तो उस डेलीगेशन को वही 1090 जो कभी समाजवादी सरकार में शुरू हुआ था उसी को दिखा करके सरकार ये बताना चाहती है कि महिलाओं के सुरक्षा के लिए वो क्या फैसले और क्या काम कर रहे हैं।
2: अब सवाल यह है कि आखिर यूपी में आधी आबादी का गणित क्या है जिस पर इतनी सियासी भिड़ंत हो रही है। यूपी में फिलहाल करीब 6,70,00,000 से अधिक महिला मतदाता हैं। इन महिला मतदाताओं के वोट आशीर्वाद से लखनऊ की सत्ता का पथ प्रशस्त होता है। मसलन 2017 में 3.97 करोड़ महिलाओं ने वोट डाले थे, उनमें से करीब 41 से 43% यानी 1.65 करोड़ से अधिक महिलाओं ने बीजेपी को आशीर्वाद दिया और 325 के प्रचंड बहुमत से सरकार बनी। 2022 में भी वोट डालने वाली 4,23,00,000 महिलाओं में से 46 से 48% यानी 2 करोड़ से ऊपर महिलाओं ने योगी राज की वापसी सुनिश्चित की। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट डालने वाली 4,38,00,000 महिलाओं में से 41% यानी 1,80,00,000 महिलाओं ने ही बीजेपी को वोट दिया, यानी बीजेपी के महिला वोट में करीब 5% की गिरावट हो गई। इसी 5% की गिरावट की भरपाई और समाजवादी गठबंधन को मिली बढ़त को ध्यान में रखते हुए अब योगी सरकार ने महिलाओं के लिए खजाना खोल दिया है।
11: समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा लड़ाएं और हम भारतीय जनता पार्टी से अपील करेंगे कि नारी को नारा न बनाएं।
2: यूपी में बीजेपी अपने जांचे परखे फॉर्मूले पर चल रही है, महिला वोटर यानी आधी आबादी के वोट को फिक्स करने का फॉर्मूला। क्योंकि एनडीए सरकार ने बिहार की 1,40,00,000 महिलाओं के खाते में चुनाव से पहले 10,000 रूपए ट्रांसफर किए थे, इसके बाद जो नतीजा दिखा, बिहार में पहली बार सबसे ज्यादा मतदान हुआ। पुरुषों के मुकाबले बिहार में महिलाओं ने 10% ज्यादा वोट दिया। बिहार की करीब 130 सीट पर महिला वोट पुरुषों से ज्यादा रहा, जिसमें 114 सीट एनडीए ने जीती यानी 88%। एनडीए और महागठबंधन के वोट शेयर के बीच का अंतर उन जिलों में ज्यादा दिखा जहां महिला वोटरों की हिस्सेदारी ज्यादा, मतलब 51% से 55% के बीच थी, और उन जगहों पर कम था जहां पुरुषों और महिलाओं की वोटिंग संख्या लगभग बराबर थी या पुरुषों की संख्या महिलाओं से ज्यादा थी, जैसे कि जिन सीटों पर महिला वोटरों की हिस्सेदारी 51% से 55% थी वहां एनडीए और महागठबंधन के बीच का अंतर 11% से 15% वोट के बीच का था, जबकि दूसरी सीटों पर यह अंतर 10% से कम था, मतलब जहां महिला वोटर ज्यादा वहां एनडीए ने वोट में भी लीड ली थी। समाजवादी पार्टी इसी की काट ढूंढ रही है और आधी आबादी को साधने के लिए स्त्री सम्मान समृद्धि योजना के तहत हर महिला को सालाना 40,000 रूपए देने का वादा कर रही है।
11: भरोसा दिलाता हूँ कि जहाँ स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लागू की जाएगी, ये आधी आबादी की पूरी आजादी का संकल्प है और उन्हें हर साल 40,000 रूपए देकर के उन्हें आगे बढ़ाने का काम समाजवादी सरकार में होगा।
2: आपको बता दें कि यूपी में योगी सरकार की महिलाओं वाली योजनाओं की लंबी फेहरिस्त है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में 27,40,000 बेटियों को जन्म से पढ़ाई तक 6 किस्तों में 25,000 नकद मिल चुका है। प्रदेश की निशुल्क शिक्षा योजना में 1.2 करोड़ बेटियों को सालाना मुफ्त शिक्षा, पोशाक, किताब और बैग मिलते हैं। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना में 50,000 मेधावी कॉलेज छात्राओं को स्कूटी मिल रही है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 5.54 लाख कन्याओं को 51,000 की आर्थिक मदद मिल चुकी है। महिला सामर्थ्य योजना में 28.63 लाख महिलाओं को मुफ्त स्किल ट्रेनिंग और 15,000 रूपए का फंड मिल चुका है। मुफ्त LPG उज्ज्वला योजना में 1.90 करोड़ महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर मिल चुका है। 181 महिला हेल्पलाइन वन स्टॉप सेंटर सखी केंद्र में 2.5 लाख पीड़ित महिलाओं को मुफ्त इलाज से लेकर कानूनी सहायता तक मिल चुकी है। और अब 60 साल और उससे ऊपर की महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा लागू करके योगी सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेला है।
13: उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का मास्टर स्ट्रोक और सभी 60 वर्ष से ऊपर महिलाओं को फ्री निशुल्क यात्रा। आप देखिए ये सारी जो बसें हैं इन्हीं बसों से मातृशक्ति योजना के तहत उनको फ्री एक तरीके से अब आजीवन ये सेवा दी जाएगी। और ये मास्टर स्ट्रोक योगी आदित्यनाथ का माना जा रहा है। ये महिलाएं देखिए जो 60 साल से ऊपर की हैं वो सभी इससे निशुल्क यात्रा कर पाएंगी। पूरे प्रदेश में जहां भी उनको जाना है वो इस बस के जरिए जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कल कैबिनेट में इसको पास करने के बाद आज इसका इनॉग्रेशन है। आप देखिए कई महिलाएं अपने अपने गंतव्य स्थान पर जाने के लिए तैयार हैं। आप बताइए माता जी।
14: हमारा नाम राम दुलारी और हमारे योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वो हमको यात्रा करवा रहे हैं हमारे लोग बुजुर्ग मेहर औरतों को और उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ
13: तो सब फ्री हो गया पूरे यूपी में कहीं भी
14: यूपी हाँ कहीं भी जाएंगे।
2: लेकिन समाजवादी पार्टी इन कामयाबियों को खारिज करती है। अब यूपी में स्त्री 27 पिक्चर शुरू हो चुकी है। अब इसका क्लाइमैक्स 2027 यूपी विधानसभा चुनावों के साथ ही क्लियर होगा। समर श्रीवास्तव के साथ आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
12: और अब खबर दिल्ली की। जी हां, आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महिलाओं के लिए लक्ष्मी योजना की शुरुआत कर दी। तालकटोरा स्टेडियम में लाभार्थी महिलाओं को सर्टिफिकेट देकर रेखा गुप्ता ने योजना का शुभारंभ किया। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रूपये की सहायता दिल्ली सरकार देगी। आइए आपको दिखाएं इस योजना का लाभ कैसे और दिल्ली के किन किन महिलाओं को मिलेगा।
15: 65 पात्र लाभार्थी हैं जो आज यहां पर उपस्थित हैं, चयनित किया गया है। उन सबकी आकांक्षाएं हैं यहां पर बधाई दें, रक्षाबंधन की मिठाई। आज
2: रक्षाबंधन से ठीक पहले दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया। अब दिल्ली में लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रूपए की सहायता मिलेगी।
16: इस सभागार में बैठी हुई मेरी सभी बहनें एक बार मेरे एक सवाल का जवाब दो, खुश हो? आवाज कम आ रही है मुझे, खुश हो? अरे कहां आवाज आ रही है, खुश हो? बस मैं यही चाहती हूं, मेरी सारी बहनें खुश रहनी चाहिए, उनके चेहरे पे ये मुस्कुराहट बनी रहनी चाहिए। सजी सवरी मेरी ये बहन जिंदगी में हमेशा आगे बढ़े, क्योंकि मैं हूं ना।
2: सरकार के मुताबिक 17 लाख से ज्यादा महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। अब तक इस योजना के लिए 9 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं। आज सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 2500 महिलाओं को अप्रूवल लेटर दिया। दिल्ली सरकार का ये चुनावी वादा था जो अब पूरा होने जा रहा है।
15: और 2500
16: मैं आप सभी को ढेर सारी बधाई देती हूँ, आज के इस दिन की शुभकामनाएं देती हूँ। ये दिल्ली लक्ष्मी योजना जो आज मेरी दिल्ली की बहनों के लिए आप सभी के द्वार पहुंच पाई है, इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, उस माँ को और आप सभी को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए शुभकामनाएं देती हूँ आपके आगे आने वाले जीवन के लिए।
2: दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी ने ऐलान किया था कि अगर उनकी सरकार बनी तो दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं को हर महीने 2500 रूपए दिए जाएंगे। चुनाव जीतने के बाद इसके लिए 5100 करोड़ रूपए का बजट पास किया गया। इस योजना में 1000 रूपए उनके डिजिटल वॉलेट में आएंगे, जबकि बाकी के 1500 रूपए हर महीने FD खाते में जाएंगे। आपको बता दें कि 1 सितंबर से सभी पात्र महिलाओं के बैंक खातों में योजना की 2500 रूपए की मासिक सहायता राशि सीधे ट्रांसफर होनी शुरू हो जाएगी।
17: दिल्ली में बनने वाली भाजपा सरकार अपने वायदे पूरी करेगी। मैं फिर दोहराता हूं, 8 तारीख के बाद जब दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी जो भी वादे आपको किए गए हैं वो सारे के सारे वादे समय सीमा में पूरे किए जाएंगे, ये मोदी की गारंटी है।
18: इस योजना का लाभ देने के लिए कुछ शर्तें हैं, जिसमें महिला की उम्र 21 से 60 साल के बीच होनी चाहिए, परिवार की कुल आय 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एक परिवार से एक ही महिला को लाभ मिलेगा, महिला कम से कम 10 साल से दिल्ली की स्थायी निवासी हो, महिला के खिलाफ कोई आपराधिक केस दर्ज नहीं होना चाहिए, महिला के 3 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, परिवार साल में 2400 यूनिट से ज्यादा बिजली ना खर्च करता हो, महिला या परिवार जीएसटी या इनकम टैक्स ना भरता हो, घर में कार नहीं होनी चाहिए, परिवार से कोई सरकारी नौकरी में ना हो या रिटायर ना हुआ हो।
19: कि ज्यादातर महिलाएं इस योजना से बाहर कर दी गई हैं, इस योजना के अंदर इतनी सख्त नियम लगाए गए हैं कि ये योजना लगभग किसी को ना मिले।
20: जो वादा प्रधानमंत्री जी ने किया था, मुख्यमंत्री जी ने किया था, वो वादा आज पूरा किया है दिल्ली सरकार ने 1 साल के अंदर। आज दिल्ली की जनता ने, दिल्ली की बहनों ने और देश की बहनों ने ये देख लिया कि कैसे वादा पूरा किया जाता है। इसी दिल्ली में 10 साल तक केजरीवाल ने और उनके लोगों ने बहनों के फॉर्म भरवाए, नकली फॉर्म भराए जाते थे बस्तियों में जा जाके, और फॉर्म भरा के उनका डेटा ले लिया जाता था, बाद में डेटा भी बेच दिया जाता था, और किसी बहन के खाते में 10 साल कोई पैसा नहीं आया दिल्ली के।
21: लगभग 6.5 लाख के आसपास रजिस्ट्रेशन जो है वो इस पूरी योजना के तहत महिलाओं का हुआ है, लेकिन आज पहली अप्रूवल लेटर्स जो है वो 2500 महिलाओं को जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से दिए गए हैं। इसमें मैं बता दूं कि 2025 के चुनावों से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली के जरिए इस योजना के लिए महिलाओं के सामने अपनी बात रखी थी, और उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है, उसी गारंटी पर आज दिल्ली सरकार ने कहीं ना कहीं अपनी मोहर जो है वो लगाई है, और महिलाओं को 2500 रुपए की अप्रूवल लेटर्स जो है वो बांटे गए हैं, और 1 सितंबर से इस योजना के तहत महिलाओं के खाते में पैसा जो है वो ट्रांसफर किया जाएगा।
18: दिल्ली लक्ष्मी योजना के आवेदन अभी खुले हुए हैं। सरकार ने तय किया है कि करीब 17 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। अभी 9 लाख से ज्यादा महिलाओं ने ही आवेदन किया है। आज तक ब्यूरो।
12: और आइए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे रक्षाबंधन के एक विज्ञापन से शुरू हुआ विवाद अब राजनीतिक अखाड़े तक पहुंच गया। एक तरफ अभिनेत्री और बीजेपी की सांसद कंगना रनौत हैं, जिन्होंने कृति सेनन के कपड़ों और विज्ञापन की थीम पर सवाल उठाए। अब इस विवाद में राहुल गांधी की एंट्री हुई। राहुल ने कृति सेनन के समर्थन में कहा कि महिला क्या पहनती है, क्या करती है, कहां जाती है, ये महिला की अपनी पसंद।
22: आपकी साथी कलाकार हैं, आपकी इंडस्ट्री से ये लड़कियां आती हैं, ये भी होनहार हैं, आप भी बड़ी अच्छी अदाकार, आप भी बड़ी होनहार अदाकारा हैं। आप जो अब कर रही हैं, उनके कपड़ों पे कमेंट करना, उनकी लाइफस्टाइल पे कमेंट करना, किसी की वेशभूषा पर बोलना, ये दिखाता है कि आपकी कितनी मिसोजिनिस्ट, कितनी पितृसत्ता वाली सोच है आपकी। और इसी पितृसत्ता सोच के खिलाफ राहुल जी कहते हैं स्मैश द पेट्रियार्की। आप ये काम अभी तक आदमी कर रहे थे तो बुरा लगता था और इसके खिलाफ हम खड़े थे, अब देश की चुनी हुई महिला सांसद जो फिल्म इंडस्ट्री से आती हैं, और आप तो बहुत खूबसूरत हैं और आपने तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने और उससे ज्यादा ग्लैमरस कपड़े पहने, और इसमें अच्छी कोई बुरी बात नहीं है।
23: कौन क्या पहने ये उसका निजी अधिकार जरूर है, पर किसी व्यक्ति विशेष की रीति रिवाजों को लेकर, धर्म की रूढ़ी परंपराओं को लेकर, अपने पहनावे के कारण यदि किसी की श्रद्धा आस्था अगर आहत होती है तो इसका समर्थन कैसे हो सकता है। पर आमतौर पर फिल्मी जगत में देखा गया है कि ओछी पब्लिसिटी पाने के लिए जानबूझ करके ऐसा इस प्रकार से कंट्रोवर्शियल बातें करते हैं, तो ये ओछी पब्लिसिटी के आड़ में आप किसी की श्रद्धा आस्था आहत नहीं कर सकते।
12: दस्तक में एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, लौट कर आएंगे तो दस्तक के अगले हिस्से में आपको दिखाएंगे नेपाल में जल प्रलय। आप देखते रहिए दस्तक।
24: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
25: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
26: पापा
0: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
1: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
0: छक्का?
1: सब कैशलेस हो गया है।
0: हाँ ला भाई मेरा बैट, वो अभी तो ठीक हुआ तू।
4: चार्ज हुआ यार।
0: बैट किसका है?
5: टाटा AIG है तो भरोसा है।
6: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the cola

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: एक दो
3: विश्राम।

0: सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: हीरे के लिए मुझे भरोसा है सिर्फ सेनको गोल्डन डायमंड्स पर, क्योंकि सिर्फ सेनको देता है सर्टिफाइड डायमंड्स, बायबैक फैसिलिटी और 100% एक्सचेंज वैल्यू, साथ में लाइफ टाइम मेंटेनेंस, फ्री इंश्योरेंस। तो आप डायमंड्स खरीदने से पहले सेनको में जरूर आना।
3: कुछ भी खा नहीं पा रहा हूँ, बहुत अपसेट हूँ।
4: No added sugar, preservative के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
5: लायन डेट नट बाइट्स।
6: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
7: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं?
8: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
9: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: आगे आगे
4: अरे उधर
3: करेक्ट करेक्ट
5: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: इन एसोसिएशन विद
1: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।
2: काली पहाड़ियों के बीच उफनता मलबे का गुबार, अचानक तेज आवाज के साथ पानी का भीषण सैलाब और देखते ही देखते नेपाल में तबाही आ गई। तिब्बत की तरफ से अचानक आए फ्लैश फ्लड ने नेपाल के रसुवा में देखते ही देखते सब कुछ अपनी चपेट में ले लिया। बारिश ने पहाड़ की पकड़ ढीली की, मिट्टी खिसकी, पत्थर टूटे और फिर शुरू हुआ मलबे का वो सैलाब जिसने रास्तों को देखते ही देखते निकल लिया। नेपाल के टिमुरे बाजार को संभलने का मौका नहीं मिला। सारा इलाका भीषण लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड की चपेट में आ गया। नेपाल पुलिस की तरफ से किए गए ट्वीट में इस वीडियो में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की तरह आसमान से सैलाब आता दिखाई दे रहा है और अपने रास्ते में उसे जो मिला उसे बहाता चला गया। अचानक आए सैलाब ने बाजार, सड़कें, पुल, गाड़ियां और बिजली परियोजनाओं को अपनी चपेट में ले लिया। नेपाल में रसुवा की तबाही के बाद अब त्रिशूली नदी के किनारे बसे इलाकों में खतरा और भी बढ़ गया। इस बीच नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और नेपाली कांग्रेस के नेता शेर बहादुर देउवा ने लोगों से तुरंत सतर्क रहने और सुरक्षित जगहों पर रहने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: आप देख रहे हैं दस्तक, आपके साथ मैं हूँ सईद अंसारी। स्वागत एक बार फिर से आपका। और अब खबर नेपाल में आई जल प्रलय की। जहां नेपाल में तिब्बत से आई अचानक बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाकर रख दी। तस्वीरें ऐसी कि देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रूह कांप जाती है। इस बाढ़ से 11 हाइड्रो पावर प्लांट्स पूरी तरह से तबाह हो गए। 11 हाइड्रो पावर प्लांट्स को नुकसान से 431 मेगावाट बिजली उत्पादन बंद हो गया। बाढ़ से 19 पुल 40 किलोमीटर सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई। बैंक्स, फाइनेंशियल संस्थानों के आधा दर्जन से अधिक ऑफिस बाढ़ की चपेट में आ गए। 25 से अधिक टेलीकम्युनिकेशन साइट्स बर्बाद हो गई। तिमुरे, सियाफ्रबेसी, नुवाकोट इलाकों में मोबाइल टावर और साइट क्षतिग्रस्त हुए। आइए दिखाएं आपको, नेपाल में प्रलयंकारी बाढ़ ने बुनियादी ढांचे को ध्वस्त करके रख दिया, सैकड़ों जान ले ली।
3: Yeah.

0: ये सबसे खतरनाक तस्वीरें हैं। नेपाल के त्रिशूली बाजार, ऊपर से पानी आ रहा और नीचे तबाही मची।
1: ओ हो, पूरा डैम फूट रहा है यार, पूरा चाइना को डैम फूट रहा है।
0: अचानक से पानी की रफ्तार तेज होती है और पुल के ऊपर से पानी बहने लगता है। पूरा का पूरा पुल ही टूट कर बह गया। साफ तबाही दिख रही है, सब कुछ बर्बाद करता हुआ ये फ्लैश फ्लड आगे बढ़ता जाता है। और ये उसके बाद का वीडियो है, देखिए पहले ये त्रिशूली बाजार कैसे दिखता था और अब क्या हाल हो गया है। सब कुछ बर्बाद, यहाँ घर थे, होटल थे, स्कूल थे, सब कुछ खत्म हो गए, सिर्फ और सिर्फ बर्बादी के निशान दिख रहे हैं। अब जरा इन दो तस्वीरों को देखिए और समझिए कि कैसे ये त्रिशूली बाजार बर्बाद हो गया। जब ये बाढ़ आई तो उसकी भयावहता तो दिख ही रही है, लेकिन ये भी समझ में आ रहा है कि ये एक भरा पूरा बाजार था जहाँ सब कुछ था, होटल, स्कूल, रिहायशी इलाके। और दूसरी तस्वीर में आपको तबाही दिख रही है, सब कुछ खत्म हो गया। नदी के किनारे रहने वाले लोगों के घर तो पूरी तरह से तबाह हो गए। अभी तो ये भी नहीं पता कि यहाँ कितने लोग बहे होंगे। ये फ्लैश फ्लड कितनी तबाही लेकर आया ये इन तस्वीरों से समझिए। पानी की लहरें बड़ी बड़ी इमारतों से भी बहुत ऊंची उठ रही हैं। ये नेपाल का रसुवा इलाका है, देखिए पानी की कितनी ऊंची लहरें हैं। ये इस तबाही का एक और खतरनाक वीडियो है, ये धाड़िंग का बताया जा रहा है जहां ये पुल ऐसे बह गया जैसे कि कागज का रहा हो। इतने फोर्स से पानी आया कि पूरा का पूरा पुल ही बह गया। पानी के साथ बहुत सा कचरा भी दिख रहा है। देखिए कैसे अचानक से यह फ्लैश फ्लड अपना रास्ता बदल कर आया। ये तस्वीरें नेपाल के रसुवागढ़ी में चीन के केरूंग बॉर्डर की है जहां पर कस्टम ऑफिस भी है। यहां से नेपाल में सामान आता है, कंटेनर आते हैं और इसी रास्ते से मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले यात्री भी जाते हैं। सीसीटीवी की तस्वीरों में तारीख आज की है यानी 26 अगस्त। लोगों के बीच अफरा तफरी मची हुई है और पीछे से फ्लैश फ्लड आ रहा है। यहाँ पर पूरा कस्टम ऑफिस है, अचानक से पूरा फ्लैश फ्लड आता है और सब कुछ खत्म करते हुए आगे बढ़ जाता है। ये लोग जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे वो नहीं बच पाए। बाद में पूरी की पूरी बर्बादी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। पीछे से भारी मात्रा में पानी और मलबा दिख रहा है और आता ही जा रहा है। ये इसी कस्टम पॉइंट का एक और सीसीटीवी वीडियो है। पहले तो सब कुछ सामान्य लग रहा है, बगल में एक छोटी सी नदी बह रही है, 10-12 बसें भी दिख रही हैं, एक दफ्तर दिख रहा है। अचानक से ऊपर से कुछ हलचल होती है या शोर होता है, लोग दौड़ने लगते हैं। देख सकते हैं कि कैसे लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। और फिर दिखता है फ्लैश फ्लड, पूरा पानी और मलबा आता है और सब कुछ तबाह करके चला जाता है। सारी बसें ऐसे बहती हैं जैसे कोई फिल्मी सीन। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने खोज और बचाव कार्य के निर्देश दिए हैं। तिब्बत के केरूंग पोर्ट पर बुधवार की सुबह ये फ्लैश फ्लड आया था। ये फ्लैश फ्लड कोई सामान्य नहीं था, ये नेपाल चीन बॉर्डर से करीब 190 किलोमीटर दूर चितवन की तस्वीरें हैं। और इन तस्वीरों में पानी का फोर्स और उसकी तबाही साफ दिख रही है। सामने बहुत बड़ी भगवान बुद्ध की मूर्ति है और पानी बिल्कुल मूर्ति के आधे आ गया है। ये समझा जा सकता है कि इसकी रफ्तार कितनी तेज है। अब जरा आसमान से देखिए कि कैसे तबाही मची हुई है। ये तस्वीरें नेपाली सेना ने जारी की हैं, हेलीकॉप्टर से ली हुई हैं। सब कुछ तबाह दिख रहा है। इस तबाही का एक और वीडियो रसवा में त्रिशूली नदी के पास का है, जब ये बाढ़ आई तब का वीडियो है। आगे एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट दिख रहा है और नीचे कुछ मजदूर काम कर रहे हैं, तभी अचानक से ऊपर से पानी आ गया, मजदूर भागने लगे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, इतना फोर्स से पानी आया कि ये पूरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट टूट गया और ये मजदूर बह गए। आज तक भी
2: और आपको अब हम मैप और तस्वीरों के द्वारा तबाही का पूरा रूट समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर तिब्बत के नुबाइन हिमालय ग्लेरियर को गंडक का उद्गम माना जाता है, जो कि नेपाल के भोटो कोशी के नाम से जाना जाता है। ऐसी आशंका व्यक्त की गई कि भोटो कोशी बेसिन में ग्लेशियर झील फटी, तबाही मची। आंकड़ों के अनुसार भोटो कोशी बेसिन में करीब 122 ग्लेशियर झील हो सकती है, इन्हीं में से कोई एक ग्लेशियर झील फटी और उसी आशंका है, जिसके बाद तबाही की पहली तस्वीर नेपाल चीन बॉर्डर के ग्योरोंग पोर्ट से आई, जहां भूस्खलन के बाद बाढ़ की रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें आपने देखी, और उसके बाद नेपाल के रसुआ से तबाही की तस्वीर आई, फिर भोटो कोशी आगे आकर नुवाकोट में तबाही मचाती है, जिसके बाद भारत में आने वाले वाल्मीकि नगर गंडक डैम के सारे 29 गेट खोल दिए गए। वहीं गंडक के रूट में आने वाले बिहार के जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया, जिनमें पश्चिमी पूर्वी चंपारण गोपालगंज सारण वैशाली जिले आते हैं। यहां से आगे गंडक नदी गंगा नदी में मिल जाती है। नुकसान बहुत हुआ है, लेकिन अभी तक कोई अनुमान नहीं लग पा रहा कि प्रलय से आखिर कितना नुकसान हुआ। 133 भारतीय जो लापता बताए जा रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि ये सभी भारतीय मानसरोवर के तीर्थ यात्री थे, क्योंकि नेपाल से मानसरोवर यात्रा के रूट में ही ये फ्लैश फ्लड आया, जिसकी शुरुआत नेपाल चीन बॉर्डर से हुई। ऐसा भी कहा जा रहा है कि वहां कोई ग्लेशियर फटा है, जिसके बाद ये बाढ़ आई, और ये भी कहा जा रहा है कि लैंडस्लाइड के कारण नदी का रास्ता रुक गया, जिसके कारण पानी जमा हुआ और फिर अचानक से वेग के साथ पानी निकला बाढ़ के रूप में।
0: ये नेपाल के नुवाकोट की ड्रोन तस्वीरें, तबाही के निशान साफ साफ दिख रहे हैं। नदी किनारे पूरी बस्ती थी, अब कुछ एक घर ही बचे हैं। ऐसा लगता है कि नदी अपने साथ सब कुछ बहाती हुई ले गई, पूरा सपाट कर दी। और ये नेपाल के रसवा की एरियल तस्वीरें, पूरी की पूरी घाटी में नदी से हुई बर्बादी साफ दिख रही है। नेपाल की सेना कैसे बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर रही है, ये इन तस्वीरों से समझिए। यहां एक लड़का छत पर था, वो निकल नहीं पाया और यहीं फंस गया। यहां हेलीकॉप्टर उतारने की जगह नहीं थी, तो छत के ऊपर हेलीकॉप्टर कुछ देर के लिए स्थिर रहा और वहीं पर उसका रेस्क्यू किया गया। अंदर से नेपाली सेना के जवान ने हाथ बढ़ाया, इस युवक ने थामा और इस तरह से उसे बचाया। ये तबाही का एक और वीडियो है, पूरी घाटी है, सामने से नदी बह रही है जिसकी रफ्तार बहुत कम है और पानी भी कम है, लेकिन तभी अचानक से ऊपर से पानी का गुबार आता दिख रहा है। साफ दिख रहा है कि पानी सब कुछ बर्बाद करता हुआ आगे बढ़ रहा है। एक ट्रक वाला भी सड़क पर है, जो पानी की रफ्तार देखते हुए और तेजी से भागने लगा, लेकिन पानी की रफ्तार से जीत नहीं पाई। पानी की ऊंची ऊंची लहरें बहुत तेजी से बढ़ रही थी। पीछे से और तेज गति से पानी आ रहा था, और इसी में कुछ और लोग फंसे हुए दिखाई दिए जो पैदल चल रहे थे। वो भी पूरी रफ्तार से भागने और बचने की कोशिश कर रहे थे। दूर से बनाए गए इस वीडियो में पानी बहुत नजदीक दिख रहा है, लेकिन असल में यह बहुत दूर था। पीछे से पूरा मलबा आ रहा था। पानी का फोर्स इतना तेज था कि ऐसा लग रहा था जैसे ये बहुत नजदीक हो। ऐसे ही पूरी की पूरी घाटी इस फ्लैश फ्लड से बर्बाद हुई। ये इस तबाही का एक और वीडियो है, ये भी बहुत दूर से बनाया गया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बम विस्फोट हुआ हो, जिसके बाद धुएं का गुबार उठा हो, लेकिन असल में ये पानी का बहाव था जो इतना तेज था कि आसपास सब कुछ बर्बाद करता हुआ आगे बढ़ रहा था। देखिए कैसे बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई। नेपाल में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि जहां ये बाढ़ आई है इस त्रिशूली नदी पर बहुत से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स चल रहे थे जो पूरी तरह से तबाह हो गए। नेपाली मीडिया के मुताबिक लांगटांग खोला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में काम करने वाले 60 लोग लापता हैं। इनमें 25 इंजीनियर, ड्राइवर और किचन स्टाफ है। इसके अलावा 35 वर्कर हैं जो टनल के अंदर काम कर रहे थे। फ्लैश फ्लड के बाद उनका भी कुछ पता नहीं चल रहा। इसके अलावा तिमूर में रसवा कस्टम ऑफिस में काम करने वाले 15 कर्मचारी भी मिसिंग हैं। बाढ़ की तबाही इतनी भीषण है कि बड़े बड़े पुल टूट गए। ये चितवन में त्रिशूली नदी पर बना पुल है, देखिए क्या हाल हो गया है। आज तक
2: नेपाल में आई भयंकर तबाही में करीब 463 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। इनमें भारत के 133 लोग हैं, नेपाल के 49 लोग, अमेरिका के 47 लोग लापता हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के 34 लोग भी हैं, यूके के 33 पर्यटक हैं, कनाडा के 24 लोग लापता हैं, मलेशिया के 19 लोग लापता हैं, कनाडा के बाद 19 लोग मलेशिया के लापता हैं, और जापान, यूक्रेन, सिंगापुर, फ्रांस, इसराइल के पर्यटक भी लापता हैं, लेकिन सबसे ज्यादा 133 हमारे देश भारत के। नेपाल में आई बाढ़ के बाद बिहार में भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। इसे लेकर बिहार सरकार ने अलर्ट जारी किया। बिहार के उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। विजय चौधरी ने कहा कि आप घबराएं नहीं, अगले 5 से 6 घंटे यानी कि पूरी रात अलर्ट है। समस्या पहले से बड़ी है, लेकिन फिलहाल हमारे नियंत्रण में है।

0: नेपाल की इन खौफनाक तस्वीरों ने बिहार के जिलों में दहशत भर दी है, क्योंकि नेपाल से आने वाला पन बिहार के कई जिलों की जिंदगानी को खतरे में डाल सकता है। इसलिए बिहार में कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है।
1: नदी के किनारे तथा बाढ़ प्रभावित होने वाले क्षेत्रों के निवासी आवश्यक सावधानी बरतें और अपने परिवार, बच्चों, बुजुर्गों एवं पशुओं को सुरक्षित स्थान पर रखने की तैयारी रखें।
0: नेपाल में फ्लैश फ्लड के खतरे को देखते हुए कोसी और गंडक नदी बेसिन से जुड़े जिलों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण और वैशाली में अलर्ट है। सुपौल, सहरसा, मधेपुरा और अररिया जिले में भी अलर्ट है। सरकार कह रही है कि खतरा तो है, मगर सरकार ने सतर्कता के पूरे इंतजाम कर लिए हैं।
2: ये जो पानी आ रहा है, इसमें हम लोगों का आकलन है कि लगभग 1.5 लाख क्यूसेक तक अतिरिक्त पानी आ सकता है, तो फिर 2.5-3 लाख से अधिक पानी नहीं जाएगा। तो या जितना 2.5-3 लाख आने की संभावना है, उस हिसाब से सतर्कता के सभी काम हम लोगों ने कर लिए हैं।
1: अभी सूचना प्राप्त हो रही है कि नेपाल में नदी में भूस्खलन आ जाने के कारण गंडक नदी का बहाव अगले आधे घंटे में काफी तेज होने की संभावना है।
0: बगहा में लोगों को अलर्ट किया जा रहा है, अनाउंस किया जा रहा है कि लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं, तैयारियां तेज हैं। एसएसबी ने भारत नेपाल सीमा पर तैनात अपनी यूनिट्स को अलर्ट जारी किया है। राहत बचाव के लिए 11 टीमों को अलर्ट किया गया है। 7 अतिरिक्त टीमें स्टैंड बाय पर रखी गई हैं। भारत नेपाल सीमा पर तैनात बटालियन को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। सरकार कह रही है कि स्थिति को नियंत्रण से बाहर नहीं जाने देंगे।
2: स्थिति तो थोड़ी कठिन है, लेकिन अभी का जो अनुमान है पानी आने का, वो हम लोगों के हिसाब से स्थिति को हम लोग नियंत्रण से बाहर नहीं जाने देंगे।
0: बिहार की सरकार कह रही है कि घबराने की जरूरत नहीं है, बस सतर्क रहने की आवश्यकता है।
2: लोगों से हम लोगों ने सरकार की तरफ से अपील की है कि अभी घबराने की जरूरत नहीं है, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सतर्क रहना है।
0: बिहार के अलावा यूपी के महाराजगंज, कुशीनगर में भी अलर्ट जारी किया गया है। सतर्कता पूरी है, उम्मीद कीजिए कि नेपाल से आई तबाही भारत में कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। आज तक ब्यूरो
3: दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: AU! सोच बदलो और बैंक भी।

0: यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की युवाओं के साथ ये सेल्फी बता रही है कि कैसे वो जेन जी के साथ कनेक्ट होने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। अब लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नियुक्ति वितरण कार्यक्रम में पहुंचते हैं और ऐलान करते हैं कि वो अगले 6 महीने में 1,00,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे।
1: मैं प्रदेश भर के युवाओं को इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूं कि अगले 6 महीने के अंदर, नोट करिए, अगले 6 महीने के अंदर 1,00,000 नौजवानों को फिर सरकारी नियुक्ति पत्र अलग अलग स्टेज में हर सप्ताह उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। 1,00,000 सरकारी नियुक्ति पत्र हम देने जा रहे हैं।
0: आपको बता दें कि अगले 6 महीने में जिन 1,00,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने का ऐलान योगी कर रहे हैं, इनमें यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी SSSC, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट और लोअर PCS जैसी भर्तियां शामिल हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के तहत 32,689 कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा का रिजल्ट 31 जुलाई को जारी हुआ था। इसमें 76,000 उम्मीदवार पास हुए हैं। इसके बाद 17 अगस्त से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अनुसार कांस्टेबल भर्ती का फिजिकल टेस्ट सितंबर में आयोजित किया जाएगा, जबकि यूपी SSSC एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप सी भर्ती प्रक्रिया भी चल रही है। इसकी आंसर की 11 अगस्त को जारी हुई थी। इसके तहत कुल 2759 पदों पर भर्ती होगी। इसकी लिखित परीक्षा का रिजल्ट जल्द जारी होने की उम्मीद है। सीएम योगी ने कृषि विभाग के 3,446 टेक्निकल असिस्टेंट और 126 मंडी सचिवों की नौकरी के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में ये घोषणा की। इतना ही नहीं, इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को भी निशाने पर लिया
1: और उस समय की सरकारों में बैठे हुए सरकारी तंत्र में भ्रष्ट
0: सीएम योगी ने सीधे तौर पर 2017 से पहले नौकरियों को लेकर चाचा भतीजे को टारगेट किया।
1: हमने पहले दिन से तय कर रखा है कि जो 17 के पहले की परिपाटी थी कि नियुक्ति का विज्ञापन निकलता था, चाचा भतीजे की जोड़ी और महाभारत का पूरा खानदान फिर वसूली के लिए प्रदेश भर में निकल पड़ता था। नौजवान भटकता रहता था, परिणाम नहीं आता था और अंततः माननीय न्यायालय को कोर्ट में स्टे लगाना पड़ता था।
0: योगी एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं। एक तरफ तो जेन जी वोट बैंक को साध रहे हैं, दूसरी तरफ चुनावों के मद्देनजर समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं।
2: जब वो नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, बच्चे उनसे पूछ रहे हैं कि नौकरियां कहाँ हैं, तो उन्हें 10 साल पहले का चाचा भतीजा याद आ रहा है, साबू याद आ रहा है, विक्रम बेताल याद आ रहा है। ये विक्रम बेताल, चाचा भतीजा याद करने से क्या नौकरी मिल जाएगी बच्चों को? योगी आदित्यनाथ जी, 69,000 शिक्षक सुप्रीम कोर्ट में आपने लटका रखे, 68,500 आपने कोर्ट में लटका रखे, जिनको आपने नौकरियां दे चुके हैं, पुरानी सरकारें दे चुकी, उनको भी आपने लटका रखा।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब से कुछ ही क्षणों में वारदात लेकर हमारे साथी शम्स होंगे आपके साथ। आप देखते रहिए आज तक।
2: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय वेक्टर्स, भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले वाटर टैंक्स, टंकी मतलब वेक्टर्स।
0: प्रेजेंटेड बाय
3: पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

250 से ज्यादा लापता, इसमें 133 भारतीय शामिल। चीन में भी सैलाब से बहे 265 लोग। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाली पीएम बालिन शाह से बात की। अलर्ट पर बिहार और पूर्वी यूपी, राहत और सामग्री के साथ रवाना भारतीय एयरफोर्स के विमान। संसद का विशेष सत्र बुलाने का संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इशारा किया। इंडिया टुडे के खास बातचीत में कहा, संसद में महिला आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री मोदी गंभीर, इस दिशा में काम जारी। बीजेपी के इस हमले के बाद अब मुस्लिम महिलाओं ने राहुल गांधी को घेरा। हिजाब को लेकर दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन, हिजाब पर चुप्पी का विरोध। और यूपी के शामली में यूट्यूबर हरियाणवी गायक अंकित बालियान की गोली मारकर हत्या। जिम से बाहर निकलते ही ताबड़तोड़ फायरिंग, हमलावर फरार।

नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। चोर उचक्कों के साथ भी अमूमन ऐसा नहीं होता कि आज पकड़े, कल जमानत मिल गई और परसों छोड़ दिया। लेकिन लखनऊ में तो कमाल ही हो गया। हत्या की कोशिश जैसे संगीन इल्जाम में लखनऊ पुलिस शुक्रवार को 3 लोगों को गिरफ्तार करती है। शनिवार को पुलिस की जानकारी के बिना ही अदालत तीनों को जमानत दे देती है और रविवार को तीनों जेल से रिहा हो जाते हैं। वो तो रिहाई के बाद रिहाई का जश्न बनाते हुए अगर तीनों अपना वीडियो खुद न बनाते और उसे सोशल मीडिया पर न डालते तो लखनऊ पुलिस को उनकी रिहाई की भनक तक नहीं लगती। वाकई कमाल है यूपी पुलिस। बातें ऐसी ऐसी कि बस पूछिए मत। भौकाल ऐसा दिखा दे कि ना चाहते हुए भी दिल यकीन करने को मजबूर हो जाता कि सचमुच यूपी में मुजरिमों के दिलों में इनके लिए कितना खौफ। बात बात पे गोली चलाकर ये हर दिन इन लंगड़ाती तस्वीरों के जरिए उसी खौफ की नुमाइश करते फिरते। गोली चलाते चलाते शायद यूपी पुलिस अब ये भूलती जा रही है कि कानून, अदालत या जेल नाम की भी कोई चीज होती है। अगर किसी को पकड़ा है, कोई मुकदमा लिखा है, किसी को कोर्ट के रास्ते जेल भेजा है तो उसकी जानकारी भी रखनी चाहिए। मगर नहीं, जब काम गोली से चल रहा है तो इतनी मेहनत कौन करे। ये लखनऊ में मौजूद लखनऊ जेल है। आज इस जेल के बाहर की एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूँ जिसे देखने के बाद कायदे से पूरी यूपी पुलिस का शर्मिंदा होना बनता है। ये तस्वीर इसी 23 अगस्त यानी संडे की है। लखनऊ जेल के बाहर 3 गाड़ियों में कुछ लोग पहुंचते हैं। इसके बाद इसी जेल से एक एक कर 3 लोग बाहर आते हैं। बाहर उनके स्वागत के लिए बाकायदा उन्हें रिसीव करने आए लोग फूलों की माला पहनाकर उनका वेलकम करते हैं। फिर बाकायदा जेल के मेन गेट के सामने फोटो सेशन होता है, तस्वीरें उतारी जाती है। इसके बाद जेल से बाहर निकले 3 कैदी अपनी अपनी मालाएं गले से उतार कर गाड़ी के साइड मिरर पर टांग देते हैं। फिर फर्राटे मारती 3 गाड़ियां जेल के बाहर से निकल जाती है। शायद जेल से जाते हुए रास्ते में ही इन्हीं में से कोई एक जेल के बाहर शूट किए वीडियो को एडिट करता है, उसमें म्यूजिक डालता है, फिर उसे सोशल मीडिया पर डाल देता है। अब पूरा सीन वीडियो में कुछ इस तरह दिखाई पड़ता है।

0: अब यहाँ तक तो ठीक था, पर गड़बड़ तब हुई जब मोबाइल मोबाइल तैरते कूदते उछलते यही वीडियो लखनऊ पुलिस के मोबाइल में दस्तक देती है। जेल से निकले उन तीन कैदियों के चेहरे देखते ही अब बारी लखनऊ पुलिस के उछलने की थी। पहले तो उन्हें इस वीडियो पर यकीन ही नहीं हुआ, फिर जेल समेत इधर उधर फोन घुमाने के बाद उन्हें यकीन करना पड़ा कि ये तीनों कैदी आजाद हो चुके हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें ऐसी बड़ी बात क्या है, तो जब आप बात सुनेंगे तो खुद ही कहेंगे कि ये क्या बात हुई। हत्या की कोशिश के मामले में जहां 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा है, उसी इल्जाम में इन तीनों को लखनऊ पुलिस शुक्रवार को गिरफ्तार करती है, कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट तीनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज देती है। पुलिस घर लौट आती है। उधर पुलिस घर लौटती है, इधर अगले दिन यानी शनिवार को तीनों चुपके से कोर्ट पहुंचते हैं, जमानत मांगने। जज साहब तीनों को जमानत भी दे देते हैं। जमानत के कागजात शनिवार देर शाम इसी लखनऊ जेल में पहुंच भी जाते हैं। फिर अगले दिन यानी संडे को तीनों इसी तरह धूमधाम से जेल से बाहर निकल जाते हैं। अब हुई ना बात, बात ये कि शुक्रवार को गिरफ्तारी हुई, शनिवार को जमानत और रविवार को रिहाई। पर बात अब भी पूरी नहीं हुई। असल बात तो ये है कि ये तीनों गिरफ्तारी के अगले ही दिन कब कोर्ट पहुंचे, कब जमानत की अर्जी दी, कब जमानत मिली और कब जेल से रिहा हो गए, लखनऊ पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी।
1: लखनऊ पुलिस ने बीते शुक्रवार यानी 21 अगस्त को नदवा के मौलाना की हत्या की साजिश रच रहे दो शूटर और उसके करीबी मैनेजर के समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। लखनऊ पुलिस ने दावा किया कि नदवा के मौलाना की हत्या जैसी वारदात को उसने रोक लिया, लेकिन यही लखनऊ पुलिस इस हत्याकांड की कोशिश साजिश में शामिल शूटरों को मुहैया कराने वाला, उनको सुपारी देने वाला और साजिश में शामिल दो वकीलों को 24 घंटे भी जेल में नहीं रोक पाई। शुक्रवार को जेल भेजे गए और शनिवार की देर रात उनको बेल मिल गई और अब वो सोशल मीडिया पर अपनी जेल से रिहाई के वीडियो वायरल कर रहे हैं। फिलहाल कानूनी दस्तावेजों में भी गिरफ्तार किए गए दोनों ही वकीलों पर आधा दर्जन से अधिक मुकदमे लखनऊ के वजीरगंज और हजरतगंज थाने में दर्ज हैं। यह अलग बात है कि अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में बेल देने से पहले ना तो पुलिस से कोई आख्या मांगी गई और ना ही कोई पत्राचार किया गया, जिसकी वजह से पुलिस को पता ही नहीं चला कि एक हत्या की साजिश रचने वाले वकील और शूटरों को मुहैया कराने वाले बिचौलिए को जमानत मिल गई।
0: असल में पूरी बात यह है कि नदवा के एक मौलाना इरफान अहमद रिजवी के कत्ल की साजिश रची गई थी। इसके लिए बाकायदा दो शूटर हायर किए गए थे, पिस्टल का इंतजाम हो चुका था, यहाँ तक कि मौलाना की रेकी भी हो चुकी थी, लेकिन तभी हजरतगंज पुलिस को इसकी भनक लग गई। पुलिस ने वक्त रहते दो शूटरों को गिरफ्तार कर लिया। इनसे पूछताछ के बाद साजिश में शामिल बाकी 4 आरोपियों को भी शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया।
2: दो लड़के जो है मोहम्मद शाहिद और मोहम्मद जमीर नाम के बच्चे, इसमें एक पिस्टल उसके साथ साथ एक मोटरसाइकिल जो कि चोरी की रही मोटरसाइकिल, उसके अलावा 5 कारतूस के साथ वहां हजरतगंज की पुलिस टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया था उनको। और इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत करते हुए 19 तारीख को उनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करते हुए रिमांड पर भेजा गया था। पूछताछ के दौरान इनके द्वारा बताया गया कि एक अमान कुरैशी नाम के व्यक्ति के द्वारा इनको एक इरफान नाम का व्यक्ति जिसको टकला का उन्होंने अपना एक कोड वर्ड
3: दिया
2: और उस पर जो है उसकी हत्या के संबंध में इनके द्वारा पिस्टल वगैरह दी गई है। जो उस घटनाक्रम में अमान कुरैशी भी वांछित था जिसकी गिरफ्तारी 21 तारीख को की गई। जब कड़ियां जोड़ी गई तो उसके साथ ये पता चला कि एक सुहेल और उसके साथ साथ जो है फरहान दो अधिवक्ता जो है जो आपस में साले बहन हुए भी हैं, इनके द्वारा जो है अमन कुरैशी के माध्यम से सहायता लेते हुए जो एक मदरसा संचालक हैं बिलाल नाम के द्वारा इरफान की हत्या की साजिश रची गई थी जिसमें 2 लाख रुपए की सुपारी भी दिए जाने की बात थी और उन्हीं की इरफान जो रिवेरा कॉलोनी के ही निवासी हैं उन्हीं की हत्या के संबंध में ये पूरा षड्यंत्र रचा गया था।
0: यानी मौलाना की सुपारी देने वालों में बकौल पुलिस 2 वकील भी थे जो रिश्ते में साले बहनोई लगते हैं, सुहैल अहमद और मोहम्मद फरहान सिद्दीकी। दोनों शूटरों को इन लोगों ने बाकायदा 2 लाख रुपए की सुपारी दी थी। साजिश ये थी कि जिम से निकलते वक्त मौलाना को गोली मारी जाए।
2: ये घटनाक्रम के बारे में इन्होंने पूरी जानकारी लगभग 1 महीने से करना शुरू की थी जो पूछताछ में इन लोगों के द्वारा बताया गया। इन लोगों के पास इस बात की जानकारी थी कि ये जिस व्यक्ति के हत्या के लिए इन्होंने किया है सुपारी ली है वो व्यक्ति जिम से वापस लौटता है, जिम करने के बाद वापसी के दौरान उसकी हत्या करने की इन लोगों के द्वारा बात बताई गई और लगभग 1 महीने से इस पर इनकी प्लानिंग चल रही थी। इसके संबंध में इन लोगों के द्वारा थाना क्षेत्र गाजीपुर से एक मोटरसाइकिल भी चोरी की गई थी जो बरामद हुई है जिसके संबंध में पूर्व सहित थाना गाजीपुर पर मुकदमा भी पंजीकृत है।
0: असल में मौलाना इरफान के मदरसे और प्रॉपर्टी पर आरोपियों की नजर थी। इरफान के कत्ल के बाद वो उनकी संपत्ति हड़पना चाहते थे।
2: देखिए ये सब प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ मामला है जिसमें ये जो बिलाल है बिलाल को ये मदरसे की प्रॉपर्टी और जो उनकी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी जो इरफान की इनके पिता के समय से उनके जुड़ा हुआ व्यक्ति है, सारी चीजों को जानने वाला व्यक्ति है तो कुल मिला जुला के संपत्ति का संबंध में ही उसकी चाहत थी जिसको हासिल करने के लिए इसके द्वारा ये षड्यंत्र।
0: यानी मौलाना इरफान की हत्या की कोशिश के इल्जाम में लखनऊ पुलिस ने कुल 6 लोगों को पकड़ा, 2 शूटर, एक मौलाना रिहान का मैनेजर बिलाल, शूटरों को लाने वाला बिचौलिया अमन कुरैशी और 2 वकील सुहैल और फरहान। दोनों शूटर तो जेल में है, मौलाना का मैनेजर भी जेल में, लेकिन बाकी 3 यानी अमन कुरैशी सुहैल और फरहान गिरफ्तारी के अगले ही दिन शनिवार को कोर्ट में जमानत की अर्जी लगा देते हैं। कमाल ये कि लखनऊ पुलिस आरोपियों की जमानत याचिका खारिज करवाने के लिए कोर्ट में मौजूद ही नहीं थी क्योंकि पुलिस को पता ही नहीं था। कोर्ट ने भी बिना पुलिस की दलील सुने और बिना जमानती का वेरिफिकेशन कराए तीनों को जमानत दे दी। इसी के बाद अगले ही दिन तीनों जेल से बाहर आ गए। अगर ये तीनों आरोपी जेल से बाहर आने के बाद ये भौकाली हरकत न करते, बिना वीडियो बनाए चुपचाप घर निकल जाते तो क्या पता आने वाले कई हफ्तों या महीनों तक पुलिस को इनकी इस सुपर फास्ट रिहाई की खबर तक नहीं लगती। पर अब जब खबर लग गई तो शर्मिंदा लखनऊ पुलिस इनकी रिहाई को वापस कैद में बदलवाने के लिए फिर से अदालत का रुख करने जा रही है।
1: लखनऊ में नदवा के मौलाना इरफान अहमद रिजवी की हत्या की साजिश में शामिल अमान कुरैशी, रिहान और सुहेल सिद्दीकी को लखनऊ पुलिस ने भले ही बड़े दावों के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा लेकिन शुक्रवार को गिरफ्तारी, शनिवार को कोर्ट से जमानत और रविवार को हुई रिहाई ने बता दिया कि लखनऊ पुलिस के दावों में कितनी सच्चाई थी। यह अलग बात है कि अब लखनऊ पुलिस कह रही है कि वो निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ ऊंचली अदालत में अर्जी लगाएंगे। चूक किसकी है यह तो कानूनी दस्तावेजों को पढ़ने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि इस पूरे मामले में कानून का जिस तरह से आरोपियों ने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर माहौल उड़ाया वो बताता है कि कैसे हत्या की साजिश रचने वाले पेशे से वकील और अमान कुरैशी जैसे बिचौलियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं जब कानूनी कार्रवाई और दस्तावेजी लिखा पढ़ी में कमी और कोर्ट से उनको 24 घंटे के अंदर जमानत मिलती है। कैमरा पर्सन गौरव के साथ संतोष कुमार, आज तक।
0: और अब बात बैग में रखी एक आधी अधूरी लाश के 2100 किलोमीटर के सफर की। चेन्नई एक्सप्रेस में चेन्नई से चलकर नई दिल्ली आने वाली उस ट्रेन के अंदर एक बैग में एक आधी अधूरी लाश पड़ी थी। इस लाश पर या इस बैग पर किसी की नजर नहीं पड़ी लेकिन ग्वालियर में पहली बार किसी ने इस बैग को देखा, आगरा में इसकी खबर दी गई और फिर जब बैग खोला गया तो उसके अंदर बिना सर के एक लाश थी। अब इसी के बाद बिना सर वाली इस लाश की तफ्तीश शुरू होती है। चेन्नई से दिल्ली जाने वाली तमिलनाडु एक्सप्रेस तय वक्त पर ग्वालियर पहुंच चुकी थी लेकिन ग्वालियर से जैसे ही ट्रेन चली ट्रेन में सवार एक मुसाफिर ने शिकायत की कि ट्रेन के पिछले हिस्से के जनरल कंपार्टमेंट में लाल रंग का एक ट्रॉली बैग लावारिस हालत में पड़ा है और उसके आसपास से बदबू आ रही है। यह खबर जैसे ही जीआरपी यानी गवर्नमेंट रेलवे पुलिस को मिली, जीआरपी ने फौरन आगरा कंट्रोल रूम को इसकी खबर दी, जो कि ट्रेन का अगला स्टॉपेज आगरा था। ग्वालियर से आगरा तक की दूरी 1 घंटे में तय होनी थी। सूचना मिलते ही आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर जीआरपी की पूरी टीम तैयारी के साथ तमिलनाडु एक्सप्रेस का इंतजार करने लगी। सुबह करीब 5 बजे ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रुकती है। कंट्रोल रूम से मिली सूचना के आधार पर अब रेलवे पुलिस की टीम उसी जनरल कंपार्टमेंट में दाखिल होती है। खबर सही थी। कंपार्टमेंट के पिछले हिस्से में एक लाल रंग का ट्रॉली बैग रखा हुआ था। बैग के नीचे से शायद खून रिस रहा था। रेलवे पुलिस ने ट्रॉली बैग को खोलने का फैसला किया। फिर जैसे ही बैग खोला, अंदर से वही बाहर आया जिसका डर था। ट्रॉली बैग में एक लाश के टुकड़े थे।
3: सूचना प्राप्त हुई कंट्रोल रूम से कि तमिलनाडु एक्सप्रेस जो 12631 ग्वालियर से निकल चुकी है, उसके जनरल कंपार्टमेंट में पीछे की तरफ एक ट्रॉली बैग लाल रंग का रखा है, जिसमें से कुछ द्रव बाहर निकल रहा है और बदबू आ रही है। इस सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए आगरा कैंट जीआरपी पुलिस और आरपीएफ के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई। उस बैग को नीचे उतार के देखा तो उसमें कुछ सड़े गले अवशेष हैं जो मानव अवशेष प्रतीत हो रहे हैं, मिले हैं, जिनको तत्काल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
0: लाश का चेहरा गायब था क्योंकि बैग में सिर था ही नहीं। अब बिना चेहरे वाली लाश के टुकड़े की शिनाख्त कैसे? फिर अब तक ये भी पता नहीं था कि लाश वाला ये बैग ट्रेन में आया कहां से, इसे किस स्टेशन पर रखा गया। लेकिन तभी रेलवे पुलिस की नजर उस रैपर पर पड़ी जिसमें लाश के टुकड़े लपेटे गए थे। उस रैपर पर चेन्नई के किसी प्रोडक्ट का लोगो लगा हुआ था
3: और वो जो उसमें रैपर में जिसमें वो लिपटे हुए हैं उसमें वो चेन्नई का एक लोगो लगा है, जिसके आधार पर चेन्नई की एक टीम जांच के लिए तत्काल रवाना कर दी गई।
4: सर कुछ अवशेष हैं कि पूरी बॉडी में?
3: नहीं, कुछ सड़े गले अवशेष हैं जो एकदम काले पड़ गए हैं, लेकिन देखने से प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि मानव अवशेष।
4: सर सीसीटीवी कैमरे वगैरह कहाँ ले जा रहे हैं आगे के चेन्नई तक?
3: हाँ सर, पूरा चेन्नई टीम रवाना की जा रही है और वहां से वो जैसे उसको आगे लीड मिलेगी उस हिसाब से वो कार्रवाई करती है।
0: अब तफ्तीश शुरू होती है। दो चीजें ये इशारा कर रही थी कि इस लाश का कोई ना कोई कनेक्शन चेन्नई से हो सकता है। पहली, जिस रैपर में लाश लिपटी थी उस पर चेन्नई का लोगो, और दूसरी, तमिलनाडु एक्सप्रेस चेन्नई से ही चलती है। आगरा पुलिस ने अब फौरन चेन्नई की जीआरपी से संपर्क किया। ट्रेन नंबर 12621 तमिलनाडु एक्सप्रेस, जिसके जनरल अपार्टमेंट में ट्रॉली बैग में लाश मिली थी, ये ट्रेन 3 अगस्त की रात 10 बजे चेन्नई रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। अब सबसे पहले पुलिस ने 3 अगस्त की रात चेन्नई रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 के सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया, ये देखने के लिए कि जनरल अपार्टमेंट में लाल रंग की ट्रॉली बैग के साथ कौन कौन मुसाफिर सवार हुए, चेन्नई स्टेशन से ही सवार हुआ या फिर किसी और स्टेशन से। इधर इस बीच चेन्नई के अलावा ग्वालियर और ग्वालियर से पहले के स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज को भी पुलिस खंगालने में जुट चुकी थी, पर कामयाबी चेन्नई रेलवे स्टेशन से ही मिली। 3 अगस्त की रात तमिलनाडु एक्सप्रेस जिस प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़ी थी, उस प्लेटफॉर्म पर 2 लोग बिल्कुल वैसा ही ट्रॉली बैग लिए दिखाई दिए। इनमें से एक महिला थी और दूसरा पुरुष। हालांकि ये दोनों ट्रेन में सवार नहीं हुए, बल्कि बैग ट्रेन के जनरल कंपार्टमेंट में रखने के बाद दोनों वापस चल दिए। जब चेन्नई स्टेशन के बाकी सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया तो पता चला कि ये दोनों गुडू वांचेरी से आने वाली एक ट्रेन से चेन्नई स्टेशन पहुंचे थे। अब पुलिस के पास कातिल के तौर पर 2 चेहरे थे, कैमरे में कैद यही 2 चेहरे। लेकिन ये कौन थे, इनका नाम क्या है, कहां रहते हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं थी। पर चूंकि दोनों चेन्नई रेलवे स्टेशन पर दिखे तो पुलिस अंदाजा लगा रही थी कि ये चेन्नई में ही कहीं मिल सकते हैं। अब दोनों की तलाश शुरू होती है।
5: चेन्नई एक्सप्रेस से एक लाल रंग के बैग में मानव अवशेष की सूचना प्राप्त हुई थी और जिसका पोस्टमार्टम भी कराया गया और फॉरेंसिक जो एक्सपर्ट थे उनकी उपस्थिति में कराया गया ताकि ये वेरीफाई हो सके कि वो मानव अंश हैं और किसके हैं, पुरुष हैं या स्त्री हैं। इसके लीड और सीसीटीवी फुटेज को ट्रैक करते हुए हमारी टीम वापस उसी चेन्नई एक्सप्रेस से गई। तो चेन्नई में लाल रंग के बैग को, जो बैग बरामद हुआ था, उस बैग को पुरुष और महिला लेकर के एक दूसरे ट्रेन से उतरे थे और उसके बाद चेन्नई एक्सप्रेस में रख करके वापस हो गए थे। ये जानकारी चेन्नई पुलिस के साथ शेयर की गई थी। यहाँ मुकदमा 0 FIR लिखा गया और बाकी यहाँ लिखने के बाद वो चेन्नई ट्रांसफर हो गया और चेन्नई पुलिस इसमें बाकी कार्रवाई कर रही है।
0: वक्त बीतता जाता है पर पुलिस न इन दोनों को ढूंढ पाती है और न ही ये पता लगा पाती है कि बैग में मिली लाश आखिर किसकी थी। हालांकि कोशिश जारी थी, पूरे 19 दिन बाद आखिरकार पुलिस को पहली कामयाबी मिली। कैमरे में कैद इन दोनों का पता मिलता है। पता चलता है कि ये दोनों चेन्नई के गुडू वांचेरी के घर में रहते हैं। पुलिस की टीम फौरन उस घर पर दबिश डालती है। वो दोनों तो वहां नहीं मिले लेकिन घर के अंदर पुलिस को जो कुछ मिला, खुद पुलिस सिहर उठी। चेन्नई के बिल्कुल करीब ये छोटा सा गुडू वांचेरी का इलाका है और इसी इलाके में ये घर है। जैसे ही इस घर में पुलिस पहुंचती है, आसपास भीड़ इकट्ठी हो जाती है। इधर घर के बाहर भीड़ ये जानने के लिए खड़ी थी कि घर के अंदर पुलिस क्यों है और उधर घर के अंदर मौजूद पुलिस घर का कोना कोना तलाश रही थी। घर के बेड, फ्रिज, अलमारी जब सबकी तलाशी ले ली फिर भी कुछ नहीं मिला, तब पुलिस किचन में दाखिल होती है। किचन में एक बड़ा सा बर्तन कहे, पतीला कहे, यदि रखा हुआ था। अब पुलिस ने जैसे ही इस बर्तन का ढक्कन हटाया, खुद पुलिस सकते में आ गई। इस बर्तन के अंदर एक इंसानी सिर और लाश के कुछ टुकड़े थे। अब पुलिस की टीम इस बर्तन को लेकर घर के बाहर आती है। तब तक बर्तन में इंसानी सिर और लाश के टुकड़े पड़े होने की खबर इलाके में फैल चुकी थी। इसके साथ ही आनन फानन में यह अफवाह उड़ गई कि इस बर्तन में इंसानी मांस को पकाया गया है। हालांकि बाद में खुद चेन्नई पुलिस ने इसे महज एक अफवाह बताया। दरअसल ये घर मणिकुद्दीन लश्कर नाम के एक शख्स का था। यहाँ वो भगवती माझी नाम की महिला के साथ लिविन में रहता था। पुलिस ने जब आस पड़ोस में लोगों से मणिकुद्दीन के बारे में पूछताछ की तो पता चला कि पिछले 20 दिनों से वो घर आया ही नहीं है। साथ ही भगवती भी तभी से गायब है। जब पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे में कैद ये तस्वीर पड़ोसियों को दिखाई तो उन्होंने फौरन पहचान लिया कि ये मणिकुद्दीन और भगवती ही है। इसी दौरान पड़ोसियों ने यह भी बताया कि करीब महीने भर पहले इसी घर में एक और महिला किराए पर रहने आई थी। उसका नाम हयातुन निशा था। वो भी पिछले 20 दिनों से गायब है। तो क्या ट्रॉली बैग में मिली लाश हयातुन निशा की थी?
5: ये तो स्टेट की पुलिस के आपसी कोऑर्डिनेशन का परिणाम है कि एक ब्लाइंड केस जिसमें मानव अवशेष मिलना और उसको लिंक जोड़ना और तमिलनाडु पुलिस के द्वारा कार्रवाई करना, तो ये एक अच्छी वो है, सफलता मिली है इसमें। पैसेंजर ने सूचना दी थी, वो ग्वालियर के आसपास की उसने बैग देखने की सूचना दी थी। फिर उस बैग को ट्रैक करते हुए चेन्नई तक, जहां से ट्रेन स्टार्ट होती है वहां तक टीम गई और वहां के बाद वहां की सीसीटीवी फुटेज से चीजें क्लियर हुई कि वो एक अन्य ट्रेन से ला करके बैग को इसमें डाला गया था।
0: अब पुलिस गुडू वांचेरी में तफ्तीश आगे बढ़ा रही थी कि तभी लोकल पुलिस से जानकारी मिली कि हयातुन निशा की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में लिखाने एक लड़का आया था। पुलिस ने जब वो रिपोर्ट पढ़ी तो पता चला कि रिपोर्ट लिखाने वाला 17 साल का एक लड़का है और हयातुन निशा उसकी माँ। अब पुलिस ने हयातुन निशा के बेटे से पूछताछ की तो आधी कहानी सामने आ गई। वो आधी कहानी ये थी कि हयातुन निशा उड़ीसा के जगत सिंहपुर की रहने वाली थी। चेन्नई में एक कंपनी में नौकरी करती थी, बेटा साथ रहा करता था। लेकिन फिर हयातुन निशा मणिकुद्दीन के करीब आ गई। बेटे को ये बात पसंद नहीं आई, अब वो माँ से अलग रहने लगा और माँ मणिकुद्दीन के साथ उसी के घर में किराएदार के तौर पर रहने लगी। हालांकि मणि कुछ दिन पहले से ही भगवती के साथ लिव इन में रह रहा था, पर अब हयात और निशा के साथ भी उसके रिश्ते बन चुके थे। अब चेन्नई पुलिस की एक टीम फौरन ओडिशा के लिए रवाना होती है। जगत सिंहपुर जाने के बाद ये साबित हो जाता है कि आगरा रेलवे स्टेशन पर बैग में जो लाश मिली थी वो हयात और निशा की ही थी। गुडू वांचेरी के जिस घर में बर्तन में इंसानी सिर मिला उससे भी ये साबित हुआ कि हयात और निशा का कत्ल उसी घर में किया गया था। कत्ल के बाद बैग में आधी अधूरी लाश डालकर मणिकुद्दीन और भगवती चेन्नई रेलवे स्टेशन पहुंचे और फिर तमिलनाडु एक्सप्रेस ट्रेन के जनरल कंपार्टमेंट में बैग रखकर वहां से निकल गए। फिलहाल वो दोनों ही फरार हैं। पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए एक साथ कई जगहों पर दबिश डाल रही है। अब जब तक मणिकुद्दीन और भगवती गिरफ्तार नहीं हो जाते तब तक कहानी का क्लाइमेक्स अधूरा ही है। क्लाइमेक्स ये कि आखिर हयात और निशा का कत्ल क्यों हुआ, चेन्नई से आगरा तक के इस सफर की असलियत क्या थी। आगरा से अरविंद शर्मा के साथ प्रमोद माधव, चेन्नई आज तक।
6: तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: देश की राजधानी दिल्ली में मूसलाधार बारिश हो रही है और थोड़ी सी देर की बारिश में देश की राजधानी का क्या हाल है, ये आपको तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है।
2: हालांकि मुख्य सड़क, आप सोचिए नई दिल्ली की ये मुख्य सड़क है, लेकिन जैसे तेज बरसात शुरू हुई है और काफी मूसलाधार बारिश हुई है, दिल्ली के कुछ इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, तो ज्यादातर जो हिस्से हैं वो रेड अलर्ट की चपेट में हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास अमित वधवार के साथ मैं आशुतोष मिश्रा आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: 50 से ज्यादा लापता, इसमें 133 भारतीय शामिल। चीन में भी सैलाब से बहे 265 लोग। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाली पीएम बालिन शाह से बात की, अलर्ट पर बिहार और पूर्वी यूपी, राहत और सामग्री के साथ रवाना भारतीय एयरफोर्स के विमान। संसद का विशेष सत्र बुलाने का संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इशारा किया। इंडिया टुडे के खास बातचीत में कहा, संसद में महिला आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री मोदी गंभीर, इस दिशा में काम जारी। बीजेपी के इस हमले के बाद अब मुस्लिम महिलाओं ने राहुल गांधी को घेरा। हिजाब को लेकर दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन, हिजाब पर चुप्पी का विरोध। और यूपी के शामली में यूट्यूबर हरियाणवी गायक अंकित बालियान की गोली मारकर हत्या, जिम से बाहर निकलते ही ताबड़तोड़ फायरिंग, हमलावर फरार।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
0: नमस्कार, मैं हूँ शशि शर्मा, मुंबई मेट्रो में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में एक तरफ मराठी मीडियम के 200 से ज्यादा स्कूल बंद हो चुके हैं, तो दूसरी तरफ नासिक कुंभ मेले के लिए 34,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस प्रसन्ना बी वराले ने इस पर बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि अगर कुंभ के बजट का सिर्फ 0.1% हिस्सा भी शिक्षा को मिल जाता तो 100 से ज्यादा मराठी स्कूल्स बंद नहीं होते, बंद होने से बच जाते। आखिर विकास और आस्था के आगे बच्चों की पढ़ाई पीछे क्यों छूट रही है? महाराष्ट्र में अब इस मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है।

0: साल 2027 में नासिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले की औपचारिक शुरुआत 31 अक्टूबर 2026 को ध्वजारोहण से होगी, जिसके तहत मुख्य अमृत स्नान 2027 में होंगे। इस बीच कुंभ मेले पर होने वाले अरबों रुपए के खर्च पर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल महाराष्ट्र के धुले में 22 अगस्त को आयोजित एक सार्वजनिक समारोह में सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति प्रसन्न बी वराले ने कहा था कि सरकार अगर कुंभ मेले के बजट का 0.1% भी स्कूलों पर खर्च करती तो 100 से ज्यादा मराठी स्कूल बंद नहीं होते।
1: कुंभ मेळ्यासाठी 32,000 उपमुख्यमंत्री म्हणाले 34,000 कोटी देऊ, नंतर कुठेतरी बातमी वाचली की एका कॉरिडॉरसाठी आम्ही 11,000 कोटी रुपये खर्च करू, एवढे हजार कोटी रुपये जे शासन वेगवेगळ्या विकासांच्या कामासाठी खर्च करतं याच्याविषयी मला कुठलाही आक्षेप नाही, पण जर या हजारो कोटीच्या रकमेची जर साधन तरतूद करत असेल तर या रकमेपैकी मी असं म्हणालो की 0.1% 32 कोटी रुपये जर सरकारने खर्च केले तर या राज्यातल्या 100-125 शाळा मराठी शाळा ज्या बंद पडल्या
0: धुले से बात निकली तो दूर तलक जा पहुंची। विपक्ष ने इसे सरकार के खिलाफ हथियार बनाने में जरा भी देर नहीं की।
2: पहले मैं माननीय बैराली साहब का बहुत बहुत तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। कोई तो है, आशा का किरण जब ऐसे दिखता है ना तो लगता है इस देश में संवेदना अभी भी बाकी है, इस देश में न्यायिक भूमिका अभी भी बाकी है। अभी तो जज जी ने तो शुरू कर ही दिया है, तो ये जो उन्होंने कहा वो सच्चाई है ना। हम भी धार्मिक है भैया, लेकिन हम धर्मांध नहीं है। जो कुछ कर रहे हो ना उसमें भ्रष्टाचार बाकी कुछ नहीं है, कुंभ बिंब कुछ प्यार नहीं है ना। तो इतने 9 लोग मरे ना, नासिक में मरे ना, वही तो कुंभ का नींव डाल दी उन्होंने 9 लोगों की आहुति देकर। शर्म नहीं आती क्या? शर्म नहीं आती।
0: दूसरी तरफ नासिक त्र्यंबकेश्वर कुंभ मेले की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। कुंभ मेला अथॉरिटी के मुताबिक कुल 34,000 करोड़ रुपए के बजट में से 85% यानी करीब 29,500 करोड़ रुपए पक्के निर्माण कार्यों पर खर्च होंगे। इसमें साधु ग्राम की जमीन के लिए 2,267 करोड़ रुपए, सड़कों के लिए 2,458 करोड़ रुपए, रेलवे स्टेशन के सुधार के लिए 1,476 करोड़ रुपए, सीवेज मैनेजमेंट के लिए 1,632 करोड़ रुपए और नासिक में राम धनुष थीम वाले एयरपोर्ट के लिए 640 करोड़ रुपए की बड़ी रकम तय की गई है। अब सरकार कह रही है कि स्कूलों की समस्या उनकी प्राथमिकता है, लेकिन कुंभ मेले में जो करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं उससे 3 गुना कुंभ से कमाई होने वाली है और नासिक के स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा।
3: भारत की आस्था से जुड़ा हुआ यह विषय है। महाराष्ट्र में कुंभ मेले के लिए पूरे भारतवर्ष से नहीं प्रदेश से लोग आते हैं, उनकी भी अरेंजमेंट वहां पे रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वहां पे जो भी अरेंजमेंट्स है वो भी ठीक होनी चाहिए। और मैं बताऊं, जितना हम खर्चा करते हैं उससे भी मेरे ख्याल से 3 times इकोनॉमी वहां पे तैयार होती है। वहां का जो अगर आप वो उन दिनों का अगर इकोनॉमी का रोल ओवर देखोगे तो कहीं ज्यादा हजारों करोड़ की वहां पे इकोनॉमी वहां पे टर्नओवर होती है। वहां पे जो लोकल लोग हैं उनको वहां पे एक उनकी इनकम बढ़ती है। तो मेरे ख्याल से अगर वहां पे लोकल का अगर आप पूछेंगे तो अगर यहाँ के अरेंजमेंट अगर हम ठीक से नहीं करेंगे, वहां पे अगर डेवलपमेंट अगर नहीं देंगे, अगर वहां पे फैसिलिटीज अगर हम लोग ठीक से खड़ी नहीं करेंगे तो पूरे कुंभ मेले में वहां पे दुर्घटनाएं हो सकती है, लोगों की जान जा सकती है। तो मेरे ख्याल से सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी वहां के डेवलपमेंट होना जरूरी है। ऑफकोर्स उन्होंने जो मुद्दा रखा है कि स्कूल्स की डेवलपमेंट, वो भी एक महत्व का मुद्दा है, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं।
0: बीजेपी को भी जस्टिस की बात रास नहीं आई। बीजेपी बोली, महायुति सरकार ज्यादा बजट शिक्षा पर खर्च कर रही है।
4: संविधान के तहत देश की सर्वोच्च न्यायपालिका के न्यायाधीश के किसी बयान पर टिप्पणी करना उचित नहीं होता, पर कांग्रेस दल ने भी इसे ओछी राजनीति का मुद्दा बनाया है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो कांग्रेस के सरकार के कार्यकाल में शिक्षा पर जितना प्रतिशत खर्च होता था उससे 5 गुना अधिक खर्च शिक्षा पर महाराष्ट्र की सरकार कर रही है। पर ये कौन सा तरीका है? श्रद्धा आस्था का वहां करोड़ों करोड़ों लोगों का सैलाब उमड़ेगा, देश से नहीं सारे विश्व से वहां लोग आएंगे। सनातन हिंदू धर्म का बरसों से चलता हुआ यह महाकुंभ है और वहां पर डेवलपमेंट, सारी सड़कों का निर्माण, अलग अलग वहां पर नदियों का विस्तारीकरण, ये सारा क्या डेवलपमेंट नहीं है?
0: जस्टिस प्रसन्न बी वराले ने यह भी कहा कि उनकी पढ़ाई भी मराठी माध्यम से हुई है और मराठी भाषा पढ़ने की वजह से दूसरे के प्रति उदारता की भावना उनके अंदर आई। महाराष्ट्र में मराठी भाषा और प्राथमिक शिक्षा की हालत चिंताजनक बनी हुई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 2 सालों में बुनियादी सुविधाओं और फंड की कमी के चलते 255 मराठी मीडियम स्कूल बंद हो चुके हैं। इतना ही नहीं, करीब 2000 और मराठी स्कूलों पर ताला लगने का खतरा मंडरा रहा है। बीएमसी ने अपने 75,000 करोड़ रुपए के कुल बजट में से शिक्षा के लिए सिर्फ 4,248 करोड़ रुपए दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज की टिप्पणी के बाद अब महाराष्ट्र की राजनीति में नया मोड़ आ गया है। विपक्ष जहां सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठा रहा है, वहीं सरकार कुंभ के भव्य आयोजन और सुरक्षा को जरूरी बताते हुए विपक्ष की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है।
5: तो सवाल सिर्फ बजट का नहीं, हमारी प्राथमिकताओं का है। जहां एक तरफ आस्था के इस बड़े मेले पर सरकार के हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मराठी भाषा स्कूल एक एक रुपए के लिए तरस रही है। अगर वक्त रहते ही स्कूलों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाली पीढ़ी के लिए नुकसान भरपाई के परे होगा। कैमरा पर्सन मंगेश आमरे के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
6: महाराष्ट्र में मिलावट के खिलाफ एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे का अभियान जारी है। अब एफडीए खाने वाला खुला और मिलावटी तेल बेचने वालों पर शिकंजा कसेगा। हालांकि नियम काफी पुराना है, लेकिन अब इसका सख्ती से पालन करवाया जाएगा। मुंडे ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि जब भी वो कोई खाने पीने का सामान खरीदें, उसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट जरूर ध्यान से देखें।
0: महाराष्ट्र में एफडीए यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की कार्रवाई जारी है। अब खाने के तेल की मिलावट पर भी एफडीए शिकंजा कसने जा रहा है। हालांकि खुले तेल की बिक्री पर 2011 से रोक है, लेकिन इसका पालन अब सख्ती से होगा। एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने लोगों से खाद्य पदार्थ खरीदते समय पैकेजिंग डेट, एक्सपायरी डेट और क्वालिटी की जांच करने की सलाह दी।
7: रेगुलेटर्स रूल्स वी आर ट्राइंग टू डू इट, एट द सेम टाइम पीपल एज सिटीजंस एज कंज्यूमर्स शुड आल्सो बी मच मोर विजिलेंट, मच मोर diligent about what we consume, what we order, what we eat. If that happens, I think would be far better place than what you consume without questioning what we consume or what we purchase without questioning its credentials, questioning its ingredients, questioning its manufacturing date and whatever, whether it's expiry date based before or how it is प्रोसेस।
0: दरअसल 1988 में दिल्ली में तेल में मिलावट की वजह से 40 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद से खुले तेल की बिक्री और मिलावट को लेकर सख्त नियम बनाए गए थे। वहीं आज मुंबई के फोर्ट इलाके में मशहूर रेस्टोरेंट अयूब्स का फूड लाइसेंस एफडीए ने निलंबित कर दिया। 22 अगस्त को हुई जांच में अधिकारियों को यहां खाद्य सुरक्षा और साफ सफाई से जुड़ी कई गंभीर खामियां मिली थी।
8: महाराष्ट्र एफडीए, महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे अब फूड कमिश्नर तुकाराम मुंडे हेड कर रहे हैं, उनके ज्वाइन करने के बाद से ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है रेस्टोरेंट पर और होटल्स पर और ऐसे फूड आउटलेट्स पर जो कि रूल्स फॉलो नहीं कर रहे थे, जो कि हाइजीन फॉलो नहीं कर रहे थे, जहां पर प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है, जहां पर खाद्य पदार्थ ठीक से स्टोर नहीं किए जा रहे हैं। और उसी बीच अब इस क्रैकडाउन के बीच आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये है अयूब्स रेस्टोरेंट, जो कि दक्षिण मुंबई में स्थित है। हाल ही में हुए क्रैकडाउन में, हाल ही में हुए इंस्पेक्शन में बहुत से ऐसे रेस्टोरेंट कवर हुए जो मुंबई में स्थित थे, नागपुर में स्थित थे, छत्रपति संभाजीनगर में स्थित थे और पुणे में स्थित थे। इन 35 से 37 रेस्टोरेंट पर कार्रवाई की गई, उन पर इंस्पेक्शन किया गया कि वो रूल्स, फूड एंड ड्रग रूल्स को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, फूड सेफ्टी एक्ट के तहत जो रूल्स हैं उन्हें फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे का कहना है कि फूड एंड सेफ्टी एक्ट के हिसाब से जो रूल्स तय किए गए हैं, उस हिसाब से फूड, जो खाना है, जो खाद्य पदार्थ है, उन्हें सेफ्टी से रखना है, उन्हें सुरक्षित रखना है।
0: एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने बताया कि 31 जुलाई तक फूड सेक्टर से जुड़े 3,500 से ज्यादा प्रतिष्ठानों की जांच की गई, वहीं करीब 3,100 दवा प्रतिष्ठानों का भी निरीक्षण किया गया, जिसमें जुलाई के आखिर तक 165 लाइसेंस निलंबित किए गए थे। मुंडे ने दोहराया कि जिन प्रतिष्ठानों के लाइसेंस सस्पेंड किए जा रहे हैं उनकी जांच दोबारा होगी और नियमों का पालन नहीं करने पर लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाएगा।
7: The process is like this. If there is a court with suspension, they have to comply. Once they comply, they have to appeal to me. I get my officers re-inspected or re-verified whatever the claims are of that FBI or establishment there. If they are found correct, then I take a hearing. On the basis of hearing, if I find that yes, they have complied and they are likely to comply, maintain their standards and regulation, I revoke their suspension and issue the order. If I think that it is not complied and it is not likely to remove, I sustain that suspension and further action is taken by my designated officer.
0: इससे पहले जब एफडीए ने विमल इलायची ब्रांड का विज्ञापन करने वाले तीन बड़े अभिनेताओं शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को कारण बताओ नोटिस भेजा था, उसके बाद सीएम फडणवीस ने कहा था कि वो सूबे में हो रही एफडीए की कार्रवाई से खुश और संतुष्ट हैं।
9: बहुत अच्छी एक्शन हो रही है। देखिए, पहली बात तो यह है कि फूड एडल्ट्रेशन या किसी भी प्रकार से जो हमारे फूड के मानक है उनको जब कोई ब्रीच करता है तो उसके कारण लोगों की जान को खतरा होता है, लोगों की हेल्थ को खतरा होता है, इसलिए इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन की आवश्यकता थी और वो एक्शन हो रही है। मुझे बहुत खुशी है कि इस प्रकार की एक्शन हो रही है और ये एक्शन कंटिन्यू रहेगी।
0: जब से तुकाराम मुंडे ने महाराष्ट्र एफडीए की कमान संभाली है तब से मिलावटखोरों और सफाई से समझौता करने वाले लोगों में खौफ देखा जा रहा है, क्योंकि मुंडे ने साफ कर दिया है कि नियमों के उल्लंघन की छूट किसी को भी नहीं दी जा सकती, चाहे वो कोई भी हो।
10: एफडीए की कार्रवाई शुरू है, टोल फ्री नंबर या पोर्टल के द्वारा एफडीए को कंप्लेंट्स दी जा सकती है और उस कंप्लेंट्स पर एक्ट करते हुए एक्शन लिया जा सकता है। आप देखेंगे कि खुले तेल के बेचने पर भी एफडीए ने ऑर्डर इशू किया है, और जबकि एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे का कहना है कि 2011 से ही वो रूल स्थित था कि खुला तेल महाराष्ट्र में बेचा नहीं जा सकता है, पर फिर भी खुला तेल बिक रहा था और उसे नहीं बेचा जाना चाहिए। जो रीयूज तेल है, यानी एक तेल जो इस्तेमाल हो चुका है उसको फिर से इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। फूड सेफ्टी यानी सुरक्षित खाना सबका अधिकार है और उसी पर वो काम कर रहे हैं, उसी पर वो कार्यरत है। कैमरा पर्सन नितिन वर्ने के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक।
6: आज मुंबई में कांग्रेस के पूर्व विधायक और मंत्री नसीम खान ने जश्न ईद के मौके पर एक आयोजन किया था, और मुंबई में ऐसे ही एक कार्यक्रम में कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा भी शामिल हुए। नसीम खान ने मराठी भाषा विवाद पर कहा कि सरकार सिर्फ भाषा और जाति के नाम पर बांटने का काम कर रही है।
11: आज मुंबई और पूरे देश भर में जश्न मिलादुल नबी का जो है जश्न मनाया जा रहा है। इसी मौके पर मुंबई में कांग्रेस के नेता नसीम खान द्वारा एक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा जी भी मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आज त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं देश भर में और महाराष्ट्र में खास करके भाषा और जाति को लेकर भी राजनीति देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे?
12: जाति और धर्म और भाषा के नाम पर जिस तरह से राजनीति हो रही है, और ये हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे केंद्र की हो या राज्य की हो, हमेशा राजनीतिक फायदा उठाने के लिए, और जब भी ये अड़चन में आते हैं, जब भी इनके खिलाफ गुस्सा देश की जनता में फैलता है, तो उस मुद्दे से भटकाने के लिए इस तरह की चीजों को लाते हैं। भाषा लोगों को जोड़ती है, भाषा तोड़ती नहीं है। मुंबई और महाराष्ट्र में मराठी का सम्मान होना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन भाषा के नाम पर किसी के ऊपर इस तरह से टैक्सी ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर हो, उनको तकलीफ पहुंचाना, उनके ऊपर दंड लगाना, उनके लाइसेंस और बैज कैंसिल करने की धमकी देना, उनको बेरोजगारी की तरफ ढकेलना, ये गलत है। सरकार ने इस तरह का जो कायदा बनाया है या इस तरह की जो कार्रवाइयां कर रही है उसकी निंदा वापस लेना चाहिए, और उसका हम सारे लोग विरोध करते हैं।
11: सर, शिक्षा के स्तर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है कि जो पैसा कुंभ पर खर्चा हो रहा है उसका थोड़ा सा भाग भी अगर स्कूलों और मराठी स्कूलों पर खर्चा हो तो वो बंद ना हो, आप इस तरीके के स्टेटमेंट को कैसे दी?
12: देखिए, हमारे देश की धार्मिक परंपराएं अपनी तरह से हमेशा होती रही है, और वो अपनी तरह से धार्मिक परंपराओं में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, लेकिन शिक्षा देश के लिए महत्वपूर्ण है, उसके लिए सरकार के पास ज्यादा से ज्यादा बजट होना चाहिए, देश की शिक्षा बेहतर होनी चाहिए, लोगों को खास करके गरीब लोग गरीबों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, कोचिंग की सुविधा मिलनी चाहिए, फीस कम होनी चाहिए।
6: और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे रक्षाबंधन के विज्ञापन से शुरू हुआ विवाद सियासी अखाड़े तक पहुंच चुका है। एक तरफ अभिनेत्री हैं और बीजेपी सांसद कंगना रनौत हैं, दूसरी तरफ जिन्होंने कृति सेनन के कपड़ों और विज्ञापन की थीम पर सवाल उठाए थे, ढेर सारे सवाल उसके बाद फिर सोशल मीडिया पर उठाए जाने लगे। उसके बाद इस विवाद में राहुल गांधी की एंट्री हुई, जिन्होंने कृति के समर्थन में कहा कि महिला क्या पहनती है, क्या करती है और कहां जाती है, ये उसकी अपनी पसंद है। अब बीजेपी ने राहुल गांधी पर पलटवार किया है।
0: आखिरकार एक्ट्रेस कृति सेनन के उस विज्ञापन को हटा दिया गया है जिस पर कंगना रनौत समेत कई लोगों ने उनकी ड्रेस पर सवाल उठाए थे। ज्वेलरी कंपनी ने विवाद बढ़ता देख कहा कि उन्होंने ये फैसला भारतीय संस्कृति और परंपराओं के सम्मान में लिया है। कंपनी ने कहा कि हमारा इरादा किसी की भावनाएं आहत करना नहीं था। अब इस विज्ञापन के बहाने बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग तेज हो गई है।
4: कौन क्या खाए और कौन क्या पहने, ये हर व्यक्ति विशेष का निजी फैसला है, उसका निजी अधिकार है। पर सामाजिक जीवन में हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि किसी मौत के पश्चात किसी के घर हम सांत्वना देने जाते हैं तो सफेद वस्त्रों का प्रयोग होता है, श्रद्धा आस्था मंदिर में जाते हैं तो वहां पर अपना पहनावा एक अलग पहनावा होता है। तो मंदिर में जाते समय पार्टी के कपड़े कोई नहीं पहनता और पार्टी में जाते समय सांत्वना के कपड़े कोई पहनता नहीं। ये तो हर व्यक्ति के अपने विचारधारा पे और बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है। रहा सवाल कौन क्या पहने, ये उसका निजी अधिकार जरूर है, पर किसी व्यक्ति विशेष की रीति रिवाजों को लेकर, धर्म की रूढ़ी परंपराओं को लेकर, अपने पहनावे के कारण यदि किसी की श्रद्धा आस्था अगर आहत होती है तो इसका समर्थन कैसे हो सकता है। पर आमतौर पर फिल्मी जगत में देखा गया है कि ओछी पब्लिसिटी पाने के लिए जानबूझ करके ऐसा इस प्रकार से कंट्रोवर्शियल बातें करते हैं, तो ये ओछी पब्लिसिटी के आड़ में आप किसी की श्रद्धा आस्था आहत नहीं कर सकते।
13: इसमें हिंदू मुस्लिम कहां से आया, किसको क्या पहनना है वो तय करेगा या करेगी, इसमें समाज के ठेकेदार थोड़ी तय करेंगे। ये मुद्दा है क्या? कोई मुद्दे वो हैं जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं, नौजवानों का मुद्दा है, पैलेट गन किसने चलाई, ये मुद्दा आज भी है, सवाल आज भी बरकरार है, कैसे पेपर लीक हो रहे हैं आज हुआ है, ये मुद्दे हैं। तो इन मुद्दों पर जवाब देते इनसे बनता नहीं है, इसलिए नए नए शिगुफे छोड़ते हैं।
0: दरअसल इस रक्षाबंधन पर एक ज्वेलरी ब्रांड के विज्ञापन में कृति सेनन ब्रालेट स्टाइल ब्लाउज केप और ड्रेप्ड स्कर्ट पहने थी, लेकिन कृति की आउटफिट पर सवाल उठने लगे कि सांस्कृतिक त्योहार रक्षाबंधन से जुड़े विज्ञापन में कृति का ये पहनावा कितना सही है। कृति सेनन पर अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने निशाना साधते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर लिखा था,
14: आज हमारे पास पहनने के इतने सारे विकल्प हैं, तो आप अपने भाई की कलाई पर राखी, बिकनी, अंडरगार्मेंट्स पहनकर क्यों बांधेंगी, आपके पास स्टाइलिंग के इतने विकल्प हैं, वो कहाँ गए। हाँ हाँ, ये विज्ञापन जानबूझकर अजीब और असहज करने वाला लगता है।
0: जिसके बाद कृति सेनन ने कंगना पर पलटवार करते हुए लिखा था,
14: महिला के कपड़ों से उसकी संस्कृति के प्रति सम्मान को नहीं मापा जाना चाहिए, त्योहारों की असली भावना आपके कपड़ों में नहीं बल्कि उन भावनाओं और परंपराओं में होती है जिन्हें आप दिल से मानते हैं। रक्षाबंधन का मतलब केवल कपड़ों से नहीं है बल्कि ये प्यार और सुरक्षा का प्रतीक है।
0: 25 अगस्त को राहुल गांधी ने भी कृति सेनन का समर्थन करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा था कि महिलाएं क्या कपड़े पहनेंगी ये उनकी पसंद पर निर्भर होना चाहिए, कृपया कृति सेनन को उनके कपड़ों के लिए ट्रोल करना बंद करें।
15: आज के दिन जो माहौल है देश में बना हुआ है, लड़कियों को जज करने लगे हैं उनके कपड़ों से, उनकी सेफ्टी के इश्यूज हैं, अगर बिल्कुल उसको आप संकीर्ण नजरिए से देखोगे उससे हल नहीं निकलेगा। इस तरह की बातें, टिप्पणी, किसने क्या पहना, कैसे किया, आप लार्जर पिक्चर को तो भूल जाते हो। आज विमेन्स सेफ्टी एक इतना बड़ा इशू है हमारे देश में। अभी पीछे हमारे नेता राहुल जी ने पुणे में जो छात्रों की गूंज के माध्यम से यंग लड़कियां उसमें आई, कैसे उन्होंने क्या क्या बातें कही कि कैसे उनकी सेफ्टी एक इशू है, क्या वो केवल कपड़ों के ऊपर था आधारित, इन बातों को क्यों नहीं उठाते।
16: राहुल गांधी क्या समझने लगे हैं कि वो खुद मसीहा बन गए हैं, महिला के पोशाक को लेके वो मसीहा, स्टूडेंट के मूवमेंट को लेके वो मसीहा। खैर, वो जितना दखल अंदाज करें वो बेहतर है कि वो न करें, क्योंकि जब महिला कोई भी फैमिली प्रोग्राम हो, ट्रेडिशनल प्रोग्राम हो, वहाँ उनकी एक नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन हमारी संस्कृति सभ्यता ये सिखाती है कि कैसे प्रस्तुत होना चाहिए। यहाँ सवाल नहीं है फ्रीडम का, यहाँ सवाल नहीं है कि कौन क्या पहन रहा है, लेकिन सवाल जरूर है कि राहुल गांधी क्यों दखल कर रहे हैं।
0: इससे पहले कृति ने इंस्टाग्राम पर लिखा था कि यह त्योहार सुरक्षा और प्यार के रिश्ते का प्रतीक है। वो और उनकी बहन नुपुर सेनन एक दूसरे को राखी बांधती हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे की सुरक्षा भाई से कम नहीं करती। यही प्यार पेट डॉग्स के लिए भी है, क्योंकि वो भी उनके परिवार का ही हिस्सा है। कंगना रनौत अपने तेवर के लिए सुर्खियों में रहती हैं। उन्होंने 24 अगस्त को तापसी पन्नू, सोनू सूद और आशुतोष राणा जैसे सितारों पर भी निशाना साधा था।
17: इनफ इज इनफ। मैं देखती हूँ हर एक आए दिन कि इस तरह के लोग, चाहे वो आशुतोष राणा हो जो कहते हैं कि कुत्ते की तरह भौंकते हैं, चाहे सोनू सूद टाइप लोग हैं जो कहते हैं कि मुझे तरीका सीखना चाहिए, राखी सावंत टाइप लोग हैं जो मेरे चरित्र पर जो है हर तरीके की भद्दी टिप्पणी करते हैं, तापसी पन्नू टाइप लोग हैं जो मेरे माता पिता को, मेरी परवरिश को, मेरे बैकग्राउंड को अपमानित करते हैं। ये लोगों के लिए मेरा सिर्फ एक मैसेज है कि अगर आप लोग मेरे समान 1% भी लाइफ में सक्सेस नहीं कमा पाए हो, तो मैं आपका कोई भी ज्ञान नहीं सुनूंगी। सब फेल और बिल्कुल अनवांटेड लोग जो हैं, मुझे जब देखो चार गालियां देते रहते हैं मीडिया में आने के लिए, पहले आप कंगना रनौत बनो तो सही, आप बन के दिखाओ ना। लेकिन आप लोगों की मैं बिल्कुल कोई भी सलाह मशवरा नहीं सुनूंगी। कोई कुत्ता कह रहा है, कोई माता पिता को गाली दे रहा है, कोई कहता है, मैं ये भद्दी टिप्पणियां नहीं सुनूंगी। ये भूखे नंगे लोग मुझ पे लैच ऑन नहीं हो सकते हैं। इनफ इज इनफ। पेरेंट्स को नहीं छोड़ रहे हैं, कोई आशुतोष राणा जैसे कह रहे हैं कि कुत्ते की तरह भौंकती है। आप पहले कंगना रनौत बनके दिखाइए। अगर जो पर्सन मुझसे ज्यादा सक्सेसफुल है, मुझसे ज्यादा माननीय है, उनकी मैं सलाह लूंगी।
0: फिलहाल रक्षाबंधन से पहले विज्ञापन तो कंपनी ने हटा लिया, लेकिन विवाद पर सियासी विराम लगता नहीं दिख रहा। आज तक ब्यूरो।
6: और इसी के साथ हम यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
18: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: वैसे तो गणेश महोत्सव शुरू होने में अभी 18 दिन का समय बचा है, लेकिन मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में गणपति पंडालों में हलचल अभी से दिखने लगी है। आज हम आपको महाराष्ट्र की सबसे ऊंची गणेश जी की मूर्ति का दर्शन करवाएंगे, जो मुंबई के महाराजा के नाम से भी मशहूर है। खेतवाड़ी गली नंबर 11 में बसे बप्पा 47 फीट के हैं। सबसे ऊंची मूर्ति के आगमन और विसर्जन में अच्छी व्यवस्था की वजह से इस गणेश मंडल को कई बार अवार्ड्स मिल चुके हैं।
2: गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, अगले महीने यानी कि 14 तारीख से मुंबई, महाराष्ट्र और ये पूरा देश महाउत्सव यानी कि गणेश उत्सव मनाने के लिए तैयार हो गया है, शुरुआत हो चुकी है। और जैसा कि हम हमेशा रोज ही अपनी खबरों में बताते हैं कि गणेश जी की जो ऊंची ऊंची प्रतिमाएं हैं उन्हें पंडालों में लाने का काम भी शुरू हो गया है। इस समय मैं जिस दरबार में बप्पा के खड़ा हूँ, बहुत ही ज्यादा वायरल, बहुत ही ज्यादा फेमस है। इस वजह से क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मुंबई ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र की सबसे ऊंची प्रतिमा गणेश जी की इसी दरबार में देखी जाती है। आपको बताएं, मैं इस वक्त मौजूद हूं खेतवाड़ी के 11वीं गली में और मुंबई का महाराजा के नाम से गणेश जी की ये प्रतिमा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। आपको बताया कि इनकी ऊंचाई 47 फीट है और यही वजह है कि महाराष्ट्र के सबसे ऊंचे गणेश जी इन्हें माने जाते हैं। नरसिम्हा के अवतार में यहाँ पर आए हैं और राक्षसों का जो है यहाँ पर सहार करेंगे। ये देखिए किस तरीके से बड़ी ही खूबसूरत और रियलिटी वाली प्रतिमा देख रहे हैं। नरसिम्हा का जो है पूरा का पूरा अवतार दिया गया है और बप्पा का जो चेहरा है उस पे गणेश जी के जो है प्रतिमा लगाई गई है। हाथ में कमल है, चक्र है और बहुत कुछ खास है। और भी क्या ज्यादा अपडेट है, किस तरीके का डेकोरेशन होगा ये जानने की हम यहाँ कोशिश करेंगे, क्योंकि वाकई में हजारों की तादाद में जो गणेश भक्त हैं वो सभी यहाँ पर आते हैं और दर्शन लेते हैं। कहते हैं कि यहाँ भी आने के बाद में बप्पा से मांगी हुई चीजें, जो मिन्नतें हैं वो पूरी हो जाती है। मंडल के अध्यक्ष और बाकी भी सारे सदस्य इस समय हमारे साथ खड़े हैं। हेमंत दीक्षित जी, बहुत बधाई आपको, 47 फीट के बप्पा, महाराज की सबसे ऊंची प्रतिमा। कैसे ये सुझाव आया, कितने साल से आपने ये सारी शुरुआत की और क्या खास कहेंगे?
3: धन्यवाद। हम लास्ट 25 साल से भी ज़्यादा हमें अनुभव हुआ है कि हम टॉलेस्ट मूर्ति बनाते हैं और लास्ट 5 साल से तो हम महाराष्ट्र में सबसे टॉलेस्ट मूर्ति बनाते हैं और उनका कंटिन्यू अवार्ड लेते हैं। और इसमें इस साल हमने नरसिम्हा अवतार बनानी है, क्योंकि हम हर एक साल अलग अलग अलग अवतार हम यहाँ पे दर्शाते हैं और उसे मैसेज देते हैं कि जो यहाँ पे भक्तगण दर्शन करने के लिए लाखों की तादाद में आते हैं तो उनको अलग अलग रूप यहाँ पे दिखाई दे।
2: अच्छा, इसके पहले कौन से अवतार में बप्पा आ चुके हैं जिनके लिए आपने अवार्ड्स लिए?
3: उनके पहले आए हैं परशुराम अवतार आए हैं, फिर इंद्र अवतार बनाए हैं, फिर उसके बाद एक कल्की अवतार बनाए हैं।
1: और इसी के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: ट्यून इन हाउ टू, अ ब्रीफ लुक एट ऑल द स्पेशल फंक्शंस एंड थिंग्स यू माइट नॉट नो वी हैव।
5: गेट इनटू द गेम विद योर फेवरेट टीम्स एंड नेवर मिस अ गेम। Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.

0: 750 से ज्यादा लापता, इसमें 133 भारतीय शामिल। चीन में भी सैलाब से बहे 265 लोग। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाली पीएम बालिन शाह से की बात, अलर्ट पर बिहार और पूर्वी यूपी, राहत सामग्री के साथ रवाना भारतीय एयरफोर्स के विमान। संसद का विशेष सत्र बुलाने का संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इशारा किया। इंडिया टुडे से खास बातचीत में कहा, संसद में महिला आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री मोदी गंभीर, इस दिशा में काम जारी। बीजेपी के हमले के बाद अब मुस्लिम महिलाओं ने राहुल गांधी को घेरा, हिजाब को लेकर दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन, हिजाब पर चुप्पी का विरोध। और यूपी के शामली में यूट्यूबर और हरियाणवी गायक अंकित बालियान की गोली मारकर हत्या, जिम से बाहर निकलते ही ताबड़तोड़ फायरिंग, हमलावर फरार। नेपाल में भारी फ्लैश फ्लड, करीब 100 लोगों के शव अब तक बरामद किए गए। नेपाल में अचानक से आई बाढ़ की वजह से 750 लोग लापता हुए, नेपाल के कई इलाकों में मची तबाही। 133 भारतीय नागरिक भी लापता, ज्यादातर कैलाश मानसरोवर यात्री थे। नेपाल की बाढ़ में तमिलनाडु के भी 57 लोग लापता हैं। तंजावुर जिले के कुंभाकोणम से ये लोग 13 दिन के नेपाल टूर पर गए थे। पश्चिम बंगाल के हुगली के आरामबाग के 65 लोग नेपाल में फंसे, अभी उनकी बस हादसे से 120 किलोमीटर दूर नेपाल के चेतना पार्क में मौजूद। नेपाल में आई बाढ़ के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह का संदेश, कहा समय बेहद संवेदनशील है, सरकार बड़े पैमाने पर राहत और बचाव के अभियान में लगी हुई है। शाह ने कहा सरकार की पहली प्राथमिकता है घायलों की जान बचाना, लापता लोगों की तलाश करना और प्रभावित नागरिकों को सुरक्षित रखना। घायलों के लिए काठमांडू के वीर अस्पताल में 100 बेड आरक्षित किए गए हैं। काठमांडू घाटी के अन्य बड़े अस्पताल भी तैयार किए गए। नेपाल में बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है, 11 हाइड्रो पावर प्लांट्स और 19 पुल बह गए हैं, दर्जनों बैंकों को भी भारी नुकसान की खबर। 11 पावर प्लांट बहने से 431 मेगावाट बिजली की आपूर्ति खत्म हुई है। रसुआ, टांडिंग और नुवाकोट समेत 6 जगहों पर भारी नुकसान। बाढ़ में 26 नेपाली पुलिस के जवान, 9 आर्म्ड पुलिस के जवान और नेपाली सेना के 44 सेना के जवान भी लापता। नेपाल के 6 जिले बाढ़ से प्रभावित घोषित किए गए हैं, 40 किलोमीटर से ज्यादा सड़क भी बह गई है। लालटांग खोला बिजली परियोजना में काम करने वाले 60 लोग लापता हैं। नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के 35 कर्मचारियों से भी कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। भारत की तरफ से नेपाल को 10 टन मानवीय मदद भेजी गई है, जिसमें दवाइयां हैं, जरूरत का बाकी का सामान है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जानकारी दी। अगले 24 घंटे में भारतीय सेना और वायुसेना नेपाल में राहत और बचाव का काम शुरू करेगी। भारत की तरफ से नेपाल को पूरी सहायता होगी। भारतीय वायुसेना पूरी तरह से तैयार है। हिंडन एयरबेस पर C-17 ग्लोब मास्टर और C-130J हरक्यूलिस विमान तैयार रखे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की, भारत की तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। नेपाल की बाढ़ के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने यूपी और बिहार के मुख्यमंत्रियों से बात की, स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ को हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया। नेपाल फ्लैश फ्लड पर केंद्र की पैनी नजर है, गृह मंत्रालय समेत कई मंत्रालय लगातार कर रहे हैं मॉनिटरिंग, एनडीआरएफ को हाई अलर्ट पर रखा गया है, सीमावर्ती इलाकों में राहत और बचाव की टीमें तैयार। गृह मंत्रालय, एमईए, जल शक्ति मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। सीडब्ल्यूसी के मुताबिक नेपाल की तरफ जल स्तर अब कम हो रहा है और स्थिति नियंत्रण में है। चीन का दावा, तिब्बत के गेरुंग में फ्लैश फ्लड में उनकी तरफ 3 लोगों की मौत हुई है, 265 लोग लापता हैं। नेपाल में बाढ़ के बीच भारत के पड़ोसी राज्य बिहार में भी गंडक नदी से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है, अधिकारियों ने लोगों से सतर्क रहने की बात कही है। नेपाल में आई बाढ़ से आगे बिहार में गंडक नदी में पानी बढ़ने की आशंका, बगहा में लोगों को ऊंचे इलाकों में जाने के लिए कहा गया। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 86,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज, गंडक बराज से सभी 36 गेट उसके खोले गए हैं, टेक्निकल टीम ने गंडक बराज का मोर्चा संभाला हुआ है। नेपाल में आई जल प्रलय के बाद यूपी का महाराजगंज हाई अलर्ट पर, अगले 8 से 10 घंटे में गंडक नदी में जलस्तर बढ़ने की संभावना। महाराजगंज में एसडीआरएफ और पुलिस ने सायरन बजाकर ग्रामीणों को किया अलर्ट, नदियों के किनारे बसे ग्रामीणों को अलर्ट पर रखा गया। नेपाल में ग्लेशियर टूटने से कुशीनगर से बहने वाली नारायणी नदी के जलस्तर में भारी वृद्धि होने की संभावना, तटीय इलाकों में जल प्रलय का खतरा। संभावित बाढ़ की आशंका को देखते हुए कुशीनगर जिला प्रशासन ने भी अलर्ट मोड पर रखा, संबंधित विभागों को खतरे से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए। नेपाल में बाढ़ के बाद एसएसबी ने 11 आरआरटी टीमों को अलर्ट कर दिया है, 7 और टीमें स्टैंडबाय पर रखी गई हैं। सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी की टीमें बचाव, राहत और आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए कामों में राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन की मदद के लिए तैयार है। इस वक्त नेपाल से बड़ी और अहम खबर आ रही है, वहां फ्लैश फ्लड हादसे में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर हो गया है 100 के करीब। आपको बता दें कि साथ ही लापता लोगों की तादाद भी बढ़कर 750 से ज्यादा हो चुकी है, जिसमें 133 भारतीय भी शामिल हैं। नेपाल से फ्लैश फ्लड की लगातार नई और खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही है जो रूह को कपा दें। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालिन शाह से फोन पर बात की है और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। कुछ ही घंटों के भीतर भारत से राहत सामग्री लेकर विमान नेपाल पहुंच चुके हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी पंकज दास जुड़ गए हैं काठमांडू से। पंकज, फिलहाल स्थिति क्या है और जो तस्वीरें हैं वो इतनी खौफनाक हैं, बार बार जो नई तस्वीरें सामने आ रही हैं वो रूह को कपाने वाली है, कितनी बड़ी त्रासदी है ये?
1: जी बिल्कुल, नेपाल में जो बुधवार को त्रासदी आई है उसकी कल्पना करना भी बहुत ही मुश्किल है। जो दृश्य लगातार हमारे चैनल पे दिखाए जा रहे हैं उसको देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह प्रलय कितना बड़ा है और नुकसान कितना अधिक हो सकता है। अभी नुकसान का तो सही सही अंदाजा लगाना भी काफी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कई जगह से संपर्क बिल्कुल भी टूटा हुआ है। वहां पे कितने नुकसान हुए, कितने लोग हताहत हुए हैं, कितने मिसिंग है, अभी इस बात का पता लगना बहुत मुश्किल है। कुछ आंकड़े जो अभी तक सरकार की तरफ से दिए गए उनमें 100 के आसपास लोगों के शव निकाले जा चुके हैं, 700 से अधिक लोग जो है अभी लापता बताए जा रहे हैं। सरकार लगातार जो है रेस्क्यू का काम कर रही है, लेकिन रात होने के कारण, बरसात होने के कारण जो है रेस्क्यू इस समय रात को रुका हुआ है। इसी बीच में जो है भारत से राहत सामग्री आ गई है, एक बड़ी अच्छी खबर है। इन दिन भर जो दिल दहलाने वाली तस्वीर और जो दुखद खबर के बीच में इस समय रात मध्य रात में जो है काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भारत से जो राहत सामग्री भेजी गई थी, अभी कुछ समय पहले ही उसे इंडिया के एम्बेसडर जो है नवीन श्रीवास्तव, उन्होंने नेपाल के एक मिनिस्टर को उन्होंने हैंड ओवर किया है। तो कल से जो है ये राहत सामग्री जो है प्रभावित लोगों में बांटी जाएगी।
0: पंकज, सबसे बड़ी मुश्किलें होती है ऐसे हालात में, क्योंकि सड़कें पूरी तरह से बह चुकी होती हैं, रास्ते पूरी तरह से खत्म हो चुके होते हैं, राहत और बचाव का काम करना अपने आप में बहुत मुश्किल हो जाता है बारिश और फ्लैश फ्लड के बीच में, कीचड़ के बीच में। अब सवाल यह कि किस तेजी के साथ लोगों तक मदद पहुंच पा रही है और कितना बड़ा इलाका और है जो इसकी जद में बताया जा रहा है?
1: इसके जद में जो है करीब 5 जिले नेपाल के आए हुए हैं। जो रसुवा है सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका रसुवा है, उसके बाद भादिंग जिला जो रसुवा से लगा हुआ है, इसी तरह जो है चितवन है जहां तक पानी पहुंच गया है, जो भारत के सीमा से काफी करीब है, जो मलबा और पानी का बहाव है वो वहां तक शाम को पहुंच गया था। तो ऐसे 4-5 जिले हैं जो बहुत अधिक प्रभावित है वहां पे। जहां तक राहत सामग्री पहुंचाने की बात है तो अभी एक ही जरिया है, सिर्फ हेलीकॉप्टर। जो रसुवा जिला सबसे अधिक प्रभावित है, धादिंग है, नुआकोट है, वहां तक की जो सड़कें जाती हैं काठमांडू से उनमें 40 किलोमीटर सड़कें बिल्कुल बहा दी गई हैं, 22 पुल जो है वो बहा दिए गए हैं, तो वहां पहुंचना सड़क मार्ग से बहुत मुश्किल है। कल सुबह जब ये बृहस्पतिवार को जब ये साफ होगा, मौसम साफ होगा, जब आसमान खुलेगा सुबह होगी, उसके बाद एक बार फिर से रेस्क्यू का काम हेलीकॉप्टर के जरिए जारी किया जाएगा। एक वही उपाय है, हेलीकॉप्टर से ही जो है राहत सामग्री भी पहुंचाई जा सकती है, हेलीकॉप्टर से ही बचाव का काम भी किया जा सकता है, दूसरा कोई भी उपाय नहीं दिख रहा है। जो आसपास की जहां कम क्षति हुआ है जिन जगहों पर, जैसे नुआकोट का जो काठमांडू से लगा हुआ इलाका है, इसी तरह चितवन है, जो धादिंग है, धादिंग के कुछ एरिया जहां पे सड़कें अभी तक जा सकती है वहां पे कल से राहत सामग्री सड़क मार्ग से पहुंचाई जाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा कठिनाई, सबसे अधिक जरूरत जो रसुवा वालों को है वहां पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो रहा है।
0: पंकज, हमें साथ ही साथ ये भी बताइए कि कहा जा रहा है कि भारत की कई नदियों का जलस्तर इससे बढ़ सकता है, किस तरह के जो बॉर्डर वाले इलाके हैं वहां क्या खास इंतजाम हैं, और साथ ही साथ कहा यह भी जा रहा है कि अभी मरने वालों का आंकड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है, प्रशासन को यह पता करने में भी समय लगेगा, जिस तरह की भयावह तस्वीरें हैं रेस्क्यू करके उस आंकड़े तक पहुंचने में बड़ा समय लगने वाला है।
1: बिल्कुल भी बहुत कम से कम 3-4 दिन का समय लगेगा ये सिर्फ ये जानने के लिए कि जहां जहां क्षति हुई वहां कितने लोग रहते, क्योंकि इस जब में जो प्रलय आया है उसमें जो नदी के किनारे के कई सारी बस्तियां, कई सारे गांव, कई सारे क्षेत्र हैं वो पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं, वहां का नामो निशान मिट गया है, कई सारे बाजार है जहाँ का नामो निशान मिट गया है, वहां पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में पहले वहाँ ये पता लगाया जाएगा कि कितने लोग वहाँ रहते थे, एक अनुमान लगाया जाएगा, उसके बाद फिर कितने मिसिंग है और कितने उसमें से डेड बॉडी निकाले जाते हैं, तो उसको निकालने में काफी समय लगेगा, क्योंकि नदी में पानी, ये जो बाढ़ है उसमें पानी के साथ साथ बहुत जबरदस्त मलबा आया है, जो यहाँ से मलबा बाहर जा रहा है, भारत की तरफ जा रहा है, और लगभग इस समय तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो निश्चित रूप से भारत की तरफ वो बढ़ गया होगा, क्योंकि शाम को ये खबर आई थी कि नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में जो पानी के साथ एक बहुत बड़ा मलबा, करीब 4 से 5 फीट का जो मलबा वो बह के वहां तक पहुंच गया है, तो निश्चित रूप से भारत में जो गंडक नदी है जो पश्चिम चंपारण का इलाका है वहां पहुंच चुका होगा ये।
0: बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए पंकज, आपका वाकई में खौफनाक तस्वीरें हैं, और आपको बता दें कि मरने वालों का आंकड़ा बढ़ना तय माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री से बात की है और हर संभव मदद का भरोसा दिया गया, कुछ ही देर में भारत से राहत सामग्री लेकर विमान नेपाल पहुंच चुके हैं।

नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन आज की खबरों की शुरुआत एक ऐसी खबर से जिससे पूरा विश्व हिला हुआ है। जल प्रलय की ये तस्वीरें, प्रलयंकारी तस्वीरें, क्योंकि आज सबसे पहले हम आपको नेपाल में प्रलयंकारी रूप दिखाएंगे पानी के इस भयानक प्रवाह से जो तबाही हुई है। और जिस तरह से घर हो, इमारतें हो, पुल हो, सड़कें हो, गांव के गांव सैलाब में बह गए, सब कुछ जैसे निगल गया है ये जल सैलाब। बहुत डराने वाली तस्वीरें आ रही है। अचानक आया पानी करीब 500 लोगों को बहा ले गया है। इसमें 100 से ज्यादा भारत के लोग हैं। इस भयानक मंजर को देखने के बाद यकीन करना मुश्किल है कि नेपाल में मॉनसून काफी कमजोर रहा है। नेपाल सरकार खुद कह रही है कि जिस जिले में ये प्रलय है वहां मूसलाधार बारिश हो ही नहीं रही थी। देखिए, अब सवाल यह है कि आखिर नेपाल में हुई इस तबाही का तिब्बत और चाइना से क्या कनेक्शन है। नेपाल के फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन का अनुमान है कि तिब्बत के इलाकों में भारी बारिश या लैंडस्लाइड हुआ होगा और इसका मलबा नेपाल में तबाही बनकर टूट पड़ा। यह भी दावा किया जा रहा है कि नेपाल की ये त्रासदी सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा की कहानी नहीं है, बल्कि इसके पीछे तिब्बत में चाइना द्वारा बनाए जा रहे बांध और दूसरे ढांचे भी एक बड़ा कारण हो सकते हैं। इस बाढ़ का खतरा अब सीमित नहीं है। नेपाल के नुवाकोट, धादिंग, गोरखा, चितवन जैसे जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी काठमांडू को भी हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। इसी तरह का अलर्ट भारत के भी कई राज्यों में, खासतौर पर बिहार, उत्तर प्रदेश में कई जिलों में किया गया है। भारत के बिहार राज्य को भी लेकर जारी कर दिया गया है अलर्ट, क्योंकि नेपाल की नदियां आगे चलकर भारत में ही प्रवेश करती हैं। भोटेकोशी का पानी त्रिशूली के जरिए भारत की गंडक नदी में मिलता है और गंडक नदी बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली तमाम जिलों से गुजरती है। नेपाल के बाद आपको गुरुग्राम की वो तस्वीरें दिखाएंगे जिसे अब गड्ढा ग्राम कहना ज्यादा ठीक लगने लगा है। ऐसा गड्ढा ग्राम जिससे मुख्यमंत्री भी मुंह फेर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से जब गुरुग्राम में जलभराव की गंभीर स्थिति पर सवाल पूछा गया तो सवालों से बचते निकल गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के हिजाब पर आए फैसले पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तीखा एतराज जताया है। ओवैसी ने सवाल उठाया कि ये तय करने वाले आप कौन होते हैं कि क्या पहना जाए और क्या नहीं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि देश के मुसलमानों को अपनी खुद की लीडरशिप तैयार करनी होगी, तभी उनके अधिकारों की सही रक्षा हो सकेगी। इसके बाद आपको अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के चीफ जॉन रैटक्लिफ की अचानक हुई और अघोषित रशिया यात्रा के बारे में बताएंगे कि CIA चीफ रशिया क्यों पहुंच गए। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा और अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक CIA चीफ के इस सीक्रेट दौरे ने दुनिया में कूटनीतिक हलचल बढ़ा दी है। रशिया और अमेरिका के बीच गहरे तनाव और यूक्रेन संघर्ष के बीच इस हाई प्रोफाइल यात्रा को बहुत संवेदनशील माना जा रहा है। जॉन रैटक्लिफ का विमान मॉस्को में करीब 8.5 घंटे तक रुका रहा। इस दौरान अमेरिका ने यूक्रेन को सूचना दे दी थी ताकि वो किसी तरह के हमले ना करे। देश के रक्षा मंत्रालय ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, वो हम आपको बताएंगे। वो ऐतिहासिक फैसला लेते हुए अब DRDO की मिसाइल निर्माण तकनीक को भारतीय प्राइवेट कंपनीज के साथ साझा करने की अनुमति दे दी है। इस बड़े कदम का मकसद भविष्य की किसी भी लंबी जंग के दौरान सेना को हथियारों की कमी से बचाना और देश को रक्षा क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाना है। अब चुनिंदा निजी कंपनीज भारत में ही प्रलय, आकाश NG और अस्त्र जैसी घातक पारंपरिक मिसाइलों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करेंगे। और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र की खबर बताएंगे, जहां पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने गांजा तस्करी के एक बहुत शातिर तरीके का पर्दाफाश किया है। अपराधियों ने कानून की आंखों में धूल झोंकने के लिए एम्बुलेंस को ही नशे की तस्करी का जरिया बना लिया था। एम्बुलेंस ऑपरेशन शुद्धि के तहत
जब पुलिस ने एक संदिग्ध एम्बुलेंस की तलाशी ली तो उसके फर्श के नीचे बने गुप्त तहखाने से 81 किलो अवैध गांजा बरामद हुआ है। देखिए

लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर जिसके साथ हम शुरुआत कर रहे हैं वो नेपाल से है। नेपाल में कुदरत का जो क्रोध दिखा है इस भयानक प्रलय से, जो तबाही हुई है, जिस तरह घर, इमारतें, पुल, सड़कें, गांव के गांव सैलाब हो गए, सचमुच डराने वाली तस्वीरें आ रही हैं। एक मिनट को कई बार लगता है कि क्या हम लोग इतने अभ्यस्त हो गए हैं इस तरह की तबाही की तस्वीरें देखते हुए, त्रासदी की तस्वीरें देखते हुए, कि हमको असर नहीं होता। लेकिन जब आप उन चीखों को सुनेंगे, जब आप देखेंगे कैसे लोग खड़े हुए थे, भागने की कोशिश कर रहे थे, वो आगे आगे भाग रहे हैं, पीछे पीछे पानी उनका पीछा कर रहा है, जैसे जल प्रलय आज सब कुछ निगलने को बेताब हो, तो इंसान कांप उठता है कि आज हमने प्रकृति को कहां पहुंचा दिया है, प्रकृति के साथ ये हाल किया है कि अब ये त्रासदी खुद हमारे साथ हो रही है। हम आपको बताना चाहते हैं कि नेपाल की ये त्रासदी सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा की कहानी नहीं है, बल्कि इसके पीछे तिब्बत में चाइना द्वारा बनाए जा रहे बांध और दूसरे ढांचे भी एक बड़ा कारण हो सकते हैं। और आज हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं कि आखिर चाइना ऐसा क्या कर रहा है जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि ऐसी नौबत पैदा हुई। लेकिन उससे पहले आप नेपाल से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां शायद पिछले एक दशक की यह सबसे बड़ी आपदा आई है। जो लोग दूर से वीडियो बना रहे थे वो जोर जोर से चीख चीख कर कह रहे थे लोगों को कि भाई देखो ऊपर से पानी का सैलाब आ रहा है, लेकिन लोग भागते इससे पहले ये सब कुछ उन्हें निगल गया। अब इन भयंकर जो भयानक मंजर है उसको देखने के बाद क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि इस बार नेपाल में मॉनसून बहुत कमजोर रहा है। नेपाल में पिछले 60 दिनों में सामान्य से 10% कम बारिश हुई है। यही नहीं, नेपाल के जिस रासुवा जिले में ये तबाही हुई वहां भी सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। नेपाल की सरकार खुद कह रही है कि जिस जिले में ये प्रलय आई वहां मूसलाधार बारिश हो ही नहीं रही थी, और यही बात अभी कई लोगों को हैरान कर रही है। वो ये जानना चाहते हैं कि जब इतनी ज्यादा बारिश नहीं हो रही थी तो नेपाल की नदियों में इतना भयानक सैलाब कैसे आया। देखिए

अब ये सब कैसे हुआ है आइए वो समझिए। इसकी शुरुआत आज सुबह 9 बजे हुई, नेपाल की भोटे कोशी नदी से हुई और ये वही नदी है जो चाइना के और तिब्बत से नेपाल में बहती है। जब इस नदी में पानी का स्तर अप्रत्याशित रूप से बढ़ा और जल प्रलय जैसी स्थिति बनी तो इसमें सब कुछ तबाह हो गया। अब लोगों का कहना है कि जब पानी और उसके साथ पहाड़ों का मलबा इतनी ऊंचाई से नीचे की तरफ आ रहा था तब एक बहुत बड़े धमाके जैसी आवाज सुनाई दी। ऐसा धमाका जो अक्सर ज्वालामुखी के फटने पर होता है। कल्पना कीजिए पानी का ऐसा बहाव जो कि हिंदू कुश की पहाड़ियों से नीचे आ रहा है और साथ में मलबा इतना तेज था कि इसमें हजारों घर, इस बहाव में हजारों इमारतें, गाड़ियां, पुल, सड़कें, बाजार, पुलिस चौकियां, इमिग्रेशन ऑफिस की बिल्डिंग, बिजली बनाने वाले 20 से ज्यादा हाइड्रो पावर प्लांट्स पूरी तरह नष्ट हो गए। शुरुआत में इस सैलाब की सबसे बड़ी मार रासुवा जिले के 2 इलाकों पर पड़ी। इनमें एक इलाके का नाम है तिमुरे, यानी या तिमुरे भी कहते हैं वहां पर, और दूसरे इलाके का नाम है स्याफ्रू बेसी। तो ये दो, तिमुरे और स्याफ्रू बेसी, याद रखिए। इनमें भी जो तिमुरे इलाका है वो बॉर्डर है, नेपाल तिब्बत की सीमा पर मौजूद है और यहां आज सुबह एक बहुत बड़ा बाजार लगाया गया था जहां एक बार में 500 लोग मौजूद रहते थे। लेकिन नेपाल सरकार का कहना है कि इस घटना में इस पूरे इलाके का नामो निशान मिट गया है। इस पूरे बाजार का, बाजार की दुकानें, बाजार के मौजूद लोग नामो निशान मिट गया है। जो लोग सुबह दुकानें खोल चुके थे या बाजार में मौजूद थे या जो इमिग्रेशन ऑफिस आए थे वो इन विनाशकारी प्रलय में गायब हो गए। अब अगर आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो इसी इलाके में नेपाल और चाइना को जोड़ने वाला मैत्री पुल पूरी तरह पानी में बह गया। हालात ये बन गए कि नेपाल ने जो बॉर्डर चेक पोस्ट तिब्बत के पास लगाई थी या जो पुलिस चौकियां इसके पास पास थी उन्हें पलक झपकते ही सैलाब ने पूरी तरह से निगल लिया। देखिए नेपाल सरकार के मुताबिक इस त्रासदी में अब तक 95 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 500 से ज्यादा लोग लापता हैं, जिनमें 484 पर्यटक हैं। इनमें 133 भारतीय हैं, 93 नेपाली हैं, 258 पर्यटक दूसरे देशों के हैं। और देखिए एक बार ये पानी का सैलाब वहां से हटता है तो सिर्फ मलबा जम जाता है और पूरी तरह से गांव के गांव नीचे दब जाते हैं, दबकर सब कुछ जमीन हो जाता है। गुंजाइश ही नहीं बचती कि इसके नीचे से किसी चीज को निकाला जा सके। जहां जहां जिस जिस रास्ते में गया है बर्बादी करते गया है। इसके अलावा 60 लोग ऐसे हैं जो नेपाल के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और प्लांट्स में काम करते थे लेकिन ये लोग भी लापता हैं। बताया जा रहा है इनमें कई इंजीनियर्स भी वहां पर काम कर रहे थे, कई लोग टनल में काम कर रहे थे, कई लोग ऑन साइट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे थे। कई लोग वीडियो बनाते हुए चिल्लाते हैं कि ऊपर से पानी आ रहा है, बाढ़ आ रही है, भागो भागो, लेकिन इससे पहले भी कि वो कुछ समझ पाते सब कुछ बर्बाद हो गया। नेपाल के जिस रासुवा जिले में ये प्रलय आई वहां करीब 46,000 लोगों की आबादी रहती है जो नेपाल की कुल आबादी का 0.15% है। बड़ी बात यह है कि सैलाब में बहे इन लोगों की 12 घंटे बाद भी कोई खबर नहीं है
और नेपाल के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। नेपाल के मुताबिक जिन इलाकों में भोटे कोशी नदी बहती है उन सभी इलाकों में पानी इतना ज्यादा है कि कोई भी हेलीकॉप्टर वहां उतर ही नहीं पा रहा, लापता हुए लोगों की कोई सूचना नहीं मिल पा रही। देखिए

इस बाढ़ का खतरा अब सिर्फ नेपाल के रासुवा जिले तक सीमित नहीं रहा है। जिस भोटे कोशी नदी में ये बाढ़ आई वो नेपाल की त्रिशूली नदी में जाकर मिलती है, और यही कारण है कि अब त्रिशूली नदी का जल स्तर बढ़ने से बाकी के जो जिले हैं उनमें कई रिहायशी इलाकों को खाली कराया जा रहा है। इनमें भी नेपाल के नुवाकोट, धादिंग, गोरखा, चितवन जैसे जिलों के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया गया है, और कई एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि इससे भी ज्यादा प्रबल एक और फ्लैट जो फ्लैश फ्लड है उसके आने की आशंका अभी भी बनी हुई है। जब आप ये खबर देख रहे हैं, रेड अलर्ट का मतलब यह होता है कि इन जिलों में नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ने से बाढ़ आ सकती है, हजारों लोग प्रभावित हो सकते हैं, यही रेड अलर्ट घोषित किया गया है। इसके अलावा नेपाल के रासुवा जिले से राजधानी काठमांडू की दूरी ज्यादा नहीं है, दोनों के बीच सिर्फ 120 किलोमीटर का सड़क मार्ग है, और यही वजह है कि काठमांडू को भी अब रेड अलर्ट पर रखा गया है। और काठमांडू से रासुवा हो, नुवाकोट, चितवन, धादिंग जिलों की तरफ जाने वाली जितनी सड़कें हैं, दूसरे रास्ते, उस सभी बंद कर दिए गए हैं। इस तरह का अलर्ट भारत के बिहार राज्य को लेकर भी जारी किया गया है, क्योंकि नेपाल की जो नदियां हैं, आप हर साल देख सुनते होंगे कोशी में बाढ़ आया, ये बताया जाता है कि नेपाल की नदियों से बढ़ते हुए आगे कैसे गंडक नदी तक पानी आता है। नेपाल की जो नदियां हैं वो आगे चलकर भारत में ही प्रवेश करती हैं। उदाहरण के लिए आज नेपाल की जिस भोटे कोशी नदी में प्रलय आई वो नेपाल से होकर त्रिशूली नदी में मिलती है, और आगे इसका पानी भारत की गंडक नदी में मिलता है, और गंडक नदी बिहार के 7 जिलों में बहती है। इनमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली जिला सभी शामिल हैं। अब बिहार सरकार ने गंडक और कोसी नदी से जुड़े जिलों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी स्थिति की निगरानी के लिए उच्च स्तरीय टीम बनाई है। आज गृहमंत्री अमित शाह ने भी सम्राट चौधरी से बातचीत की, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालिन शाह से बात की। देखिए, अभी खतरा सिर्फ नेपाल तिब्बत सीमा तक सीमित नहीं माना जा रहा है, बल्कि नीचे की तरफ बहने वाले पानी पर भारत और खासकर बिहार भी नजर रखे हुए है, और ये क्यों जरूरी है उसके लिए आप एक बार फिर से नेपाल में हुई इस तबाही की इन तस्वीरों को देखिए।

और ये जो आवाजें आप सुन रहे थे दरअसल स्कूल बस थी, बच्चे उसमें मौजूद थे और वहां से ये बच्चे वीडियो बना रहे थे। मतलब कल्पना कीजिए कि इन बच्चों के लिए क्या दहशत, क्या खौफ उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। अब आपको ये बताते हैं कि जिन भारतीयों से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है, जो भारतीय लापता बताए जा रहे हैं, उनमें ज्यादातर जानते हैं कैलाश मानसरोवर जी की यात्रा पर थे। भारत का विदेश मंत्रालय कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए दो रूट को अपनी मंजूरी देता है। इनमें पहला रूट उत्तराखंड और लिपुलेख पास से होते हुए कैलाश मानसरोवर तक जाता है, जिसमें 22 दिन लगते हैं और इस रूट से यात्रा करने पर लगभग 2 लाख रुपए से ज्यादा का खर्च आता है। एक दूसरा रूट है सिक्किम और नाथुला से होते हुए कैलाश मानसरोवर तक जाता है, जिसमें कुल 21 दिन लगते हैं और इस रूट से यात्रा करने का खर्च औसतन 3,31,000 रुपए आता है। अब सरकार के बनाए इन दोनों रूट्स को लेकर 3 समस्याएं आती हैं। पहला, सरकार इन दोनों रूट से अधिकतम 1,000 लोगों को ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर लेकर जाती है। दूसरा, इन रूट से कैलाश मानसरोवर की यात्रा को पूरा करने में वक्त भी ज्यादा लगता है। और तीसरा, सरकार के बनाए इन रूट से कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने में पैदल भी ज्यादा चलना पड़ता है, जिसके कारण बहुत सारे लोग एक प्राइवेट रूट को अपनाते हैं, वही रूट जिस पर आज ये प्रलय आई है। इस प्राइवेट रूट के पहले दिन भारत से लोग नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंचते हैं। एक दिन काठमांडू का स्टे होता है, दूसरे दिन वो काठमांडू में साइट सीइंग करते हैं, काठमांडू के आसपास घूमते हैं, उस दौरान परमिट लेते हैं, उनको पूरी यात्रा के बारे में बताया जाता है, उनकी मेडिकल जांच की जाती है। तीसरे दिन वो गाड़ी से नेपाल के रासुवा जिले में पहुंचते हैं, जहां आज ये प्रलय आई है। चौथे दिन वो इसी जिले के रसुवा गढ़ी इलाके में आते हैं और वहां से नेपाल तिब्बत का बॉर्डर है। बॉर्डर पार करने के बाद वो तिब्बत की जो जिरोंग पोस्ट है उस पर आते हैं और यहां एक दिन आराम करने के बाद छठे दिन वो जोंगबा पहुंचते हैं। अब जोंगबा वो जगह है जहां से अगला पड़ाव मानसरोवर झील का आता है और इस यात्रा के 9वें दिन कैलाश परिक्रमा का पहला मौका आता है। और बड़ी बात यह है कि इस रूट से सिर्फ 14 दिन में यह यात्रा काठमांडू आकर खत्म हो जाती है और इस पर 2 से 3 लाख रुपए खर्च होते हैं। बड़ी बात यह है कि सरकार के बनाए रूट से अधिकतम 1,000 लोग ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जा सकते हैं, लेकिन इस रूट से लगभग 20,000 से ज्यादा भारतीय हर साल इस यात्रा को पूरा करते हैं। उदाहरण के लिए इस साल मई महीने से अब तक 24,000 लोगों ने इसी प्राइवेट रूट से कैलाश मानसरोवर की यात्रा की और आज भी कई लोग इस यात्रा के लिए रसुवा गढ़ी से तिब्बत में प्रवेश करने वाले थे, लेकिन इसी के बाद उनसे संपर्क टूट गया और अब ये सभी भारतीय लापता बताए जा रहे हैं। जग्गी वासुदेव, जिन्हें सदगुरु भी कहा जाता है, उनका कहना है कि उनके 77 लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए इमिग्रेशन सेंटर में मौजूद थे, लेकिन अब इन लोगों की कोई खबर ही नहीं है और इनसे संपर्क टूट चुका है। एक बार आइए आपको वो इमिग्रेशन सेंटर पूरा दिखाते हैं, सफेद रंग की बड़ी बिल्डिंग जिसके बाहर बताया जा रहा है ये सभी लोग मौजूद थे। और आप देखिए कैसे पीछे से सैलाब आता है, लोग भागने की पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। मतलब पक्षी से लेकर हर कोई इंसान, सारी आवाजें इतनी जोर आ रही थी कि सब भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर पीछे से आता है ये सैलाब, क्या इमारत क्या इंसान, सब कुछ निगल जाता है।

0: अब इस सवाल पर आते हैं कि नेपाल में हुई इस तबाही का तिब्बत और चाइना से आखिर क्या कनेक्शन है। नेपाल के फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन ने कहा है कि रासुवा में हुई सामान्य बारिश को इस बाढ़ का कारण मानना मुश्किल है। यानी नेपाल ये कह रहा है कि उसके इलाके में उतनी बारिश हुई ही नहीं कि भोटेकोशी नदी में इतना बड़ा सैलाब आ जाए। ये तभी मुमकिन है जब नेपाल के इसी जिले से लगे तिब्बत के इलाकों में भारी बारिश हुई हो। और अभी इंडिया टुडे के लिए रिपोर्ट लिखने वाले पंकज दास और शशि भूषण बताते हैं कि सैटेलाइट तस्वीरों में इसके संकेत भी मिल रहे हैं। यानी सैटेलाइट तस्वीरें बता रही हैं कि तिब्बत के इलाकों में भारी बारिश और लैंडस्लाइड हुआ, और इसके बाद जब इसका मलबा नेपाल में आया तो इसने एक बहुत बड़ी तबाही का रूप ले लिया। कैसे, वो भी आप समझिए। आइए आपको ये नक्शा दिखाते हैं, क्योंकि अगर आप इस नक्शे को देखेंगे तो ये सैलाब नेपाल के रासुवा जिले में आया है। रासुवा जिले की सीमा चाइना के तिब्बत से लगती है। यह आपको यह बात भी बताना जरूरी है कि चाइना इस क्षेत्र को तिब्बत नहीं कहता, वो इसे शिजांग कहता है। इसी शिजांग में शिगात्से नाम का एक जिला या शहर है जहां चाइना की सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक एक दिन पहले भारी लैंडस्लाइड हुआ, मूसलाधार बारिश हुई। इस इलाके को जिरोंग काउंटी कहा जाता है। ये देखिए आपको मैप पर एक एक करके सब आता चला जाएगा जिससे आप समझेंगे। और ये जो जिरोंग काउंटी है जो नेपाल के इसी रसुवा जिले की सीमा से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां लैंडस्लाइड आया तो सब कुछ आया। और जब तिब्बत के इस इलाके में भारी लैंडस्लाइड हुआ तो इससे लगा नेपाल का रसुवा जिला इसकी चपेट में आ गया और वहां से पूरी तबाही हो गई है। यानी दावा है कि इस तबाही के पीछे चाइना का तिब्बत बड़ा कारण हो सकता है, और ये बात हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी जिन्हुआ ने आज दो रिपोर्ट्स प्रकाशित की हैं जो मैं अपने साथ लेकर आई। आप हैरान रह जाएंगे। पहली रिपोर्ट में यह बताया गया है कि तिब्बत के जिरोंग पोर्ट के पास अचानक भूस्खलन यानी मडस्लाइड हुआ है। ये देखिए, ये पहली रिपोर्ट है जिसमें वो ये दावा करते हैं कि जिरोंग के पास अचानक बहुत बड़ा ये लैंडस्लाइड हुआ है और उसी की वजह से। ये देखिए, ये दूसरी रिपोर्ट में आपको बाद में दिखाऊंगी। ये जो रिपोर्ट है उसमें यह दावा किया गया है, इसकी हेडलाइन दिखा दीजिए, ह्यूज मडस्लाइड की वो बात कर रहे हैं। तो देखिए, उनका कहना है कि मडस्लाइड हिट्स नियर बॉर्डर पोर्ट इन जिजांग, पीपल फियर्ड मिसिंग। ये हो गया, ये वही इलाका है जहां से चाइना और नेपाल के बीच जमीन के रास्ते व्यापार और आवाजाही होती है। अब चाइना की सरकारी न्यूज एजेंसी पहले ये कह रही थी कि तिब्बत के इस इलाके में भूस्खलन होने से भारी तबाही हुई, कई लोग लापता है। इसमें यह भी लिखा गया है कि भूस्खलन के कारण चाइना की तरफ जिरोंग पोर्ट तक पहुंचने वाली सड़कें कट गई हैं, फोन्स हो दूसरे जो कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैं वो सब सेवाएं ठप पड़ गई हैं, बिजली आपूर्ति बंद है, कुछ लोग मलबे में फंसे हैं या लापता हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि नेपाल के जिस इलाके में प्रलय आई वहां से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर तिब्बत के इलाके में हालात पहले ही बिगड़ चुके थे। लेकिन आज सुबह जब नेपाल की भोटेकोशी नदी में जलजला आया तो चाइना की इसी सरकारी न्यूज एजेंसी ने एक दूसरी खबर लिख डाली। अपडेट, जी अर्जेस ऑल आउट रेस्क्यू रिलीफ एफर्ट्स आफ्टर मडस्लाइड हिट्स बॉर्डर पोर्ट इन जिजांग। इस बार इस खबर में यह लिखा गया कि नेपाल में भूस्खलन होने से तिब्बत के इलाके प्रभावित हुए। इसमें पूरी खबर को उन्होंने पलट दिया और ये कहा कि नेपाल में जो स्थिति हुई है, नेपाल में जो ये फ्लड है उसकी वजह से ये प्रभावित हुआ है। खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि किस तरह की बारिश हो रही है। हालांकि जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो इसमें साफ नजर आ रहा है कि तिब्बत के जिरोंग पोस्ट का जो इमिग्रेशन ऑफिस है वहीं ये सैलाब आता हुआ दिखा था, और इसी के बाद हो सकता है कि नेपाल और आसपास के तमाम इलाकों में पहुंचा, बड़ी तबाही मची। देखिए,
1: जोड़ने पुल पनि बगेको।

इसके अलावा जितना पानी और पहाड़ों का मलबा नेपाल की इस भोटेकोशी नदी में आया वो ये बताता है कि इसके पीछे ग्लोफ भी GLOF भी एक बड़ा कारण हो सकता है। इसका मतलब होता है ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, यानी जब पहाड़ों पर ग्लेशियर्स के पास बर्फ और पानी की झीलें बन जाती हैं और किसी भूस्खलन या भारी बारिश के कारण उस झील की जो प्राकृतिक दीवारें हैं जो उसको रोक कर रखती हैं पानी को, वो अगर टूट जाती है तब उसका लाखों करोड़ों लीटर पानी एक साथ नीचे की तरफ चला जाता है और हो सकता है कि इस मामले में भी ऐसा हुआ हो। यह इसलिए संभव है क्योंकि रसुवा में नेपाल और तिब्बत की पहाड़ियां समुद्र तट से अधिकतम 7,227 मीटर की ऊंचाई पर है। यानी आप ये मान के चलिए कि जिस ऊंचाई पर केदारनाथ जी हैं उससे दोगुनी ऊंचाई पर नेपाल तिब्बत का ये सीमावर्ती इलाका है, या आप ये भी कह सकते हैं कि ये इलाका माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से थोड़ा ही कम है। अब माउंट एवरेस्ट समुद्र तट से 8,849 मीटर की ऊंचाई पर है, जबकि नेपाल का, माफ कीजिएगा, तल से जो समुद्र तल है उससे 8,849 मीटर की ऊंचाई पर है, जबकि नेपाल का जो रसुवा जिला है वो समुद्र तल से अधिकतम 7,227 मीटर की ऊंचाई पर है। अब इतने ऊंचे पहाड़ी इलाके और उनमें ग्लेशियर्स के पास बर्फ और पानी की झीलें बनना सामान्य होता है क्योंकि इतनी ऊंचाई पर बर्फ ज्यादा होती है और जब गर्मी बढ़ने से ग्लेशियर तेजी से पिघलता है तो वो इस तरह की एक झील का आकार ले लेता है। संभव है यहां वो हुआ। देखिए,

आइए मैं अब आपको स्क्रीन पर दिखाती हूँ कि क्यों आज इस पानी और जल प्रलय से नेपाल में जो हो रहा है, भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। खासतौर पर बिहार यूपी में आखिर इसको लेकर अलर्ट क्यों जारी किया गया है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं ये जो शिगास्ते प्रांत है तिब्बत का, यहीं पर ग्यारोंग पोर्ट और ये 30 किलोमीटर की दूरी इसकी है इस बॉर्डर से, जिस तिमरे रसुवा जिला की हम बात लगातार कर रहे हैं। अब यहां पर जो ये भोटे कोशी नदी है वो आप देख रहे हैं, उसका उसकी जो धारा है वो कैसे बहती है, त्रिशूली नदी है, नारायणी नदी है, ये धीरे धीरे नेपाल से होते हुए पहुंचते हैं गंडक नदी में। और यही गंडक नदी जो बिहार में बाढ़ की स्थिति पैदा करती है, कितने जिलों को प्रभावित कर सकती है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये देखिए, चाहे पश्चिमी चंपारण हो, पूर्वी चंपारण हो, क्योंकि इसी ये मैंने रेड कर दिया आपके लिए, यही जो गंडक नदी है उसमें ये भोटे कोशी नदी का पानी आता है और यहां से जिस तरह का जल भराव इस वक्त जल बहाव हो रहा है वो आगे बढ़ेगा। तो ये सारे जिले जो है बिहार के, जो दोनों तरफ है इसी गंडक नदी के, चाहे सिवान हो, सारण हो, गोपालगंज हो, इधर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, ये सभी, ये सारा बिहार का जो इलाका है वो प्रभावित होगा, क्योंकि ये जो नदी का पानी है गोटे कोशी नदी का, वो सीधे सीधे पहुंच रहा है गंडक नदी में। और गंडक नदी से हमेशा बिहार में बाढ़ आने की आशंका रहती है, और ऐसे में जब ये उसी गंडक नदी से बहेगा तो ये सभी जो 6 जिले हैं उन पर असर हो सकता है। देखिए, अब हम ये तो नहीं बता सकते कि ये प्रलय तिब्बत में भूस्खलन के कारण आई या नेपाल के कारण आई, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जिस इलाके में ये सैलाब आया वहां हिमालय की पहाड़ियों में चाइना लगातार सड़कें बना रहा है, पुल बना रहा है, बांध बना रहा है, तमाम परियोजनाएं खड़ी कर रहा है, जबकि विशेषज्ञ इतनी ऊंचाई पर कंक्रीट के ढांचों को ग्लेशियर के लिए सही नहीं मानते हैं। तिब्बत के परिवहन विभाग के मुताबिक साल 2021 से 25 के दौरान तिब्बत में आने जाने वाले प्रमुख राष्ट्रीय मार्गों के 3,432 किलोमीटर हिस्से को अपग्रेड किया गया और 2025 के अंत तक तिब्बत का कुल रोड नेटवर्क 1,25,000 किलोमीटर तक पहुंच गया। यानी तिब्बत के जिन पहाड़ी इलाकों में आम सड़कें बनाना भी मुश्किल था कि भाई लोगों के लिए गाड़ियां जाने के लिए वहां पर सड़कें बनाई जाए, वहां चाइना ने बड़े बड़े हाईवेज बना दिए हैं, बड़ी बड़ी सुरंगें बना दी हैं। जिस शिगास्ते में नेपाल के पास भूस्खलन होने का दावा है, वहीं कई बड़े एक्सप्रेसवे बनाए गए हैं, जिनमें लासा को शिगास्ते से जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे 167 किलोमीटर लंबा है, समुद्र तल से अधिकतम 4,000 मीटर की ऊंचाई पर है। यही नहीं, चाइना का जो वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट है उसमें तिब्बत को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। यानी जिस तिब्बत को हम आमतौर पर बर्फीले, सुनसान, दुर्गम पहाड़ों के रूप में देखते हैं, वहां चाइना सड़कों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार कर रहा है और प्रकृति से ये खिलवाड़ आज त्रासदी बनकर टूटा है। इनमें भी जो दुर्गम इलाके और गांव है उनमें 97% गांवों में सड़कों का ये नेटवर्क पहुंच चुका है। और चाइना ने यह भी ऐलान किया है कि अब वो तिब्बत के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में भी रेल लाइन का विस्तार करेगा। और यह बात सिर्फ सड़क और रेल लाइन की नहीं है, तिब्बत वॉच की एक रिपोर्ट है जो ये कहती है कि हिमालय क्षेत्र में तिब्बत को एशिया की नदियों का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। जिस ब्रह्मपुत्र नदी पर चाइना बांध बनाने की बात कह रहा है, वो ब्रह्मपुत्र नदी भी तिब्बत से ही निकलती है। अब चाइना इसी चीज को देखते हुए तिब्बत के जो हाइड्रो पार्क निर्माण है उनका बड़ा केंद्र बनाना चाहता है। यानी चाइना की कोशिश यह है कि वो तिब्बत को बिजली के लिए दुनिया का सबसे बड़ा पावर सेंटर बना दे। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती, चाइना तिब्बत के इन्हीं इलाकों में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी में इस्तेमाल होने वाले लिथियम बैटरीज, तांबा, सोना, चांदी जैसे खनिजों को निकालने के लिए बड़ी योजना पर काम कर रहा है। कितने सारे हाइड्रो पार्क प्रोजेक्ट्स हैं जो तबाह हो गए हैं। कुछ देर पहले तक मिली जानकारी के मुताबिक 3 हाइड्रो पार्क प्रोजेक्ट्स जो वहां चल रहे थे वो तो पूरी तरह से समतल हो गए हैं। जब इतने ऊंचे पहाड़ी इलाकों में ऐसा किया जाता है तो वहां की प्राकृतिक संरचनाएं प्रभावित होती हैं, और इसके कारण जब भूस्खलन और पहाड़ों के बार बार खिसकने की घटनाएं बढ़ती हैं तो ग्लेशियर्स की झीलें टूटने लगती हैं और ऐसी आपदाओं का जन्म होता है। उदाहरण के लिए साल 2018 में तिब्बत के खामेरिया में द्रिचु नदी पर चाइना एक बांध बना रहा था जिसका नाम था लावा बटांग डैम। उस वक्त इस संवेदनशील इलाके में इस निर्माण से एक विशाल भूस्खलन हुआ
और पहाड़ का एक पूरा हिस्सा द्रिचू नदी में समा गया। ये 2018 की तस्वीर है। ये घटना इतनी भयावह थी कि उस वक्त हजारों घर ढह गए, कई सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ नष्ट हो गया। ये घटना बताती है कि तिब्बत के इलाकों में पहाड़ पानी भूस्खलन का कॉम्बिनेशन कितना खतरनाक हो सकता है। और अभी जब चाइना इस इलाके में लगातार सड़कें, पुल, बांध, हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ तैयार कर रहा है, तब भी सवाल फिर से खड़ा हुआ है कि क्या चाइना के कारण आसपास के देशों पर इसका खतरा बढ़ सकता है। जैसे इस मामले में भी चाइना ने नेपाल की सीमा पर जोरोंग पोर्ट ऐसी जगह पर बनाया जो बहुत संवेदनशील थी। हमने मैप पर भी आपको दिखाया था, ये जो पोर्ट है बहुत करीब है नेपाल बॉर्डर से। यहां दो बड़ी नदियों का संगम था। चाइना को ये बात पता रही होगी कि अगर वो इस जगह सड़कें, इमिग्रेशन ऑफिस, एक पोर्ट बनाएगा तो इससे नदियों के पानी का बहाव बढ़ जाएगा और तेजी से नेपाल की तरफ जाएगा। लेकिन इन खतरों के बावजूद नेपाल ने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया। और मकसद जानते हैं क्या है? इसका मकसद था नेपाल के साथ चाइना के व्यापार को बढ़ाना। आज चाइना और नेपाल के बीच होने वाले कुल व्यापार का करीब 30% हिस्सा अकेले इसी रास्ते से गुजरता है। चाइना ने साल 2014 में इस जगह पर कई निर्माण कार्य शुरू किए। 2017 में इसे अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट का दर्जा दिया गया। 2016 में इतने संवेदनशील पहाड़ी इलाके में लॉजिस्टिक्स पार्क, मॉल, यार्ड, पार्किंग और दूसरी सुविधाएं विकसित की और यहां 15 लॉजिस्टिक्स और 40 से ज्यादा तो ट्रेडिंग कंपनियों को काम करने का लाइसेंस दे दिया। कोविड के बाद साल 2022 में यही रूट इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चाइना से नेपाल भेजने के लिए इस्तेमाल होने लगा। फिर साल 2022 में यही यहां से चीन का पहला बॉर्डर इकोनॉमिक कोऑपरेशन जोन स्थापित करने को मंजूरी मिली। यानी चाइना ने नेपाल के साथ व्यापार के लिए इस इलाके का मूल स्वरूप ही बदल दिया। और जब इसके कारण इस इलाके की प्राकृतिक संरचना बिगड़ी तो आज चाइना कह रहा है कि नेपाल में भूस्खलन के कारण यह नुकसान हुआ है। आइए आपको एक बार वो वीडियो फिर से दिखाते हैं जिसमें एक हाइड्रो पार्क प्रोजेक्ट पर ही काम कर रहे कुछ मजदूर, ये तो आप देख रहे हैं वहां पर जो इमिग्रेशन पोस्ट है, एक हाइड्रो पार्क प्रोजेक्ट में कुछ लोग काम कर रहे हैं। जोर जोर से चीख कर कुछ लोग बताते हैं, सामने से उनको बाढ़ आती हुई दिख रही है कि भागो भागो। लेकिन इससे पहले कि वहां पर काम कर रहे मजदूर, इंजीनियर्स कुछ समझ पाते, पानी सब कुछ निगलता हुआ दिखाई देता है। और यह एक हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट है जिसका वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि 3 से ज्यादा हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स तो पूरी तरह से समतल हो गए। सुनिए, देखिए। जब चाइना तिब्बत के मुश्किल पहाड़ों में कोई बड़ी परियोजना शुरू करता है या टनल बनाता है तो पूरी दुनिया उसे एक अजूबे की तरह देखती है। और चाइना अपनी फ्लेक्सिंग भी करता है, मसल फ्लेक्सिंग की, देखो हम क्या कुछ नहीं बना सकते। उदाहरण के लिए जब चाइना के शिनजियांग में त्यानशान पर्वत श्रृंखला के आर पार एक 22 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई गई तो इसकी पूरी दुनिया में चर्चा हुई कि चाइना तो कुछ भी बना लेता है। लेकिन बाद में कई रिपोर्ट्स आई जिनमें यह कहा गया कि इस टनल के लिए जिन पहाड़ों का सीना खोदा गया वो पहाड़ संवेदनशील हो गए। और अभी तिब्बत में चाइना की लगातार बढ़ती गतिविधियों पर सवाल उठने लगे हैं और नेपाल में आई प्रलय को भी उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। देखिए।

ये कितनी अजीब बात है कि टिबेट के कारण जिस नेपाल में ये प्रलय आई उस नेपाल की तस्वीरें तो पूरी दुनिया ने देख ली, लेकिन टिबेट से अब भी ये तस्वीरें बाहर नहीं आई हैं और चाइना की कहानी बस यही है, वहां से ऐसी घटनाओं की रिपोर्टिंग या तस्वीरें लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती। इधर नेपाल में जो कुछ हुआ है उसकी तस्वीरें तो आप लगातार देख ही रहे हैं, बहुत सारे वीडियोस भी देख रहे हैं, लेकिन वहां पर नहीं है। पांच बड़े अपडेट है आपको बताते हैं। पहला बड़ा अपडेट यह है कि इस घटना में नेपाल पुलिस और नेपाल सशस्त्र पुलिस बल के कई सुरक्षाकर्मी भी लापता हो गए हैं। दूसरा बड़ी बात यह है कि जो सामने आ रही है कि इसी इलाके में पिछले साल भी तबाही हुई थी और तब भी रसुवागढ़ी का मैत्री

एक भूकंप के कारण भारी हिमस्खलन हुआ जिसने भोटे कोशी नदी का रास्ता रोक दिया और बाद में बांध टूटने से अचानक ये सैलाब नीचे की ओर नेपाल की तरफ आ गया। चौथा, नेपाल में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए 30 से ज्यादा सैन्य और निजी हेलीकॉप्टर्स तैनात किए गए हैं। हालांकि तिमुरे का जो हेलीपैड है वो हेलीपैड ही बह गया है। अब हेलीपैड बह जाने और खराब मौसम जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर्स को लैंडिंग करने में भारी मुश्किलों का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। और पांचवा बड़ा अपडेट नेपाल की सरकार को लेकर है, जहां प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने स्थिति का जायजा लेने के लिए एक आपातकालीन कैबिनेट बैठक बुलाई है। इसके अलावा नेपाल के कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए इस प्रलय और बाढ़ में घायल हुए सभी नागरिकों के मुफ्त इलाज की घोषणा की है और घायलों को एयरलिफ्ट कर काठमांडू के बीर अस्पताल, टीचिंग हॉस्पिटल और नेशनल ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराने का ऐलान किया है। इसी बीच आपको बताते हैं, नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कहा है कि शुरुआती जांच में यह आपदा तिब्बत में भूकंप के कारण आए भीषण हिमस्खलन की वजह से हुई है। नेपाल की संसद में विपक्षी दलों ने इस बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने और प्रभावित इलाकों को संकटग्रस्त क्षेत्र मानकर विशेष बजट जारी करने की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से फोन पर बात की है और इस दुखद घड़ी में भारत की ओर से हर संभव सामग्री पहुंचाने का आश्वासन भी दिया है। और आज हमारी सारी प्रार्थनाएं इन तमाम लोगों के साथ हैं, इनके परिवारों के साथ हैं, जिनके अपने आज भी लापता हैं या जिनके अपनों की मौत हुई है। ऑल प्रेयर्स फॉर नेपाल, हमारी नजर इस खबर पर रहेगी। लेकिन नेपाल के बाद आपको गुरुग्राम की वो तस्वीरें दिखाएंगे जिसे गड्ढा ग्राम कहना ज्यादा ठीक लगने लगा है। ऐसा गड्ढा ग्राम जिससे सीएम भी मुंह फेर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी से जब गुरुग्राम में जल भराव की गंभीर स्थिति पर सवाल पूछा गया तो सवालों से बचते हुए निकल गए। सवाल यह है कि आखिर गुरुग्राम की स्थिति का जिम्मेदार कौन? हरियाणा में पिछले 12 साल से बीजेपी की सरकार है। राव इंद्रजीत सिंह इस इलाके से करीब 2 दशक से सांसद है। 2014 से वो बीजेपी के साथ है, पहले कांग्रेस के सांसद अब बीजेपी के सांसद। पिछले 1 दशक में गुरुग्राम के ड्रेनेज पर 500 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, 500 करोड़। लेकिन सैकड़ों करोड़ रुपए लगने के बाद भी गुरुग्राम की सड़कें चंद घंटे की बारिश में सरेंडर कर देती हैं और लगता है कि ये गड्ढा ग्राम है। सोमवार को तो बच्चे बारिश के पानी में स्कूल बसों के फंसे होने से कई घंटे तक बंधक बनकर रह गए। इसके बाद आज तक ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से सवाल पूछा, उन्होंने चुप्पी साध ली, सुरक्षा कर्मियों ने माइक हटा दिया। हमारे रिपोर्टर का सवाल पूरा भी नहीं हुआ लेकिन मुख्यमंत्री ने मुस्कुराते हुए हाथ खड़े कर दिए। आज सवाल यह है कि गड्ढा ग्राम बन चुके गुरुग्राम में चुप्पी साधने से कैसे काम चलेगा? और अब हम बात करेंगे देश में चीनी और प्याज की बढ़ती कीमतों से मचे हंगामे की। करीब 1 महीने के अंदर ही चीनी के दाम 15 से 20 रुपए तक बढ़ गए हैं। प्याज की कीमतें करीब 10 रुपए तक बढ़ चुकी हैं। सरसों का तेल 5 से 10 रुपए तक बढ़ गया है और ये बढ़ती हुई कीमतें लोगों को भड़का रही हैं, सरकार को मुसीबत में डाल रही हैं। 26 जुलाई से 26 अगस्त चीनी की कीमत 48 रुपए से 65 रुपए हो गई। प्याज की कीमतें 34 रुपए से 47 रुपए तक पहुंच गई और सरसों का तेल 195 रुपए से 200 रुपए लीटर तक आ गया है। सबसे ज्यादा हंगामा चीनी की कीमतों को लेकर है। अब तो विपक्षी नेता सड़क पर चीनी का लंगर लगाकर अपने विरोध प्रदर्शन करके सरकार को घेर रहे हैं। चीनी की कीमतों ने त्योहार के सीजन में मिठाइयां महंगी कर दी हैं, जिससे लोग और भड़के हैं। लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि सरकार एथेनॉल के चक्कर में गन्ने के रस से चीनी नहीं बनने दे रही है। हमारे देश में सालाना 4500 लाख टन गन्ने का उत्पादन होता है, जिसे करीब 360 लाख टन चीनी बनाई जाती है। चीनी उत्पादन में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, लेकिन चीनी की खपत के मामले में अब नंबर 1 हो गया है। चीनी की हमारी घरेलू खपत जानते हैं कितनी है? 290 लाख टन। देखा जाए तो हम अभी भी घरेलू खपत के हिसाब से उत्पादन सरप्लस में है, लेकिन इसके बावजूद व्यापारियों का दावा है कि आने वाले समय

में चीनी की कीमतें 80 रुपए तक पहुंच सकती हैं। चीनी की बढ़ती कीमतों से राहत देने के लिए सरकार ने बिना आयात शुल्क के 10 लाख टन चीनी के आयात को मंजूरी दी है। अभी तक चीनी का आयात ना के बराबर होता था क्योंकि भारत में चीनी के आयात पर 100% की कस्टम ड्यूटी लगती थी। दरअसल हमारी खुद का उत्पादन अच्छा था, इसलिए सरकार नहीं चाहती थी कि चीनी हम इम्पोर्ट करें, आयात करें, लेकिन अब हालात बदल गए। अब अगली खबर आपको अंजना 2.0 बताएंगी। ये खबर फ्रांस में पहले पारंपरिक हिंदू मंदिर से जुड़ी है जो बनकर तैयार हो चुका है। इसमें 6 सितंबर को प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। बताइए अंजना 2.0। बिल्कुल अंजना, पेरिस के पास बुसी सेंट जॉर्ज नाम की जगह पर यह खूबसूरत मंदिर बना है। सबसे खास बात यह है कि इस जगह पर दुनिया के बाकी धर्मों के प्रार्थना स्थल भी हैं, जो आपसी भाईचारे की एक बहुत प्यारी तस्वीर पेश करते हैं। साल 1970 में एक संत पेरिस गए थे, तभी उन्होंने ये सपना देखा था कि फ्रांस में भी एक दिन भव्य हिंदू मंदिर बनेगा। आज उनका वही 56 साल पुराना सपना सच हो गया है। बीएपीएस संस्था द्वारा बनाए गए इस मंदिर को देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। इसको बनाने में भारत के पत्थरों के साथ साथ उन फ्रांसीसी कारीगरों ने भी मदद की है जिन्होंने पेरिस के मशहूर नोट्रे डैम कैथेड्रल को फिर से संवारा था। मंदिर के उद्घाटन के मौके पर फ्रांस में 2 से 14 सितंबर तक शानदार संस्कृति महोत्सव मनाया जा रहा है। मंदिर निर्माण के बाद से ही यहाँ भारी संख्या में भक्त उमड़े हुए हैं। ये मंदिर सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं है बल्कि ये यूरोप में भारतीय संस्कृति, शांति और प्यार का एक नया पता बन गया है। फ्रांस में रह रहे भारतीयों के लिए ये किसी बड़े त्योहार से कम नहीं है। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और वक्त अच्छा हो तो दुनिया को पता चलता है कि हम कैसे हैं, वक्त बुरा हो तो हमको पता चलता है कि दुनिया कैसी है। नमस्कार।

0: नेपाल में तिब्बत से आई अचानक बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाकर रख दी है। तस्वीरें ऐसी हैं कि देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। इस बाढ़ से 11 हाइड्रो पावर प्लांट्स तबाह हो गए हैं। 11 हाइड्रो पावर प्लांट्स को नुकसान पहुंचने से 431 मेगावाट बिजली उत्पादन बंद हो गया है। इसके अलावा बाढ़ से 19 पुल और 40 किलोमीटर सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं।
1: Yeah. Wait, come on, come on, come on. Wait.

0: ये सबसे खतरनाक तस्वीरें हैं। नेपाल के त्रिशूली बाजार, ऊपर से पानी आ रहा और नीचे तबाही मची।
1: ओहो, पूरा डैम फूट रहा है यार, पूरा चाइना को डैम फूट रहा है।
0: अचानक से पानी की रफ्तार तेज होती है और पुल के ऊपर से पानी बहने लगता है। पूरा का पूरा पुल ही टूट कर बह गए। साफ तबाही दिख रही है, सब कुछ बर्बाद करता हुआ ये फ्लैश फ्लड आगे बढ़ता जाता है। और ये उसके बाद का वीडियो है, देखिए पहले ये त्रिशूली बाजार कैसे दिखता था और अब क्या हाल हो गया है। सब कुछ बर्बाद, यहाँ घर थे, होटल थे, स्कूल थे, सब कुछ खत्म हो गए, सिर्फ और सिर्फ बर्बादी के निशान दिख रहे हैं। अब जरा इन दो तस्वीरों को देखिए और समझिए कि कैसे ये त्रिशूली बाजार बर्बाद हो गया। जब ये बाढ़ आई तो उसकी भयावहता तो दिख ही रही है, लेकिन ये भी समझ में आ रहा है कि ये एक भरा पूरा बाजार था जहाँ सब कुछ था, होटल, स्कूल, रिहायशी इलाके। और दूसरी तस्वीर में आपको तबाही दिख रही है, सब कुछ खत्म हो गया। नदी के किनारे रहने वाले लोगों के घर तो पूरी तरह से तबाह हो गए। अभी तो ये भी नहीं पता कि यहाँ कितने लोग बहे होंगे। ये फ्लैश फ्लड कितनी तबाही लेकर आया ये इन तस्वीरों से समझिए। पानी की लहरें बड़ी बड़ी इमारतों से भी बहुत ऊंची उठ रही हैं। ये नेपाल का रसुआ इलाका है, देखिए पानी की कितनी ऊंची लहरें हैं। ये इस तबाही का एक और खतरनाक वीडियो है, ये धाड़िंग का बताया जा रहा है जहां ये पुल ऐसे बह गया जैसे कि कागज का रहा हो। इतने फोर्स से पानी आया कि पूरा का पूरा पुल ही बह गया। पानी के साथ बहुत सा कचरा भी दिख रहा है। देखिए कैसे अचानक से यह फ्लैश फ्लड अपना रास्ता बदल कर आया। ये तस्वीरें नेपाल के रसुवागढ़ी में चीन के केरूंग बॉर्डर की है जहां पर कस्टम ऑफिस भी है। यहां से नेपाल में सामान आता है, कंटेनर आते हैं और इसी रास्ते से मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले यात्री भी जाते हैं। सीसीटीवी की तस्वीरों में तारीख आज की है यानी 26 अगस्त। लोगों के बीच अफरा तफरी मची हुई है और पीछे से फ्लैश फ्लड आ रहा है। यहाँ पर पूरा कस्टम ऑफिस है, अचानक से पूरा फ्लैश फ्लड आता है और सब कुछ खत्म करते हुए आगे बढ़ जाता है। ये लोग जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे वो नहीं बच पाए। बाद में पूरी की पूरी बर्बादी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। पीछे से भारी मात्रा में पानी और मलबा दिख रहा है और आता ही जा रहा है। ये इसी कस्टम पॉइंट का एक और सीसीटीवी वीडियो है। पहले तो सब कुछ सामान्य लग रहा है, बगल में एक छोटी सी नदी बह रही है, 10-12 बसें भी दिख रही हैं, एक दफ्तर दिख रहा है। अचानक से ऊपर से कुछ हलचल होती है या शोर होता है, लोग दौड़ने लगते हैं। देख सकते हैं कि कैसे लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं और फिर दिखता है फ्लैश फ्लड, पूरा पानी और मलबा आता है और सब कुछ तबाह करके चला जाता है। सारी बसें ऐसे बहती हैं जैसे कोई फिल्मी सीन। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने खोज और बचाव कार्य के निर्देश दिए हैं। तिब्बत के केरूंग पोर्ट पर बुधवार की सुबह ये फ्लैश फ्लड आया था। ये फ्लैश फ्लड कोई सामान्य नहीं था, ये नेपाल चीन बॉर्डर से करीब 190 किलोमीटर दूर चितवन की तस्वीरें हैं। और इन तस्वीरों में पानी का फोर्स और उसकी तबाही साफ दिख रही है। सामने बहुत बड़ी भगवान बुद्ध की मूर्ति है और पानी बिल्कुल मूर्ति के आधे आ गया है। ये समझा जा सकता है कि इसकी रफ्तार कितनी तेज है। अब जरा आसमान से देखिए कि कैसे तबाही मची हुई है। ये तस्वीरें नेपाली सेना ने जारी की हैं, हेलीकॉप्टर से ली हुई हैं। सब कुछ तबाह दिख रहा है। इस तबाही का एक और वीडियो रसवा में त्रिशूली नदी के पास का है, जब ये बाढ़ आई तब का वीडियो है। आगे एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट दिख रहा है और नीचे कुछ मजदूर काम कर रहे हैं, तभी अचानक से ऊपर से पानी आ गया, मजदूर भागने लगे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, इतना फोर्स से पानी आया कि ये पूरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट टूट गया और ये मजदूर बह गए। आज तक भी
2: अभी तक कोई अनुमान नहीं लगा पा रहा है कि इस प्रलय से कितना नुकसान हुआ है। 133 भारतीय भी लापता बताए जा रहे हैं और यह भी कहा जा रहा है कि ये मानसरोवर यात्री थे, क्योंकि नेपाल से मानसरोवर यात्रा के रूट में ही ये फ्लैश फ्लड आई है, जिसकी शुरुआत हुई नेपाल चीन बॉर्डर से।
0: ये नेपाल के नुवाकोट की ड्रोन तस्वीरें तबाही के निशान साफ साफ दिख रहे हैं। नदी किनारे पूरी बस्ती थी, अब कुछ एक घर ही बचे हैं। ऐसा लगता है कि नदी अपने साथ सब कुछ बहाती हुई ले गई, पूरा सपाट कर दिया। और ये नेपाल के रसवा की एरियल तस्वीरें, पूरी की पूरी घाटी में नदी से हुई बर्बादी साफ दिख रही है। नेपाल की सेना कैसे बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर रही है, ये इन तस्वीरों से समझिए। यहां एक लड़का छत पर था, वो निकल नहीं पाया और यहीं फंस गया। यहां हेलीकॉप्टर उतारने की जगह नहीं थी, तो छत के ऊपर हेलीकॉप्टर कुछ देर के लिए स्थिर रहा और वहीं पर उसका रेस्क्यू किया गया। अंदर से नेपाली सेना के जवान ने हाथ बढ़ाया, इस युवक ने थामा और इस तरह से उसे बचाया। ये तबाही का एक और वीडियो है, पूरी घाटी है, सामने से नदी बह रही है जिसकी रफ्तार बहुत कम है और पानी भी कम है, लेकिन तभी अचानक से ऊपर से पानी का गुबार आता दिख रहा है। साफ दिख रहा है कि पानी सब कुछ बर्बाद करता हुआ आगे बढ़ रहा है। एक ट्रक वाला भी सड़क पर है, जो पानी की रफ्तार देखते हुए और तेजी से भागने लगा, लेकिन पानी की रफ्तार से जीत नहीं पाए। पानी की ऊंची ऊंची लहरें बहुत तेजी से बढ़ रही। पीछे से और तेज गति से पानी आ रहा था और इसी में कुछ और लोग फंसे हुए दिखाई दिए, जो पैदल चल रहे थे। वो भी पूरी रफ्तार से भागने और बचने की कोशिश कर रहे थे। दूर से बनाए गए इस वीडियो में पानी बहुत नजदीक दिख रहा है, लेकिन असल में यह बहुत दूर था। पीछे से पूरा मलबा आ रहा था, पानी का फोर्स इतना तेज था कि ऐसा लग रहा था जैसे यह बहुत नजदीक हो। ऐसे ही पूरी की पूरी घाटी इस फ्लैश फ्लड से बर्बाद हो। यह इस तबाही का एक और वीडियो है, यह भी बहुत दूर से बनाया गया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बम विस्फोट हुआ हो, जिसके बाद धुएं का गुबार उठा हो, लेकिन असल में यह पानी का बहाव था जो इतना तेज था कि आसपास सब कुछ बर्बाद करता हुआ आगे बढ़ रहा था। देखिए कैसे बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई। नेपाल में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि जहां ये बाढ़ आई है इस त्रिशूली नदी पर बहुत से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चल रहे थे, जो पूरी तरह से तबाह हो गए। नेपाली मीडिया के मुताबिक लांगटांग खोला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में काम करने वाले 60 लोग लापता हैं। इनमें 25 इंजीनियर, ड्राइवर और किचन स्टाफ है। इसके अलावा 35 वर्कर हैं, जो टनल के अंदर काम कर रहे थे। फ्लैश फ्लड के बाद उनका भी कुछ पता नहीं चल रहा। इसके अलावा तिमूर में रसवा कस्टम ऑफिस में काम करने वाले 15 कर्मचारी भी मिसिंग है। बाढ़ की तबाही इतनी भीषण है कि बड़े बड़े पुल टूट गए। ये चितवन में त्रिशूली नदी पर बना पुल है, देखिए क्या हाल हो गया। आज तक
2: 2027 में यूपी का विधानसभा चुनाव है और ऐसे में यूपी में बीजेपी हैट्रिक लगाने के लिए जांचे परखे फॉर्मूले की तरफ बढ़ रही है। सीएम योगी ने रक्षाबंधन से ठीक पहले लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना शुरू की है। यूपी में अब 60 साल और उससे ऊपर की महिलाओं को रोडवेज की बसों में फ्री यात्रा की सुविधा मिलेगी तो ग्रेजुएशन की 50,000 छात्राओं को मुफ्त स्कूटी दी जाएगी। योगी सरकार के जवाब में अखिलेश यादव ने भी स्त्री सम्मान योजना का ऐलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर महिलाओं को 40,000 रुपए देने का वादा किया गया है।
3: धन्यवाद। यूपी की चुनावी लड़ाई आधी आबादी पर गरमाई। जेन जी के बाद अब महिलाओं के लिए योजनाओं का ऐलान।
4: तो बेटी के जन्म से लेकर पढ़ाई तक और आगे भी सरकार हमेशा उसके साथ खड़ी है।
3: योगी कराएंगे मुफ्त में सफर, अखिलेश का 40,000 वाला वादा। महिला वोटरों का गणित, यूपी में शुरू हुई सियासी भिड़न।
4: हर माता को फ्री में बस सेवा की सुविधा प्राप्त होगी एक सहयात्री के साथ।
3: 2027 यूपी विधानसभा चुनाव की जंग स्त्री 27। यूपी में आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए स्त्री 27 की ये पिक्चर सियासत में किसके लिए सुपरहिट साबित होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ये दो तस्वीरें बता रही हैं कैसे यूपी में महिला वोटरों का गणित बड़ी सियासी भिड़ंत बन गया है जब सीएम योगी महिलाओं के लिए अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना लॉन्च करते हैं तो यूपी रोडवेज बस के अंदर मुफ्त सफर के लिए बैठी महिलाओं के साथ सेल्फी लेते हैं। उधर जब अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव महिलाओं के लिए स्त्री सम्मान समृद्धि योजना का ऐलान करते हैं तो उनके साथ पार्टी की महिला सांसद, महिला नेता और महिला कार्यकर्ता मौजूद रहती हैं।
5: गांव से शहर तक, मायके से बेटी के घर तक,
3: स्त्री 27 साफ है। यूपी चुनाव की लड़ाई अब आधी आबादी पर गरमाई है। आधी आबादी को पूरा हक देने के दावे के साथ चुनावी होड़ ऐसी मची है कि सीएम योगी महिलाओं के लिए योजनाएं लॉन्च कर रहे हैं तो अखिलेश यादव भी स्त्री शक्ति के साथ चुनावी रण में उतरे हैं। योगी सरकार ने रक्षाबंधन से ठीक पहले यूपी में महिलाओं के लिए नए तोहफे की सौगात दी है और इसको नाम दिया गया है लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना। अब यूपी में 60 साल और उससे अधिक उम्र की महिलाएं सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी जिसमें रोडवेज की बसों में आधार या वोटर आईडी दिखाकर मुफ्त यात्रा की जा सकेगी। इस योजना से उत्तर प्रदेश की करीब 1 करोड़ बुजुर्ग महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। इस योजना में रोजाना औसतन 88,000 महिलाएं लाभान्वित होंगी जिसमें हर महीने करीब 22.5 करोड़ और सालाना करीब 270 करोड़ रुपए का खर्च आने की उम्मीद है। इसके अलावा रक्षाबंधन के मौके पर सभी उम्र की महिलाओं के लिए भी मुफ्त बस यात्रा की सुविधा रहेगी। 27 अगस्त की रात से 28 अगस्त की रात तक महिलाएं रोडवेज बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगी और उनके साथ एक सहयोगी को भी मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी।
4: रक्षाबंधन के अवसर पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम और सिटी बस सेवा दोनों में हर बेटी, हर बहन, हर माता को 3 दिन के लिए निशुल्क बस सेवा प्रारंभ करने के लिए और इस सुविधा के लिए प्रदेश भर की पूरी मातृशक्ति का अभिनंदन करते हुए उन्हें हृदय से बधाई देता हूं और 29 के बाद 60 वर्ष की कोई भी महिला जो उत्तर प्रदेश की वासी हो अपना वोटर आईडी कार्ड दिखा करके या आधार कार्ड दिखा करके इस यात्रा का लाभ ले सकती हैं। उनसे कोई भी किराया नहीं लिया जाएगा। ये दो प्रकार की सेवाएं आज एक साथ प्रारंभ हो रही हैं।
3: इसके अलावा सीएम योगी ने ग्रेजुएशन की छात्राओं के लिए स्कूटी योजना का भी ऐलान किया है। जी हाँ, 50,000 बेटियों को अक्टूबर नवंबर में स्कूटी दी जाएंगी।
4: यानी अभी तो बेटी के जन्म से लेकर पढ़ाई तक और आगे भी सरकार हमेशा साथ उसके साथ खड़ी है। हमने एक और व्यवस्था की है, हमारे लिए बड़ा था पहले ये काम, कि रक्षाबंधन पे इस कार्यक्रम को करेंगे। अभी हम अक्टूबर या नवंबर में प्रदेश की 50,000 बेटियों को जो स्नातक में पढ़ाई कर रही हैं, ऐसी 50,000 बेटियों को एक स्कूटी उपलब्ध करवाने जा रहे हैं।
3: योगी सरकार ने महिलाओं के लिए योजनाओं का ऐलान किया तो जवाब में अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव ने ताबड़तोड़ 16 योजनाओं के वादों की झड़ी लगा दी।
6: स्त्री सम्मान समृद्धि योजना, हम 40,000 से करेंगे शुरुआत, जिसमें बढ़ोतरी होगी हर साल।
7: आंगनबाड़ी बंद हो रहे केंद्र फिर खुलेंगे, गर्म पोषाहार, साफ पानी और स्वच्छ शौचालय के साथ।
8: पूरा ढांचा, हर जिले मुख्यालय पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलेंगे हम।
9: 24 घंटे महिलाओं और बच्चियों के लिए एक अलग एम्बुलेंस सेवा, उसकी समय सीमा तय रहेगी और प्रशिक्षित महिला स्टाफ के साथ गर्भवती माताओं को प्राथमिकता मिलेगी। 102 और 108 एम्बुलेंस समाजवादी पार्टी की तरफ से शुरू किया गया था और उसे वापस से लेकर के आएंगे, ये दृढ़ संकल्प है हमारा।
10: इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने वाली हर छात्रा को लैपटॉप,
11: लिए हर तहसील में पीजी कॉलेज, हर जिले में विश्वविद्यालय और सुरक्षित छात्रावास की सुविधा भी दी जाएगी।
12: कार्यस्थल पर महिलाओं का सम्मान, प्रति माह 2 दिन आकस्मिक अवकाश बिना किसी सवाल की।
3: अब एक तरफ तो अखिलेश यादव योगी सरकार की महिलाओं की योजना के जवाब में स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लागू करते हैं, दूसरी तरफ योगी सरकार की योजनाओं में खोट भी निकालते हैं, साथ ही महिला आरक्षण को लेकर प्रहार भी करते हैं।
13: भारतीय जनता पार्टी के लिए तो नारी केवल नारा बन करके रह गई है। आज के दिन हम कहना चाहते हैं, यहाँ जितनी भी हमारी महिलाएं बहनें बैठी हैं, वो जानती हैं कि महिला आरक्षण पास हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी क्यों देरी कर रही है, उसको अगले चुनाव में लागू किया जाए। जब रक्षाबंधन के त्योहार पे आप बस चला रहे हो और भी योजनाएं लागू करने का बहाना कर रहे हो, तो ये भी सच बोल करके महिला आरक्षण लागू करने का भी काम किया जाए।
4: मुझे 2017 के पहले की भी सरकारों के कार्यप्रणाली याद आती है। 2017 के पहले एक दौर था, उस समय ये हर बेटी, हर बहन और हर माता की जवान पर ये नारा गूंजता था कि देख सपाई बिटिया घबराई,
13: कि पूरी तैयारी के साथ कोई योजना नहीं चलाई जा रही है। कम से कम उस महिला के साथ या वृद्ध महिला के साथ अगर कोई जा रहा है तो, अगर बच्चा है तो फ्री होना चाहिए, और परिवार का कोई वृद्ध है और जो उसके सहायता और सहयोग के साथ जा रहा है, सहयोग के लिए जा रहा है, उसकी आधी होनी चाहिए, आधी टिकट लगनी चाहिए।
2: दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने महिलाओं के लिए लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है और तालकटोरा स्टेडियम में लाभार्थी महिलाओं को सर्टिफिकेट देकर योजना का शुभारंभ किया गया। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की सहायता मिलेगी।
14: पात्र लाभार्थी हैं जो आज यहाँ पर उपस्थित हैं, चयनित किया गया है, उन सबकी आकांक्षाएं हैं यहाँ पर, बधाई दें, रक्षाबंधन की मिठाई।
3: रक्षाबंधन से ठीक पहले दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया। अब दिल्ली में लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की सहायता मिलेगी।
15: इस सभागार में बैठी हुई मेरी सभी बहनें, एक बार मेरे एक सवाल का जवाब दो, खुश हो? आवाज कम आ रही है मुझे, खुश हो? अरे कहां आवाज आ रही है, खुश हो? बस मैं यही चाहती हूं, मेरी सारी बहनें खुश रहनी चाहिए, उनके चेहरे पे ये मुस्कुराहट बनी रहनी चाहिए। सजी सवरी मेरी ये बहन जिंदगी में हमेशा आगे बढ़े, क्योंकि मैं हूं ना।
3: सरकार के मुताबिक 17 लाख से ज्यादा महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। अब तक इस योजना के लिए 9 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं। आज सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 2500 महिलाओं को अप्रूवल लेटर दिया। दिल्ली सरकार का ये चुनावी वादा था जो अब पूरा होने जा रहा है।
15: मैं आप सभी को ढेर सारी बधाई देती हूँ, आज के इस दिन की शुभकामनाएं देती हूँ। ये दिल्ली लक्ष्मी योजना जो आज मेरी दिल्ली की बहनों के लिए आप सभी के द्वार पहुंच पाई है, इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, उस माँ को और आप सभी को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए शुभकामनाएं देती हूँ आपके आगे आने वाले जीवन के लिए।
3: दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी ने ऐलान किया था कि अगर उनकी सरकार बनी तो दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। चुनाव जीतने के बाद इसके लिए 5100 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया। इस योजना में 1000 रुपए उनके डिजिटल वॉलेट में आएंगे, जबकि बाकी के 1500 रुपए हर महीने FD खाते में जाएंगे। आपको बता दें कि 1 सितंबर से सभी पात्र महिलाओं के बैंक खातों में योजना की 2500 रुपए की मासिक सहायता राशि सीधे ट्रांसफर होनी शुरू हो जाएगी।
16: दिल्ली में बनने वाली भाजपा सरकार अपने वायदे पूरी करेगी। मैं फिर दोहराता हूं, 8 तारीख के बाद जब दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी, जो भी वादे आपको किए गए हैं वो सारे के सारे वादे समय सीमा में पूरे किए जाएंगे, ये मोदी की गारंटी है।
3: इस योजना का लाभ देने के लिए कुछ शर्तें हैं, जिसमें महिला की उम्र 21 से 60 साल के बीच होनी चाहिए, परिवार की कुल आय 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एक परिवार से एक ही महिला को लाभ मिलेगा, महिला कम से कम 10 साल से दिल्ली की स्थायी निवासी हो, महिला के खिलाफ कोई आपराधिक केस दर्ज नहीं होना चाहिए, महिला के 3 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, परिवार साल में 2400 यूनिट से ज्यादा बिजली ना खर्च करता हो, महिला या परिवार GST या इनकम टैक्स ना भरता हो, घर में कार नहीं होनी चाहिए, परिवार से कोई सरकारी नौकरी में ना हो या रिटायर ना हुआ हो।
17: कि ज्यादातर महिलाएं इस योजना से बाहर कर दी गई हैं। इस योजना के अंदर इतनी सख्त नियम लगाए गए हैं कि ये योजना लगभग किसी को ना मिले।
18: जो वादा प्रधानमंत्री जी ने किया था, मुख्यमंत्री जी ने किया था, वो वादा आज पूरा किया है दिल्ली सरकार ने 1 साल के अंदर। आज दिल्ली की जनता ने, दिल्ली की बहनों ने और देश की बहनों ने ये देख लिया कि कैसे वादा पूरा किया जाता है। इसी दिल्ली में 10 साल तक केजरीवाल ने और उनके लोगों ने बहनों के फॉर्म भरवाए, नकली फॉर्म भराए जाते थे बस्तियों में जा जाके, और फॉर्म भरा के उनका डेटा ले लिया जाता था, बाद में डेटा भी बेच दिया जाता था, और किसी बहन के खाते में 10 साल कोई पैसा नहीं आया दिल्ली के।
19: लगभग 6.5 लाख के आसपास रजिस्ट्रेशन जो है वो इस पूरी योजना के तहत महिलाओं का हुआ है, लेकिन आज पहली अप्रूवल लेटर्स जो है वो 2500 महिलाओं को जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से दिए गए हैं। इसमें मैं बता दूं कि 2025 के चुनावों से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली के जरिए इस योजना के लिए महिलाओं के सामने अपनी बात रखी थी, और उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है, उसी गारंटी पर आज दिल्ली सरकार ने कहीं ना कहीं अपनी मोहर जो है वो लगाई है, और महिलाओं को 2500 रुपए की अप्रूवल लेटर्स जो है वो बांटे गए हैं, और 1 सितंबर से इस योजना के तहत महिलाओं के खाते में पैसा जो है वो ट्रांसफर किया जाएगा।
3: दिल्ली लक्ष्मी योजना के आवेदन अभी खुले हुए हैं। सरकार ने तय किया है कि करीब 17 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। अभी 9 लाख से ज्यादा महिलाओं ने ही आवेदन किया है। आज तक ब्यूरो।
2: और इसी के साथ हम यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: 750 से ज्यादा लापता, इसमें 133 भारतीय शामिल, चीन में भी सैलाब से बहे 265 लोग। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाली पीएम बालिन शाह से की बात, अलर्ट पर बिहार और पूर्वी यूपी, राहत सामग्री के साथ रवाना भारतीय एयरफोर्स के विमान। संसद का विशेष सत्र बुलाने का संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इशारा किया, इंडिया टुडे से खास बातचीत में कहा, संसद में महिला आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री मोदी गंभीर, इस दिशा में काम जारी। बीजेपी के हमले के बाद अब मुस्लिम महिलाओं ने राहुल गांधी को घेरा, हिजाब को लेकर दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन, हिजाब पर चुप्पी का विरोध। और यूपी के शामली में यूट्यूबर और हरियाणवी गायक अंकित बालियान की गोली मारकर हत्या, जिम से बाहर निकलते ही ताबड़तोड़ फायरिंग, हमलावर फरार। नेपाल में तिब्बत से आई अचानक बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाकर रख दी है, तस्वीरें ऐसी हैं कि देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। इस बाढ़ से 11 हाइड्रो पावर प्लांट्स तबाह हो गए हैं। 11 हाइड्रो पावर प्लांट्स को नुकसान पहुंचने से 431 मेगावाट बिजली उत्पादन बंद हो गया है। इसके अलावा बाढ़ से 19 पुल और 40 किलोमीटर सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं।
1: Yeah. Wait, the man's about to go.

0: ये सबसे खतरनाक तस्वीरें हैं। नेपाल के त्रिशूली बाजार, ऊपर से पानी आ रहा और नीचे तबाही मची।
1: ओहो, पूरा डैम फूट रहा है, पूरा चाइना को डैम फूट रहा है।
0: अचानक से पानी की रफ्तार तेज होती है और पुल के ऊपर से पानी बहने लगता है। पूरा का पूरा पुल ही टूट कर बह गए। साफ तबाही दिख रही है, सब कुछ बर्बाद करता हुआ ये फ्लैश फ्लड आगे बढ़ता जाता है। और ये उसके बाद का वीडियो है। देखिए पहले ये त्रिशूली बाजार कैसे दिखता था और अब क्या हाल हो गया है। सब कुछ बर्बाद, यहाँ घर थे, होटल थे, स्कूल थे, सब कुछ खत्म हो गए। सिर्फ और सिर्फ बर्बादी के निशान दिख रहे हैं। अब जरा इन दो तस्वीरों को देखिए और समझिए कि कैसे ये त्रिशूली बाजार बर्बाद हो गया। जब ये बाढ़ आई तो उसकी भयावहता तो दिख ही रही है, लेकिन ये भी समझ में आ रहा है कि ये एक भरा पूरा बाजार था जहाँ सब कुछ था, होटल, स्कूल, रिहायशी इलाके। और दूसरी तस्वीर में आपको तबाही दिख रही है, सब कुछ खत्म हो गया। नदी के किनारे रहने वाले लोगों के घर तो पूरी तरह से तबाह हो गए। अभी तो ये भी नहीं पता कि यहाँ कितने लोग बहे होंगे। ये फ्लैश फ्लड कितनी तबाही लेकर आया ये इन तस्वीरों से समझिए। पानी की लहरें बड़ी बड़ी इमारतों से भी बहुत ऊंची उठ रही हैं। ये नेपाल का रसुआ इलाका है, देखिए पानी की कितनी ऊंची लहरें हैं। ये इस तबाही का एक और खतरनाक वीडियो है। ये धाड़िंग का बताया जा रहा है जहां ये पुल ऐसे बह गया जैसे कि कागज का रहा हो। इतने फोर्स से पानी आया कि पूरा का पूरा पुल ही बह गया। पानी के साथ बहुत सा कचरा भी दिख रहा है। देखिए कैसे अचानक से यह फ्लैश फ्लड अपना रास्ता बदल कर आया। ये तस्वीरें नेपाल के रसवागढ़ी में चीन के केरूंग बॉर्डर की हैं, जहां पर कस्टम ऑफिस भी है। यहां से नेपाल में सामान आता है, कंटेनर आते हैं और इसी रास्ते से मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले यात्री भी जाते हैं। सीसीटीवी की तस्वीरों में तारीख आज की है, यानी 26 अगस्त। लोगों के बीच अफरा तफरी मची हुई है और पीछे से फ्लैश फ्लड आ रहा है। यहाँ पर पूरा कस्टम ऑफिस है, अचानक से पूरा फ्लैश फ्लड आता है और सब कुछ खत्म करते हुए आगे बढ़ जाता है। ये लोग जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे वो नहीं बच पाए। बाद में पूरी की पूरी बर्बादी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। पीछे से भारी मात्रा में पानी और मलबा दिख रहा है और आता ही जा रहा है। ये इसी कस्टम पॉइंट का एक और सीसीटीवी वीडियो है। पहले तो सब कुछ सामान्य लग रहा है, बगल में एक छोटी सी नदी बह रही है, 10-12 बसें भी दिख रही हैं, एक दफ्तर दिख रहा है। अचानक से ऊपर से कुछ हलचल होती है या शोर होता है, लोग दौड़ने लगते हैं। देख सकते हैं कि कैसे लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। और फिर दिखता है फ्लैश फ्लड, पूरा पानी और मलबा आता है और सब कुछ तबाह करके चला जाता है। सारी बसें ऐसे बहती हैं जैसे कोई फिल्मी सीन। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने खोज और बचाव कार्य के निर्देश दिए हैं। तिब्बत के केरूंग पोर्ट पर बुधवार की सुबह यह फ्लैश फ्लड आया था। यह फ्लैश फ्लड कोई सामान्य नहीं था, यह नेपाल चीन बॉर्डर से करीब 190 किलोमीटर दूर चितवन की तस्वीरें हैं। और इन तस्वीरों में पानी का फोर्स और उसकी तबाही साफ दिख रही है। सामने बहुत बड़ी भगवान बुद्ध की मूर्ति है और पानी बिल्कुल मूर्ति के आधे आ गया है। ये समझा जा सकता है कि इसकी रफ्तार कितनी तेज है। अब जरा आसमान से देखिए कि कैसे तबाही मची हुई है। ये तस्वीरें नेपाली सेना ने जारी की हैं, हेलीकॉप्टर से ली हुई हैं। सब कुछ तबाह दिख रहा है। इस तबाही का एक और वीडियो रसवा में त्रिशूली नदी के पास का है, जब ये बाढ़ आई तब का वीडियो है। आगे एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट दिख रहा है और नीचे कुछ मजदूर काम कर रहे हैं, तभी अचानक से ऊपर से पानी आ गया, मजदूर भागने लगे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, इतना फोर्स से पानी आया कि ये पूरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट टूट गया और ये मजदूर बह गए। आज तक भी
2: अभी तक कोई अनुमान नहीं लगा पा रहा है कि इस प्रलय से कितना नुकसान हुआ है। 133 भारतीय भी लापता बताए जा रहे हैं और यह भी कहा जा रहा है कि ये मानसरोवर यात्री थे, क्योंकि नेपाल से मानसरोवर यात्रा के रूट में ही ये फ्लैश फ्लड आई है, जिसकी शुरुआत हुई नेपाल चीन बॉर्डर से।
0: ये नेपाल के नुवाकोट की ड्रोन तस्वीरें, तबाही के निशान साफ साफ दिख रहे हैं। नदी किनारे पूरी बस्ती थी, अब कुछ एक घर ही बचे हैं। ऐसा लगता है कि नदी अपने साथ सब कुछ बहाती हुई ले गई, पूरा सपाट कर दी। और ये नेपाल के रसवा की एरियल तस्वीरें, पूरी की पूरी घाटी में नदी से हुई बर्बादी साफ दिख रही है। नेपाल की सेना कैसे बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर रही है, ये इन तस्वीरों से समझिए। यहां एक लड़का छत पर था, वो निकल नहीं पाया और यहीं फंस गया। यहां हेलीकॉप्टर उतारने की जगह नहीं थी, तो छत के ऊपर हेलीकॉप्टर कुछ देर के लिए स्थिर रहा और वहीं पर उसका रेस्क्यू किया गया। अंदर से नेपाली सेना के जवान ने हाथ बढ़ाया, इस युवक ने थामा और इस तरह से उसे बचाया। ये तबाही का एक और वीडियो है, पूरी घाटी है, सामने से नदी बह रही है जिसकी रफ्तार बहुत कम है और पानी भी कम है, लेकिन तभी अचानक से ऊपर से पानी का गुबार आता दिख रहा है। साफ दिख रहा है कि पानी सब कुछ बर्बाद करता हुआ आगे बढ़ रहा है। एक ट्रक वाला भी सड़क पर है, जो पानी की रफ्तार देखते हुए और तेजी से भागने लगा, लेकिन पानी की रफ्तार से जीत नहीं पाया। पानी की ऊंची ऊंची लहरें बहुत तेजी से बढ़ रही। पीछे से और तेज गति से पानी आ रहा था और इसी में कुछ और लोग फंसे हुए दिखाई दिए, जो पैदल चल रहे थे। वो भी पूरी रफ्तार से भागने और बचने की कोशिश कर रहे थे। दूर से बनाए गए इस वीडियो में पानी बहुत नजदीक दिख रहा है, लेकिन असल में यह बहुत दूर था। पीछे से पूरा मलबा आ रहा था, पानी का फोर्स इतना तेज था कि ऐसा लग रहा था जैसे यह बहुत नजदीक हो। ऐसे ही पूरी की पूरी घाटी इस फ्लैश फ्लड से बर्बाद हुई। यह इस तबाही का एक और वीडियो है, यह भी बहुत दूर से बनाया गया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बम विस्फोट हुआ हो, जिसके बाद धुएं का गुबार उठा हो, लेकिन असल में यह पानी का बहाव था जो इतना तेज था कि आसपास सब कुछ बर्बाद करता हुआ आगे बढ़ रहा था। देखिए कैसे बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई। नेपाल में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि जहां ये बाढ़ आई है इस त्रिशूली नदी पर बहुत से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, जो पूरी तरह से तबाह हो गए। नेपाली मीडिया के मुताबिक लांगटांग खोला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में काम करने वाले 60 लोग लापता हैं। इनमें 25 इंजीनियर, ड्राइवर और किचन स्टाफ है। इसके अलावा 35 वर्कर हैं, जो टनल के अंदर काम कर रहे थे। फ्लैश फ्लड के बाद उनका भी कुछ पता नहीं चल रहा। इसके अलावा तिमूर में रसवा कस्टम ऑफिस में काम करने वाले 15 कर्मचारी भी मिसिंग है। बाढ़ की तबाही इतनी भीषण है कि बड़े बड़े पुल टूट गए। ये चितवन में त्रिशूली नदी पर बना पुल है, देखिए क्या हाल हो गया। आज तक
2: नेपाल में आई बाढ़ के बाद बिहार में भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। इसे लेकर बिहार सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री सह जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।

0: नेपाल की इन खौफनाक तस्वीरों ने बिहार के जिलों में दहशत भर दी है, क्योंकि नेपाल से आने वाला पानी बिहार के कई जिलों की जिंदगानी को खतरे में डाल सकता है। इसलिए बिहार में कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है।
1: नदी के किनारे तथा बाढ़ प्रभावित होने वाले क्षेत्रों के निवासी आवश्यक सावधानी बरतें और अपने परिवार, बच्चों, बुजुर्गों एवं पशुओं को सुरक्षित स्थान पर रखने की तैयारी रखें।
0: नेपाल में फ्लैश फ्लड के खतरे को देखते हुए कोसी और गंडक नदी बेसिन से जुड़े जिलों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण और वैशाली में अलर्ट है। सुपौल, सहरसा, मधेपुरा और अररिया जिले में भी अलर्ट है। सरकार कह रही है कि खतरा तो है, मगर सरकार ने सतर्कता के पूरे इंतजाम कर लिए हैं।
2: ये जो पानी आ रहा है, इसमें हम लोगों का आकलन है कि लगभग 1.5 लाख क्यूसेक तक अतिरिक्त पानी आ सकता है, तो फिर 2.5-3 लाख से अधिक पानी नहीं जाएगा। तो या जितना 2.5-3 लाख आने की संभावना है, उस हिसाब से सतर्कता के सभी काम हम लोगों ने कर लिए हैं।
1: अभी सूचना प्राप्त हो रही है कि नेपाल में नदी में भूस्खलन आ जाने के कारण गंडक नदी का बहाव अगले आधे घंटे में काफी तेज होने की संभावना है।
0: बगहा में लोगों को अलर्ट किया जा रहा है, अनाउंस किया जा रहा है कि लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं, तैयारियां तेज हैं। एसएसबी ने भारत नेपाल सीमा पर तैनात अपनी यूनिट्स को अलर्ट जारी किया है। राहत बचाव के लिए 11 टीमों को अलर्ट किया गया है। 7 अतिरिक्त टीमें स्टैंड बाय पर रखी गई हैं। भारत नेपाल सीमा पर तैनात बटालियन को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। सरकार कह रही है कि स्थिति को नियंत्रण से बाहर नहीं जाने देंगे।
2: स्थिति तो थोड़ी कठिन है, लेकिन अभी का जो अनुमान है पानी आने का, वो हम लोगों के हिसाब से स्थिति को हम लोग नियंत्रण से बाहर नहीं जाने देंगे।
0: बिहार की सरकार कह रही है कि घबराने की जरूरत नहीं है, बस सतर्क रहने की आवश्यकता है।
2: लोगों से हम लोगों ने सरकार की तरफ से अपील की है कि अभी घबराने की जरूरत नहीं है, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सतर्क रहना है।
0: बिहार के अलावा यूपी के महाराजगंज, कुशीनगर में भी अलर्ट जारी किया गया है। सतर्कता पूरी है, उम्मीद कीजिए कि नेपाल से आई तबाही भारत में कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। आज तक ब्यूरो।
3: 2027 में यूपी का विधानसभा चुनाव है और ऐसे में यूपी में बीजेपी हैट्रिक लगाने के लिए जांचे परखे फॉर्मूले की तरफ बढ़ रही है। सीएम योगी ने रक्षाबंधन से ठीक पहले लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना शुरू की है। यूपी में अब 60 साल और उससे ऊपर की महिलाओं को रोडवेज की बसों में फ्री यात्रा की सुविधा मिलेगी, तो ग्रेजुएशन की 50,000 छात्राओं को मुफ्त स्कूटी दी जाएगी। योगी सरकार के जवाब में अखिलेश यादव ने भी स्त्री सम्मान योजना का ऐलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर महिलाओं को 40,000 रुपए देने का वादा किया गया है।
4: धन्यवाद। यूपी की चुनावी लड़ाई आधी आबादी पर गरमाई। जेन जी के बाद अब महिलाओं के लिए योजनाओं का ऐलान।
5: तो बेटी के जन्म से लेके पढ़ाई तक और आगे भी सरकार हमेशा उसके साथ खड़ी है।
4: योगी कराएंगे मुफ्त में सफर, अखिलेश का 40,000 वाला वादा। महिला वोटरों का गणित, यूपी में शुरू हुई सियासी भिड़ंत।
5: हर माता को फ्री में बस सेवा की सुविधा प्राप्त होगी एक सहयात्री के साथ।
4: 2027 यूपी विधानसभा चुनाव की जंग स्त्री 27। यूपी में आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए स्त्री 27 की ये पिक्चर सियासत में किसके लिए सुपरहिट साबित होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये दो तस्वीरें बता रही हैं कैसे यूपी में महिला वोटरों का गणित बड़ी सियासी भिड़ंत बन गया है। जब सीएम योगी महिलाओं के लिए अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना लॉन्च करते हैं, तो यूपी रोडवेज बस के अंदर मुफ्त सफर के लिए बैठी महिलाओं के साथ सेल्फी लेते हैं। उधर जब अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव महिलाओं के लिए स्त्री सम्मान समृद्धि योजना का ऐलान करते हैं, तो उनके साथ पार्टी की महिला सांसद, महिला नेता और महिला कार्यकर्ता मौजूद रहती हैं।
6: गांव से शहर तक, मायके से बेटी के घर तक।
4: स्त्री 27 साफ है, यूपी चुनाव की लड़ाई अब आधी आबादी पर गरबाई है। आधी आबादी को पूरा हक देने के दावे के साथ चुनावी होड़ ऐसी मची है कि सीएम योगी महिलाओं के लिए योजनाएं लॉन्च कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव भी स्त्री शक्ति के साथ चुनावी रण में उतरे हैं। योगी सरकार ने रक्षाबंधन से ठीक पहले यूपी में महिलाओं के लिए नए तोहफे की सौगात दी है और इसको नाम दिया गया है लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना। अब यूपी में 60 साल और उससे अधिक उम्र की महिलाएं सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी, जिसमें रोडवेज की बसों में आधार या वोटर आईडी दिखाकर मुफ्त यात्रा की जा सकेगी। इस योजना से उत्तर प्रदेश की करीब 1 करोड़ बुजुर्ग महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। इस योजना में रोजाना औसतन 88,000 महिलाएं लाभान्वित होंगी, जिसमें हर महीने करीब 22.5 करोड़ और सालाना करीब 270 करोड़ रुपए का खर्च आने की उम्मीद है। इसके अलावा रक्षाबंधन के मौके पर सभी उम्र की महिलाओं के लिए भी मुफ्त बस यात्रा की सुविधा रहेगी। 27 अगस्त की रात से 28 अगस्त की रात तक महिलाएं रोडवेज बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगी और उनके साथ एक सहयोगी को भी मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी।
7: रक्षाबंधन के अवसर पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम और सिटी बस सेवा दोनों में हर बेटी, हर बहन, हर माता को 3 दिन के लिए निशुल्क बस सेवा प्रारंभ करने के लिए और इस सुविधा के लिए प्रदेश भर की पूरी मातृशक्ति का अभिनंदन करते हुए उन्हें हृदय से बधाई देता हूं और 29 के बाद 60 वर्ष की कोई भी महिला जो उत्तर प्रदेश की वासी हो अपना वोटर आईडी कार्ड दिखा करके या आधार कार्ड दिखा करके इस यात्रा का लाभ ले सकती हैं। उनसे कोई भी किराया नहीं लिया जाएगा। ये दो प्रकार की सेवाएं आज एक साथ प्रारंभ हो रही हैं।
4: इसके अलावा सीएम योगी ने ग्रेजुएशन की छात्राओं के लिए स्कूटी योजना का भी ऐलान किया है। जी हाँ, 50,000 बेटियों को अक्टूबर नवंबर में स्कूटी दी जाएंगी।
7: यानी अभी तो बेटी के जन्म से लेकर पढ़ाई तक और आगे भी सरकार हमें साथ उसके साथ खड़ी है। हमने एक और व्यवस्था की है, हमारे लिए बड़ा था पहले ये काम कि रक्षाबंधन पे इस कार्यक्रम को करेंगे। अभी हम अक्टूबर या नवंबर में प्रदेश की 50,000 बेटियों को जो स्नातक में पढ़ाई कर रही हैं, ऐसी 50,000 बेटियों को एक स्कूटी उपलब्ध करवाने जा रहे हैं।
4: योगी सरकार ने महिलाओं के लिए योजनाओं का ऐलान किया तो जवाब में अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव ने ताबड़तोड़ 16 योजनाओं के वादों की झड़ी लगा दी।
8: स्त्री सम्मान समृद्धि योजना हम 40,000 से करेंगे शुरुआत, जिसमें बढ़ोतरी होगी हर साल।
9: आंगनबाड़ी बंद हो रहे केंद्र फिर खुलेंगे, घर में पोषाहार, साफ पानी और स्वच्छ शौचालय के साथ
10: पूरा ढांचा। हर जिले मुख्यालय पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलेंगे हम।
11: 2400 घंटे महिलाओं और बच्चियों के लिए एक अलग एम्बुलेंस सेवा होता है, उसकी समय सीमा तय रहेगी और प्रशिक्षित महिला स्टाफ के साथ गर्भवती माताओं को प्राथमिकता मिलेगी। 102 और 108 एम्बुलेंस समाजवादी पार्टी की तरफ से शुरू किया गया था और उसे वापस से लेकर के आएंगे, ये दृढ़ संकल्प है हमारा।
12: इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने वाली हर छात्रा को लैपटॉप,
13: लिए हर तहसील में पीजी कॉलेज, हर जिले में विश्वविद्यालय और सुरक्षित छात्रावास की सुविधा भी दी जाएगी।
14: कार्यस्थल पर महिलाओं का सम्मान, प्रति माह 2 दिन आकस्मिक अवकाश बिना किसी सवाल की।
4: अब एक तरफ तो अखिलेश यादव योगी सरकार की महिलाओं की योजना के जवाब में स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लागू करते हैं, दूसरी तरफ योगी सरकार की योजनाओं में खोट भी निकालते हैं, साथ ही महिला आरक्षण को लेकर प्रहार भी करते हैं।
15: भारतीय जनता पार्टी के लिए तो नारी केवल नारा बन करके रह गई है। आज के दिन हम कहना चाहते हैं, यहाँ जितनी भी हमारी महिलाएं बहनें बैठी हैं, वो जानती हैं कि महिला आरक्षण पास हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी क्यों देरी कर रही है, उसको अगले चुनाव में लागू किया जाए। जब रक्षाबंधन के त्योहार पे आप बस चला रहे हो और भी योजनाएं लागू करने का बहाना कर रहे हो, तो ये भी सच बोल करके महिला आरक्षण लागू करने का भी काम किया जाए।
7: मुझे 2017 के पहले की भी सरकारों के कार्यप्रणाली याद आती है। 2017 के पहले एक दौर था, उस समय ये हर बेटी, हर बहन और हर माता की जवान पर एक नारा गूंजता था कि देख सपाई बिटिया घबराई,
15: कि पूरी तैयारी के साथ कोई योजना नहीं चलाई जा रही है। कम से कम उस महिला के साथ या वृद्ध महिला के साथ अगर कोई जा रहा है तो अगर बच्चा है तो फ्री होना चाहिए, और परिवार का कोई वृद्ध है और जो उसके सहायता और सहयोग के साथ जा रहा है, सहयोग के लिए जा रहा है, उसकी आधी होनी चाहिए, आधी टिकट लगनी चाहिए।
3: दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने महिलाओं के लिए लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है और तालकटोरा स्टेडियम में लाभार्थी महिलाओं को सर्टिफिकेट देकर योजना का शुभारंभ किया गया। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की सहायता मिलेगी।
16: पात्र लाभार्थी हैं जो आज यहां पर उपस्थित हैं, चयनित किया गया है, उन सबकी आकांक्षाएं हैं यहां पर, बधाई दें, रक्षाबंधन की मिठाई आज।
17: रक्षाबंधन से ठीक पहले दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया। अब दिल्ली में लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की सहायता मिलेगी।
18: इस सभागार में बैठी हुई मेरी सभी बहनें, एक बार मेरे एक सवाल का जवाब दो, खुश हो? आवाज कम आ रही है मुझे, खुश हो? अरे कहां आवाज आ रही है, खुश हो? बस मैं यही चाहती हूं, मेरी सारी बहनें खुश रहनी चाहिए, उनके चेहरे पे ये मुस्कुराहट बनी रहनी चाहिए। सजी सवरी मेरी ये बहन जिंदगी में हमेशा आगे बढ़े, क्योंकि मैं हूं ना।
17: सरकार के मुताबिक 17 लाख से ज्यादा महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। अब तक इस योजना के लिए 9 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं। आज सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 2500 महिलाओं को अप्रूवल लेटर दिया। दिल्ली सरकार का ये चुनावी वादा था जो अब पूरा होने जा रहा है।
18: 2500 मैं आप सभी को ढेर सारी बधाई देती हूँ, आज के इस दिन की शुभकामनाएं देती हूँ। ये दिल्ली लक्ष्मी योजना जो आज मेरी दिल्ली की बहनों के लिए आप सभी के द्वार पहुंच पाई है, इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, उस माँ को और आप सभी को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए शुभकामनाएं देती हूँ आपके आगे आने वाले जीवन के लिए।
17: दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी ने ऐलान किया था कि अगर उनकी सरकार बनी तो दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं को हर

0: डिजिटल वॉलेट में आएंगे, जबकि बाकी के 1500 रुपए हर महीने एफडी खाते में जाएंगे। आपको बता दें कि 1 सितंबर से सभी पात्र महिलाओं के बैंक खातों में योजना की 2500 रुपए की मासिक सहायता राशि सीधे ट्रांसफर होनी शुरू हो जाएगी।
1: दिल्ली में बनने वाली भाजपा सरकार अपने वायदे पूरी करेगी। मैं फिर दोहराता हूं, 8 तारीख के बाद जब दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी, जो भी वादे आपको किए गए हैं वो सारे के सारे वादे समय सीमा में पूरे किए जाएंगे, ये मोदी की गारंटी है।
0: इस योजना का लाभ देने के लिए कुछ शर्तें हैं, जिसमें महिला की उम्र 21 से 60 साल के बीच होनी चाहिए, परिवार की कुल आय 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एक परिवार से एक ही महिला को लाभ मिलेगा, महिला कम से कम 10 साल से दिल्ली की स्थायी निवासी हो, महिला के खिलाफ कोई आपराधिक केस दर्ज नहीं होना चाहिए, महिला के 3 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, परिवार साल में 2400 यूनिट से ज्यादा बिजली ना खर्च करता हो, महिला या परिवार जीएसटी या इनकम टैक्स ना भरता हो, घर में कार नहीं होनी चाहिए, परिवार से कोई सरकारी नौकरी में ना हो या रिटायर ना हुआ हो।
2: कि ज्यादातर महिलाएं इस योजना से बाहर कर दी गई हैं। इस योजना के अंदर इतनी सख्त नियम लगाए गए हैं कि ये योजना लगभग किसी को ना मिले।
3: जो वादा प्रधानमंत्री जी ने किया था, मुख्यमंत्री जी ने किया था, वो वादा आज पूरा किया है दिल्ली सरकार ने 1 साल के अंदर। आज दिल्ली की जनता ने, दिल्ली की बहनों ने और देश की बहनों ने ये देख लिया कि कैसे वादा पूरा किया जाता है। इसी दिल्ली में 10 साल तक केजरीवाल ने और उनके लोगों ने बहनों के फॉर्म भरवाए, नकली फॉर्म भराए जाते थे बस्तियों में जा जाके, और फॉर्म भरा के उनका डेटा ले लिया जाता था, बाद में डेटा भी बेच दिया जाता था, और किसी बहन के खाते में 10 साल कोई पैसा नहीं आया दिल्ली के।
4: लगभग 6.5 लाख के आसपास रजिस्ट्रेशन जो है वो इस पूरी योजना के तहत महिलाओं का हुआ है, लेकिन आज पहली अप्रूवल लेटर्स जो है वो 2500 महिलाओं को जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से दिए गए हैं। इसमें मैं बता दूं कि 2025 के चुनावों से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली के जरिए इस योजना के लिए महिलाओं के सामने अपनी बात रखी थी, और उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है, उसी गारंटी पर आज दिल्ली सरकार ने कहीं ना कहीं अपनी मोहर जो है वो लगाई है, और महिलाओं को 2500 रुपए की अप्रूवल लेटर्स जो है वो बांटे गए हैं, और 1 सितंबर से इस योजना के तहत महिलाओं के खाते में पैसा जो है वो ट्रांसफर किया जाएगा।
0: दिल्ली लक्ष्मी योजना के आवेदन अभी खुले हुए हैं। सरकार ने तय किया है कि करीब 17 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। अभी 9 लाख से ज्यादा महिलाओं ने ही आवेदन किया है। आज तक ब्यूरो।
5: और इसी के साथ हम यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

750 से ज्यादा लापता, इसमें 133 भारतीय शामिल, चीन में भी सैलाब से बहे 265 लोग। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाली पीएम बालिन शाह से की बात, अलर्ट पर बिहार और पूर्वी यूपी, राहत सामग्री के साथ रवाना भारतीय एयरफोर्स के विमान। संसद का विशेष सत्र बुलाने का संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इशारा किया, इंडिया टुडे से खास बातचीत में कहा, संसद में महिला आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री मोदी गंभीर, इस दिशा में काम जारी। बीजेपी के हमले के बाद अब मुस्लिम महिलाओं ने राहुल गांधी को घेरा, हिजाब को लेकर दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर

प्रदर्शन हिजाब पर चुप्पी का विरोध। और यूपी के शामली में यूट्यूबर और हरियाणवी गायक अंकित बालियान की गोली मारकर हत्या। जिम से बाहर निकलते ही ताबड़तोड़ फायरिंग, हमलावर फरार। नेपाल में तिब्बत से आई अचानक बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाकर रख दी है। तस्वीरें ऐसी हैं कि देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। इस बाढ़ से 11 हाइड्रो पावर प्लांट्स तबाह हो गए हैं। 11 हाइड्रो पावर प्लांट्स को नुकसान पहुंचने से 431 मेगावाट बिजली उत्पादन बंद हो गया है। इसके अलावा बाढ़ से 19 पुल और 40 किलोमीटर सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं।

0: ये सबसे खतरनाक तस्वीरें हैं। नेपाल के त्रिशूली बाजार, ऊपर से पानी आ रहा और नीचे तबाही मची।
1: ओहो, पूरा डैम फूट रहा है, पूरा चाइना को डैम फूट रहा है।
0: अचानक से पानी की रफ्तार तेज होती है और पुल के ऊपर से पानी बहने लगता है। पूरा का पूरा पुल ही टूट कर बह गया। साफ तबाही दिख रही है। सब कुछ बर्बाद करता हुआ ये फ्लैश फ्लड आगे बढ़ता जाता है। और ये उसके बाद का वीडियो है। देखिए पहले ये त्रिशूली बाजार कैसे दिखता था और अब क्या हाल हो गया है। सब कुछ बर्बाद। यहाँ घर थे, होटल थे, स्कूल थे, सब कुछ खत्म हो गए। सिर्फ और सिर्फ बर्बादी के निशान दिख रहे हैं। अब जरा इन दो तस्वीरों को देखिए और समझिए कि कैसे ये त्रिशूली बाजार बर्बाद हो गया। जब ये बाढ़ आई तो उसकी भयावहता तो दिख ही रही है, लेकिन ये भी समझ में आ रहा है कि ये एक भरा पूरा बाजार था जहाँ सब कुछ था, होटल, स्कूल, रिहायशी इलाके। और दूसरी तस्वीर में आपको तबाही दिख रही है। सब कुछ खत्म हो गया। नदी के किनारे रहने वाले लोगों के घर तो पूरी तरह से तबाह हो गए। अभी तो ये भी नहीं पता कि यहाँ कितने लोग बहे होंगे। ये फ्लैश फ्लड कितनी तबाही लेकर आया ये इन तस्वीरों से समझिए। पानी की लहरें बड़ी बड़ी इमारतों से भी बहुत ऊंची उठ रही हैं। ये नेपाल का रसुवा इलाका है। देखिए पानी की कितनी ऊंची लहरें हैं। ये इस तबाही का एक और खतरनाक वीडियो है। ये धाड़िंग का बताया जा रहा है जहां ये पुल ऐसे बह गया जैसे कि कागज का रहा हो। इतने फोर्स से पानी आया कि पूरा का पूरा पुल ही बह गया। पानी के साथ बहुत सा कचरा भी दिख रहा है। देखिए कैसे अचानक से ये फ्लैश फ्लड अपना रास्ता बदल कर आया। ये तस्वीरें नेपाल के रसुवागढ़ी में चीन के केरुंग बॉर्डर की हैं, जहां पर कस्टम ऑफिस भी है। यहां से नेपाल में सामान आता है, कंटेनर आते हैं और इसी रास्ते से मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले यात्री भी जाते हैं। सीसीटीवी की तस्वीरों में तारीख आज की है, यानी 26 अगस्त। लोगों के बीच अफरा तफरी मची हुई है और पीछे से फ्लैश फ्लड आ रहा है। यहाँ पर पूरा कस्टम ऑफिस है। अचानक से पूरा फ्लैश फ्लड आता है और सब कुछ खत्म करते हुए आगे बढ़ जाता है। ये लोग जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे वो नहीं बच पाए। बाद में पूरी की पूरी बर्बादी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। पीछे से भारी मात्रा में पानी और मलबा दिख रहा है और आता ही जा रहा है। ये इसी कस्टम पॉइंट का एक और सीसीटीवी वीडियो है। पहले तो सब कुछ सामान्य लग रहा है। बगल में एक छोटी सी नदी बह रही है। 10-12 बसें भी दिख रही हैं। एक दफ्तर दिख रहा है। अचानक से ऊपर से कुछ हलचल होती है या शोर होता है। लोग दौड़ने लगते हैं। देख सकते हैं कि कैसे लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। और फिर दिखता है फ्लैश फ्लड। पूरा पानी और मलबा आता है और सब कुछ तबाह करके चला जाता है। सारी बसें ऐसे बहती हैं जैसे कोई फिल्मी सीन। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने खोज और बचाव कार्य के निर्देश दिए हैं। तिब्बत के केरुंग पोर्ट पर बुधवार की सुबह ये फ्लैश फ्लड आया था। ये फ्लैश फ्लड कोई सामान्य नहीं था। ये नेपाल चीन बॉर्डर से करीब 190 किलोमीटर दूर चितवन की तस्वीरें हैं। और इन तस्वीरों में पानी का फोर्स और उसकी तबाही साफ दिख रही है। सामने बहुत बड़ी भगवान बुद्ध की मूर्ति है और पानी बिल्कुल मूर्ति के आधे आ गया है। ये समझा जा सकता है कि इसकी रफ्तार कितनी तेज है। अब जरा आसमान से देखिए कि कैसे तबाही मची हुई है। ये तस्वीरें नेपाली सेना ने जारी की हैं, हेलीकॉप्टर से ली हुई हैं। सब कुछ तबाह दिख रहा है। इस तबाही का एक और वीडियो रसवा में त्रिशूली नदी के पास का है, जब ये बाढ़ आई तब का वीडियो है। आगे एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट दिख रहा है और नीचे कुछ मजदूर काम कर रहे हैं, तभी अचानक से ऊपर से पानी आ गया, मजदूर भागने लगे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, इतना फोर्स से पानी आया कि ये पूरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट टूट गया और ये मजदूर बह गए। आज तक भी
2: अभी तक कोई अनुमान नहीं लगा पा रहा है कि इस प्रलय से कितना नुकसान हुआ है। 133 भारतीय भी लापता बताए जा रहे हैं और यह भी कहा जा रहा है कि ये मानसरोवर यात्री थे, क्योंकि नेपाल से मानसरोवर यात्रा के रूट में ही ये फ्लैश फ्लड आई है, जिसकी शुरुआत हुई नेपाल चीन बॉर्डर से।
0: ये नेपाल के नुवाकोट की ड्रोन तस्वीरें, तबाही के निशान साफ साफ दिख रहे हैं। नदी किनारे पूरी बस्ती थी, अब कुछ एक घर ही बचे हैं। ऐसा लगता है कि नदी अपने साथ सब कुछ बहाती हुई ले गई, पूरा सपाट कर दी। और ये नेपाल के रसवा की एरियल तस्वीरें, पूरी की पूरी घाटी में नदी से हुई बर्बादी साफ दिख रही है। नेपाल की सेना कैसे बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर रही है, ये इन तस्वीरों से समझिए। यहां एक लड़का छत पर था, वो निकल नहीं पाया और यहीं फंस गया। यहां हेलीकॉप्टर उतारने की जगह नहीं थी, तो छत के ऊपर हेलीकॉप्टर कुछ देर के लिए स्थिर रहा और वहीं पर उसका रेस्क्यू किया गया। अंदर से नेपाली सेना के जवान ने हाथ बढ़ाया, इस युवक ने थामा और इस तरह से उसे बचाया। ये तबाही का एक और वीडियो है, पूरी घाटी है, सामने से नदी बह रही है जिसकी रफ्तार बहुत कम है और पानी भी कम है, लेकिन तभी अचानक से ऊपर से पानी का गुबार आता दिख रहा है। साफ दिख रहा है कि पानी सब कुछ बर्बाद करता हुआ आगे बढ़ रहा है। एक ट्रक वाला भी सड़क पर है, जो पानी की रफ्तार देखते हुए और तेजी से भागने लगा, लेकिन पानी की रफ्तार से जीत नहीं पाई। पानी की ऊंची ऊंची लहरें बहुत तेजी से बढ़ रही। पीछे से और तेज गति से पानी आ रहा था और इसी में कुछ और लोग फंसे हुए दिखाई दिए, जो पैदल चल रहे थे। वो भी पूरी रफ्तार से भागने और बचने की कोशिश कर रहे थे। दूर से बनाए गए इस वीडियो में पानी बहुत नजदीक दिख रहा है, लेकिन असल में यह बहुत दूर था। पीछे से पूरा मलबा आ रहा था, पानी का फोर्स इतना तेज था कि ऐसा लग रहा था जैसे यह बहुत नजदीक हो। ऐसे ही पूरी की पूरी घाटी इस फ्लैश फ्लड से बर्बाद हुई। यह इस तबाही का एक और वीडियो है, यह भी बहुत दूर से बनाया गया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बम विस्फोट हुआ हो, जिसके बाद धुएं का गुबार उठा हो, लेकिन असल में यह पानी का बहाव था जो इतना तेज था कि आसपास सब कुछ बर्बाद करता हुआ आगे बढ़ रहा था। देखिए कैसे बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई। नेपाल में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि जहां ये बाढ़ आई है इस त्रिशूली नदी पर बहुत से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, जो पूरी तरह से तबाह हो गए। नेपाली मीडिया के मुताबिक लांगटांग खोला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में काम करने वाले 60 लोग लापता हैं। इनमें 25 इंजीनियर, ड्राइवर और किचन स्टाफ है। इसके अलावा 35 वर्कर हैं, जो टनल के अंदर काम कर रहे थे। फ्लैश फ्लड के बाद उनका भी कुछ पता नहीं चल रहा। इसके अलावा तिमूर में रसवा कस्टम ऑफिस में काम करने वाले 15 कर्मचारी भी मिसिंग है। बाढ़ की तबाही इतनी भीषण है कि बड़े बड़े पुल टूट गए। ये चितवन में त्रिशूली नदी पर बना पुल है, देखिए क्या हाल हो गया। आज तक भी
2: नेपाल में आई बाढ़ के बाद बिहार में भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। इसे लेकर बिहार सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री सह जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।

0: नेपाल की इन खौफनाक तस्वीरों ने बिहार के जिलों में दहशत भर दी है, क्योंकि नेपाल से आने वाला पानी बिहार के कई जिलों की जिंदगानी को खतरे में डाल सकता है। इसलिए बिहार में कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है।
1: नदी के किनारे तथा बाढ़ प्रभावित होने वाले क्षेत्रों के निवासी आवश्यक सावधानी बरतें और अपने परिवार, बच्चों, बुजुर्गों एवं पशुओं को सुरक्षित स्थान पर रखने की तैयारी रखें।
0: नेपाल में फ्लैश फ्लड के खतरे को देखते हुए कोसी और गंडक नदी बेसिन से जुड़े जिलों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण और वैशाली में अलर्ट है। सुपौल, सहरसा, मधेपुरा और अररिया जिले में भी अलर्ट है। सरकार कह रही है कि खतरा तो है, मगर सरकार ने सतर्कता के पूरे इंतजाम कर लिए हैं।
2: ये जो पानी आ रहा है, इसमें हम लोगों का आकलन है कि लगभग 1.5 लाख क्यूसेक तक अतिरिक्त पानी आ सकता है, तो फिर 2.5-3 लाख से अधिक पानी नहीं जाएगा। तो याद इतना 2.5-3 लाख आने की संभावना है, उस हिसाब से सतर्कता के सभी काम हम लोगों ने कर लिए हैं।
1: अभी सूचना प्राप्त हो रही है कि नेपाल में नदी में भूस्खलन आ जाने के कारण गंडक नदी का बहाव अगले आधे घंटे में काफी तेज होने की संभावना है।
0: बगहा में लोगों को अलर्ट किया जा रहा है, अनाउंस किया जा रहा है कि लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं, तैयारियां तेज हैं। एसएसबी ने भारत नेपाल सीमा पर तैनात अपनी यूनिट्स को अलर्ट जारी किया है। राहत बचाव के लिए 11 टीमों को अलर्ट किया गया है। 7 अतिरिक्त टीमें स्टैंड बाय पर रखी गई हैं। भारत नेपाल सीमा पर तैनात बटालियन को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। सरकार कह रही है कि स्थिति को नियंत्रण से बाहर नहीं जाने देंगे।
2: स्थिति तो थोड़ी कठिन है, लेकिन अभी का जो अनुमान है पानी आने का, वो हम लोगों के हिसाब से स्थिति को हम लोग नियंत्रण से बाहर नहीं जाने देंगे।
0: बिहार की सरकार कह रही है कि घबराने की जरूरत नहीं है, बस सतर्क रहने की आवश्यकता है।
2: लोगों से हम लोगों ने सरकार की तरफ से अपील की है कि अभी घबराने की जरूरत नहीं है, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सतर्क रहना है।
0: बिहार के अलावा यूपी के महाराजगंज, कुशीनगर में भी अलर्ट जारी किया गया है। सतर्कता पूरी है, उम्मीद कीजिए कि नेपाल से आई तबाही भारत में कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। आज तक ब्यूरो।
3: 2027 में यूपी का विधानसभा चुनाव है और ऐसे में यूपी में बीजेपी हैट्रिक लगाने के लिए जांचे परखे फॉर्मूले की तरफ बढ़ रही है। सीएम योगी ने रक्षाबंधन से ठीक पहले लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना शुरू की है। यूपी में अब 60 साल और उससे ऊपर की महिलाओं को रोडवेज की बसों में फ्री यात्रा की सुविधा मिलेगी, तो ग्रेजुएशन की 50,000 छात्राओं को मुफ्त स्कूटी दी जाएगी। योगी सरकार के जवाब में अखिलेश यादव ने भी स्त्री सम्मान योजना का ऐलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर महिलाओं को 40,000 रुपए देने का वादा किया गया है।
4: धन्यवाद। यूपी की चुनावी लड़ाई आधी आबादी पर गरमाई। जेन जी के बाद अब महिलाओं के लिए योजनाओं का ऐलान।
5: तो बेटी के जन्म से लेके पढ़ाई तक और आगे भी सरकार हमेशा उसके साथ खड़ी है।
4: योगी कराएंगे मुफ्त में सफर, अखिलेश का 40,000 वाला वादा। महिला वोटरों का गणित, यूपी में शुरू हुई सियासी भिड़ंत।
5: हर माता को फ्री में बस सेवा की सुविधा प्राप्त होगी एक सहयात्री के साथ।
4: 2027 यूपी विधानसभा चुनाव की जंग स्त्री 27। यूपी में आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए स्त्री 27 की ये पिक्चर सियासत में किसके लिए सुपरहिट साबित होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये दो तस्वीरें बता रही हैं कैसे यूपी में महिला वोटरों का गणित बड़ी सियासी भिड़ंत बन गया है। जब सीएम योगी महिलाओं के लिए अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना लॉन्च करते हैं, तो यूपी रोडवेज बस के अंदर मुफ्त सफर के लिए बैठी महिलाओं के साथ सेल्फी लेते हैं। उधर जब अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव महिलाओं के लिए स्त्री सम्मान समृद्धि योजना का ऐलान करते हैं, तो उनके साथ पार्टी की महिला सांसद, महिला नेता और महिला कार्यकर्ता मौजूद रहती हैं।
6: गांव से शहर तक मायके से बेटी के घर तक।
4: स्त्री 27 साफ है, यूपी चुनाव की लड़ाई अब आधी आबादी पर गरबाई है। आधी आबादी को पूरा हक देने के दावे के साथ चुनावी होड़ ऐसी मची है कि सीएम योगी महिलाओं के लिए योजनाएं लॉन्च कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव भी स्त्री शक्ति के साथ चुनावी रण में उतरे हैं। योगी सरकार ने रक्षाबंधन से ठीक पहले यूपी में महिलाओं के लिए नए तोहफे की सौगात दी है और इसको नाम दिया गया है लोक माता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना। अब यूपी में 60 साल और उससे अधिक उम्र की महिलाएं सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी, जिसमें रोडवेज की बसों में आधार या वोटर आईडी दिखाकर मुफ्त यात्रा की जा सकेगी। इस योजना से उत्तर प्रदेश की करीब 1 करोड़ बुजुर्ग महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। इस योजना में रोजाना औसतन 88,000 महिलाएं लाभान्वित होंगी, जिसमें हर महीने करीब 22.5 करोड़ और सालाना करीब 270 करोड़ रुपए का खर्च आने की उम्मीद है। इसके अलावा रक्षाबंधन के मौके पर सभी उम्र की महिलाओं के लिए भी मुफ्त बस यात्रा की सुविधा रहेगी। 27 अगस्त की रात से 28 अगस्त की रात तक महिलाएं रोडवेज बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगी और उनके साथ एक सहयोगी को भी मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी।
7: रक्षाबंधन के अवसर पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम और सिटी बस सेवा दोनों में हर बेटी, हर बहन, हर माता को 3 दिन के लिए निशुल्क बस सेवा प्रारंभ करने के लिए और इस सुविधा के लिए प्रदेश भर की पूरी मातृशक्ति का अभिनंदन करते हुए उन्हें हृदय से बधाई देता हूं और 29 के बाद 60 वर्ष की कोई भी महिला जो उत्तर प्रदेश की वासी हो अपना वोटर आईडी कार्ड दिखा करके या आधार कार्ड दिखा करके इस यात्रा का लाभ ले सकती हैं। उनसे कोई भी किराया नहीं लिया जाएगा। ये दो प्रकार की सेवाएं आज एक साथ प्रारंभ हो रही हैं।
4: इसके अलावा सीएम योगी ने ग्रेजुएशन की छात्राओं के लिए स्कूटी योजना का भी ऐलान किया है। जी हाँ, 50,000 बेटियों को अक्टूबर नवंबर में स्कूटी दी जाएंगी।
7: यानी अभी तो बेटी के जन्म से लेकर पढ़ाई तक और आगे भी सरकार हमें साथ उसके साथ खड़ी है। हमने एक और व्यवस्था की है, हमारे लिए बड़ा था पहले ये काम कि रक्षाबंधन पे इस कार्यक्रम को करेंगे। अभी हम अक्टूबर या नवंबर में प्रदेश की 50,000 बेटियों को जो स्नातक में पढ़ाई कर रही हैं, ऐसी 50,000 बेटियों को एक स्कूटी उपलब्ध करवाने जा रहे हैं।
4: योगी सरकार ने महिलाओं के लिए योजनाओं का ऐलान किया तो जवाब में अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव ने ताबड़तोड़ 16 योजनाओं के वादों की झड़ी लगा दी।
8: स्त्री सम्मान समृद्धि योजना, हम 40,000 से करेंगे शुरुआत, जिसमें बढ़ोतरी होगी हर साल।
9: आंगनबाड़ी बंद हो रहे केंद्र फिर खुलेंगे, गर्म पोषाहार, साफ पानी और स्वच्छ शौचालय के साथ
10: पूरा ढांचा। हर जिले मुख्यालय पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलेंगे हम।
11: 2400 घंटे महिलाओं और बच्चियों के लिए एक अलग एम्बुलेंस सेवा होता है, उसकी समय सीमा तय रहेगी और प्रशिक्षित महिला स्टाफ के साथ गर्भवती माताओं को प्राथमिकता मिलेगी। 102 और 108 एम्बुलेंस समाजवादी पार्टी की तरफ से शुरू किया गया था और उसे वापस से लेकर के आएंगे, ये दृढ़ संकल्प है हमारा।
12: इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने वाली हर छात्रा को लैपटॉप,
13: लिए हर तहसील में पीजी कॉलेज, हर जिले में विश्वविद्यालय और सुरक्षित छात्रावास की सुविधा भी दी जाएगी।
14: कार्यस्थल पर महिलाओं का सम्मान, प्रति माह 2 दिन आकस्मिक अवकाश बिना किसी सवाल की।
4: अब एक तरफ तो अखिलेश यादव योगी सरकार की महिलाओं की योजना के जवाब में स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लागू करते हैं, दूसरी तरफ योगी सरकार की योजनाओं में खोट भी निकालते हैं, साथ ही महिला आरक्षण को लेकर प्रहार भी करते हैं।
15: भारतीय जनता पार्टी के लिए तो नारी केवल नारा बन करके रह गई है। आज के दिन हम कहना चाहते हैं, यहाँ जितनी भी हमारी महिलाएं बहने बैठी हैं, वो जानती हैं कि महिला आरक्षण पास हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी क्यों देरी कर रही है? उसको अगले चुनाव में लागू किया जाए। जब रक्षाबंधन के त्योहार पे आप बस चला रहे हो और भी योजनाएं लागू करने का बहाना कर रहे हो, तो ये भी सच बोल करके महिला आरक्षण लागू करने का भी काम किया जाए।
7: मुझे 2017 के पहले की भी सरकारों के कार्यप्रणाली याद आती है। 2017 के पहले एक दौर था, उस समय ये हर बेटी, हर बहन और हर माता की जवान पर एक नारा गूंजता था कि देख सपाई बिटिया घबराई,
15: कि पूरी तैयारी के साथ कोई योजना नहीं चलाई जा रही है। कम से कम उस महिला के साथ या वृद्ध महिला के साथ अगर कोई जा रहा है तो अगर बच्चा है तो फ्री होना चाहिए, और परिवार का कोई वृद्ध है और जो उसके सहायता और सहयोग के साथ जा रहा है, सहयोग के लिए जा रहा है, उसकी आधी होनी चाहिए, आधी टिकट लगनी चाहिए।
3: दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने महिलाओं के लिए लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है और तालकटोरा स्टेडियम में लाभार्थी महिलाओं को सर्टिफिकेट देकर योजना का शुभारंभ किया गया। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की सहायता मिलेगी।
16: 65 पात्र लाभार्थी हैं जो आज यहां पर उपस्थित हैं, चयनित किया गया है, उन सबकी आकांक्षाएं हैं यहां पर, बधाई दें, रक्षाबंधन की मिठाई आज।
17: रक्षाबंधन से ठीक पहले दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया। अब दिल्ली में लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की सहायता मिलेगी।
18: इस सभागार में बैठी हुई मेरी सभी बहनें एक बार मेरे एक सवाल का जवाब दो, खुश हो? आवाज कम आ रही है मुझे, खुश हो? अरे कहां आवाज आ रही है, खुश हो? बस मैं यही चाहती हूं, मेरी सारी बहनें खुश रहनी चाहिए, उनके चेहरे पे ये मुस्कुराहट बनी रहनी चाहिए। सजी सवरी मेरी ये बहन जिंदगी में हमेशा आगे बढ़े, क्योंकि मैं हूं ना।
17: सरकार के मुताबिक 17 लाख से ज्यादा महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। अब तक इस योजना के लिए 9 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं। आज सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 2500 महिलाओं को अप्रूवल लेटर दिया। दिल्ली सरकार का ये चुनावी वादा था जो अब पूरा होने जा रहा है।
18: मैं आप सभी को ढेर सारी बधाई देती हूँ, आज के इस दिन की शुभकामनाएं देती हूँ। ये दिल्ली लक्ष्मी योजना जो आज मेरी दिल्ली की बहनों के लिए आप सभी के द्वार पहुंच पाई है, इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, उस माँ को और आप सभी को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए शुभकामनाएं देती हूं आपके आगे आने वाले जीवन के लिए।
17: दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी ने ऐलान किया था कि अगर उनकी सरकार बनी तो दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। चुनाव जीतने के बाद इसके लिए 5100 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया। इस योजना में 1000 रुपए उनके डिजिटल वॉलेट में आएंगे, जबकि बाकी के 1500 रुपए हर महीने FD खाते में जाएंगे। आपको बता दें कि 1 सितंबर से सभी पात्र महिलाओं के बैंक खातों में योजना की 2500 रुपए की मासिक सहायता राशि सीधे ट्रांसफर होनी शुरू हो जाएगी।
2: दिल्ली में बनने वाली भाजपा सरकार अपने वायदे पूरी करेगी। मैं फिर दोहराता हूं, 8 तारीख के बाद जब दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी, जो भी वादे आपको किए गए हैं वो सारे के सारे वादे समय सीमा में पूरे किए जाएंगे, ये
19: मोदी की गारंटी है।
17: इस योजना का लाभ देने के लिए कुछ शर्तें हैं, जिसमें महिला की उम्र 21 से 60 साल के बीच होनी चाहिए, परिवार की कुल आय 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एक परिवार से एक ही महिला को लाभ मिलेगा, महिला कम से कम 10 साल से दिल्ली की स्थायी निवासी हो, महिला के खिलाफ कोई आपराधिक केस दर्ज नहीं होना चाहिए, महिला के 3 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, परिवार साल में 2400 यूनिट से ज्यादा बिजली ना खर्च करता हो, महिला या परिवार जीएसटी या इनकम टैक्स ना भरता हो, घर में कार नहीं होनी चाहिए, परिवार से कोई सरकारी नौकरी में ना हो या रिटायर ना हुआ हो।
20: कि ज्यादातर महिलाएं इस योजना से बाहर कर दी गई हैं। इस योजना के अंदर इतनी सख्त नियम लगाए गए हैं कि ये योजना लगभग किसी को ना मिले।
21: जो वादा प्रधानमंत्री जी ने किया था, मुख्यमंत्री जी ने किया था, वो वादा आज पूरा किया है दिल्ली सरकार ने 1 साल के अंदर। आज दिल्ली की जनता ने, दिल्ली की बहनों ने और देश की बहनों ने ये देख लिया कि कैसे वादा पूरा किया जाता है। इसी दिल्ली में 10 साल तक केजरीवाल ने और उनके लोगों ने बहनों के फॉर्म भरवाए, नकली फॉर्म भराए जाते थे बस्तियों में जा जाके, और फॉर्म भरा के उनका डेटा ले लिया जाता था, बाद में डेटा भी बेच दिया जाता था, और किसी बहन के खाते में 10 साल कोई पैसा नहीं आया दिल्ली के।
22: लगभग 6.5 लाख के आसपास रजिस्ट्रेशन जो है वो इस पूरी योजना के तहत महिलाओं का हुआ है, लेकिन आज पहली अप्रूवल लेटर्स जो है वो 2500 महिलाओं को जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से दिए गए हैं। इसमें मैं बता दूं कि 2025 के चुनावों से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली के जरिए इस योजना के लिए महिलाओं के सामने अपनी बात रखी थी, और उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है, उसी गारंटी पर आज दिल्ली सरकार ने कहीं ना कहीं अपनी मोहर जो है वो लगाई है, और महिलाओं को 2500 रुपए की अप्रूवल लेटर्स जो है वो बांटे गए हैं, और 1 सितंबर से इस योजना के तहत महिलाओं के खाते में पैसा जो है वो ट्रांसफर किया जाएगा।
17: दिल्ली लक्ष्मी योजना के आवेदन अभी खुले हुए हैं। सरकार ने तय किया है कि करीब 17 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। अभी 9 लाख से ज्यादा महिलाओं ने ही आवेदन किया है। आज तक ब्यूरो।
3: और इसी के साथ हम यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: 750 से ज्यादा लापता, इसमें 133 भारतीय शामिल, चीन में भी सैलाब से बहे 265 लोग। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाली पीएम बालिन शाह से की बात, अलर्ट पर बिहार और पूर्वी यूपी, राहत सामग्री के साथ रवाना भारतीय एयरफोर्स के विमान। संसद का विशेष सत्र बुलाने का संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इशारा किया, इंडिया टुडे से खास बातचीत में कहा, संसद में महिला आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री मोदी गंभीर, इस दिशा में काम जारी। बीजेपी के हमले के बाद अब मुस्लिम महिलाओं ने राहुल गांधी को घेरा, हिजाब को लेकर दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन, हिजाब पर चुप्पी का विरोध। और यूपी के शामली में यूट्यूबर और हरियाणवी गायक अंकित बालियान की गोली मारकर हत्या, जिम से बाहर निकलते ही ताबड़तोड़ फायरिंग, हमलावर फरार। नेपाल में तिब्बत से आई अचानक बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाकर रख दी है, तस्वीरें ऐसी हैं कि देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। इस बाढ़ से 11 हाइड्रो पावर प्लांट्स तबाह हो गए हैं। 11 हाइड्रो पावर प्लांट्स को नुकसान पहुंचने से 431 मेगावाट बिजली उत्पादन बंद हो गया है। इसके अलावा बाढ़ से 19 पुल और 40 किलोमीटर सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं।
1: ये सबसे खतरनाक तस्वीरें हैं नेपाल के त्रिशूली बाजार, ऊपर से पानी आ रहा और नीचे तबाही मची।
2: ओ हो, पूरा डैम फूट रहा है, पूरा चाइना को डैम फूट रहा है।
1: अचानक से पानी की रफ्तार तेज होती है और पुल के ऊपर से पानी बहने लगता है, पूरा का पूरा पुल ही टूट कर बह गए। साफ तबाही दिख रही है, सब कुछ बर्बाद करता हुआ ये फ्लैश फ्लड आगे बढ़ता जाता है। और ये उसके बाद का वीडियो है, देखिए पहले ये त्रिशूली बाजार कैसे दिखता था और अब क्या हाल हो गया है। सब कुछ बर्बाद, यहाँ घर थे, होटल थे, स्कूल थे, सब कुछ खत्म हो गए, सिर्फ और सिर्फ बर्बादी के निशान दिख रहे हैं। अब जरा इन दो तस्वीरों को देखिए और समझिए कि कैसे ये त्रिशूली बाजार बर्बाद हो गया। जब ये बाढ़ आई तो उसकी भयावहता तो दिख ही रही है, लेकिन ये भी समझ में आ रहा है कि ये एक भरा पूरा बाजार था जहाँ सब कुछ था, होटल, स्कूल, रिहायशी इलाके। और दूसरी तस्वीर में आपको तबाही दिख रही है, सब कुछ खत्म हो गया, नदी के किनारे रहने वाले लोगों के घर तो पूरी तरह से तबाह हो गए। अभी तो ये भी नहीं पता कि यहाँ कितने लोग बहे होंगे। ये फ्लैश फ्लड कितनी तबाही लेकर आया ये इन तस्वीरों से समझिए। पानी की लहरें बड़ी बड़ी इमारतों से भी बहुत ऊंची उठ रही हैं। ये नेपाल का रसुआ इलाका है, देखिए पानी की कितनी ऊंची लहरें हैं। ये इस तबाही का एक और खतरनाक वीडियो है, ये धाड़िंग का बताया जा रहा है, जहां ये पुल ऐसे बह गया जैसे कि कागज का रहा हो। इतने फोर्स से पानी आया कि पूरा का पूरा पुल ही बह गया, पानी के साथ बहुत सा कचरा भी दिख रहा है। देखिए कैसे अचानक से ये फ्लैश फ्लड अपना रास्ता बदल कर आया। ये तस्वीरें नेपाल के रसुवागढ़ी में चीन के केरूंग बॉर्डर की है, जहां पर कस्टम ऑफिस भी है। यहां से नेपाल में सामान आता है, कंटेनर आते हैं, और इसी रास्ते से मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले यात्री भी जाते हैं। सीसीटीवी की तस्वीरों में तारीख आज की है, यानी 26 अगस्त। लोगों के बीच अफरा तफरी मची हुई है और पीछे से फ्लैश फ्लड आ रहा है। यहाँ पर पूरा कस्टम ऑफिस है, अचानक से पूरा फ्लैश फ्लड आता है और सब कुछ खत्म करते हुए आगे बढ़ जाता है। ये लोग जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे वो नहीं बच पाए। बाद में पूरी की पूरी बर्बादी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। पीछे से भारी मात्रा में पानी और मलबा दिख रहा है और आता ही जा रहा है। ये इसी कस्टम पॉइंट का एक और सीसीटीवी वीडियो है। पहले तो सब कुछ सामान्य लग रहा है, बगल में एक छोटी सी नदी बह रही है, 10-12 बसें भी दिख रही हैं, एक दफ्तर दिख रहा है। अचानक से ऊपर से कुछ हलचल होती है या शोर होता है, लोग दौड़ने लगते हैं। देख सकते हैं कि कैसे लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं और फिर दिखता है फ्लैश फ्लड, पूरा पानी और मलबा आता है और सब कुछ तबाह करके चला जाता है। सारी बसें ऐसे बहती हैं जैसे कोई फिल्मी सीन। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने खोज और बचाव कार्य के निर्देश दिए हैं। तिब्बत के केरुंग पोर्ट पर बुधवार की सुबह यह फ्लैश फ्लड आया था। यह फ्लैश फ्लड कोई सामान्य नहीं था, यह नेपाल चीन बॉर्डर से करीब 190 किलोमीटर दूर चितवन की तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों में पानी का फोर्स और उसकी तबाही साफ दिख रही है। सामने बहुत बड़ी भगवान बुद्ध की मूर्ति है और पानी बिल्कुल मूर्ति के आधे आ गया है। यह समझा जा सकता है कि इसकी रफ्तार कितनी तेज है। अब जरा आसमान से देखिए कि कैसे तबाही मची हुई है। ये तस्वीरें नेपाली सेना ने जारी की हैं, हेलीकॉप्टर से ली हुई हैं। सब कुछ तबाह दिख रहा है। इस तबाही का एक और वीडियो रसवा में त्रिशूली नदी के पास का है। जब ये बाढ़ आई तब का वीडियो है। आगे एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट दिख रहा है और नीचे कुछ मजदूर काम कर रहे हैं। तभी अचानक से ऊपर से पानी आ गया, मजदूर भागने लगे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इतना फोर्स से पानी आया कि यह पूरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट टूट गया और यह मजदूर बह गए। आज तक भी
0: अभी तक कोई अनुमान नहीं लगा पा रहा है कि इस प्रलय से कितना नुकसान हुआ है। 133 भारतीय भी लापता बताए जा रहे हैं और यह भी कहा जा रहा है कि ये मानसरोवर यात्री थे, क्योंकि नेपाल से मानसरोवर यात्रा के रूट में ही ये फ्लैश फ्लड आई है जिसकी शुरुआत हुई नेपाल चीन बॉर्डर से।
1: ये नेपाल के नुवाकोट की ड्रोन तस्वीरें हैं। तबाही के निशान साफ साफ दिख रहे हैं। नदी किनारे पूरी बस्ती थी, अब कुछ एक घर ही बचे हैं। ऐसा लगता है कि नदी अपने साथ सब कुछ बहाती हुई ले गई, पूरा सपाट कर दिया। और ये नेपाल के रसवा की एरियल तस्वीरें हैं। पूरी की पूरी घाटी में नदी से हुई बर्बादी साफ दिख रही है। नेपाल की सेना कैसे बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर रही है ये इन तस्वीरों से समझिए। यहां एक लड़का छत पर था, वो निकल नहीं पाया और यहीं फंस गया। यहां हेलीकॉप्टर उतारने की जगह नहीं थी तो छत के ऊपर हेलीकॉप्टर कुछ देर के लिए स्थिर रहा और वहीं पर उसका रेस्क्यू किया गया। अंदर से नेपाली सेना के जवान ने हाथ बढ़ाया, इस युवक ने थामा और इस तरह से उसे बचाया गया। ये तबाही का एक और वीडियो है। पूरी घाटी है, सामने से नदी बह रही है जिसकी रफ्तार बहुत कम है और पानी भी कम है, लेकिन तभी अचानक से ऊपर से पानी का गुबार आता दिख रहा है। साफ दिख रहा है कि पानी सब कुछ बर्बाद करता हुआ आगे बढ़ रहा है। एक ट्रक वाला भी सड़क पर है जो पानी की रफ्तार देखते हुए और तेजी से भागने लगा, लेकिन पानी की रफ्तार से जीत नहीं पाए। पानी की ऊंची ऊंची लहरें बहुत तेजी से बढ़ रही थी। पीछे से और तेज गति से पानी आ रहा था और इसी में कुछ और लोग फंसे हुए दिखाई दिए जो पैदल चल रहे थे। वो भी पूरी रफ्तार से भागने और बचने की कोशिश कर रहे थे। दूर से बनाए गए इस वीडियो में पानी बहुत नजदीक दिख रहा है, लेकिन असल में ये बहुत दूर था। पीछे से पूरा मलबा आ रहा था। पानी का फोर्स इतना तेज था कि ऐसा लग रहा था जैसे ये बहुत नजदीक हो। ऐसे ही पूरी की पूरी घाटी इस फ्लैश फ्लड से बर्बाद हो। ये इस तबाही का एक और वीडियो है। ये भी बहुत दूर से बनाया गया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बम विस्फोट हुआ हो जिसके बाद धुएं का गुबार उठा हो, लेकिन असल में ये पानी का बहाव था जो इतना तेज था कि आसपास सब कुछ बर्बाद करता हुआ आगे बढ़ रहा था। देखिए कैसे बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई। नेपाल में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि जहां ये बाढ़ आई है इस त्रिशूली नदी पर बहुत से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स चल रहे थे जो पूरी तरह से तबाह हो गए। नेपाली मीडिया के मुताबिक लांगटांग खोला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में काम करने वाले 60 लोग लापता हैं। इनमें 25 इंजीनियर, ड्राइवर और किचन स्टाफ है। इसके अलावा 35 वर्कर हैं जो टनल के अंदर काम कर रहे थे। फ्लैश फ्लड के बाद उनका भी कुछ पता नहीं चल रहा। इसके अलावा तिमूर में रसवा कस्टम ऑफिस में काम करने वाले 15 कर्मचारी भी मिसिंग हैं। बाढ़ की तबाही इतनी भीषण है कि बड़े बड़े पुल टूट गए। ये चितवन में त्रिशूली नदी पर बना पुल है। देखिए क्या हाल हो गया। आज तक
0: 2027 में यूपी का विधानसभा चुनाव है और ऐसे में यूपी में बीजेपी हैट्रिक लगाने के लिए जांचे परखे फॉर्मूले की तरफ बढ़ रही है। सीएम योगी ने रक्षाबंधन से ठीक पहले लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना शुरू की है। यूपी में अब 60 साल और उससे ऊपर की महिलाओं को रोडवेज की बसों में फ्री यात्रा की सुविधा मिलेगी, तो ग्रेजुएशन की 50,000 छात्राओं को मुफ्त स्कूटी दी जाएगी। योगी सरकार के जवाब में अखिलेश यादव ने भी स्त्री सम्मान योजना का ऐलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर महिलाओं को 40,000 रुपए देने का वादा किया गया है।
3: धन्यवाद। यूपी की चुनावी लड़ाई आधी आबादी पर गरमाई। जेन जी के बाद अब महिलाओं के लिए योजनाओं का ऐलान।
4: तो बेटी के जन्म से लेके पढ़ाई तक और आगे भी सरकार हमेशा उसके साथ खड़ी है।
3: योगी कराएंगे मुफ्त में सफर, अखिलेश का 40,000 वाला वादा। महिला वोटरों का गणित, यूपी में शुरू हुई सियासी भिड़न।
4: हर माता को फ्री में बस सेवा की सुविधा प्राप्त होगी एक सहयात्री के साथ।
3: 2027 यूपी विधानसभा चुनाव की जंग स्त्री 27। यूपी में आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए स्त्री 27 की ये पिक्चर सियासत में किसके लिए सुपरहिट साबित होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ये दो तस्वीरें बता रही हैं कैसे यूपी में महिला वोटरों का गणित बड़ी सियासी भिड़ंत बन गया है जब सीएम योगी महिलाओं के लिए अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना लॉन्च करते हैं तो यूपी रोडवेज बस के अंदर मुफ्त सफर के लिए बैठी महिलाओं के साथ सेल्फी लेते हैं। उधर जब अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव महिलाओं के लिए स्त्री सम्मान समृद्धि योजना का ऐलान करते हैं तो उनके साथ पार्टी की महिला सांसद, महिला नेता और महिला कार्यकर्ता मौजूद रहती हैं।
5: गांव से शहर तक, मायके से बेटी के घर तक,
3: स्त्री 27 साफ है। यूपी चुनाव की लड़ाई अब आधी आबादी पर गरमाई है। आधी आबादी को पूरा हक देने के दावे के साथ चुनावी होड़ ऐसी मची है कि सीएम योगी महिलाओं के लिए योजनाएं लॉन्च कर रहे हैं तो अखिलेश यादव भी स्त्री शक्ति के साथ चुनावी रण में उतरे हैं। योगी सरकार ने रक्षाबंधन से ठीक पहले यूपी में महिलाओं के लिए नए तोहफे की सौगात दी है और इसको नाम दिया गया है लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना। अब यूपी में 60 साल और उससे अधिक उम्र की महिलाएं सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी, जिसमें रोडवेज की बसों में आधार या वोटर आईडी दिखाकर मुफ्त यात्रा की जा सकेगी। इस योजना से उत्तर प्रदेश की करीब 1 करोड़ बुजुर्ग महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। इस योजना में रोजाना औसतन 88,000 महिलाएं लाभान्वित होंगी, जिसमें हर महीने करीब 22.5 करोड़ और सालाना करीब 270 करोड़ रुपए का खर्च आने की उम्मीद है। इसके अलावा रक्षाबंधन के मौके पर सभी उम्र की महिलाओं के लिए भी मुफ्त बस यात्रा की सुविधा रहेगी। 27 अगस्त की रात से 28 अगस्त की रात तक महिलाएं रोडवेज बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगी और उनके साथ एक सहयोगी को भी मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी।
4: रक्षाबंधन के अवसर पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम और सिटी बस सेवा दोनों में हर बेटी, हर बहन, हर माता को 3 दिन के लिए निःशुल्क बस सेवा प्रारंभ करने के लिए और इस सुविधा के लिए प्रदेश भर की पूरी मातृशक्ति का अभिनंदन करते हुए उन्हें हृदय से बधाई देता हूं और 29 के बाद 60 वर्ष की कोई भी महिला जो उत्तर प्रदेश की वासी हो अपना वोटर आईडी कार्ड दिखा करके या आधार कार्ड दिखा करके इस यात्रा का लाभ ले सकती हैं। उनसे कोई भी किराया नहीं लिया जाएगा। ये दो प्रकार की सेवाएं आज एक साथ प्रारंभ हो रही हैं।
3: इसके अलावा सीएम योगी ने ग्रेजुएशन की छात्राओं के लिए स्कूटी योजना का भी ऐलान किया है। जी हाँ, 50,000 बेटियों को अक्टूबर नवंबर में स्कूटी दी जाएंगी।
4: यानी अभी तो बेटी के जन्म से लेकर पढ़ाई तक और आगे भी सरकार हमें साथ उसके साथ खड़ी है। हमने एक और व्यवस्था की है, हमारे लिए बड़ा था पहले ये काम कि रक्षाबंधन पे इस कार्यक्रम को करेंगे। अभी हम अक्टूबर या नवंबर में प्रदेश की 50,000 बेटियों को जो स्नातक में पढ़ाई कर रही हैं, ऐसी 50,000 बेटियों को एक स्कूटी उपलब्ध करवाने जा रहे हैं।
3: योगी सरकार ने महिलाओं के लिए योजनाओं का ऐलान किया तो जवाब में अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव ने ताबड़तोड़ 16 योजनाओं के वादों की झड़ी लगा दी।
6: स्त्री सम्मान समृद्धि योजना, हम 40,000 से करेंगे शुरुआत, जिसमें बढ़ोतरी होगी हर साल।
7: आंगनबाड़ी बंद हो रहे केंद्र फिर खुलेंगे, गर्म पोषाहार, साफ पानी और स्वच्छ शौचालय के साथ।
8: पूरा ढांचा, हर जिले मुख्यालय पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलेंगे हम।
9: 24 घंटे महिलाओं और बच्चियों के लिए एक अलग एम्बुलेंस सेवा होता है, उसकी समय सीमा तय रहेगी और प्रशिक्षित महिला स्टाफ के साथ गर्भवती माताओं को प्राथमिकता मिलेगी। 102 और 108 एम्बुलेंस समाजवादी पार्टी की तरफ से शुरू किया गया था और उसे वापस से लेकर के आएंगे, ये दृढ़ संकल्प है हमारा।
10: इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने वाली हर छात्रा को लैपटॉप,
11: लिए हर तहसील में पीजी कॉलेज, हर जिले में विश्वविद्यालय और सुरक्षित छात्रावास की सुविधा भी दी जाएगी।
12: कार्यस्थल पर महिलाओं का सम्मान, प्रति माह 2 दिन आकस्मिक अवकाश बिना किसी सवाल की।
3: अब एक तरफ तो अखिलेश यादव योगी सरकार की महिलाओं की योजना के जवाब में स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लागू करते हैं, दूसरी तरफ योगी सरकार की योजनाओं में खोट भी निकालते हैं, साथ ही महिला आरक्षण को लेकर प्रहार भी करते हैं।
13: भारतीय जनता पार्टी के लिए तो नारी केवल नारा बन करके रह गई है। आज के दिन हम कहना चाहते हैं, यहाँ जितनी भी हमारी महिलाएं बहने बैठी हैं, वो जानती हैं कि महिला आरक्षण पास हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी क्यों देरी कर रही है, उसको अगले चुनाव में लागू किया जाए। जब रक्षाबंधन के त्योहार पे आप बस चला रहे हो और भी योजनाएं लागू करने का बहाना कर रहे हो, तो ये भी सच बोल करके महिला आरक्षण लागू करने का भी काम किया जाए।
4: मुझे 2017 के पहले की भी सरकारों के कार्यप्रणाली याद आती है। 2017 के पहले एक दौर था, उस समय
14: ये हर बेटी, हर बहन और हर माता की जवान पर ये नारा गूंजता था कि देख सपाई बिटिया घबराई,
13: कि पूरी तैयारी के साथ कोई योजना नहीं चलाई जा रही है। कम से कम उस महिला के साथ या वृद्ध महिला के साथ अगर कोई जा रहा है तो अगर बच्चा है तो फ्री होना चाहिए, और परिवार का कोई वृद्ध है और जो उसके सहायता और सहयोग के साथ जा रहा है, सहयोग के लिए जा रहा है, उसकी आधी होनी चाहिए, आधी टिकट लगनी चाहिए।
0: दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने महिलाओं के लिए लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है और तालकटोरा स्टेडियम में लाभार्थी महिलाओं को सर्टिफिकेट देकर योजना का शुभारंभ किया गया। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की सहायता मिलेगी।
15: 65 पात्र लाभार्थी हैं जो आज यहां पर उपस्थित हैं, चयनित किया गया है, उन सबकी आकांक्षाएं हैं यहां पर, बधाई दें, रक्षाबंधन की मिठाई।
16: रक्षाबंधन से ठीक पहले दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया। अब दिल्ली में लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की सहायता मिलेगी।
17: इस सभागार में बैठी हुई मेरी सभी बहनें एक बार मेरे एक सवाल का जवाब दो, खुश हो? आवाज कम आ रही है मुझे, खुश हो? अरे कहां आवाज आ रही है, खुश हो? बस मैं यही चाहती हूं, मेरी सारी बहनें खुश रहनी चाहिए, उनके चेहरे पे ये मुस्कुराहट बनी रहनी चाहिए। सजी सवरी मेरी ये बहन जिंदगी में हमेशा आगे बढ़े, क्योंकि मैं हूं ना।
16: सरकार के मुताबिक 17 लाख से ज्यादा महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। अब तक इस योजना के लिए 9 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं। आज सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 2500 महिलाओं को अप्रूवल लेटर दिया। दिल्ली सरकार का ये चुनावी वादा था जो अब पूरा होने जा रहा है।
17: मैं आप सभी को ढेर सारी बधाई देती हूँ, आज के इस दिन की शुभकामनाएं देती हूँ। ये दिल्ली लक्ष्मी योजना जो आज मेरी दिल्ली की बहनों के लिए आप सभी के द्वार पहुंच पाई है, इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, उस माँ को और आप सभी को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए शुभकामनाएं देती हूं आपके आगे आने वाले जीवन के लिए।
16: दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी ने ऐलान किया था कि अगर उनकी सरकार बनी तो दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। चुनाव जीतने के बाद इसके लिए 5100 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया। इस योजना में 1000 रुपए उनके डिजिटल वॉलेट में आएंगे, जबकि बाकी के 1500 रुपए हर महीने FD खाते में जाएंगे। आपको बता दें कि 1 सितंबर से सभी पात्र महिलाओं के बैंक खातों में योजना की 2500 रुपए की मासिक सहायता राशि सीधे ट्रांसफर होनी शुरू हो जाएगी।
18: दिल्ली में बनने वाली भाजपा सरकार अपने वायदे पूरी करेगी। मैं फिर दोहराता हूं, 8 तारीख के बाद जब दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी, जो भी वादे आपको किए गए हैं वो सारे के सारे वादे समय सीमा में पूरे किए जाएंगे, ये मोदी की गारंटी है।
16: इस योजना का लाभ देने के लिए कुछ शर्तें हैं, जिसमें महिला की उम्र 21 से 60 साल के बीच होनी चाहिए, परिवार की कुल आय 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एक परिवार से एक ही महिला को लाभ मिलेगा, महिला कम से कम 10 साल से दिल्ली की स्थायी निवासी हो, महिला के खिलाफ कोई आपराधिक केस दर्ज नहीं होना चाहिए, महिला के 3 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, परिवार साल में 2400 यूनिट से ज्यादा बिजली ना खर्च करता हो, महिला या परिवार जीएसटी या इनकम टैक्स ना भरता हो, घर में कार नहीं होनी चाहिए, परिवार से कोई सरकारी नौकरी में ना हो या रिटायर ना हुआ हो।
19: कि ज्यादातर महिलाएं इस योजना से बाहर कर दी गई हैं। इस योजना के अंदर इतनी सख्त नियम लगाए गए हैं कि ये योजना लगभग किसी को ना मिले।
20: जो वादा प्रधानमंत्री जी ने किया था, मुख्यमंत्री जी ने किया था, वो वादा आज पूरा किया है दिल्ली सरकार ने एक साल के अंदर।

0: ने और उनके लोगों ने बहनों के फॉर्म भरवाए, नकली फॉर्म भराए जाते थे बस्तियों में जा जाके, और फॉर्म भरा के उनका डेटा ले लिया जाता था, बाद में डेटा भी बेच दिया जाता था, और किसी बहन के खाते में 10 साल कोई पैसा नहीं आया दिल्ली के।
1: लगभग 6.5 लाख के आसपास रजिस्ट्रेशन जो है वो इस पूरी योजना के तहत महिलाओं का हुआ है, लेकिन आज पहली अप्रूवल लेटर्स जो है वो 2500 महिलाओं को जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से दिए गए हैं। इसमें मैं बता दूं कि 2025 के चुनावों से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली के जरिए इस योजना के लिए महिलाओं के सामने अपनी बात रखी थी, और उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है, उसी गारंटी पर आज दिल्ली सरकार ने कहीं ना कहीं अपनी मोहर जो है वो लगाई है और महिलाओं को 2500 रुपए की अप्रूवल लेटर्स जो है वो बांटे गए हैं, और 1 सितंबर से इस योजना के तहत महिलाओं के खाते में पैसा जो है वो ट्रांसफर किया जाएगा।
2: दिल्ली लक्ष्मी योजना के आवेदन अभी खुले हुए हैं। सरकार ने तय किया है कि करीब 17 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। अभी 9 लाख से ज्यादा महिलाओं ने ही आवेदन किया है। आज तक ब्यूरो।
3: और इसी के साथ हम यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: 150 से ज्यादा लापता, इसमें 133 भारतीय शामिल, चीन में भी सैलाब से बहे 265 लोग। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाली पीएम बालिन शाह से की बात, अलर्ट पर बिहार और पूर्वी यूपी, राहत सामग्री के साथ रवाना भारतीय एयरफोर्स के विमान। संसद का विशेष सत्र बुलाने का संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इशारा किया, इंडिया टुडे से खास बातचीत में कहा, संसद में महिला आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री मोदी गंभीर, इस दिशा में काम जारी। बीजेपी के हमले के बाद अब मुस्लिम महिलाओं ने राहुल गांधी को घेरा, हिजाब को लेकर दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन, हिजाब पर चुप्पी का विरोध। और यूपी के शामली में यूट्यूबर और हरियाणवी गायक अंकित बालियान की गोली मारकर हत्या, जिम से बाहर निकलते ही ताबड़तोड़ फायरिंग, हमलावर फरार। नेपाल में तिब्बत से आई अचानक बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाकर रख दी है, तस्वीरें ऐसी हैं कि देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। इस बाढ़ से 11 हाइड्रो पावर प्लांट्स तबाह हो गए हैं। 11 हाइड्रो पावर प्लांट्स को नुकसान पहुंचने से 431 मेगावाट बिजली उत्पादन बंद हो गया है। इसके अलावा बाढ़ से 19 पुल और 40 किलोमीटर सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं।
1: Yeah. Wait, come on, come on, come on.

0: ये सबसे खतरनाक तस्वीरें हैं। नेपाल के त्रिशूली बाजार के ऊपर से पानी आ रहा और नीचे तबाही मची।
1: ओहो, पूरा डैम फूट रहा है यार, पूरा चाइना को डैम फूट रहा है।
0: अचानक से पानी की रफ्तार तेज होती है और पुल के ऊपर से पानी बहने लगता है। पूरा का पूरा पुल ही टूट कर बह गए। साफ तबाही दिख रही है, सब कुछ बर्बाद करता।

0: हुआ ये फ्लैश फ्लड आगे बढ़ता जाता है। और ये उसके बाद का वीडियो है, देखिए पहले ये त्रिशूली बाजार कैसे दिखता था और अब क्या हाल हो गया है। सब कुछ बर्बाद, यहाँ घर थे, होटल थे, स्कूल थे, सब कुछ खत्म हो गए, सिर्फ और सिर्फ बर्बादी के निशान दिख रहे हैं। अब जरा इन दो तस्वीरों को देखिए और समझिए कि कैसे ये त्रिशूली बाजार बर्बाद हो गया। जब ये बाढ़ आई तो उसकी भयावहता तो दिख ही रही है, लेकिन ये भी समझ में आ रहा है कि ये एक भरा पूरा बाजार था जहाँ सब कुछ था, होटल, स्कूल, रिहायशी इलाके। और दूसरी तस्वीर में आपको तबाही दिख रही है, सब कुछ खत्म हो गया। नदी के किनारे रहने वाले लोगों के घर तो पूरी तरह से तबाह हो गए। अभी तो ये भी नहीं पता कि यहाँ कितने लोग बहे होंगे। ये फ्लैश फ्लड कितनी तबाही लेकर आया ये इन तस्वीरों से समझिए। पानी की लहरें बड़ी बड़ी इमारतों से भी बहुत ऊंची उठ रही हैं। ये नेपाल का रसुआ इलाका है, देखिए पानी की कितनी ऊंची लहरें हैं। ये इस तबाही का एक और खतरनाक वीडियो है, ये धाड़िंग का बताया जा रहा है जहां ये पुल ऐसे बह गया जैसे कि कागज का रहा हो। इतने फोर्स से पानी आया कि पूरा का पूरा पुल ही बह गया। पानी के साथ बहुत सा कचरा भी दिख रहा है। देखिए कैसे अचानक से यह फ्लैश फ्लड अपना रास्ता बदल कर आया। ये तस्वीरें नेपाल के रसुवागढ़ी में चीन के केरूंग बॉर्डर की हैं, जहां पर कस्टम ऑफिस भी है। यहां से नेपाल में सामान आता है, कंटेनर आते हैं और इसी रास्ते से मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले यात्री भी जाते हैं। सीसीटीवी की तस्वीरों में तारीख आज की है यानी 26 अगस्त। लोगों के बीच अफरा तफरी मची हुई है और पीछे से फ्लैश फ्लड आ रहा है। यहाँ पर पूरा कस्टम ऑफिस है, अचानक से पूरा फ्लैश फ्लड आता है और सब कुछ खत्म करते हुए आगे बढ़ जाता है। ये लोग जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे वो नहीं बच पाए। बाद में पूरी की पूरी बर्बादी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। पीछे से भारी मात्रा में पानी और मलबा दिख रहा है और आता ही जा रहा है। ये इसी कस्टम पॉइंट का एक और सीसीटीवी वीडियो है। पहले तो सब कुछ सामान्य लग रहा है, बगल में एक छोटी सी नदी बह रही है, 10-12 बसें भी दिख रही हैं, एक दफ्तर दिख रहा है। अचानक से ऊपर से कुछ हलचल होती है या शोर होता है, लोग दौड़ने लगते हैं। देख सकते हैं कि कैसे लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। और फिर दिखता है फ्लैश फ्लड, पूरा पानी और मलबा आता है और सब कुछ तबाह करके चला जाता है। सारी बसें ऐसे बहती हैं जैसे कोई फिल्मी सीन। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने खोज और बचाव कार्य के निर्देश दिए हैं। तिब्बत के केरूंग पोर्ट पर बुधवार की सुबह ये फ्लैश फ्लड आया था। ये फ्लैश फ्लड कोई सामान्य नहीं था, ये नेपाल चीन बॉर्डर से करीब 190 किलोमीटर दूर चितवन की तस्वीरें हैं। और इन तस्वीरों में पानी का फोर्स और उसकी तबाही साफ दिख रही है। सामने बहुत बड़ी भगवान बुद्ध की मूर्ति है और पानी बिल्कुल मूर्ति के आधे आ गया है। ये समझा जा सकता है कि इसकी रफ्तार कितनी तेज है। अब जरा आसमान से देखिए कि कैसे तबाही मची हुई है। ये तस्वीरें नेपाली सेना ने जारी की हैं, हेलीकॉप्टर से ली हुई हैं। सब कुछ तबाह दिख रहा है। इस तबाही का एक और वीडियो रसुवा में त्रिशूली नदी के पास का है, जब ये बाढ़ आई तब का वीडियो है। आगे एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट दिख रहा है और नीचे कुछ मजदूर काम कर रहे हैं। तभी अचानक से ऊपर से पानी आ गया, मजदूर भागने लगे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इतना फोर्स से पानी आया कि ये पूरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट टूट गया और ये मजदूर बह गए। आज तक भी
1: अभी तक कोई अनुमान नहीं लगा पा रहा है कि इस प्रलय से कितना नुकसान हुआ है। 133 भारतीय भी लापता बताए जा रहे हैं और यह भी कहा जा रहा है कि ये मानसरोवर यात्री थे, क्योंकि नेपाल से मानसरोवर यात्रा के रूट में ही ये फ्लैश फ्लड आई है जिसकी शुरुआत हुई नेपाल चीन बॉर्डर से।
0: ये नेपाल के नुवाकोट की ड्रोन तस्वीरें तबाही के निशान साफ साफ दिख रहे हैं। नदी किनारे पूरी बस्ती थी, अब कुछ एक घर ही बचे हैं। ऐसा लगता है कि नदी अपने साथ सब कुछ बहाती हुई ले गई, पूरा सपाट कर दिया। और ये नेपाल के रसवा की एरियल तस्वीरें, पूरी की पूरी घाटी में नदी से हुई बर्बादी साफ दिख रही है। नेपाल की सेना कैसे बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर रही है ये इन तस्वीरों से समझिए। यहां एक लड़का छत पर था, वो निकल नहीं पाया और यहीं फंस गया। यहां हेलीकॉप्टर उतारने की जगह नहीं थी तो छत के ऊपर हेलीकॉप्टर कुछ देर के लिए स्थिर रहा और वहीं पर उसका रेस्क्यू किया गया। अंदर से नेपाली सेना के जवान ने हाथ बढ़ाया, इस युवक ने थामा और इस तरह से उसे बचाया। ये तबाही का एक और वीडियो है। पूरी घाटी है, सामने से नदी बह रही है जिसकी रफ्तार बहुत कम है और पानी भी कम है, लेकिन तभी अचानक से ऊपर से पानी का गुबार आता दिख रहा है। साफ दिख रहा है कि पानी सब कुछ बर्बाद करता हुआ आगे बढ़ रहा है। एक ट्रक वाला भी सड़क पर है जो पानी की रफ्तार देखते हुए और तेजी से भागने लगा, लेकिन पानी की रफ्तार से जीत नहीं पाया। पानी की ऊंची ऊंची लहरें बहुत तेजी से बढ़ रही। पीछे से और तेज गति से पानी आ रहा था और इसी में कुछ और लोग फंसे हुए दिखाई दिए जो पैदल चल रहे थे। वो भी पूरी रफ्तार से भागने और बचने की कोशिश कर रहे थे। दूर से बनाए गए इस वीडियो में पानी बहुत नजदीक दिख रहा है, लेकिन असल में यह बहुत दूर था। पीछे से पूरा मलबा आ रहा था, पानी का फोर्स इतना तेज था कि ऐसा लग रहा था जैसे यह बहुत नजदीक हो। ऐसे ही पूरी की पूरी घाटी इस फ्लैश फ्लड से बर्बाद हुई। यह इस तबाही का एक और वीडियो है, यह भी बहुत दूर से बनाया गया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बम विस्फोट हुआ जिसके बाद धुएं का गुबार उठा हो, लेकिन असल में यह पानी का बहाव था जो इतना तेज था कि आसपास सब कुछ बर्बाद करता हुआ आगे बढ़ रहा था। देखिए कैसे बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई। नेपाल में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है क्योंकि जहां ये बाढ़ आई है इस त्रिशूली नदी पर बहुत से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चल रहे थे जो पूरी तरह से तबाह हो गए। नेपाली मीडिया के मुताबिक लांगटांग खोला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में काम करने वाले 60 लोग लापता हैं। इनमें 25 इंजीनियर, ड्राइवर और किचन स्टाफ हैं। इसके अलावा 35 वर्कर हैं जो टनल के अंदर काम कर रहे थे। फ्लैश फ्लड के बाद उनका भी कुछ पता नहीं चल रहा। इसके अलावा तिमूर में रसवा कस्टम ऑफिस में काम करने वाले 15 कर्मचारी भी मिसिंग है। बाढ़ की तबाही इतनी भीषण है कि बड़े बड़े पुल टूट गए। ये चितवन में त्रिशूली नदी पर बना पुल है, देखिए क्या हाल हो गया। आज तक
1: नेपाल में आई बाढ़ के बाद बिहार में भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। इसे लेकर बिहार सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री सह जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।

0: नेपाल की इन खौफनाक तस्वीरों ने बिहार के जिलों में दहशत भर दी है, क्योंकि नेपाल से आने वाला पन बिहार के कई जिलों की जिंदगानी को खतरे में डाल सकता है। इसलिए बिहार में कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है।
1: नदी के किनारे तथा बाढ़ प्रभावित होने वाले क्षेत्रों के निवासी आवश्यक सावधानी बरतें और अपने परिवार, बच्चों, बुजुर्गों एवं पशुओं को सुरक्षित स्थान पर रखने की तैयारी रखें।
0: नेपाल में फ्लैश फ्लड के खतरे को देखते हुए कोसी और गंडक नदी बेसिन से जुड़े जिलों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण और वैशाली में अलर्ट है। सुपौल, सहरसा, मधेपुरा और अररिया जिले में भी अलर्ट है। सरकार कह रही है कि खतरा तो है, मगर सरकार ने सतर्कता के पूरे इंतजाम कर लिए हैं।
2: ये जो पानी आ रहा है, इसमें हम लोगों का आकलन है कि लगभग 1.5 लाख क्यूसेक तक अतिरिक्त पानी आ सकता है, तो फिर 2.5-3 लाख से अधिक पानी नहीं जाएगा। तो याद इतना 2.5-3 लाख आने की संभावना है, उस हिसाब से सतर्कता के सभी काम हम लोगों ने कर लिए हैं।
1: अभी सूचना प्राप्त हो रही है कि नेपाल में नदी में भूस्खलन आ जाने के कारण गंडक नदी का बहाव अगले आधे घंटे में काफी तेज होने की संभावना है।
0: बगहा में लोगों को अलर्ट किया जा रहा है, अनाउंस किया जा रहा है कि लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं, तैयारियां तेज हैं। एसएसबी ने भारत नेपाल सीमा पर तैनात अपनी यूनिट्स को अलर्ट जारी किया है। राहत बचाव के लिए 11 टीमों को अलर्ट किया गया है। 7 अतिरिक्त टीमें स्टैंड बाय पर रखी गई हैं। भारत नेपाल सीमा पर तैनात बटालियन को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। सरकार कह रही है कि स्थिति को नियंत्रण से बाहर नहीं जाने देंगे।
2: स्थिति तो थोड़ी कठिन है, लेकिन अभी का जो अनुमान है पानी आने का, वो हम लोगों के हिसाब से स्थिति को हम लोग नियंत्रण से बाहर नहीं जाने देंगे।
0: बिहार की सरकार कह रही है कि घबराने की जरूरत नहीं है, बस सतर्क रहने की आवश्यकता है।
2: लोगों से हम लोगों ने सरकार की तरफ से अपील की है कि अभी घबराने की जरूरत नहीं है, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सतर्क रहना है।
0: बिहार के अलावा यूपी के महाराजगंज, कुशीनगर में भी अलर्ट जारी किया गया है। सतर्कता पूरी है, उम्मीद कीजिए कि नेपाल से आई तबाही भारत में कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। आज तक ब्यूरो।
3: 2027 में यूपी का विधानसभा चुनाव है और ऐसे में यूपी में बीजेपी हैट्रिक लगाने के लिए जांचे परखे फॉर्मूले की तरफ बढ़ रही है। सीएम योगी ने रक्षाबंधन से ठीक पहले लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना शुरू की है। यूपी में अब 60 साल और उससे ऊपर की महिलाओं को रोडवेज की बसों में फ्री यात्रा की सुविधा मिलेगी, तो ग्रेजुएशन की 50,000 छात्राओं को मुफ्त स्कूटी दी जाएगी। योगी सरकार के जवाब में अखिलेश यादव ने भी स्त्री सम्मान योजना का ऐलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर महिलाओं को 40,000 रुपए देने का वादा किया गया है।
4: धन्यवाद। यूपी की चुनावी लड़ाई आधी आबादी पर गरमाई। जेन जी के बाद अब महिलाओं के लिए योजनाओं का ऐलान।
5: तो बेटी के जन्म से लेके पढ़ाई तक और आगे भी सरकार हमेशा उसके साथ खड़ी है।
4: योगी कराएंगे मुफ्त में सफर, अखिलेश का 40,000 वाला वादा। महिला वोटरों का गणित, यूपी में शुरू हुई सियासी भिड़ंत।
5: हर माता को फ्री में बस सेवा की सुविधा प्राप्त होगी एक सहयात्री के साथ।
4: 2027 यूपी विधानसभा चुनाव की जंग स्त्री 27। यूपी में आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए स्त्री 27 की ये पिक्चर सियासत में किसके लिए सुपरहिट साबित होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये दो तस्वीरें बता रही हैं कैसे यूपी में महिला वोटरों का गणित बड़ी सियासी भिड़ंत बन गया है। जब सीएम योगी महिलाओं के लिए अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना लॉन्च करते हैं, तो यूपी रोडवेज बस के अंदर मुफ्त सफर के लिए बैठी महिलाओं के साथ सेल्फी लेते हैं। उधर जब अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव महिलाओं के लिए स्त्री सम्मान समृद्धि योजना का ऐलान करते हैं, तो उनके साथ पार्टी की महिला सांसद, महिला नेता और महिला कार्यकर्ता मौजूद रहती हैं।
6: गांव से शहर तक मायके से बेटी के घर तक।
4: स्त्री 27 साफ है, यूपी चुनाव की लड़ाई अब आधी आबादी पर गरबाई है। आधी आबादी को पूरा हक देने के दावे के साथ चुनावी होड़ ऐसी मची है कि सीएम योगी महिलाओं के लिए योजनाएं लॉन्च कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव भी स्त्री शक्ति के साथ चुनावी रण में उतरे हैं। योगी सरकार ने रक्षाबंधन से ठीक पहले यूपी में महिलाओं के लिए नए तोहफे की सौगात दी है और इसको नाम दिया गया है लोक माता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना। अब यूपी में 60 साल और उससे अधिक उम्र की महिलाएं सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी, जिसमें रोडवेज की बसों में आधार या वोटर आईडी दिखाकर मुफ्त यात्रा की जा सकेगी। इस योजना से उत्तर प्रदेश की करीब 1 करोड़ बुजुर्ग महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। इस योजना में रोजाना औसतन 88,000 महिलाएं लाभान्वित होंगी, जिसमें हर महीने करीब 22.5 करोड़ और सालाना करीब 270 करोड़ रुपए का खर्च आने की उम्मीद है। इसके अलावा रक्षाबंधन के मौके पर सभी उम्र की महिलाओं के लिए भी मुफ्त बस यात्रा की सुविधा रहेगी। 27 अगस्त की रात से 28 अगस्त की रात तक महिलाएं रोडवेज बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगी और उनके साथ एक सहयोगी को भी मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी।
7: रक्षाबंधन के अवसर पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम और सिटी बस सेवा दोनों में हर बेटी, हर बहन, हर माता को 3 दिन के लिए निःशुल्क बस सेवा प्रारंभ करने के लिए और इस सुविधा के लिए प्रदेश भर की पूरी मातृशक्ति का अभिनंदन करते हुए उन्हें हृदय से बधाई देता हूं और 29 के बाद 60 वर्ष की कोई भी महिला जो उत्तर प्रदेश की वासी हो अपना वोटर आईडी कार्ड दिखा करके या आधार कार्ड दिखा करके इस यात्रा का लाभ ले सकती हैं। उनसे कोई भी किराया नहीं लिया जाएगा। ये दो प्रकार की सेवाएं आज एक साथ प्रारंभ हो रही हैं।
4: इसके अलावा सीएम योगी ने ग्रेजुएशन की छात्राओं के लिए स्कूटी योजना का भी ऐलान किया है। जी हाँ, 50,000 बेटियों को अक्टूबर नवंबर में स्कूटी दी जाएंगी।
7: यानी अभी तो बेटी के जन्म से लेकर पढ़ाई तक और आगे भी सरकार हमें साथ उसके साथ खड़ी है। हमने एक और व्यवस्था की है, हमारे लिए बड़ा था पहले ये काम कि रक्षाबंधन पे इस कार्यक्रम को करेंगे। अभी हम अक्टूबर या नवंबर में प्रदेश की 50,000 बेटियों को जो स्नातक में पढ़ाई कर रही हैं, ऐसी 50,000 बेटियों को एक स्कूटी उपलब्ध करवाने जा रहे हैं।
4: योगी सरकार ने महिलाओं के लिए योजनाओं का ऐलान किया तो जवाब में अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव ने ताबड़तोड़ 16 योजनाओं के वादों की झड़ी लगा दी।
8: स्त्री सम्मान समृद्धि योजना, हम 40,000 से करेंगे शुरुआत, जिसमें बढ़ोतरी होगी हर साल।
9: आंगनबाड़ी बंद हो रहे केंद्र फिर खुलेंगे, गर्म पोषाहार, साफ पानी और स्वच्छ शौचालय के साथ।
10: पूरा ढांचा, हर जिले मुख्यालय पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलेंगे हम।
11: 24 घंटे महिलाओं और बच्चियों के लिए एक अलग एम्बुलेंस सेवा, उसकी समय सीमा तय रहेगी और प्रशिक्षित महिला स्टाफ के साथ गर्भवती माताओं को प्राथमिकता मिलेगी। 102 और 108 एम्बुलेंस समाजवादी पार्टी की तरफ से शुरू किया गया था और उसे वापस से लेकर के आएंगे, ये दृढ़ संकल्प है हमारा।
12: इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने वाली हर छात्रा को लैपटॉप,
13: लिए हर तहसील में पीजी कॉलेज, हर जिले में विश्वविद्यालय और सुरक्षित छात्रावास की सुविधा भी दी जाएगी।
14: कार्यस्थल पर महिलाओं का सम्मान, प्रति माह 2 दिन आकस्मिक अवकाश बिना किसी सवाल की।
4: अब एक तरफ तो अखिलेश यादव योगी सरकार की महिलाओं की योजना के जवाब में स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लागू करते हैं, दूसरी तरफ योगी सरकार की योजनाओं में खोट भी निकालते हैं, साथ ही महिला आरक्षण को लेकर प्रहार भी करते हैं।
15: भारतीय जनता पार्टी के लिए तो नारी केवल नारा बन करके रह गई है। आज के दिन हम कहना चाहते हैं, यहाँ जितनी भी हमारी महिलाएं बहने बैठी हैं, वो जानती हैं कि महिला आरक्षण पास हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी क्यों देरी कर रही है? उसको अगले चुनाव में लागू किया जाए। जब रक्षाबंधन के त्योहार पे आप बस चला रहे हो और भी योजनाएं लागू करने का बहाना कर रहे हो, तो ये भी सच बोल करके महिला आरक्षण लागू करने का भी काम किया जाए।
7: मुझे 2017 के पहले की भी सरकारों के कार्यप्रणाली याद आती है। 2017 के पहले एक दौर था, उस समय ये हर बेटी, हर बहन और हर माता की जवान पर एक नारा गूंजता था कि देख सपाई बिटिया घबराई,
15: कि पूरी तैयारी के साथ कोई योजना नहीं चलाई जा रही है। कम से कम उस महिला के साथ या वृद्ध महिला के साथ अगर कोई जा रहा है तो अगर बच्चा है तो फ्री होना चाहिए, और परिवार का कोई वृद्ध है और जो उसके सहायता और सहयोग के साथ जा रहा है, सहयोग के लिए जा रहा है, उसकी आधी होनी चाहिए, आधी टिकट लगनी चाहिए।
3: दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने महिलाओं के लिए लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है और तालकटोरा स्टेडियम में लाभार्थी महिलाओं को सर्टिफिकेट देकर योजना का शुभारंभ किया गया। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की सहायता मिलेगी।
16: पात्र लाभार्थी हैं जो आज यहां पर उपस्थित हैं, चयनित किया गया है, उन सबकी आकांक्षाएं हैं यहां पर बधाई दें, रक्षाबंधन की मिठाई।
4: रक्षाबंधन से ठीक पहले दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया। अब दिल्ली में लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की सहायता मिलेगी।
17: इस सभागार में बैठी हुई मेरी सभी बहनें एक बार मेरे एक सवाल का जवाब दो, खुश हो? आवाज कम आ रही है मुझे, खुश हो? अरे कहां आवाज आ रही है, खुश हो? बस मैं यही चाहती हूं, मेरी सारी बहनें खुश रहनी चाहिए, उनके चेहरे पे ये मुस्कुराहट बनी रहनी चाहिए। सजी सवरी मेरी ये बहन जिंदगी में हमेशा आगे बढ़े, क्योंकि मैं हूं ना।
4: सरकार के मुताबिक 17 लाख से ज्यादा महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। अब तक इस योजना के लिए 9 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं। आज सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 2500 महिलाओं को अप्रूवल लेटर दिया। दिल्ली सरकार का ये चुनावी वादा था जो अब पूरा होने जा रहा है।
17: मैं आप सभी को ढेर सारी बधाई देती हूँ, आज के इस दिन की शुभकामनाएं देती हूँ। ये दिल्ली लक्ष्मी योजना जो आज मेरी दिल्ली की बहनों के लिए आप सभी के द्वार पहुंच पाई है, इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, उस माँ को और आप सभी को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए शुभकामनाएं देती हूं आपके आगे आने वाले जीवन के लिए।
4: दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी ने ऐलान किया था कि अगर उनकी सरकार बनी तो दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। चुनाव जीतने के बाद इसके लिए 5100 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया। इस योजना में 1000 रुपए उनके डिजिटल वॉलेट में आएंगे, जबकि बाकी के 1500 रुपए हर महीने FD खाते में जाएंगे। आपको बता दें कि 1 सितंबर से सभी पात्र महिलाओं के बैंक खातों में योजना की 2500 रुपए की मासिक सहायता राशि सीधे ट्रांसफर होनी शुरू हो जाएगी।
2: दिल्ली में बनने वाली भाजपा सरकार अपने वायदे पूरी करेगी। मैं फिर दोहराता हूं, 8 तारीख के बाद जब दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी, जो भी वादे आपको किए गए हैं वो सारे के सारे वादे समय सीमा में पूरे किए जाएंगे, ये
18: मोदी की गारंटी है।
19: इस योजना का लाभ देने के लिए कुछ शर्तें हैं, जिसमें महिला की उम्र 21 से 60 साल के बीच होनी चाहिए, परिवार की कुल आय 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एक परिवार से एक ही महिला को लाभ मिलेगा, महिला कम से कम 10 साल से दिल्ली की स्थायी निवासी हो, महिला के खिलाफ कोई आपराधिक केस दर्ज नहीं होना चाहिए, महिला के 3 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, परिवार साल में 2400 यूनिट से ज्यादा बिजली ना खर्च करता हो, महिला या परिवार जीएसटी या इनकम टैक्स ना भरता हो, घर में कार नहीं होनी चाहिए, परिवार से कोई सरकारी नौकरी में ना हो या रिटायर ना हुआ हो।
20: कि ज्यादातर महिलाएं इस योजना से बाहर कर दी गई हैं, इस योजना के अंदर इतनी सख्त नियम लगाए गए हैं कि ये योजना लगभग किसी को ना मिले।
21: जो वादा प्रधानमंत्री जी ने किया था, मुख्यमंत्री जी ने किया था, वो वादा आज पूरा किया है दिल्ली सरकार ने 1 साल के अंदर। आज दिल्ली की जनता ने, दिल्ली की बहनों ने और देश की बहनों ने ये देख लिया कि कैसे वादा पूरा किया जाता है। इसी दिल्ली में 10 साल तक केजरीवाल ने और उनके लोगों ने बहनों के फॉर्म भरवाए, नकली फॉर्म भराए जाते थे बस्तियों में जा जाके, और फॉर्म भरा के उनका डेटा ले लिया जाता था, बाद में डेटा भी बेच दिया जाता था, और किसी बहन के खाते में 10 साल कोई पैसा नहीं आया दिल्ली के।
22: लगभग 6.5 लाख के आसपास रजिस्ट्रेशन जो है वो इस पूरी योजना के तहत महिलाओं का हुआ है, लेकिन आज पहली अप्रूवल लेटर्स जो है वो 2500 महिलाओं को जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से दिए गए हैं। इसमें मैं बता दूं कि 2025 के चुनावों से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली के जरिए इस योजना के लिए महिलाओं के सामने अपनी बात रखी थी, और उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र अप्रूवल लेटर्स जो है वो बांटे गए हैं और 1 सितंबर से इस योजना के तहत महिलाओं के खाते में पैसा जो है वो ट्रांसफर किया जाएगा।
19: दिल्ली लक्ष्मी योजना के आवेदन अभी खुले हुए हैं। सरकार ने तय किया है कि करीब 17 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। अभी 9 लाख से ज्यादा महिलाओं ने ही आवेदन किया है। आज तक ब्यूरो।
3: और इसी के साथ हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: 750 से ज्यादा लापता, इसमें 133 भारतीय शामिल, चीन में भी सैलाब से बहे 265 लोग। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाली पीएम बालिन शाह से की बात, अलर्ट पर बिहार और पूर्वी यूपी, राहत सामग्री के साथ रवाना भारतीय एयरफोर्स के विमान। संसद का विशेष सत्र बुलाने का संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इशारा किया, इंडिया टुडे से खास बातचीत में कहा, संसद में महिला आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री मोदी गंभीर, इस दिशा में काम जारी। बीजेपी के हमले के बाद अब मुस्लिम महिलाओं ने राहुल गांधी को घेरा, हिजाब को लेकर दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन, हिजाब पर चुप्पी का विरोध। और यूपी के शामली में यूट्यूबर और हरियाणवी गायक अंकित बालियान की गोली मारकर हत्या, जिम से बाहर निकलते ही ताबड़तोड़ फायरिंग, हमलावर फरार। नेपाल में तिब्बत से आई अचानक बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाकर रख दी है, तस्वीरें ऐसी हैं कि देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। इस बाढ़ से 11 हाइड्रो पावर प्लांट्स तबाह हो गए हैं। 11 हाइड्रो पावर प्लांट्स को नुकसान पहुंचने से 431 मेगावाट बिजली उत्पादन बंद हो गया है। इसके अलावा बाढ़ से 19 पुल और 40 किलोमीटर सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं।
1: ये सबसे खतरनाक तस्वीरें हैं नेपाल के त्रिशूली बाजार, ऊपर से पानी आ रहा और नीचे तबाही मची।
2: ओहो, पूरा डैम फूट रहा है, पूरा चाइना को डैम फूट रहा है।
1: अचानक से पानी की रफ्तार तेज होती है और पुल के ऊपर से पानी बहने लगता है, पूरा का पूरा पुल ही टूट कर बह गए। साफ तबाही दिख रही है, सब कुछ बर्बाद करता हुआ ये फ्लैश फ्लड आगे बढ़ता जाता है। और ये उसके बाद का वीडियो है, देखिए पहले ये त्रिशूली बाजार कैसे दिखता था और अब क्या हाल हो गया है। सब कुछ बर्बाद, यहाँ घर थे, होटल थे, स्कूल थे, सब कुछ खत्म हो गए, सिर्फ और सिर्फ बर्बादी के निशान दिख रहे हैं। अब जरा इन दो तस्वीरों को देखिए और समझिए कि कैसे ये त्रिशूली बाजार बर्बाद हो गया। जब ये बाढ़ आई तो उसकी भयावहता तो दिख ही रही है, लेकिन ये भी समझ में आ रहा है कि ये एक भरा पूरा बाजार था जहाँ सब कुछ था, होटल, स्कूल, रिहायशी इलाके। और दूसरी तस्वीर में आपको तबाही दिख रही है, सब कुछ खत्म हो गया। नदी के किनारे रहने वाले लोगों के घर तो पूरी तरह से तबाह हो गए। अभी तो ये भी नहीं पता कि यहाँ कितने लोग बहे होंगे। ये फ्लैश फ्लड कितनी तबाही लेकर आया ये इन तस्वीरों से समझिए। पानी की लहरें बड़ी बड़ी इमारतों से भी बहुत ऊंची उठ रही हैं। ये नेपाल का रसुआ इलाका है, देखिए पानी की कितनी ऊंची लहरें हैं। ये इस तबाही का एक और खतरनाक वीडियो है, ये धाड़िंग का बताया जा रहा है, जहां ये पुल ऐसे बह गया जैसे कि कागज का रहा हो। इतने फोर्स से पानी आया कि पूरा का पूरा पुल ही बह गया, पानी के साथ बहुत सा कचरा भी दिख रहा है। देखिए कैसे अचानक से ये फ्लैश फ्लड अपना रास्ता बदल कर आया। ये तस्वीरें नेपाल के रसवागढ़ी में चीन के केरूंग बॉर्डर की हैं, जहां पर कस्टम ऑफिस भी है। यहां से नेपाल में सामान आता है, कंटेनर आते हैं और इसी रास्ते से मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले यात्री भी जाते हैं। सीसीटीवी की तस्वीरों में तारीख आज की है, यानी 26 अगस्त। लोगों के बीच अफरा तफरी मची हुई है और पीछे से फ्लैश फ्लड आ रहा है। यहाँ पर पूरा कस्टम ऑफिस है, अचानक से पूरा फ्लैश फ्लड आता है और सब कुछ खत्म करते हुए आगे बढ़ जाता है। ये लोग जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे वो नहीं बच पाए। बाद में पूरी की पूरी बर्बादी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। पीछे से भारी मात्रा में पानी और मलबा दिख रहा है और आता ही जा रहा है। ये इसी कस्टम पॉइंट का एक और सीसीटीवी वीडियो है। पहले तो सब कुछ सामान्य लग रहा है, बगल में एक छोटी सी नदी बह रही है, 10-12 बसें भी दिख रही हैं, एक दफ्तर दिख रहा है। अचानक से ऊपर से कुछ हलचल होती है या शोर होता है, लोग दौड़ने लगते हैं। देख सकते हैं कि कैसे लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं और फिर दिखता है फ्लैश फ्लड, पूरा पानी और मलबा आता है और सब कुछ तबाह करके चला जाता है। सारी बसें ऐसे बहती हैं जैसे कोई फिल्मी सीन। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने खोज और बचाव कार्य के निर्देश दिए हैं। तिब्बत के केरुंग पोर्ट पर बुधवार की सुबह यह फ्लैश फ्लड आया था। यह फ्लैश फ्लड कोई सामान्य नहीं था, यह नेपाल चीन बॉर्डर से करीब 190 किलोमीटर दूर चितवन की तस्वीरें हैं। और इन तस्वीरों में पानी का फोर्स और उसकी तबाही साफ दिख रही है। सामने बहुत बड़ी भगवान बुद्ध की मूर्ति है और पानी बिल्कुल मूर्ति के आधे आ गया है। ये समझा जा सकता है कि इसकी रफ्तार कितनी तेज है। अब जरा आसमान से देखिए कि कैसे तबाही मची हुई है। ये तस्वीरें नेपाली सेना ने जारी की हैं, हेलीकॉप्टर से ली हुई हैं। सब कुछ तबाह दिख रहा है। इस तबाही का एक और वीडियो रसवा में त्रिशूली नदी के पास का है। जब ये बाढ़ आई तब का वीडियो है। आगे एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट दिख रहा है और नीचे कुछ मजदूर काम कर रहे हैं। तभी अचानक से ऊपर से पानी आ गया, मजदूर भागने लगे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इतना फोर्स से पानी आया कि ये पूरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट टूट गया और ये मजदूर बह गए। आज तक भी
0: अभी तक कोई अनुमान नहीं लगा पा रहा है कि इस प्रलय से कितना नुकसान हुआ है। 133 भारतीय भी लापता बताए जा रहे हैं और यह भी कहा जा रहा है कि ये मानसरोवर यात्री थे, क्योंकि नेपाल से मानसरोवर यात्रा के रूट में ही ये फ्लैश फ्लड आई है जिसकी शुरुआत हुई नेपाल चीन बॉर्डर से।
1: ये नेपाल के नुवाकोट की ड्रोन तस्वीरें हैं। तबाही के निशान साफ साफ दिख रहे हैं। नदी किनारे पूरी बस्ती थी, अब कुछ एक घर ही बचे हैं। ऐसा लगता है कि नदी अपने साथ सब कुछ बहाती हुई ले गई, पूरा सपाट कर दी। और ये नेपाल के रसवा की एरियल तस्वीरें हैं। पूरी की पूरी घाटी में नदी से हुई बर्बादी साफ दिख रही है। नेपाल की सेना कैसे बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर रही है ये इन तस्वीरों से समझिए। यहां एक लड़का छत पर था, वो निकल नहीं पाया और यहीं फंस गया। यहां हेलीकॉप्टर उतारने की जगह नहीं थी तो छत के ऊपर हेलीकॉप्टर कुछ देर के लिए स्थिर रहा और वहीं पर उसका रेस्क्यू किया गया। अंदर से नेपाली सेना के जवान ने हाथ बढ़ाया, इस युवक ने थामा और इस तरह से उसे बचाया। ये तबाही का एक और वीडियो है। पूरी घाटी है, सामने से नदी बह रही है जिसकी रफ्तार बहुत कम है और पानी भी कम है। लेकिन तभी अचानक से ऊपर से पानी का गुबार आता दिख रहा है। साफ दिख रहा है कि पानी सब कुछ बर्बाद करता हुआ आगे बढ़ रहा है। एक ट्रक वाला भी सड़क पर है जो पानी की रफ्तार देखते हुए और तेजी से भागने लगा, लेकिन पानी की रफ्तार से जीत नहीं पाई। पानी की ऊंची ऊंची लहरें बहुत तेजी से बढ़ रही। पीछे से और तेज गति से पानी आ रहा था और इसी में कुछ और लोग फंसे हुए दिखाई दिए जो पैदल चल रहे थे। वो भी पूरी रफ्तार से भागने और बचने की कोशिश कर रहे थे। दूर से बनाए गए इस वीडियो में पानी बहुत नजदीक दिख रहा है, लेकिन असल में यह बहुत दूर था। पीछे से पूरा मलबा आ रहा था। पानी का फोर्स इतना तेज था कि ऐसा लग रहा था जैसे ये बहुत नजदीक हो। ऐसे ही पूरी की पूरी घाटी इस फ्लैश फ्लड से बर्बाद हुई। ये इस तबाही का एक और वीडियो है, ये भी बहुत दूर से बनाया गया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बम विस्फोट हुआ हो जिसके बाद धुएं का गुबार उठा हो, लेकिन असल में ये पानी का बहाव था जो इतना तेज था कि आसपास सब कुछ बर्बाद करता हुआ आगे बढ़ रहा था। देखिए कैसे बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई। नेपाल में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है क्योंकि जहां ये बाढ़ आई है इस त्रिशूली नदी पर बहुत से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स चल रहे थे जो पूरी तरह से तबाह हो गए। नेपाली मीडिया के मुताबिक लांगटांग खोला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में काम करने वाले 60 लोग लापता हैं। इनमें 25 इंजीनियर, ड्राइवर और किचन स्टाफ है। इसके अलावा 35 वर्कर हैं जो टनल के अंदर काम कर रहे थे। फ्लैश फ्लड के बाद उनका भी कुछ पता नहीं चल रहा। इसके अलावा तिमूर में रसवा कस्टम ऑफिस में काम करने वाले 15 कर्मचारी भी मिसिंग हैं। बाढ़ की तबाही इतनी भीषण है कि बड़े बड़े पुल टूट गए। ये चितवन में त्रिशूली नदी पर बना पुल है, देखिए क्या हाल हो गया। आज तक
0: 2027 में यूपी का विधानसभा चुनाव है और ऐसे में यूपी में बीजेपी हैट्रिक लगाने के लिए जांचे परखे फॉर्मूले की तरफ बढ़ रही है। सीएम योगी ने रक्षाबंधन से ठीक पहले लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना शुरू की है। यूपी में अब 60 साल और उससे ऊपर की महिलाओं को रोडवेज की बसों में फ्री यात्रा की सुविधा मिलेगी, तो ग्रेजुएशन की 50,000 छात्राओं को मुफ्त स्कूटी दी जाएगी। योगी सरकार के जवाब में अखिलेश यादव ने भी स्त्री सम्मान योजना का ऐलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर महिलाओं को 40,000 रुपए देने का वादा किया गया है।
3: धन्यवाद। यूपी की चुनावी लड़ाई आधी आबादी पर गरमाई। जेन जी के बाद अब महिलाओं के लिए योजनाओं का ऐलान।
4: तो बेटी के जन्म से लेकर पढ़ाई तक और आगे भी सरकार हमेशा उसके साथ खड़ी है।
3: योगी कराएंगे मुफ्त में सफर, अखिलेश का 40,000 वाला वादा। महिला वोटरों का गणित, यूपी में शुरू हुई सियासी भिड़न।
4: हर माता को फ्री में बस सेवा की सुविधा प्राप्त होगी एक सहयात्री के साथ।
3: 2027 यूपी विधानसभा चुनाव की जंग स्त्री 27। यूपी में आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए स्त्री 27 की ये पिक्चर सियासत में किसके लिए सुपरहिट साबित होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ये दो तस्वीरें बता रही हैं कैसे यूपी में महिला वोटरों का गणित बड़ी सियासी भिड़ंत बन गया है जब सीएम योगी महिलाओं के लिए अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना लॉन्च करते हैं तो यूपी रोडवेज बस के अंदर मुफ्त सफर के लिए बैठी महिलाओं के साथ सेल्फी लेते हैं। उधर जब अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव महिलाओं के लिए स्त्री सम्मान समृद्धि योजना का ऐलान करते हैं तो उनके साथ पार्टी की महिला सांसद, महिला नेता और महिला कार्यकर्ता मौजूद रहती हैं।
5: गांव से शहर तक, मायके से बेटी के घर तक,
3: स्त्री 27 साफ है। यूपी चुनाव की लड़ाई अब आधी आबादी पर गरमाई है। आधी आबादी को पूरा हक देने के दावे के साथ चुनावी होड़ ऐसी मची है कि सीएम योगी महिलाओं के लिए योजनाएं लॉन्च कर रहे हैं तो अखिलेश यादव भी स्त्री शक्ति के साथ चुनावी रण में उतरे हैं। योगी सरकार ने रक्षाबंधन से ठीक पहले यूपी में महिलाओं के लिए नए तोहफे की सौगात दी है और इसको नाम दिया गया है लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना। अब यूपी में 60 साल और उससे अधिक उम्र की महिलाएं सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी, जिसमें रोडवेज की बसों में आधार या वोटर आईडी दिखाकर मुफ्त यात्रा की जा सकेगी। इस योजना से उत्तर प्रदेश की करीब 1 करोड़ बुजुर्ग महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। इस योजना में रोजाना औसतन 88,000 महिलाएं लाभान्वित होंगी, जिसमें हर महीने करीब 22.5 करोड़ और सालाना करीब 270 करोड़ रुपए का खर्च आने की उम्मीद है। इसके अलावा रक्षाबंधन के मौके पर सभी उम्र की महिलाओं के लिए भी मुफ्त बस यात्रा की सुविधा रहेगी। 27 अगस्त की रात से 28 अगस्त की रात तक महिलाएं रोडवेज बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगी और उनके साथ एक सहयोगी को भी मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी।
4: रक्षाबंधन के अवसर पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम और सिटी बस सेवा दोनों में हर बेटी, हर बहन और हर माता को 3 दिन के लिए निःशुल्क बस सेवा प्रारंभ करने के लिए और इस सुविधा के लिए प्रदेश भर की पूरी मातृशक्ति का अभिनंदन करते हुए उन्हें हृदय से बधाई देता हूं और 29 के बाद 60 वर्ष की कोई भी महिला जो उत्तर प्रदेश की वासी हो, अपना वोटर आईडी कार्ड दिखा करके या आधार कार्ड दिखा करके इस यात्रा का लाभ ले सकती हैं। उनसे कोई भी किराया नहीं लिया जाएगा। ये दो प्रकार की सेवाएं आज एक साथ प्रारंभ हो रही हैं।
3: इसके अलावा सीएम योगी ने ग्रेजुएशन की छात्राओं के लिए स्कूटी योजना का भी ऐलान किया है। जी हाँ, 50,000 बेटियों को अक्टूबर नवंबर में स्कूटी दी जाएंगी।
4: यानी अभी तो बेटी के जन्म से लेकर पढ़ाई तक और आगे भी सरकार हमें साथ उसके साथ खड़ी है। हमने एक और व्यवस्था की है, हमारे लिए बड़ा था पहले ये काम कि रक्षाबंधन पे इस कार्यक्रम को करेंगे। अभी हम अक्टूबर या नवंबर में प्रदेश की 50,000 बेटियों को जो स्नातक में पढ़ाई कर रही हैं, ऐसी 50,000 बेटियों को एक स्कूटी उपलब्ध करवाने जा रहे हैं।
3: योगी सरकार ने महिलाओं के लिए योजनाओं का ऐलान किया तो जवाब में अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव ने ताबड़तोड़ 16 योजनाओं के वादों की झड़ी लगा दी।
6: स्त्री सम्मान समृद्धि योजना, हम 40,000 से करेंगे शुरुआत, जिसमें बढ़ोतरी होगी हर साल।
7: आंगनबाड़ी बंद हो रहे केंद्र फिर खुलेंगे, गर्म पोषाहार, साफ पानी और स्वच्छ शौचालय के साथ
8: पूरा ढांचा। हर जिले मुख्यालय पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलेंगे हम।
9: 24 घंटे महिलाओं और बच्चियों के लिए एक अलग एम्बुलेंस सेवा, उसकी समय सीमा तय रहेगी और प्रशिक्षित महिला स्टाफ के साथ गर्भवती माताओं को प्राथमिकता मिलेगी। 102 और 108 एम्बुलेंस समाजवादी पार्टी की तरफ से शुरू किया गया था और उसे वापस से लेकर के आएंगे, ये दृढ़ संकल्प है हमारा।
10: इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने वाली हर छात्रा को लैपटॉप,
11: लिए हर तहसील में पीजी कॉलेज, हर जिले में विश्वविद्यालय और सुरक्षित छात्रावास की सुविधा भी दी जाएगी।
12: कार्यस्थल पर महिलाओं का सम्मान, प्रति माह 2 दिन आकस्मिक अवकाश बिना किसी सवाल की।
3: अब एक तरफ तो अखिलेश यादव योगी सरकार की महिलाओं की योजना के जवाब में स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लागू करते हैं, दूसरी तरफ योगी सरकार की योजनाओं में खोट भी निकालते हैं, साथ ही महिला आरक्षण को लेकर प्रहार भी करते हैं।
13: भारतीय जनता पार्टी के लिए तो नारी केवल नारा बन करके रह गई है। आज के दिन हम कहना चाहते हैं, यहाँ जितनी भी हमारी महिलाएं बहने बैठी हैं, वो जानती हैं कि महिला आरक्षण पास हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी क्यों देरी कर रही है, उसको अगले चुनाव में लागू किया जाए। जब रक्षाबंधन के त्योहार पे आप बस चला रहे हो और भी योजनाएं लागू करने का बहाना कर रहे हो, तो ये भी सच बोल करके महिला आरक्षण लागू करने का भी काम किया जाए।
4: मुझे 2017 के पहले की भी सरकारों के कार्यप्रणाली याद आती है। 2017 के पहले एक दौर था, उस समय
14: ये हर बेटी, हर बहन और हर माता की जवान पर ये नारा गूंजता था कि देख सपाई बिटिया घबराई,
13: कि पूरी तैयारी के साथ कोई योजना नहीं चलाई जा रही है। कम से कम उस महिला के साथ या वृद्ध महिला के साथ अगर कोई जा रहा है तो अगर बच्चा है तो फ्री होना चाहिए, और परिवार का कोई वृद्ध है और जो उसके सहायता और सहयोग के साथ जा रहा है, सहयोग के लिए जा रहा है, उसकी आधी होनी चाहिए, आधी टिकट लगनी चाहिए।
0: दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने महिलाओं के लिए लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है और तालकटोरा स्टेडियम में लाभार्थी महिलाओं को सर्टिफिकेट देकर योजना का शुभारंभ किया गया। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की सहायता मिलेगी।
15: 65 पात्र लाभार्थी हैं जो आज यहां पर उपस्थित हैं, चयनित किया गया है, उन सबकी आकांक्षाएं हैं यहां पर, बधाई दें, रक्षाबंधन की मिठाई।
16: रक्षाबंधन से ठीक पहले दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया। अब दिल्ली में लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की सहायता मिलेगी।
17: इस सभागार में बैठी हुई मेरी सभी बहनें एक बार मेरे एक सवाल का जवाब दो, खुश हो? आवाज कम आ रही है मुझे, खुश हो? अरे कहां आवाज आ रही है, खुश हो? बस मैं यही चाहती हूं, मेरी सारी बहनें खुश रहनी चाहिए, उनके चेहरे पे ये मुस्कुराहट बनी रहनी चाहिए। सजी सवरी मेरी ये बहन जिंदगी में हमेशा आगे बढ़े, क्योंकि मैं हूं ना।
16: सरकार के मुताबिक 17 लाख से ज्यादा महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। अब तक इस योजना के लिए 9 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं। आज सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 2500 महिलाओं को अप्रूवल लेटर दिया। दिल्ली सरकार का ये चुनावी वादा था जो अब पूरा होने जा रहा है।
15: और 2500
17: मैं आप सभी को ढेर सारी बधाई देती हूँ, आज के इस दिन की शुभकामनाएं देती हूँ। ये दिल्ली लक्ष्मी योजना जो आज मेरी दिल्ली की बहनों के लिए आप सभी के द्वार पहुंच पाई है, इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, उस माँ को और आप सभी को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए शुभकामनाएं देती हूं आपके आगे आने वाले जीवन के लिए।
16: दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी ने ऐलान किया था कि अगर उनकी सरकार बनी तो दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। चुनाव जीतने के बाद इसके लिए 5100 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया। इस योजना में 1000 रुपए उनके डिजिटल वॉलेट में आएंगे, जबकि बाकी के 1500 रुपए हर महीने FD खाते में जाएंगे। आपको बता दें कि 1 सितंबर से सभी पात्र महिलाओं के बैंक खातों में योजना की 2500 रुपए की मासिक सहायता राशि सीधे ट्रांसफर होनी शुरू हो जाएगी।
18: दिल्ली में बनने वाली भाजपा सरकार अपने वायदे पूरी करेगी। मैं फिर दोहराता हूं, 8 तारीख के बाद जब दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी, जो भी वादे आपको किए गए हैं वो सारे के सारे वादे समय सीमा में पूरे किए जाएंगे, ये मोदी की गारंटी है।
16: इस योजना का लाभ देने के लिए कुछ शर्तें हैं, जिसमें महिला की उम्र 21 से 60 साल के बीच होनी चाहिए, परिवार की कुल आय 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एक परिवार से एक ही महिला को लाभ मिलेगा, महिला कम से कम 10 साल से दिल्ली की स्थायी निवासी हो, महिला के खिलाफ कोई आपराधिक केस दर्ज नहीं होना चाहिए, महिला के 3 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, परिवार साल में 2400 यूनिट से ज्यादा बिजली ना खर्च करता हो, महिला या परिवार जीएसटी या इनकम टैक्स ना भरता हो, घर में कार नहीं होनी चाहिए, परिवार से कोई सरकारी नौकरी में ना हो या रिटायर ना हुआ हो।
19: कि ज्यादातर महिलाएं इस योजना से बाहर कर दी गई हैं। इस योजना के अंदर इतनी सख्त नियम लगाए गए हैं कि ये योजना लगभग किसी को ना मिले।
20: जो वादा प्रधानमंत्री जी ने किया था, मुख्यमंत्री जी ने किया था, वो वादा आज पूरा किया है दिल्ली सरकार ने एक साल के अंदर। आज दिल्ली की जनता ने, दिल्ली की बहनों ने और देश की बहनों ने ये देख लिया कि कैसे वादा पूरा किया जाता है। इसी दिल्ली में 10 साल तक केजरीवाल ने और उनके लोगों ने बहनों के फॉर्म भरवाए, नकली फॉर्म भराए जाते थे बस्तियों में जा जाके, और फॉर्म भरा के उनका डेटा ले लिया जाता था, बाद में डेटा भी बेच दिया जाता था, और किसी बहन के खाते में 10 साल कोई पैसा नहीं आया दिल्ली के।
21: लगभग 6.5 लाख के आसपास रजिस्ट्रेशन जो है वो इस पूरी योजना के तहत महिलाओं का हुआ है, लेकिन आज पहली अप्रूवल लेटर्स जो है वो 2,500 महिलाओं को जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से दिए गए हैं। इसमें मैं बता दूं कि 2025 के चुनावों से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली के जरिए इस योजना के लिए महिलाओं के सामने अपनी बात रखी थी, और उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है, उसी गारंटी पर आज दिल्ली सरकार ने कहीं ना कहीं अपनी मोहर जो है वो लगाई है और महिलाओं को 2,500 रुपए की अप्रूवल लेटर्स जो है वो बांटे गए हैं, और 1 सितंबर से इस योजना के तहत महिलाओं के खाते में पैसा जो है वो ट्रांसफर किया जाएगा।
16: दिल्ली लक्ष्मी योजना के आवेदन अभी खुले हुए हैं। सरकार ने तय किया है कि करीब 17 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। अभी 9 लाख से ज्यादा महिलाओं ने ही आवेदन किया है। आज तक ब्यूरो।
0: और इसी के साथ हम यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: 150 से ज्यादा लापता, इसमें 133 भारतीय शामिल, चीन में भी सैलाब से बहे 265 लोग। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाली पीएम बालिन शाह से की बात, अलर्ट पर बिहार और पूर्वी यूपी, राहत सामग्री के साथ रवाना भारतीय एयरफोर्स के विमान। संसद का विशेष सत्र बुलाने का संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इशारा किया, इंडिया टुडे से खास बातचीत में कहा, संसद में महिला आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री मोदी गंभीर, इस दिशा में काम जारी। बीजेपी के हमले के बाद अब मुस्लिम महिलाओं ने राहुल गांधी को घेरा, हिजाब को लेकर दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन, हिजाब पर चुप्पी का विरोध। और यूपी के शामली में यूट्यूबर और हरियाणवी गायक अंकित बालियान की गोली मारकर हत्या, जिम से बाहर निकलते ही ताबड़तोड़ फायरिंग, हमलावर फरार। नेपाल में तिब्बत से आई अचानक बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाकर रख दी है, तस्वीरें ऐसी हैं कि देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। इस बाढ़ से 11 हाइड्रो पावर प्लांट्स तबाह हो गए हैं, 11 हाइड्रो पावर प्लांट्स को नुकसान पहुंचने से 431 मेगावाट बिजली उत्पादन बंद हो गया है। इसके अलावा बाढ़ से 19 पुल और 40 किलोमीटर सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं।
1: Where is the man in the bottle? Where?

0: ये सबसे खतरनाक तस्वीरें हैं। नेपाल के त्रिशूली बाजार, ऊपर से पानी आ रहा और नीचे तबाही मची।
1: ओहो, पूरा डैम फूट रहा है, पूरा चाइना को डैम फूट रहा है।
0: अचानक से पानी की रफ्तार तेज होती है और पुल के ऊपर से पानी बहने लगता है। पूरा का पूरा पुल ही टूट कर बह गया। साफ तबाही दिख रही है, सब कुछ बर्बाद करता हुआ ये फ्लैश फ्लड आगे बढ़ता जाता है। और ये उसके बाद का वीडियो है। देखिए पहले ये त्रिशूली बाजार कैसे दिखता था और अब क्या हाल हो गया है। सब कुछ बर्बाद, यहाँ घर थे, होटल थे, स्कूल थे, सब कुछ खत्म हो गए। सिर्फ और सिर्फ बर्बादी के निशान दिख रहे हैं। अब जरा इन दो तस्वीरों को देखिए और समझिए कि कैसे ये त्रिशूली बाजार बर्बाद हो गया। जब ये बाढ़ आई तो उसकी भयावहता तो दिख ही रही है, लेकिन ये भी समझ में आ रहा है कि ये एक भरा पूरा बाजार था जहाँ सब कुछ था, होटल, स्कूल, रिहायशी इलाके। और दूसरी तस्वीर में आपको तबाही दिख रही है, सब कुछ खत्म हो गया। नदी के किनारे रहने वाले लोगों के घर तो पूरी तरह से तबाह हो गए। अभी तो ये भी नहीं पता कि यहाँ कितने लोग बहे होंगे। ये फ्लैश फ्लड कितनी तबाही लेकर आया ये इन तस्वीरों से समझिए। पानी की लहरें बड़ी बड़ी इमारतों से भी बहुत ऊंची उठ रही हैं। ये नेपाल का रसुआ इलाका है, देखिए पानी की कितनी ऊंची लहरें हैं। ये इस तबाही का एक और खतरनाक वीडियो है। ये धाड़िंग का बताया जा रहा है जहां ये पुल ऐसे बह गया जैसे कि कागज का रहा हो। इतने फोर्स से पानी आया कि पूरा का पूरा पुल ही बह गया। पानी के साथ बहुत सा कचरा भी दिख रहा है। देखिए कैसे अचानक से ये फ्लैश फ्लड अपना रास्ता बदल कर आया। ये तस्वीरें नेपाल के रसवागढ़ी में चीन के केरूंग बॉर्डर की हैं, जहां पर कस्टम ऑफिस भी है। यहां से नेपाल में सामान आता है, कंटेनर आते हैं और इसी रास्ते

0: मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले यात्री भी जाते हैं। सीसीटीवी की तस्वीरों में तारीख आज की है, यानी 26 अगस्त। लोगों के बीच अफरा तफरी मची हुई है और पीछे से फ्लैश फ्लड आ रहा है। यहाँ पर पूरा कस्टम ऑफिस है, अचानक से पूरा फ्लैश फ्लड आता है और सब कुछ खत्म करते हुए आगे बढ़ जाता है। ये लोग जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे वो नहीं बच पाए। बाद में पूरी की पूरी बर्बादी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। पीछे से भारी मात्रा में पानी और मलबा दिख रहा है और आता ही जा रहा है। ये इसी कस्टम पॉइंट का एक और सीसीटीवी वीडियो है। पहले तो सब कुछ सामान्य लग रहा है, बगल में एक छोटी सी नदी बह रही है, 10-12 बसें भी दिख रही हैं, एक दफ्तर दिख रहा है। अचानक से ऊपर से कुछ हलचल होती है या शोर होता है, लोग दौड़ने लगते हैं। देख सकते हैं कि कैसे लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं और फिर दिखता है फ्लैश फ्लड। पूरा पानी और मलबा आता है और सब कुछ तबाह करके चला जाता है। सारी बसें ऐसे बहती हैं जैसे कोई फिल्मी सीन। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने खोज और बचाव कार्य के निर्देश दिए हैं। तिब्बत के केरुंग पोर्ट पर बुधवार की सुबह यह फ्लैश फ्लड आया था। यह फ्लैश फ्लड कोई सामान्य नहीं था। यह नेपाल चीन बॉर्डर से करीब 190 किलोमीटर दूर चितवन की तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों में पानी का फोर्स और उसकी तबाही साफ दिख रही है। सामने बहुत बड़ी भगवान बुद्ध की मूर्ति है और पानी बिल्कुल मूर्ति के आधे आ गया है। यह समझा जा सकता है कि इसकी रफ्तार कितनी तेज है। अब जरा आसमान से देखिए कि कैसे तबाही मची हुई है। ये तस्वीरें नेपाली सेना ने जारी की हैं, हेलीकॉप्टर से ली हुई हैं। सब कुछ तबाह दिख रहा है। इस तबाही का एक और वीडियो रसवा में त्रिशूली नदी के पास का है। जब ये बाढ़ आई तब का वीडियो है। आगे एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट दिख रहा है और नीचे कुछ मजदूर काम कर रहे हैं। तभी अचानक से ऊपर से पानी आ गया, मजदूर भागने लगे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इतना फोर्स से पानी आया कि यह पूरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट टूट गया और ये मजदूर बह गए। आज तक भी
1: अभी तक कोई अनुमान नहीं लगा पा रहा है कि इस प्रलय से कितना नुकसान हुआ है। 133 भारतीय भी लापता बताए जा रहे हैं और यह भी कहा जा रहा है कि ये मानसरोवर यात्री थे, क्योंकि नेपाल से मानसरोवर यात्रा के रूट में ही ये फ्लैश फ्लड आई है, जिसकी शुरुआत हुई नेपाल चीन बॉर्डर से।
0: ये नेपाल के नुवाकोट की ड्रोन तस्वीरें हैं। तबाही के निशान साफ साफ दिख रहे हैं। नदी किनारे पूरी बस्ती थी, अब कुछ एक घर ही बचे हैं। ऐसा लगता है कि नदी अपने साथ सब कुछ बहाती हुई ले गई, पूरा सपाट कर दिया। और ये नेपाल के रसवा की एरियल तस्वीरें हैं। पूरी की पूरी घाटी में नदी से हुई बर्बादी साफ दिख रही है। नेपाल की सेना कैसे बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर रही है, ये इन तस्वीरों से समझिए। यहाँ एक लड़का छत पर था, वो निकल नहीं पाया और यहीं फंस गया। यहाँ हेलीकॉप्टर उतारने की जगह नहीं थी तो छत के ऊपर हेलीकॉप्टर कुछ देर के लिए स्थिर रहा और वहीं पर उसका रेस्क्यू किया गया। अंदर से नेपाली सेना के जवान ने हाथ बढ़ाया, इस युवक ने थामा और इस तरह से उसे बचाया गया। ये यह तबाही का एक और वीडियो है। पूरी घाटी है, सामने से नदी बह रही है जिसकी रफ्तार बहुत कम है और पानी भी कम है, लेकिन तभी अचानक से ऊपर से पानी का गुबार आता दिख रहा है। साफ दिख रहा है कि पानी सब कुछ बर्बाद करता हुआ आगे बढ़ रहा है। एक ट्रक वाला भी सड़क पर है जो पानी की रफ्तार देखते हुए और तेजी से भागने लगा, लेकिन पानी की रफ्तार से जीत नहीं पाए। पानी की ऊंची ऊंची लहरें बहुत तेजी से बढ़ रही। पीछे से और तेज गति से पानी आ रहा था और इसी में कुछ और लोग फंसे हुए दिखाई दिए जो पैदल चल रहे थे। वो भी पूरी रफ्तार से भागने और बचने की कोशिश कर रहे थे। दूर से बनाए गए इस वीडियो में पानी बहुत नजदीक दिख रहा है, लेकिन असल में ये बहुत दूर था। पीछे से पूरा मलबा आ रहा था। पानी का फोर्स इतना तेज था कि ऐसा लग रहा था जैसे ये बहुत नजदीक हो। ऐसे ही पूरी की पूरी घाटी इस फ्लैश फ्लड से बर्बाद हो। ये इस तबाही का एक और वीडियो है। ये भी बहुत दूर से बनाया गया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बम विस्फोट हुआ हो जिसके बाद धुएं का गुबार उठा हो, लेकिन असल में ये पानी का बहाव था जो इतना तेज था कि आसपास सब कुछ बर्बाद करता हुआ आगे बढ़ रहा था। देखिए कैसे बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई। नेपाल में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि जहां ये बाढ़ आई है इस त्रिशूली नदी पर बहुत से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स चल रहे थे जो पूरी तरह से तबाह हो गए। नेपाली मीडिया के मुताबिक लांगटांग खोला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में काम करने वाले 60 लोग लापता हैं। इनमें 25 इंजीनियर, ड्राइवर और किचन स्टाफ है। इसके अलावा 35 वर्कर हैं जो टनल के अंदर काम कर रहे थे। फ्लैश फ्लड के बाद उनका भी कुछ पता नहीं चल रहा। इसके अलावा तिमूर में रसवा कस्टम ऑफिस में काम करने वाले 15 कर्मचारी भी मिसिंग हैं। बाढ़ की तबाही इतनी भीषण है कि बड़े बड़े पुल टूट गए। ये चितवन में त्रिशूली नदी पर बना पुल है। देखिए क्या हाल हो गया। आज तक
1: नेपाल में आई बाढ़ के बाद बिहार में भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। इसे लेकर बिहार सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री सह जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।

0: नेपाल की इन खौफनाक तस्वीरों ने बिहार के जिलों में दहशत भर दी है, क्योंकि नेपाल से आने वाला पानी बिहार के कई जिलों की जिंदगानी को खतरे में डाल सकता है। इसलिए बिहार में कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है।
1: नदी के किनारे तथा बाढ़ प्रभावित होने वाले क्षेत्रों के निवासी आवश्यक सावधानी बरतें और अपने परिवार, बच्चों, बुजुर्गों एवं पशुओं को सुरक्षित स्थान पर रखने की तैयारी रखें।
0: नेपाल में फ्लैश फ्लड के खतरे को देखते हुए कोसी और गंडक नदी बेसिन से जुड़े जिलों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण और वैशाली में अलर्ट है। सुपौल, सहरसा, मधेपुरा और अररिया जिले में भी अलर्ट है। सरकार कह रही है कि खतरा तो है, मगर सरकार ने सतर्कता के पूरे इंतजाम कर लिए हैं।
2: ये जो पानी आ रहा है, इसमें हम लोगों का आकलन है कि लगभग 1.5 लाख क्यूसेक तक अतिरिक्त पानी आ सकता है, तो फिर 2.5-3 लाख से अधिक पानी नहीं जाएगा। तो या जितना 2.5-3 लाख आने की संभावना है, उस हिसाब से सतर्कता के सभी काम हम लोगों ने कर लिए हैं।
1: अभी सूचना प्राप्त हो रही है कि नेपाल में नदी में भूस्खलन आ जाने के कारण गंडक नदी का बहाव अगले आधे घंटे में काफी तेज होने की संभावना है।
0: बगहा में लोगों को अलर्ट किया जा रहा है, अनाउंस किया जा रहा है कि लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं, तैयारियां तेज हैं। एसएसबी ने भारत नेपाल सीमा पर तैनात अपनी यूनिट्स को अलर्ट जारी किया है। राहत बचाव के लिए 11 टीमों को अलर्ट किया गया है। 7 अतिरिक्त टीमें स्टैंड बाय पर रखी गई हैं। भारत नेपाल सीमा पर तैनात बटालियन को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। सरकार कह रही है कि स्थिति को नियंत्रण से बाहर नहीं जाने देंगे।
2: स्थिति तो थोड़ी कठिन है, लेकिन अभी का जो अनुमान है पानी आने का, वो हम लोगों के हिसाब से स्थिति को हम लोग नियंत्रण से बाहर नहीं जाने देंगे।
0: बिहार की सरकार कह रही है कि घबराने की जरूरत नहीं है, बस सतर्क रहने की आवश्यकता है।
2: लोगों से हम लोगों ने सरकार की तरफ से अपील की है कि अभी घबराने की जरूरत नहीं है, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सतर्क रहना है।
0: बिहार के अलावा यूपी के महाराजगंज, कुशीनगर में भी अलर्ट जारी किया गया है। सतर्कता पूरी है, उम्मीद कीजिए कि नेपाल से आई तबाही भारत में कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। आज तक ब्यूरो।
3: 2027 में यूपी का विधानसभा चुनाव है और ऐसे में यूपी में बीजेपी हैट्रिक लगाने के लिए जांचे परखे फॉर्मूले की तरफ बढ़ रही है। सीएम योगी ने रक्षाबंधन से ठीक पहले लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना शुरू की है। यूपी में अब 60 साल और उससे ऊपर की महिलाओं को रोडवेज की बसों में फ्री यात्रा की सुविधा मिलेगी, तो ग्रेजुएशन की 50,000 छात्राओं को मुफ्त स्कूटी दी जाएगी। योगी सरकार के जवाब में अखिलेश यादव ने भी स्त्री सम्मान योजना का ऐलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर महिलाओं को 40,000 रुपए देने का वादा किया गया है।
4: धन्यवाद। यूपी की चुनावी लड़ाई आधी आबादी पर गरमाई। जेन जी के बाद अब महिलाओं के लिए योजनाओं का ऐलान।
5: तो बेटी के जन्म से लेके पढ़ाई तक और आगे भी सरकार हमेशा उसके साथ खड़ी है।
4: योगी कराएंगे मुफ्त में सफर, अखिलेश का 40,000 वाला वादा। महिला वोटरों का गणित, यूपी में शुरू हुई सियासी भिड़न।
5: हर माता को फ्री में बस सेवा की सुविधा प्राप्त होगी एक सहयात्री के साथ।
4: 2027 यूपी विधानसभा चुनाव की जंग स्त्री 27। यूपी में आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए स्त्री 27 की ये पिक्चर सियासत में किसके लिए सुपरहिट साबित होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये दो तस्वीरें बता रही हैं कैसे यूपी में महिला वोटरों का गणित बड़ी सियासी भिड़ंत बन गया है। जब सीएम योगी महिलाओं के लिए अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना लॉन्च करते हैं, तो यूपी रोडवेज बस के अंदर मुफ्त सफर के लिए बैठी महिलाओं के साथ सेल्फी लेते हैं। उधर जब अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव महिलाओं के लिए स्त्री सम्मान समृद्धि योजना का ऐलान करते हैं, तो उनके साथ पार्टी की महिला सांसद, महिला नेता और महिला कार्यकर्ता मौजूद रहती हैं।
6: गांव से शहर तक, मायके से बेटी के घर तक,
4: स्त्री 27 साफ है। यूपी चुनाव की लड़ाई अब आधी आबादी पर गरबाई है। आधी आबादी को पूरा हक देने के दावे के साथ चुनावी होड़ ऐसी मची है कि सीएम योगी महिलाओं के लिए योजनाएं लॉन्च कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव भी स्त्री शक्ति के साथ चुनावी रण में उतरे हैं। योगी सरकार ने रक्षाबंधन से ठीक पहले यूपी में महिलाओं के लिए नए तोहफे की सौगात दी है और इसको नाम दिया गया है लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना। अब यूपी में 60 साल और उससे अधिक उम्र की महिलाएं सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी, जिसमें रोडवेज की बसों में आधार या वोटर आईडी दिखाकर मुफ्त यात्रा की जा सकेगी। इस योजना से उत्तर प्रदेश की करीब 1 करोड़ बुजुर्ग महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। इस योजना में रोजाना औसतन 88,000 महिलाएं लाभान्वित होंगी, जिसमें हर महीने करीब 22.5 करोड़ और सालाना करीब 270 करोड़ रुपए का खर्च आने की उम्मीद है। इसके अलावा रक्षाबंधन के मौके पर सभी उम्र की महिलाओं के लिए भी मुफ्त बस यात्रा की सुविधा रहेगी। 27 अगस्त की रात से 28 अगस्त की रात तक महिलाएं रोडवेज बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगी और उनके साथ एक सहयोगी को भी मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी।
7: रक्षाबंधन के अवसर पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम और सिटी बस सेवा दोनों में हर बेटी, हर बहन, हर माता को 3 दिन के लिए निःशुल्क बस सेवा प्रारंभ करने के लिए और इस सुविधा के लिए प्रदेश भर की पूरी मातृशक्ति का अभिनंदन करते हुए उन्हें हृदय से बधाई देता हूं और 29 के बाद 60 वर्ष की कोई भी महिला जो उत्तर प्रदेश की वासी हो अपना वोटर आईडी कार्ड दिखा करके या आधार कार्ड दिखा करके इस यात्रा का लाभ ले सकती हैं। उनसे कोई भी किराया नहीं लिया जाएगा। ये दो प्रकार की सेवाएं आज एक साथ प्रारंभ हो रही हैं।
4: इसके अलावा सीएम योगी ने ग्रेजुएशन की छात्राओं के लिए स्कूटी योजना का भी ऐलान किया है। जी हाँ, 50,000 बेटियों को अक्टूबर नवंबर में स्कूटी दी जाएंगी।
7: यानी अभी तो बेटी के जन्म से लेकर पढ़ाई तक और आगे भी सरकार हमें साथ उसके साथ खड़ी है। हमने एक और व्यवस्था की है, हमारे लिए बड़ा था पहले ये काम कि रक्षाबंधन पे इस कार्यक्रम को करेंगे। अभी हम अक्टूबर या नवंबर में प्रदेश की 50,000 बेटियों को जो स्नातक में पढ़ाई कर रही हैं, ऐसी 50,000 बेटियों को एक स्कूटी उपलब्ध करवाने जा रहे हैं।
4: योगी सरकार ने महिलाओं के लिए योजनाओं का ऐलान किया तो जवाब में अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव ने ताबड़तोड़ 16 योजनाओं के वादों की झड़ी लगा दी।
8: स्त्री सम्मान समृद्धि योजना हम 40,000 से करेंगे शुरुआत, जिसमें बढ़ोतरी होगी हर साल।
9: आंगनबाड़ी बंद हो रहे केंद्र फिर खुलेंगे, घर में पोषाहार, साफ पानी और स्वच्छ शौचालय के साथ
10: पूरा ढांचा। हर जिले मुख्यालय पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलेंगे हम।
11: 24 घंटे महिलाओं और बच्चियों के लिए एक अलग एम्बुलेंस सेवा, उसकी समय सीमा तय रहेगी और प्रशिक्षित महिला स्टाफ के साथ गर्भवती माताओं को प्राथमिकता मिलेगी। 102 और 108 एम्बुलेंस समाजवादी पार्टी की तरफ से शुरू किया गया था और उसे वापस से लेकर के आएंगे, ये दृढ़ संकल्प है हमारा।
12: इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने वाली हर छात्रा को लैपटॉप,
13: लिए हर तहसील में पीजी कॉलेज, हर जिले में विश्वविद्यालय और सुरक्षित छात्रावास की सुविधा भी दी जाएगी।
14: कार्यस्थल पर महिलाओं का सम्मान, प्रति माह 2 दिन आकस्मिक अवकाश बिना किसी सवाल की।
4: अब एक तरफ तो अखिलेश यादव योगी सरकार की महिलाओं की योजना के जवाब में स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लागू करते हैं, दूसरी तरफ योगी सरकार की योजनाओं में खोट भी निकालते हैं, साथ ही महिला आरक्षण को लेकर प्रहार भी करते हैं।
15: भारतीय जनता पार्टी के लिए तो नारी केवल नारा बन करके रह गई है। आज के दिन हम कहना चाहते हैं यहाँ जितनी भी हमारी महिलाएं बहने बैठी हैं, वो जानती हैं कि महिला आरक्षण पास हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी क्यों देरी कर रही है, उसको अगले चुनाव में लागू किया जाए। जब रक्षाबंधन के त्योहार पे आप बस चला रहे हो और भी योजनाएं लागू करने का बहाना कर रहे हो, तो ये भी सच बोल करके महिला आरक्षण लागू करने का भी काम किया जाए।
7: मुझे 2017 के पहले की भी सरकारों के कार्यप्रणाली याद आती है। 2017 के पहले एक दौर था, उस समय ये हर बेटी, हर बहन और हर माता की जवान पर एक नारा गूंजता था कि देख सपाई बिटिया घबराई,
15: कि पूरी तैयारी के साथ कोई योजना नहीं चलाई जा रही है। कम से कम उस महिला के साथ या वृद्ध महिला के साथ अगर कोई जा रहा है तो अगर बच्चा है तो फ्री होना चाहिए, और परिवार का कोई वृद्ध है और जो उसके सहायता और सहयोग के साथ जा रहा है, सहयोग के लिए जा रहा है, उसकी आधी होनी चाहिए, आधी टिकट लगनी चाहिए।
3: दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने महिलाओं के लिए लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है और तालकटोरा स्टेडियम में लाभार्थी महिलाओं को सर्टिफिकेट देकर योजना का शुभारंभ किया गया। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की सहायता मिलेगी।
16: पात्र लाभार्थी हैं जो आज यहां पर उपस्थित हैं, चयनित किया गया है, उन सबकी आकांक्षाएं हैं यहां पर, बधाई दें, रक्षाबंधन की मिठाई आज।
4: रक्षाबंधन से ठीक पहले दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया। अब दिल्ली में लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की सहायता मिलेगी।
17: इस सभागार में बैठी हुई मेरी सभी बहनें, एक बार मेरे एक सवाल का जवाब दो, खुश हो? आवाज कम आ रही है मुझे, खुश हो? अरे कहां आवाज आ रही है, खुश हो? बस मैं यही चाहती हूं, मेरी सारी बहनें खुश रहनी चाहिए, उनके चेहरे पे ये मुस्कुराहट बनी रहनी चाहिए। सजी सवरी मेरी ये बहन जिंदगी में हमेशा आगे बढ़े, क्योंकि मैं हूं ना।
4: सरकार के मुताबिक 17 लाख से ज्यादा महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। अब तक इस योजना के लिए 9 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं। आज सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 2500 महिलाओं को अप्रूवल लेटर दिया। दिल्ली सरकार का ये चुनावी वादा था जो अब पूरा होने जा रहा है।
16: और 2500
17: मैं आप सभी को ढेर सारी बधाई देती हूँ, आज के इस दिन की शुभकामनाएं देती हूँ। ये दिल्ली लक्ष्मी योजना जो आज मेरी दिल्ली की बहनों के लिए आप सभी के द्वार पहुंच पाई है, इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, उस माँ को और आप सभी को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए शुभकामनाएं देती हूँ आपके आगे आने वाले जीवन के लिए।
4: दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी ने ऐलान किया था कि अगर उनकी सरकार बनी तो दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। चुनाव जीतने के बाद इसके लिए 5100 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया। इस योजना में 1000 रुपए उनके डिजिटल वॉलेट में आएंगे, जबकि बाकी के 1500 रुपए हर महीने FD खाते में जाएंगे। आपको बता दें कि 1 सितंबर से सभी पात्र महिलाओं के बैंक खातों में योजना की 2500 रुपए की मासिक सहायता राशि सीधे ट्रांसफर होनी शुरू हो जाएगी।
2: दिल्ली में बनने वाली भाजपा सरकार अपने वायदे पूरी करेगी। मैं फिर दोहराता हूं, 8 तारीख के बाद जब दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी, जो भी वादे आपको किए गए हैं वो सारे के सारे वादे समय सीमा में पूरे किए जाएंगे, ये
18: मोदी की गारंटी है।
19: इस योजना का लाभ देने के लिए कुछ शर्तें हैं, जिसमें महिला की उम्र 21 से 60 साल के बीच होनी चाहिए, परिवार की कुल आय 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एक परिवार से एक ही महिला को लाभ मिलेगा, महिला कम से कम 10 साल से दिल्ली की स्थायी निवासी हो, महिला के खिलाफ कोई आपराधिक केस दर्ज नहीं होना चाहिए, महिला के 3 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, परिवार साल में 2400 यूनिट से ज्यादा बिजली ना खर्च करता हो, महिला या परिवार जीएसटी या इनकम टैक्स ना भरता हो, घर में कार नहीं होनी चाहिए, परिवार से कोई सरकारी नौकरी में ना हो या रिटायर ना हुआ हो।
20: कि ज्यादातर महिलाएं इस योजना से बाहर कर दी गई हैं। इस योजना के अंदर इतनी सख्त नियम लगाए गए हैं कि ये योजना लगभग किसी को ना मिले।
21: जो वादा प्रधानमंत्री जी ने किया था, मुख्यमंत्री जी ने किया था, वो वादा आज पूरा किया है दिल्ली सरकार ने 1 साल के अंदर। आज दिल्ली की जनता ने, दिल्ली की बहनों ने और देश की बहनों ने ये देख लिया कि कैसे वादा पूरा किया जाता है। इसी दिल्ली में 10 साल तक केजरीवाल ने और उनके लोगों ने बहनों के फॉर्म भरवाए, नकली फॉर्म भराए जाते थे बस्तियों में जा जाके, और फॉर्म भरा के उनका डेटा ले लिया जाता था, बाद में डेटा भी बेच दिया जाता था, और किसी बहन के खाते में 10 साल कोई पैसा नहीं आया दिल्ली के।
22: लगभग 6.5 लाख के आसपास रजिस्ट्रेशन जो है वो इस पूरी योजना के तहत महिलाओं का हुआ है, लेकिन आज पहली अप्रूवल लेटर्स जो है वो 2500 महिलाओं को जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से दिए गए हैं। इसमें मैं बता दूं कि 2025 के चुनावों से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली के जरिए इस योजना के लिए महिलाओं के सामने अपनी बात रखी थी, और उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है, उसी गारंटी पर आज दिल्ली सरकार ने कहीं ना कहीं अपनी मोहर जो है वो लगाई है, और महिलाओं को 2500 रुपए की अप्रूवल लेटर्स जो है वो बांटे गए हैं, और 1 सितंबर से इस योजना के तहत महिलाओं के खाते में पैसा जो है वो ट्रांसफर किया जाएगा।
19: दिल्ली लक्ष्मी योजना के आवेदन अभी खुले हुए हैं। सरकार ने तय किया है कि करीब 17 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। अभी 9 लाख से ज्यादा महिलाओं ने ही आवेदन किया है। आज तक ब्यूरो।
3: और इसी के साथ हम यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: 750 से ज्यादा लापता, इसमें 133 भारतीय शामिल, चीन में भी सैलाब से बहे 265 लोग। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाली पीएम बालिन शाह से की बात, अलर्ट पर बिहार और पूर्वी यूपी, राहत सामग्री के साथ रवाना भारतीय एयरफोर्स के विमान। संसद का विशेष सत्र बुलाने का संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इशारा किया, इंडिया टुडे से खास बातचीत में कहा, संसद में महिला आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री मोदी गंभीर, इस दिशा में काम जारी। बीजेपी के हमले के बाद अब मुस्लिम महिलाओं ने राहुल गांधी को घेरा, हिजाब को लेकर दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन, हिजाब पर चुप्पी का विरोध। और यूपी के शामली में यूट्यूबर और हरियाणवी गायक अंकित बालियान की गोली मारकर हत्या, जिम से बाहर निकलते ही ताबड़तोड़ फायरिंग, हमलावर फरार। नेपाल में तिब्बत से आई अचानक बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाकर रख दी है, तस्वीरें ऐसी हैं कि देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। इस बाढ़ से 11 हाइड्रो पावर प्लांट्स तबाह हो गए हैं। 11 हाइड्रो पावर प्लांट्स को नुकसान पहुंचने से 431 मेगावाट बिजली उत्पादन बंद हो गया है। इसके अलावा बाढ़ से 19 पुल और 40 किलोमीटर सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं।
1: ये सबसे खतरनाक तस्वीरें हैं नेपाल के त्रिशूली बाजार, ऊपर से पानी आ रहा और नीचे तबाही मची।
2: ओ हो, पूरा डैम फूट रहा है, पूरा चाइना को डैम फूट रहा है।
1: अचानक से पानी की रफ्तार तेज होती है और पुल के ऊपर से पानी बहने लगता है, पूरा का पूरा पुल ही टूट कर बह गए। साफ तबाही दिख रही है, सब कुछ बर्बाद करता हुआ ये फ्लैश फ्लड आगे बढ़ता जाता है। और ये उसके बाद का वीडियो है, देखिए पहले ये त्रिशूली बाजार कैसे दिखता था और अब क्या हाल हो गया है। सब कुछ बर्बाद, यहाँ घर थे, होटल थे, स्कूल थे, सब कुछ खत्म हो गए, सिर्फ और सिर्फ बर्बादी के निशान दिख रहे हैं। अब जरा इन दो तस्वीरों को देखिए और समझिए कि कैसे ये त्रिशूली बाजार बर्बाद हो गया। जब ये बाढ़ आई तो उसकी भयावहता तो दिख ही रही है, लेकिन ये भी समझ में आ रहा है कि ये एक भरा पूरा बाजार था जहाँ सब कुछ था, होटल, स्कूल, रिहायशी इलाके। और दूसरी तस्वीर में आपको तबाही दिख रही है, सब कुछ खत्म हो गया, नदी के किनारे रहने वाले लोगों के घर तो पूरी तरह से तबाह हो गए। अभी तो ये भी नहीं पता कि यहाँ कितने लोग बहे होंगे। ये फ्लैश फ्लड कितनी तबाही लेकर आया ये इन तस्वीरों से समझिए। पानी की लहरें बड़ी बड़ी इमारतों से भी बहुत ऊंची उठ रही हैं। ये नेपाल का रसुआ इलाका है, देखिए पानी की कितनी ऊंची लहरें हैं। ये इस तबाही का एक और खतरनाक वीडियो है, ये धाड़िंग का बताया जा रहा है, जहां ये पुल ऐसे बह गया जैसे कि कागज का रहा हो। इतने फोर्स से पानी आया कि पूरा का पूरा पुल ही बह गया, पानी के साथ बहुत सा कचरा भी दिख रहा है। देखिए कैसे अचानक से ये फ्लैश फ्लड अपना रास्ता बदल कर आया। ये तस्वीरें नेपाल के रसुवागढ़ी में चीन के केरूंग बॉर्डर की हैं, जहां पर कस्टम ऑफिस भी है। यहां से नेपाल में सामान आता है, कंटेनर आते हैं, और इसी रास्ते से मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले यात्री भी जाते हैं। सीसीटीवी की तस्वीरों में तारीख आज की है, यानी 26 अगस्त। लोगों के बीच अफरा तफरी मची हुई है और पीछे से फ्लैश फ्लड आ रहा है। यहाँ पर पूरा कस्टम ऑफिस है, अचानक से पूरा फ्लैश फ्लड आता है और सब कुछ खत्म करते हुए आगे बढ़ जाता है। ये लोग जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे वो नहीं बच पाए। बाद में पूरी की पूरी बर्बादी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। पीछे से भारी मात्रा में पानी और मलबा दिख रहा है और आता ही जा रहा है। ये इसी कस्टम पॉइंट का एक और सीसीटीवी वीडियो है। पहले तो सब कुछ सामान्य लग रहा है, बगल में एक छोटी सी नदी बह रही है, 10-12 बसें भी दिख रही हैं, एक दफ्तर दिख रहा है। अचानक से ऊपर से कुछ हलचल होती है या शोर होता है, लोग दौड़ने लगते हैं। देख सकते हैं कि कैसे लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। और फिर दिखता है,
0: अभी तक कोई अनुमान नहीं लगा पा रहा है कि इस प्रलय से कितना नुकसान हुआ है। 133 भारतीय भी लापता बताए जा रहे हैं और यह भी कहा जा रहा है कि ये मानसरोवर यात्री थे, क्योंकि नेपाल से मानसरोवर यात्रा के रूट में ही ये फ्लैश फ्लड आई है, जिसकी शुरुआत हुई नेपाल चीन बॉर्डर से।
1: ये नेपाल के नुवाकोट की ड्रोन तस्वीरें हैं। तबाही के निशान साफ साफ दिख रहे हैं। नदी किनारे पूरी बस्ती थी, अब कुछ एक घर ही बचे हैं। ऐसा लगता है कि नदी अपने साथ सब कुछ बहाती हुई ले गई, पूरा सपाट कर दिया। और ये नेपाल के रसवा की एरियल तस्वीरें हैं। पूरी की पूरी घाटी में नदी से हुई बर्बादी साफ दिख रही है। नेपाल की सेना कैसे बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर रही है, ये इन तस्वीरों से समझिए। यहाँ एक लड़का छत पर था, वो निकल नहीं पाया और यहीं फंस गया। यहाँ हेलीकॉप्टर उतारने की जगह नहीं थी, तो छत के ऊपर हेलीकॉप्टर कुछ देर के लिए स्थिर रहा और वहीं पर उसका रेस्क्यू किया गया। अंदर से नेपाली सेना के जवान ने हाथ बढ़ाया, इस युवक ने थामा और इस तरह से उसे बचाया। ये तबाही का एक और वीडियो है। पूरी घाटी है, सामने से नदी बह रही है जिसकी रफ्तार बहुत कम है और पानी भी कम है, लेकिन तभी अचानक से ऊपर से पानी का गुबार आता दिख रहा है। साफ दिख रहा है कि पानी सब कुछ बर्बाद करता हुआ आगे बढ़ रहा है। एक ट्रक वाला भी सड़क पर है, जो पानी की रफ्तार देखते हुए और तेजी से भागने लगा, लेकिन पानी की रफ्तार से जीत नहीं पाया। पानी की ऊंची ऊंची लहरें बहुत तेजी से बढ़ रही थी। पीछे से और तेज गति से पानी आ रहा था और इसी में कुछ और लोग फंसे हुए दिखाई दिए, जो पैदल चल रहे थे। वो भी पूरी रफ्तार से भागने और बचने की कोशिश कर रहे थे। दूर से बनाए गए इस वीडियो में पानी बहुत नजदीक दिख रहा है, लेकिन असल में यह बहुत दूर था। पीछे से पूरा मलबा आ रहा था, पानी का फोर्स इतना तेज था कि ऐसा लग रहा था जैसे यह बहुत नजदीक हो। ऐसे ही पूरी की पूरी घाटी इस फ्लैश फ्लड से बर्बाद हुई। यह इस तबाही का एक और वीडियो है, यह भी बहुत दूर से बनाया गया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बम विस्फोट हुआ हो, जिसके बाद धुएं का गुबार उठा हो, लेकिन असल में यह पानी का बहाव था जो इतना तेज था कि आसपास सब कुछ बर्बाद करता हुआ आगे बढ़ रहा था। देखिए कैसे बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई। नेपाल में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि जहां ये बाढ़ आई है इस त्रिशूली नदी पर बहुत से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चल रहे थे, जो पूरी तरह से तबाह हो गए। नेपाली मीडिया के मुताबिक लांगटांग खोला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में काम करने वाले 60 लोग लापता हैं। इनमें 25 इंजीनियर, ड्राइवर और किचन स्टाफ है। इसके अलावा 35 वर्कर हैं, जो टनल के अंदर काम कर रहे थे। फ्लैश फ्लड के बाद उनका भी कुछ पता नहीं चल रहा। इसके अलावा तिमूर में रसवा कस्टम ऑफिस में काम करने वाले 15 कर्मचारी भी मिसिंग है। बाढ़ की तबाही इतनी भीषण है कि बड़े बड़े पुल टूट गए। ये चितवन में त्रिशूली नदी पर बना पुल है, देखिए क्या हाल हो गया। आज तक भी
0: नेपाल में आई बाढ़ के बाद बिहार में भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। इसे लेकर बिहार सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री सह जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।

0: नेपाल की इन खौफनाक तस्वीरों ने बिहार के जिलों में दहशत भर दी है, क्योंकि नेपाल से आने वाला पानी बिहार के कई जिलों की जिंदगानी को खतरे में डाल सकता है। इसलिए बिहार में कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है।
1: नदी के किनारे तथा बाढ़ प्रभावित होने वाले क्षेत्रों के निवासी आवश्यक सावधानी बरतें और अपने परिवार, बच्चों, बुजुर्गों एवं पशुओं को सुरक्षित स्थान पर रखने की तैयारी रखें।
0: नेपाल में फ्लैश फ्लड के खतरे को देखते हुए कोसी और गंडक नदी बेसिन से जुड़े जिलों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण और वैशाली में अलर्ट है। सुपौल, सहरसा, मधेपुरा और अररिया जिले में भी अलर्ट है। सरकार कह रही है कि खतरा तो है, मगर सरकार ने सतर्कता के पूरे इंतजाम कर लिए हैं।
2: ये जो पानी आ रहा है, इसमें हम लोगों का आकलन है कि लगभग 1.5 लाख क्यूसेक तक अतिरिक्त पानी आ सकता है, तो फिर 2.5-3 लाख से अधिक पानी नहीं जाएगा। तो या जितना 2.5-3 लाख आने की संभावना है, उस हिसाब से सतर्कता के सभी काम हम लोगों ने कर लिए हैं।
1: अभी सूचना प्राप्त हो रही है कि नेपाल में नदी में भूस्खलन आ जाने के कारण गंडक नदी का बहाव अगले आधे घंटे में काफी तेज होने की संभावना है।
0: बगहा में लोगों को अलर्ट किया जा रहा है, अनाउंस किया जा रहा है कि लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं, तैयारियां तेज हैं। एसएसबी ने भारत नेपाल सीमा पर तैनात अपनी यूनिट्स को अलर्ट जारी किया है। राहत बचाव के लिए 11 टीमों को अलर्ट किया गया है। 7 अतिरिक्त टीमें स्टैंड बाय पर रखी गई हैं। भारत नेपाल सीमा पर तैनात बटालियन को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। सरकार कह रही है कि स्थिति को नियंत्रण से बाहर नहीं जाने देंगे।
2: स्थिति तो थोड़ी कठिन है, लेकिन अभी का जो अनुमान है पानी आने का, वो हम लोगों के हिसाब से स्थिति को हम लोग नियंत्रण से बाहर नहीं जाने देंगे।
0: बिहार की सरकार कह रही है कि घबराने की जरूरत नहीं है, बस सतर्क रहने की आवश्यकता है।
2: लोगों से हम लोगों ने सरकार की तरफ से अपील की है कि अभी घबराने की जरूरत नहीं है, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सतर्क रहना है।
0: बिहार के अलावा यूपी के महाराजगंज, कुशीनगर में भी अलर्ट जारी किया गया है। सतर्कता पूरी है, उम्मीद कीजिए कि नेपाल से आई तबाही भारत में कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। आज तक ब्यूरो।
3: 2027 में यूपी का विधानसभा चुनाव है और ऐसे में यूपी में बीजेपी हैट्रिक लगाने के लिए जांचे परखे फॉर्मूले की तरफ बढ़ रही है। सीएम योगी ने रक्षाबंधन से ठीक पहले लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना शुरू की है। यूपी में अब 60 साल और उससे ऊपर की महिलाओं को रोडवेज की बसों में फ्री यात्रा की सुविधा मिलेगी, तो ग्रेजुएशन की 50,000 छात्राओं को मुफ्त स्कूटी दी जाएगी। योगी सरकार के जवाब में अखिलेश यादव ने भी स्त्री सम्मान योजना का ऐलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर महिलाओं को 40,000 रुपए देने का वादा किया गया है।
4: धन्यवाद। यूपी की चुनावी लड़ाई आधी आबादी पर गरमाई। जेन जी के बाद अब महिलाओं के लिए योजनाओं का ऐलान।
5: तो बेटी के जन्म से लेके पढ़ाई तक और आगे भी सरकार हमेशा उसके साथ खड़ी है।
4: योगी कराएंगे मुफ्त में सफर, अखिलेश का 40,000 वाला वादा। महिला वोटरों का गणित, यूपी में शुरू हुई सियासी भिड़न।
5: हर माता को फ्री में बस सेवा की सुविधा प्राप्त होगी एक सहयात्री के साथ।
4: 2027 यूपी विधानसभा चुनाव की जंग स्त्री 27। यूपी में आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए स्त्री 27 की ये पिक्चर सियासत में किसके लिए सुपरहिट साबित होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये दो तस्वीरें बता रही हैं कैसे यूपी में महिला वोटरों का गणित बड़ी सियासी भिड़ंत बन गया है। जब सीएम योगी महिलाओं के लिए अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना लॉन्च करते हैं, तो यूपी रोडवेज बस के अंदर मुफ्त सफर के लिए बैठी महिलाओं के साथ सेल्फी लेते हैं। उधर जब अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव महिलाओं के लिए स्त्री सम्मान समृद्धि योजना का ऐलान करते हैं, तो उनके साथ पार्टी की महिला सांसद, महिला नेता और महिला कार्यकर्ता मौजूद रहती हैं।
6: गांव से शहर तक मायके से बेटी के घर तक।
4: स्त्री 27 साफ है, यूपी चुनाव की लड़ाई अब आधी आबादी पर गरबाई है। आधी आबादी को पूरा हक देने के दावे के साथ चुनावी होड़ ऐसी मची है कि सीएम योगी महिलाओं के लिए योजनाएं लॉन्च कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव भी स्त्री शक्ति के साथ चुनावी रण में उतरे हैं। योगी सरकार ने रक्षाबंधन से ठीक पहले यूपी में महिलाओं के लिए नए तोहफे की सौगात दी है और इसको नाम दिया गया है लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना। अब यूपी में 60 साल और उससे अधिक उम्र की महिलाएं सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी, जिसमें रोडवेज की बसों में आधार या वोटर आईडी दिखाकर मुफ्त यात्रा की जा सकेगी। इस योजना से उत्तर प्रदेश की करीब 1 करोड़ बुजुर्ग महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। इस योजना में रोजाना औसतन 88,000 महिलाएं लाभान्वित होंगी, जिसमें हर महीने करीब 22.5 करोड़ और सालाना करीब 270 करोड़ रुपए का खर्च आने की उम्मीद है। इसके अलावा रक्षाबंधन के मौके पर सभी उम्र की महिलाओं के लिए भी मुफ्त बस यात्रा की सुविधा रहेगी। 27 अगस्त की रात से 28 अगस्त की रात तक महिलाएं रोडवेज बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगी और उनके साथ एक सहयोगी को भी मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी।
7: रक्षाबंधन के अवसर पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम और सिटी बस सेवा दोनों में हर बेटी, हर बहन, हर माता को 3 दिन के लिए निशुल्क बस सेवा प्रारंभ करने के लिए और इस सुविधा के लिए प्रदेश भर की पूरी मातृशक्ति का अभिनंदन करते हुए उन्हें हृदय से बधाई देता हूं और 29 के बाद 60 वर्ष की कोई भी महिला जो उत्तर प्रदेश की वासी हो अपना वोटर आईडी कार्ड दिखा करके या आधार कार्ड दिखा करके इस यात्रा का लाभ ले सकती हैं। उनसे कोई भी किराया नहीं लिया जाएगा। ये दो प्रकार की सेवाएं आज एक साथ प्रारंभ हो रही हैं।
4: इसके अलावा सीएम योगी ने ग्रेजुएशन की छात्राओं के लिए स्कूटी योजना का भी ऐलान किया है। जी हाँ, 50,000 बेटियों को अक्टूबर नवंबर में स्कूटी दी जाएंगी।
7: यानी अभी तो बेटी के जन्म से लेकर पढ़ाई तक और आगे भी सरकार हमें साथ उसके साथ खड़ी है। हमने एक और व्यवस्था की है, हमारे लिए बड़ा था पहले ये काम कि रक्षाबंधन पे इस कार्यक्रम को करेंगे। अभी हम अक्टूबर या नवंबर में प्रदेश की 50,000 बेटियों को जो स्नातक में पढ़ाई कर रही हैं, ऐसी 50,000 बेटियों को एक स्कूटी उपलब्ध करवाने जा रहे हैं।
4: योगी सरकार ने महिलाओं के लिए योजनाओं का ऐलान किया तो जवाब में अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव ने ताबड़तोड़ 16 योजनाओं के वादों की झड़ी लगा दी।
8: स्त्री सम्मान समृद्धि योजना हम 40,000 से करेंगे शुरुआत, जिसमें बढ़ोतरी होगी हर साल।
9: आंगनबाड़ी बंद हो रहे केंद्र फिर खुलेंगे, गर्म पोषाहार, साफ पानी और स्वच्छ शौचालय के साथ
10: पूरा ढांचा। हर जिले मुख्यालय पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलेंगे हम।
11: 24 घंटे महिलाओं और बच्चियों के लिए एक अलग एम्बुलेंस सेवा होता है, उसकी समय सीमा तय रहेगी और प्रशिक्षित महिला स्टाफ के साथ गर्भवती माताओं को प्राथमिकता मिलेगी। 102 और 108 एम्बुलेंस समाजवादी पार्टी की तरफ से शुरू किया गया था और उसे वापस से लेकर के आएंगे, ये दृढ़ संकल्प है हमारा।
12: इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने वाली हर छात्रा को लैपटॉप,
13: लिए हर तहसील में पीजी कॉलेज, हर जिले में विश्वविद्यालय और सुरक्षित छात्रावास की सुविधा भी दी जाएगी।
14: कार्यस्थल पर महिलाओं का सम्मान, प्रति माह 2 दिन आकस्मिक अवकाश बिना किसी सवाल की।
4: अब एक तरफ तो अखिलेश यादव योगी सरकार की महिलाओं की योजना के जवाब में स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लागू करते हैं, दूसरी तरफ योगी सरकार की योजनाओं में खोट भी निकालते हैं, साथ ही महिला आरक्षण को लेकर प्रहार भी करते हैं।
15: भारतीय जनता पार्टी के लिए तो नारी केवल नारा बन करके रह गई है। आज के दिन हम कहना चाहते हैं, यहाँ जितनी भी हमारी महिलाएं बहनें बैठी हैं, वो जानती हैं कि महिला आरक्षण पास हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी क्यों देरी कर रही है उसको अगले चुनाव में लागू किया जाए। जब रक्षाबंधन के त्योहार पे आप बस चला रहे हो और भी योजनाएं लागू करने का बहाना कर रहे हो, तो ये भी सच बोल करके महिला आरक्षण लागू करने का भी काम किया जाए।
7: मुझे 2017 के पहले की भी सरकारों के कार्यप्रणाली याद आती है। 2017 के पहले एक दौर था, उस समय ये हर बेटी, हर बहन और हर माता की जवान पर एक नारा गूंजता था कि देख सपाई बिटिया घबराई,
15: कि पूरी तैयारी के साथ कोई योजना नहीं चलाई जा रही है। कम से कम उस महिला के साथ या वृद्ध महिला के साथ अगर कोई जा रहा है तो अगर बच्चा है तो फ्री होना चाहिए, और परिवार का कोई वृद्ध है और जो उसके सहायता और सहयोग के साथ जा रहा है, सहयोग के लिए जा रहा है, उसकी आधी होनी चाहिए, आधी टिकट लगनी चाहिए।
3: दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने महिलाओं के लिए लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है और तालकटोरा स्टेडियम में लाभार्थी महिलाओं को सर्टिफिकेट देकर योजना का शुभारंभ किया गया। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की सहायता मिलेगी।
16: पात्र लाभार्थी हैं जो आज यहां पर उपस्थित हैं, चयनित किया गया है, उन सबकी आकांक्षाएं हैं यहां पर, बधाई दें, रक्षाबंधन की मिठाई आज।
4: रक्षाबंधन से ठीक पहले दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया। अब दिल्ली में लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की सहायता मिलेगी।
17: इस सभागार में बैठी हुई मेरी सभी बहनें, एक बार मेरे एक सवाल का जवाब दो, खुश हो? आवाज कम आ रही है मुझे, खुश हो? अरे कहां आवाज आ रही है, खुश हो? बस मैं यही चाहती हूं, मेरी सारी बहनें खुश रहनी चाहिए, उनके चेहरे पे ये मुस्कुराहट बनी रहनी चाहिए। सजी सवरी मेरी ये बहन जिंदगी में हमेशा आगे बढ़े, क्योंकि मैं हूं ना।
4: सरकार के मुताबिक 17 लाख से ज्यादा महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। अब तक इस योजना के लिए 9 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं। आज सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 2500 महिलाओं को अप्रूवल लेटर दिया। दिल्ली सरकार का ये चुनावी वादा था जो अब पूरा होने जा रहा है।
16: और 2500
17: मैं आप सभी को ढेर सारी बधाई देती हूँ, आज के इस दिन की शुभकामनाएं देती हूँ। ये दिल्ली लक्ष्मी योजना जो आज मेरी दिल्ली की बहनों के लिए आप सभी के द्वार पहुंच पाई है, इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, उस माँ को और आप सभी को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए शुभकामनाएं देती हूँ आपके आगे आने वाले जीवन के लिए।
4: दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी ने ऐलान किया था कि अगर उनकी सरकार बनी तो दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। चुनाव जीतने के बाद इसके लिए 5100 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया। इस योजना में 1000 रुपए उनके डिजिटल वॉलेट में आएंगे, जबकि बाकी के 1500 रुपए हर महीने FD खाते में जाएंगे। आपको बता दें कि 1 सितंबर से सभी पात्र महिलाओं के बैंक खातों में योजना की 2500 रुपए की मासिक सहायता राशि सीधे ट्रांसफर होनी शुरू हो जाएगी।
2: दिल्ली में बनने वाली भाजपा सरकार अपने वायदे पूरी करेगी। मैं फिर दोहराता हूं, 8 तारीख के बाद जब दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी, जो भी वादे आपको किए गए हैं वो सारे के सारे वादे समय सीमा में पूरे किए जाएंगे, ये
18: मोदी की गारंटी है।
19: इस योजना का लाभ देने के लिए कुछ शर्तें हैं, जिसमें महिला की उम्र 21 से 60 साल के बीच होनी चाहिए, परिवार की कुल आय 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एक परिवार से एक ही महिला को लाभ मिलेगा, महिला कम से कम 10 साल से दिल्ली की स्थायी निवासी हो, महिला के खिलाफ कोई आपराधिक केस दर्ज नहीं होना चाहिए, महिला के 3 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, परिवार साल में 2400 यूनिट से ज्यादा बिजली ना खर्च करता हो, महिला या परिवार जीएसटी या इनकम टैक्स ना भरता हो, घर में कार नहीं होनी चाहिए, परिवार से कोई सरकारी नौकरी में ना हो या रिटायर ना हुआ हो।
20: कि ज्यादातर महिलाएं इस योजना से बाहर कर दी गई हैं। इस योजना के अंदर इतनी सख्त नियम लगाए गए हैं कि ये योजना लगभग किसी को ना मिले।
21: जो वादा प्रधानमंत्री जी ने किया था, मुख्यमंत्री जी ने किया था, वो वादा आज पूरा किया है दिल्ली सरकार ने 1 साल के अंदर। आज दिल्ली की जनता ने, दिल्ली की बहनों ने और देश की बहनों ने ये देख लिया कि कैसे वादा पूरा किया जाता है। इसी दिल्ली में 10 साल तक केजरीवाल ने और उनके लोगों ने बहनों के फॉर्म भरवाए, नकली फॉर्म भराए जाते थे बस्तियों में जा जाके, और फॉर्म भरा के उनका डेटा ले लिया जाता था, बाद में डेटा भी बेच दिया जाता था, और किसी बहन के खाते में 10 साल कोई पैसा नहीं आया दिल्ली के।
22: लगभग 6.5 लाख के आसपास रजिस्ट्रेशन जो है वो इस पूरी योजना के तहत महिलाओं का हुआ है, लेकिन आज पहली अप्रूवल लेटर्स जो है वो 2500 महिलाओं को जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से दिए गए हैं। इसमें मैं बता दूं कि 2025 के चुनावों से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली के जरिए इस योजना के लिए महिलाओं के सामने अपनी बात रखी थी, और उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है, उसी गारंटी पर आज दिल्ली सरकार ने कहीं ना कहीं अपनी मोहर जो है वो लगाई है, और महिलाओं को 2500 रुपए की अप्रूवल लेटर्स जो है वो बांटे गए हैं, और 1 सितंबर से इस योजना के तहत महिलाओं के खाते में पैसा जो है वो ट्रांसफर किया जाएगा।
19: दिल्ली लक्ष्मी योजना के आवेदन अभी खुले हुए हैं। सरकार ने तय किया है कि करीब 17 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। अभी 9 लाख से ज्यादा महिलाओं ने ही आवेदन किया है। आज तक ब्यूरो।
3: और इसी के साथ हम यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

750 से ज्यादा लापता, इसमें 133 भारतीय शामिल, चीन में भी सैलाब से बहे 265 लोग। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाली पीएम बालिन शाह से की बात, अलर्ट पर बिहार और पूर्वी यूपी, राहत सामग्री के साथ रवाना भारतीय एयरफोर्स के विमान। संसद का विशेष सत्र बुलाने का संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इशारा किया, इंडिया टुडे से खास बातचीत में कहा, संसद में महिला आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री मोदी गंभीर, इस दिशा में काम जारी। बीजेपी के हमले के बाद अब मुस्लिम महिलाओं ने राहुल गांधी को घेरा, हिजाब को लेकर दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन, हिजाब पर चुप्पी का विरोध। और यूपी के शामली में यूट्यूबर और हरियाणवी गायक अंकित बालियान की गोली मारकर हत्या, जिम से बाहर निकलते ही ताबड़तोड़ फायरिंग, हमलावर फरार।

नेपाल में तिब्बत से आई अचानक बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाकर रख दी है। तस्वीरें ऐसी हैं कि देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। इस बाढ़ से 11 हाइड्रो पावर प्लांट्स तबाह हो गए हैं। 11 हाइड्रो पावर प्लांट्स को नुकसान पहुंचने से 431 मेगावाट बिजली उत्पादन बंद हो गया है। इसके अलावा बाढ़ से 19 पुल और 40 किलोमीटर सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं।

0: ये सबसे खतरनाक तस्वीरें हैं। नेपाल के त्रिशूली बाजार, ऊपर से पानी आ रहा और नीचे तबाही मची।
1: ओहो, पूरा डैम फूट रहा है यार, पूरा चाइना को डैम फूट रहा है।
0: अचानक से पानी की रफ्तार तेज होती है और पुल के ऊपर से पानी बहने लगता है। पूरा का पूरा पुल ही टूट कर बह गए। साफ तबाही दिख रही है, सब कुछ बर्बाद करता हुआ ये फ्लैश फ्लड आगे बढ़ता जाता है। और ये उसके बाद का वीडियो है, देखिए पहले ये त्रिशूली बाजार कैसे दिखता था और अब क्या हाल हो गया है। सब कुछ बर्बाद, यहाँ घर थे, होटल थे, स्कूल थे, सब कुछ खत्म हो गए, सिर्फ और सिर्फ बर्बादी के निशान दिख रहे हैं। अब जरा इन दो तस्वीरों को देखिए और समझिए कि कैसे ये त्रिशूली बाजार बर्बाद हो गया। जब ये बाढ़ आई तो उसकी भयावहता तो दिख ही रही है, लेकिन ये भी समझ में आ रहा है कि ये एक भरा पूरा बाजार था जहाँ सब कुछ था, होटल, स्कूल, रिहायशी इलाके। और दूसरी तस्वीर में आपको तबाही दिख रही है, सब कुछ खत्म हो गया। नदी के किनारे रहने वाले लोगों के घर तो पूरी तरह से तबाह हो गए। अभी तो ये भी नहीं पता कि यहाँ कितने लोग बहे हों। ये फ्लैश फ्लड कितनी तबाही लेकर आया ये इन तस्वीरों से समझिए। पानी की लहरें बड़ी बड़ी इमारतों से भी बहुत ऊंची उठ रही हैं। ये नेपाल का रसुआ इलाका है, देखिए पानी की कितनी ऊंची लहरें हैं। ये इस तबाही का एक और खतरनाक वीडियो है, ये धाड़िंग का बताया जा रहा है, जहां ये पुल ऐसे बह गया जैसे कि कागज का रहा हो। इतने फोर्स से पानी आया कि पूरा का पूरा पुल ही बह गया। पानी के साथ बहुत सा कचरा भी दिख रहा है। देखिए कैसे अचानक से यह फ्लैश फ्लड अपना रास्ता बदल कर आया। ये तस्वीरें नेपाल के रसुवागढ़ी में चीन के केरूंग बॉर्डर की है, जहां पर कस्टम ऑफिस भी है। यहां से नेपाल में सामान आता है, कंटेनर आते हैं और इसी रास्ते से मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले यात्री भी जाते हैं। सीसीटीवी की तस्वीरों में तारीख आज की है, यानी 26 अगस्त। लोगों के बीच अफरा तफरी मची हुई है और पीछे से फ्लैश फ्लड आ रहा है। यहाँ पर पूरा कस्टम ऑफिस है, अचानक से पूरा फ्लैश फ्लड आता है और सब कुछ खत्म करते हुए आगे बढ़ जाता है। ये लोग जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे वो नहीं बच पाए। बाद में पूरी की पूरी बर्बादी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। पीछे से भारी मात्रा में पानी और मलबा दिख रहा है और आता ही जा रहा है। ये इसी कस्टम पॉइंट का एक और सीसीटीवी वीडियो है। पहले तो सब कुछ सामान्य लग रहा है, बगल में एक छोटी सी नदी बह रही है, 10-12 बसें भी दिख रही हैं, एक दफ्तर दिख रहा है। अचानक से ऊपर से कुछ हलचल होती है या शोर होता है, लोग दौड़ने लगते हैं। देख सकते हैं कि कैसे लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। और फिर दिखता है फ्लैश फ्लड, पूरा पानी और मलबा आता है और सब कुछ तबाह कर

0: चला जाता है। सारी बसें ऐसे बहती हैं जैसे कोई फिल्मी सीन। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने खोज और बचाव कार्य के निर्देश दिए हैं। तिब्बत के केरुंग पोर्ट पर बुधवार की सुबह यह फ्लैश फ्लड आया था। यह फ्लैश फ्लड कोई सामान्य नहीं था। यह नेपाल चीन बॉर्डर से करीब 190 किलोमीटर दूर चितवन की तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों में पानी का फोर्स और उसकी तबाही साफ दिख रही है। सामने बहुत बड़ी भगवान बुद्ध की मूर्ति है और पानी बिल्कुल मूर्ति के आधे आ गया है। यह समझा जा सकता है कि इसकी रफ्तार कितनी तेज है। अब जरा आसमान से देखिए कि कैसे तबाही मची हुई है। ये तस्वीरें नेपाली सेना ने जारी की हैं, हेलीकॉप्टर से ली हुई हैं। सब कुछ तबाह दिख रहा है। इस तबाही का एक और वीडियो रसुआ में त्रिशूली नदी के पास का है। जब ये बाढ़ आई तब का वीडियो है। आगे एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट दिख रहा है और नीचे कुछ मजदूर काम कर रहे हैं। तभी अचानक से ऊपर से पानी आ गया। मजदूर भागने लगे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इतना फोर्स से पानी आया कि ये पूरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट टूट गया और ये मजदूर बह गए। आज तक भी
1: अभी तक कोई अनुमान नहीं लगा पा रहा है कि इस प्रलय से कितना नुकसान हुआ है। 133 भारतीय भी लापता बताए जा रहे हैं और यह भी कहा जा रहा है कि ये मानसरोवर यात्री थे, क्योंकि नेपाल से मानसरोवर यात्रा के रूट में ही ये फ्लैश फ्लड आई है जिसकी शुरुआत हुई नेपाल चीन बॉर्डर से।
0: ये नेपाल के नुवाकोट की ड्रोन तस्वीरें। तबाही के निशान साफ साफ दिख रहे हैं। नदी किनारे पूरी बस्ती थी, अब कुछ एक घर ही बचे हैं। ऐसा लगता है कि नदी अपने साथ सब कुछ बहाती हुई ले गई, पूरा सपाट कर दी। और ये नेपाल के रसुवा की एरियल तस्वीरें। पूरी की पूरी घाटी में नदी से हुई बर्बादी साफ दिख रही है। नेपाल की सेना कैसे बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर रही है ये इन तस्वीरों से समझिए। यहां एक लड़का छत पर था, वो निकल नहीं पाया और यहीं फंस गया। यहां हेलीकॉप्टर उतारने की जगह नहीं थी तो छत के ऊपर हेलीकॉप्टर कुछ देर के लिए स्थिर रहा और वहीं पर उसका रेस्क्यू किया गया। अंदर से नेपाली सेना के जवान ने हाथ बढ़ाया, इस युवक ने थामा और इस तरह से उसे बचाया। ये तबाही का एक और वीडियो है। पूरी घाटी है, सामने से नदी बह रही है जिसकी रफ्तार बहुत कम है और पानी भी कम है, लेकिन तभी अचानक से ऊपर से पानी का गुबार आता दिख रहा है। साफ दिख रहा है कि पानी सब कुछ बर्बाद करता हुआ आगे बढ़ रहा है। एक ट्रक वाला भी सड़क पर है जो पानी की रफ्तार देखते हुए और तेजी से भागने लगा, लेकिन पानी की रफ्तार से जीत नहीं पाया। पानी की ऊंची ऊंची लहरें बहुत तेजी से बढ़ रही। पीछे से और तेज गति से पानी आ रहा था और इसी में कुछ और लोग फंसे हुए दिखाई दिए जो पैदल चल रहे थे। वो भी पूरी रफ्तार से भागने और बचने की कोशिश कर रहे थे। दूर से बनाए गए इस वीडियो में पानी बहुत नजदीक दिख रहा है, लेकिन असल में यह बहुत दूर था। पीछे से पूरा मलबा आ रहा था। पानी का फोर्स इतना तेज था कि ऐसा लग रहा था जैसे ये बहुत नजदीक हो। ऐसे ही पूरी की पूरी घाटी इस फ्लैश फ्लड से बर्बाद हो। ये इस तबाही का एक और वीडियो है, ये भी बहुत दूर से बनाया गया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बम विस्फोट हुआ हो जिसके बाद धुएं का गुबार उठा हो, लेकिन असल में ये पानी का बहाव था जो इतना तेज था कि आसपास सब कुछ बर्बाद करता हुआ आगे बढ़ रहा था। देखिए कैसे बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई। नेपाल में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है क्योंकि जहां ये बाढ़ आई है इस त्रिशूली नदी पर बहुत से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स चल रहे थे जो पूरी तरह से तबाह हो गए। नेपाली मीडिया के मुताबिक लांगटांग खोला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में काम करने वाले 60 लोग लापता हैं। इनमें 25 इंजीनियर, ड्राइवर और किचन स्टाफ है। इसके अलावा 35 वर्कर हैं जो टनल के अंदर काम कर रहे थे। फ्लैश फ्लड के बाद उनका भी कुछ पता नहीं चल रहा। इसके अलावा तिमूर में रसवा कस्टम ऑफिस में काम करने वाले 15 कर्मचारी भी मिसिंग हैं। बाढ़ की तबाही इतनी भीषण है कि बड़े बड़े पुल टूट गए। ये चितवन में त्रिशूली नदी पर बना पुल है, देखिए क्या हाल हो गया है। आज तक
1: नेपाल में आई बाढ़ के बाद बिहार में भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। इसे लेकर बिहार सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री सह जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।

0: नेपाल की इन खौफनाक तस्वीरों ने बिहार के जिलों में दहशत भर दी है, क्योंकि नेपाल से आने वाला पानी बिहार के कई जिलों की जिंदगानी को खतरे में डाल सकता है। इसलिए बिहार में कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है।
1: नदी के किनारे तथा बाढ़ प्रभावित होने वाले क्षेत्रों के निवासी आवश्यक सावधानी बरतें और अपने परिवार, बच्चों, बुजुर्गों एवं पशुओं को सुरक्षित स्थान पर रखने की तैयारी रखें।
0: नेपाल में फ्लैश फ्लड के खतरे को देखते हुए कोसी और गंडक नदी बेसिन से जुड़े जिलों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण और वैशाली में अलर्ट है। सुपौल, सहरसा, मधेपुरा और अररिया जिले में भी अलर्ट है। सरकार कह रही है कि खतरा तो है, मगर सरकार ने सतर्कता के पूरे इंतजाम कर लिए हैं।
2: ये जो पानी आ रहा है, इसमें हम लोगों का आकलन है कि लगभग 1.5 लाख क्यूसेक तक अतिरिक्त पानी आ सकता है, तो फिर 2.5-3 लाख से अधिक पानी नहीं जाएगा। तो याद इतना 2.5-3 लाख आने की संभावना है, उस हिसाब से सतर्कता के सभी काम हम लोगों ने कर लिए हैं।
1: अभी सूचना प्राप्त हो रही है कि नेपाल में नदी में भूस्खलन आ जाने के कारण गंडक नदी का बहाव अगले आधे घंटे में काफी तेज होने की संभावना है।
0: बगहा में लोगों को अलर्ट किया जा रहा है, अनाउंस किया जा रहा है कि लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं, तैयारियां तेज हैं। एसएसबी ने भारत नेपाल सीमा पर तैनात अपनी यूनिट्स को अलर्ट जारी किया है। राहत बचाव के लिए 11 टीमों को अलर्ट किया गया है। 7 अतिरिक्त टीमें स्टैंड बाय पर रखी गई है। भारत नेपाल सीमा पर तैनात बटालियन को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। सरकार कह रही है कि स्थिति को नियंत्रण से बाहर नहीं जाने देंगे।
2: स्थिति तो थोड़ी कठिन है, लेकिन अभी का जो अनुमान है पानी आने का, वो हम लोगों के हिसाब से स्थिति को हम लोग नियंत्रण से बाहर नहीं जाने देंगे।
0: बिहार की सरकार कह रही है कि घबराने की जरूरत नहीं है, बस सतर्क रहने की आवश्यकता है।
2: लोगों से हम लोगों ने सरकार की तरफ से अपील की है कि अभी घबराने की जरूरत नहीं है, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सतर्क रहना है।
0: बिहार के अलावा यूपी के महाराजगंज, कुशीनगर में भी अलर्ट जारी किया गया है। सतर्कता पूरी है, उम्मीद कीजिए कि नेपाल से आई तबाही भारत में कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। आज तक ब्यूरो।
3: 2027 में यूपी का विधानसभा चुनाव है और ऐसे में यूपी में बीजेपी हैट्रिक लगाने के लिए जांचे परखे फॉर्मूले की तरफ बढ़ रही है। सीएम योगी ने रक्षाबंधन से ठीक पहले लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना शुरू की है। यूपी में अब 60 साल और उससे ऊपर की महिलाओं को रोडवेज की बसों में फ्री यात्रा की सुविधा मिलेगी, तो ग्रेजुएशन की 50,000 छात्राओं को मुफ्त स्कूटी दी जाएगी। योगी सरकार के जवाब में अखिलेश यादव ने भी स्त्री सम्मान योजना का ऐलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर महिलाओं को 40,000 रुपए देने का वादा किया गया है।
4: धन्यवाद। यूपी की चुनावी लड़ाई आधी आबादी पर गरमाई। जेन जी के बाद अब महिलाओं के लिए योजनाओं का ऐलान।
5: तो बेटी के जन्म से लेके पढ़ाई तक और आगे भी सरकार हमेशा उसके साथ खड़ी है।
4: योगी कराएंगे मुफ्त में सफर, अखिलेश का 40,000 वाला वादा। महिला वोटरों का गणित, यूपी में शुरू हुई सियासी भिड़ंत।
5: हर माता को फ्री में बस सेवा की सुविधा प्राप्त होगी एक सहयात्री के साथ।
4: 2027 यूपी विधानसभा चुनाव की जंग स्त्री 27। यूपी में आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए स्त्री 27 की ये पिक्चर सियासत में किसके लिए सुपरहिट साबित होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये दो तस्वीरें बता रही हैं कैसे यूपी में महिला वोटरों का गणित बड़ी सियासी भिड़ंत बन गया है। जब सीएम योगी महिलाओं के लिए अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना लॉन्च करते हैं, तो यूपी रोडवेज बस के अंदर मुफ्त सफर के लिए बैठी महिलाओं के साथ सेल्फी लेते हैं। उधर जब अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव महिलाओं के लिए स्त्री सम्मान समृद्धि योजना का ऐलान करते हैं, तो उनके साथ पार्टी की महिला सांसद, महिला नेता और महिला कार्यकर्ता मौजूद रहती हैं।
6: गांव से शहर तक मायके से बेटी के घर तक।
4: स्त्री 27 साफ है, यूपी चुनाव की लड़ाई अब आधी आबादी पर गरबाई है। आधी आबादी को पूरा हक देने के दावे के साथ चुनावी होड़ ऐसी मची है कि सीएम योगी महिलाओं के लिए योजनाएं लॉन्च कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव भी स्त्री शक्ति के साथ चुनावी रण में उतरे हैं। योगी सरकार ने रक्षाबंधन से ठीक पहले यूपी में महिलाओं के लिए नए तोहफे की सौगात दी है और इसको नाम दिया गया है लोक माता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना। अब यूपी में 60 साल और उससे अधिक उम्र की महिलाएं सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी, जिसमें रोडवेज की बसों में आधार या वोटर आईडी दिखाकर मुफ्त यात्रा की जा सकेगी। इस योजना से उत्तर प्रदेश की करीब 1 करोड़ बुजुर्ग महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। इस योजना में रोजाना औसतन 88,000 महिलाएं लाभान्वित होंगी, जिसमें हर महीने करीब 22.5 करोड़ और सालाना करीब 270 करोड़ रुपए का खर्च आने की उम्मीद है। इसके अलावा रक्षाबंधन के मौके पर सभी उम्र की महिलाओं के लिए भी मुफ्त बस यात्रा की सुविधा रहेगी। 27 अगस्त की रात से 28 अगस्त की रात तक महिलाएं रोडवेज बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगी और उनके साथ एक सहयोगी को भी मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी।
7: रक्षाबंधन के अवसर पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम और सिटी बस सेवा दोनों में हर बेटी, हर बहन, हर माता को 3 दिन के लिए निःशुल्क बस सेवा प्रारंभ करने के लिए और इस सुविधा के लिए प्रदेश भर की पूरी मातृशक्ति का अभिनंदन करते हुए उन्हें हृदय से बधाई देता हूं और 29 के बाद 60 वर्ष की कोई भी महिला जो उत्तर प्रदेश की वासी हो अपना वोटर आईडी कार्ड दिखा करके या आधार कार्ड दिखा करके इस यात्रा का लाभ ले सकती हैं। उनसे कोई भी किराया नहीं लिया जाएगा। ये दो प्रकार की सेवाएं आज एक साथ प्रारंभ हो रही हैं।
4: इसके अलावा सीएम योगी ने ग्रेजुएशन की छात्राओं के लिए स्कूटी योजना का भी ऐलान किया है। जी हाँ, 50,000 बेटियों को अक्टूबर नवंबर में स्कूटी दी जाएंगी।
7: यानी अभी तो बेटी के जन्म से लेकर पढ़ाई तक और आगे भी सरकार हमें साथ उसके साथ खड़ी है। हमने एक और व्यवस्था की है, हमारे लिए बड़ा था पहले ये काम कि रक्षाबंधन पे इस कार्यक्रम को करेंगे। अभी हम अक्टूबर या नवंबर में प्रदेश की 50,000 बेटियों को जो स्नातक में पढ़ाई कर रही हैं, ऐसी 50,000 बेटियों को एक स्कूटी उपलब्ध करवाने जा रहे हैं।
4: योगी सरकार ने महिलाओं के लिए योजनाओं का ऐलान किया तो जवाब में अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव ने ताबड़तोड़ 16 योजनाओं के वादों की झड़ी लगा दी।
8: स्त्री सम्मान समृद्धि योजना, हम 40,000 से करेंगे शुरुआत, जिसमें बढ़ोतरी होगी हर साल।
9: आंगनबाड़ी बंद हो रहे केंद्र फिर खुलेंगे, गर्म पोषाहार, साफ पानी और स्वच्छ शौचालय के साथ।
10: पूरा ढांचा, हर जिले मुख्यालय पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलेंगे हम।
11: 24 घंटे महिलाओं और बच्चियों के लिए एक अलग एम्बुलेंस सेवा होता है, उसकी समय सीमा तय रहेगी और प्रशिक्षित महिला स्टाफ के साथ गर्भवती माताओं को प्राथमिकता मिलेगी। 102 और 108 एम्बुलेंस समाजवादी पार्टी की तरफ से शुरू किया गया था और उसे वापस से लेकर के आएंगे, ये दृढ़ संकल्प है हमारा।
12: इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने वाली हर छात्रा को लैपटॉप,
13: लिए हर तहसील में पीजी कॉलेज, हर जिले में विश्वविद्यालय और सुरक्षित छात्रावास की सुविधा भी दी जाएगी।
14: कार्यस्थल पर महिलाओं का सम्मान, प्रति माह 2 दिन आकस्मिक अवकाश बिना किसी सवाल की।
4: अब एक तरफ तो अखिलेश यादव योगी सरकार की महिलाओं की योजना के जवाब में स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लागू करते हैं, दूसरी तरफ योगी सरकार की योजनाओं में खोट भी निकालते हैं, साथ ही महिला आरक्षण को लेकर प्रहार भी करते हैं।
15: भारतीय जनता पार्टी के लिए तो नारी केवल नारा बन करके रह गई है। आज के दिन हम कहना चाहते हैं, यहाँ जितनी भी हमारी महिलाएं बहने बैठी हैं, वो जानती हैं कि महिला आरक्षण पास हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी क्यों देरी कर रही है? उसको अगले चुनाव में लागू किया जाए। जब रक्षाबंधन के त्योहार पे आप बस चला रहे हो और भी योजनाएं लागू करने का बहाना कर रहे हो, तो ये भी सच बोल करके महिला आरक्षण लागू करने का भी काम किया जाए।
7: मुझे 2017 के पहले की भी सरकारों के कार्यप्रणाली याद आती है। 2017 के पहले एक दौर था, उस समय ये हर बेटी, हर बहन और हर माता की जवान पर ये नारा गूंजता था कि देख सपाई बिटिया घबराई,
15: कि पूरी तैयारी के साथ कोई योजना नहीं चलाई जा रही है। कम से कम उस महिला के साथ या वृद्ध महिला के साथ अगर कोई जा रहा है तो अगर बच्चा है तो फ्री होना चाहिए, और परिवार का कोई वृद्ध है और जो उसके सहायता और सहयोग के साथ जा रहा है, सहयोग के लिए जा रहा है, उसकी आधी होनी चाहिए, आधी टिकट लगनी चाहिए।
3: दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने महिलाओं के लिए लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है और तालकटोरा स्टेडियम में लाभार्थी महिलाओं को सर्टिफिकेट देकर योजना का शुभारंभ किया गया। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की सहायता मिलेगी।
16: 65 पात्र लाभार्थी हैं जो आज यहां पर उपस्थित हैं, चयनित किया गया है। उन सबकी आकांक्षाएं हैं यहां पर बधाई दें, रक्षाबंधन की मिठाई।
4: रक्षाबंधन से ठीक पहले दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया। अब दिल्ली में लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की सहायता मिलेगी।
17: इस सभागार में बैठी हुई मेरी सभी बहनें, एक बार मेरे एक सवाल का जवाब दो, खुश हो? आवाज कम आ रही है मुझे, खुश हो? अरे कहां आवाज आ रही है, खुश हो? बस मैं यही चाहती हूं, मेरी सारी बहनें खुश रहनी चाहिए, उनके चेहरे पे ये मुस्कुराहट बनी रहनी चाहिए। सजी सवरी मेरी ये बहन जिंदगी में हमेशा आगे बढ़े, क्योंकि मैं हूं ना।
4: सरकार के मुताबिक 17 लाख से ज्यादा महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। अब तक इस योजना के लिए 9 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं। आज सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 2500 महिलाओं को अप्रूवल लेटर दिया। दिल्ली सरकार का ये चुनावी वादा था जो अब पूरा होने जा रहा है।
17: मैं आप सभी को ढेर सारी बधाई देती हूँ, आज के इस दिन की शुभकामनाएं देती हूँ। ये दिल्ली लक्ष्मी योजना जो आज मेरी दिल्ली की बहनों के लिए आप सभी के द्वार पहुंच पाई है, इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, उस माँ को और आप सभी को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए शुभकामनाएं देती हूं आपके आगे आने वाले जीवन के लिए।
4: दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी ने ऐलान किया था कि अगर उनकी सरकार बनी तो दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। चुनाव जीतने के बाद इसके लिए 5100 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया। इस योजना में 1000 रुपए उनके डिजिटल वॉलेट में आएंगे, जबकि बाकी के 1500 रुपए हर महीने FD खाते में जाएंगे। आपको बता दें कि 1 सितंबर से सभी पात्र महिलाओं के बैंक खातों में योजना की 2500 रुपए की मासिक सहायता राशि सीधे ट्रांसफर होनी शुरू हो जाएगी।
2: दिल्ली में बनने वाली भाजपा सरकार अपने वायदे पूरी करेगी। मैं फिर दोहराता हूं, 8 तारीख के बाद जब दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी, जो भी वादे आपको किए गए हैं वो सारे के सारे वादे समय सीमा में पूरे किए जाएंगे, ये
18: मोदी की गारंटी है।
19: इस योजना का लाभ देने के लिए कुछ शर्तें हैं, जिसमें महिला की उम्र 21 से 60 साल के बीच होनी चाहिए, परिवार की कुल आय 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एक परिवार से एक ही महिला को लाभ मिलेगा, महिला कम से कम 10 साल से दिल्ली की स्थायी निवासी हो, महिला के खिलाफ कोई आपराधिक केस दर्ज नहीं होना चाहिए, महिला के 3 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, परिवार साल में 2400 यूनिट से ज्यादा बिजली ना खर्च करता हो, महिला या परिवार जीएसटी या इनकम टैक्स ना भरता हो, घर में कार नहीं होनी चाहिए, परिवार से कोई सरकारी नौकरी में ना हो या रिटायर ना हुआ हो।
20: कि ज्यादातर महिलाएं इस योजना से बाहर कर दी गई हैं, इस योजना के अंदर इतनी सख्त नियम लगाए गए हैं कि ये योजना लगभग किसी को ना मिले।
21: जो वादा प्रधानमंत्री जी ने किया था, मुख्यमंत्री जी ने किया था, वो वादा आज पूरा किया है दिल्ली सरकार ने 1 साल के अंदर। आज दिल्ली की जनता ने, दिल्ली की बहनों ने और देश की बहनों ने ये देख लिया कि कैसे वादा पूरा किया जाता है। इसी दिल्ली में 10 साल तक केजरीवाल ने और उनके लोगों ने बहनों के फॉर्म भरवाए, नकली फॉर्म भराए जाते थे बस्तियों में जा जाके, और फॉर्म भरा के उनका डेटा ले लिया जाता था, बाद में डेटा भी बेच दिया जाता था, और किसी बहन के खाते में 10 साल कोई पैसा नहीं आया दिल्ली के।
22: लगभग 6.5 लाख के आसपास रजिस्ट्रेशन जो है वो इस पूरी योजना के तहत महिलाओं का हुआ है, लेकिन आज पहली अप्रूवल लेटर्स जो है वो 2500 महिलाओं को जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से दिए गए हैं। इसमें मैं बता दूं कि 2025 के चुनावों से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली के जरिए इस योजना के लिए महिलाओं के सामने अपनी बात रखी थी, और उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है, उसी गारंटी पर आज दिल्ली सरकार ने कहीं ना कहीं अपनी मोहर जो है वो लगाई और महिलाओं को 2500 रुपए की अप्रूवल लेटर्स जो है वो बांटे गए हैं, और 1 सितंबर से इस योजना के तहत महिलाओं के खाते में पैसा जो है वो ट्रांसफर किया जाएगा।
19: दिल्ली लक्ष्मी योजना के आवेदन अभी खुले हुए हैं। सरकार ने तय किया है कि करीब 17 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। अभी 9 लाख से ज्यादा महिलाओं ने ही आवेदन किया है। आज तक ब्यूरो।
3: और इसी के साथ हम यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: अमर 750 से ज्यादा लापता, इसमें 133 भारतीय शामिल। चीन में भी सैलाब से बहे 265 लोग। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाली पीएम बालिन शाह से की बात, अलर्ट पर बिहार और पूर्वी यूपी, राहत सामग्री के साथ रवाना भारतीय एयरफोर्स के विमान। संसद का विशेष सत्र बुलाने का संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इशारा किया। इंडिया टुडे से खास बातचीत में कहा, संसद में महिला आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री मोदी गंभीर, इस दिशा में काम जारी। बीजेपी के हमले के बाद अब मुस्लिम महिलाओं ने राहुल गांधी को घेरा, हिजाब को लेकर दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन, हिजाब पर चुप्पी का विरोध। और यूपी के शामली में यूट्यूबर और हरियाणवी गायक अंकित बालियान की गोली मारकर हत्या, जिम से बाहर निकलते ही ताबड़तोड़ फायरिंग, हमलावर फरार। नेपाल में तिब्बत से आई अचानक बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाकर रख दी है। तस्वीरें ऐसी हैं कि देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। इस बाढ़ से 11 हाइड्रो पावर प्लांट्स तबाह हो गए हैं। 11 हाइड्रो पावर प्लांट्स को नुकसान पहुंचने से 431 मेगावाट बिजली उत्पादन बंद हो गया है। इसके अलावा बाढ़ से 19 पुल और 40 किलोमीटर सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं।
1: ये सबसे खतरनाक तस्वीरें हैं नेपाल के त्रिशूली बाजार। ऊपर से पानी आ रहा और नीचे तबाही मची।
2: ओहो, पूरा डैम फूट रहा है, पूरा चाइना को डैम फूट रहा है।
1: अचानक से पानी की रफ्तार तेज होती है और पुल के ऊपर से पानी बहने लगता है। पूरा का पूरा पुल ही टूट कर बह गए। साफ तबाही दिख रही है, सब कुछ बर्बाद करता हुआ ये फ्लैश फ्लड आगे बढ़ता जाता है। और ये उसके बाद का वीडियो है, देखिए पहले ये त्रिशूली बाजार कैसे दिखता था और अब क्या हाल हो गया है। सब कुछ बर्बाद, यहाँ घर थे, होटल थे, स्कूल थे, सब कुछ खत्म हो गए। सिर्फ और सिर्फ बर्बादी के निशान दिख रहे हैं। अब जरा इन दो तस्वीरों को देखिए और समझिए कि कैसे ये त्रिशूली बाजार बर्बाद हो गया। जब ये बाढ़ आई तो उसकी भयावहता तो दिख ही रही है, लेकिन ये भी समझ में आ रहा है कि ये एक भरा पूरा बाजार था जहाँ सब कुछ था, होटल, स्कूल, रिहायशी इलाके। और दूसरी तस्वीर में आपको तबाही दिख रही है, सब कुछ खत्म हो गया। नदी के किनारे रहने वाले लोगों के घर तो पूरी तरह से तबाह हो गए। अभी तो ये भी नहीं पता कि यहाँ कितने लोग बहे होंगे। ये फ्लैश फ्लड कितनी तबाही लेकर आया ये इन तस्वीरों से समझिए। पानी की लहरें बड़ी बड़ी इमारतों से भी बहुत ऊंची उठ रही हैं। ये नेपाल का रसुआ इलाका है, देखिए पानी की कितनी ऊंची लहरें हैं। ये इस तबाही का एक और खतरनाक वीडियो है, ये धाड़िंग का बताया जा रहा है, जहां ये पुल ऐसे बह गया जैसे कि कागज का रहा हो। इतने फोर्स से पानी आया कि पूरा का पूरा पुल ही बह गया। पानी के साथ बहुत सा कचरा भी दिख रहा है। देखिए कैसे अचानक से ये फ्लैश फ्लड अपना रास्ता बदल कर आया। ये तस्वीरें नेपाल के रसवागढ़ी में चीन के केरूंग बॉर्डर की है, जहां पर कस्टम ऑफिस भी है। यहां से नेपाल में सामान आता है, कंटेनर आते हैं, और इसी रास्ते से मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले यात्री भी जाते हैं। सीसीटीवी की तस्वीरों में तारीख आज की है, यानी 26 अगस्त। लोगों के बीच अफरा तफरी मची हुई है और पीछे से फ्लैश फ्लड आ रहा है। यहाँ पर पूरा कस्टम ऑफिस है, अचानक से पूरा फ्लैश फ्लड आता है और सब कुछ खत्म करते हुए आगे बढ़ जाता है। ये लोग जो अपनी